0: बीजेपी नेताओं ने तालियों से उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभेंदु अधिकारी को अपना भगवा पटका पहनाया। शुभेंदु के साथ पांच मंत्रियों ने भी शपथ ली। सबसे पहले दिलीप घोष ने शपथ ली। दिलीप घोष बंगाल में बीजेपी के दिग्गज नेता हैं। राज्य में बीजेपी की कमान संभाल चुके हैं। दूसरे नंबर पर अग्निमित्रा पॉल ने शपथ ली, जो न सिर्फ महिला फेस हैं बल्कि फायर ब्रांड नेता भी रही हैं। इसके साथ ही मधुआ समुदाय के अशोक कीर्तनिया, आदिवासी समाज के क्षुदी टुडू और निशित प्रमाणिक को भी टीम शुभेंदु में जगह मिली। आजादी के बाद पहली बार बंगाल में भगवा की बयार बही। बीजेपी अब बंगाल में अपनी सरकार को संगठन और भावनात्मक जुड़ाव दोनों के सहारे मजबूत करने की रणनीति पर काम करती दिख रही है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में इस खास मौके पर बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला, जहां पीएम मोदी और शाह के अलावा केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री भी नजर आए, जिन्होंने शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में बंगाल के उज्जवल भविष्य का भरोसा दिया।
1: तेजी से आगे बढ़ेगा, ना घुसपैठ होगी ना गो तस्करी होगी, अब केवल विकास होगा, भय नहीं होगा, भरोसा होगा।
2: शुभेंदु अधिकारी जी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली हुई है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
3: कमल खिला है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में, और ये डबल इंजन सरकार आगे आने वाले समय में बंगाल को हर तरीके से विकास करेगा।
4: मेरे प्रधानमंत्री के सोच वाली सरकार बनी है, विकास की राह पर बंगाल को आगे लेकर जाने वाली सरकार बनी है।
5: मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। उनके साथ साथ हमारे पहले चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी जी, इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं।
0: बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी को चुना है, जिन्हें बीजेपी के उन सपनों को पूरा करना है जिसका जिक्र लगातार पार्टी के दिग्गज भावनात्मक तरीके से करते रहे हैं। अनुपम मिश्र, इंद्रजीत कुंडू और पीयूष मिश्रा के साथ मारिया शटील, कोलकाता, आज तक।
6: बंगाल की राजनीति में नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के पहले बीजेपी के सीएम के तौर पर शपथ ली है और इस ऐतिहासिक मौके पर कई ऐतिहासिक तस्वीरें भी सामने आई, तो बीजेपी के लिए ये भावुक पल भी था।
7: শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে
0: পহলি বার বঙ্গাল মে বিজেপি কি সরকার বনি হ্যায়, পহলি বার বঙ্গাল মে বিজেপি কা পহলা সিএম বনা হ্যায়, পহলি বার শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী বনে হ্যায়।
7: ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব।
0: पहली बार बंगाल में बीजेपी का बेहिसाब शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।
8: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जोरदार कट्टर ध्वनि के साथ,
0: ये तस्वीरें अद्भुत हैं। कोलकाता का परेड ग्राउंड बीजेपी के नारों और जयकारों से गूंज रहा था। तख्तियों पर तेवर लेकर पहुंचे थे बीजेपी के कार्यकर्ता। मंच पर मोदी के पहुंचने से पहले ही लोगों का सैलाब उमड़ आया था। ऐसे में बीजेपी की शपथ से पहले एंट्री भी शानदार थी, जिसमें रोड शो के लिए खास रथ तैयार किया गया था, जिसमें बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो उनके दोनों तरफ शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य भी थे। खचाखच भरे मैदान में चारों तरफ नारों की गूंज थी, तो वहीं पीएम जनता का अभिवादन करते नजर आ रहे थे। बीजेपी के लिए ये एक भावुक पल था। जिस सपने को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, आज वो सपना पूरे होते देख पीएम मोदी भी गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। यही वजह है कि वो मंच पर आगे आए और घुटनों के बल साष्टांग होकर जनता का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इस मंच से ये भी संदेश देने की कोशिश की गई कि पश्चिम बंगाल का विकास बीजेपी बांग्ला अस्मिता को ध्यान में रखकर करेगी। मंच पर महाकाली, दक्षिणेश्वर मंदिर और टैगोर की तस्वीरें इस बात की गवाह थी। कार्यक्रम में सबसे पहले मोदी ने मंच पर रवींद्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। वहीं कार्यक्रम के बाद शुभेंदु अधिकारी सीधे जोरा सांको ठाकुरबाड़ी पहुंचे, जो कि रवींद्रनाथ टैगोर का घर है। शपथ के लिए बीजेपी ने रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती के दिन को चुना ताकि बंगाल की जनता को सीधा संदेश दिया जा सके।
9: महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए, इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया, और उसका बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ा साको से हुआ है, वो भी गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण किया।
0: पूरे समारोह में एक तस्वीर ने सबको सबसे ज्यादा चौंकाया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मंच पर एक 98 साल के बुजुर्ग कार्यकर्ता के पैर छूते नजर आए। पीएम मोदी ने बुजुर्ग नेता को गले लगाया, उन्हें शॉल ओढ़ाई और मंच पर उनका सम्मान किया। प्रधानमंत्री ने जिस शख्स को ये सम्मान दिया वो है बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता माखनलाल सरकार। 98 साल के माखनलाल सरकार उत्तरी बंगाल के सिलगुड़ी के रहने वाले हैं और जनसंघ के दौर से बीजेपी की राजनीति से जुड़े रहे हैं।
10: बहुत अच्छा लगा, बहुत गर्वित महसूस कर रहा हूँ। हम लोग का परिवार जो इस जगह से बाबा दार्जिलिंग जिला का 25 प्रेसिडेंट से बीजेपी का उस जमाने से पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ बाबा काम किया, बाबा अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम किया, बाबा लादवानी जी के साथ काम किया, बाबा सुषमा स्वराज के साथ काम किया। छोटा बड़ा से देखा बाबा ये जनसंघों का, आरएसएस का, बहुत आरएसएस का ही था आदमी, वो आरएसएस का जो मैदान में होता था पैरेड उरेड बाबा जाता था, यही देखा बाबा बहुत कष्ट करके हम लोगों को मनुष्य किया, अभी भी बाबा कष्ट ही कर रहा है।
11: बार बार कहा गया था कि उनके कार्यकर्ताओं की बलिदान, उनके कार्यकर्ताओं का सैक्रिफाइस उनको आज इस मुकाम तक ले आया। माखनलाल सरकार जिनके बारे में शायद ही आज की तारीख में कोई चर्चा करता हो, लेकिन प्रधानमंत्री ने माखनलाल सरकार को याद रखा, उन्हें इन्वाइट किया, उन्हें न्योता दिया, अपने मंच पे बुलाया, उनके पांव छुआ, क्योंकि ये माखनलाल सरकार वो शख्स है जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ काम कर चुके हैं और स्वतंत्र आंदोलन में उनका एक अहम भूमिका भी रहा है। और सिर्फ यही नहीं, जब पश्चिम बंगाल में आरएसएस का कोई शाखा संगठन उस लिहाज से नहीं था, तब ये माखनलाल सरकार अकेले भगवा झंडे को लेकर चारों ओर घूमते थे और उन्हें कई बार राजनीतिक दलों ने उन्हें राजनीतिक तरीके से उन्हें शिकार बनाया, उन्हें जेल तक जाना पड़ा।
0: बंगाल चुनाव में हिंसा का एक लंबा दौर चला है जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं की जान का जिक्र बीजेपी लगातार करती रही है। ऐसे में पीएम मोदी ने चुनावी हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं देवाशीष मंडल, सौमित्र घोषाल और आनंद पाल के परिवारों से मुलाकात की। तमाम उम्मीदें इस सरकार से जुड़ी हैं। लोगों की भावनाएं शपथ ग्रहण में दिखाई दी, जहां अब चुनौती जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की है। अनुपम मिश्र, इंद्रजीत कुंडू और पीयूष मिश्रा के साथ मारिया शकील, कोलकाता आज तक।
6: वो शुभेंदु अधिकारी जो कभी टीएमसी में ममता बैनर्जी के बाद दूसरे नंबर के नेता थे, जिन्हें ममता बैनर्जी का खासम खास समझा जाता था, जिन्होंने ममता बैनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल में सत्ता की जमीन बनाई थी, उन्हें शुभेंदु अधिकारी ने ममता का किला ढा दिया।
12: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी,
7: आमी शुभेंदु अधिकारी संविधान और विधि अनुसारे न्यायाचरण करिब।
0: सत्ताईस नवंबर 2020 की बात है, एक खबर आई कि पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री और दीदी के खास सिपह सलार शुभेंदु अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा चुनाव महज 5 महीने दूर थे, शुभेंदु का जाना किसी बड़े किले के ठहरने जैसा था। आनन फानन में डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हुई। रूठे हुए नंदीग्राम के शेर को मनाने के लिए बिसात बिछाई गई। 1 दिसंबर की सर्द रात कोलकाता के कमरे में 4 दिग्गज जुटे, बागी शुभेंदु अधिकारी, ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी, टीएमसी सांसद सौगत रॉय और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर। घंटों माथापच्ची हुई। अगली सुबह सौगत रॉय ने ऐलान किया कि सब ठीक है, शुभेंदु अधिकारी कहीं नहीं जा रहे, वो हमारे साथ हैं। लगा कि तूफान टल गया।
13: कुछ ही दिन बीते थे कि शुभेंदु अधिकारी के एक व्हाट्सएप मैसेज ने फिर से सियासी धमाका कर दिया। सौगत रॉय को भेजे अपने मैसेज में उन्होंने लिखा कि मेरी टीस अभी भी बरकरार है, आपने बिना समाधान निकाले सब कुछ मुझ पर ही थोप दिया, अब साथ चलना मुश्किल होगा, मुझे माफ करें।
0: इधर मेदिनीपुर में शुभेंदु के दफ्तर से ममता दीदी के पोस्टर नदारद हो रहे थे और दीवारों पर भगवा रंग चढ़ने लगा था। 17 दिसंबर को उन्होंने आधिकारिक तौर पर टीएमसी को राम राम कह दिया। अगले ही दिन दिल्ली से जेड श्रेणी की सुरक्षा का फरमान आया तो समझ में आ गया कि अब शुभेंदु की मंजिल का पता बदल चुका है।
14: मंत्री शुभेंदु अधिकारी महाशय के वरुण
0: 19 दिसंबर 2020 का वो दिन मेदिनीपुर का मैदान जन सैलाब से अटा पड़ा था।
14: प्रिय सांसद
0: गृह मंत्री अमित शाह ने शुभेंदु के गले में बीजेपी का गमछा डाला, दोनों ने मिलकर झंडा लहराया।
14: दशरथ तिर्के महाशय,
0: शुभेंदु अधिकारी ने झुककर शाह के पैर छुए और बंगाल फतह के लिए बीजेपी के सारथी बन गए।
14: एमएलए हल्दिया, अशोक टिंडा एमएलए तमलुक।
0: 2021 का चुनाव आया तो शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम कारी ने झुककर शाह के पैर छुए और बंगाल फतह के लिए बीजेपी के सारथी बन गए।
14: एमएलए हल्दिया, अशोक टिंडा एमएलए तमलुक।
0: 2021 का चुनाव आया तो शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार थे। यहीं से शुरू हुई शुभेंदु और ममता की असली लड़ाई। लेकिन हैरानी इस बात की कि ममता को शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में शिकस्त दे दी।
15: 7 लाख वोटे यदि माननीय के आना देना पारी, हमी राजनीति छेड़े देबो, हमी राजनीति छेड़े देबो, आप लिखे रखो।
0: ये शुभेंदु का ऐलान था कि बंगाल की सियासत में बदलाव आना तय है। नंदीग्राम से हारने के बाद ममता बनर्जी ने अपना नया गढ़ भवानीपुर बनाया, लेकिन इस बार के चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर से भी ममता बनर्जी की कुर्सी खींच ली।
16: शुभेंदु दा ने गत चुनाव में दीदी को नंदीग्राम में हराया था। मैंने दीदी का एक इंटरव्यू देखा था, वो कहती थी मैं इनके घड़ में लड़ने के लिए चली गई। दीदी इस बार तो शुभेंदु दा ने आपके घर में आकर हराया है। शुभेंदु को मैं लंबे समय से जानता हूं, संघर्षशील व्यक्ति है शुभेंदु जी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखा है और टीएमसी के दूषणों को भी देखा है। यहां पर सुशासन देने में हमारी टीम के साथ शुभेंदु जी सफल हो।
0: अब जिस मुख्यमंत्री पद के सिंहासन पर पिछले 15 सालों से ममता बनर्जी काबिज थी, आज उस सत्ता के सिंहासन पर शुभेंदु अधिकारी बैठे हैं।
17: हम सभी लोग बहुत खुश हैं क्योंकि ये जो पश्चिम बंगाल है, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनका पश्चिम बंगाल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनका ये पश्चिम बंगाल है, और यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनना मैं ऐसा मानता हूँ कि सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत ही भाव विभोर इस प्रकार का ये प्रसंग है।
7: आमी शुभेंदु अधिकारी
0: ममता के किले में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने ममता के सबसे बड़े सेनापति को थोड़ा वक्त लगा, लेकिन आज बीजेपी बंगाल में ममता के किले को ध्वस्त कर चुकी है और बंगाल में पहली बार जब बीजेपी की सरकार बन गई है और सत्ता की चाबी अब शुभेंदु के हाथों में सौंप दी गई है। हालांकि इसका ऐलान गृह मंत्री ने पहले ही कर दिया था।
16: आपको कहकर जाता हूँ डेबरा वालों, बंगाल में जन्मा हुआ बंगाल का ही नेता, बंगाल का ही भाजपा का कार्यकर्ता,
18: बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बनने वाला है, अगला मुख्यमंत्री बनने वाला है।
0: सवाल है कि शुभेंदु ने इस असंभव से काम को संभव कैसे करके दिखाया। शुभेंदु के आने के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी की परफॉर्मेंस कैसे बदली, ये तो आंकड़े भी बता रहे हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पश्चिम बंगाल में सिर्फ 3 सीटें मिली थी। 2021 के विधानसभा चुनाव में शुभेंदु की एंट्री हुई और बीजेपी 77 सीटों के साथ विपक्ष में आ गई। और 2026 में 207 सीटों के साथ बीजेपी ने बंगाल फतह कर लिया। गुरु और शिष्य की लड़ाई में आखिरकार शिष्य गुरु पर भारी पड़ गया। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी का 15 साल पुराना किला ढहाने में बीजेपी की बड़ी मदद की है। बीजेपी के लिए भले ही पश्चिम बंगाल बहुत महत्वपूर्ण रहा हो, लेकिन उसके पास ऐसा कोई नेता नहीं था जो ममता बनर्जी का मुकाबला कर सके, जो ममता बनर्जी के सामने खड़ा हो सके, उन्हें चुनौती दे सके।
19: प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का सपोर्ट तो पूरा था, लेकिन जब तक बीजेपी को बंगाल में ऐसा कोई लोकल लीडर नहीं मिलता जो ममता बनर्जी के घर में घुस के उनको चुनौती दे, तब तक बीजेपी के लिए बंगाल जीतना मुश्किल था। और यही वजह है बीजेपी के तलाश शुभेंदु अधिकारी पर आकर खत्म हुई।
0: शुभेंदु ममता बनर्जी के बहुत खास थे, उनके आंदोलन के दिनों से उनके साथ थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया और ममता बनर्जी की पार्टी में एंट्री हुई चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की। इसके बाद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का वर्चस्व तेजी से बढ़ा। शुभेंदु जैसे ग्राउंड लीडर को महसूस होने लगा कि पार्टी में कॉरपोरेट स्टाइल के दखल के कारण उनके जैसे पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है।
20: में सरकार बदल कर दिया जनता का साथ लेकर, तब दिल्ली से ममता बनर्जी भतीजा को लाया है और भतीजा ओनली आइडेंटिटी ही इज द नेफ्यू ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल।
0: यह असंतोष महीनों तक सुलगता रहा और आखिरकार नवंबर 2020 में कैबिनेट से इस्तीफे के साथ बाहर आ गया। इसके बाद शुभेंदु ने पहले टीएमसी से इस्तीफा दिया, उन्हें मनाने की भी कोशिश हुई।
20: तो कोई पार्टी से सस्पेंड भी नहीं किया, सो कुछ भी नहीं किया, मैं छोड़ के आया है। मेरा पास 5 बड़ा डिपार्टमेंट था, लेकिन मैं ममता बनर्जी का ये तुष्टीकरण राजनीति, भ्रष्टाचार राजनीति और उनका जो झूठा राजनीति, इसका खिलाफ संघर्ष करने के लिए कॉम्फर्ट जोन से पैसेज छोड़ के आया है।
0: फिर आया 2026 का चुनाव। शुभेंदु नंदीग्राम से लड़ रहे थे और ममता बनर्जी भवानीपुर से, लेकिन अमित शाह की सलाह पर वो ममता के खिलाफ भवानीपुर से लड़े।
21: शुभेंदु दा हमारे नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे। मैंने शुभेंदु दा को कहा था कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं, ममता के घर में जाकर उसको हराना है।
22: आमी शुभेंदु अधिकारी।
0: अब शुभेंदु के इस मेहनत का उन्हें इनाम भी मिला है और आज जब बीजेपी पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई है तो शुभेंदु बंगाल के पहले बीजेपी सीएम बन गए हैं। आज तक ब्यूरो।
6: शुभेंदु अधिकारी को राजनीति विरासत में मिली थी, उनके पिता भी राजनेता थे। अपने पिता को देखकर शुभेंदु राजनीति में आए, छात्र राजनीति से करियर की शुरुआत की और फिर नंदीग्राम में बड़े आंदोलन का चेहरा बने। 2011 में ममता बनर्जी की जीत का श्रेय भी शुभेंदु अधिकारी को दिया जाता है।
0: शुभेंदु अधिकारी अब बंगाल के सूबेदार हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने अथाह परिश्रम किया है। 15 दिसंबर 1970, बंगाल की खाड़ी से उठती सर्द हवाएं पूर्वा मेदिनीपुर के एक करकुली इलाके में बह रही थी। इसी रात शुभेंदु अधिकारी का जन्म हुआ। शुभेंदु एक ऐसे घर में पैदा हुए थे जिसके दरवाजे पर राजनीति की स्याही और देशभक्ति की खुशबू एक साथ खुली हुई थी। दादा स्वतंत्रता सेनानी थे। बताया जाता है कि शुभेंदु अधिकारी का घर अंग्रेजों ने 3 बार चलाया था।
23: शुभेंदु अधिकारी को राजनीति विरासत में मिली थी। उनके पिता शिशिर अधिकारी 25 सालों से कांथी म्यूनिसिपलिटी की नगरपालिका थे। और उस उनको देख के ही शुभेंदु अधिकारी राजनीति में आई। कहीं पे ये हार ना मानने की मिजाज और शिशिर अधिकारी की इशारे पर मेदिनीपुर में पत्ते तक नहीं हिलती थी और यही मिजाज इस वक्त शुभेंदु अधिकारी में भी दिख रहा है।
0: 19 साल की उम्र में शुभेंदु अधिकारी ने छात्र राजनीति में कदम रखा। कांथी के पीके कॉलेज में लेफ्ट के छात्र संगठन एएफआई का एक छत्र राज था। शुभेंदु ने कांग्रेस के छात्र परिषद का सहारा लिया। यहीं उन्होंने सीखा कि विरोधियों को कैसे हराते हैं। लेफ्ट के विरोध में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम को विद्रोही टापू बना दिया। सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश पैदा किया। तब तक वो ममता बनर्जी के पाले में आ चुके थे। नंदीग्राम के बाद ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को जंगल महल, बांकुरा और पश्चिमी मेदिनीपुर का इंचार्ज बनाया। ये इलाके माओवादियों और वामपंथ के गढ़ थे। शुभेंदु ने बूथ दर बूथ टीएमसी की जड़ें जमाई। उनकी नजर 2009 के लोकसभा और 2011 के विधानसभा चुनाव पर थी। 2011 के चुनाव में शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में ममता बनर्जी के बाद नंबर दो के नेता बन चुके थे। नंदीग्राम और सिंगूर के आंदोलनों ने ममता को मां माटी और मानुष का चेहरा दिया और शुभेंदु ने वो जमीन तैयार की जिसमें ममता बनर्जी की सत्ता की इमारत बनी। वो सालों साल तक ममता बनर्जी के खास रहे, मगर टीएमसी में अभिषेक बनर्जी की बढ़ती दखलंदाजी और खुद की उपेक्षा होने से शुभेंदु ने ममता का साथ छोड़ने का फैसला किया और आज उन्हें शुभेंदु अधिकारी ने ममता की जड़ें हिला दी। उन्हें सत्ता से बेदखल करके खुद उनकी कुर्सी पर बैठे हैं।
22: आमी
0: आज तक
22: शुभेंदु अधिकारी।
6: बात अब अमेरिका ईरान तनाव की, जहां अगर डील सील ना हुई तो जंग छिड़नी तय माने जा रही है। अमेरिका समेत पूरी दुनिया अब ईरान के जवाब का इंतजार कर रही है।

0: फिर से होने वाला है युद्ध भयंकर। डील नहीं हुई सील तो मचेगा बवंडर। सेनाएं तैयार, धमकियों का वार पलटवार। क्या मिसाइलें फिर गरजने वाली हैं? क्या ड्रोन फिर डराने वाले हैं? क्या बम फिर बरसने वाले हैं? क्या खाड़ी देशों में बर्बादी का बवाल फिर से शुरू होने वाला है? क्या ये सब पहले से भी भयंकर होगा? जो हालात फिलहाल दिख रहे हैं उनमें जंग का खौफनाक साया ईरान समेत पूरे खाड़ी क्षेत्र पर मंडराता दिख रहा है। इस बीच सबकी नजर ईरान पर टिकी हुई है, जिसे अमेरिका के प्रस्ताव पर अपना जवाब देना है ताकि जंग खत्म की जा सके। वैसे तो ट्रंप ने उम्मीद जगाई है कि आज रात तक ईरान शांति प्रस्ताव पर अपना जवाब दे देगा, लेकिन ये धमकी देने में उन्होंने पल भर की देरी भी नहीं लगाई कि अगर डील सील न हुई तो तबाह हो जाएगा ईरान।
1: If it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain.
0: अमेरिकी मीडिया लगातार कह रहा है कि बातचीत आगे बढ़ने के संकेत मिले तो सीज फायर भी बढ़ाया जा सकता है। वैसे अमेरिका की तरफ से प्रस्तावित 14 शर्तों वाले ड्राफ्ट में ईरान के एटमी मिशन मुद्दे शामिल हैं। लेकिन ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर है। अमेरिका कहने को ईरान के एटमी ठिकानों को कई बार निशाना बना चुका है, लेकिन उसे डर है कि ईरान इस मिशन को नहीं छोड़ेगा।
1: I said to my people, we're going to have to take a little U-turn and go to the lovely country of Iran and blow them up a little bit because they're not going to have an issue. And then we're not going to ruin you. These guys work so hard to make things beautiful. We're not going to let a nuclear weapon ruin.
0: इस बीच अटकलें इस बात की भी लगाई गई हैं कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई इस वक्त युद्ध और अमेरिका के साथ बातचीत की रणनीति तय करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये और बात है कि उनकी सेहत को लेकर अब भी कई सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक जंग में कई मंत्रियों और बड़े सैन्य अधिकारियों की मौत के बाद ईरानी सत्ता तंत्र बिखरा हुआ नजर आ रहा है। मुज्तबा खामेनेई अभी तक सामने नहीं आए हैं। 28 फरवरी के हमले में पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और कई शीर्ष अधिकारी मारे गए थे। मुज्तबा भी उसी हमले में घायल हुए थे। कहा जा रहा है कि मुज्तबा किसी भी डिवाइस के इस्तेमाल से पूरी तरह बच रहे हैं और गिने चुने लोगों के जरिए संदेश भेज रहे हैं। वो कई गंभीर चोटों का इलाज करा रहे हैं। यूरेनियम के अलावा होर्मुज दूसरा ऐसा मुद्दा है जिस पर अमेरिका और ईरान दोनों का ही पेच फंसा हुआ है। जब तक इन दोनों संवेदनशील मुद्दों पर सहमति नहीं बनेगी, युद्ध का खतरा बढ़ता ही जाएगा। आज तक ब्यूरो।
2: अभी ब्रेक का वक्त हो चला है, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

आज सुबह 10 बजे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे विजय। वीसी के और आईयूएमएल ने भी दिया समर्थन, 13 मई या उससे पहले हासिल करना होगा विश्वास मत। यूपी में मिशन 27 के लिए बीजेपी की तैयारियां तेज, आज दोपहर 3 बजे योगी कैबिनेट का विस्तार, 6 मंत्री ले सकते हैं शपथ। अखिलेश का तंज, दिल्ली से पर्ची आ गई क्या? केरलम के नए मुख्यमंत्री पर अभी भी सस्पेंस बरकरार, दिल्ली में कांग्रेस की बैठक में मैराथन मंथन, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद। बंगाल का मुख्यमंत्री बनते ही शुभेंदु का दावा, डर का माहौल खत्म करेगी बीजेपी, सोमवार को मंत्रालय का होगा बंटवारा। उधर ममता ने विपक्षी नेताओं से एकजुट होने का आह्वान किया। और दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट जारी, सूत्रों के मुताबिक अहम ठिकानों पर आईडी से धमाके का खतरा, बीजेपी मुख्यालय समेत कई जगहों पर पुलिस का चेकिंग अभियान।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। स्वागत है आपका आज तक के इस खास पेशकश में, क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति में आज बहुत ही अहम दिन रहने वाला है। विजय को राज्यपाल की ओर से सरकार बनाने की मंजूरी मिल चुकी है और आज सुबह 10 बजे वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। टीवीके अपनी पहली सरकार बनाने जा रही है और पार्टी को बहुमत जुटाने में वीसीके और साथ ही आईयूएमएल का समर्थन मिल गया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी विजय के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। वहीं विजय के पिता और मशहूर निर्देशक एस ए चंद्रशेखर ने बेटे को संदेश देते हुए कहा है कि तमिल लोगों के लिए काम करो। चेन्नई में शपथ ग्रहण को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। राजनीति से लेकर फिल्मी जगत की बड़ी हस्तियों के पहुंचने की संभावनाएं हैं। तो आज का दिन कुल मिलाकर बहुत ज्यादा खास होने वाला है तमिलनाडु के लिए। कई दिन की लंबी रस्साकसी के बाद आज शपथ लेने जा रहे हैं विजय, और आपको ये भी बता दें कि लोग बेसब्री के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। जिस तरीके से आज भव्य तैयारियां की जा रही हैं, हालांकि तैयारियां पिछले कई दिनों से लगातार जारी थी, लेकिन सस्पेंस लगातार बना हुआ था कि आखिर कम हुए विधायकों को कैसे जुटाया जाए, किसकी तरफ से समर्थन मिलेगा। और इतने सारे सियासी ड्रामे के बाद आज शपथ ग्रहण होना है। मंच तैयार हो चुका है, लोग बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि तमाम बड़े नाम, चाहे वो फिल्मी हस्तियां हों या पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग हों, आज इस शपथ में शामिल होंगे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों के लोगों में जबरदस्त खुशी है। लंबे इंतजार के बाद फाइनली आज विजय शपथ लेने जा रहे हैं। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन से पहले राजनीतिक उत्साह चरम पर नजर आया। टीवी के प्रमुख विजय के लोक भवन से निकलते ही समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखा गया था। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो तमिलनाडु में नई सरकार के गठन से पहले राजनीतिक उत्साह चरम पर था। टीवी के प्रमुख विजय जैसे ही लोक भवन से बाहर निकले, समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। चेन्नई की सड़कों पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, पटाखे फोड़े, मिठाइयां बांटी, विजय के मुख्यमंत्री बनने को ऐतिहासिक क्षण बताया। कई समर्थकों ने कहा कि जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है और अब उन्हें विजय से तमिलनाडु के विकास की उम्मीद है। एक नए युग की शुरुआत विजय के साथ तमिलनाडु में होने जा रही है।
1: Very much excited and first time in a democratic country, people have a right to vote and choose a perfect person in this Tamil Nadu. I am very happy.
2: Eagerly waiting for Talabadi's entry, and 4-5 days we lost our sleep and we lost everything, and finally we got the best things happened in Tamil Nadu. We are eagerly waiting for the good things will happen for Tamil Nadu people.
0: तो आपको बता दें कि पुरी के समुद्र तट पर मशहूर सैंड आर्टिस्ट ने रेत पर शानदार कलाकृति बनाकर अभिनेता विजय को खास अंदाज में बधाई दी है। कांग्रेचुलेशंस विजय अन्ना लिखा। इस सैंड आर्ट को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। कलाकार ने बेहद ही बारीकी से विजय अन्ना का चेहरा उकेरा था, जिसने हर किसी का ध्यान खींचा। सोशल मीडिया पर भी इसकी तस्वीरें तेजी से वायरल हुई हैं। फैंस इसे विजय अन्ना के प्रति प्यार और सम्मान का प्रतीक बता रहे हैं। पुरी बीच की ये कलाकृति एक बार फिर से उड़ीसा की कला और सांस्कृतिक पहचान को दुनिया के सामने दिखा रही है। तो चेन्नई में होने वाले शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मंच को अंतिम रूप दे दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्थाएं भी खड़ी कर दी गई हैं। जानकारी के मुताबिक कल सिर्फ विजय ही मुख्यमंत्री पद की आज शपथ लेने जा रहे हैं। मतलब 10 बजे जो शपथ ग्रहण है, जो जानकारी है वो ये कि सिर्फ विजय ही शपथ लेंगे और कांग्रेस की ओर से सरकार में शामिल होने या किसी मंत्री के शपथ लेने की फिलहाल कोई जानकारी आज के लिए नहीं मिल पाई। विजय के शपथ ग्रहण को लेकर समर्थकों में बड़ा उत्साह देखा गया है। जगह जगह चेन्नई में पोस्टर्स लगाए गए थे, बैनर्स लगाए गए थे, लोग खुश नजर आ रहे थे। और आपको ये भी बता दें कि समारोह में कई राजनीतिक और फिल्मी हस्तियों के पहुंचने की भी संभावना है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लोगों का उत्साह देख सकते हैं कि किस तरीके से नारेबाजी, मिठाई बांटी जा रही है, एक दूसरे को खिलाई जा रही हैं, ढोल नगाड़ों के साथ और ढेर सारी पिक्चर्स के साथ इंतजार किया जा रहा है आज शपथ का। तो चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले विजय को लेकर उनके पिता और निर्देशक एस ए चंद्रशेखर ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मैं बड़ा खुश हूं, जो भी कर रहा हूं सिर्फ अपने बेटे के लिए कर रहा हूं। आखिरकार तमिल लोगों ने विजय के जरिए सफलता हासिल की है। साथ ही साथ उन्होंने अपने बेटे को संदेश देते हुए कहा कि तमिल लोगों के लिए काम करो।
3: So happy. Whatever I am doing only for my son. Really, Tamil people have succeeded.
0: तो तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा दावा करते हुए टीवी के विधायक का शमुंगा प्रिया ने कहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भारी उत्साह है और राज्य की 70% महिलाओं का समर्थन है टीवीके के साथ।
4: जोसेफ विजय, तमिलनाडु मुदलमेचर मानवी जोसेफ विजय।
5: Very much happy and we are very much excited first of all, and we all know and we believe that our leader Vijayanna, he is very concerned about the women's in Tamil Nadu state, and he is very much concentrated on the dignity of women and protected women's safety, everything, and we are very much excited, and as we believe that tomorrow is the best day ever for the Tamil Nadu women, and 70% of Tamil Nadu women have supported Vijayanna, and we believe that this victory is not only for Vijayanna, it is our own victory, and we take it very personally, and we are just waiting and so much excited for tomorrow.
0: तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी चेन्नई पहुंचेंगे, जहां वो मुख्यमंत्री पद के लिए नामित विजय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी सुबह करीब 8:40 पर चेन्नई पहुंच जाएंगे। विजय के शपथ ग्रहण को लेकर तमिलनाडु में राजनीतिक और फिल्मी गलियारों में बड़े उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। इस समारोह में कई बड़े राजनेताओं के और फिल्मी जगत की हस्तियों के शामिल होने की संभावना है। राहुल गांधी की मौजूदगी को भी राजनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो 10 बजे शपथ होनी है और उससे पहले तमाम लोगों के पहुंचने का सिलसिला आज शुरू हो जाएगा, जिसमें राजनीति से लेकर फिल्मी दिग्गजों के पहुंचने की संभावना है। तो राहुल गांधी तो विजय के शपथ ग्रहण में शामिल हो ही रहे हैं, वहीं दोनों ही नेताओं की दोस्ती को लेकर तमिलनाडु की राजनीति में नई तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं मुख्यमंत्री विजय और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी साथ नजर आ रहे हैं। पोस्ट के बाद राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चाएं तेज हुई हैं। सोशल मीडिया पर भी वीडियोस तेजी के साथ वायरल हुए हैं। समर्थक इसे विपक्षी एकजुटता और दक्षिण भारत की राजनीति में नए समीकरणों के संकेतों के तौर पर देख रहे हैं।

तो तमिलनाडु में नई सरकार के गठन को लेकर खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि विजय शपथ का समय बदलवाना चाहते हैं और उनके ज्योतिषी ने उन्हें सुबह 10 बजे का समय सुझाया था और इसी वजह से राज्यपाल के साथ उनकी बैठक करीब 2 घंटे तक चली है। सूत्रों के अनुसार बैठक के दौरान विजय लगातार अपने ज्योतिषी से फोन पर संपर्क में थे। वहीं पार्टी के नेता आधारव ने भी कैमरे पर 10 बजे शपथ की पुष्टि कर दी है। तो आपको बता दें कि ये जानकारी आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जब वो पहुंचे थे राज्यपाल से मिलने के लिए तो लगातार अपने ज्योतिषी के साथ फोन पर बात करते रहे क्योंकि 10 बजे को लेकर लगातार इंसिस्ट विजय की तरफ से किया गया। तमिलनाडु में सत्ता हासिल करना आसान नहीं रहा है विजय के लिए क्योंकि सरकार गठन के लिए हर कदम पर राजनीतिक गड़े समर्थन पत्र और कड़े संवैधानिक परीक्षणों से गुजरना पड़ा है। और इसी जटिल प्रक्रिया के बीच टीवी के प्रमुख विजय ने 6 से 9 मई तक 4 बार राज्यपाल से मुलाकात की है। लगातार प्रयासों और अंतिम समय में मिले समर्थन के बाद ही उन्हें सरकार बनाने की मंजूरी मिली जिसके बाद अब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तो आज का दिन बहुत ज्यादा खास है। 10 बजे का बेसब्री के साथ इंतजार किया जा रहा है। स्टेडियम को पहले ही पूरी तरह से तैयार कर लिया गया था और लगातार असमंजस और सस्पेंस बना हुआ था कि आखिर कहां से किस तरीके से समर्थन लिया जाएगा। और जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर थे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि चीजें क्लियर हों और विजय शपथ लें, वो आज दिन आ गया है। कल जैसे ही सब कुछ फाइनल हुआ कि आज शपथ लेने जा रहे हैं विजय, सुबह 10 बजे का समय रखा गया है जिसमें कहा जा रहा है कि उनके ज्योतिषी का बहुत बड़ा हाथ है खासतौर से समय चुनने में। उसके बाद चारों ही तरफ खुशी का माहौल देखा गया। तमाम कार्यकर्ता तमाम चाहने वालों का कहना यह था कि अब 5 दिनों के हंगामे के बाद वो चैन की सांस लेने वाले हैं। टीवीके को 107 सीटें मिली, कांग्रेस 108 सीटें मिली थी क्योंकि 2 जगहों पर विजय थे तो 1 सीट उनको छोड़नी पड़ेगी अगर कैलकुलेशन में देखा जाए तो उनके पास 107

कमी थी। वीसीके का समर्थन शाम मिला पहले 8 मई को और शाम को फिर इनकार हो गया। आईयूएमएल और वीसीके का समर्थन मिला, अब जाकर ये विधायकों की संख्या पहुंच गई है 120। तो आप देखिए कि 4 मई को रिजल्ट आया था, टीवीके को 107 सीटें मिल गई थी, और उसके बाद लगातार असमंजस और तमाम मुलाकातों का दौर बराबर बना रहा। तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भी टीवीके बहुमत साबित नहीं कर सकी। हालांकि विजय ने जिस तरह से तमिलनाडु में जीत हासिल की वो किसी करिश्मे से कम नहीं है। विजय ने कैसे अपने लिए जीत की राह को तय किया, सिर्फ 2 साल पहले बनाई गई पार्टी और उसके बाद ऐसा कमाल कर दिया कि तमिलनाडु की राजनीति को पलट कर ही रख दिया गया, ऐसा हुआ कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए।

0: वो विजय जो अब तक रियल लाइफ के हीरो थे, अब रियल लाइफ के हीरो बन गए हैं।
1: There are so many jackals and other animals in the forest, but there will be only one lion. And even if it is single, it will be the king of jungle. It is not only a description, but also a clear declaration.
0: तमिलनाडु में पिछले 59 साल एक महीने और 28 दिनों तक सिर्फ दो ही पार्टियों का राज था। तमिलनाडु में पिछले 21,608 दिन से सिर्फ दो ही पार्टियां शासन करती थी, डीएमके और एडीएमके। बीच बीच में तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन भी रहा, लेकिन इन दोनों पार्टियों के अलावा किसी तीसरे पार्टी की एंट्री नहीं हो पाई। लेकिन अब इन दोनों पार्टियों के राज को 59 साल के बाद थलपति विजय की टीवीके ने ध्वस्त किया है।

विजय ने वो करके दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। किसने सोचा था कि सिर्फ 2 साल में ऐसा कमाल दिखाएंगे कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन जाएंगे।

विजय मौजूदा वक्त में तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। विजय के पास पैसा, स्टारडम, फैन फॉलोइंग सब कुछ था। वो चाहते तो आराम से सुपरस्टार बने रह सकते थे, लेकिन उन्होंने राजनीति का रास्ता चुना। 2016 में जयललिता की मौत के बाद से तमिलनाडु की राजनीति में एक शून्य था, एक खालीपन था। डीएमके के सामने तो जैसे कि खुला हुआ रास्ता था, दूर दूर तक कोई भी टक्कर में नहीं था। इसीलिए 2021 में स्टालिन मुख्यमंत्री बने तो सबको लगा कि अब स्टालिन को कौन टक्कर देगा। इसीलिए ज्यादातर एग्जिट पोल में उनकी जीत बताई जा रही थी, लेकिन वो विजय ही थे जिन्होंने जयललिता की मौत से खाली हुई तमिलनाडु की राजनीति के शून्य को भरा। उनकी रैलियों की भीड़ बता रही थी कि तमिलनाडु में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन शायद किसी को ये अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ भीड़ नहीं है, उनके वोटर्स भी हैं। और विजय के इन फैंस ने ये साबित कर दिया कि वो रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए नहीं जमा हुए थे, वो तमिलनाडु को बदलने के लिए आए थे। तमिलनाडु में थलपति विजय ने तो इतिहास रचा है, लेकिन उनको ये कामयाबी इसलिए मिली क्योंकि तमिलनाडु के लोगों को उनके अंदर एक ऐसा नायक नजर आया जो उनके राज्य को आगे ले जा सकता है। विजय की इस जीत के पीछे उनके वो फैंस थे जो उन्हें किसी भी हद तक फॉलो करते हैं। विजय ने अपने फैन क्लब को वेलफेयर नेटवर्क में बदला, लोगों की मदद, युवाओं के कनेक्शन और जमीनी पकड़ मजबूत की और टीवीके के अपने वोटर तैयार किए। तमिलनाडु में विजय के 85,000 से ज्यादा फैन क्लब का नेटवर्क है जिन्होंने उनकी जीत में अहम भूमिका निभाई। उनका ये नेटवर्क पिछले 10 वर्षों से उनके शैडो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में ही काम कर रहे थे। विजय के ये फैन क्लब पूरे तमिलनाडु में सामाजिक काम कर रहे थे, लोगों को विजय से जोड़ रहे थे। विजय आर्मी पिछले कई वर्षों से तमिलनाडु की गलियों में दिख रही थी। विजय की जीत की सबसे

0: बड़ी वजह है उनकी लोकप्रियता। विजय भले ही 51 साल के, लेकिन उन्हें युवाओं का या जेंसी का नेता कहा जाता है। तमिलनाडु में 40 से कम उम्र के युवाओं की संख्या 2 करोड़ है, जो तमिलनाडु के करीब 41.5% वोटर होते हैं। विजय का यही युवा कैडर सोशल मीडिया पर भी एक्टिव था, जिन्होंने तमिलनाडु में विजय के पक्ष में हवा बनाई। विजय ने किसी बड़े गठबंधन का सहारा नहीं लिया, न डीएमके, न एआईएडीएमके, न बीजेपी, सीधे जनता के बीच गए। आज तक पेरो।
1: और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां आज योगी कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। आज शाम योगी कैबिनेट में 6 नए मंत्री शामिल हो सकते हैं। कैबिनेट विस्तार को लेकर योगी ने राज्यपाल से मुलाकात भी की है। बहुत लंबे समय से इस रीशफल का इंतजार किया जा रहा था और कहा जा रहा है कि आज 3 बजे शपथ ग्रहण होना है। 6 नए मंत्रियों को आज योगी कैबिनेट में शपथ दिलाई जाएगी। इस कैबिनेट विस्तार को योगी ने राज्यपाल के साथ मुलाकात कर ली है। तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक इस विस्तार में सामाजिक और जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। संभावित सूची में एक ब्राह्मण, एक जाट, एक पासवान, एक वाल्मीकि और एक लोधी, साथ ही एक विश्वकर्मा बिरादरी से नेताओं को जगह मिलने की चर्चाएं हैं। संभावित नामों में मनोज पांडे का नाम है, भूपेंद्र चौधरी, कृष्णा पासवान, हंसराज विश्वकर्मा, सुरेंद्र दिलेर, कैलाश लोधी, इन सबके नाम शामिल हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम बता भी रहे हैं कि कौन ब्राह्मण नेता है। जैसे मनोज पांडे ब्राह्मण नेता हैं, रायबरेली से हैं। कृष्णा पासवान पासी समुदाय से आते हैं, फतेहपुर से आते हैं, उनका कैबिनेट में शामिल होना तय माना जा रहा है। हंसराज विश्वकर्मा विश्वकर्मा समुदाय से आते हैं, वाराणसी से हैं विधायक। और उधर सुरेंद्र दिलेर की हम बात करें तो वाल्मीकि समुदाय से आते हैं, हाथरस से हैं। तो ये तमाम बड़े नाम हैं जिनके बारे में लगभग तय माना जा रहा है। कैलाश लोधी हैं, लोधी समुदाय से हैं और कन्नौज से विधायक हैं। ये तमाम लोग हैं जो कैबिनेट में आज शामिल हो सकते हैं। 6 नामों को लेकर जबरदस्त चर्चाएं हैं, मुलाकात योगी की हो चुकी है राज्यपाल के साथ और आज कहा जा रहा है कि आज शपथ ग्रहण हो जाएगा। यूपी कैबिनेट विस्तार में 6 नए चेहरे नजर आएंगे। तो 2027 विधानसभा का चुनाव बहुत दूर नहीं है, तमाम तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और इसे कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जाति और क्षेत्रीय संतुलन साधने की यह कोशिश है। इसीलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है आज का दिन। और यूपी मंत्रिमंडल में अगर देखा जाए तो अभी 54 मंत्री हैं, 6 और मंत्रियों के शामिल होने के बाद ये जो संख्या है पहुंच जाएगी 60। कुल 60 मंत्री योगी मंत्रिमंडल में रहेंगे। यूपी कैबिनेट की वर्तमान स्थिति हम आपको बता रहे हैं, 54 मंत्री अभी मंत्रिमंडल में है और अधिकतम सीमा 60 है। 6 और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा तो एक तरह से अधिकतम सीमा तक ये मंत्रिमंडल विस्तार पहुंच जाएगा। हालांकि इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बहुत लंबे समय से लगातार चर्चाएं थी। तो उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बीच योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात की है। बैठक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अहम चर्चाएं रही हैं। आज यूपी कैबिनेट की नए मंत्रियों की शपथ ग्रहण है। योगी मंत्रिमंडल में करीब 6 नए चेहरों को आप देखेंगे। संभावित विस्तार को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज है और सभी की नजरें हैं अब नए चेहरों पर, जातीय सामाजिक समीकरणों पर। लखनऊ से हमारे संवाददाता संतोष मिश्रा की इस रिपोर्ट को देखिए।
2: प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में एक बार फिर कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं और ये अटकलें इसलिए भी तेज हो गई क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। पश्चिम बंगाल के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात है। माना जा रहा है कि ये कैबिनेट विस्तार को लेकर जो शपथ ग्रहण होना है उसको लेकर के चर्चा होगी, उसके बाद संभावना है कि शपथ ग्रहण होगा। अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है सूत्रों के अनुसार कि 6 लोगों को 6 नए चेहरे होंगे उत्तर प्रदेश कि एक नई कैबिनेट में जिसमें 6 लोगों को शपथ दिलाई जाएगी। और देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला राजभवन में जाते हुए तय होता है, तो राज्यपाल से वक्त तय होने के बाद जो संभावित जो नाम है, करीब 6 नाम बताए जा रहे हैं, उन नामों में मनोज पांडे, पूजा पाल, कृष्णा पासवान के साथ साथ बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का भी नाम शामिल है। तो कुल मिलाकर 6 नामों की चर्चा सबसे ज्यादा तेज है, जिन नामों को लेकर के इस कैबिनेट जो मंत्रिमंडल विस्तार की जो बात आ रही है, मंत्रिमंडल विस्तार में उनको शपथ ग्रहण होगा, उसी को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करने के लिए पहुंच चुके हैं।
1: तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में संभावित कैबिनेट विस्तार को लेकर बीजेपी सरकार पर तंज भी कसा है। सोशल मीडिया पोस्ट में अखिलेश यादव ने लिखा है कि दिल्ली से पर्ची आ गई क्या। उन्होंने कहा कि यूपी में कैबिनेट विस्तार नहीं बल्कि मुख्यमंत्री की शक्ति का कटाव छटाव किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने महिलाओं को मंत्रिमंडल में आरक्षण देने की मांग भी उठाई है। साथ ही उन्होंने अगल बगल की जोड़ी पर भी कटाक्ष करते हुए कहा है कि देखना होगा कि उनका कुछ भला होगा या वो सिर्फ रील बनाते रह जाएंगे। उनके इस बयान के बाद सियासी हलचल और ज्यादा तेज हो गई। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इस तरह का तंज अखिलेश यादव की तरफ से कसा गया हो, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि क्या दिल्ली से चिट्ठी आ गई है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पहली सरकार बनने के बाद अब प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी 11 मई को अपनी सरकार की पहली प्रशासनिक बैठक करेंगे। अधिकारियों के मुताबिक इस बैठक में राज्य के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक तैयारियों पर विस्तार से चर्चाएं होंगी। वहीं नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक भी अगले हफ्ते के दूसरे हिस्से में होने की संभावना जताई जा रही है। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी सरकार के शुरुआती कदमों पर सबकी नजरें हैं और सबसे महत्वपूर्ण है लॉ एंड ऑर्डर। तो सीएम की कुर्सी संभालते ही कालीघाट मंदिर के बाहर पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारी और अहंकारी का पतन ऐसे ही होता है। सुवेंदु अधिकारी ने बहुत साफ साफ कहा कि बंगाल में डर का माहौल बनाया हुआ है और जनता को आजादी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोगों के मन से डर भगाने का काम कर रही है और जनता की आशा और भरोसे को जीतना चाहती है। मुख्यमंत्री बनने के बाद वो सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर और जनता के भरोसे पर काम करेंगे।
3: लोग भी क्या कर रहे
4: हैं। अच्छा दादा, ये बताइए कि आज इसी भवानीपुर में आए हैं, इसी भवानीपुर में लोग ममता बनर्जी की सपोर्टर थी, आज इतना सारा लोग है, कैसा लग रहा है?
3: देखिए भ्रष्टाचारी अहंकारी का पतन ऐसे ही होता है। उनका पार्टी भी खत्म, वो बंगाल पॉलिटिक्स में रिलेवेंट नहीं है, इरेलीवेंट।
4: बहुत सारे
3: भाई काम करना चाहिए, पीछे जो हुआ छोड़ दीजिए, अभी सबको लेकर काम करना चाहिए। जनता ने सेकंड फ्रीडम मिल गया, जनता को फ्रीडम मिला। इतना डर का माहौल मोदी जी का नेतृत्व में बीजेपी ने डर भगाने का काम किया, इसलिए भय आउट भरोसा इन।
4: इतना प्यार जो मिल रहा है, इतना प्यार जो मिल रहा है,
3: अपलू तो विराट आशा भरोसा पूर्ण को।
1: तो पश्चिम बंगाल की कमान संभाल चुके हैं शुभेंदु अधिकारी और आपको बता दें कि सोमवार को उनकी पहली बैठक होने जा रही है जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
6: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo, flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd. To the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
7: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
8: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s Hits or ask your device to play 90s Hits on TuneIn.
9: क्या आपकी कुंडली के चंद्रमा की वजह से आपके रिश्ते माता के साथ बिगड़ सकते हैं? क्या आपकी कुंडली के ग्रह आपकी माता का स्वास्थ्य बिगाड़ सकते हैं? कौन से ग्रह और कौन सी राशियां आपके और आपकी माता के संबंध के बारे में बताते हैं और माता के जीवन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
10: Owning a home is full of surprises. Some wonderful, some not so much. And when something breaks, it can feel like the whole day unravels. That's why HomeServe exists. For as little as $4.99 a month, you'll always have someone to call. A trusted professional ready to help, bringing peace of mind to 4.5 million homeowners nationwide. For plans starting at just $4.99 a month, go to HomeServe.com. That's HomeServe.com. Not available everywhere. Most plans range between $4.99 to $11.99 a month your first year. Terms apply on covered repairs.
11: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
6: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
7: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
11: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

आज सुबह 10 बजे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे विजय। वीसी के और आईयूएमएल ने भी दिया समर्थन, 13 मई या उससे पहले हासिल करना होगा विश्वास मत। यूपी में मिशन 27 के लिए बीजेपी की तैयारियां तेज, आज दोपहर 3 बजे योगी कैबिनेट का विस्तार, 6 मंत्री ले सकते हैं शपथ। अखिलेश का तंज, दिल्ली से पर्ची आ गई है क्या? मुख्यमंत्री पद पर अभी भी सस्पेंस बरकरार, दिल्ली में कांग्रेस की मैराथन बैठक, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद। बंगाल का मुख्यमंत्री बनते ही शुभेंदु का दावा, डर का माहौल खत्म करेगी बीजेपी, सोमवार को मंत्रालय का होगा बंटवारा। उधर ममता ने विपक्षी नेताओं से एकजुट होने का आह्वान किया।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। तमिलनाडु की राजनीति में आज का दिन बहुत ज्यादा अहम रहने वाला है क्योंकि विजय को राज्यपाल की ओर से सरकार बनाने की मंजूरी मिल चुकी है और आज सुबह 10 बजे वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। टीवी के पहली अपनी सरकार बनाने जा रही है और पार्टी को बहुमत जुटाने में VCK और साथ ही IUML का समर्थन मिला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी विजय के शपथ ग्रहण में शामिल होने जा रहे हैं। विजय के जो पिता और मशहूर निर्देशक हैं SA चंद्रशेखर, उन्होंने बेटे को संदेश देते हुए कहा है कि तमिल लोगों के लिए काम करो। चेन्नई में शपथ ग्रहण को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राजनीति से लेकर फिल्मी जगत की बड़ी हस्तियों के पहुंचने की भी संभावना है। तमाम तैयारियां पहले कर ली गई थी। जिस तरह का लगातार सस्पेंस बना हुआ था, चार बार जिस तरह से मुलाकात राज्यपाल से हुई विजय की, उसके बाद बेसब्री के साथ आज के दिन का इंतजार किया जा रहा था जब विजय शपथ लेंगे। 10 बजे इसका समय रखा गया और आपको बता दें कि आज के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेताओं के नामों के साथ साथ दिग्गज जो हस्तियां हैं, फिल्मी सितारे हैं, वो इस शपथ ग्रहण में नजर आ सकते हैं। राहुल गांधी इस शपथ ग्रहण में शामिल होने जा रहे हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि लगभग 9 बजे के करीब वो चेन्नई पहुंच जाएंगे। तमिल लोगों के लिए काम करने के लिए पिता की तरफ से कहा गया है, उन्होंने कहा कि वो बहुत खुश हैं, अपने बेटे के लिए सब कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि अब तमिल लोगों के लिए काम उनका बेटा करे। तो चेन्नई में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मंच को अंतिम रूप दे दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्थाएं भी कड़ी कर दी गई हैं। जानकारी के मुताबिक आज सिर्फ विजय ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं क्योंकि कांग्रेस की ओर से सरकार में शामिल होने या किसी मंत्री के शपथ लेने की फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। विजय के शपथ ग्रहण को लेकर समर्थकों में भारी उत्साह है और चेन्नई में जगह जगह पोस्टर्स और बैनर्स लगा दिए गए हैं। समारोह में कई राजनीतिक और फिल्मी हस्तियों के पहुंचने की संभावना है। तो तमिलनाडु में सत्ता हासिल करना आसान नहीं रहा है विजय के लिए क्योंकि सरकार गठन के लिए हर कदम पर राजनीतिक गड़े समर्थन पत्र और कड़े संवैधानिक परीक्षणों से विजय को गुजरना पड़ा। इसी जटिल प्रक्रिया के बीच टीवी के प्रमुख विजय ने 6 से 9 मई तक चार बार राज्यपाल से मुलाकात की है। लगातार प्रयासों और अंतिम समय में मिले समर्थन के बाद ही उन्हें सरकार बनाने की मंजूरी मिल पाई, जिसके बाद अब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तो आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी चेन्नई पहुंचने वाले हैं आज, जहां वो मुख्यमंत्री पद के लिए नामित विजय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी आज सुबह करीब 8:40 पर पहुंच जाएंगे चेन्नई। विजय की शपथ ग्रहण को लेकर तमिलनाडु में राजनीतिक और फिल्मी गलियारों में भी गजब का उत्साह देखा जा रहा है और इस समारोह में कई बड़े राजनीतिक नेताओं और फिल्मी जगत के हस्तियों के शामिल होने की संभावना है। राहुल गांधी की मौजूदगी को भी राजनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो आपको बता दें कि आज राहुल गांधी चेन्नई पहुंच जाएंगे। लगभग 9 बजे उन्हें चेन्नई पहुंचना है, 10 बजे ये शपथ ग्रहण होनी है और इस समय को लेकर भी लगातार कहा यह गया कि अपने ज्योतिषी के साथ संपर्क में बने हुए थे विजय, और जब वो गवर्नर हाउस पहुंचे थे गवर्नर से मिलने के लिए, 10 बजे का समय तय किया गया है और 10 बजे को लेकर लगातार वो गवर्नर से बात कर रहे थे, इसलिए लगभग 2 घंटे वो गवर्नर हाउस में रहे हैं। आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेताओं के साथ साथ जो फिल्मी हस्तियां हैं वो भी इसमें शामिल होने जा रही हैं। तो राहुल गांधी की बात कर लेते हैं क्योंकि आज वो पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर बाद चेन्नई। राहुल गांधी की विजय की शपथ में शामिल होने के बाद दोनों ही नेताओं की दोस्तियों को लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं हैं। तमिलनाडु की राजनीति में नई तस्वीरें भी आ गई हैं। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर कर दिया है जिसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय और कांग्रेस नेता राहुल गांधी साथ साथ नजर आ रहे हैं। इस पोस्ट के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। सोशल मीडिया पर भी वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है और समर्थक इसे विपक्षी एकजुटता और दक्षिण भारत की राजनीति में नए समीकरणों के संकेत के तौर पर देख रहे हैं।

0: तो चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले विजय को लेकर उनके पिता और निर्देशक एस ए चंद्रशेखर ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं, जो कुछ भी कर रहा हूं सिर्फ अपने बेटे के लिए कर रहा हूं। आखिरकार तमिल लोगों ने विजय के जरिए सफलता हासिल कर ली है। साथ ही साथ उन्होंने अपने बेटे को संदेश देते हुए कहा कि तमिल लोगों के लिए काम करो।
1: सो सो हैप्पी एंड व्हाटएवर आई एम डूइंग ओनली फॉर माय सन सी तमिल पीपल हैव सक्सेसफुल।
0: तमिलनाडु में नई सरकार के गठन से पहले राजनीतिक उत्साह चरम पर। टीवी के प्रमुख विजय के लोक भवन से निकलते ही समर्थकों में जबरदस्त उत्साह कल देखने को मिला था। चेन्नई की सड़कों पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की थी, बड़ी संख्या में लोग उनका इंतजार कर रहे थे बेसब्री के साथ। पटाखे फोड़े गए, विजय के मुख्यमंत्री बनने को ऐतिहासिक क्षण बताया गया। कई समर्थकों ने जनता के बदलाव के लिए वोट दिया है और अब उन्हें विजय से तमिलनाडु के विकास की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं और बेसब्री के साथ आज शपथ का इंतजार किया जा रहा है।
2: Excited and first time in a democratic country, people have a right to vote and choose a perfect person in this Tamil Nadu. I am very happy.
3: Clearly waiting for Talabadi's entry, and 4-5 days we lost our sleep and we lost everything, and finally we got the best things happened in Tamil Nadu. We are eagerly waiting for the good things will happen for Tamil Nadu people.
0: तो तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा दावा करते हुए टीवी के विधायक षणमुगा प्रिया ने कहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं समर्थकों में उत्साह का माहौल है और राज्य की 70% महिलाओं का समर्थन टीवी के साथ रहा है।
4: We are very much happy and we are very much excited, first of all. And we all know and we believe that our leader, Vijayanna, he is very concerned about the women's in Tamil Nadu state. And he is very much concentrated on the dignity of women and protected women's safety, everything. And we are very much excited. And as we believe that tomorrow is the best day ever for the Tamil Nadu women. And 70% of Tamil Nadu women have supported Vijayanna, and we believe that this victory is not only for Vijayanna, it is our own victory, and we take it very personally, and we are just waiting and so much excited for tomorrow.
0: तो तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भी टीवी के बहुमत साबित नहीं कर पाई। और आपको बता दें कि विजय ने जिस तरह से तमिलनाडु में जीत हासिल की है वो किसी करिश्मे से कम नहीं है। विजय ने कैसे अपने लिए जीत की राह को तय किया, सिर्फ 2 साल पहले बनाई गई पार्टी और उसके बाद ऐसा कमाल किया कि तमिलनाडु की राजनीति को पलट कर ही रख दिया। ऐसा हुआ कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए।

0: वो विजय जो अब तक रियल लाइफ के हीरो थे, अब रियल लाइफ के हीरो बन गए हैं।
1: There are so many jackals and other animals in the forest, but there will be only one lion. And even if it is single, it will be the king of jungle. It is not only a description, but also a clear declaration.
0: तमिलनाडु में पिछले 59 साल एक महीने और 28 दिनों तक सिर्फ दो ही पार्टियों का राज था। तमिलनाडु में पिछले 21,608 दिन से सिर्फ दो ही पार्टियां शासन करती थी, डीएमके और एडीएमके। बीच बीच में तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन भी रहा, लेकिन इन दोनों पार्टियों के अलावा किसी तीसरे पार्टी की एंट्री नहीं हो पाई। लेकिन अब इन दोनों पार्टियों के राज को 59 साल के बाद थलपति विजय की टीवीके ने ध्वस्त किया है।

विजय ने वो करके दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। किसने सोचा था कि सिर्फ 2 साल में ऐसा कमाल दिखाएंगे कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन जाएंगे।

0: विजय मौजूदा वक्त में तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। विजय के पास पैसा, स्टारडम, फैन फॉलोइंग सब कुछ था। वो चाहते तो आराम से सुपरस्टार बने रह सकते थे, लेकिन उन्होंने राजनीति का रास्ता चुना। 2016 में जयललिता की मौत के बाद से तमिलनाडु की राजनीति में एक शून्य था, एक खालीपन था। डीएमके के सामने तो जैसे कि खुला हुआ रास्ता था, दूर दूर तक कोई भी टक्कर में नहीं था। इसीलिए 2021 में स्टालिन मुख्यमंत्री बने तो सबको लगा कि अब स्टालिन को कौन टक्कर देगा। इसीलिए ज्यादातर एग्जिट पोल में उनकी जीत बताई जा रही थी, लेकिन वो विजय ही थे जिन्होंने जयललिता की मौत से खाली हुई तमिलनाडु की राजनीति के शून्य को भरा। उनकी रैलियों की भीड़ बता रही थी कि तमिलनाडु में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन शायद किसी को ये अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ भीड़ नहीं है, उनके वोटर्स भी हैं। और विजय के इन फैंस ने ये साबित कर दिया कि वो रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए नहीं जमा हुए थे, वो तमिलनाडु को बदलने के लिए आए थे। तमिलनाडु में थलपति विजय ने तो इतिहास रचा है, लेकिन उनको ये कामयाबी इसलिए मिली क्योंकि तमिलनाडु के लोगों को उनके अंदर एक ऐसा नायक नजर आया जो उनके राज्य को आगे ले जा सकता है। विजय की इस जीत के पीछे उनके वो फैंस थे जो उन्हें किसी भी हद तक फॉलो करते हैं। विजय ने अपने फैन क्लब को वेलफेयर नेटवर्क में बदला, लोगों की मदद, युवाओं के कनेक्शन और जमीनी पकड़ मजबूत की और टीवीके के अपने वोटर तैयार किए। तमिलनाडु में विजय के 85,000 से ज्यादा फैन क्लब का नेटवर्क है जिन्होंने उनकी जीत में अहम भूमिका निभाई। उनका ये नेटवर्क पिछले 10 वर्षों से उनके शैडो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में ही काम कर रहे थे। विजय के ये फैन क्लब पूरे तमिलनाडु में सामाजिक काम कर रहे थे, लोगों को विजय से जोड़ रहे थे। विजय आर्मी पिछले कई वर्षों से तमिलनाडु की गलियों में दिख रही थी। विजय की जीत की सबसे बड़ी वजह है उनकी लोकप्रियता। विजय भले ही 51 साल के, लेकिन उन्हें युवाओं का या जेंसी का नेता कहा जाता है। तमिलनाडु में 40 से कम उम्र के युवाओं की संख्या 2 करोड़ है, जो तमिलनाडु के करीब 41.5% वोटर होते हैं। विजय का यही युवा कैडर सोशल मीडिया पर भी एक्टिव था, जिन्होंने तमिलनाडु में विजय के पक्ष में हवा बनाई। विजय ने किसी बड़े गठबंधन का सहारा नहीं लिया, न डीएमके, न एआईएडीएमके, न बीजेपी, सीधे जनता के बीच गए। आज तक पेरो
1: पूरी समुद्र तट पर मशहूर सैंड आर्टिस्ट ने रेत पर शानदार कलाकृति बनाई है अभिनेता विजय की, और खास अंदाज में उन्हें बधाई दी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस विजय अन्ना लिखा है। सैंड आर्टिस्ट को देखने के लिए, इस कला को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां उमड़ रहे हैं, और जबरदस्त तरीके से ये जो पिक्चर है सोशल मीडिया पर भी वायरल है। बेहद ही खास अंदाज में बारीकी के साथ अन्ना का चेहरा उकेरा गया है, हर किसी का ध्यान इसने खींचा है। सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वीडियोज और ये पिक्चर्स वायरल हो रही हैं। फैंस इसे विजय अन्ना के प्रति प्यार और सम्मान का प्रतीक बता रहे हैं। पुरी बीच की एक कलाकृति एक बार फिर से उड़ीसा की कला और सांस्कृतिक पहचान को दुनिया के सामने ला रही है। आगे बढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज का दिन वहां भी बड़ा खास है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक इस विस्तार में सामाजिक और जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। संभावित सूची में एक ब्राह्मण नेता, एक जाट नेता, एक पासवान और एक वाल्मीकि, साथ ही साथ एक लोधी और एक विश्वकर्मा बिरादरी के नेताओं को जगह मिलने की चर्चाएं हैं। आपको यह भी बता दें कि संभावित नामों में मनोज पांडे हैं, भूपेंद्र चौधरी, कृष्णा पासवान, हंसराज दिलेर, कैलाश लोधी, और आज शाम मंत्रिमंडल विस्तार होना है ये तय किया गया है। राज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं योगी आदित्यनाथ, 3 बजे शपथ ग्रहण होना है, 6 और लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि आज का दिन बहुत ज्यादा खास है, कुल 60 कैबिनेट के मंत्री हो सकते हैं। पहले से ही 54 मंत्री हैं और 6 और नए मंत्रियों के शामिल होने के बाद अपनी पूर्णतम संख्या तक ये मंत्रिमंडल पहुंच जाएगा। भूपेंद्र चौधरी जो कि संभावित जो मिनिस्टर्स हैं आज जो शपथ लेने जा रहे हैं उनका नाम हम आपको बता रहे हैं। मनोज पांडे जो कि ब्राह्मण नेता हैं, रायबरेली से आते हैं, उन्हें कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश है। कृष्णा पासवान पासी समुदाय से आते हैं, फतेहपुर से विधायक हैं। इसके अलावा जो चौथा नाम जिसकी चर्चाएं बहुत ज्यादा है, विश्वकर्मा समुदाय से आते हैं, वाराणसी से हंसराज विश्वकर्मा, उन्हें भी कैबिनेट में

0: शामिल किया जा सकता है और सुरेंद्र दिले जो कि वाल्मीकि समुदाय से आते हैं, हाथरस से विधायक हैं, उन्हें शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा कन्नौज से लोधी समुदाय से बिलोंग करने वाले नेता कैलाश लोधी, उन्हें कैबिनेट में जगह दी जा सकती है मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान। इस तरह की खबरें हैं। तो कुल 54 मंत्री अभी मंत्रिमंडल में है, 60 अधिकतम मंत्री हो सकते हैं मंत्रिमंडल में, 6 और शामिल हो जाएंगे तो अधिकतम सीमा तक ये मंत्रिमंडल विस्तार पहुंच जाएगा। 2027 के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण इस मंत्रिमंडल विस्तार को माना जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर ली है। बैठक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अहम मानी जा रही थी और आज यूपी कैबिनेट की नए मंत्रियों की शपथ ग्रहण होनी है। योगी मंत्रिमंडल में नए 6 चेहरों को शामिल किया जा सकता है। संभावित विस्तार को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज है और सभी की नजरें हैं अब नए चेहरों पर और जातीय सामाजिक समीकरणों पर। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता संतोष शर्मा की ये रिपोर्ट।
1: प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में एक बार फिर कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं और ये अटकलें इसलिए भी तेज हो गई क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। पश्चिम बंगाल के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात है। माना जा रहा है कि ये कैबिनेट विस्तार को लेकर जो शपथ ग्रहण होना है उसको लेकर के चर्चा होगी, उसके बाद संभावना है कि शपथ ग्रहण होगा। अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है सूत्रों के अनुसार कि 6 लोगों को 6 नए चेहरे होंगे उत्तर प्रदेश के एक नई कैबिनेट में जिसमें 6 लोगों को शपथ दिलाई जाएगी। और देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला राजभवन में जाते हुए तय होता है तो राज्यपाल से वक्त तय होने के बाद जो संभावित जो नाम है करीब 6 नाम बताए जा रहे हैं उन नामों में मनोज पांडे, पूजा पाल, कृष्णा पासवान के साथ साथ बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी का भी नाम शामिल है। तो कुल मिलाकर 6 नामों की चर्चा सबसे ज्यादा तेज है जिन नामों को लेकर के इस कैबिनेट जो मंत्रिमंडल विस्तार की जो बात आ रही है मंत्रिमंडल विस्तार में उनको शपथ ग्रहण होगा उसी को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करने के लिए पहुंच चुके हैं।
0: तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में संभावित कैबिनेट विस्तार को लेकर बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव ने लिखा है कि दिल्ली से पर्ची आ गई है क्या। उन्होंने कहा कि यूपी में कैबिनेट विस्तार नहीं बल्कि मुख्यमंत्री की शक्ति का कटाव छटाव किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने महिलाओं को मंत्रिमंडल में आरक्षण देने की भी मांग उठाई है। साथ ही साथ उन्होंने अगल बगल की जोड़ी पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि देखना होगा कि उनका कुछ भला होगा या वो सिर्फ रील बनाते रह जाएंगे। उनके इस बयान के बाद अब सियासी हलचलें तेज हो चुकी हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पहली सरकार बनने के बाद अब प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी 11 मई को अपनी सरकार की पहली प्रशासनिक बैठक करने वाले हैं। अधिकारियों के मुताबिक इस बैठक में राज्य के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक होंगे, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल होंगे और बैठक में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक तैयारियों पर विस्तार से चर्चाएं होंगी। वहीं नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक भी अगले हफ्ते के दूसरे हिस्से में होने की संभावना जताई जा रही है। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी सरकार के शुरुआती कदमों पर सबकी नजर रहने वाली है और सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होने जा रहा है वहां का लॉ एंड ऑर्डर। तो सीएम की कुर्सी संभालते ही कालीघाट मंदिर के बाहर पश्चिम बंगाल की सीएम शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारी और अहंकार का पतन ऐसे ही होता है। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप यह लगाया कि बंगाल में डर का माहौल बना हुआ है, जनता को आजादी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोगों के मन से डर को भगाने का काम कर रही है और जनता की आशा और भरोसे को जीतना चाहती है।
2: अच्छा दादा ये बताइए कि आज इसी भवानीपुर में आए हैं, इसी भवानीपुर में लोग ममता बनर्जी की सपोर्टर थी, आज इतना सारा लोग है, कैसा लग रहा है?
3: देखिए भ्रष्टाचारी अहंकारी का पतन ऐसे ही होता है, उनका पार्टी भी खत्म, वो बंगाल पॉलिटिक्स में रिलेवेंट नहीं है, इरेलीवेंट।
2: बहुत सारे
3: भाई काम करना चाहिए, पीछे जो हुआ छोड़ दीजिए, अभी सबको लेकर काम करना चाहिए। जनता ने सेकेंड फ्रीडम मिल गया, जनता को फ्रीडम मिला, इतना डर का महल मोदी जी का नेतृत्व में बीजेपी ने डर भगाने का काम किया, इसलिए भय आउट भरोसा इन।
0: और इसी के साथ हमें रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: Shop the Sherwin-Williams sale and get 30% off Duration, Woodscapes, and SuperDeck products May 1st through the 11th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.

आज सुबह 10 बजे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे विजय। वीसी के और आईयूएमएल ने भी दिया समर्थन, 13 मई या उससे पहले हासिल करना होगा विश्वास मत। यूपी में मिशन 27 के लिए बीजेपी की तैयारियां तेज, आज दोपहर 3 बजे योगी कैबिनेट का विस्तार, 6 मंत्री ले सकते हैं शपथ। अखिलेश का तंज, दिल्ली से पर्ची आ गई है क्या? मुख्यमंत्री पद पर अभी भी सस्पेंस बरकरार, दिल्ली में कांग्रेस की मैराथन।

बैठक, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद। बंगाल का मुख्यमंत्री बनते ही शुभेंदु का दावा, डर का माहौल खत्म करेगी बीजेपी, सोमवार को मंत्रालय का होगा बंटवारा। उधर ममता ने विपक्षी नेताओं से एकजुट होने का आह्वान किया।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। वैसे तो दुनिया में आज मदर्स डे मनाया जा रहा है, लेकिन भारतीय परंपरा में हर दिन माता और पिता का दिन होता है। लेकिन आज हम बात करेंगे माँ की महिमा के बारे में और माता के साथ ज्योतिष में किन ग्रहों का संबंध है, इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

2026 दिन रविवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, दोपहर 3:06 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 12:12 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज मातृ दिवस है, मदर्स डे है, तो आज हम विशेष रूप से माँ की बात करेंगे। वैसे तो माँ की करुणा और माँ की परिभाषा नहीं दी जा सकती, लेकिन फिर भी सामान्यतः माँ है कौन? देखिए, मानव जीवन का सृजन करने के लिए ईश्वर ने नारी का निर्माण किया है। जब नारी अपनी सृजनात्मक शक्ति का प्रयोग करके जीवन का सृजन करती है, किसी शिशु को जन्म देती है, तो उसे माँ कहा जाता है। इस सृष्टि में सबसे ज्यादा पवित्र और सबसे ज्यादा करुणामयी अगर कोई सत्ता है तो वो माँ है। माँ से आदमी की निकटता सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए आप देखिए कि भक्त भी ईश्वर को माँ के रूप में पुकारते हैं। जो हम देवी की पूजा करते हैं, वो दरअसल ईश्वर को माँ के रूप में पुकारने का एक तरीका है। उसका कारण ये है कि माँ से जितनी निकटता होती है, माँ से जितना जुड़ाव होता है, उतना जुड़ाव व्यक्ति को किसी और से नहीं हो सकता। और जब भक्त ईश्वर को माँ के रूप में पुकारता है, तो ईश्वर की निकटता का जल्द अनुभव होता है और माँ रूपी ईश्वर का लगातार दुलार जीवन में मिलता रहता है। ईश्वर जब करुणा के रूप में आते हैं, ईश्वर जब करुणामयी रूप में सृष्टि में प्रकट होते हैं, तो ज्यादातर स्त्री शक्ति के रूप में या ज्यादातर देवी के रूप में प्रकट होते हैं, क्योंकि उसमें मातृभाव होता है और उसमें भक्त उनसे बहुत जल्दी जुड़ जाता है। माता के ऊपर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल।

में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज

वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं हल होंगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग भी बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, संतान की चिंता हो सकती है, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब ये जानते हैं कि ज्योतिष में माता का संबंध किन ग्रहों से होता है, किन राशियों से होता है। देखिए, ज्योतिष में चंद्रमा को मां का कारक मानते हैं, यानी आपके जीवन में माता की स्थिति चंद्रमा से डिसाइड होती है। कुछ अंशों में शुक्र का संबंध भी वात्सल्य से या ममता से होता है। कर्क राशि का और चतुर्थ भाव का संबंध भी माता के साथ होता है। ये राशि और ये भाव माता के साथ जुड़ा हुआ है। कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह को और चंद्रमा को मिलाकर माता की स्थिति देख सकते हैं, माता की स्थिति जान सकते हैं। वैसे मोटे तौर पर अगर कुंडली के चंद्रमा को देखा जाए, लग्न में, चंद्र कुंडली में और नवमांश में अगर चंद्रमा को देखा जाए तो काफी हद तक माता की स्थिति जान सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव माता के व्यक्तित्व, उनके स्वास्थ्य और उनकी आयु के बारे में बताता है। यानी किसी भी बच्चे का चंद्रमा, बेटा हो या बेटी हो, वो माता के स्वास्थ्य, उनका जीवन और उनकी स्थिति के बारे में बता सकता है। माता के ऊपर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल।

से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।

उन्नति होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला।

पारिवारिक समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, लाभकारी यात्रा के योग हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न मंजुला जी ने हमें लिखा है और मंजुला जी हमें जयपुर से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 28 मार्च 1975। जन्म का समय दोपहर में 3:30। जन्म का स्थान है अमृतसर। मेल लिखती हैं जयपुर से। मंजुला जी कह रही हैं कि काफी समय से मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है और बहुत सारी स्वास्थ्य की समस्याएं मुझे परेशान करती हैं, तो मैं कौन सा उपाय करूं जिससे मैं स्वस्थ हो सकूं? मंजुला जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि सेहत को लेके बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका स्वास्थ्य जुलाई महीने के बाद से लगातार बेहतर होता चला जाएगा। कोई गंभीर बात नहीं है, केवल थोड़ा सा अपने डाइजेशन का ध्यान दें और तनाव थोड़ा कम पालिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। एक पन्ना बनवा के पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में,

बेहतर होगा। देखिए बहुत बार जीवन में ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी अपनी माँ के साथ रिश्ते खराब हो जाते हैं। आप नहीं चाहते फिर भी हो जाते हैं। कुछ ग्रहों का खेल है, कुछ दशाओं का चक्कर है। तो अगर आपके रिश्ते माँ के साथ अच्छे नहीं हैं, तो माता के साथ रिश्तों को बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए? शुक्ल पक्ष में जो 15 दिन होते हैं, जिसको आप उजाली रात कहते हैं, इसमें रात के समय चंद्रमा को जल अर्पित करिए। रोज रात में चंद्रदेव के मंत्रों का जप करिए। दो मंत्र हैं, ओम सोम सोमाय नमः। दूसरा मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। तो किसी भी एक मंत्र का जप रोज रात में करिए और माता के साथ रिश्ते बेहतर हों इसकी प्रार्थना करिए। सोमवार को शिव जी के मंदिर जाइए, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और सफेद फूल अर्पित करके प्रार्थना करिए कि आपके संबंध आपके रिश्ते माता के साथ बेहतर हों। कुंडली का जो चतुर्थ भाव है, फोर्थ हाउस है, उसका स्वामी है, उसको मजबूत करने का प्रयास करिए। मंत्र जप करके, रत्न पहन के, दान करके, जैसे भी ठीक लगे, कुंडली के चतुर्थ भाव को मजबूत करने का प्रयत्न करिए। चतुर्थ भाव मजबूत होगा तो आपके संबंध माता के साथ बेहतर होंगे। और अगर आपके रिश्ते माता के साथ बहुत ज्यादा खराब हैं, माता के साथ तालमेल नहीं है, माता का जीवन में प्रेम नहीं मिल रहा है, माता की तरफ से वात्सल्य नहीं मिल रहा है, तो हर सोमवार को सफेद वस्तु का दान करिए।

तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। माता के ऊपर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशि।

स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के खर्चों पर ध्यान रखें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, परिवार में विवादों से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए

A. Cream. धनु राशि, काम में सफलता मिलेगी, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। देखिए, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है, अस्त है, पाप ग्रहों से पीड़ित है, तो मां का

खराब होने की वजह से आपकी माता को कष्ट हो रहा है, माता को कष्ट उठाना पड़ रहा है, तो क्या उपाय करेंगे? सोमवार के सोमवार, हर सोमवार को सफेद रंग के वस्त्र धारण करके शिव जी की पूजा करिएगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, अपने हाथों से सफेद चंदन लगाइए और जहां तक हो सके, जब सोमवार को शिव जी की पूजा करेंगे तो अधिक से अधिक ओम नमः शिवाय का जप करेंगे। सोमवार को निर्धनों में, गरीबों में सफेद मिठाई बांटिए या चावल की खीर बांटिए और मन में प्रार्थना करिए कि मेरा चंद्रमा बेहतर हो, मेरी माँ का कष्ट कम हो। और जिन लोगों का चंद्रमा खराब है, कृपा करके मोती पहनने के पहले 1000 बार सोचिएगा, क्योंकि अगर आपका चंद्रमा खराब है और आपने मोती पहन ली तो आपको तो कष्ट होगा ही, आपके मोती पहनने से आपकी माता को भी कष्ट होगा, उनके स्वास्थ्य और उनके जीवन में दिक्कत आनी शुरू हो जाएंगी। चंद्रमा के खराब होने की वजह से अगर माता के स्वास्थ्य में, उनकी मानसिक स्थिति में और उनकी जीवन में मुश्किलें बढ़ रही हों, तो भगवान शिव की अधिक से अधिक पूजा करिए और संभव हो तो शिव जी की पूजा माता गौरी के साथ करिए। अगर आप ऐसा करें, रोज भगवान शिव और माता गौरी की पूजा सुबह के समय करें और प्रार्थना करें कि आपकी कुंडली का चंद्रमा बेहतर हो और माता के जीवन में सुधार हो, तो निश्चित रूप से सुधार होगा। माता का कष्ट बहुत ज्यादा हो, माता किसी गंभीर बीमारी से गुजर रही हो, तो ऐसी स्थिति में आपको जब मौका मिले आप रुद्राभिषेक करवाइए। 6-6 महीने में अपनी माता के नाम से संकल्प लेकर अगर आप रुद्राभिषेक करवाएं तो इससे आपको भी लाभ होगा, आपकी माता के जीवन में सुधार होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि,

रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम का बोझ बढ़ा रहेगा, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

हल होगी, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, वाहन सावधानी से चलाइएगा, सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शिव जी की पूजा में केतकी के फूल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, एक पौराणिक कथा आती है कि भगवान शिव ने भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा को प्रकाश के लिंग को नापने के लिए कहा, और जब वो उसका पता नहीं लगा पाए, उसका ओर छोर नहीं जान पाए, तो वापस लौट आए। विष्णु जी ने कहा कि मुझे पता नहीं चला, और ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि मुझे पता चल गया, और अपनी गवाही के लिए केतकी के फूल को ले आए। भगवान शिव ने शाप दिया केतकी के फूल को कि चूंकि तुमने असत्य में साथ दिया है, इसलिए मेरी पूजा में तुम्हारा प्रयोग नहीं होगा। तब से केतकी के फूल का प्रयोग भगवान शिव की पूजा में नहीं होता। और केतकी से जुड़ी हुई एक और खुशबू है केवड़ा। केवड़े का प्रयोग भी भगवान शिव की पूजा में नहीं किया जाता। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं।

काम पूरे होंगे, नंबर दो धन लाभ के योग बन रहे हैं, नंबर तीन व्यर्थ की चिंता हो सकती है, नंबर चार काम की अधिकता रहेगी, नंबर पांच चोट चपेट से बचाव करें, नंबर छह कोई यात्रा हो सकती है, नंबर सात धन लाभ के योग हैं, नंबर आठ मानसिक चिंता हो सकती है, और नंबर नौ करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करिएगा। ऐसा करने से आपका नाम और आपका यश बढ़ेगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, इंटरव्यू है, कोई बड़ी मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज कोई परीक्षा है तो पान का पत्ता खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए जाना है तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो लाल रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा।

मकर राशि के लिए चिंताएं दूर होंगी, करियर और दिन अच्छा रहेगा। आज का दिन मंगलमय होगा सिंह राशि के लिए, स्वास्थ्य में सुधार होगा, काम की रुकावट दूर होगी। आज सावधान रहना होगा तुला राशि के लोगों को, सेहत बिगड़ सकती है, बेवजह की चिंताएं परेशान कर सकती हैं। आइए अब जानते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज अष्टमी तिथि है, जया कहते हैं इसको। आज विजय के लिए अगर भगवान से प्रार्थना करेंगे तो कार्यों में विजय मिलेगी। अष्टमी तिथि के स्वामी शिव जी हैं, इसलिए आज शिव मंदिर में एक घी का दीपक जलाइएगा, शुभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

आज सुबह 10 बजे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे विजय। राज्यपाल ने सरकार गठन को दी मंजूरी। टीवीके ने 120 विधायकों के समर्थन का दावा पेश कर दिया है। कांग्रेस सीपीआई सीपीआईएम वीसी के आईयूएमएल के सहारे बहुमत हासिल। 13 मई से पहले हासिल करना होगा विश्वास मत। 59 साल के बाद तमिलनाडु को मिलेगा पहला गैर द्रविड़ मुख्यमंत्री। चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में होगा शपथ ग्रहण। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस का कोई विधायक शपथ नहीं लेगा। चेन्नई में जश्न का माहौल। टीवी के समर्थकों ने पटाखे फोड़ के मनाई खुशी। विधायकों को रिजॉर्ट में ठहराने पर बड़ी सियासी हलचल। कलापति के शपथ ग्रहण पर बोले पिता, ऐसे चंद्रशेखर का बहुत ज्यादा खुश हूं। ईमानदारी से काम करने की नसीहत भी दी। थोल तिरुवानमलम का बड़ा बयान, विजय को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोकेंगे, बिना शर्त समर्थन दिया है। तमिलनाडु में टीवीके को समर्थन देने के बाद वीसी के चीफ थोल ने स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी अब भी डीएमके गठबंधन का हिस्सा है। वीसीके के बाद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए टीवीके को बिना शर्त समर्थन दिया। एएमके का आरोप है, कहा टीवीके ने विधायकों की खरीद फरोख की कोशिश की। तमिलनाडु में फिर से दिखी रिसॉर्ट पॉलिटिक्स। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी विजय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा विपक्ष के कुछ अन्य नेताओं के पहुंचने की भी उम्मीद। स्टालिन का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस से विश्वासघात किया गया, डीएमके ने नाता तोड़ा। स्टालिन बोले, कांग्रेस विधायक धन्यवाद देने अन्ना आरिवालयम तक नहीं आए। डीएमके एक रचनात्मक विपक्षी पार्टी के तौर पर काम करेगी। केरलम के नए मुख्यमंत्री पर अभी सस्पेंस बरकरार है। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक में मैराथन मंथन किया गया। राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल मौजूद थे। 23 मई से पहले सीएम चयन और आगे की प्रक्रिया पर फैसला होगा। दीपा दास मुंशी बोली, हंगामा कांग्रेस की संस्कृति नहीं है। यूपी में बड़ा कैबिनेट विस्तार, मुख्यमंत्री योगी ने राज्यपाल से मुलाकात करके आज दोपहर 3 बजे शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी की हैं। यूपी कैबिनेट में 6 मंत्रियों के शामिल होने की संभावना, कई मौजूदा मंत्रियों के विभागों में फेरबदल की भी लगभग तय। भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, कृष्णा पासवान समेत कई नेताओं के नामों की चर्चा, सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश में बीजेपी। 2027 विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर बड़ा राजनीतिक दांव, ओबीसी और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर फोकस। यूपी में मंत्रिपरिषद विस्तार से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज, बीच 54 मंत्रियों वाली सरकार में अधिकतम 60 तक जाने की तैयारी। कर्नाटक, तेलंगाना और गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी का मेगा दौरा, 9400 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद के कई बड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिससे इंडस्ट्री, सड़क और अस्पताल से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद में कई बड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिसमें इंडस्ट्री, सड़क और अस्पताल से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। गुजरात दौरे में सोमनाथ मंदिर के 75 वर्ष पूरे होने पर अब अमृत महोत्सव में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। कर्नाटक के चित्रदुर्ग पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के सम्मान में आयोजित अभिमानोत्सव में हिस्सा लिया। पंजाब सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा ने ईडी ने उसे गिरफ्तार किया। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय मंत्री संजीव अरोड़ा को अपने साथ ले गई ईडी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कार्रवाई को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। छापेमारी से पंजाब में सियासी भूचाल। संजीव अरोड़ा के खिलाफ ईडी की कार्रवाई से भड़की आम आदमी पार्टी, आज पूरे पंजाब में बीजेपी के दफ्तर में घिराव का ऐलान। आपके राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने कसा तंज, कहा पंजाब की सरकार को बदनाम करने के लिए और कितने हथकंडे अपनाएगी केंद्र सरकार। पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मंत्री संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी पर बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरा, कहा बीजेपी कर रही है ईडी का इस्तेमाल और आम आदमी पार्टी का कर रही है विजिलेंस कर रही है इस्तेमाल। दिल्ली एनसीआर में फिर से बदलेगा मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। दक्षिण भारत में मौसम सुहाना हुआ, चेन्नई में झमाझम बारिश। बिहार में कैबिनेट विस्तार के बाद सम्राट सरकार ने मंत्रियों ने जारी किया है संपत्ति का ब्यौरा। 35 मंत्रियों में से 32 मंत्री करोड़पति हैं। बिहार सरकार के 10 मंत्रियों की संपत्ति मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी ज्यादा है। सम्राट चौधरी कैबिनेट की सबसे अमीर मंत्री हैं। रमा निषाद,
पुणे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पुण्याभूषण अवार्ड सेरेमनी में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए। एमपी के इंदौर में मालवा उत्सव 2026 की धूम। सीएम मोहन यादव ने उत्सव में शिरकत की। लोक संस्कृति मंच से किया उत्सव का आयोजन। हरिद्वार कुंभ मेले के लिए सीएम पुष्कर सिंघामी ने जारी किया 256 करोड़ रुपए। आधारभूत ढांचे के साथ तमाम परियोजनाओं पर काम जारी। यूपी पुलिस ने किया दूसरा ऑल इंडिया पुलिस बैडमिंटन और टेबल टेनिस क्लस्टर 2025-26 का आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ रहे उपस्थित। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चार धाम यात्रा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन। दिल्ली में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट। सूत्रों के अनुसार आतंकवादी आईडी का इस्तेमाल करके शहर के अहम ठिकानों को बना सकते हैं निशाना। दिल्ली में डीडीयू मार्ग पर बीजेपी दफ्तर के बाहर बढ़ाएगी सुरक्षा। कई जगहों पर पुलिस की गश्त। इंडियन कोस्ट गार्ड के बेड़े में शामिल हुआ स्वदेशी युद्धपोत। अचल अत्याधुनिक तोपों से लेस मॉडर्न वॉरशिप की 27 नॉटिकल मील प्रति घंटा रफ्तार। प्रयागराज के यश श्रीवास्तव का कमाल। भारतीय सेना के लिए तैयार कर रहे स्वदेशी लड़ाकू विमान। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एनएस राजा सुब्रमण्यम होंगे देश के नए सीडीएस। मौजूदा सीडीएस अनिल चौहान की जगह लेंगे। समाजी नगर में निदा खान की मदद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने डीसीपी को सौंपा है ज्ञापन। धर्मांतरण के मामले में नासिक में निदा खान की मां और परिवार वालों से पूछताछ। बाद में पुलिस कमिश्नर के दफ्तर से बाहर निकले। शिवपुरी में प्रेमिका और बेटी की फिल्मी अंदाज में अपहरण की घटना। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई 11 लोगों पर मामला दर्ज। बठिंडा में रोड रोलर ने पिता और बेटी को कुचल डाला। पिता की मौत हुई। अस्पताल में बेटी को कराया गया है भर्ती। जामनगर में 7 रास्ता से जनता फाटक जाने वाले मार्ग पर ट्रिपल एक्सीडेंट की घटना सामने आई थी। कार में ई बाइक को टक्कर मारी थी। ग्रेटर नोएडा के निर्माणाधीन हॉस्टल में 2 माली की हत्या करने के आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। आरोपी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बिहार के सहरसा में पुलिस ने चलाया था ऑपरेशन मुस्कान। 8वें फेज में 73 मोबाइल धारकों को सौंपे गए मोबाइल। अब तक 71 लाख रुपए के हो गए मोबाइल बरामद किए गए। खगड़िया में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान बवाल हुआ। हिंसक झड़प में एक पुलिसकर्मी समेत 2 घायल हो गए। मुजफ्फरनगर में भाई ने भाई की हत्या कर डाली। छोटे भाई की बीवी पर गलत नजर डालने की वजह से बड़े भाई ने हत्या की। में शादी के 3 महीने के बाद उजड़ गया सुहाग। ब्लिंकिट में डिलीवरी बॉय का काम करने वाले युवक जितेंद्र प्रजापति की सड़क हादसे में मौत हुई। बिजनौर में डीएम के आदेश पर 22 साल के युवक का शव कब्र से निकलवाया गया। 2 महीने पहले संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हुई थी। झांसी में बुंदेली लोक गीत गायिका लाड कुंवर की बेरहमी से हत्या के बाद जलाया गया था शव। जंगल में मिली थी जली हुई लाश। इलाके में सनसनी। सोनीपत में भूसे की बोरियों से छुपाकर रखी जा रही शराब की तस्करी को ट्रॉले से 1000 से ज्यादा शराब की पेटियों को बरामद किया गया। ओडिशा के गंजम में बस और एक ट्रक की टक्कर हुई थी। एक शख्स की मौत। करीब 15 लोग घायल हुए। सूरत पुलिस कंट्रोल रूम को मिली थी एक कॉल ने खोला अंतर्राज्यीय मोबाइल चोर का गिरोह का राज। 110 मोबाइल जब्त किए गए। गुजरात टाइटंस ने आईपीएल में लगातार 4th जीत दर्ज करके राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हराकर शानदार फॉर्म जारी रखा। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट पर 229 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स 16.3 ओवर में 152 रन पर ऑल आउट हुआ। कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक नहीं लगा पाया। राजस्थान की ओर से रविंद्र जडेजा 38 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। वैभव सूर्यवंशी ने 36 रन की तेज पारी खेली। गेंदबाजी में गुजरात के राशिद खान ने 4 विकेट लेकर मैच को पलट डाला। जैसन होल्डर ने 3 और कगिसो रवाना ने 2 विकेट झटके। साउथ सुपरस्टार मोहनलाल की मोस्ट अवेटेड फिल्म दृश्यम 3 का धमाकेदार ट्रेलर आउट किया गया। फिल्म ने प्री सेल्स में रिकॉर्ड कमाई की है। हॉलीवुड में डेब्यू करने को तैयार है एक्ट्रेस दिशा पाटनी। एक्शन से भरपूर फिल्म द पोर्टल ऑफ फोर्सेस का ट्रेलर लॉन्च किया गया। उत्तराखंड की वादियों में पहुंचे एक्टर और डांसर राघव जुयाल। पहाड़ों की ठंडी हवाओं का ले रहे आनंद। 25 साल के बाद आई लगान की जोड़ी। आमिर खान और आशुतोष गोवारिकर ने तैयार किया है बड़ा सरप्राइज। जल्दी आएगा इंडियाज गॉट लेटेंट 2। समय रैना ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी।
निर्माताओं ने बदली फिल्म राव बहादुर की रिलीज डेट, 3 जुलाई को फिल्म थिएटर्स में दस्तक देगी। पॉप गायक और बॉलीवुड सिंगर बादशाह का एक और धमाकेदार सॉन्ग रिलीज किया गया, गाने पर डांस करते हुए नजर आए बादशाह। विदेशों में अपने ऑरा टूर 2026 में गीतों से जलवा बिखेर रहे हैं गायक दिलजीत दोसांझ, कॉन्सर्ट में उमड़ रही है काफी भीड़। पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म भोगी 28 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी, 11 मई को ट्रेलर जारी होगा। थिएटर्स में फिर से चलेगा तारा सकीना का जादू, एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने गदर 3 पर दिया है बड़ा अपडेट, बोली पहले से दोगुना एक्शन होगा। ईरान संकट पर बोले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये कठिन संघर्ष है और इसे जल्द से जल्द खत्म करने की जरूरत। राष्ट्रपति पुतिन बोले रूस ईरान और खाड़ी देशों के दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध रखता है, उम्मीद है कि यह टकराव बहुत जल्द खत्म होगा। एबीसी नेटवर्क के मुताबिक वॉशिंगटन को ईरान के जवाब का इंतजार है, प्रतिक्रिया के बाद ही अमेरिका लेगा आगे का फैसला। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान जल्द जवाब मिलने की उम्मीद में है, आगे की कार्रवाई उसी पर निर्भर करेगी। हॉर्मुज में ईरान ने छोटी और तेज नाव का बिछा दिया है जाल, सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच 9 से 11 मई तक 3 दिन का अस्थायी युद्ध विराम डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा प्रस्तावित सीज फायर का रूस ने किया है स्वागत।

0: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
1: Jack, you're killing me.
0: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
2: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
3: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
4: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
5: विक्रम, एक हिंट तो देते।
6: विक्रम!
5: हिंट।
4: बड़े आराम से।
5: बहुत टाइड हो गई।
7: No added sugar, preservative के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
8: लायन डेट नट बाइट्स।
9: टेबल के ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं। ये भाई साहब सब पचा देते।
10: पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खाते।
11: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
12: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का स्तर बहुत ही ज्यादा होने वाला है। खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
13: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें।
14: और वही कहाँ गए थे घूमने?
15: जीके मैक्स।
16: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
15: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
16: जेके वॉल मैक्स
15: बेस्ट पेंट,
16: जेके मैक्स।
15: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
17: JK Maxx Paints.
15: JK Maxx Paints. खुशियों के रंग।
18: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
19: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
20: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
21: Director, the taste of success.
22: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
12: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है। खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
13: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
16: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
23: इसमें माइक्रोफाइबर है।
16: माइक्रोफाइबर यानी
23: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
16: हमारे सीमेंट में नहीं है?
23: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
24: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
2: In association with
3: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
2: Hint, bade aaram se.
3: Cool, stylish fans. Enhance home decor with beautiful fans.
4: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
5: Summer Cool Cooler, hawa aisi chode, puri family ko thandak se jode. Summer Cool Cooler, life banaye wonderful.
2: Vimal, bolo zubaan kesri.
6: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर, हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

0: आखिरकार नासिक टीसीएस धर्मांतरण केस की फरार आरोपी निदा खान को करीब एक महीने बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 7 मई को पुलिस ने उसे छत्रपति संभाजी नगर के नरेगांव इलाके से गिरफ्तार किया। वो कैसर कॉलोनी के एक घर में अपने माता पिता, भाई और मौसी के साथ छिपकर रह रही थी। नासिक पुलिस ने निदा खान की माँ और मौसी को भी गिरफ्तार किया है। वहीं निदा खान की मदद के आरोप में नासिक पुलिस की क्राइम ब्रांच ने छत्रपति संभाजी नगर के नारेगांव से AIMIM पार्षद अब्दुल मतीन पटेल को भी हिरासत में लिया है। मतीन पर आरोप है कि उसने नारेगांव में निदा खान को पनाह दी थी। अब संभाजी नगर के संरक्षक मंत्री संजय शिरसाट ने AIMIM पर आरोप लगाया है कि निदा खान तो सिर्फ एक मोहरा है। इस वारदात के मास्टरमाइंड AIMIM के महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज जलील है। दरअसल इम्तियाज जलील ने निदा खान को जमानत देने की मांग का समर्थन किया था, जिसके बाद से महायुति उन पर निशाना साध रही है।
1: और हमको भी समझ में आ रहा है कि कैसा ट्रायल बाय मीडिया चलाया जा रहा है इस मामले के अंदर। हर आरोपी को, मेरा मतलब ये है, आरोपी एक्यूज्ड पर्सन को यह अधिकार होता है कि उसके ऊपर अगर कोई आरोप लगे है तो वो अदालत जा सकता है, बेल के लिए अप्लाई कर सकता है, अपना पक्ष अदालत के सामने रख सकता है। निचली कोर्ट में इस लड़की को बेल नहीं मिली, उसका राइट है कि वो हाई कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट में रिजेक्ट होती है तो सुप्रीम कोर्ट में जाए, ये कानून का नियम है। इस लड़की के ऊपर महज आरोप है और उस आरोप के तहत अगर पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके लेके गई है तो पुलिस अपना काम करेगी।
2: ये निदा खान को गिरफ्तार करने से ज्यादा बड़ा प्रश्न यही है कि निदा खान को अभी तक कौन प्रोटेक्शन दे रहा था, कौन उसके पीछे था, उसको कहाँ से अरेस्ट हुआ है। तो MIM कॉर्पोरेटर के घर पे छुपी थी। तो ये जो MIM का कॉर्पोरेटर है वो जो हमारे पास ये भी न्यूज है कि उसको इम्तियाज जलील सपोर्ट कर रहा था। तो फिर ये MIM, ये जो पार्टी है, ये पॉलिटिकल पार्टी है या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? क्योंकि PFI, ISI, अलकायदा से कुछ अलग काम ये लोग करते नहीं है। वो लोग भी जिहादियों को ही मदद करते हैं।
0: वहीं शिवसेना नेता बच्चू कड़ू ने कहा है कि धर्मांतरण जैसे मामलों में मुस्लिम धर्मगुरुओं को आगे आकर ऐसी घटनाओं का विरोध करना चाहिए। निदा खान पर नासिक TCS केस में पीड़ित लड़कियों के जबरन धर्मांतरण की कोशिश, हिंदू देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी करने और इस्लामिक रीति रिवाज को थोपने के साथ रेप और यौन शोषण के आरोपी टीम लीडरों की मदद करने के आरोप। मुंबई से दिव्येश सिंह और दीपेश त्रिपाठी के साथ इसरार चिश्ती, संभाजीनगर, आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
3: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस,
4: एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
5: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems, from OGs like Tupac and Biggie, to chart-topping bangers from the biggest artists of all time, like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
6: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
7: What you got for me, Jack?
6: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
8: Vikram chahe jitna bhi phadphada le, dhoond nahi payega.
9: कैसा लगा मेरा स्टंट?
10: विक्रम, एक हिंट तो देते।
11: विक्रम!
10: हिंट।
9: बड़े आराम से।
12: और वही कहाँ गए थे घूमने?
13: जीके मैक्स।
14: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
13: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
14: जेके वॉल मैक्स
13: बेस्ट पेंट,
14: जेके मैक्स।
13: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
15: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
11: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है। खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
16: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें।
17: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
18: इसमें माइक्रो फाइबर है।
17: माइक्रो फाइबर यानी
18: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
17: हमारे सीमेंट में नहीं है,
18: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
19: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
20: तमिलनाडु में शुरू होने वाला है विजय राज। वो विजय जो अब तक रियल लाइफ के हीरो थे, अब रियल लाइफ के हीरो बन गए हैं। तमिलनाडु में पिछले 59 साल एक महीने और 28 दिनों तक सिर्फ दो ही पार्टियों का राज था। तमिलनाडु में पिछले 21,608 दिन से सिर्फ दो ही पार्टियां शासन करती थी, डीएमके और एडीएमके। बीच बीच में तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन भी रहा, लेकिन इन दोनों पार्टियों के अलावा किसी तीसरे पार्टी की एंट्री नहीं हो पाई। लेकिन अब इन दोनों पार्टियों के राज को 59 साल के बाद थलपति विजय की टीवीके ने ध्वस्त किया है। विजय ने वो करके दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। किसने सोचा था कि सिर्फ दो साल में ऐसा कमाल दिखाएंगे कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। विजय मौजूदा वक्त में तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। विजय के पास पैसा, स्टारडम, फैन फॉलोइंग सब कुछ था। वो चाहते तो आराम से सुपरस्टार बने रह सकते थे, लेकिन उन्होंने राजनीति का रास्ता चुना। 2016 में जयललिता की मौत के बाद से तमिलनाडु की राजनीति में एक शून्य था, एक खाली पद था। डीएमके के सामने तो जैसे कि खुला हुआ रास्ता था, दूर दूर तक कोई भी टक्कर में नहीं था। इसीलिए 2021 में स्टालिन मुख्यमंत्री बने तो सबको लगा कि अब स्टालिन को कौन टक्कर देगा। इसीलिए ज्यादातर एग्जिट पोल में उनकी जीत बताई जा रही थी। लेकिन वो विजय ही थे जिन्होंने जयललिता की मौत से खाली हुई तमिलनाडु की राजनीति के शून्य को भरा। उनकी रैलियों की भीड़ बता रही थी कि तमिलनाडु में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन शायद किसी को ये अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ भीड़ नहीं है, उनके वोटर्स भी हैं। और विजय के इन फैंस ने ये साबित कर दिया कि वो रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए नहीं जमा हुए थे, वो तमिलनाडु को बदलने के लिए आए थे। तमिलनाडु में थलपति विजय ने तो इतिहास रचा है, लेकिन उनको ये कामयाबी इसलिए मिली क्योंकि तमिलनाडु के लोगों को उनके अंदर एक ऐसा नायक नजर आया जो उनके राज्य को आगे ले जा सकता है। विजय की इस जीत के पीछे उनके वो फैंस थे जो उन्हें किसी भी हद तक फॉलो करते हैं। विजय ने अपने फैन क्लब को वेलफेयर नेटवर्क में बदला, लोगों की मदद, युवाओं के कनेक्शन और जमीनी पकड़ मजबूत की और टीवीके के अपने वोटर तैयार किए। तमिलनाडु में विजय के 85,000 से ज्यादा फैन क्लब का नेटवर्क है जिन्होंने उनकी जीत में अहम भूमिका निभाई। उनका ये नेटवर्क पिछले 10 वर्षों से उनके शैडो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में ही काम कर रहे थे। विजय के ये फैन क्लब पूरे तमिलनाडु में सामाजिक काम कर रहे थे, लोगों को विजय से जोड़ रहे थे। विजय आर्मी पिछले कई वर्षों से तमिलनाडु की गलियों में दिख रही थी। विजय की जीत की सबसे बड़ी वजह है उनकी लोकप्रियता। विजय भले ही 51 साल के, लेकिन उन्हें युवाओं का या जेन ज़ी का नेता कहा जाता है। तमिलनाडु में 40 से कम उम्र के युवाओं की संख्या 2 करोड़ है, जो तमिलनाडु के करीब 41.5% वोटर होते हैं। विजय का यही युवा कैडर सोशल मीडिया पर भी एक्टिव था, जिन्होंने तमिलनाडु में विजय के पक्ष में हवा बनाई। विजय ने किसी बड़े गठबंधन का सहारा नहीं लिया, न डीएमके, न एआईएडीएमके, न बीजेपी, सीधे जनता के बीच गए। मुद्दे थे रोजगार, शिक्षा, भ्रष्टाचार और बदलाव, और नतीजा ये है कि टीवीके सबको चौंकाते हुए आज अपनी सरकार बनाने जा रही है और मुख्यमंत्री बन रहे हैं थलपति विजय। आज तक पे रोक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

तमिलनाडु में आज से विजय युग का आगाज। सुबह 10 बजे नौ मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे थलापति। राहुल गांधी समेत कई खास मेहमानों को न्योता। सत्ताईस बिसात पर यूपी में बीजेपी की नई चाल। दोपहर 3 बजे योगी मंत्रिमंडल का विस्तार। 6 मंत्री ले सकते हैं शपथ। जातीय समीकरण साधने की कोशिश। केरल में नए मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस में मंथन। दिल्ली में बैठकों का दौर अभी तक नहीं तय हो सका है सीएम का नाम। बंगाल का मुख्यमंत्री बनते ही शुभेंदु का दावा, डर का माहौल खत्म करेंगे। सोमवार को मंत्रालय का होगा बंटवारा। ममता का विपक्षी एकता पर जोर। और जहाजों पर हमले से अमेरिका और ईरान में फिर से बढ़ गए तनातनी। तेहरान ने कहा मुंह तोड़ जवाब देंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा ईरानी ड्रोन्स को कर रहे हैं तबाह।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। सुबह के 8 बजे की बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं दो बड़ी और अहम खबरों के साथ। पहली जो खबर है वो है दक्षिण के राज्य तमिलनाडु से, जहां आज टीवी के प्रमुख विजय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। वीसीके और आईयूएमएल के समर्थन के बाद अब टीवीके के पास हो गए 120 विधायक, जो बहुमत के आंकड़े से दो ज्यादा है। इसके साथ नजर आज उत्तर प्रदेश में होने वाले कैबिनेट विस्तार पर भी रहने वाली है। जानकारी के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार में 6 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। यूपी में होने वाले इस मंत्रिमंडल विस्तार को प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। सबसे पहले लेकिन बात कर लेते हैं तमिलनाडु की।
1: सी जोसेफ विजय

0: तो तमिलनाडु की राजनीति में आज से नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। सुपरस्टार से सियासत में आए विजय आज सुबह 10 बजे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि 9 और लोग हैं जो उनके साथ शपथ ले सकते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा साफ बाकी के लोगों के बारे में नहीं किया गया, लेकिन इतना जरूर साफ है कि बेसब्री के साथ तमिलनाडु में तमाम जो उनके चाहने वाले हैं इस दिन का इंतजार कर रहे थे। 10 बजे का समय रखा गया है, तमाम बड़ी हस्तियां इसमें नजर आ सकती हैं। राहुल गांधी के भी अब से कुछ ही देर बाद चेन्नई पहुंचने की जानकारी मिल रही है। इसके अलावा तमाम पॉलिटिकल लीडर्स और साथ ही फिल्मी हस्तियां इस शपथ ग्रहण में शामिल हो सकती हैं, चाहे वो सिक्योरिटी की बात हो या फिर इस स्टेडियम की। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज 10 बजे का इंतजार किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि 10 बजे का समय थलपति विजय ने अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछकर खास मुहूर्त में रखा है। तो चेन्नई में होने वाले विजय के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यहां सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक चौबंद है, कड़ी है। जानकारी के मुताबिक विजय के सीएम पद की शपथ के साथ ही 8 विधायक भी हैं जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी कोई मंत्री नहीं बनेगा, ये जानकारी मिल रही है। कुल मिलाकर कल ही साफ कर दिया गया था कि 120 कुल विधायक विजय के पास हैं, मतलब बहुमत से 2 ज्यादा। और गवर्नर से मुलाकात के बाद आज का दिन तय कर लिया गया था, इसीलिए बहुत ज्यादा खास है आज का दिन। आज विजय समेत कुल 9 लोग शपथ लेने जा रहे हैं, जिसमें 8 मिनिस्टर्स हैं विजय के साथ। हालांकि कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लोग इसमें शामिल नहीं है। आधव आनंद मंत्री पद की शपथ लेंगे, ये सूत्र कह रहे हैं। टीसीआर निर्मल कुमार साथ ही अरुण राज भी आज शपथ ले सकते हैं। उन 8 लोगों के नाम हम आपको बता रहे हैं जो आज शपथ ले सकते हैं। तो जोसेफ विजय का आज शपथ ग्रहण होने जा रहा है, उनके साथ 8 और लोग हैं जो आज शपथ ले सकते हैं, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर है। तमाम तैयारियां तमिलनाडु में पूरी हो चुकी हैं, चेन्नई में जश्न का माहौल है। अलग अलग जगहों पर सुरक्षा के लिए खास व्यवस्थाएं की गई हैं, इंतजाम किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे संवाददाता सगे राज जुड़ गए हैं। सगे राज का रुख करेंगे जो विजय के घर के बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं। सगे, तस्वीरें दिखाई हमारे दर्शकों को, किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह का जोश है। हालांकि अभी 8 ही बजे हैं, समय है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कल रात से ही जो चाहने वाले हैं, जबरदस्त उत्साह, जबरदस्त जोश उनके भीतर देखा जा रहा है।
1: हाँ जी बिल्कुल, वो पूरा जोश नेहरू इंडोर स्टेडियम के पास है। बहुत ज्यादा लोग, बहुत ज्यादा भीड़ वहां पे जुड़ने वाला है। हम अभी विजय के नीलांगरे घर के बाहर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कल तक कुछ भी गाड़ी नहीं था, सिक्योरिटी की गाड़ी भी नहीं था, मगर आज पूरा का पूरा प्रोटोकॉल गाड़ी यहाँ पे पार्क किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैमर है, पुलिस का गाड़ी है और पूरा कॉन्वॉइस यहाँ पे है। यहाँ से जोसेफ सी विजय चीफ मिनिस्टर डिजिग्नेटेड उनको यहाँ पे एस्कॉर्ट करके नेहरू इंडोर स्टेडियम के लिए ले जा सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी सिक्योरिटी अलर्ट है, शायद अभी मूवमेंट होगा। कभी भी चीफ मिनिस्टर डिजिग्नेटेड सी जोसेफ विजय यहाँ से निकल सकते हैं। उनके साथ 8 मिनिस्टर भी शायद आज वो टेकिंग होगा। सूत्रों के अनुसार वो पूरा कोर मेंबर्स रहेंगे जो लोग वो टेकिंग करेंगे।
0: बिल्कुल, एक बार फिर से मैं जरा ये तैयारी दिखाइए, सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम है। जैसा कि आपने कहा कि कल इस तरह की यहाँ पुलिस व्यवस्थाएं नहीं थी और क्योंकि अब तमिलनाडु की कमान संभालने जा रहे हैं, अब से कुछ ही देर बाद वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो तैयारियां बहुत ज्यादा विशेष की गई हैं। और सुरक्षा के इंतजाम सिर्फ विजय के घर के बाहर ही नहीं, पूरे चेन्नई में बहुत ज्यादा खास किए गए हैं। चाहे वो स्टेडियम के अंदर और बाहर की तस्वीरें आ रही हों या अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से समर्थक कल भी जश्न मनाते हुए नजर आ रहे थे। सगे, हो सके तो एक बार फिर से मैं तस्वीरें दिखाइए।
1: देखिए, हाँ, यहाँ भी सिक्योरिटी का अलर्ट हो चुका है, शायद कभी भी विजय बाहर आ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैमर है, एस्कॉर्ट व्हीकल है, मीडिया व्हीकल है, उनका पर्सनल मीडिया व्हीकल है। और यहाँ पे पीछे देखिए 3 से 4 प्रोटोकॉल गाड़ी भी है और पुलिस भी है। ये सब लोग चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेटर सी जोसेफ विजय को यहाँ से जवाहरलाल इंडोर स्टेडियम को ले जा सकते हैं। और उधर शायद वोट टेकिंग सेरेमनी के बाद वहां से किसी माँ के घर जा सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं विजुअल्स में चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट विजय उनके घर से बाहर आ रहे हैं, लोगों के पास हाथ दिखा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं वेव कर रहे हैं। जोसेफ सी विजय, कंग्रेचुलेशंस एंड गुड लक टू यू सर। और आप देख सकते हैं यहाँ से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम विजय जा रहे हैं।
0: बिल्कुल लाइव तस्वीर हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं। देखिए यहां से विजय निकल चुके हैं शपथ ग्रहण के लिए और तमाम तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई हैं। पूरा कॉन्वॉय यहां पर मौजूद था, सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। बहुत खास आज का दिन है, 10 बजे गैर द्रविड़ सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर वो शपथ लेने जा रहे हैं। लाइव तस्वीरें सगे निकल चुके हैं विजय यहां से।
1: हाँ हाँ, नीलांकर एक घर से विजय अभी निकल चुके हैं, यहाँ से शायद डायरेक्टली जवाहरलाल इंडोर स्टेडियम पहुँचना चाहिए, मगर अभी 8 बजे है। शायद रास्ते में उनके माँ बाप, पिता और माँ का घर है, शायद वहाँ पे जा सकते हैं और उनका आशीर्वाद लेके इंडोर स्टेडियम जा सकते हैं करके सूत्रों के अनुसार कह रहे हैं, मगर अभी भी साफ नहीं है कि यहाँ से कहाँ जाएंगे। शायद मंदिर नहीं तो चर्च भी जा सकते हैं। सो अभी भी डिटेल्स नहीं है, मगर घर से चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेटर सी जोसेफ विजय निकल चुके हैं।
0: सगे एक और चीज बताइए कि यहाँ से स्टेडियम पहुंचने में कितना समय लगेगा? साथ ही एक बार फिर से मैं तस्वीरें दिखाइए, देखिए विजय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं घर से निकलते हुए। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, यहाँ से इनके लिए प्रोटोकॉल गाड़ी है, ग्रीन कॉरिडोर है।
0: जी जी तो ये पूरा काफिला हम आपको दिखा रहे हैं, विजय का काफिला घर से निकलते हुए। शपथ ग्रहण की तमाम तैयारियां और इसी बीच विजय का काफिला घर से निकल चुका है और आपको बता दें कि कहा यह जा रहा है कि ग्रीन कॉरिडोर है तो ज्यादा समय उन्हें स्टेडियम तक पहुंचने में नहीं लगेगा, लेकिन उससे पहले वो अपने माता पिता के घर जा सकते हैं आशीर्वाद लेने के लिए और उसके बाद वो पहुंचेंगे शपथ ग्रहण करने के लिए। अपने घर से निकले हैं जोसेफ विजय, लाइव तस्वीरें आज तक पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम तैयारियां चेन्नई में पहले ही पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा के खास बंदोबस्त किए गए हैं। सगे लगातार हमारे साथ बने हुए, सगे लंबा काफिला और हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि कैसे विजय यहां से 8 बजे निकल चुके हैं।
1: देखिए अभी तकरीबन 8 बजे है, शायद यहाँ से नेहरू इंडोर स्टेडियम के लिए उनके लिए शायद आधा घंटा चाहिए, मगर ये घंटे पहले ही निकल चुके हैं। शायद हम जैसे ही कहा था कि उनके माता पिता के घर जा सकते हैं और वहाँ से टेंपल नहीं तो चर्च भी जा सकते हैं। अभी फिलहाल हमने अभी भी पुलिस से बात किया था, उनके पास भी कुछ भी डिटेल्स नहीं है। शायद रास्ते में पता चलेगा कहाँ डाइवर्शन होगा, कहाँ जाएंगे और किसको पहले मिलेंगे। उसके बाद तकरीबन 10 बजे नेहरू इंडोर स्टेडियम पहुँचेंगे और वहाँ पे वो शपथ लेंगे।
0: और उनके साथ यहाँ से कौन कौन और गया है, क्या ये साफ हो पाया है कि उनके इस काफिले में, कॉन्वॉय में और कौन कौन है जो उनसे उनके साथ घर से निकला है?
1: नहीं, उनके साथ कोई नहीं थे गाड़ी के अंदर, मगर वो जाने से पहले टीवी के एमएलए वेंकट रामन और सेंगोटियन

0: जहाँ पे विजय को चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेटेड विजय को उनका नंबर्स प्रूव करने का प्रूव करना पड़ेगा और यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा उनका क्या बोले समर्थन दिया गया है कांग्रेस IUML BCK और CPI और CPM ने कुल मिला के उनके पास अभी तकरीबन 120 सीट्स है और फ्लोर टेस्ट शायद उनको आसान होगा। सो विजय भी कॉन्फिडेंट है और वो कह रहे हैं उनके उनके ऑफिस सूत्रों के अनुसार कह रहे हैं कि सब कुछ आराम से होगा जब फ्लोर टेस्ट होगा बुधवार को।
1: आज का दिन बहुत ज्यादा खास हो जाता है कि चार बार गवर्नर के से मिलने के बाद फाइनली सरकार बनाने जा रहे हैं और शपथ लेने जा रहे हैं। विजय, सगे हमारे दर्शकों को जरा ये भी बताइए कि पूरे चेन्नई में किस तरह की तैयारियां हैं, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था की बात हो या तमाम चाहने वालों की, क्योंकि कल देर रात तक लोगों ने जश्न मनाया, खुशी मनाई है और ज्यादातर समर्थकों का कहना यह था कि इतनी लंबी रस्साकसी के बाद फाइनली विजय शपथ लेने जा रहे हैं और शांति की रात है हमारे लिए।
0: देखिए, विजय का बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है तमिलनाडु में, नंबर वन एक्टर है, जहां हर एक कॉर्नर हो इस रोड का पूरा रोड बंद किया गया, नीलांगरे क्या उसका रोड जो भी है जहां पे पूरा कार्डन किया है, बैरिकेड डाला है, किसी फैंस को अलाउ नहीं कर रहे हैं और जहां भी भीड़ ज्यादा होता है, जहां पे नेहरू इंडोर स्टेडियम हो, कहां भी विजय जाते हैं वहां पे पूरा बैरिकेड डाल चुका है और जिसके पास इन्वाइट है उसी को अंदर छोड़ रहे हैं। बहुत ज्यादा प्रिकॉशन पुलिस ले रहे हैं, पुलिस को भी पता है बहुत ज्यादा भीड़ आ सकती है क्योंकि कहां भी जाओ वहां पे बहुत ज्यादा फैंस उनके लिए वेट कर रहे हैं। शायद नेहरू इंडोर स्टेडियम के बाहर भी बहुत ज्यादा भीड़ आएगा आज विजय को देखने के लिए, इसी के वजह से बहुत ज्यादा सिक्योरिटी हर जगह पे बीफ अप किया है।
1: बिल्कुल, और तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से काफिला निकला है अब से कुछ ही देर पहले विजय का, और आपको बता दें कि 10 बजे शपथ ग्रहण होना है, 8 और मिनिस्टर्स के शपथ लेने की भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। सके 10 बजे का जो समय, इसे लेकर भी लगातार कहा जा रहा था कि वो अपने एस्ट्रोलॉजर के साथ लगातार बात कर रहे थे और वो चाहते थे कि उन्हें 10 बजे का समय मिले। राज्यपाल के साथ काफी लंबे समय तक इस बात को लेकर, समय को लेकर उनका डिस्कशन हुआ।
0: हाँ जी बिल्कुल, कल जब उन्होंने पहुंचे थे तकरीबन 6:30 बजे, 8-8:30 बजे तक विजय की डिस्कशन हो रही थी गवर्नर के साथ और हमारा सूत्रों के अनुसार वहां पे बहुत ज्यादा प्री रिक्वेस्ट, वोट टेकिंग सेरेमनी का प्री रिक्वेस्ट फॉर्मेलिटी था उसको खत्म कर दिया था और उसके बाद पहला इन्फॉर्मेशन आया था तकरीबन 3-4 बजे तक विजय शपथ लेंगे, मगर उसके बाद उन्होंने उनके एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया था और उसके हिसाब से शुभ टाइम तकरीबन सुबह 10 बजे है और उसके हिसाब से गवर्नर से अपॉइंटमेंट मांग गया था और 10 बजे वो चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट जोसेफ सी विजय शपथ लेंगे।
1: बिल्कुल सगे, तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और जिस तरह से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी 9 बजे तक चेन्नई पहुंच जाएंगे, अब तमाम लोगों के पहुंचने की यहां जानकारी है, तमाम बड़ी जो नामचीन हस्तियां हैं वो यहां सेलिब्रिटीज पहुंचने वाले हैं, इसके अलावा और कौन कौन लोग हैं जो इस शपथ ग्रहण में शामिल होने वाले हैं?
0: देखिए, बहुत ज्यादा सेलिब्रिटीज इस शपथ सेरेमनी पे पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि ये नंबर वन फिल्म स्टार है तमिलनाडु में, शायद बहुत ज्यादा सेलिब्रिटीज आएंगे। उसके अलावा ऑपोजिशन पार्टी लीडर राहुल गांधी भी यहाँ पे मौजूद हो सकते हैं और सूत्रों के अनुसार मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहाँ पे आ सकते हैं। उसके अलावा उनका माता पिता और आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर्स जो MK स्टालिन हो, एडप्पाडी पळनीस्वामी हो, उनको भी इन्वाइट एक्सटेंडेड किया होगा क्योंकि पिछले जब स्टालिन वोट टेकिंग सेरेमनी था, जो जयललिता के वोट टेकिंग सेरेमनी पे भी आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर को इनवाइट किया गया था और वो जो प्रोटोकॉल है वो यहाँ पे भी फॉलो करेंगे, शायद वो लोग भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे वोट टेकिंग सेरेमनी, तो नहीं तो उनका रिप्रेजेंटेटिव को वो लोग भेज सकते हैं और बहुत ज्यादा भीड़ भी नेहरू इंडोर स्टेडियम में आ सकता है। एक बात तो समझिए कि विजय का जो भी फिल्म रिलीज होता है, रिलीज होने से पहले जो भी ऑडियो फंक्शन होता है, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है, वो पूरा नेहरू स्टेडियम में ही बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज किया गया था और इस बार भी जब वो पहले बार चीफ मिनिस्टर का शपथ ले रहे वो भी नेहरू इंडोर स्टेडियम ही हो रहा है।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सगे इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बहुत ही खास है आज का दिन। और आपको ये भी बता दें कि अब से कुछ ही देर पहले कॉन्वॉय निकला है अपने घर से विजय का, और आपको बता दें कि 8 बजे के करीब वो घर से निकल चुके हैं, 10 बजे शपथ ग्रहण हो रहा है।

0: उससे पहले हो सकता है कि वो अपने माता पिता से मिलें और उसके बाद वो स्टेडियम पहुंचे। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं और आज अलग अलग जगहों पर चेन्नई में सुरक्षा के खास इंतजाम है, क्योंकि बेसब्री के साथ एक झलक पाने के लिए तमाम जो उनके फैंस हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके जो वोटर्स हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि 10 बजे शपथ ग्रहण होनी है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक काफिला आप देख सकते हैं, दूसरी तरफ आज घर से निकलते हुए कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, विजय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और 10 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह होना है। अनगा तमाम जानकारी के साथ हमारी संवाददाता नेहरू स्टेडियम से जुड़ गई है, जहां पर शपथ ग्रहण होना है। और आपको बता दें कि वहां तमाम तैयारियां कैसी हैं, इसके बारे में अनगा ज्यादा जानकारी देंगी। अनगा, तस्वीरें हमें दिखाई है, लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और किस तरह वहां सब कुछ नजर आ रहा है, क्योंकि घर से निकल चुके हैं विजय? अनगा, आप मुझे सुन पा रही हैं?
1: जी, हम रिपोर्ट कर रहे हैं नेहरू स्टेडियम के बाहर। अभी हम स्टैंड बाय में हैं विजय के आने के लिए। आप देख सकते हैं कि कैसे सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट किया हुआ है और सब लोग आ रहे हैं और हम एक एमएलए को कैच करने के लिए कोशिश कर रहे हैं यहाँ नेहरू स्टेडियम के बाहर। एक एमएलए जो है उनका वर्ड के लिए हम वेट कर रहे हैं। वीएस बाबू, जो स्टालिन को डिफीट किया हुआ लीडर, अभी यहाँ हमारे पास है। अभी वेट कर रही हूँ, वो फ्री होने के लिए फिर हमारे साथ बातचीत कर पाएगा वो। और एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज जो चल रहा है यहाँ चेन्नई में, तमिलनाडु में। ये द्रविड़ियन पार्टी के अलावा एक पहली बार एक नया पार्टी। सर, இன்னைக்கு எவ்வளவு பேர் வா?
2: பெருமாள்மணிக்கு லட்டர் போட்டுட்டு, லட்டர் மட்டும் இல்ல, அப்படியே யாரு ஆதரவு கொடுத்தாங்களோ அந்த முதல்ல விஐபி எட்டும் போது.
1: சார், இன்னைக்கு எவ்வளவு பேர் வந்து இன்னைக்கு போட் எடுக்கிறாங்க?
3: தெரியலமா,
1: தெரியல. மினிஸ்டர் பதவி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாமா?
3: இல்லமா, எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது. எனக்கு வந்து உள்ள வரணும்னு அழைப்பு, அவ்வளவுதான்.
1: சார், இன்னைக்கு ராகுல் காந்தி வராரு, அதை எப்படி பாக்குறீங்க? वो था टीवीके का लीडर जो स्टालिन को डिफीट किया हुआ वीएस बाबू लीडर जो है वो था। वो बोल रहे कि अभी इंतजार करना पड़ेगा कि किस किस को क्या का क्या क्या पोर्टफोलियो दिया हुआ है। और उन्होंने ये भी बोल रहे थे कि राहुल गांधी आज विजय को सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, तो बहुत हैप्पीनेस दिखा रहे थे उनके फेस में। तो ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि कांग्रेस और टीवीके का
0: राहुल गांधी 9 बजे के करीब वहां पहुंचने वाले हैं। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप रुक करेंगे आपका कुछ ही देर में। तो विजय घर से निकल चुके हैं और कुछ ही देर बाद तमिलनाडु में होने जा रहा है शपथ ग्रहण समारोह, जिसकी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार।
5: इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
7: सिट बैक एंड रिलैक्स विद द स्मूथेस्ट हिट्स विद कॉफी हाउस स्टेशन ऑन ट्यून इन, अ केयरफुली ब्रूड मिक्स ऑफ सॉफ्ट अकूस्टिक ट्रैक्स मेड फॉर स्लो मोमेंट्स एंड क्वाइट फोकस, फीचरिंग आर्टिस्ट लाइक जेम्स बे, नोरा जोन्स एंड डेनियल सीजर, plus more of your coffee house favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. You can stream all the podcasts you already love right on TuneIn. Available on your smartphone, on your tablet, and even on your connected devices. There's so much to explore, like mind-blowing facts about your world.
9: So they were disallowed from speaking their language.
8: In-depth conversations with A-list celebrities.
10: No, I was ready to go. You know, after I wanted to fulfill my contract.
8: True crime podcasts you just can't stop listening to.
11: Others escape justice to live and die in infamy.
5: These individuals.
11: Plus the news and sports content you crave in podcast form.
12: Couldn't run in a straight line very quickly and didn't have much of an arm. His arm is stronger now.
11: So whether you want to save your go-to shows for later by subscribing and listening offline, or you want to discover a whole slate of new podcasts to be obsessed with, TuneIn is your destination. True crime, sports, lifestyle, culture, news, and so much more. TuneIn is Podcast Central. Hear them all here.
13: Sokudu.
14: Honey, is ghar mein kuch hai jo tootta nahi?
15: Ye pillar kabhi nahi tootega. Rungta Steel TMT se bana.
16: Rungta nahi to ghar strong nahi. Rungta Steel TMT bar ekdam solid.
17: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है. ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद. JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK.
18: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा.
19: Hey प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
20: विक्रम, एक हिंट तो देते.
21: विक्रम!
20: हिंट.
19: बड़े आराम से.
22: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
23: जीके मैक्स.
24: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
23: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी.
24: जेके वॉल मैक्स
23: बेस्ट पेंट.
24: जेके मैक्स.
23: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स. जेके मैक्स पेंट्स. खुशियों के रंग.

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
2: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
3: लायन डेट नट बाइट्स।
4: टेबल के ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं भाई साहब सब पचा देते।
5: पर दिक्कत तो होने आती है जो टेबल के नीचे से खा।
6: मुल्तानी पश्मीना अपने हक का खाओ सब कुछ पचाओ।
7: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है। खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
8: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें।
9: करेक्टर द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
10: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
11: इसमें माइक्रोफाइबर है।
10: माइक्रोफाइबर यानी
11: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
10: हमारे सीमेंट में नहीं है।
11: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
12: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
13: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
14: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
7: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है। खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
8: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें।
15: आज तक के खबरदार करते ही सरकार का एक्शन।
16: आज तक की खबर के बाद काउंसिल ने भरोसा दिया है कि मार्च के आखिर तक लंबित प्राइज मनी दे दी जाएगी।
17: एक दो दिन में ही उनके नियुक्ति पत्र भी जारी हो जाएंगे।
16: ये सब कुछ तब हो पाया जब आज तक ने राजस्थान के खेल विभाग को जगाया।
18: अच्छी खबर चली हमारी, अच्छा हुआ सर।
15: जहां खबर वहां खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
19: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
20: Monte Carlo, it's the way you make me feel.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Acoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

विसात पर यूपी में बीजेपी कई नई चाल, दोपहर 3 बजे योगी मंत्रिमंडल का विस्तार, 6 मंत्री ले सकते हैं शपथ, जातीय समीकरण साधने की कोशिश। केरल में नए मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस में मंथन, दिल्ली में बैठकों का दौर, अभी तक नहीं तय हो पाया है सीएम का नाम। बंगाल का

और जहाजों पर हमले से अमेरिका और ईरान में फिर भरी तनातनी। तेहरान ने कहा मुंहतोड़ जवाब देंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा ईरानी ड्रोन्स को कर रहे हैं तबाह।

आज सुबह 10 बजे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे विजय। राज्यपाल ने सरकार गठन को न्योता दिया। टीवीके ने 120 विधायकों के समर्थन का दावा पेश कर दिया है। कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके और आईयूएमएल के सहारे बहुमत हासिल। 13 मई उससे पहले हासिल करना होगा विश्वास मत। 59 साल के बाद तमिलनाडु को मिलेगा पहला गैर द्रविड़ मुख्यमंत्री। चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में होगा शपथ ग्रहण। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस का कोई विधायक शपथ आज नहीं लेगा। चेन्नई में जश्न का माहौल। टीवी के समर्थकों ने पटाखे फोड़कर मनाई खुशी। विधायकों को रिसोर्ट पर ठहराने पर बढ़ गई है सियासी हलचल। कलापति के शपथ ग्रहण पर बोले पिता ऐसे चंद्रशेखर का, बहुत खुश हूं, ईमानदारी से काम करने की नसीहत भी दी। आतोल का बड़ा बयान, विजय को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोकेंगे, बिना शर्त समर्थन दिया है। तमिलनाडु में टीवीके को समर्थन देने के बाद वीसी के चीफ थोल ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी अब बीडीएमके गठबंधन का हिस्सा है। वीसीके के बाद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए टीवीके को समर्थन दिया। एएमके का आरोप है कि टीवीके ने विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश भी की। तमिलनाडु में फिर दिखी रिसोर्ट पॉलिटिक्स। सूत्रों के मुताबिक नेता विपक्ष राहुल गांधी विजय के शपथ ग्रहण में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा विपक्ष के कुछ और नेताओं के भी पहुंचने की उम्मीद। स्टालिन का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस से विश्वासघात किया, डीएमके ने नाता तोड़ लिया। स्टालिन बोले कांग्रेस विधायक धन्यवाद देने अन्ना अरिवालयम तक नहीं आए। डीएमके एक रचनात्मक विपक्षी पार्टी के तौर पर काम करेगी। केरलम के नए मुख्यमंत्री पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक में मैराथन मंथन हुआ। राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। 23 मई के पहले सीएम चयन और आगे की प्रक्रिया पर होगा फैसला। दीपा दासमुंशी बोली हंगामा कांग्रेस की संस्कृति नहीं। यूपी में बड़ा कैबिनेट विस्तार, मुख्यमंत्री योगी ने राज्यपाल से मुलाकात करके आज दोपहर 3 बजे शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी की। यूपी कैबिनेट में 6 नए मंत्रियों के शामिल होने की संभावना, कई मौजूदा मंत्रियों के विभागों में फेरबदल की भी लगभग तय मानी जा रही है बात। भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, कृष्णा पासवान समेत कई नेताओं के नामों पर चर्चा। सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश में बीजेपी। 2027 विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर बड़ा राजनीतिक दाव, ओबीसी और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर फोकस। यूपी में मंत्रिपरिषद विस्तार से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज हुई। 54 मंत्रियों वाली सरकार में अधिकतम 60 तक जाने की तैयारी। कर्नाटक, तेलंगाना और गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी का मेगा दौरा। 9400 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद में कई बड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिसमें इंडस्ट्री, सड़क और अस्पताल से जुड़ी योजनाएं भी शामिल हैं। गुजरात दौरे में सोमनाथ मंदिर के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। कर्नाटक के चित्रदुर्ग पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह। पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा के सम्मान में आयोजित अभिमानोत्सव में हिस्सा लिया। पंजाब सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा ने ईडी ने किया गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय मंत्री संजीव अरोड़ा को अपने साथ ले गए। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कार्रवाई को बदले की राजनीति बताया। छापेमारी से पंजाब की सियासत में भूचाल। संजीव अरोड़ा के खिलाफ ईडी की कार्रवाई से भड़की आम आदमी पार्टी। आज पूरे पंजाब में बीजेपी के दफ्तरों का घेराव करने का ऐलान किया गया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने कसा तंज, कहा पंजाब की सरकार को बदनाम करने के लिए और कितने हथकंडे अपनाएगी बीजेपी। प्रदेश कांग्रेस में पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष ने मंत्री संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी को घेरा, कहा बीजेपी कर रही है ईडी का इस्तेमाल और आम आदमी पार्टी कर रही है विजिलेंस का गलत इस्तेमाल। दिल्ली एनसीआर में फिर से बदलेगा मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। दक्षिण भारत में मौसम सुहाना हुआ, चेन्नई में झमाझम बारिश। बिहार में कैबिनेट विस्तार के बाद सम्राट सरकार के मंत्रियों ने जारी किया संपत्ति का ब्यौरा। 35 मंत्रियों में से 32 मंत्री करोड़पति हैं। बिहार सरकार के 10 मंत्रियों की संपत्ति मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी ज्यादा है। सम्राट चौधरी कैबिनेट के सबसे अमीर मंत्री हैं। रमा निषाद
पुणे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पुण्या भूषण अवार्ड सेरेमनी में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए। एमपी के इंदौर में मालवा उत्सव 2026 की धूम में सीएम मोहन यादव ने उत्सव में शिरकत की। लोक संस्कृति मंच से उत्सव का आयोजन। हरिद्वार कुंभ मेले के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जारी किया 256 करोड़ रुपए के बजट को। आधारभूत ढांचे के साथ तमाम परियोजनाओं पर काम जारी। यूपी पुलिस ने किया दूसरा ऑल इंडिया पुलिस बैडमिंटन और टेनिस क्लस्टर 2025-26 का आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ उपस्थित थे। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चार धाम यात्रा, बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे दर्शन। दिल्ली में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट, सूत्रों के मुताबिक आतंकवादी आईडी का इस्तेमाल करके शहर को अहम ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। दिल्ली में डीडीयू मार्ग पर बीजेपी दफ्तर के बाहर बढ़ा दी गई सुरक्षा, कई जगहों पर पुलिस की गश्त। इंडियन कोस्ट गार्ड के बेड़े में शामिल हुआ है स्वदेशी युद्धपोत अचल, अत्याधुनिक तोपों से लैस मॉडर्न वॉरशिप की 27 नॉटिकल मीट प्रति घंटे रफ्तार। प्रयागराज में यश श्रीवास्तव का कमाल भारतीय सेना के लिए तैयार कर रहे स्वदेशी लड़ाकू वाहन। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एनएस राजा सुब्रमणि होंगे देश के नए सीडीएस, मौजूदा सीडीएस अनिल चौहान की जगह लेंगे। संभाजी नगर में निदा खान की मदद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग, शिवसेना कार्यकर्ताओं ने डीसीपी को ज्ञापन सौंपा। धर्मांतरण के मामले में नासिक में निदा खान की मां और परिवार वालों से पूछताछ, बाद में पुलिस कमिश्नर के दफ्तर से बाहर निकले। शिवपुरी में प्रेमिका और बेटी की फिल्मी अंदाज में अपहरण की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, पुलिस ने 11 लोगों पर मामला दर्ज करवाया। बठिंडा में रोड रोलर से पिता और बेटी की कुचलने की तस्वीरें सामने आई, पिता की मौत हुई, अस्पताल में बेटी का इलाज जारी। जामनगर में सात रास्ता से जनता फाटक जाने वाले मार्ग पर ट्रिपल एक्सीडेंट की घटना सामने आई, कार ने ई बाइक को टक्कर मारी थी। ग्रेटर नोएडा के निर्माणाधीन हॉस्टल में दो मालियों की हत्या करने के आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया, घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती। बिहार के सहरसा में पुलिस ने चलाया ऑपरेशन मुस्कान, 8वें फेज में 73 मोबाइल धारकों को सौंपे गए मोबाइल, अब तक 71 लाख रूपये के खो गए मोबाइल बरामद किए गए। खगड़िया में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान बवाल हिंसक झड़प में पुलिसकर्मी समेत दो घायल हुए। मुजफ्फरनगर में भाई ने भाई की हत्या कर डाली, छोटे भाई की बीवी पर गलत नजर डालने की वजह से बड़े भाई की हत्या की गई। झांसी में शादी के 3 महीने के बाद उजड़ गया सुहाग, ब्लिंकिट में डिलीवरी बॉय का काम करने वाले युवक जितेंद्र प्रजापति की सड़क हादसे में मौत हुई। बिजनौर में डीएम के आदेश पर 22 साल के युवक का शव कब्र से निकलवाया गया, 2 महीने पहले संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की मौत हुई थी। झांसी में बुंदेली लोकगीत गायिका लाड कुंवर की बेरहमी से हत्या करने के बाद उनके शव को जलाया गया, जंगल में जली हुई लाश मिली, इलाके में सनसनी। सोनीपत में भूसे की बोरियों में छुपाकर हो रही थी शराब की तस्करी, ट्रॉले से 1000 से ज्यादा शराब की बॉटल्स को बरामद किया गया। ओडिशा के गंजम में बस और ट्रक की टक्कर हुई, एक शख्स की मौत हुई, करीब 15 लोग घायल हुए। सूरत पुलिस कंट्रोल रूम को मिली एक कॉल ने खोला था अंतर्राज्यीय मोबाइल चोर गिरोह का राज, 110 मोबाइल फोन बरामद। गुजरात टाइटंस ने आईपीएल में लगातार चौथी जीत दर्ज करके राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हराया, शानदार फॉर्म जारी रखी। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट पर 229 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने 63.3 ओवर में 152 रन पर ऑल आउट, कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक नहीं लगा पाया। राजस्थान की ओर से रविंद्र जडेजा 38 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे, वैभव सूर्यवंशी ने 36 रन की तेज पारी खेली। गेंदबाजी में गुजरात के राशिद खान ने 4 विकेट लेकर मैच पलट दिया था, जैसन होल्डर ने 3 और कगिसो रवाडा ने 2 विकेट झटके। साउथ सुपरस्टार मोहनलाल की मोस्ट अवेटेड फिल्म दृश्यम 3 का धमाकेदार ट्रेलर जारी किया गया, फिल्म ने प्री सेल्स में रिकॉर्ड कमाई की है। हॉलीवुड में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं एक्ट्रेस दिशा पाटनी, एक्शन से भरपूर फिल्म द पोर्टल ऑफ फोर्स का ट्रेलर लॉन्च। उत्तराखंड की वादियों में पहुंचे एक्टर डांसर राघव जुयाल पहाड़ों की ठंडी हवाओं का ले रहे हैं आनंद।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

26 दिन रविवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, दोपहर 3:06 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, दोपहर 12:12 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।

धन लाभ के योग बन रहे हैं, धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं हल होंगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग भी बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी।

चिंता हो सकती है, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। कर्क राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन का लाभ होगा, सर्दी जुकाम से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।

गलती होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कन्या राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। लाभकारी यात्रा के योग हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन के खर्चों पर ध्यान रखें। दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। परिवार में विवादों से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज

धनु राशि, काम में सफलता मिलेगी, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। मकर राशि, करियर में सफलता मिलेगी, मानसिक समस्या हल होगी, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम का बोझ बढ़ा रहेगा, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

आइएगा। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
3: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
4: लायन डेट नट बाइट्स।
5: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है। खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
6: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें।
7: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
8: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
9: आज तक के खबरदार करते ही सरकार का एक्शन।
10: आज तक की खबर के बाद काउंसिल ने भरोसा दिया है कि मार्च के आखिर तक लंबित प्राइज मनी दे दी जाएगी।
11: एक दो दिन में ही उनके नियुक्ति पत्र भी जारी हो जाएंगे।
10: ये सब कुछ तब हो पाया जब आज तक ने राजस्थान के खेल विभाग को जगाया।
12: अच्छी खबर चली हमारी, अच्छा हुआ सर।
9: जहां खबर वहां खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
13: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
14: आमी शुभेंदु अधिकारी।
15: पश्चिम बंगाल जहां 34 साल तक लेफ्ट का राज रहा, फिर 3 टर्म तक ममता बनर्जी सीएम रही, लेकिन अब वहां पहली बार बीजेपी सरकार बन गई है। शुभेंदु अधिकारी ने सीएम पद की शपथ ली और इसी के साथ बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो गया। इस खास मौके पर बंगाल की जनता का पीएम ने साष्टांग दंडवत किया। वहीं 98 साल के बीजेपी कार्यकर्ता माखनलाल सरकार के करीब गए, शॉल ओढ़ाया, गले लगे और पैर छूकर आशीर्वाद लिया। राजनीति में कुछ तस्वीरें चुनाव से बड़ी हो जाती है। बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए की एकता या यूं कहें कि शक्ति परीक्षण भी देखने को मिला। एक मंच पर एनडीए के नेता मौजूद रहे। पीएम मोदी सभी के पास गए, एक एक करके मुलाकात की, नमस्कार किया और बातें की। यहाँ जब सब साथ साथ हैं, वहीं इंडिया गठबंधन बिखरा हुआ है। इंडिया गठबंधन की सबसे अहम पार्टी के नेता राहुल गांधी ताल ठोक कर बता रहे हैं कि और कोई पार्टी बीजेपी को हरा नहीं सकती।
16: आप देख लेना, बाकी सारी की सारी पार्टियां इनके सामने नहीं खड़ी हो पाएंगी, एक नहीं हो पाएगी और अंत में सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी और कांग्रेस पार्टी इनको हराएगी। आप याद रखो मैं क्या कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को कांग्रेस पार्टी हराएगी, बीजेपी को कांग्रेस पार्टी हराएगी।
15: यानी राहुल का बयान सिर्फ बीजेपी और पीएम मोदी के लिए नहीं है बल्कि अपने सहयोगियों के लिए भी है। वैसे सहयोगी के नाम पर ना तो नीति दिखती है ना ही नीयत। बंगाल चुनाव इसका जीता जागता उदाहरण है, जहां ममता का मुकाबला बीजेपी के साथ साथ इंडिया गठबंधन के अपने सहयोगियों से भी था। बंगाल चुनाव में टीएमसी बनाम कांग्रेस बनाम लेफ्ट ही मैदान में एक दूसरे के खिलाफ आग उगल रहे थे। ये कोई पहला एपिसोड नहीं है जब इंडिया गठबंधन के साथी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में ताल ठोकते दिखे। पंजाब और हरियाणा भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। पंजाब और हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में थे, यानी दिल्ली में दोस्ती लेकिन राज्यों में सीधी लड़ाई। फिर सवाल उठता है कि अगर सहयोगी दल ही एक दूसरे को हराने में जुटे हों तो जनता किसे असली विकल्प माने। यूपीए 1 और यूपीए 2 के दामन से बाहर निकलने के लिए इंडिया गठबंधन की नींव रखी गई। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि नीतीश की पार्टी आज बीजेपी के साथ बिहार और केंद्र में सरकार चला रही है। राजनीति सिर्फ अंकगणित नहीं होती, केमिस्ट्री भी चाहिए और फिलहाल एनडीए में वही केमिस्ट्री दिखाई देती है जबकि इंडिया गठबंधन में सियासी केमिकल लोचा है। इंडिया गठबंधन में हर राज्य की राजनीति अलग, हर नेता की महत्वाकांक्षा अलग, हर दल की प्राथमिकता अलग। किसी भी गठबंधन को बाहर का विरोध नहीं तोड़ता, अंदर का अविश्वास तोड़ता है और यही सवाल अब इंडिया गठबंधन के सामने खड़ा है। फिलहाल तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए का परचम बुलंद है। भारत के करीब 75% हिस्से में बीजेपी और एनडीए की सरकार है लेकिन लोकतंत्र में राजनीति स्थायी नहीं होती। आज एनडीए मजबूत है तो कल विपक्ष नए रूप में लौट भी सकता है। क्योंकि भारत की राजनीति में शून्य कभी स्थायी नहीं रहता। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

शपथ लेंगे थलपति राहुल गांधी समेत कई खास मेहमानों को न्योता। दोपहर 3 बजे योगी मंत्रिमंडल का विस्तार, 6 मंत्री ले सकते हैं शपथ, जातीय समीकरण साधने की कोशिश। केरलम में नए मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस में मंथन, दिल्ली में बैठकों का दौर, अभी तक नहीं तय हो पाया है सीएम का नाम। बंगाल का मुख्यमंत्री बनते ही शुभेंदु अधिकारी का दावा, डर का माहौल खत्म करेंगे, सोमवार को मंत्रालय का होगा बंटवारा, ममता का विपक्षी एकता पर जोर। और जहाजों पर हमले से अमेरिका ईरान में बड़ी तनातनी, तेहरान ने कहा मुंह तोड़ जवाब देंगे।

शकील, तमिलनाडु की राजनीति में नया सवेरा हुआ है, नया बदलाव हुआ है, नया इतिहास है। 60 साल बाद गैर द्रविड़ पार्टी की आज सरकार बनने वाली है। विजय अध्याय का शुरुआत होने वाला है। स्टार पावर माने जाने वाले थलापति विजय आज सियासत के एक नया अध्याय लिखने वाले हैं। 10 बजे उनका शपथ ग्रहण समारोह है, जो लगभग यहाँ अभी से एक घंटे बाद वो सारी तस्वीरें आने लगेंगी जब उनका शपथ होगा। डीएमके और एआईएडीएमके की चली आ रही सालों की सियासत को किनारा कर तमिलनाडु में थलापति राज आज से शुरू होगा। विजय की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है इस चुनाव में। बहुमत का नंबर से थोड़ी दूर है, लेकिन 6 दिनों में मशक्कत करके उन्होंने आंकड़े जुड़ा दिए हैं और 6 दिनों के बाद आज 10 बजे थलापति विजय शपथ लेंगे। अब तमिलनाडु में नई ब्यार है, नई सरकार का आगाज है और अब मंत्रियों के नाम भी सामने आ गए हैं। विजय समेत कुल 10 मंत्री शपथ लेंगे, जिसमें विजय मुख्यमंत्री के तौर पर, उनके नाम और मंत्री के नाम भी आ गए हैं। एन आनंदा हैं, आदव अर्जुन जो उनके मैन फ्राइडे या जो सबसे करीबी माने जाते हैं, जो जिन्होंने पूरी डिस्कशन किया है और अलायंस में मदद की है, आदव अर्जुन का नाम है जो नंबर 2 पर उनके बाद शपथ लेंगे। उसके अलावा केजी अरुण राज का नाम है जो उनके साथ रहते थे। निर्मल कुमार का भी नाम है जो आरएसएस से आए हैं। सिंगोटियन का नाम है जो लॉन्गेस्ट सर्विंग एमएलए हैं तमिलनाडु असेंबली के, उनका भी नाम है। उसके अलावा थिरु राजमोहन का नाम है और सेल्वी एस कीर्तना जो यंगेस्ट एमएलए हैं इस असेंबली की, उनका भी नाम है। तो थलापति विजय के साथ 8 और नाम हैं जो शपथ लेंगे, तो टोटल 9 लोग शपथ आज लेंगे। और ये शपथ समारोह हो रहा है नेहरू इंडोर स्टेडियम में, जिसकी कैपेसिटी लगभग 8,000 लोगों की है। और वहीं पर राहुल गांधी समेत कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहेंगे और 6 दिन तक उनको मशक्कत करना पड़ा। और ये तस्वीरें आ रही हैं, सीधा देखते हैं, कई सुपरस्टार्स वहां पर आने लगे।

0: और उन्होंने अभी कुछ ही देर पहले एक साउंड बाइट भी दी है ये बोलते हुए कि उनकी सहयोगी और मित्र हैं त्रिशा, उनकी भी तस्वीर आ रही है। त्रिशा की तस्वीर आई है जो वहां पर शपथ समारोह में भी मौजूद है।
1: सी जोसेफ विजय

जो 60 साल में नहीं हुआ था तमिलनाडु में, वो अब हुआ है। राज्य की राजनीति में पहली बार गैर द्रविड़ सियासी दल ने ऐसे धमाकेदार तरीके से एंट्री ली है और अब सत्ता संभालने की बारी है। सियासत में एक्टर सी जोसेफ विजय की ये सुपरहिट फिल्म है। महज 2 साल पहले की बात है, 2024 में ही विजय ने तमिलागा वेत्री कजगम यानी टीवीके का गठन किया था और महज 2 साल के अंतराल में वो सत्ता संभालने जा रहे हैं। इतने कम समय में विजय ने जो कर दिखाया है वो भारतीय लोकतंत्र में एक मिसाल है। करिश्माई नेतृत्व ने विजय को तमिलनाडु की सियासत का महानायक बना दिया है।

0: संयोग देखिए कि विजय ने अपनी आखिरी फिल्म जननायक की है और अब वो तमिलनाडु के जननायक बन चुके हैं। हरपति अब रियल लाइफ से हटकर रियल लाइफ में अहम रोल में है। ये नायक 108 सीटें जीतकर महानायक के रूप में उभरा है और यही कामयाबी उन्हें सत्ता तक पहुंचा चुकी है। अब चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में विजय शपथ लेने वाले हैं। उन्हें सरकार बनाने के लिए 118 के जादुई आंकड़ों की जरूरत थी। नतीजों के बाद राज्यपाल ने उन्हें बहुमत का आंकड़ा जुटाने को कह दिया था। कई दिन तक चले सस्पेंस के बाद आखिरकार 5 विधायकों वाली कांग्रेस VCK के 2, IUML के 2, CPI और CPM के 2-2 विधायकों ने विजय को समर्थन देने का फैसला किया और सत्ता का सस्पेंस खत्म हो गया। एक दिन पहले ही विजय ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा किया। इसके साथ ही वो घड़ी आ गई है जब विजय तमिलनाडु की उम्मीदों को पूरा करने की ओर कदम बढ़ाएंगे। विजय के समर्थकों में उत्साह है, परिजन भी खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे। पिता SA चंद्रशेखर ने विजय को लक्ष्य की याद भी दिला दी है।
1: Tamil people has succeeded.
0: CM के रूप में विजय शपथ लेने वाले हैं। माना जा रहा है कि उनके साथ साथ 9 मंत्री भी शपथ लेंगे। खबरों के मुताबिक कांग्रेस से कोई नेता मंत्री पद की शपथ नहीं लेगा। दिल्ली से राहुल गौतम के साथ नागार्जुन, चेन्नई आज तक।
2: आज 10 मई 10 बजे एक नए राजनीति का आगाज होगा। इंडोर स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम चेन्नई में तलपति विजय शपथ लेंगे। और सीधा चलते हैं चेन्नई, जहां इंडोर स्टेडियम से जुड़ गई हैं हमारे साथ अनघा। अनघा, 8,000 की कैपेसिटी है इंडोर स्टेडियम की। पहले वॉलीबॉल, फुटबॉल ये सब मैचेस हुए हैं, अभी यहां पर एक हिस्ट्री दिखा जाएगा। कौन कौन वहां पर मौजूद हैं अभी?
3: जी, वहाँ अभी ऑल टॉप लीडरशिप यहाँ मौजूद है। आदव अर्जुना है, सेंगोटियन है, इनफैक्ट सेंगोटियन सुबह 6 बजे ही आ गए हैं। बुस्सी आनंद, निर्मल कुमार, अरुण राज, TK बाबू, द यंगेस्ट मिनिस्टर कीर्तना, ये सब टॉप लीडरशिप आए हुए हैं। और राहुल गांधी भी ऑन द वे हैं, और विजय की पेरेंट्स चंद्रशेखर एंड शोभा दोनों, और विजय की फुल फैमिली सब है यहाँ विजय की हिस्टोरिक ओथ टेकिंग सेरेमनी को विटनेस करने के लिए। आज बहुत बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज पहली बार द्रविड़ियन पार्टीज के अलावा एक नया पार्टी, जो 2-year-old पार्टी है, 2-3
2: आसपास घूमकर

0: वो भी शपथ लेंगी। उसके साथ यंगेस्ट वुमेन एमएलए जो एक ही महिला है कैबिनेट में, जो 19 साल की शिवकासी कॉन्स्टिट्यूएंसी से है, वो कीर्तना है। वो काफी सारी लैंग्वेज भी बात कर सकते, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, तमिल। तो अकेली एक महिला है जो आज शपथ लेगी। और जो जो कोर टीम है विजय की, आदव अर्जुना शायद स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री मिलेगा, क्योंकि इज ऑलरेडी बास्केटबॉल इंडिया का जो अध्यक्ष है वो उस स्थान पे है। और बस्सी आनंद जो उनके डेप्यूटी है और पिछले विधायक, पहले विधायक भी रह चुके हैं जो पॉन्डिचेरी में, अब इस बार तमिलनाडु और चेन्नई में टी नगर से वो चुन के आए हैं विधायक। और सीटीआर निर्मल कुमार जो बीजेपी में थे पहले और एडीएम के ज्वाइन हुए, फिर इस बार टीवीके के साथ इलेक्शन लड़े। और त्रिपुरम कुंड्रम जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, जो कंट्रोवर्शियल कॉन्स्टिट्यूएंसी था, जो दीपम जो लगाने की जो बात हो रही थी बीजेपी के तौर से, तो उन उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी वो जीत के इस बार वो भी शपथ ले रहा है। और हमें जानकारी है कि कांग्रेस का भी एक विधायक जो शपथ लेंगे, बट आज नहीं, जो वो शायद फ्लोर टेस्ट के बाद होगा। एक जो पोर्टफोलियो कांग्रेस को नेगोशिएट करके जो दी है उनका एक शपथ होगा बाद में, बट आज सिर्फ टीवी के
1: लेकिन नाथ,
0: 9 लोग।
1: अगर हाँ तो ये जो सारे 8 नाम और हैं विजय के अलावा, सब टीवीके के हैं, कोई भी सहयोगी दल का नाम नहीं है।
0: जी बिल्कुल, आज सिर्फ टीवीके का विधायक का शपथ है, कोई सहयोगी सहयोगी दल का कोई आज शपथ नहीं ले रहा है। वीसी के, आईयूएम, लेफ्ट, तीनों का तीनों उनके लेटर में जो थे अनकंडीशनल सपोर्ट, उनके जो नेगोशिएशंस भी नहीं थे कि हमें कैबिनेट या पोर्टफोलियो चाहिए। सिर्फ कांग्रेस का ये कहना है कि हमें दो चाहिए, बट वो नेगोशिएशन अभी भी जारी है। इस फ्लोर टेस्ट के बाद विजय जो मुख्यमंत्री बनेंगे वो अलायंस पार्टी के साथ बातचीत करेंगे, फिर पोर्टफोलियो के डिस्कशन करेंगे। विजय वीसी के और आईयूएमएल और लेफ्ट को भी एक चांस देने वाले है कि आपको भी एक पोर्टफोलियो चाहिए तो आप नेगोशिएट कर सकते हैं, क्योंकि आखिर तौर पर तो फोर्थ टाइम जो सक्सेसफुल रहा राज जाके, इट्स बिकॉज ऑफ द आईयूएमएल एंड वीसीके। सो इसकी वजह से
1: जी
0: शायद विजय एक एक्सटेंड भी कर सकते हैं कि आपको पोर्टफोलियो चाहिए तो हम दे सकते हैं।
1: जी तो लेकिन वो सब सब तय होगा अब फ्लो टेस्ट के बाद, जो फ्लो टेस्ट है 13 तारीख को। आशुतोष, 6 दिन का इंतजार और फाइनली तलपति विजय आज ओथ लेंगे। 4 बार उन्होंने राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की। आशुतोष, पॉलिटिक्स अगर जनता का सपोर्ट है तो पॉलिटिक्स का मतलब ये भी तो है कि प्रोटोकॉल और प्रोसेसेस भी जरूरी है, और शायद विजय को ये समझने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने समझा तो पूरा डेलीगेशन सबके रिप्रेजेंटेशन के साथ पहुंच गए कि ये हमारे साथ स्टेट प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के, और उसके साथ साथ सब पार्टी के आईयूएमएल, वीसीके, सीपीआई, सीपीआईएम, सबके एक एक चेहरे और रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे।
2: देखिए मारिया, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि दरअसल विजय गलत थे, क्योंकि इस देश के अंदर गवर्नेंस ने तमाम तरीके के ऐसे काम किए जिसकी वजह से उनकी तीखी आलोचना हुई है। और अक्सर ये देखने में आया है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है तो गवर्नर्स ऐसे लोगों को भी मुख्यमंत्री बनने के लिए बुला लेते हैं जिनके पास बहुमत नहीं होता है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का एक फॉर्मूला था। मैं उन लोगों में से हूं जिसे लगता है कि राजेंद्र आर्लेकर ने कुछ भी गलत नहीं किया, क्योंकि उन्होंने ये इंश्योर करने की कोशिश की कि जिसको भी हम मुख्यमंत्री बनाने के लिए बुला रहे हैं क्या उनके पास बहुमत है, बहुमत नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरीके की बात है जब 1998 में अटल, जब एक तरीके से त्रिशंकु लोकसभा हुई थी और उस वक्त के आर नारायणन देश के राष्ट्रपति थे, अटल बिहारी वाजपेयी उनके पास गए, उन्होंने स्टेक क्लेम किया। उन्होंने कहा भाई देखिए, 1996 में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, आप प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन 13 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर थे, लिहाजा केंद्र के अंदर किसी तरीके की इंस्टेबिलिटी ना हो, ऐसे में आप हमें बहुमत का समर्थन दिखाइए। और जब अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुमत का समर्थन दिया तब जाके उनकी सरकार बनी, और उससे एक चीज इंश्योर हो गई कि कम से कम इंस्टेबिलिटी नहीं होगी। तो अगर अगर आरलेकर ने ये काम किया है तो मुझे उसमें कोई गलत नहीं लगता है, लेकिन बट मेरा कैवियट ये है, क्या बाकी के गवर्नर्स भी इसी तरीके से जब भी, जब कभी भी त्रिशंकु विधानसभा होगी तो वो बहुमत के समर्थन की बात करेंगे, या केंद्र के इशारे पे सुबह 5:30 बजे देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की ओथ दिला देंगे और वो पूछने की भी जहमत नहीं उठाएंगे कि दरअसल उनके पास समर्थन है या समर्थन नहीं है, और 80 घंटे के अंदर वो सरकार गिर जाएगी।
1: आशुतोष,
2: या उसी
1: तस्वीरें
2: तरीके
1: आ रही हैं कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, मंत्री होंगे, वो किस चेयर पर बैठेंगे। देखिए, उन सबका नाम, उनकी पट्टियां लग गई हैं। एन आनंद, आदव अर्जुन, सिंगोटियन, जो बहुत ही, जो ये माना जा रहा था नागार्जुन के शायद वो प्रोटेम स्पीकर हों, उनका नाम भी वहां पर है। देखिए, सारी तस्वीरें लग गई हैं, सबके नाम है वहां पर। वेंकट रमन, फिर निर्मल कुमार, थिरू राजमोहन है, वो भी शपथ लेंगे।

0: और जो यंगेस्ट एमएलए हैं सेल्वी कीर्तना, वो भी वहां पर शपथ लेंगी। सबके नाम तैयार हैं, कुर्सियां तैयार हैं, बस लोगों का इंतजार है कि उसी उन्हीं कुर्सियों पर बैठेंगे जो शपथ लेंगे मंत्री। मैं फिर से वापस आऊंगी आपके पास। 13 तारीख को है फ्लोर टेस्ट, 3 दिन का वक्त है बस नागार्जुन। जो नंबर्स हैं वो उनके पास है, लेकिन ये भी जरूरी है कि तलपति उस दिन 13 तारीख को नंबर टेस्ट पास करें और जो उनका सहयोगी दल है उनके साथ उनके फेवर में वोट करें।
1: जी बिल्कुल, 13 तारीख को ऑल आईज ऑन द फ्लोर टेस्ट, ताकि जो 108 इनके जो विधायक है और वीसी के आईयूएमएल और जो लेफ्ट पार्टी जो समर्थन दिए है, फ्लोर टेस्ट 13 तारीख को होगा, बट मोस्ट प्रॉब्ली ये पास भी करेंगे, ताकि स्टालिन ने भी एक ट्वीट भी किए कि दैट हम पूरी कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो जाए, हम इसको रोकने नहीं वाले हैं, और कंग्रेचुलेट भी किए। तो ऑपोजिशन भी कोशिश यही है कि विजय को एक टेस्ट दी जाए कि अगले 5 साल में क्या कर सकते ये लोग।
0: और एक पलनी स्वामी ने भी किया, उन्होंने तो वीसीके के सपोर्ट अनाउंसमेंट से पहले ही ट्वीट कर दिया ये कहते हुए कि जिसकी भी सरकार बनने जा रही है पूरा समर्थन करेगी एडीएम के।
1: जी कल एक स्टेटमेंट और उनका ट्वीट भी आया कि जो विधायक है उनको कंग्रेचुलेट किए एडीएमके के, और जिस सरकार बनने वाली उनको भी कंग्रेचुलेट किया। लास्ट तकरीबन 48 आवर्स तक, घंटों तक, जो डाउट था क्या स्टालिन और एआईडीएम के जो ईपीएस वाले फैक्शन थे वो क्या एक साथ आके वीसीके को डिप्टी सीएम या सीएम बना सकते, वो
0: ऑप्शन भी है। राहुल गांधी की पहुंच गए हैं चेन्नई जहां पर शपथ समारोह होगा। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने छोटी पार्टियों से बातचीत की थी, यही बता रहे हैं हमारे सोर्सेज, और ये माना जा रहा था कि राहुल गांधी ने डायरेक्टली टीवीके के अध्यक्ष विजय से बात करके उनको अश्योरेंस दिया था उन्होंने कि वो कोशिश करेंगे नंबर जुटाने की। जी जी बोलिए नागार्जुन।
1: जी बिल्कुल, इनफैक्ट खड़गे और राहुल गांधी की इसमें बड़ी अहमियत है और बड़ी कोशिश रही है कि वो जो वीसीके पार्टी और आईयूएमएल और लेफ्ट पार्टी से खुद फोन पे बात की। इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद रीच आउट किया, जो वीसीके पार्टी है, जो स्मॉलर पार्टी से, लेफ्ट पार्टी से फोन उठा के उन्हें खुद बात किया कि मैं अध्यक्ष तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या आप हमारे समर्थन करेंगे। जो एक कैटलिस्ट हुआ वो खड़गे की फोन कॉल थे, वही बता रहे जा रहे कि जो सेकंड लाइन लीडरशिप जो थे टीवी के में वो रीच आउट कर रहे थे अब तक, बट जब मल्लिकार्जुन खड़गे खुद एक प्रेसिडेंट तौर पे उन्होंने कॉल किया वीसी
0: के, राहुल गांधी को रिसीव कर रहे हैं प्रवीण चक्रवर्ती, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत कोशिश की थी शुरू से ही कि टीवीके का समर्थन कर दे कांग्रेस पार्टी, ये पीपल अलायंस हो नहीं पाया, और उसके बाद हमने देखा कि टीवीके अलग से उसने चुनाव लड़ा। लेकिन अगर इसकी चर्चा करते हैं आशुतोष, हम क्योंकि ये पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट है और तमिलनाडु की जो 60 इयर्स का जो द्रविडियन पार्टी इसका डुओपोली था वो टूटा है इस बार चुनाव में, तो अगर कोई किसी के साथ भी प्रीपोल अलायंस होता तो आपको लगता है ये रिजल्ट होता या इससे बेहतर होता, क्योंकि एक पॉलिटिक्स ऑफ रिजेक्शन भी हुआ है, इसीलिए पॉलिटिक्स ऑफ सिलेक्शन हुआ है विजय का।
2: नहीं, मारिया बिल्कुल आपने सही कहा, मुझे लगता है कि विजय की सबसे बड़ा टेस्ट ये होगा कि वो जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज है, जो कन्वेंशनल पॉलिटिकल पार्टीज है जिन्होंने लगातार आजादी के बाद से तमिलनाडु के ऊपर शासन किया, उनसे अलग अपने आप को दिखाएं। अगर वो भी उन्हीं की तरीके से होंगे या उन्हीं की तरीके से बिहेव करना शुरू कर देंगे तो उनकी भी राजनीति लंबे समय तक चल नहीं पाएगी। मैं आपको इसलिए भी ये कह सकता हूं क्योंकि जो दिल्ली के अंदर जो एक्सपेरिमेंट था आम आदमी पार्टी को, वो एक्सपेरिमेंट क्यों लंबा नहीं चल पा रहा है, क्योंकि वो भी दूसरी राजनीतिक पार्टियों की तरीके से बिहेव करने लगे। ऐसे में विजय को जो तमिलनाडु के लोगों की उम्मीदें हैं, आकांक्षाएं हैं, उस पर उतरने के लिए उन्हें डेवलपमेंट का, पॉलिटिक्स का एक नया मॉडल पेश करना पड़ेगा। वो डीएमके मॉडल पे या एआईडीएमके मॉडल पे चलते हुए नहीं दिखाई पड़ सकते, अगर करेंगे तो उनकी राजनीति बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि उनको ना तो डीएमके का किसी तरीके समर्थन लेने की जरूरत है, ना एआईडीएमके के समर्थन लेने की जरूरत है, बल्कि उन्हें जनता की अदालत में साफ तौर पर कहना चाहिए अगर आपने मुझे मैंडेट दिया है तो फिर मुझे ये आधा अधूरा मैंडेट देने से काम नहीं चलेगा। और इसलिए मैंने कहा कि 13 तारीख को अगर उनको समर्थन, अगर वो सरकार उनकी चल जाती है या उनको बहुमत हासिल हो जाता तो बहुत अच्छा, अगर नहीं भी मिले तो भी उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जिस पॉलिटिक्स पर वो आए हैं उसमें इस बार लोगों ने इसलिए पूरा समर्थन नहीं दिया क्योंकि शायद उनको यकीन ना हो कि वो अपने बल पर सरकार बना सकते हैं। लेकिन
0: जी
2: जैसे ही लोगों को अब यकीन हो गया कि विजय अपने बल पर सरकार बना सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो अगली बार जब भी चुनाव होगा आप देखिएगा कि उनको मैसिव मैंडेट मिलेगा।
0: चलिए
2: यही
0: अपूर्वा के
2: गलती
0: पास चलते हैं। अपूर्वा चेन्नई के नेहरू स्टेडियम के बाहर हैं। चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में ये शपथ समारोह होने वाला है। थोड़ी ही देर में थलपति विजय वहां पर आने वाले हैं। आज आने से पहले वहां के जो डीआईजी थे, चेन्नई के जो डीआईजी थे, उन्होंने जाकर उनको पूरा प्रोटोकॉल समझाया कि किस तरह का क्या क्या होने वाला है कुछ ही घंटों में। अपूर्वा दिखाइए हमें क्या क्या क्या हो रहा है। 8,000 की क्षमता है नेहरू इंडोर स्टेडियम की, लेकिन बाहर लगभग माना जाता है 40,000 से ज्यादा लोग वहां पे जुड़ चुके हैं।
3: जी महाराज, जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे कई सारे जो लोग यहाँ पे हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं, और मेरे कैमरामैन को भी मैं पैन करने के लिए बोलूंगी। बाहर हर जो लोग यहाँ पे हैं, टीवीके के फैंस यहाँ पे आ चुके हैं, टीवीके के कैडर्स यहाँ पे आ चुके हैं, सब जो तैयारियां हो रही है उसको उसके कारण के लिए भी। हर एक स्ट्रीट को भी आप देखेंगे तो पुलिस एक तरफ तो बैरिकेड कर रहे हैं, सारे जो फैंस आ रहे हैं उनको बाहर आने से, और जिनके पास भी से खाली उड़ी को अलाउ कर रहे हैं। पर दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कई सारी फैंस यहाँ पे आ चुके हैं। सुबह 6 बजे से लेके यहाँ पे ये लोग आए हैं ये चांसेस में कि क्या शायद वो विजय को अभी देख सकते हैं। अभी कुछ ही देर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्वेयरिंग इन सेरेमनी भी होगा चीफ मिनिस्टर डेसिग्नेट विजय के लिए भी। पर ये जो बंदोबस्त यहाँ पे मैं आपको दिखाई दे रही हूँ, ये सारी बंदोबस्त इसीलिए है कि यानी कि जो लोग जो भीड़ यहाँ पे आई है विजय को देखने के लिए, उनको कुछ ना कुछ नहीं हो जाए, कुछ कुछ भी अनबन या ऐसे कुछ पॉसिबल इंसिडेंट ऐसे कुछ नहीं हो जाए, इसी के कारण कई सारे पुलिस भी यहाँ पे डिप्लॉयमेंट की गई है। ना कि सिर्फ यहाँ पे, पर कई सारे गेट्स यहाँ नेहरू स्टेडियम में लगभग 4 गेट से अधिक है, और इस पूरी 4 गेट के बाहर भी ऐसे ही पुलिस डिप्लॉयमेंट की गई है ताकि जो भी लोग यहाँ पे आए हैं, जो भी टीवीके के कैडर्स विजय के फैंस यहाँ पे आए हैं, उनको एक सेफ्टी के लिए, उनको एक एक तरफ अंदर सुरक्षित लेके जाने के लिए सारी की सारी तैयारियां यहाँ पे कर चुके हैं मारिया।
0: तो हर जगह पुलिस का डिप्लॉयमेंट है। चलिए सगाई हमारे साथ जुड़ गए हैं, अब विजय के घर के बाहर हैं। तो सगाई उनका पूरे परिवार पहुंच चुका है अब स्टेडियम के अंदर। क्या तलपति विजय को अभी निकलने में वक्त है, और उनके घर से नेहरू स्टेडियम का डिस्टेंस कितना है, कितना मिनट लगेगा उनको पहुंचने में?
4: विजय ऑलरेडी निकल चुके हैं घर से और वो तकरीबन 10 बजे वहाँ पे पहुँचेंगे। वो रास्ते में उनके माता पिता के घर जाने वाले थे, वहाँ नहीं गए मगर मेमोरियल गए थे, पेरियार के मेमोरियल, और उसके बाद नेहरू स्टेडियम आने वाले हैं। और आप देख सकते हैं उसके उनके साथ भी 8 लोग के मंत्री भी कल शपथ ले सकते हैं। काली आज जोसेफ सी विजय वहाँ पर शपथ लेने वाले हैं, और हमारा सूत्रों के अनुसार तकरीबन 10 बजे विजय वहां पे पहुंचेंगे। और ऑपोजिशन पार्टी लीडर राहुल गांधी ऑलरेडी एयरपोर्ट में आ चुके हैं, वो भी नेहरू स्टेडियम पहुंचेंगे।
0: तो ये जो तस्वीरें आ रही हैं, एक मैं चलूंगी अब नागार्जुन के पास। नागार्जुन, यूजुअली हम लोगों ने देखा है तलपति विजय को ब्राउन पैंट और व्हाइट शर्ट में, आज वो काले पैंट में दिख रहे हैं। तो क्या उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है एक नया रोल के चुनाव लड़ना एक नए लुक में, जब चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं तो एक नया लुक उनको दिखाना होगा?
1: जी बिल्कुल, जैसे आशुतोष जी भी कह रहे थे कि जो 60 साल की ड्रेविडियन पॉलिटिक्स से उनका नॉट जस्ट आइडियोलॉजी ताकि ड्रेस कोड भी चेंज हो चुका है। इस बार पहली बार जो फॉर्मल्स पहन के मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं तमिलनाडु में, यूजुअली वो वेष्टी पहनते या शर्ट पहनते, जो मुंडू कहते केरला में, वेष्टी जो तमिलनाडु में कहते वो पहन के शपथ लेते हैं। आप स्टालिन को भी देखेंगे या ईपीएस को भी देखिए या एमजीआर को भी देखिए, वो सारे के सारे मुख्यमंत्री वेष्टी में थे। ये जो पहली बार ऐसे हो रही है कि एक जो फॉर्मल लुक में मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले हैं, जो विजय जो कैंपेन के तौर पे उनका ब्राउन पैंट व्हाइट शर्ट एक सिग्नेचर ड्रेस कोड था, वो बदल के इस बार ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट पहने हुए है। डीजीपी और जो कमिश्नर उनको रिसीव किया, सेंगोटियन आदव अर्जुन रिसीव किया, विजुअल्स देख सकते हैं हम, 9-time MLA गोपी चेट्टी पालियम से सेंगोटियन और आदव अर्जुन के जो मैन फ्राइडे है वो भी रिसीव किए। पहली बार इनका इनकी भी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पे, क्या क्यों तलपति विजय ने काला पैंट और जो सफेद शर्ट पहने हैं, इसका मतलब क्या है, क्या इसको डाइसेक्ट और डिसेफर कर सकते हैं, बट जो फॉर्मल लुक में बहुत अच्छे भी दिख रहे हैं।
0: हर उनके मूव को आप डाइसेक्ट और डिकोड करने की कोशिश होगी। आशुतोष, ये जो नया लुक है वो एक नई पॉलिटिक्स को भी दिखा रहा है और बता रहा है कि जो जिस तरह से पहले मुख्यमंत्री ओथ लेते थे तमिलनाडु में, उस तरह का नहीं होगा। एक बहुत ही फॉर्मल लुक से आए हैं अभी आज तलपति विजय। आशुतोष अनम्यूट कर लीजिए।
2: मारिया, मैं आपको अपने अनुभव से बता सकता हूं कि जब मैं पॉलिटिक्स में था और तब मैं जीन्स और टी शर्ट पहन के जब घूमता था तो लोग बड़े आश्चर्य से देखते थे, बोले आप कुर्ता पजामा नहीं पहनते हुए, आप तो खादी वाला कुर्ता पजामा आपको पहनना चाहिए। मैं कहा भाई मुझे यही अच्छा लगता है, मुझे मैं आई एम वेरी कंफर्टेबल हेयर। तो हिंदुस्तान के अंदर अगर आप देखिए कि जितने भी चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक पॉलिटिशियंस की एक ड्रेस कोड हो गई है। उसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन हर पॉलिटिशियंस को लगता है कि अगर पॉलिटिक्स में है तो उनको सफेद रंग का कुर्ता पहनना चाहिए, और अगर अगर वो साउथ इंडिया में है तो फिर वो एक सफेद रंग की लुंगी पहननी चाहिए, और अगर वो नहीं पहनेंगे तो लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको अच्छी तरीके से याद होगा कभी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने राहुल गांधी के ड्रेस पे जो जो टिप्पणी की, तो ये दिखाता है कि जिसकी वो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं है। और यही खास बात है, विजय अगर ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स करते हुए दिखाई पड़ेंगे, और मैं नागार्जुन की इस बात से सहमत हूं कि अगर वो ट्रेडिशनल अटायर में दिखाई पड़ेंगे तो जो फर्क है, जिस वजह से लोगों ने उनको वोट दिया है वो इंपॉर्टेंट है। उनका टेस्ट अब इस बात से नहीं होगा उन्होंने कौन से कपड़े पहने, बल्कि उनका टेस्ट इस बात से होगा कि जनता की जो आकांक्षाएं हैं उस पर कैसे खरा उतरती है। क्या एजुकेशन का कोई नया मॉडल दे सकते हैं, क्या गवर्नेंस का कोई नया मॉडल दे सकते हैं, क्या पॉलिटिक्स के अंदर एथिक्स एंड मोरालिटी के नया स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं, क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक की पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा करप्ट हो गई है। अभी आप देखिए कि पश्चिम बंगाल के अंदर जिनको कैमरे पर पकड़ा गया पैसे लेते हुए, ऐसे लोग भी पॉलिटिक्स में अंदर है और उनको एक तरीके से इज्जत दी जाती है। मेरा उनसे कोई मतभेद नहीं है
0: जी। मैं आती हूँ आशुतोष। सगाई सगाई बताइए क्या हो रहा है वहां पर। तलपति विजय आप पहुंच चुके हैं इंडोर स्टेडियम, कुछ ही देर में राहुल गांधी भी वहां पर पहुंचेंगे और आधे घंटे में होगा शपथ समारोह। बहुत बड़ा आयोजन किया गया है वहां पर। पिछली बार किस मुख्यमंत्री ने लिया था वहां शपथ सगाई? क्योंकि मैं देख रही थी कि एमके स्टालिन ने 2021 में राजभवन में शपथ लिया था क्योंकि कोविड का वक्त था। उसके अलावा जयललिता ने 1991, 2001, 2011, 2015 में मद्रास यूनिवर्सिटी सेंटेनरी ऑडिटोरियम में लिया था। ये पहली बार क्या हो रहा है कि जब एक मुख्यमंत्री के तौर पर जो शपथ समारोह हो रहा है एक स्टेडियम में हो रहा है?
4: देखिए, विजय का जो भी मूवीज रिलीज होता है उनका ऑडियो लॉन्च यही वहीं पे होता है। जब भी उनका फिल्म हिट होता है उनका सक्सेस पार्टी भी नेहरू इंडो स्टेडियम पे ही होता है। सो उनका एक आदत है, जो भी सक्सेस और जो भी आता है वो सेंटीमेंट है नेहरू स्टेडियम में ही होता है। शायद इसी के वजह से उन्होंने इस जगह को चूज किया गया है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ भी आ सकता है। इसी वजह से इतना बड़ा स्टेडियम नेहरू इंडो स्टेडियम इतने लोगों को अकोमोडेट कर सकता है, शायद इसी के वजह से नेहरू स्टेडियम को उन लोगों ने चूज किया है। आप नेहरू स्टेडियम के बाहर भी देख सकते हैं बहुत ज्यादा लोग, रोड पूरा बंद कर दिया है, पूरा बहुत ज्यादा भीड़ आ चुका है, और एक एक बंदा भी सुबह 6-7 बजे से वेट कर रहा है क्योंकि उनको एक विजय का ग्लिम्स मिले। जब भी वो पास करता है गाड़ी में, फोकस लाइट डाल के जाते हैं, उनका एक ग्लिम्स मिल गया तो बस है। इसी के वजह से 2-3 घंटे लोग वहां पे वेट कर रहे हैं, और इसके वजह से ही नेहरू इंडोर स्टेडियम ऑर्गेनाइज किया है क्योंकि ट्रैफिक भी कंट्रोल कर सकते हैं और भीड़ का भी कंट्रोल कर सकते हैं।
0: ठीक है, लेकिन ये बताइए सगाई आपके जाने से पहले, क्या आपको लगता है ये जो पूरा ऑरा है विजय का, ये इसलिए भी है क्योंकि वो कुछ कम बोलते हैं, ज्यादातर मीडिया का इंटरव्यू नहीं देते, और शायद इसीलिए जो एनिग्मा फैक्टर है, जो हेलो दिखता है उनके अराउंड, इसीलिए है? लोग समझ नहीं पाते हैं कि वो सोचते क्या है।
4: टीवी के का सक्सेस ये बहुत बड़ा, देखिए टीवी के और विजय का सक्सेस एक बहुत बड़ा केस स्टडी है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस का केस स्टडी है। जो भी डॉक्यूमेंट्री करना है, जो भी स्टडी करना है, रिसर्च करना है पीएचडी के लिए, शायद इस इलेक्शन को कर सकते हैं, क्योंकि विजय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एड्रेस नहीं किया है, विजय ने एक सिंगल साउंड बाइट भी दिया है मीडिया के लिए, कुछ भी नहीं किया है। और जो भी प्रोग्राम है विजय का, उसका प्रोग्राम का डिटेल्स भी टीवी के ऑफिस से शेयर नहीं होता है। जो भी होता है वो पूरा सोशल मीडिया से होता है और सोशल मीडिया अट्रैक्शन से वो चलते हैं। उनका बहुत बड़ा टीम है सोशल मीडिया का, उसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस करके ही सब कुछ, जो भी माहौल है, जो भी अट्रैक्शन, वो सब कुछ किया गया है।
0: सगाई हमारे जुड़े रहिए, क्योंकि आज बात यूपी कैबिनेट की भी होगी, जहां आज योगी कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। आज योगी कैबिनेट में 6 नए मंत्री शामिल हो जाएंगे, साथ ही 2 मौजूदा मंत्रियों का प्रमोशन हो सकता है। कैबिनेट विस्तार को लेकर योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात की और अब ये तय हो चुका है कि यूपी में विस्तार होगा। आज ही दोपहर 3 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और उसी को ध्यान में रखकर ये पूरी कवायद की जा रही है। कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं सीधे चलूंगी लखनऊ। अभिषेक, हमें बताइए ये जो 6 मंत्रियों के नाम हैं, क्या वो अब साफ हो चुके हैं?
5: देखिए, लगभग अगर कहें तो ये साफ हैं, ये 6 नए चेहरे हैं जो कि योगी कैबिनेट में शपथ लेंगे। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर नाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन जो जानकारी आई है वो लगभग तय है इन 6 मंत्रियों का, जिसमें भूपेंद्र चौधरी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो शपथ ले रहे हैं। मनोज पांडे जो बागी रहे हैं समाजवादी पार्टी के, वो शामिल होंगे कैबिनेट मंत्री के तौर पर। इसके अलावा हंसराज विश्वकर्मा प्रधानमंत्री के क्षेत्र से आते हैं, उनके जिलाध्यक्ष हैं, एमएलसी हैं और बेहद करीब माने जाते हैं प्रधानमंत्री के, वो शामिल हो रहे हैं। कृष्णा पासवान है, फतेहपुर से आती हैं, महिला चेहरा हैं, पासी बिरादरी से हैं, वो शामिल हो रही हैं। इसके अलावा सुरेंद्र दिलेर हैं जो कि खैर विधानसभा से आते हैं, अलीगढ़ के, और इनका एक लंबा इतिहास है। ये वाल्मीकि समाज से आते हैं, दलित समाज से, और इनके पिता इनके दादा कई बार सांसद रह चुके हैं। और साथ में इसके अलावा 2 मंत्री हैं जो कि राज्य मंत्री हैं, जो कि एलिवेट किए जा रहे हैं, जिसमें नरेंद्र कश्यप पिछड़ा वर्ग से आते हैं, कश्यप समुदाय से हैं, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है। और साथ साथ अजीत पाल, जो पाल बिरादरी की चर्चा हो रही थी, खासकर कल से पूजा पाल का नाम चल रहा था, तो अजीत पाल जो कि राज्य मंत्री हैं, उनको भी कैबिनेट बनाया जा रहा है। इसके अलावा कैलाश लोधी जो कि लोधी बिरादरी से आते हैं, कन्नौज से आते हैं, तिरवा विधानसभा से, उनको भी मंत्री बनाया जा रहा है। तो जो जानकारी अभी तक निकल करके आई है कि 6 नए चेहरे और 2 मंत्रियों का को कैबिनेट दिया जा सकता है, ये सामने है। 3 बजे शपथ ग्रहण है, लेकिन सबसे अहम बात मारिया ये है कि इस बहाने 2027 का जो सामाजिक और जातीय संतुलन है उसको साधने की ये कोशिश है। आप देखें इसमें 3 ओबीसी चेहरे हैं, जो दो ओबीसी चेहरों को एलिवेट करके कैबिनेट दिया जा रहा है, 2 दलित बिरादरी से हैं और एक ब्राह्मण बिरादरी से हैं, तो एक संतुलन साधने की ये कोशिश है योगी कैबिनेट में। मारिया,
0: चलिए तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है और सूत्रों के मुताबिक इस विस्तार में सामाजिक और जातीय समीकरण को ध्यान में रखने की कोशिश की जा रही है। अब वापस चलते हैं फिर से तमिलनाडु की ओर, जहां पर कुछ ही देर में थलपति विजय शपथ लेंगे। बहुत ही खास दिन है राजनीति के लिए, क्योंकि आज 10 मई 10 बजे सुबह, उन्होंने खुद ही इस समय को मांगा था क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास करते हैं। और थलपति विजय जी सी जोसेफ विजय का आज थोड़ी देर में शपथ होगा। 60 साल की द्रविड़ियन राजनीति को का किला उन्होंने एक रात में ही तोड़ दिया और एक्टर से अब राजनेता बनने जा रहे हैं थलापति विजय। बहुत ही खास दिन, बहुत ही बड़ा दिन, और ये तस्वीरें आ रही हैं उनके कैवलकेड की, जो कुछ ही देर में अब पहुंच चुका है इंडोर स्टेडियम। जोसेफ विजय उन्होंने काफी सारे सुपर हिट मूवीज दी हैं और ये भी कहा जाता है कि भारत के सबसे अधिक पेड एक्टर्स में उनका नाम शुमार है और थलपति का मतलब होता है सेनापति। फरवरी 2024 में विजय ने अपनी पार्टी का ऐलान किया था और मैं अनघा को अब देख सकती हूं जो हमारे साथ अब जुड़ गई हैं। जी आज से सिनेमा खत्म राजनीति शुरू और उन्होंने साफ तौर पर अपने कैंपेन के दौरान ही आशुतोष उन्होंने कह दिया था कि वो अब मूवीज में नहीं जाएंगे, कोई एक्टिंग नहीं करेंगे और इसलिए उन्होंने ये इंडिकेट जरूर कर दिया कि वो सीरियस प्लेयर हैं, वो लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं पॉलिटिक्स के। ऐसा चलिए अपूर्वा के पास चलते हैं। अपूर्वा बताइए कितने लोग हैं वहां पे, भीड़ तो बढ़ती जा रही है चेन्नई में।
3: बिल्कुल मारिया, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे लीडर्स आ गए हैं और अभी कुछ ही समय पहले राहुल गांधी यहाँ पे आए थे और अभी नैना नागेंद्रन जो बीजेपी के लीडर है वो यहाँ पे अभी क्रॉस करके जा चुके हैं। कई और लीडर्स भी यहाँ पे आ चुके हैं, सीपीआई सीपीएम और बीसी के ये जो लीडर्स जो विजय को टीवीके को सपोर्ट दिए थे ये लीडर्स भी यहाँ पे आके शामिल हो चुके हैं। ना कि सिर्फ ये बल्कि अगर आप देखेंगे ये पूरे साइड क्राउड्स बढ़ता ही जा रहा है। अभी राहुल गांधी अंदर स्टेडियम के अंदर आ चुके हैं, सीनियर कांग्रेस लीडर्स भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और सारे के सारे जो नेताएं और जो पार्टी विजय के तमिल विक्ट्री कार्यक्रम को मदती दिए है ये सब पार्टीज भी यहाँ पे आ चुके हैं ताकि विजय का जो सीएम डेसिग्नेट है उनका स्वेयरिंग इन सेरेमनी अभी कुछ ही मिनटों में होगा। 10 बजे जो मुहूर्त दे चुके हैं विजय को स्वेयरिंग इन सेरेमनी में चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री बनाने के लिए, अभी कुछ ही समय में मुहूर्त भी आने वाला है। विजय के आस खास के फिल्म फ्रेटर्निटी के दोस्तों भी आ चुके हैं यहाँ पे और ना कि सिर्फ फिल्म फ्रेटर्निटी के दोस्तों, उनके फैमिली मेंबर्स भी यहाँ पे आ चुके हैं और सीनियर पोलिटिकल लीडर्स कांग्रेस का राहुल गांधी भी यहाँ पे आ चुके हैं।
0: आपने कहा मुहूर्त मिला था, मुहूर्त है 10 बजे का आज, इसीलिए काफी देर चली थी उनकी मुलाकात राज्यपाल आरएन रवि से, राज्यपाल के साथ वहां पर लोकभवन में गवर्नर आर्लेकर के साथ जो 2 घंटे मुलाकात चली वो इसलिए चली क्योंकि बार बार उनके जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो सही वक्त का वो शायद निकाल रहे थे कि कैसे किस समय उनकी शपथ हो। राहुल गांधी भी अब पहुंच चुके हैं इंडोर स्टेडियम, 20 मिनट के अंदर शपथ समारोह शुरू होने वाला है। एमजीआर और एनटीआर से उनकी तुलना की जाती है आशुतोष, जिन्होंने सिनेमा की लोकप्रियता को सत्ता पर पहुंचाया है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे एंड लेकिन विजय ने अपने फैन नेटवर्क को किस तरह एक वोटर नेटवर्क में कन्वर्ट किया इस पर चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आएंगे, तलपति विजय का कुछ ही देर में शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर तमिलनाडु में।

0: This is the sound of Jack buzz-cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's 50 bucks right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
1: Oh, ouch.
0: However you make money work, we can work with that.
2: Mobile carriers, message, and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
6: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
7: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा
8: ए प्रिया कैसा लगा मेरा स्टंट
9: विक्रम एक हिंट तो देते
10: विक्रम
9: हिंट
8: बड़े आराम से
11: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं
12: इसमें माइक्रोफाइबर है
11: माइक्रोफाइबर यानी
12: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत
11: हमारे सीमेंट में नहीं है
12: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है
13: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़ ड्यूरागार्ड सीधी बात है ड्यूरागार्ड खास है
14: करेक्टर The taste of success.
15: और वही कहाँ गए थे घूमने?
16: GK Max.
17: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
16: GK Max. Best putty.
18: JK Wall Max.
19: Best paint.
20: JK Max.
21: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन most beautiful walls के लिए सिर्फ
22: JK Max paints.
23: JK Max. JK Max paints. खुशियों के रंग.
24: टेबल को ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं ये भाई साहब सब पचा देते
25: पर दिक्कत तो होने आती है जो टेबल के नीचे से
26: मुल्तानी पश्मीना अपने हक का खाओ सब कुछ पचाओ
27: मुख्य समाचार मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए
28: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे
29: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं
30: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा रुंगटा स्टील टीएमटी से बना
31: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
2: ओह नो, बहुत बोर लग रहा है।
3: Take a date, not bites.
4: No added sugar, preservative के बिना। डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
3: लायन डेट नट बाइट्स।
5: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
6: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है। खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
7: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें।
8: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
9: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, और वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

0: आखिरकार नासिक टीसीएस धर्मांतरण केस की फरार आरोपी निदा खान को करीब एक महीने बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 7 मई को पुलिस ने उसे छत्रपति संभाजी नगर के नरेगांव इलाके से गिरफ्तार किया। वो कैसर कॉलोनी के एक घर में अपने माता पिता, भाई और मौसी के साथ छिपकर रह रही थी। नासिक पुलिस ने निदा खान की माँ और मौसी को भी गिरफ्तार किया है। वहीं निदा खान की मदद के आरोप में नासिक पुलिस की क्राइम ब्रांच ने छत्रपति संभाजी नगर के नरेगांव से AIMIM पार्षद अब्दुल मतीन पटेल को भी हिरासत में लिया है। मतीन पर आरोप है कि उसने नरेगांव में निदा खान को पनाह दी थी। अब संभाजी नगर के संरक्षक मंत्री संजय शिरसाट ने AIMIM पर आरोप लगाया है कि निदा खान तो सिर्फ एक मोहरा है। इस वारदात के मास्टरमाइंड AIMIM के महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज जलील है। दरअसल इम्तियाज जलील ने निदा खान को जमानत देने की मांग का समर्थन किया था, जिसके बाद से महायुति उन पर निशाना साध रही है।
1: और हमको भी समझ में आ रहा है कि कैसा ट्रायल बाय मीडिया चलाया जा रहा है इस मामले के अंदर। हर आरोपी को, मेरा मतलब ये है, आरोपी एक्यूज्ड पर्सन को यह अधिकार होता है कि उसके ऊपर अगर कोई आरोप लगे है तो वो अदालत जा सकता है, बेल के लिए अप्लाई कर सकता है, अपना पक्ष अदालत के सामने रख सकता है। निचली कोर्ट में इस लड़की को बेल नहीं मिली, उसका राइट है कि वो हाईकोर्ट में जाए, हाईकोर्ट में रिजेक्ट होती है तो सुप्रीम कोर्ट में जाए, ये कानून का नियम है। इस लड़की के ऊपर महज आरोप है और उस आरोप के तहत अगर पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके लेके गई है तो पुलिस अपना काम करेगी।
2: ये निदा खान को गिरफ्तार करने से ज्यादा बड़ा प्रश्न यही है कि निदा खान को अभी तक कौन प्रोटेक्शन दे रहा था, कौन उसके पीछे था, उसको कहाँ से अरेस्ट हुआ है। तो MIM कॉर्पोरेटर के घर पे छुपी थी। तो ये जो MIM का कॉर्पोरेटर है वो जो हमको पर ये हमारे पास ये भी न्यूज है कि उसको इम्तियाज जलील सपोर्ट कर रहा था। तो फिर ये MIM ये जो पार्टी है ये पॉलिटिकल पार्टी है या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि PFI ISI अलकायदा से कुछ अलग काम ये लोग करते नहीं है, वो लोग भी जिहादियों को ही मदद करते हैं।
0: वहीं शिवसेना नेता बच्चू कड़ू ने कहा है कि धर्मांतरण जैसे मामलों में मुस्लिम धर्मगुरुओं को आगे आकर ऐसी घटनाओं का विरोध करना चाहिए। निदा खान पर नासिक TCS केस में पीड़ित लड़कियों के जबरन धर्मांतरण की कोशिश, हिंदू देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी करने और इस्लामिक रीति रिवाज को थोपने के साथ रेप और यौन शोषण के आरोपी टीम लीडरों की मदद करने के आरोप। मुंबई से दिव्येश सिंह और दीपेश त्रिपाठी के साथ इसरार चिश्ती, संभाजीनगर, आज तक।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

0: विजय अध्याय शुरू हो जाएगा। स्टार पावर का लोहा मनवाने वाले विजय अब सियासत के पथ पर चलने जा रहे हैं। 9 मंत्रियों के साथ विजय शपथ लेने जा रहे हैं। आज का दिन सिर्फ विजय के लिए नहीं, तमिलनाडु की राजनीति के लिए भी ऐतिहासिक माना जा रहा है। फिल्मी पर्दे के थलापति ने अब सत्ता के मंच पर कदम रखा है। सवाल ये है कि क्या विजय MGR और NTR की तरह स्टेबल राजनीतिक विरासत बना पाएंगे। विजय की शपथ को सिर्फ एक अभिनेता की राजनीति के जीत के रूप में नहीं देखा जा रहा है, बल्कि तमिलनाडु की सत्ता, समाज और सियासत में नए प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है। ये बड़ा पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट है। अब आदव अर्जुन गए हैं राहुल गांधी को रिसीव करने, और राहुल गांधी अब इंडोर स्टेडियम, नेहरू इंडोर स्टेडियम जो चेन्नई में है, वहां पर पहुंच चुके हैं। आदव अर्जुन जो सबसे करीबी माने जाते हैं तलपति विजय के, वो अब राहुल गांधी को वो रिसीव कर रहे हैं और उनको लेकर के जाएंगे अब अंदर, जहां पर मंच के पास होगा स्वेरिंग इन सेरेमनी। नागार्जुन और आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब हम देख सकते हैं आदव अर्जुन, जिन्होंने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है, सारे सहयोगी दलों से बातचीत की है और राहुल गांधी के पीछे हैं प्रवीण चक्रवर्ती, कभी नंबर क्रंचिंग करते थे कांग्रेस में, और अब इस जो अलायंस है उसमें भी उन्होंने अपना एक रोल प्ले किया है। आशुतोष, जो M.K. स्टालिन ने ट्वीट किया, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, कि कांग्रेस को बता देना चाहिए था कि अगर वो अलायंस तोड़ रहे हैं, बहुत ही इमोशनल ट्वीट था, ये भी कहते हुए कितना पुराना अलायंस है, तो क्या एक प्रोटोकॉल जो प्रोसेस होता है वो कांग्रेस ने फॉलो नहीं किया? ठीक है, अगर आप अलायंस तोड़ करके जाकर के एक नए प्लेयर को सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन क्या ये प्रोटोकॉल फॉलो हो सकता था?
1: मारिया, ये प्रोटोकॉल निश्चित तौर पर फॉलो हो सकता था और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी से यहाँ थोड़ी सी गलती जरूर हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्टालिन को इसको इतना ज्यादा दिल पर लेना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे तरीके का खेल भी खेला जा रहा था जिसमें यह भी कोशिश की जा रही थी कि अन्ना द्रमुक को AIDMK कोई वहां पर क्यों ने सत्ता में स्थापित कर दिया जाए। खुद AIDMK जो है वो टूटने के कगार पर पहुंचती भी दिखाई पड़ रही, तो राजनीति बहुत ज्यादा फ्लक्स में थी वहां पे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा इसमें संयम रखना चाहिए था और DMK को, खासतौर पर स्टालिन को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि DMK को किसी तरीके का ग्रज नहीं रखना चाहिए, क्योंकि 1998 के पहले जो IK गुजराल की सरकार थी, उस सरकार जैन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर गिरी थी, जिसमें DMK के ऊपर कुछ गंभीर संदेह दिखाए गए थे राजीव गांधी एसेसिनेशन के मामले में। उस वक्त पूरी की पूरी यूनाइटेड फ्रंट DMK के साथ मजबूती के साथ खड़ी थी, लेकिन जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार
0: बने रही है। आशुतोष, अनघा के पास चलते हैं क्योंकि 7 मिनट में शपथ समारोह होने वाला है। अनघा, क्या देख रही हैं आप? राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और किसका इंतजार है अब?
2: मैं वहाँ जो खड़ी हूँ, यहाँ सब फुल सिक्योरिटी अभी टाइट किया गया है, गेट्स सब बंद है, तो इसके बाद कोई पार्टी फंक्शनरी या गेस्ट को अंदर नहीं अलो किया, विल नॉट बी अलाउड फ्रॉम दिस गेट। एक दूसरा गेट है विच इज़ द VVIP गेट, और सारे डिग्निटरीज रेडी है फॉर विजय's ओथ टेकिंग सेरेमनी। राहुल गांधी भी आ चुके हैं और हम वो वायरल इमेजेस के लिए वेट कर रहे हैं, जो राहुल गांधी एंड विजय एक फ्रेम में, एक जो फोटो जो आएगा वो एक आइकॉनिक फोटो होगा, हिस्टोरिक फोटो होगा, क्योंकि विजय बहुत पहले ही कह चुके हैं कि वो राहुल गांधी को इंस्पिरेशन मानते हैं। जो 10-20 साल पहले विजय ने ये बोल चुके हैं कि मैं एक छोटा सा एक्टर हूँ, पर मैं आई लुक अप टू राहुल गांधी। पर उसके बाद राहुल गांधी हैड इन्वाइटेड विजय टू दिल्ली टू मीट विथ हिम, और उसके बाद ही वॉज ऑल्सो इन्वाइटेड टू ज्वाइन द यूथ कांग्रेस, पर विजय ने यह साफ साफ बोल दिया कि मुझे सिनेमा में फोकस करना चाहिए, मैं आऊंगी पॉलिटिक्स को, पर यू नो एट अ लेटर पॉइंट इन माय लाइफ। पर हम आज इस दिन पर है जब विजय इज टेकिंग ओथ एज अ चीफ मिनिस्टर एंड राहुल गांधी इज विटनेसिंग दैट एज अ गेस्ट, तो ये है हिस्टोरिक डे जो हम बात कर रहे हैं। राहुल गांधी एंड विजय विल यू नो विल लीड अ कोलिशन गवर्नमेंट इन तमिलनाडु।
0: राज्यपाल आर्लेकर वहां पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में शपथ समारोह होगा। उनका स्वागत किया है तलपति विजय ने, ये एक स्पेशल ट्रेडिशनल वे में स्वागत किया गया है और पीछे दिख रहे हैं यादव अर्जुन और सीटी निर्मल कुमार। अब बस इसी मंच पर ये शपथ समारोह होगा। राज्यपाल वहां पर पहुंचे, वहां पर तलपति विजय ने उनका स्वागत किया और सब अब अंदर जा रहे हैं सीधे। इसी इन्हीं तस्वीर के साथ अब हम रहेंगे कुछ ही देर में शपथ समारोह। आज 10 तारीख 10 बजे सुबह में शपथ समारोह होने वाला है तलपति विजय का। विजय युग की शुरुआत हो रही है तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में। 2 साल पहले बनी है ये पार्टी टीवी के और उसके ये प्रमुख तलपति विजय जो सुपरस्टार माने जाते हैं, हाईएस्ट पेड एक्टर हैं और अब वो सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे तमिलनाडु की सियासत में और एक नया अध्याय लिखा जाने वाला है आज से। बहुत ही खास दिन आज। एमजीआर एनटीआर की तुलना की जा रही है बार बार, लेकिन एमजीआर ने जब वो मुख्यमंत्री बने तो उससे पहले अनगा उनकी पॉलिटिक्स करीब 10 से 15 साल की थी। एनटीआर का फर्स्ट डे फर्स्ट शो सक्सेसफुल था, उसी तरह यही सही एग्जाम्पल रहेगा कि ये जो एग्जाम्पल है जो आंध्रा की पॉलिटिक्स का, वही सही एग्जाम्पल रहेगा इस केस में भी। अनगा, अनगा के पास हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले अब चलते हैं नागार्जुन के पास। नागार्जुन, हम तस्वीरें अब देख रहे हैं, क्या उनकी राजनीति आज से बदल जाएगी? सवाल यह है कि क्या विजय एमजीआर और एनटीआर की तरह स्थायी या स्टेबल विरासत, राजनीतिक विरासत बना पाएंगे? देखिए, उनकी जो शुरुआत हुई है पॉलिटिक्स की उसकी तस्वीरें हैं, लेकिन उससे पहले काफ़ी लंबा सफ़र रहा है उनका सिनेमा में। काफ़ी सारी हिट फिल्में उन्होंने दी है। 1992 में उन्होंने बतौर नायक के तौर पर शुरुआत की थी, लेकिन शुरुआती दौर पर उन्हें थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद गिल्ली आई, कथी आई, मिर्सल आई, मास्टर और लियो जैसी फिल्मों ने उनकी भूमिका एक जननायक की छवि की तौर पर स्टैब्लिश कर दी। और विजय की सिनेमाई जो छवि है उसी ने उनको एक आम आदमी से कनेक्ट करने में हेल्प किया नागार्जुन। और उन्होंने एक मैसेज दिया कि वो न्याय के साथ हैं और जो पुरानी व्यवस्था को वो बार बार चैलेंज कर रहे हैं। नागा, जी चलिए, गवर्नर आर्लेकर की तस्वीरें आ रही हैं, आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो विजय की जो मूवीज हैं, जो उनकी सिनेमा है, उसने उनके स्टार पावर को क्रिएट किया, जो ऑरा को क्रिएट किया, जिन्होंने दिखाया कि वो आम आदमी के साथ हैं, वो न्याय और व्यवस्था के साथ हैं और जो पुरानी राजनीति है उसको वो बार बार चैलेंज करते हैं। और उसी ऑरा से वो आज उन्होंने एक पॉलिटिक्स की शुरुआत की और पॉलिटिक्स से जो फैन क्लब्स होते हैं उन्होंने वो वोटर क्लब में ट्रांसलेट किया। आशुतोष,
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल मारे। और ये तस्वीर बड़ी अच्छी तस्वीर है, देखिए ये दिखाता है कि कम से कम विजय में काफी मेच्योरिटी है। गवर्नर के आने के बाद भी ये आरोप लगातार लग रहा था कि गवर्नर जो है वो विजय को मुख्यमंत्री के लिए नहीं बुला रहे हैं, सरकार गठन में दिक्कतें पैदा कर रहे हैं, उसकी वजह से उनकी आलोचना हो रही थी। लेकिन जब गवर्नर आए तो किस तरीके से उन्होंने शॉल उड़ा के उनका स्वागत किया। नॉर्मली मैं राजनीति में इस तरीके की तस्वीरें देखता जरूर हूं, लेकिन ये अपने आप में बहुत अच्छी तस्वीर है उस लिहाज से देखिए कि कोई एनिमोसिटी नहीं है। दूसरी बात यह कि विजय की जो यात्रा है वो इस मामले में अद्भुत है, और मैं इसकी तुलना 2 और मामलों से करूंगा कि उन्होंने कोई सिस्टम को चैलेंज नहीं किया, जैसे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर सिस्टम को चैलेंज किया था, या एनटी रामाराव ने एक ने सिस्टम को चैलेंज किया था और फिर वो अचानक सत्ता में आ गए थे। विजय ने बिल्कुल स्मूथ तरीके से, ना तो उन्होंने डीएमके को चुनौती दी, ना उन्होंने एआईडीएम को चुनौती दी, बस उन्होंने कहा कि मुझे राजनीति में आना है और मैं राजनीति में आना चाहता हूं, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। 2024 में उन्होंने पार्टी बनाई, 2024 में उन्होंने कहा कि हम लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर 2026 में। ये जो पूरी की पूरी यात्रा है, ये दरअसल इस बात का भी प्रमाण है कि उनके सिनेमा का असर जरूर पड़ा है, क्योंकि इस कैंपेन के दौरान 80,000 से ज्यादा फैन क्लब्स उनके बने, जो एक छोटी छोटी पॉलिटिकल जो यूनिट्स उसके तौर पे देख सकते हैं। लेकिन असल बात यह है कि जो थकान द्रमुक पॉलिटिक्स को लेकर थी, उसमें इनोवेशंस नहीं था, उसका असर यह था कि दरअसल ये पार्टी जो है आज इतनी मजबूती के साथ खड़ी हुई है। और मैं बहुत दावे के साथ ये कह सकता हूं कि अगर लोगों को भरोसा होता कि विजय मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो शायद
0: तो
1: उनके
0: शायद बड़ा
1: पास
0: मैंडेट मिलता।
1: बड़ा बड़ा मैंडेट मिलता और उनको 4-5 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ता। यहां से जो जो द्रविड़ पॉलिटिक्स है, उसको अपने आप को रीइन्वेंट करना पड़ेगा। अगर रीइन्वेंट नहीं करेंगे तो उनके लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि
0: लेकिन
1: ये यात्रा
0: आशुतोष, उन्होंने अपनी फिल्मों की भी, जो उनकी एक छवि थी जननायक, मैन ऑफ द कॉमन मैन, वो जो एक छवि है, उसने उनकी राजनीति में उनकी मदद की है।
1: देखिए, सिनेमा आपको एक पब्लिक पहचान देता है, एक सार्वजनिक पहचान देता है। आप किसी पहचान के मोहताज नहीं होते। जब आप पॉलिटिक्स में नए होते हैं तो आपको सबसे बड़ी दिक्कत आपके सामने होती है कि आप लोगों के बीच में जाएं, लोग आपको पहचाने, लोग आपके नाम से जाने। तो सिनेमा ने वो दिक्कत विजय के सामने नहीं थी, और विजय के चूंकि ये दिक्कत नहीं थी, इसलिए उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को कंडक्ट किया, उससे लोगों को लगा कि यंग आदमी है, नया आदमी है। सिनेमा में भी अच्छी फिल्में उन्होंने की हैं और इनको मौका मिलना चाहिए। बहुत हो चुका अब द्रविड़ की पॉलिटिक्स, कुछ नया नया करते हैं। तो मुझे लगता है उस नया करने का असर इन, इन, इन, इनके पास आया है। अन्यथा आप देखिए, इसके पहले विकास का जो विजयकांत थे, उन्होंने भी पॉलिटिक्स के अंदर शुरुआत की, तो कामयाब नहीं हो पाए। थोड़ी बहुत कामयाबी मिली, ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। और सबसे फ्लॉप फिल्म थी वो दरअसल कमल हासन की फिल्म थी, और कमल हासन को लगा था कि मैं तो बड़ा भाई सुपरस्टार हूं, मैं राजनीति के अंदर जाऊंगा, लोग हाथ हाथ ले लेंगे। लेकिन उनकी तो हर जगह से जमानत जब्त हो गई। तो कमल हासन जैसे एस्टैब्लिश्ड और बड़े पुराने फिल्म सुपरस्टार की जगह अगर विजय कामयाब होते हैं, तो उसमें एक चीज ये कि यूथफुलनेस उनके अंदर दिखाई पड़ती, एनर्जी दिखाई पड़ती, फ्रेशनेस दिखाई पड़ती है, जो कम से कम कमल हासन और विजयकांत पे पहले नहीं दिखाई पड़ी थी। या ये कह सकते हैं उनकी टाइमिंग बहुत अच्छी थी कि 5 साल के डीएमके का शासन हो चुका था, एंटीनकंबेंसी
0: चलिए
1: उनके खिलाफ थी, एआईडीएमके संघर्ष कर रही थी जयललिता के बाद।
0: जी, आपने सही कहा, कमल हासन जैसे सितारे क्यों पीछे रह गए, इस पर भी सवाल है। अनघा हमारे साथ जुड़ गई। अनघा, 10:03 हो चुका है, कुछ ही देर में वो तस्वीरें आने लगेंगी जब शपथ समारोह होगा। राज्यपाल आर्लेकर पहुंच चुके हैं।
2: हम स्टैंड बाई में
0: जी। अनघा, गवर्नर आर्लेकर वहां पे पहुंच चुके हैं जी। अनघा के साथ हम फिर से जाएंगे, लेकिन हम देख सकते हैं इंडोर स्टेडियम से तस्वीरें आ रही हैं, सीधे तस्वीरें आ रही हैं। बड़ा मंच है, गवर्नर आर्लेकर शपथ दिलाएंगे। 4 दिन तक लगातार उन्होंने मुलाकात की, एक स्टेबल गवर्नमेंट की बार बार उन्होंने बात कही और कहा कि आप सिग्नेचर लेकर आइए और शपथ लीजिए। तो आज का दिन तय हुआ और आज ये शपथ समारोह चल रहा है। कमल हसन जैसे सितारे क्यों पीछे रह गए, इस पर भी चर्चा करते हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें आ रही हैं, सारे जो 9 मंत्री जो शपथ लेंगे जी। चलिए अनघा, बताइए क्या देख रही हैं आप।
2: जी, हम इस गेट पर खड़ी है, जो गेट सब बंद हो चुका है और गवर्नर भी अंदर है अभी ओथ टेकिंग सेरेमनी के लिए। कुछ ही देर में विजय विल टेक ओथ एज द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। लॉर्ड ऑफ द सीनियर
0: डिग्निटरीज मंच पर पहुंच
2: भी
0: गए
2: अंदर
0: हैं,
2: है वो ग्रैंड ओथ टेकिंग।
0: तलपति विजय पूरे सूट बूट में हैं, तो ये देखिए तस्वीरें आ रही हैं। तलपति विजय बहुत ही फॉर्मल लुक में हैं, फॉर्मल लुक, और ये तस्वीरें अब आ रही हैं, राहुल गांधी के साथ खड़े हैं तलपति विजय।
3: वी एक्सटेंड अ हार्टी वेलकम टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डेसिग्नेट तिरुसी जोसेफ विजय।

0: लोकप्रियता को सीधे चुनावी संगठन में बदलने की कोशिश की एक्टर विजय ने। उनकी तुलना MGR और NTR के साथ की जा रही है, जिन्होंने सिनेमा की लोकप्रियता को सत्ता तक पहुंचाया था। विजय के मामले में फैन नेटवर्क, चुनावी संदेश और राजनीतिक समय, तीनों एक साथ काम करते दिखाई दिए हैं इस बार। और कलपति विजय स्टेज पर साथ में राहुल गांधी वहां पर पहुंच चुके हैं गवर्नर आर लेकर, और कुछ ही देर में शपथ समारोह शुरू होगा। आज की शपथ केवल एक सत्ता का ग्रहण नहीं, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति में एक नई शक्ति का केंद्र बनकर अब रहेंगे कलपति विजय। बहुत ही खास दिन है, डीएमके एडीएमके की पॉलिटिक्स जो आज तक लगभग 60 सालों से उनको उनकी कंप्लीट डोमिनेंस था, डुओपोली चल रही थी, वो अब ख़त्म होगी। और आज विजय जिन्होंने लगभग 2 साल पहले ही TVK को उन्होंने बनाया था, और आज वो एक मुख्यमंत्री हैं, बनने जा रहे हैं एक्टर विजय। पुराने राजनीतिक ढांचे को उन्होंने तोड़ा है, पुराने राजनीतिक ढांचे को उन्होंने चुनौती दी है। वो उनकी माँ हैं जिनकी तस्वीर आ रही है, उन्होंने कहा है कि मदर्स डे का गिफ्ट दिया है एक्टर विजय ने। वो उनके पिता जो फिल्म निर्देशक हैं, उन्होंने ही एक्टर विजय को सिनेमा में लाया था, और उसके बाद विजय ने काफ़ी सारी हिट फिल्में दी। लगभग 67 फिल्म्स उन्होंने की है, जिसमें शुरुआती दौर पर कुछ सेटबैक्स रहा, लेकिन उसके बाद एक से एक हिट फिल्म, और फिर वो हिट फिल्म से शुरुआत हुई उनकी फ़ैन फॉलोइंग की, वो फ़ैन फॉलोइंग का वोटर फॉलोइंग बन गई। और उसके बाद ये जो बार बार लोग कह रहे थे क्या ऑर्गेनाइजेशन है विजय के पास, तो ये विजय ने ये दिखाया कि ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत नहीं है जब उनके पास जनता का समर्थन है। और इस समर्थन की ये तस्वीरें दिख रही हैं, क्या एक्साइटमेंट है, एक यूफोरिया के तौर पर चेन्नई के इंडोर स्टेडियम में, जहां पहली बार इस तरह का शपथ समारोह हो रहा है। एक्टर विजय अपनी फिल्म्स की जो रिलीज है वो यहां पर करते आए हैं, बड़े स्केल पर हो रहा है। इंडोर स्टेडियम की कैपेसिटी है 8,000 लोगों की, बाहर का जो स्पेस है वहां पर लगभग 40,000। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, चलिए गवर्नर आर लेकर अब स्टेज पे पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर में शपथ समारोह शुरू होगा।
1: பதவியேற்க உள்ள மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள், மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களுக்கு இன்னும் சற்று நேரத்தில் பதவியேற்க உள்ள மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்களை அறிமுகப்படுத்துகிறார். The Honorable Chief Minister Designate will introduce the Honorable Ministers Designate to the Honorable Governor.
0: லேக்கர் की मुलाकात करा रहे हैं एक्टर विजय, सब अपने जो उनका मंत्रिमंडल में शामिल होंगे लोग, उनकी सबकी नाम और उनकी आइडेंटिटी बताया जा रहा है। आदव अर्जुन इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, जो सारे 8 नाम हैं वो सब TVK के हैं, जो उनके सहयोगी दल हैं जैसे कांग्रेस, CPIM, CPIM, CPI और IUML, VCK, उनके नाम बाद में तय होंगे कि कौन उनके साथ मंत्रिमंडल में शामिल होगा। लेकिन वो शायद 13 तारीख को जब उनका फ्लो टेस्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद वो पिक्चर साफ होगी।
1: नेशनल एंथम फॉलोड बाय तमिल ताई वार्ता।

0: Ukraine.
1: திரு பி வெங்கடரமணன்.

திரு ராஜ்மோகன் அவர்கள்.

0: மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் மற்றும் பதவியேற்ற மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்கள் அவர்கள் மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களுடன் குழு புகைப்படம் எடுத்துக் கொள்வார்கள். அனைவரும் அவரவரது இருக்கையில் அமரும்படி பணிவன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். மேலும் சில நிகழ்ச்சிகள் உள்ளன. The Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, the Honorable Council of Ministers will take a group photograph with the Honorable Governor of Tamil Nadu. We request all of you to kindly remain seated. We have few more announcements to be made. The Honorable Chief Minister will have few more announcements to make. So we request all of you to kindly remain seated.
1: तमिलनाडु में विजय युग की शुरुआत विजय ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और उनके साथ साथ 9 मंत्रिमंडल में शामिल हुए 9 मंत्री भी रहेंगे, तो 9+1 10 लोगों ने आज शपथ ली है। और तलपति विजय अब कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं, वही अभी कुछ देर में होगा, तो अभी हम इंतजार कर रहे हैं। एक ग्रुप फोटोग्राफ हो रही है जहां पर गवर्नर आरलेकर ने मुख्यमंत्री तलपति विजय और उनके 9 जो मंत्री मंत्री जो हैं उनके साथ उन्होंने शपथ ली है, और उसके बाद वो अब उनको बाहर छोड़ने जा रहे हैं। एक जेनरेशनल शिफ्ट हो रहा है आज से तमिलनाडु की राजनीति में। द्रविडियन पॉलिटिक्स का रिजेक्शन है, एक नए पॉलिटिक्स का आगाज, और उसके साथ साथ एक जेनरेशनल शिफ्ट भी माना जाता है, क्योंकि जेन जी ने ये पूरे विजय के कैंपेन को मोबिलाइज किया है। ये माना जा रहा है कि जो सोशल मीडिया पर उनका कैंपेन रहा, जो उनका फैन फॉलोइंग था, वो उनके वोटर बन गए, तो इसीलिए ये जेन जी का की जीत भी मानी जा रही है एक्टर विजय की इस जीत को। और टीवी के अध्यक्ष एक्टर विजय आज से मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के। एक जेनरेशनल शिफ्ट है। अब उनका क्या व्यू रहेगा 2 भाषा नीति पर या फिर डिलिमिटेशन पर, नीट के विरोध रहा है तमिलनाडु अभी तक, तो क्या ये सब जो उनकी प्राथमिकता क्या रहेगी, उनकी चैलेंजेस काफी ज्यादा हैं, तो उस पर चर्चा करेंगे। उन्होंने एक अपूर्वा के पास चलते हैं। अपूर्वा, मुझे ये बताइए कि जब उन्होंने ओथ लिया, उससे पहले क्या तलपति विजय जो अब मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, क्या उन्होंने कुछ भाषण भी दिया था, छोटा सा भाषण, उसके बाद उन्होंने ओथ लिया?
2: जैसे आप देख सकते हैं मारिया, जब उन्होंने सिर्फ यही कहा कि जोसेफ सी विजय नुमनान, जो आम तौर पे जैसे हर मुख्यमंत्री उनका जो भाषण होता है, उत्सव सेरेमनी होता है, उससे पहले जो शपथ लेते हैं उससे पहले जो कहा जाता है, वही जोसेफ सी स्टालिन ने भी कहा था। और अभी ये मुख्यमंत्री होने के बाद यहाँ पे सेक्रेटेरिएट में कुछ ही देर में आने की संभावना है, और सारी की सारी तैयारियां भी यहाँ पे कर चुके हैं, ताकि जब ये यहाँ पे आएंगे सेक्रेटेरिएट में, ये उनका आगे का कार्यक्रम जो है, जैसे जो नेक्स्ट स्टेप ऑफ
1: सेक्रेटेरिएट में आने से पहले
2: तैयारियां यहाँ पे सेक्रेटेरिएट
1: में। अपूर्वा, वहीं पर स्टेडियम में कुछ अनाउंसमेंट होने वाला है, क्या अनाउंसमेंट करने वाले हैं मुख्यमंत्री? बहुत बड़ा सस्पेंस है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है, अनाउंसमेंट किया गया है कि जो तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री हैं वो कुछ नया अनाउंसमेंट करने वाले हैं, वही हम देखेंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक और शपथ समारोह खत्म हुआ। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री हैं जोसेफ विजय। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
5: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
6: Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.
7: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
2: इसमें माइक्रो फाइबर है।
1: माइक्रो फाइबर यानी
2: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
1: हमारे सीमेंट में नहीं है?
2: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
3: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: टेबल के ऊपर जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं भाई साहब सब पचा दे,
2: पर दिक्कत तो होने आती है जो टेबल के नीचे से खा।
3: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
4: करेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
5: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
6: और वही कहां गए थे घूमने?
7: जेके मैक्स।
8: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
7: जेके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
9: जेके वॉल मैक्स
10: बेस्ट पेंट,
11: जेके मैक्स।
12: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
13: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
14: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
15: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
16: लायन डेट नट बाइट्स।
17: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
18: आज तक ला रहा है आपके लिए वीडियो वाला पेपर, हर रोज सुबह आपके मोबाइल पर, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। इसे पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर epaper.aajtak.in टाइप करें या फिर स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड को स्कैन करें।
19: पत्रकारिता के गुर यहाँ नहीं सीखे तो क्या सीखे, नाम ही काफी है। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
20: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health Ka Sach in association with
21: Bharat ki apni electric sawari Sokudo।

0: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
1: Jack, come home. It's supper time.
0: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
2: Hey, Jack, could you play that one song with the words?
0: Jack FM, playing what we want.
3: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
4: ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
5: इसमें माइक्रोफाइबर है.
4: माइक्रोफाइबर यानी
5: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत.
4: हमारे सीमेंट में नहीं है.
5: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है.
6: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़. ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है.
7: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है. ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद. JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK.
8: और वही कहां गए थे घूमने?
9: JK मैक्स.
10: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
9: JK मैक्स बेस्ट पुट्टी.
10: JK वॉल मैक्स
9: बेस्ट पेंट.
10: JK मैक्स.
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Maxx Paints. JK Maxx Paints. खुशियों के रंग.
11: आमी शुभेंदु अधिकारी.
12: पश्चिम बंगाल, जहां 34 साल तक लेफ्ट का राज रहा, फिर 3 टर्म तक ममता बनर्जी सीएम रही, लेकिन अब वहां पहली बार BJP सरकार बन गई है. शुभेंदु अधिकारी ने सीएम पद की शपथ ली और इसी के साथ बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो गया. इस खास मौके पर बंगाल की जनता का पीएम ने साष्टांग दंडवत किया. वहीं 98 साल के BJP कार्यकर्ता माखनलाल सरकार के करीब गए, शॉल ओढ़ाया, गले लगे और पैर छूकर आशीर्वाद लिया. राजनीति में कुछ तस्वीरें चुनाव से बड़ी हो जाती है. बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह में NDA की एकता, या यूं कहें कि शक्ति परीक्षण भी देखने को मिला. एक मंच पर NDA के नेता मौजूद रहे. PM मोदी सभी के पास गए, एक एक करके मुलाकात की, नमस्कार किया और बातें की. यहां जब सब साथ साथ हैं, वहीं इंडिया गठबंधन बिखरा हुआ है. इंडिया गठबंधन की सबसे अहम पार्टी के नेता राहुल गांधी ताल ठोक कर बता रहे हैं कि और कोई पार्टी BJP को हरा नहीं सकती.
13: आप देख लेना, बाकी सारी की सारी पार्टियां इनके सामने नहीं खड़ी हो पाएंगी, एक नहीं हो पाएगी, और अंत में सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी और कांग्रेस पार्टी इनको हराएगी. आप याद रखो मैं क्या कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को कांग्रेस पार्टी हराएगी, BJP को कांग्रेस पार्टी हराएगी.
12: यानी राहुल का बयान सिर्फ BJP और PM मोदी के लिए नहीं है, बल्कि अपने सहयोगियों के लिए भी है. वैसे सहयोगी के नाम पर ना तो नीति दिखती है ना ही नीयत. बंगाल चुनाव इसका जीता जाता उदाहरण है, जहां ममता का मुकाबला BJP के साथ साथ इंडिया गठबंधन के अपने सहयोगियों से भी था. बंगाल चुनाव में TMC बनाम कांग्रेस बनाम लेफ्ट ही मैदान में एक दूसरे के खिलाफ आग उगल रहे थे. ये कोई पहला एपिसोड नहीं है जब इंडिया गठबंधन के साथी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में ताल ठोकते दिखे. पंजाब और हरियाणा भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है. पंजाब और हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में थे, यानी दिल्ली में दोस्ती लेकिन राज्यों में सीधी लड़ाई. फिर सवाल उठता है कि अगर सहयोगी दल ही एक दूसरे को हराने में जुटे हों तो जनता किसे असली विकल्प माने. UPA 1 और UPA 2 के दामन से बाहर निकलने के लिए इंडिया गठबंधन की नींव रखी गई. नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे, लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि नीतीश की पार्टी आज BJP के साथ बिहार और केंद्र में सरकार चला रही है. राजनीति सिर्फ अंक.
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
7: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
15: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए, इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
16: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नई नई चाल। दोपहर 3 बजे योगी मंत्रिमंडल का विस्तार। 6 मंत्री ले सकते हैं शपथ। 2 राज्य मंत्रियों का प्रमोशन। जातीय समीकरण साधने की कोशिश। केरल में नए मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस में मंथन। दिल्ली में बैठकों का दौर जारी। अभी तक नहीं तय हो पाया है सीएम का नाम। बंगाल का मुख्यमंत्री बनते ही शुभेंदु का दावा, डर का माहौल खत्म करेंगे। सोमवार को मंत्रालय का होगा बंटवारा। ममता का विपक्षी एकता पर जोर। और जहाजों पर हमले से अमेरिका और ईरान में फिर से बढ़ गई तनातनी। तेहरान ने कहा मुंह तो जवाब देंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा ईरानी ड्रोन्स को कर रहे हैं तबाह।

आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। तमिलनाडु को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। जोसेफ विजय ने अब से कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उनके साथ 9 और मंत्रियों ने शपथ ली है। विजय का शपथ ग्रहण चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में हुआ। राहुल गांधी समेत तमाम दिग्गज हस्तियां इसकी साक्षी बनी है। तो लंबे इंतजार के बाद, इतनी गहमागहमी के बाद तमिलनाडु की कमान विजय के हाथों में है। शपथ ग्रहण वो कर चुके हैं। 9 मंत्रियों ने भी उनके साथ शपथ ली है। राहुल गांधी वहां नजर आए। तमाम बड़े स्टार्स यहां देखे गए। पॉलिटिकल पार्टी के कई बड़े नेताओं के चेहरे के साथ ही कई नामचीन हस्तियों को भी नेहरू स्टेडियम में देखा गया। 9 और मंत्रियों ने विजय के साथ शपथ ली है। तमिलनाडु की कमान अब विजय के हाथों में है। आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे शतक आज तक।

तमिलनाडु के नए सीएम बने थलापति विजय, राज्य के नौवें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शपथ ग्रहण का समारोह संपन्न हुआ, राहुल गांधी भी इसमें शामिल हुए। विजय के साथ नौ और मंत्रियों ने शपथ ली है, एल आनंद, आदव अर्जुन, डॉक्टर के जी अरुण राज, के सेंटोगेटियन के नाम भी इसमें शामिल। पी वेंकट रमन और आर निर्मल कुमार, राजमोहन, डॉक्टर टी के प्रभु, सेल्वी एस कीर्तना ने भी मंत्री पद की शपथ ली। 13 मई से पहले हासिल करना होगा विश्वास मत, 59 साल के बाद तमिलनाडु को मिलेगा पहला गैर द्रविड़ मुख्यमंत्री मिला है। योगी सरकार का दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार आज दोपहर 3 बजे, 2 कैबिनेट की बैठक में कुल 8 मंत्री शपथ लेने वाले हैं। 8 नए मंत्रियों में से 6 से नए चेहरे शामिल होने की बात कही जा रही है। समाजवादी पार्टी से बगावत करने वाले विधायक मनोज पांडे को भी मंत्री बनाया जाएगा। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, सुरेंद्र दिलेर, कृष्णा पासवान, हंसराज विश्वकर्मा और कैलाश राजपूत का नाम भी फाइनल। नए बनने वाले मंत्रियों में 1 ब्राह्मण, 3 ओबीसी और 2 दलित वर्ग से हैं। करीब 45 मिनट तक योगी ने राज्यपाल को नए बनने वाले मंत्रियों की लिस्ट सौंपी थी। वर्तमान में योगी सरकार में कुल 54 मंत्री हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये संख्या पहुंच जाएगी 60 तक। शपथ ग्रहण समारोह के बाद सीएम योगी अपने मंत्रिमंडल के साथ 4:30 बजे लोकभवन में कृष्णावतारम फिल्म देखेंगे। कैबिनेट विस्तार को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री की शक्तियों का और महिलाओं के प्रतिनिधित्व और राजनीतिक समीकरणों पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने तीखा जवाब हमला बोलते हुए कहा, आखिर 9 महीनों में ये मंत्री कर क्या लेंगे जब 9 साल में ये सरकार कुछ न कर पाई। अखिलेश यादव ने योगी और मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, नए मंत्री भी केवल प्रचार और भ्रष्टाचार और अत्याचार करेंगे, महंगाई बेकारी की मार। पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा 7 दिन की ईडी रिमांड पर भेजे गए, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी हुई थी। बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए, कार्यक्रम को संबोधित किया। वैश्विक समागम में 182 से ज्यादा देशों के प्रतिभागी प्रत्यक्ष और ऑनलाइन माध्यम से शामिल हुए, 26 मई तक चलेगा यह कार्यक्रम। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर की स्थापना से 41 सोमवार को 11 मई को 75 साल पूरे होंगे। अमृत महोत्सव बनाने सोमनाथ पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। जामनगर में पहले होगा प्रधानमंत्री मोदी का भव्य रोड शो, रोड शो में 12 ज्योतिर्लिंग और झांकियों और सांस्कृतिक कार्यक्रम बनेंगे आकर्षण का केंद्र। सोमनाथ मंदिर का महोत्सव में सूर्य किरण विमान टीम ने भव्य एयर शो का भी आयोजन होगा। हेलीकॉप्टर से मंदिर परिसर में की जाएगी पुष्प वर्षा। आज से कर्नाटक, तेलंगाना और गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी 9,400 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद में कई बड़ी विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे जिसमें इंडस्ट्री, सड़क और अस्पताल से जुड़ी योजनाएं भी शामिल हैं। गुजरात दौरे पर सोमनाथ मंदिर के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी, डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। कर्नाटक के चित्रदुर्ग पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह, पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा के सम्मान में आयोजित अभिमानोत्सव में हिस्सा लिया। बीजेपी सरकार के गठन पर किरण रिजिजू ने कहा, पश्चिम बंगाल अब सुरक्षित हाथों में है। रंगासामी 5वीं बार बनेंगे पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति ने नियुक्त किया, 13 मई को लेंगे शपथ। सरकार बनने के बाद कल पहली बार बैठक करेंगे शुभेंदु अधिकारी। अधिकारियों के मुताबिक सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल होंगे। दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट है, सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों पर आतंकी आईडी से हमला करेंगे। अलर्ट के बाद दिल्ली के महत्वपूर्ण ठिकानों, संवेदनशील इलाकों पर दिल्ली पुलिस ने चेकिंग अभियान भी चलाया है। स्टेट बीजेपी और नेशनल बीजेपी दफ्तर के बाहर सुरक्षा चाक चौबंद।

संभाजी नगर में निदा खान की मदद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने डीसीपी को ज्ञापन सौंपा। धर्मांतरण मामले में नासिक में निदा खान की मां और परिवार वालों से पूछताछ, बाद में पुलिस कमिश्नर के दफ्तर से बाहर निकले। शिवपुरी में प्रेमिका और बेटी का फिल्मी अंदाज में किया गया अपहरण, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना, 11 लोगों पर मामला दर्ज। बठिंडा में रोड रोलर से पिता और बेटी को कुचला, पिता की मौत हुई, अस्पताल में बेटी को भर्ती करवाया गया है। जामनगर में 7 रास्ता से जनता फाटक जाने वाले मार्ग पर ट्रिपल एक्सीडेंट की घटना सामने आई, कार ने ई बाइक को टक्कर मारी। ग्रेटर नोएडा के निर्माणाधीन हॉस्टल में 2 माली की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया, आरोपी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बिहार के सहरसा में पुलिस ने चलाया था ऑपरेशन मुस्कान, 8वें फेज में 73 मोबाइल धारकों को सौंपे गए मोबाइल, अब तक 71 लाख रुपए के खो गए मोबाइल बरामद किए गए। खगड़िया में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान बवाल हुआ, हिंसक झड़प में 1 पुलिसकर्मी समेत 2 घायल हुए। मुजफ्फरनगर में भाई ने की भाई की हत्या, छोटे भाई की बीवी पर गलत नजर डालने की वजह से बड़े भाई की हत्या। अमृतसर में बॉलीवुड अभिनेत्री और पंजाब किंग्स की मालिक प्रीति जिंदा ने श्री दरबार साहिब में टेका था मत्था, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। दिल्ली एनसीआर में फिर से बदलेगा मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। दक्षिण भारत में मौसम सुहाना हुआ, चेन्नई में झमाझम बारिश। बिहार में कैबिनेट विस्तार के बाद सम्राट सरकार के मंत्रियों ने जारी किया है संपत्ति का ब्यौरा, 35 मंत्रियों में से 32 मंत्री करोड़पति। बिहार सरकार के 10 मंत्रियों की संपत्ति मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी ज्यादा है, सम्राट चौधरी कैबिनेट की सबसे अमीर मंत्री हैं, रमा निषाद। पुणे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पुण्याभूषण अवार्ड सेरेमनी में हिस्सा लिया, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इसमें शामिल हुए। एमपी के इंदौर में मालवा उत्सव 2026 की धूम, सीएम मोहन यादव ने उत्सव में की थी शिरकत, लोक संस्कृत मंच ने किया उत्सव और आयोजन। हरिद्वार कुंभ मेले के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जारी किया 256 करोड़ रुपए का बजट, आधारभूत ढांचे के साथ तमाम परियोजनाओं पर काम जारी। यूपी पुलिस ने किया दूसरा ऑल इंडिया बैडमिंटन और टेबल टेनिस क्लस्टर 2025-26 का आयोजन, सीएम योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चारधाम की यात्रा, बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन। गुजरात टाइटंस ने आईपीएल में लगातार 4थी जीत दर्ज करी है, राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हराकर शानदार फॉर्म जारी रखा। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट पर 229 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने 16.3 ओवर में 152 रन पर ऑल आउट, कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक नहीं बना पाया। राजस्थान की ओर से रविंद्र जडेजा 38 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे, वैभव सूर्यवंशी ने 36 रन की 23 पारी खेली। गेंदबाजी में गुजरात के राशिद खान ने 4 विकेट लेकर मैच पलट दिया, जैसन होल्डर ने 3 और कगिसो ने रवाडा में 2 विकेट झटके। साउथ सुपरस्टार मोहन लाल की मोस्ट अवेटेड फिल्म दृश्यम 3 का धमाकेदार ट्रेलर जारी किया गया, फिल्म ने प्री सेल्स में रिकॉर्ड कमाई की है। हॉलीवुड में डेब्यू करने के लिए तैयार है एक्ट्रेस दिशा पाटनी, एक्शन से भरपूर फिल्म द पोर्टल ऑफ फोर्स में नजर आएंगी। उत्तराखंड की वादियों में पहुंचे एक्टर और डांसर राघव जुयाल, पहाड़ों की ठंडी हवाओं का ले रहे आनंद। 25 साल के बाद आई लगान की जोड़ी आमिर खान और आशुतोष गोवारिकर ने तैयार किया है बड़ा सरप्राइज, जल्द आएगा इंडियाज गॉट लेटिन 2, समय रैना ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर पोस्ट करके जानकारी दी। निर्माताओं ने बदली फिल्म राव बहादुर की रिलीज डेट, 3 जुलाई को थिएटर्स में दस्तक देगी। पॉप गायक और बॉलीवुड सिंगर बादशाह का एक और धमाकेदार सॉन्ग रिलीज किया गया, गाने पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं बादशाह। विदेशों में अपनी और आज 2026 में गीतों से जलवा बिखेर रहे हैं गायक दिलजीत दोसांझ, कॉन्सर्ट में उमड़ रही है भारी भीड़। पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म भोगी 28 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी, 11 मई को ट्रेलर जारी होगा। थिएटर्स में फिर से चलेगा तारा सकीना का जादू, एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने गदर 3 पर दिया बड़ा अपडेट, बोली पहले से 2 गुना होगा इसमें एक्शन। ईरान संकट पर बोले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, कहा एक संघर्ष कठिन दौर का समय है। राष्ट्रपति पुतिन बोले रूस और ईरान और खाड़ी देशों दोनों से अच्छे संबंध रखता है और उम्मीद यह है कि यह टकराव बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा।
एबीसी नेटवर्क के मुताबिक वॉशिंगटन को ईरान के जवाब का इंतजार है, प्रतिक्रिया के बाद ही अमेरिका लेगा आगे का फैसला। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने

भाई ने अपने दिव्यांग बड़े भाई की डंडों से पीट कर हत्या कर डाली, आरोपी गिरफ्तार। रामपुर में एक हॉस्पिटल में नवजात की मौत के बाद हंगामा हुआ, परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ कर डाली, डॉक्टर्स हॉस्पिटल छोड़कर भागे। नोएडा में टूर पैकेज के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, तीन की गिरफ्तारी। दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ टीम ने दो आरोपियों के पैर में गोली मारी थी, जिसके बाद दोनों ही तरफ से फायरिंग शुरू हो गई।

0: तो प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस ने तमिलनाडु में डीएमके को धोखा दे दिया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस सत्ता की भूखी पार्टी है, उन्हें जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, वो तो अपनी आंतरिक समस्या ही नहीं सुलझा पा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर महिला विरोधी होने के भी आरोप लगाए हैं।
1: तमिलनाडु में ही देखिए, 25-30 साल से कांग्रेस का डीएमके के साथ घनिष्ठ संबंध था। डीएमके के साथ गठबंधन ने कितनी ही बार कांग्रेस को संकटों से बाहर निकाला, और 2014 के पहले 10 साल उनकी जो सरकार थी वो भी डीएमके के कारण टिकी थी। लेकिन क्या हुआ, जिस डीएमके के साथ 25-30 साल का जीने मरने का नाता था, हर पल जो डीएमके कांग्रेस की भलाई के लिए काम करती थी, लेकिन जैसे ही सत्ता का खेल कहीं और मुड़ गया तो सत्ता के लालच में सत्ता भूखी कांग्रेस ने पहला मौका मिलते ही डीएमके की पीठ में छुरा भोंक दिया।
0: तो कांग्रेस सत्ता की भूखी है, ये कहा गया प्रधानमंत्री की तरफ से। और एक और बड़ी और अहम खबर, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही विजय ने डीएमके की स्टालिन सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि डीएमके सरकार राज्य पर 10 लाख करोड़ का कर्ज छोड़कर गई है। उन्होंने ये भी कहा कि वो इसे लेकर श्वेत पत्र जारी करेंगे। विजय ने 200 यूनिट बिजली फ्री करने के ऐलान के साथ ही तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स बनाने का फैसला हम ले चुके हैं। विजय ने यह भी कहा कि टीवी की सरकार अल्पसंख्यकों के साथ खड़ी रहेगी। तो तमाम बातें मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री विजय की तरफ से कही गई, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो स्टालिन सरकार है वो बहुत बड़ा कर्ज, 10 लाख करोड़ का कर्ज छोड़ के गई है राज्य पर। सगे तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सगे पूरी तरह से अगर देखा जाए तो चाहे वो डीएमके की बात हो या फिर महिला सुरक्षा की बात हो या फिर जिस तरीके से फ्री बिजली यूनिट की बात कही गई है, तमाम बातें, स्पेशल फोर्स बनाने की बात कह दी गई है विजय की तरफ से, तमाम बातें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जनता के सामने उन्होंने कह दी है।
2: हाँ जी बिल्कुल, इन्होंने कहा है कि डीएमके गवर्नमेंट, जो पिछला गवर्नमेंट था, उन्होंने 10 लाख करोड़ रुपए का लोन लिया गया है और वो पूरा हर एक तमिलियन के सिर के ऊपर है। और उन्होंने कहा है कि जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसके बारे में एक वाइट पेपर सबमिट करना चाहते हैं, और जो भी गवर्नमेंट का फंक्शन हो, गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहेगा। जो भी करप्शन के बारे में सोचना है तो उनका वो आइडिया अभी छोड़ना चाहिए, और जो भी है वो क्लीन गवर्नमेंट देंगे करके उन्होंने कहा। और उन्हें ये भी कहा है कि उनको टाइम चाहिए, वक्त चाहिए सब कुछ प्रूव करने के लिए और जो भी प्रॉमिस किया उसको डिलीवर करने के लिए।
0: और इसके बाद क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, खासतौर से जिस तरीके से निशाना उन्होंने साधा है कि किस तरीके से स्टालिन की सरकार ने 10,000 करोड़ का कर्ज छोड़ा है, उसके बाद कोई जवाब आया है?
2: अभी फिलहाल उन्होंने स्टेटमेंट किया, अभी तक इसके बारे में कोई जवाब नहीं आया है। हमको वेट करना पड़ेगा कब डीएमके रेस्पॉन्ड भी करेगा, क्योंकि राहुल गांधी स्टेज पे थे जब इन्होंने ऐसा एलिगेशन किया था। राहुल गांधी का पार्टी कांग्रेस भी

0: डीएम के अलायंस में थे जब वो पार्टी पावर में थे, और ये अभी कांग्रेस या डीएम के अभी तक इसके बारे में रिएक्शन नहीं दिया गया है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सगर इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही तमाम बातें कही गई हैं विजय की तरफ से, और आपको ये बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद विजय को बधाई दी गई है। प्रधानमंत्री की तरफ से भी अश्योर करवाया गया है कि तमिलनाडु के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं हम। तो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं शपथ के दौरान की तस्वीरें, और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की तरफ से बधाई दी गई है तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय को। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
6: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
7: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी?
4: जेके वॉल मैक्स।
2: बेस्ट पेंट?
5: जेके मैक्स।
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग।
6: करेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
7: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
3: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
8: इसमें माइक्रो फाइबर है।
3: माइक्रो फाइबर यानी
8: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत?
3: हमारे सीमेंट में नहीं है।
8: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
9: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
3: Hint, bade aaram se.
2: Cool, stylish fans. Enhance home decor with beautiful fans.
4: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
5: Summer Cool Cooler, hawa aisi chhode, puri family ko thandak se jode. Summer Cool Cooler, life banaye wonderful.
6: Vimal, bolo zubaan kesri.
7: शिव और राम क्या दो अलग अलग हैं? उसके बारे में सोच रहा था, तभी हनुमान चालीसा सुनते सुनते इस पंक्ति पर अटक गया। जब बात राम कथा की हो तो उनकी कृपा की आवश्यकता तो होती है। राम को लेकर हमारे यहाँ कोई विभाजन हो ये हमारी संस्कृति स्वीकार ही नहीं कर सकती।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.
3: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
4: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
6: जे के मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जे के मसाले, जहां स्वाद वहां जे के।
7: ये जो चांस आपको सुनाई दे रहे हैं, ये एकता की आवाज है, ये वो आवाज है जहां पर ईरान के लोग कह रहे हैं ना वो डरेंगे ना वो हटेंगे, वो अपने सरकार के साथ और अपने सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई के साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्य राउत्रे के साथ इनकलाब स्क्वायर यानी कि इनकलाब स्क्वायर में गीता मोहन आज तक।
8: আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে
9: পহলি বার বঙ্গাল মে বিজেপি কি সরকার বনি হ্যায়, পহলি বার বঙ্গাল মে বিজেপি কা পহলা সিএম বনা হ্যায়, পহলি বার শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী বনে।
8: ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব।
10: আমাদের মধ্যে এসে পৌঁছে গেছেন।
9: পহলি বার বঙ্গাল মে বিজেপি কা বেহিসাব শক্তি প্রদর্শন দেখনে কো মিল রাহা
10: হ্যায়। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জি জোরদার কট্টল ধ্বনি কে সাথ प्रधानमंत्री।
9: ये तस्वीरें अद्भुत हैं। कोलकाता का परेड ग्राउंड बीजेपी के नारों और जयकारों से गूंज रहा था। तख्तियों पर तेवर लेकर पहुंचे थे बीजेपी के कार्यकर्ता। मंच पर मोदी पहुंचते उससे पहले ही लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा था। मंच पर बीजेपी के मुख्यमंत्रियों का जमावड़ा तो था ही, साथ ही सहयोगी दलों के मुख्यमंत्री भी बीजेपी की ताकत में इजाफा करने के लिए मौजूद थे।

0: मंच पर महाकाली, दक्षिणेश्वर काली और टैगोर की तस्वीर लगी थी। कार्यक्रम में सबसे पहले मोदी ने मंच पर रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी पुष्पांजलि कर रहे हैं।
0: तमाम खास लोगों की मंच पर मौजूदगी थी। इस बीच बीजेपी अपने पुराने कार्यकर्ताओं को लेकर भी पहुंची थी।
2: श्री माखनलाल सरकार।
0: इस दौरान पीएम ने बीजेपी के 98 साल के कार्यकर्ता माखनलाल सरकार का सम्मान किया।
2: श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्हें भारतेर संविधान एवं भारत वर्षेर अखंडतार जन्य
3: आमी शुभेंदु अधिकारी।
0: उत्साह, जोश, उमंग के तमाम।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनते ही विजय ने डीएमके सरकार पर बोला हमला, कहा राज्य पर 10 लाख करोड़ का कर्ज छोड़ा, 200 यूनिट बिजली फ्री करने का ऐलान, महिला सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स। प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रम में बोले कांग्रेस सत्ता की भूखी, 25 साल तक डीएमके के साथ रहने के बाद दिया धोखा। यूपी में 2027 के चुनावी समीकरण साधने के लिए योगी कैबिनेट का विस्तार, 8 मंत्री ले सकते हैं शपथ, 6 नए चेहरे, 2 राज्य मंत्रियों को मिल सकता है प्रमोशन। केरलम में नए मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस में मंथन, दिल्ली में बैठकों का दौर जारी, अभी तक तय नहीं हो सका है मुख्यमंत्री के नाम पर कोई फैसला, दौड़ में केसी वेणुगोपाल आगे।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। 11:30 बजे के बुलेटिन में बात हम करने वाले हैं तीन बड़ी सियासी खबरों के बारे में, क्योंकि कुछ ही देर पहले टीवी के प्रमुख विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। वहीं आज दोपहर 3 बजे यूपी में योगी कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, जो बहुत ही खास माना जा रहा है। और तीसरी जो बड़ी और अहम खबर है वो है असम से जुड़ी हुई, जहां हिमंता को नेता चुन लिया गया है। हालांकि तय था, तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और असम। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं अब असम के बारे में। तो खबर असम से है। असम में फिर से हिमंत बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक में हिमंता को नेता चुन लिया गया है। और आपको बता दें कि यह साफ हो गया है कि एक बार फिर से असम की कमान होगी हिमंत बिस्व शर्मा के हाथों में। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक में हिमंता को नेता चुना गया है, उन्हें मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी जाएगी।
1: आशीर्वाद देने के आशीर्वाद का साथ साथ असम का विकास को एक नया आयाम देने के लिए हमारे सभी कार्यकर्ता का ओर से मैं भारतवर्ष की यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे सबकी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने ये चुनाव प्रसार अभियान में भाग लिया। बीते 10 साल असम का विकास को एक जो हम कभी सोचे भी नहीं था उस लेवल तक लेके गया। और ये पूरा विजय प्रधानमंत्री जी ने जो असम को विकास का रास्ता में लेके गया, ये पूरा चुनाव प्रधानमंत्री जी का विकास का ये यज्ञ को असम का जनता ने आशीर्वाद दिया है। और हम असम का जनता को विश्वास दिलाता हूं कि प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में हम अगली 5 साल भी दिन रात मेहनत करके काम करेगा। असम को असम का विकास हमारा मूल लक्ष्य होगा। असम में शांति लाने के लिए हमारे गृह मंत्री अमित शाह का जो प्रयास था, इस प्रयास का नतीजा हुए आज असम देश का अंदर एक पीसफुल स्टेट का हिसाब से उभरा है। मैं सम्माननीय गृह मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने सामने से हमें नेतृत्व दिया। इस क्षण में मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय नड्डा जी, हमारे 2021 का चुनाव का समय पार्टी का अध्यक्ष रहे और हमेशा असम वासियों को नड्डा जी का प्यार और मार्गदर्शन मिलते रहे। मैं माननीय नड्डा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने समय निकाल के हमारे बीच आए और हमें ये पूरे प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए साहस दिया। मैं असम वासियों का ओर से नायब सिंह सैनी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अमार एक बीजेपी दलर विजय लगत अमार लगत एक लगे ঘাত প্রতিঘাত প্রতিটো সময়তে আমার লগত থিয় হৈ থকা অসম গণ পৰিষদ দলৰ সভাপতি অতুল বৰা ডাঙৰিয়া আৰু গণ পৰিষদৰ সকলো বিধায়ক আৰু কাৰ্যকৰ্তাকো আজিৰ এই মুহূৰ্তত মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো। বডোলেন্স পিপলস ফ্রন্ট আৰু বডোলেন্স পিপলস ফ্রন্টৰ সভাপতি বিটিসিৰ মুৰব্বী হাগ্রামা মহিলারী ডাঙরিয়াকো তেখেতর সমর্থনের বাবে, আমার প্রতি দেখুয়া সমর্থনের বাবে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জানাইছো। বিপিএফ দলের সহযোগিতার বাবে এইবার বিটিসি অঞ্চলতো ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে 4খনকৈ আসন পাবলৈ সক্ষম হৈছে আর বিপিএফ দলেও নিজেও 10খনকৈ আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মই বিপিএফ দলৰ বিধায়ক আৰু কাৰ্যকৰ্তা সকলকো বহুত বহুত ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছো। আপনার সকলে জানে অহা 12 তারিখে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার উপস্থিতিত NDA মন্ত্রিসভায় তৃতীয়বারের বাবে শপথ গ্রহণ করব। মানে রাইজক অনুরোধ করম রাইজে যাতে আশীর্বাদ সদায় আমাক দি থাকে, কারণ অসমবাসী রাইজর আশীর্বাদ সাহসে হয়েছে আমার কর্মযজ্ঞর প্রেরণা। অসমবাসী রাইজক সেবা করিবর বাবে আমি রাজনীতিলৈ আহিছো, আৰু তিনিওটা দলর আটাইতকৈ ডাঙর লক্ষ্যই হৈছে অসমৰ বিকাশ আৰু দেশৰ আটাইতকৈ বিকশিত রাজ্যৰ মাজলৈ অসমখনক আগবঢ়াই লৈ যোৱা। মই অসমবাসী রাইজক অত্যন্ত শ্রদ্ধা আৰু বিনয়ৰে সৈতে পুনৰ এবাৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো, আৰু তেখেতসকলক আমাক এনেকৈ আশীর্বাদ দিবলৈ মই আকৌ এবাৰ অনুরোধ জনাইছো, প্রার্থনা জনাইছো। শেষত এই গোটেই আমার নির্বাচনের আজির পর্যন্ত আমার রাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়া ডাঙরিয়ায় আমাক যে নেতৃত্ব দিলে তার।
0: तो एक बार फिर से असम हेमंता बनेंगे असम के मुख्यमंत्री, दूसरी बार उनके हाथों में कमान आएगी। बंपर जीत के बाद अब तय हो गया है, क्योंकि जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे और जो विधायक दल की बैठक हुई है उसमें विधायक दल का नेता चुन लिया गया है हेमंत बिस्व सरमा को। तो एक बार फिर से असम की कमान उनके हाथों में होगी, एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि उन्होंने खुद बताया कि 12 तारीख को नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां की जा रही हैं। 12 तारीख को 11 बजे शपथ ग्रहण हो रहा है। तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष जुड़ गए, उनका हम रुख करेंगे। पीयूष, कई बातें यहां पे हेमंत बिस्व सरमा की तरफ से साफ कर दी गई हैं और एक बार फिर से असम की कमान उनके हाथों में जा रही है।
2: जी बिल्कुल, इसमें कोई संशय भी नहीं था कि हेमंत बिस्व सरमा ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे असम के। और आज विधायक दल की बैठक में उनको नेता भी चुन लिया गया है। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा वहां मौजूद थे, वो मुख्य पर्यवेक्षक के तौर पर वहां गए थे और सह पर्यवेक्षक के तौर पर मुख्यमंत्री हरियाणा के नायब सिंह सैनी वहां पहुंचे थे। और कुछ देर पहले ही विधायक दल की बैठक में हेमंत बिस्व सरमा को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और 12 तारीख को वो असम में शपथ लेने जा रहे हैं। और उस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा एनडीए के सभी नेता भी वहां पर मौजूद रहेंगे। जिस तरह का भव्य समारोह हमने पश्चिम बंगाल में देखा, लगभग उसी तरह का समारोह असम के गुवाहाटी में भी होने जा रहा है, क्योंकि तीसरी बार असम में बीजेपी की सरकार बनी और इस बार तो मैंडेट जैसा पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मिला लगभग वैसा ही
0: छप्पर फाड़ के बिल्कुल ऐतिहासिक जीत रही है इस बार असम में। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका पीयूष। आगे बढ़ेंगे, अब उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे, क्योंकि आज यूपी में कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार है आज, बहुत ही महत्वपूर्ण इस विस्तार को माना जा रहा है, क्योंकि अगले ही साल विधानसभा के इलेक्शन है उत्तर प्रदेश में। और आपको यह भी बता दें कि इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए बीजेपी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को साधने की कोशिश करेगी। जानकारी के मुताबिक योगी मंत्रिमंडल विस्तार में कुल 8 मंत्री शपथ लेंगे, जिनमें 6 नए चेहरे होंगे, जबकि 2 राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे। तो कुल 54 मंत्री पहले से ही कैबिनेट में हैं, 60 तक अधिकतम सीमा हो सकती है। और आपको बता दें कि आज नए 6 चेहरों को मौका दिया जाएगा। कोशिश यही होगी कि जाति और क्षेत्रीय आधार पर संतुलन बनाया जा सके, संतुलन बिठाया जा सके, क्योंकि विधानसभा इलेक्शंस में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा। तो आज का दिन बहुत ज्यादा खास है उत्तर प्रदेश के लिहाज से, क्योंकि इंतजार किया जा रहा है कि किस किस का नाम शामिल है। हालांकि नाम लगभग तय हो चुके हैं, 6 नए मंत्रियों को आज कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। 54 अभी मंत्री हैं मंत्रिमंडल में, अधिकतम सीमा 60 है और अधिकतम सीमा तक ये सीमा पहुंच जाएगी। साथ ही साथ 2 और लोगों के प्रमोशन की बात भी सामने आ रही है। योगी मंत्रिमंडल में आज के विस्तार में कुल 8 मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। सोमेंद्र तोमर हैं, राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे। साथ ही साथ अजीत पाल भी हैं, कैबिनेट मंत्री वो बनाए जाएंगे। वहीं हंसराज विश्वकर्मा, कैलाश लोधी, कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दिलेर, मनोज पांडे, भूपेंद्र चौधरी, मंत्री पद की आज शपथ लेने जा रहे हैं। ये तमाम तैयारियां की जा रही हैं आगे आने वाले इलेक्शंस को लेकर, क्योंकि इलेक्शंस यानी विधानसभा के चुनावों में बहुत ज्यादा समय नहीं है। जिन दो चेहरों को अभी हम आपको दिखा रहे हैं, पदोन्नति मिलने वाली है क्योंकि इन्हें कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, और जो संभावित मंत्रिमंडल विस्तार के नए चेहरे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि जातिगत आधार पर, क्षेत्र के आधार पर संतुलन बनाने की कोशिश योगी आदित्यनाथ की रहेगी। तो यूपी कैबिनेट विस्तार में जिन विधायकों के मंत्री बनने की चर्चाएं हैं उनके घरों पर जश्न शुरू हो चुका है। तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वाराणसी की, जहां के जिला अध्यक्ष और एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा का नाम संभावित मंत्रियों में शामिल है। तस्वीरें देखिए जरा, ढोल लगाड़ों के साथ मिठाइयां एक दूसरे को खिलाई जा रही हैं, जश्न का माहौल है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष जुड़ गए। संतोष की रिपोर्ट सबसे पहले देख लीजिए।
3: हंसराज जी हमारे साथ हैं, तो हमारे साथ भावी मंत्री हंसराज विश्वकर्मा, मंत्री तो कह ही सकते हैं ना अभी तो?
4: नहीं अभी नहीं, मत कहिए, जब तक शपथ न हो तब तक कहने में कोई वो नहीं।
3: मुख्यमंत्री ने तो दे दी, बताया आपको कि हाँ आप शपथ लेनी है।
4: अब शपथ लेनी है जब तक ले न लिया जाए।
3: कौन कौन ले रहा है आपके साथ?
4: अभी छह लोग हैं। कौन-कौन है? हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री आदरणीय हमारे भूपेन्द्र चौधरी जी हैं, मैं हूँ, कैलाश राजपूत जी हैं, एक मनोज पांडे जी हैं, एक कृष्णा पासवान जी हैं, महिला हैं, और दिलेर जी हैं जो राजनीतिक खानदान से आते हैं। कल हमारी मुलाकात हुई, ये छह लोगों को बुलाया गया है। अब आगे देखिए कौन सी जिम्मेवारी मिलती है। इसके लिए मैं निश्चित तौर पर मैं अपनी तरफ से अपने वाराणसी के सांसद, देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री माननीय आदित्य योगी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं।
3: एक सवाल ये कि जो आखिरी में पूरी सरकार का दूसरे टर्म का भी ये छह महीने रह गए, तो लगता नहीं है कि बहुत देर कर दी सरकार आते आते?
4: कोई देर नहीं की है, देर आई दुरुस्त आई है। निश्चित तौर पर पूरा जितना समय मिलेगा उतने ही में अच्छा हो जाएगा। निश्चित तौर पर इसमें कोई घबराने की बात नहीं, जितना समय मिलेगा उतने ही में अच्छा काम करके और प्रचंड बहुमत 2027 में एनडीए के यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर आएगी।
3: हंसराज विश्वकर्मा को कौन सा विभाग का एक्सपर्टीज है कि अगर उनको मिलेगा तो बहुत अच्छा कर जाएंगे?
4: विभाग जो भी सेवा का अवसर मिलेगा उसके लिए हम लोग तैयार हैं, जो भी मिलेगा सब किया जाएगा।
3: ये एक तरीके से जो कैबिनेट विस्तार हो रहा है, इसमें ब्राह्मण, राजपूत, विश्वकर्मा, पासवान, ये तमाम एक तरीके से समाजवादी पार्टी के पीडीए का जवाब काउंटर है ये बीजेपी का?
4: आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी कभी जाति की राजनीति नहीं करती है, ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। ये राष्ट्रवादी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबके सम्मान के साथ ये सभी लोगों का सम्मान करती है।
0: जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक जुड़ गए हैं। कुमार का रुख करेंगे। अभिषेक, बेशक ढोल लगाड़ों की तस्वीरें कई जगहों से आ रही हैं, लेकिन हमने सुना कि जब तक शपथ न ले ली जाए तब तक माना नहीं जाना चाहिए कि कन्फर्म हो गई है बात।
5: नहीं शशि, बीजेपी के बारे में ये तो कहा जाता है कि आखिरी वक्त तक कोई नहीं जानता कि क्या हो रहा, लेकिन इतना आप मान लीजिए कि ये जो छह नाम हैं ये तय हो चुके हैं, ये सभी सोर्सेज से कंफर्म हैं। ये नए छह नाम हैं जिसमें मनोज पांडे का नाम है, भूपेंद्र चौधरी का नाम है, जिसमें कैलाश राजपूत हैं, जिसमें सुरेंद्र दिलेर हैं, जिसमें सोमेन तोमर हैं, जिन जो गुजर चेहरे हैं जिनको कैबिनेट बनाया जा रहा है। तो इसके अलावा ये तमाम जो नाम आप इस वक्त देख रहे हैं इसमें ज़्यादातर कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे, क्योंकि ये एक मैसेज देने की कोशिश है और निश्चित तौर पर जातियों और सामाजिक समीकरण को साधने की पूरी कोशिश दिखाई दे रही है। और साफ तौर पर ये दिख रहा है कि ये जो कैबिनेट विस्तार है ये 2027 के लिए ही है। शशि
0: आप बने रहे अभिषेक हमारे साथ, और हमारे साथ अपने कृष्णा पासवान और साथ ही साथ कैलाश जी का बातचीत जो आज तक ने उनके साथ की है वो दिखा देते हैं आपको।
6: मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी बहुत बहुत बधाई और उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता बूथ से लेकर के जिले मंडल तक, मंडल से जिले तक, जिले से क्षेत्र तक, प्रदेश तक और केंद्र तक के सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ।
3: पहले तो बधाई, मंत्री बनने जा रहे हैं, चार बार के विधायक, अब की मंत्री बनेंगे।
7: धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको।
3: फोन आ गया?
7: हाँ आ गया।
3: मुलाकात हुई मुख्यमंत्री से?
7: हो गए। कुछ नहीं, बताया कि शपथ ग्रहण 3:30 है, 3 बजे पहुंच जाना।
3: अच्छा,
7: 3 बजे।
3: और कौन कौन है आपके साथ?
7: जो आप टीवी में नाम देख रहे वो सब है।
3: अरे आपने भी तो कुछ मुलाकात होगी आपके संगी साथी?
7: पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी भी थे, पासवान जी महिला है, एक विश्वकर्मा जी हैं, एक दिलेर साहब हैं,
8: मनोज पांडे
7: जी हैं, ये लोग थे और इतने लोग थे।
3: आप जिस कन्नौज से आते हैं वो समाजवादी का गढ़ कहा जाता है, और अखिलेश यादव ने तंज कसा है कि अब बचा क्या है करने को, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से जो अब कैबिनेट विस्तार किया जा रहा वोट बैंक की राजनीति, विपक्ष यही आरोप लगा।
7: देखिए, कन्नौज लोकसभा सपा का गढ़ रहा, ये सही बात है, लेकिन जब गढ़ रहा था तब उसमें भरतना विधानसभा शामिल थी, तो मुलायम सिंह जी भी चुनाव जीते, प्रदीप यादव भी जीते और अखिलेश यादव भी जीते, और शायद उनकी पत्नी भी चुनाव जीती, शायद क्या जीती हैं, डिंपल जी। तो वो गढ़वाला जो जिला था वो तो कट के चला गया इटावा में। अब इस समय कन्नौज लोकसभा में सर्वाधिक अगर वोट किसी जात का, वो लोधीराजपुर समाज का है।
0: तो आज का दिन यूपी के लिए भी खास है, क्योंकि 8 नए चेहरे कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। टीवी के चीफ सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में आयोजित हुआ शपथ ग्रहण समारोह, उन्होंने मुख्यमंत्री पद की वहां शपथ ली। बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे हुए थे, बाहर भी पटाखे फोड़कर खुशियां जाहिर की जा रही थी, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही थी। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर पूजा अर्चना, पटाखे, ढोल नगाड़े, मिठाइयां, इन तमाम चीजों का सिलसिला चला है। तो देखिए कि किस तरीके से माता पिता भावुक नजर आए शपथ समारोह में। त्रिशा के साथ साथ बाकी के कई बड़े चेहरे यहां पहुंचे थे इसमें हिस्सा लेने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
11: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
12: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
9: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
9: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस, एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
13: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम, एंड दैट्स द साउंड ऑफ अ फ्रॉड अलर्ट फ्रॉम वेल्स फार्गो, flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd. To the bank and to Claire. 2 taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
14: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
11: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
15: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
16: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
17: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.

0: तेज रफ्तार से भागती भारतीय इकोनॉमी के सामने अचानक ब्रेक लगने का खतरा मंडरा रहा है। मिडिल ईस्ट में उठती हलचल का असर यहाँ हर घर की जेब तक पहुँचने लगा है। महंगाई की आहट, खर्च पर लगाम और ग्रोथ की चाल, इन सब ने मिलकर दबाव बढ़ा दिया है। इस संकट के बीच ग्लोबल फाइनेंशियल कंपनियां और रेटिंग एजेंसियां भी भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटा रही है। दरअसल कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें भारत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित हो रही है। इसके अलावा कमजोर मॉनसून की आशंका से खेती और ग्रामीण इलाकों की डिमांड घटने का डर है और महंगाई की वजह से आम आदमी की जेब खाली हो रही है, जिससे मार्केट में खरीदारी कम हुई है। हालांकि इसकी सबसे बड़ी वजह केवल तेल की कीमतों का खेल है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा इम्पोर्ट करता है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने से देश की इम्पोर्ट कॉस्ट में इजाफा होता है, जिससे रुपया कमजोर होता है और कच्चा माल महंगा होने से इंडस्ट्री की लागत बढ़ जाती है। आयातित तेल पर ज्यादा निर्भरता इकोनॉमी को ग्लोबल झटकों के प्रति संवेदनशील बनाती है। वहीं रुपए पर दबाव बढ़ने से कारोबार की लागत बढ़ती है। ऐसे में क्लीन एनर्जी और वैकल्पिक फ्यूल की तरह तेजी से बढ़ना जरूरी हो गया है। डॉलर के मुकाबले कमजोर होता रुपया और बढ़ता व्यापार घाटा एमएसएमई की कमर तोड़ रहा है, खास तौर पर वो फैक्ट्रियां जो ईंधन के लिए नेचुरल गैस का इस्तेमाल करती हैं, उनके लिए काम चलाना घाटे का सौदा बन रहा है। दूसरी चुनौती मॉनसून से जुड़ी हुई है। अगर बारिश उम्मीद से कम रही तो खेती पर असर पड़ेगा, गाँव की कमाई घटेगी और इसका असर शहरों के बाजार तक पहुँचेगा। तीसरी मार महंगाई के जरिए हर घर तक पहुँच रही है, क्योंकि भारत की ग्रोथ में खपत की बड़ी भूमिका है। महंगाई बढ़ने और आमदनी धीमी रहने से लोग खर्च घटाते हैं, जिससे बाजार की डिमांड और बिजनेस एक्टिविटी दोनों ही प्रभावित होते हैं। इन हालात के बीच कुछ राहत की तस्वीर भी सामने आई है। मूडीज रेटिंग से ताजा रिपोर्ट ने भारत की इकोनॉमी को मजबूत बताया है। मूडीज के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क भरोसेमंद और साफ है। वहीं भारत ग्लोबल झटकों को झेलने की बेहतर स्थिति में है और आरबीआई की नीतियों ने महंगाई की उम्मीदों को कंट्रोल में रखा हुआ है। रिपोर्ट में साल 2026 से 2027 में तेज ग्रोथ का भरोसा भी जताया गया है। सरकार ने भी हालात को संभालने के लिए तेल सप्लाई सुरक्षित करने और एनर्जी सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश तेज कर दी है। ग्लोबल उथल पुथल के दौर में भारत के लिए अपने संसाधनों को मजबूत करना ही एकमात्र रास्ता बचा है। विदेशी रेटिंग एजेंसियां भले ही चेतावनी दे रही हैं, लेकिन भारत का मजबूत बैंकिंग सिस्टम और विदेशी मुद्रा भंडार इस लड़ाई में बड़ा हथियार साबित होगा। आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
3: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

की भूखी 25 तक डीएमके के साथ रहने के बाद दिया धोखा। यूपी में 2027 के चुनावी समीकरण साधने के लिए योगी कैबिनेट का विस्तार, 8 मंत्री ले सकते हैं शपथ, 6 नए चेहरे, 2 राज्य मंत्रियों को मिल सकता है प्रमोशन। असम में एक बार फिर हेमंता की सरकार, केंद्रीय पर्यवेक्षक जेपी नड्डा के सामने चुने गए विधायक दल के नेता, 12 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह, प्रधानमंत्री मोदी होंगे शामिल। और केरल में नए मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस में मंथन, दिल्ली में बैठकों का दौर जारी, अभी तक नहीं हो सका है मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला, दौड़ में केसी वेणुगोपाल आगे।

नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। पश्चिम बंगाल के ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान में शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है और इसी के साथ बीजेपी का पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का दशकों पुराना सपना पूरा हो गया। सिटी ऑफ जॉय कहे जाने वाले कोलकाता में सत्ता परिवर्तन की जैसी तस्वीरें दिखी वो अद्भुत थी। मंच पर पीएम मोदी सहित बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री एनडीए परिवार के सदस्य थे और सामने मोदी मोदी के नारे लगाती पश्चिम बंगाल की जनता।

0: बंगाल की जनता का स्वागत और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के भाव एक दूसरे का धन्यवाद अदा कर रहे थे। में तीन सीट से 2026 यानी ठीक एक दशक बाद बहुमत से सरकार का उत्साह उत्सव में बदल रहा था। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड ग्राउंड में मंच सजा था शुभेंदु अधिकारी की शपथ के लिए। हर किसी को उस पल की प्रतीक्षा थी, लेकिन निगाहें उठ रही थी पीएम मोदी की ओर। बीजेपी के 46 वर्ष के इतिहास में पहली बार पश्चिम बंगाल ने विजय का ध्वज बीजेपी के हाथों में थमाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता के सामने दंडवत प्रणाम करके अपना श्रेष्ठ धन्यवाद प्रस्तुत किया। गुरुदेव टैगोर की जयंती पर पुष्पों से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पण करके कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कुछ सामने थे, कुछ मंच पर थे, लेकिन वो सब थे जिन्होंने अपनी आंखों में एक दिन बीजेपी का दीपक जलाए रखने के संकल्प को जिंदा रखा था। पीएम मोदी इसी क्रम में 98 साल के माखनलाल सरकार की ओर बढ़े, उनका सम्मान किया और उनके पैर छूकर अपनी भावनाएं प्रकट की। माखनलाल सरकार बीजेपी के बीज पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। उन्होंने दशकों विचारधारा का झंडा बुलंद रखा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ कश्मीर में जेल गए। कांग्रेस और घोर लेफ्ट सरकारों के दौर में भी पश्चिम बंगाल में बीजेपी का विस्तार करते रहे। ये सम्मान सबसे बुजुर्ग कार्यकर्ता का था और संदेश सबसे युवा कार्यकर्ताओं के लिए कि संगठन सर्वोपरि है। मंचीय औपचारिकताओं के बाद शपथ की बारी आई। सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने शपथ लेकर बंगाल में बीजेपी शासन का आधिकारिक ऐलान कर दिया।
1: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करीब।
0: शुभेंदु के बाद दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू, निशीत प्रमाणिक ने शपथ ली। इन शपथ के बाद तय हो गया कि ये पांच सरकार में अहम भूमिका निभाएंगे।
2: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया है। और उसका बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ा साको से हुआ है, कवि गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण कर।
3: अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबल, ये भाजपा सरकार है हर टाइम लोगों के लिए। इसीलिए आज 21 राज्य में, 21 राज्य में हमारा सरकार चल रहा है। हम लोग सेवा करने के लिए आए हैं, बंगाल के सेवा करने के लिए आए हैं, शासन नहीं।
0: मंच पर बीजेपी और एनडीए का पूरा कुनबा था। गृह मंत्री अमित शाह थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, योगी आदित्यनाथ थे, चंद्र बाबू नायडू थे, सम्राट चौधरी थे, नायब सिंह सैनी थे, चिराग पासवान थे, कोनराड संगमा थे, यानी दूर दूर तक बीजेपी के सारे सिरमौर मौजूद थे। शुभेंदु ने सबका धन्यवाद अदा किया तो योगी आदित्यनाथ ने उनके गले में भगवा अंग वस्त्र पहनाकर खास संदेश भी दिया। बीजेपी संघर्ष से सत्ता तक पहुंचने के सफर में उन लोगों को नहीं भूली जिनके परिजनों ने बीजेपी का झंडा उठाने के लिए अपनी जान गंवाई। उन लोगों के लिए भी एक मंच पर व्यवस्था की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी शपथ के बाद उन सभी से मिले। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने काम शुरू कर दिया है। कानून व्यवस्था के सवाल का हल जल्दी ढूंढने के लिए डीजीपी, कमिश्नर सहित शीर्ष पुलिस अधिकारियों की बैठक ले चुके हैं। यहां से शुरू होता है पश्चिम बंगाल में आजादी के बाद पहली बार भगवा राज और शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व की कड़ी परीक्षा।
4: शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। लेकिन उनके साथ जिन 5 मंत्रियों ने शपथ ली उसके जरिए बीजेपी ने पूरे प्रदेश को एक संदेश देने का प्रयास किया है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले ये नेता, अलग अलग समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले ये नेता, एक बड़ी मैसेजिंग है। बीजेपी की सरकार बन गई, शपथ की जिम्मेदारियां पूरी हो गई और अब बीजेपी के लिए जीत जितनी बड़ी चुनौती थी उससे भी बड़ी कई चुनौतियां सामने खड़ी हैं।
5: जनता ने हमसे जो अपेक्षाएं रखी हैं, जिस आशाओं को संजो कर मैंडेट दिया है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके विश्वास को तनिक भी ठेस न पहुंचे, इसमें कहीं कमी न रहे।
1: शपथ करते जे विधि द्वारा स्थापित हो।
6: केंद्र की कमान ने वादों की बागडोर राज नेतृत्व को सौंप दी है। शपथ का समय बीत चुका और अब एक्शन की घड़ी ने टिक टिक करना शुरू कर दिया।
2: हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए, आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया है और उसका बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ा साको से हुआ है, वो भी गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण कर।
6: शुभेंदु अधिकारी पर अब उस राज को संभालने की जिम्मेदारी है जहां राजनीति दशकों से भावनाओं, विचारधाराओं और टकराव के बीच चलती रही है। उन्हें उस विश्वास पर खड़े उतरना है जिसका बीज कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बोया था, अटल ने सींचा था और पीएम मोदी ने बड़ा किया।
1: बंगाल की पावन धरा पर एक नया सूर्योदय हुआ है जिसका इंतजार पीढ़ियों ने किया है।
6: शुभेंदु के सामने जनता की उम्मीदों का घोषणा पत्र टंगा है जिसमें एक एक करके पार्टी की सारी आकांक्षाएं भी अंकित हैं। सांप्रदायिक संतुलन और सामाजिक सामंजस्य, पश्चिम बंगाल की करीब 27% आबादी मुस्लिम समुदाय से आती है, चुनाव के दौरान घुसपैठ, सीमा सुरक्षा और नागरिकता जैसे मुद्दों पर लगातार वार पलटवार होता रहा। चुनाव के दौरान बीजेपी के समर्थन में हिंदू वोटों का झुकाव भी देखने को मिला, लेकिन अब सवाल सरकार चलाने का है।
2: आमादेर नेता नरेंद्र मोदी जी जे जे गारंटी दिए सब गारंटी पूरण करार काज भारतीय जनता पार्टी सरकार करबे, आमी नय आम्रा नीतिते भारतीय जनता पार्टी सरकार करबे। भय आउट भरसा इन।
6: विपक्ष पहले से ही इस मुद्दे को राजनीतिक हथियार बनाने की तैयारी में है। चुनाव से पहले कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस दोनों ये आरोप लगा रही थी कि बीजेपी बंगाल को असम बनाना चाहती है, लिहाजा सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी सुरक्षा और सामाजिक संतुलन के बीच सही रास्ता निकालना। बॉर्डर फेंसिंग और घुसपैठ, भारत बांग्लादेश सीमा बंगाल की सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौतियों में से एक है। कई इलाकों में अब भी सीमा पर पूरी तरह फेंसिंग नहीं हो सकी है। शपथ से एक दिन पहले भी अमित शाह ममता सरकार पर यह आरोप लगा रहे थे कि राज्य सरकार ने केंद्र का सहयोग नहीं किया, अब सरकार के सामने सीमा को सुरक्षित करने की चुनौती होगी।
5: घुसपैठ असंभव होने वाली, गौ तस्करी असंभव होने वाली है और दृढ़ता के साथ बंगाल सरकार और भारत सरकार इस सीमा को राष्ट्र की सुरक्षा के अभेद किले के अंदर परिवर्तित कर देगी।
6: लेकिन असली चुनौती सिर्फ बाड़ लगाने की नहीं है, घुसपैठ रोकना, स्थानीय लोगों का भरोसा बनाए रखना और सीमा पर रहने वाले नागरिकों की जिंदगी प्रभावित न हो, ये सब एक साथ संभालना होगा क्योंकि सीमा का मुद्दा बंगाल में सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि राजनीति और पहचान से भी जुड़ा हुआ है। गोरखालैंड मुद्दा, दार्जिलिंग और पहाड़ी इलाकों में गोरखा समुदाय लंबे समय से अलग राज्य की मांग करता रहा है। बीजेपी ने चुनावों में वादा किया था कि इस मुद्दे का समाधान निकाला जाएगा।
7: 6 माह में हर गोरखा के मुंह पर संतोष वाली हंसी हो, ऐसा समाधान हम निकाल लें। 10 को जूनी, 10 को पुरानी गोरखा समस्या का गोरखाओं के हिसाब से समाधान कर जाएंगे।
6: यही सबसे कठिन सवालों में से एक है, क्योंकि अगर अलग राज्य की मांग को ज्यादा हवा मिलती है तो बंगाल की क्षेत्रीय राजनीति में नया टकराव पैदा हो सकता है। राजनीतिक हिंसा रोकना। बंगाल लंबे समय से राजनीतिक हिंसा के लिए बदनाम रहा है। चुनाव खत्म होने के बाद भी कई इलाकों में हिंसा, तोड़फोड़ और हत्याओं की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। कोलकाता में सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या कर दी गई। चुनाव के बाद कहीं पार्टी दफ्तर जलाए जा रहे हैं तो कहीं जुलूसों पर हमला हो रहा है। यानी सरकार के सामने पहली सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी कानून व्यवस्था को बहाल करना। प्रशासन और भ्रष्टाचार। पूरे चुनाव के दौरान बीजेपी ने कट मनी, शिक्षा भर्ती घोटाले और भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया था। अब सरकार बनने के बाद लोगों की उम्मीद है कि प्रशासन में पारदर्शिता आएगी। सबसे बड़ी चुनौती होगी सिस्टम को राजनीतिक दबाव से निकालकर विकास केंद्रित बनाना।
5: ममता जी के शासन में एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण हुआ और राजनीति का अपराधीकरण हुआ। अपराधी ही राजनेता बन गए तो विकास की कोई गुंजाइश ही नहीं बनी। मैं आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से बंगाल की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, भाजपा के शासन में ना एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण होगा ना राजनीति का अपराधीकरण होगा। ये हमारा बंगाल की जनता को वादा है।
6: बंगाल में बीजेपी की जीत ऐतिहासिक जरूर है, लेकिन सोनार बांग्ला की जिस सोच की बात की गई उसकी असली परीक्षा बंगाल की जमीन पर होगी, क्योंकि जनता ने सत्ता तो दे दी है, अब सरकार की जिम्मेदारी है भरोसा हासिल करने की।
8: ईश्वर नामे शपथ करी थी।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने बंगाल में केवल चुनाव नहीं जीता बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का पूरा समीकरण बदल दिया। एक तरफ पीएम मोदी के रैलियों में उमड़ा जन सैलाब और मोदी के नारों ने माहौल बनाया, दूसरी तरफ अमित शाह की माइक्रो मैनेजमेंट वाली रणनीति ने हर सीट पर जीत की जमीन तैयार की। कभी बीजेपी के लिए मुश्किल माने जाने वाले बंगाल में भगवा लहराना इस बात का संकेत है कि मोदी का करिश्मा और शाह की रणनीति जब साथ आते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है।
1: बंगाल की पावन धरा पर आज एक नया सूर्योदय हुआ है। ये उस अडिग विश्वास की हुंकार है जिसने डर, तुष्टिकरण और हिंसा की राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंका है। घुसपैठियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जहां भाजपा वहां गुड गवर्नेंस। बांग्लाए परिवर्तन होएगे छे।
6: बंगाल में सत्ता का बदला हुआ

0: अभियान जो 6 महीने पहले शुरू हुआ था, तब ये माँ दुर्गा माँ काली दक्षिणेश्वर टेम्पल इसी के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया। पहले दफा है कल्चरल, दूसरे दफा है तृणमूल से नहीं आना, तीसरा जो है वो बार बार बंगाल प्राइड के ऊपर हाथ कर रहे थे, चौथा है एक बड़ा महत्वपूर्ण है, देखिए बंगाल का जो चुनाव करते हैं पुलिस जो है सरकारी कर्मी है उसको डीए का बहुत दिन से ठीक से नहीं मिल रहा था। इस बार बीजेपी का पहले से नारा था कि हम लोग पावर में आएगा तो आपको डीए मिलेगा, आपका वेतन बढ़ेगा, तो सरकारी कर्मचारी का मन भी वो जीत लिया।
1: इस जीत का सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर है, लेकिन कामयाबी की इस अद्भुत कहानी में अहम किरदार गृह मंत्री अमित शाह भी है।
2: सरकारें भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाती, सरकारें देश की जनता बनाती है, बंगाल की जनता बनाती है। हमने पूरे प्रचार में उत्साह देखा है, इस बार भाजपा की सरकार बनना सुनिश्चित है।
1: अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी की थी। कुल 256 चुनावी कार्यक्रमों का प्लान तैयार किया गया, जिनमें 97 बड़ी रैलियां, 54 रोड शो, 6 मंदिर दर्शन, 14 जनसंपर्क कार्यक्रम और 1 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम भी शामिल था। और ये पूरा कार्यक्रम खुद गृह मंत्री अमित शाह ने तय किया था। जब अमित शाह बंगाल में लगातार भाषण दे रहे थे तो सब सोच रहे थे उन्हें बांग्ला भाषी राज्य में कौन सुन रहा होगा, लेकिन जब नतीजे आए तो अमित शाह ने भाषा और क्षेत्र की सारी सीमाओं को तोड़ डाला था।
2: बंगाल की मुख्यमंत्री जी अफवाह फैला रही हैं कि बंगाल में अगर भाजपा का शासन आया तो बाहरी लोग शासन करेंगे। मैं दीदी को बताना चाहता हूं, दीदी बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में ही जन्म लेने वाला, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा और बंगाली बोलने वाला होगा। इतना ही है कि आपका भतीजा नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा।
3: प्रथम चरण का मतदान हो चुका है, चुनाव।
1: अमित शाह ने सफलता का जो पैमाना रच दिया है वो अपने आप में राजनीति विज्ञान के छात्रों के लिए शोध का विषय है। कहा जा रहा है कि ए से ई तक के वर्ग बनाए गए थे। ए कैटेगरी में वो सीटें थी जहां जीत निश्चित मानी गई, बी कैटेगरी में उन सीटों को रखा गया जहां पार्टी के लिए माहौल अनुकूल था पर लगातार प्रयास जरूरी था, सी कैटेगरी में उन सीटों को रखा गया जहाँ टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई थी, डी कैटेगरी में वो सीटें थी जहां पार्टी के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण थी और वहां ग्राउंड वर्क की जरूरत थी, जबकि ई कैटेगरी में उन कमजोर सीटों को रखा गया जहां पार्टी के लिए जीत की शुरुआती संभावनाएं बेहद कम थी। सीटों की स्थिति के हिसाब से चुनावी रणनीति तैयार हुई तो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बीजेपी के सारे सितारे जुट गए।
4: सनातन परंपरा के बारे में बोलने को प्रतिबंधित किया जाता है, बंगाल की डेमोक्रेसी को बदला जा रहा है, जय श्री राम पर प्रतिबंध लगाया जाता है, मां दुर्गा पूजा और मां दुर्गा पूजा विसर्जन की मूर्ति विसर्जन की शोभा यात्रा को प्रतिबंधित किया जाता है, लेकिन ममता दीदी सड़कों पर नमाज पढ़वाती और इफ्तारी की दावत कराती है।
1: प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का जादू तो सर चढ़कर बोल ही रहा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन की जो अलख जगाई उसने भी बड़ा काम किया। योगी आदित्यनाथ ने 22 सीटों पर बीजेपी का आक्रामक प्रचार किया जिनमें से 19 पर बीजेपी को जीत मिली। उनका स्ट्राइक रेट 90% रहा।
5: जो भी जनता की उपेक्षा करेगा, विकास के नाम पर आने वाले पैसे पे डकैती डालेगा, गुंडों को प्रश्रय देगा, भारत की धरती पर सनातन का अपमान करेगा, उसका सुपड़ा साफ होना तय है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और बंगाल की जनता

0: ने या करके दिखाया है। मैं बंगाल की जनता का भी इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व पर विश्वास किया है। अब बंगाल सोनार बांग्ला बनेगा।
1: बंगाल का जश्न बीजेपी के खेमे में अभी चल रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि अमित शाह पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की तैयारी शुरू कर चुके हैं और लक्ष्य भी उन्होंने तय कर लिया है।
2: शुभेंदु अधिकारी सिटिंग सीएम को दो बार लगातार हराने वाले एकमात्र ऐसे नेता बन गए हैं जिनकी मिसाल कोई और देखने को नहीं मिलती। कभी जिन हाथों से उन्होंने टीएमसी का पौधा लगाया, मेहनत से सींचा, बड़ा किया, अब उन्हीं हाथों से उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को जड़ मूल से उखाड़कर कमल खिलाया। शुभेंदु अधिकारी ने आज जो हासिल किया है उसके पीछे 31 सालों की कड़ी मेहनत है।
3: मेदिनीपुर ने नंदीग्राम में 5 साल पहले बदलाव की राह दिखाई थी, अब पूरा पश्चिम बंगाल उसी परिवर्तन के रास्ते पर चल पड़ा है।
4: संघर्षशील व्यक्ति है शुभेंदु जी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखा है और टीएमसी के दूषणों को भी देखा है। यहाँ पर सुशासन देने में हमारी टीम के साथ शुभेंदु जी सफल हो गए।
1: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह के रणनीतिक कौशल ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी का परचम लहरा दिया, लेकिन इस कामयाबी के लिए जमीन पर रहकर कमल खिलाने के लिए जमीन तैयार करने शुभेंदु अधिकारी ने भी खुद को पूरी तरह झोंक दिया था।
5: ये बहुत जरूरी था, ममता बनर्जी का हराना बहुत जरूरी था। ममता बनर्जी का राजनीतिक संन्यास अभी हो गया है। 21 में नंदीग्राम में हारी, इस बार हार गया, इस बार भी हरा 15,000 से ज्यादा वोट से, उनको खुल के मुसलमान वोट दिया। वार्ड नंबर 77 में जितना मुसलमान वोट देने के लिए निकला सब ममता को वोट दिया, और मुझे हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट लोग ने आशीर्वाद देकर जिताया। ये जीत हिंदुत्व का जीत है, ये जीत बंगाल का जीत है।
1: पीएम मोदी और अमित शाह के आक्रामक प्रचार से कहीं अधिक शुभेंदु अधिकारी का ममता को उनके ही गढ़ से ललकारना टीएमसी को हार से भी अधिक चुभ रहा होगा, क्योंकि ये वही शुभेंदु हैं जो कभी टीएमसी की नींव थे पर आज बीजेपी के सिरमौर बने हुए हैं।
6: भवानीपुर में हमने कभी 2019 की लोकसभा में उस विधानसभा को हमने जीता भी है
7: जी।
6: वहाँ लोगों की नाराजगी है, एक संतरास के कारण, भय के कारण लोग वोट दे देते थे। इस बार नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों जगह पर शुभेंदु जी का विजय होगा।
1: शुभेंदु अधिकारी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1995 में कांग्रेस से की और मेदिनीपुर की कांथी नगर पालिका में पार्षद चुने गए। 1998 में टीएमसी का गठन हुआ तो वो ममता के साथ आ गए। उनका पूरा परिवार जो स्थानीय स्तर पर बड़ा सियासी रसूख रखता था वो सब टीएमसी का हिस्सा बन गए। उनके परिवार को टीएमसी के सह संस्थापक सदस्य कहा गया। 2006 में शुभेंदु टीएमसी के टिकट पर कांथी दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर विधानसभा पहुंचे। 2007 में समय ने शुभेंदु अधिकारी को ऐसा मौका दिया जिसने पश्चिम बंगाल और उनके राजनीतिक करियर की पूरी दिशा ही बदल दी। शुभेंदु अधिकारी ने लेफ्ट की वामपंथी सरकार की ऐतिहासिक भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन की कमान नंदीग्राम में संभाली। शुभेंदु ने भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी का गठन किया।
8: हमरा चाहिए आरो बेशी संख्यक मानुष, आरो बेशी संख्यक संगठन, सबाई आसुन, जार जा क्षमता आछे ताई निये रास्ताय नामुन। एवं आमरा आजके आवेदन करछि, जेहेतु এত মানুষের গণহত্যা, এত মানুষের ধর্ষণ, এখনও অজস্র মানুষ নিখোঁজ, তাদের কোনো ট্রেস নেই এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বলে কিছু নেই। অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা টোটালি গুন্ডাগিরি করা ছাড়া কিছু করছে না।
1: আন্দোলন নে পুরে পশ্চিম বঙ্গাল মে লেফট কে খিলাফ মাহল বনায়া আর 34 সাল পুরানি সরকার 2011 মে তৃণমূল কংগ্রেস নে খতম কর দি। শুভেন্দু কি লোকপ্রিয়তা ইস আন্দোলন কা নেতৃত্ব করনে কে কারণ ইতনি বড় চুকি থি কি ও 2009 মে তুমলুক সে সাংসদ বনকর দিল্লি পৌঁছ চুকে থে, লেকিন মমতা ব্যানার্জি পশ্চিম বঙ্গাল কি মুখ্যমন্ত্রী বন গই। মমতা কা কহনা থা কি উনকি পার্টি পরিবারবাদ কো স্বীকার নহি করতি অর ও কাডর কো মহত্ব দেঙ্গি। ইসসে টিএমসি মে শুভেন্দু অধিকারী কো মমতা কে বাদ নেতা নম্বর দো মানা জানে লগা থা। 2014 মে শুভেন্দু অধিকারী ফির টিএমসি কে টিকট পর তুমলুক সে সাংসদ বনে। 2016 মে উনহোনে নন্দীগ্রাম সিট সে বিধানসভা চুনাব লড়া और जीत कर ममता सरकार में परिवहन और सिंचाई मंत्री बने। पश्चिम बंगाल में आज जिन क्षेत्रों में बीजेपी का दबदबा है उन क्षेत्रों में शुभेंदु अधिकारी की पहचान ने ही प्रभाव बनाया था। टीएमसी में रहते हुए ममता ने उन्हें जंगल महल क्षेत्र, पश्चिमी मेदिनीपुर, पुरुलिया और बांकुड़ा का प्रभारी बनाया था। इन क्षेत्रों में शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी का विस्तार किया। इसके अलावा मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे कांग्रेस के असर वाले क्षेत्रों में भी उन्होंने टीएमसी का काडर मजबूत किया। शुभेंदु टीएमसी छोड़कर बीजेपी में चले भी गए तब भी इन क्षेत्रों में उनकी व्यक्तिगत पकड़ कमजोर नहीं हुई और ये बीजेपी के बहुत काम आया।
2: शुभेंदु अधिकारी जमीनी नेता है, जुझारूपन की राजनीति से उन्होंने अपनी पहचान बनाई, लेकिन 2016 के विधानसभा चुनावों के बाद से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का दखल पार्टी में बढ़ने लगा। अभिषेक को बड़ी जिम्मेदारियां मिलने लगी। ममता के की वो बात उन्हें याद थी कि पार्टी में परिवारवाद नहीं चलेगा, इसीलिए पार्टी के तमाम लोग शुभेंदु को ही ममता की राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी मानने लगे थे और खुद शुभेंदु को भी यही एहसास था। लेकिन जब समीकरण बदले तो शुभेंदु का मन भी बदल गया, वो खुद को साइडलाइन होता महसूस करने लगे।
1: ২০১৯ के लोकसभा चुनाव आते आते शुभेंदु का मोह टीएमसी से भंग हो चुका था। वैसे भी ममता के बाद अभिषेक बनर्जी हर जगह पार्टी का झंडा उठाए दिखने लगे थे। शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी के कार्यक्रमों और कैबिनेट की मीटिंग से दूरी बनाना शुरू कर दिया। 10 नवंबर 2020 को उन्होंने नंदीग्राम में एक रैली आयोजित की। न पार्टी का बैनर, न खुद मंत्री होने की बात, उन्होंने जनता के बीच एक ही बात कही, मैदान जंग में मिलेंगे।
7: तृणमूल कांग्रेस में जब अभिषेक बनर्जी की एंट्री हो गई, जो ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियों में होती है कि वो परिवारवाद के साथ जुड़ी रहती है, पहले लग रहा था कि ममता बनर्जी के बाद जो शुभेंदु है उनका नंबर आ सकता है, वो एक बड़े जगह पर आ सकते हैं। कम से कम ममता बनर्जी को जब रिप्लेस करना हो तो शुभेंदु अधिकारी आएंगे। लेकिन जब ममता जी ने शुभेंदु की बजाय अभिषेक को वहां पर ले लिया पार्टी में और वो नंबर टू हो गए और ये लगने लगा कि ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी ही कमान संभालेंगे, असल में हुआ तो ये कि अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के रहते हुए भी कमान संभाल रहे थे और शुभेंदु के लिए कोई जगह नहीं बच रही थी।
1: टीएमसी ने उन्हें मनाने की कोशिशें की लेकिन शुभेंदु अपना आगे का रास्ता सोच चुके थे। उन्होंने एक एक करके महत्वपूर्ण पदों से इस्तीफों की झड़ी लगा दी। 26 नवंबर 2020 को शुभेंदु ने हुगली रिवर ब्रिज कमीशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। 27 नवंबर 2020 को ममता सरकार में परिवहन और सिंचाई मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। 16 दिसंबर 2020 को विधायक के पद से अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा। 17 दिसंबर 2020 को आखिरकार तृणमूल कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से भी पूरी तरह से इस्तीफा दे दिया। 2021 के बंगाल विधानसभा चुनावों से कुछ पहले 19 दिसंबर 2020 को शुभेंदु अधिकारी अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में आधिकारिक रूप से शामिल हो गए।
9: कांग्रेस, तृणमूल, सीपीएम सब पार्टी से अच्छे लोग आज भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने के लिए भाजपा छोड़ रहे हैं। दीदी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी दल बदल कराती है। दीदी, मैं आपको याद कराने आया हूं, आपकी मूल पार्टी कौन सी है? तृणमूल कांग्रेस थी क्या? जब आप कांग्रेस छोड़कर तृणमूल बनाई तब वो दल बदल नहीं था? आज भाई शुभेंदु अन्याय के खिलाफ, बंगाल की जनता के शोषण के खिलाफ आपका साथ छोड़कर मोदी जी के साथ आ रहे हैं, आपको दल बदल लग रहा है दीदी?
1: 2021 में दिलीप घोष और कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी की तरफ से मुख्य रूप से सक्रिय थे, लिहाजा शुभेंदु को खुलकर खेलने का दायरा नहीं मिला, लेकिन 2026 में कमान पूरी तरह उनके हाथों में दे दी गई।
7: भारतीय जनता पार्टी में उनको ये मौका इसलिए दिखाई दे रहा था कि वो एक ऐसी पार्टी थी जहां पर उनको भविष्य दिखाई दे रहा था। कांग्रेस वहां पर खत्म हो गई थी, लेफ्ट का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं बचा था, तो भारतीय जनता पार्टी उनको एक ऐसी भविष्य वाली पार्टी दिख रही थी जहां वो कमान संभाल सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को भी लगा कि एक मजबूत बना बनाया नेता बंगाल का वहां उनको मिल रहा।
1: यहां से बंगाल में बीजेपी की विजय गाथा शुरू होती है, जिसमें शुभेंदु अधिकारी अर्जुन की भूमिका में थे। नंदीग्राम की जीत के बाद मई 2021 में उन्हें पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया गया। शुभेंदु बीजेपी का प्रमुख चेहरा बन गए। ...2021 के चुनाव में हार के बाद गुटबाजी से जूझ रही बंगाल बीजेपी में शुभेंदु ने नेताओं को एकजुट करने का काम किया और आगे की लड़ाई के लिए तैयार किया। 2021 के चुनाव परिणाम आने के बाद बंगाल में हुई राजनीतिक हिंसा के खिलाफ शुभेंदु ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में सबूतों के साथ याचिकाएं दायर की। नतीजतन अदालत ने मामले में FIR दर्ज करने और जांच के आदेश दिए। इसके अलावा वो शारदा चिटफंड घोटाले और अन्य भ्रष्टाचार मामलों में TMC नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुद्दा उठाते रहे।
10: जो शारदा चिटफंड स्कैम है उसकी मेन कॉन्स्पिरेटर और मनी ट्रेल के लिए सबसे बिग बेनिफिशियरी का नाम है ममता बनर्जी।
1: उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने का पुरजोर समर्थन किया, साथ ही बंगाल में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे को जोर शोर से उठाया और TMC सरकार पर फर्जी वोटर ID बनाने में मदद करने का आरोप लगाया।
11: जीत होगा, 2 करोड़ हिंदू धर्म को रक्षा करते हुए ये लोग को सीधा सीधा बांग्लादेश से भगाया और पाकिस्तान का जिहादी ये लोग सब हिंदू को भगाया, मेरा माँ को भी भगाया, गायत्री भट्टाचार्य बरिशाल से। 2 करोड़ बंगाली हिंदू का जीत होगा, हमारी गुरुचांद ठाकुर हरिचांद ठाकुर का जीत होगा।
1: 2021 में ममता को नंदीग्राम में हराने के बाद 2026 के चुनावों में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को उनकी सीट भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र से भी चुनौती दी। इसके जरिए उन्होंने खुद को पार्टी के प्रमुख चेहरे के तौर पर स्थापित किया। इससे जनता के बीच वो बड़े और मजबूत नेता के तौर पर उभरे।
12: शुभेंदु दा हमारे नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे, मैंने शुभेंदु दा को कहा था कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं ममता के घर में जाकर उसको हराना है।
1: शुभेंदु पर बीजेपी का भरोसा काम आया। शुभेंदु ने खुलकर ममता को चुनौती दी और उन्हें मुद्दों पर ललकारा। ममता बनर्जी के 1.5 दशक के शासन का अंत हुआ और इसमें शुभेंदु की भूमिका सबसे बड़े लड़िया के तौर पर सामने आई।
2: पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत सिर्फ एक राज्य की राजनीतिक घटना नहीं है, बल्कि ये पूरे देश की राजनीति के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। इससे न केवल बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि आने वाले वर्षों में पक्ष विपक्ष की राष्ट्रीय राजनीतिक दिशा को भी ये प्रभावित कर सकता है।
1: पीएम मोदी के गंगोत्री से गंगा सागर तक बीजेपी के विस्तार का सपना साकार होने के बाद देश के राजनीतिक मैप में बीजेपी का भी विस्तार हो गया है। अब 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में बीजेपी की बहुमत की सरकार है, जबकि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीजेपी एनडीए के तहत सरकार का हिस्सा है।
13: आज बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। भाजपा ने जितनी सीटें जीती वो महज एक चुनावी आंकड़ा नहीं है, ये उस अडिग विश्वास की हुंकार है जिसने डर, तुष्टिकरण और हिंसा की राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंका है।
1: बीजेपी की बंगाल विजय के बाद सबसे अधिक चर्चा ये है कि ये जीत देश की राजनीति में बड़ा असर छोड़ सकती है। आजादी से पहले 1941 में कृषक प्रजा पार्टी और हिंदू महासभा के नेतृत्व में बने प्रगतिशील गठबंधन की बंगाल में सरकार बनी थी। ये सरकार 1943 तक चली थी। आजादी के बाद 20 साल कांग्रेस, 34 साल लेफ्ट और 15 साल ममता ने बागडोर संभाली। अब फिर भगवा लहरा रहा है, इससे देश में हिंदुत्व की राजनीति को और अधिक बल मिल सकता है।
14: आमी कृतज्ञता प्रणाम जानाबो विश्वेर सर्वश्रेष्ठ नेता नरेंद्र मोदी जी के, आमादेर प्रधानमंत्री के, जिनी आलिपुर द्वारे प्रथम परिवर्तन संकल्प सभाय दाड़िए पश्चिम बांगलार मानुष के स्वप्न देखिएछिलेन, जिनी दमदमे कोलकाता मेट्रो उद्बोधन करते एसे पश्चिम बांगलार हित गौरव फेरानोर ग्यारंटी दिएछिलेन, जिनी ब्रिगेड पैरेड मैदाने दाड़िए पश्चिम बांगलाय भय आउट करे भरसा इन करेछेन, जाके देखे मानुष भोट दिए छे, जार जन्य आमरा जीते छी, आमादेर नरेंद्र मोदी जी के आमी आमार अंतर थेके कोटी कोटी प्रणाम निवेदन करब।
1: राहुल गांधी के बाद ममता बनर्जी विपक्षी एकता का बड़ा चेहरा मानी जाती थी। अब उनकी जिस तरह से हार हुई है उससे विपक्षी एकता का सूत्रधार चुनने में विपक्षी दलों को परेशानी होगी। बीजेपी राज्यों के विकास के लिए डबल इंजन के सरकार के नैरेटिव को और अधिक मजबूती से भुना सकती है। बीजेपी ने बंगाल चुनावों में महिलाओं को 3,000 से अधिक राशि कैश स्कीम का वादा किया, जिसका नतीजा भी वोटों में दिखा। इससे आने वाले दिनों की राजनीति में महिला वोटर्स की अहमियत और उनको लेकर स्कीम्स बढ़ सकती हैं। बीजेपी को बंगाल विजय से मॉरल बूस्टर मिला है, जो 2029 के आम चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं और समर्थकों का उत्साह बढ़ाएगा। विपक्ष के लिए चुनौती और बढ़ेगी कि अगर वो एकजुट और जनता के लिए जरूरी एजेंडे के साथ नहीं आए तो बीजेपी का विस्तार और बढ़ता रहेगा।
2: भवानीपुर सीट को ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता था। 2021 में नंदीग्राम सीट से चुनाव हारी तो भवानीपुर से उपचुनाव लड़कर मुख्यमंत्री ममता बन गई थी। ये सीट ममता बनर्जी की सेफ सीट थी क्योंकि इसी इलाके कालीघाट में उनका घर भी है। ममता ने यहीं से अपनी राजनीतिक पारी का आगाज किया था। 3 बार बंगाल की सीएम बनी थी, लेकिन इस बार अपने गृह क्षेत्र और परंपरागत मानी जाने वाली भवानीपुर सीट से वो हार गईं। वो न सिर्फ अपना व्यक्तिगत चुनाव हारी बल्कि उनकी पार्टी भी चुनाव हार गई। 15 साल के शासन में इकट्ठा की गई सारी सियासी जमा पूंजी खत्म हो गई।
15: नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा पेज, जय जोहर, इंशाल्लाह, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। आबार देखा होबे, फिर मिलेंगे, राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे, आर जो फूल खिलेंगे, आर रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे।
1: सत्ता भी गई, साफ भी गई, सीएम गिरी भी गई, विधायकी भी गई। सिर्फ पार्टी हारती और ममता अपनी सीट भी जीत जाती तो कम से कम विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका तो निभाई जा सकती थी, लेकिन वो भी हो न सका। सामने सिर्फ एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह रह गया है, अब दीदी क्या करेंगी?
16: माय टारगेट इज वेरी क्लियर, आई विल स्ट्रेंथन the India team, just like a small person. And now I don't have any chair, so I'm a commoner. So you cannot tell me that I am using your chair. I am now freeborn. I gave full life for service to the people. Even these 15 years, I have not withdrawn one paisa of pension or the. I have not taken one paisa of salary also. But now I am free bird. So I have to do some work. That I will manage.
1: तृणमूल बहुमत से जीत जाती, ममता अपनी सीट हार जाती तो भी 6 महीने मुख्यमंत्री बनी रहती और इस बीच किसी सुरक्षित सीट से जीतकर मुख्यमंत्री पद पर काबिज रह सकती थी, लेकिन ये विकल्प भी बंद हो गया। तो सवाल ये है कि अब ममता के पास कितने रास्ते हैं? शुभेंदु अधिकारी 2 सीटों से चुनाव लड़े और दोनों से जीते, एक नंदीग्राम, दूसरा भवानीपुर। उन्हें इनमें से एक सीट छोड़नी पड़ेगी जिस पर बाद में उपचुनाव होगा। इसी तरह हुमायूं कबीर रेजीनगर और 9 सीटों से चुनाव लड़े और दोनों में उन्हें जीत हासिल हुई, एक सीट उन्हें भी छोड़नी होगी। इस सीट पर भी उपचुनाव होगा। ममता को इन्हीं छोड़ी गई 2 में से 1 सीट पर चुनाव लड़ना होगा ताकि अगर वो जीतती है तो कम से कम नेता प्रतिपक्ष बन सके। ममता अपने विधायकों के साथ सड़क से लेकर सदन तक सरकार के खिलाफ रणनीति बनाएं और सरकार को खेलें, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने विधायकों को टूट फूट से बचाने की चुनौती का सामना पहले करना होगा। सत्ता परिवर्तन के बाद दल बदल का खतरा बढ़ जाता है। बंगाल गंवाने के बाद वो केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी मोर्चा तैयार कर सकती है, लेकिन जिस तरह से वो हारी है उससे उन्हें विपक्षी राजनीति का प्रमुख चेहरा बनना आसान नहीं होगा। भवानीपुर जैसा अपना गढ़ हारना और सत्ता से बाहर होना ममता के लिए बड़ी चिंता का विषय है। अब उन्हें एक बार फिर से अपनी टीम में बड़े बदलाव करने होंगे। अभिषेक बनर्जी की भूमिका और पार्टी की रणनीति पर सवाल उठेंगे, जिसे ठीक करना उनकी प्राथमिकता होगी। वो नए सिरे से संघर्ष की शुरुआत कर सकती हैं, लेकिन उसमें उम्र और मजबूत बीजेपी आड़े आ सकती है। बंगाल की राजनीति में दीदी का दबदबा रहा है, लेकिन अब हालात बदले हैं तो उन्हें बदलाव की राजनीति करनी होगी। वो ये कैसे करेंगी, इस पर तृणमूल कांग्रेस का और ममता बनर्जी का भविष्य निर्भर करेगा।
2: पश्चिम बंगाल में अब शुभेंदु सरकार है और पूरे देश की निगाहें उनके काम पर अब लगी रहेंगी। अभी के लिए हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
4: जेके वॉल मैक्स
2: बेस्ट पेंट,
5: जेके मैक्स।
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
6: टेबल के ऊपर जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं भाई साहब, सब पचा देते।
7: पर दिक्कत तो होने आती है जो टेबल के नीचे से खाते।
8: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
9: नहीं, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
10: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
11: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads.
2: Thank God I get to wait.
1: And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. Jam out to your favorite songs with today's hits. TuneIn has got you covered with the top songs of today, from pop songs to EDM bangers. The hits are on. And hip-hop beats.
3: I'm in the game, I should I join with this G2 3.
1: Today's hits will keep the party going 24/7. Listen now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
4: আমি শুভেন্দু অধিকারী।
5: পশ্চিম বঙ্গাল জহা 34 সাল তক লেফট কা রাজ রহা, ফির 3 টার্ম তক মমতা ব্যানার্জি সিএম রহি, লেকিন আব ওহা পহলি বার বিজেপি সরকার বন গই হ্যায়। শুভেন্দু অধিকারী নে সিএম পদ কি শপথ লি অর ইসি কে সাথ বঙ্গাল কি রাজনীতি মে এক নয়া অধ্যায় শুরু হো গয়া। इस खास मौके पर बंगाल की जनता का पीएम ने साष्टांग दंडवत किया। वहीं 98 साल के बीजेपी कार्यकर्ता माखनलाल सरकार के करीब गए, शॉल ओढ़ाया, गले लगे और पैर छूकर आशीर्वाद लिया। राजनीति में कुछ तस्वीरें चुनाव से बड़ी हो जाती हैं। बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए की एकता या यूं कहें कि शक्ति परीक्षण भी देखने को मिला। एक मंच पर एनडीए के नेता मौजूद रहे। पीएम मोदी सभी के पास गए, एक एक करके मुलाकात की, नमस्कार किया और बातें की। यहाँ जब सब साथ साथ हैं, वहीं इंडिया गठबंधन बिखरा हुआ है। इंडिया गठबंधन की सबसे अहम पार्टी के नेता राहुल गांधी ताल ठोक कर बता रहे हैं कि और कोई पार्टी बीजेपी को हरा नहीं सकती।
6: आप देख लेना, बाकी सारी की सारी पार्टियां इनके सामने नहीं खड़ी हो पाएंगी, एक नहीं हो पाएगी, और अंत में सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी और कांग्रेस पार्टी इनको हराएगी। आप याद रखो मैं क्या कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को कांग्रेस पार्टी हराएगी, बीजेपी को कांग्रेस पार्टी हराएगी।
5: यानी राहुल का बयान सिर्फ बीजेपी और पीएम मोदी के लिए नहीं है, बल्कि अपने सहयोगियों के लिए भी है। वैसे सहयोगी के नाम पर ना तो नीति दिखती है ना ही नीयत। बंगाल चुनाव इसका जीता जाता उदाहरण है, जहां ममता का मुकाबला बीजेपी के साथ साथ इंडिया गठबंधन के अपने सहयोगियों से भी था। बंगाल चुनाव में टीएमसी बनाम कांग्रेस बनाम लेफ्ट ही मैदान में एक दूसरे के खिलाफ आग उगल रहे थे। ये कोई पहला एपिसोड नहीं है जब इंडिया गठबंधन के साथी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में ताल ठोकते दिखे। पंजाब और हरियाणा भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। पंजाब और हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में थे, यानी दिल्ली में दोस्ती लेकिन राज्यों में सीधी लड़ाई। फिर सवाल उठता है कि अगर सहयोगी दल ही एक दूसरे को हराने में जुटे हों तो जनता किसे असली विकल्प माने। यूपीए 1 और यूपीए 2 के दामन से बाहर निकलने के लिए इंडिया गठबंधन की नींव रखी गई। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे, लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि नीतीश की पार्टी आज बीजेपी के साथ बिहार और केंद्र में सरकार चला रही है। राजनीति सिर्फ अंकगणित नहीं होती, केमिस्ट्री भी चाहिए, और फिलहाल एनडीए में वही केमिस्ट्री दिखाई देती है, जबकि इंडिया गठबंधन में सियासी केमिकल लोचा है। इंडिया गठबंधन में हर राज्य की राजनीति अलग, हर नेता की महत्वाकांक्षा अलग, हर दल की प्राथमिकता अलग। किसी भी गठबंधन को बाहर का विरोध नहीं तोड़ता, अंदर का अविश्वास तोड़ता है, और यही सवाल अब इंडिया गठबंधन के सामने खड़ा है। फिलहाल तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए का परचम बुलंद है। भारत के करीब 75% हिस्से में बीजेपी और एनडीए की सरकार है, लेकिन लोकतंत्र में राजनीति स्थायी नहीं होती। आज एनडीए मजबूत है तो कल विपक्ष नए रूप में लौट भी सकता है, क्योंकि भारत की राजनीति में शून्य कभी स्थायी नहीं रहता। आज तक ब्यूरो।
7: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

10 लाख करोड़ का कर्ज छोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रम में बोले कांग्रेस सत्ता की भूखी 25 तक डीएमके के साथ रहने के बाद दिया धोखा। यूपी में 2027 के चुनावी समीकरण साधने के लिए योगी कैबिनेट का विस्तार। 8 मंत्री ले सकते हैं शपथ। 6 नए चेहरे, 2 राज्य मंत्रियों को मिल सकता है प्रमोशन। असम में एक बार फिर हेमंता की सरकार। केंद्रीय पर्यवेक्षक जेपी नड्डा के सामने चुने गए विधायक दल के नेता। 12 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह, प्रधानमंत्री मोदी होंगे शामिल। और केरल में नए मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस में मंथन। दिल्ली में बैठकों का दौर जारी, अभी तक नहीं हो सका है मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला। दौड़ में केसी वेणुगोपाल आगे।

0: नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम और आप देख रहे हैं कहानी 2.0। आज कहानी उस त्रिकोण की जिसने कभी हिंदुस्तान की दिशा तय की, अंग बंग और कलिंग, बिहार की धरती से लेकर पश्चिम बंगाल की विचारधारा तक और उड़ीसा की ताकत तक। ये सिर्फ नाम नहीं, इतिहास के तीन बड़े अध्याय हैं। बंगाल चुनाव में इनका जिक्र खूब हुआ, लेकिन सवाल यही कि आखिर ये हैं क्या? क्या ये सिर्फ अतीत की कहानी है या भविष्य का संकेत? आज कहानी में ये समझने की कोशिश करेंगे इनकी असली पहचान, इतिहास और आज की राजनीति में इसका अर्थ।
1: अंग बंग और कलिंग।
2: अंग प्रदेश भागलपुर से लेकर आपको झारसुगुंडा तक फैला हुआ था।
3: बंगाल की जो रचना थी वो शासकीय दृष्टि से एक बड़ा प्रभावी ढंग से काम करती थी।
4: कलिंग भारत के का दुनिया के साथ होने वाले व्यापार का द्वार था।
5: अंग बंग कलिंग एक प्रकार से पूरी बंगाल प्रेसिडेंसी आज भारतीय जनता पार्टी के ध्वज के नीचे आ।
0: तो तस्वीर अब बिल्कुल साफ है, ये सिर्फ जीत नहीं बल्कि सियासत का नया संकेत है। बंगाल के कोने कोने तक जो लहर चली उसने बता दिया कि राजनीति का केंद्र अब बदल रहा है। नरेंद्र मोदी का अंग बंग और कलिंग सिर्फ नारा नहीं, एक रणनीति है।
6: শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব।
7: इस बार जीत की ये तस्वीर कुछ ज्यादा विराट है और कुछ ज्यादा वैभवशाली। ये भारतीय जनता पार्टी का विस्तारित जलवा है। माँ काली के कलकत्ते से नया संदेश आया है कि बंगाल में सियासत का सिक्का बदल गया है।
8: ममता बनर्जी तो आउट, मछली इन, ममता बनर्जी आउट।
9: भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने जा रही है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में रामराज आ गया।
10: भारतीय जनता पार्टी सरकार, आपने देखा होगा, गरीबों की पार्टी है, महिलाओं के सुख दुख की साथी है।
11: ये 50 साल के बाद आज यहाँ पे बीजेपी का सरकार बना है। दीदी का दादागिरी हुआ खत्म।
7: कोलकाता से सिलीगुड़ी तक और मिदनापुर से आसनसोल तक जो हवा चली है उसने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को राजनीति में अविजित बना दिया है।
1: और कलिंग, स्त्री शक्ति का भरोसा बीजेपी पर है।
5: अंग बंग कलिंग एक प्रकार से पूरी बंगाल प्रेसिडेंसी आज भारतीय जनता पार्टी के ध्वज के नीचे आ गई।
7: जीता कोई भी, दिखा कोई भी, लेकिन एक बात जो सनातन सत्य की तरह स्थापित हो चुकी है कि बंगाल में उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक जीत चाहे जहां हुई हो, विजय के सूत्रधार नरेंद्र मोदी थे।

0: जब सांस्कृतिक विषय पर जब सोचते हैं तो बृहत्तर भारत, विशाल भारत, ये भी आता है। तो धीरे धीरे उनकी जो परिकल्पना है 5000 साल पहले की या वेदकालीन, क्योंकि उन दिनों में आर्यावर्त था, हिंदुस्तान था, भारतवर्ष था और खंडित नहीं था। तो ये खंडित नहीं होना चाहिए, इसके लिए अखंड भारत होना चाहिए। अब ये पुरानी जो सोच है वो केवल पुरानी नहीं है, उनको उनको वर्तमान में उनको डालना है और वर्तमान में डालने के लिए उनके पास चुनाव का एक माध्यम है, और भी माध्यम है लेकिन चुनाव मुख्य रूप से है। तो चुनाव के दौरान इन प्रदेशों में, और केवल इन्हीं प्रदेशों में नहीं बाकी सब जगह भी, एक अखंड भारत के से जुड़ी हुई विचारधारा को आगे बढ़ाने का जो एक निश्चय है वो भारतीय जनता पार्टी के इस घोषणा में दिखाई देता है।
1: जब भारत समृद्ध था, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सामर्थ्य के चरम पर था, तो उसके तीन मजबूत स्तंभ थे। ये स्तंभ थे अंग, अंग यानी आज का बिहार, बंग यानी आज का बंगाल, और कलिंग यानी आज का उड़ीसा। कलिंग उस समय हिंद महासागर के समुद्री व्यापार का एक छत्र सम्राट था। कलिंग के बंदरगाह पूरे एशिया तक भारत के उत्पादों को पहुंचाते थे। वही अंग सूत, रेशम और अन्य व्यापार के साथ साथ नालंदा और विक्रमशिला जैसे एजुकेशन सेंटर्स का भी हब था, और बंग वो सांस्कृतिक धरती थी जहां से भारत की आत्मा की आवाज उठती थी। विकसित भारत के निर्माण के लिए इन तीनों स्तंभों का फिर से मजबूत होना बहुत आवश्यक है।
2: भारत में ऐसा कोई नेता नहीं जिसके पास देश के राजनीतिक समीकरणों को साधने की ऐसी कला हो। तो ये सवाल तो अब खत्म हो ही चुका है कि नरेंद्र मोदी की राजनीति ऊंचाई कितनी है। अब सवाल यहाँ से आगे बढ़ गया है और पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने चुनाव के दौरान जिस अंग बंग और कलिंग का जिक्र किया था वो है क्या, और भारत के विकास से कैसा रिश्ता है।
1: जब भारत समृद्ध था तब उसके तीन मजबूत स्तंभ थे, अंग, बंग और कलिंग। अंग यानी बिहार, बंग यानी बंगाल, और कंग यानी कलिंग यानी ओडिशा। ये तीनों स्तंभ कमजोर हुए तो भारत के सामर्थ्य को भी झटका लगा।
2: राजनीति इशारों की भाषा होती है, और इशारों की भाषा समझिए तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के मुताबिक भारत के लिए विकास का द्वार अब खुल गया है। आज कहानी में ये जानने की कोशिश करेंगे कि अंग बंग और कलिंग की अवधारणा ऐतिहासिक रूप से क्या रही है और आज की राजनीति में इसका महत्व कैसे बदला है। क्या बिहार, बंगाल और ओडिशा का ये त्रिकोण वास्तव में भारत की पूर्वी राजनीति का नया पावर सेंटर बन सकता है। ऐतिहासिक तौर पर मौर्य काल से लेकर अब तक इन तीनों क्षेत्रों का आर्थिक और रणनीतिक महत्व कितना रहा है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ओडिशा के खनिज संसाधन, बिहार की मानव शक्ति और बंगाल के बंदरगाह का कॉम्बिनेशन भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकता है।
0: उन दिनों में वेद काल से लेकर रामायण काल तक, महाभारत काल तक, जो अंग बंग और कलिंग ये तीनों बड़े समृद्ध थे, नेवी का वहां बड़ा विस्तार हुआ था, यानी नौसेना, और दूर तक उनका विस्तार था। आर्थिक रूप से बंग की राजधानी एक कोतालीपरा नाम की राजधानी थी, आजकल तो वो ढाका में है, वहाँ से ये सब शुरू होता था। तो पूरी दुनिया में उनका व्यापार चलता था। उड़ीसा में आप देखिए जगन्नाथ की यात्रा, ये धार्मिक है, लेकिन केवल धार्मिक नहीं था, वहाँ एक इस प्रकार की पूरी की जो व्यवस्था थी, आंतरिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें भी उन लोगों ने दूर तक व्यापार, व्यवसाय, आर्थिकता इसका ख्याल रखा था, और ऐसे ही लोग वहां शासन करते थे।
1: आज भारत जब विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, तो अंग, बंग और कलिंग का मजबूत होना बहुत जरूरी है। भारत का भाग्योदय पूर्वोदय के बिना अधूरा है।
2: तो अंग, बंग और कलिंग ये सिर्फ इतिहास के शब्द नहीं, बल्कि एक ऐसी सोच है जो अतीत से निकलकर आज की राजनीति और कल के विकास तक जाती है। नरेंद्र मोदी ने जिस त्रिकोण की बात की, वो दरअसल पूर्वी भारत की ताकत को एक साथ जोड़ने की कोशिश है। अब सवाल है भविष्य का, क्योंकि इस त्रिकोण ने देश की तकदीर को पहले भी लिखा है।
3: अंग आज नक्शे में नहीं है।

0: यहाँ से कपड़ा, मसाले और कई तरह के सामान सिर्फ भारत में नहीं दुनिया भर में भेजे जाते थे।
1: यहाँ पर जो जिसके लिए भागलपुर मशहूर है, यानी भागलपुरी सिल्क, उसके भी बहुत सारे जो बुनकर हैं वो यहाँ पर रहते हैं। ये टसर का दुपट्टा बोल रहे हैं, वो साड़ी, तो ये क्वालिटी टसर और भागलपुरी सिल्क एक ही होता है या अलग अलग होता है?
2: सिल्क एक ही होता है, क्वालिटी का फर्क होता है थोड़ा सा फर्क।
1: ये
2: टसर ओरिजिनल एक नंबर क्वालिटी हो जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस हिसाब का सिल्क है।
3: ये ताना हो रहा है, बाना अभी बाकी है, अभी जो आप बुनाई जो हो रहा है ना,
1: इसको ताना कहते हैं
3: जी,
1: इसको बाना कहते हैं
3: जी, जो कपड़ा तैयार
1: होता है ये
3: जी।
1: अच्छा,
4: आंध्र प्रदेश भागलपुर से लेकर आपको झारसुगुंडा तक फैला हुआ था और इधर मुर्शिदाबाद की सीमा को भी छूता था। आंध्र प्रदेश का जो सबसे बाहुबली या कही उसको राजा हुआ, समृद्ध शासक हुआ, उसका नाम ब्रह्मदत्त था। मगध का जब इंपीरियल पावर का विकास हुआ, शक्ति का विकास हुआ, तो उसने सबसे पहले अंग को जीता। इस टेरिटोरी को मिलाना जरूरी था क्योंकि इसका जो वाणिज्य व्यापार का सबसे बड़ा जगह था चंपा, एक बंदरगाह के रूप में उभर रहा था, उस पर उसका कब्जा करना था, इसलिए उसने अंग को मगध में मिला लिया। और वाणिज्य व्यापार जहां होगा वहां कृषि कार्य भी होगा, यह क्षेत्र कृषि कार्य के लिए भी समुन्नत था, कृषि कार्य होता था और वाणिज्य व्यापारियों के लिए ठहराव का बहुत बड़ा केंद्र था।
0: गंगा नदी ने अंग को दी सबसे बड़ी ताकत, नदी के रास्ते व्यापार आसान हुआ और अंग जुड़ गया पूर्वी भारत से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक। यही वजह थी कि अंग सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि आर्थिक हब बन चुका था। इतिहास ही नहीं, पौराणिक कथाओं में भी अंग का बड़ा जिक्र मिलता है। महाभारत में कर्ण को अंग का राजा बताया गया है। आज दानवीर कर्ण की पहचान के साथ अंग का नाम भी अमर हो गया है, वीरता, दान और स्वाभिमान का प्रतीक बनकर।
5: ये ध्यान में आता है कि अंग जो है वह पहले मगध महाजनपद के अधीन था, जरासंध के शासन के अधीन था, बाद के दिनों में दुःशासन को, दुर्योधन को जरासंध ने इसको सौंपा था, इसलिए दुर्योधन का उस पर अधिकार था, वह हस्तिनापुर साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। अतः यह कथा आती है कि जब कर्ण के समक्ष क्षत्रिय और राजा होने का प्रश्न आया था तो हम सब जानते हैं कि दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा घोषित करके, या था क्योंकि दुर्योधन का वह क्षेत्र था, दुर्योधन को किसी को दे सकने का अधिकार था, तो हस्तिनापुर का हिस्सा न होने के कारण से। और अंग के सैनिकों का महाभारत के युद्ध में बड़ी भूमिका भी है।
0: लेकिन अंग का इतिहास सिर्फ समृद्धि का नहीं, संघर्ष का भी है। इसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था मगध। कई युद्ध हुए और आखिरकार मगध के राजा बिंबिसार ने अंग को जीत लिया। यहीं से अंग की स्वतंत्र सत्ता खत्म हो गई थी, लेकिन मगध में शामिल होने के बाद भी अंग का महत्व कम नहीं हुआ। मौर्य साम्राज्य के दौर में भी ये क्षेत्र प्रशासन और व्यापार का अहम केंद्र बना रहा। गंगा के किनारे होने से कृषि और व्यापार दोनों फलते फूलते रहे।
5: अंग भागलपुर को केंद्रित करते हुए, जिसकी अंग महाजनपद की राजधानी उस कालखंड का चंपा था, जिसका विस्तार आज चंपारण्य तक थोड़ा जाता हुआ दिखाई देता है और वह वज्र क्षेत्र में भी विस्तृत होता है। भाषिक समानता के आधार पर इसको समझा जा सकता है, अर्थात बिहार का एक बड़ा हिस्सा, आज आधुनिक बिहार का बड़ा हिस्सा और झारखंड का भी एक हिस्सा अंग देश में आता था। बिहार के एक बड़े हिस्से को मगध के रूप में जाना गया है, मगध यानी कर्मनाशा के उस पार, जो आज भी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है वह नदी, और पाटलिपुत्र तक गंगा के किनारे तक, यह मगध है, मागधी यहाँ की भाषा है। अब अंग और मगध इन दोनों को मिला करके आज का आधुनिक बिहार बनता है।
0: अंग सिर्फ

0: सत्ता और व्यापार तक सीमित नहीं था, इसकी अपनी एक अलग सांस्कृतिक पहचान भी थी। यहाँ बोली जाने वाली अंगिका भाषा आज भी इस क्षेत्र में जिंदा है। लोकगीत, मेले और परंपराएं सब में झलकता है हजारों साल पुराना इतिहास। भागलपुर को आज सिल्क सिटी कहा जाता है। रेशम उद्योग की यह परंपरा कोई नई नहीं बल्कि प्राचीन अंग काल से चली आ रही है, यानी इतिहास आज भी यहाँ की अर्थव्यवस्था में सांस ले रहा है।
1: भागलपुर एक बेहद प्राचीन, एक बहुत ही खूबसूरत शहर है जिसका अपना एक ऐसा इतिहास है जहाँ पर पौराणिक कथाएं भी हैं। और ये देखिए, ये जैसे मंजुषा आर्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, मंजुषा आर्ट जो है वो अंग प्रदेश की पहचान है। क्यों ना हम आगे बढ़ते हुए आपको कुछ ऐसी जगह लिए चलें जहां पर ये पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। अभी हालांकि मुझे लग रहा है कि ये भी कैनवस अधूरा है, दो हिस्सों में हुआ है और आगे अभी पेंटिंग बाकी है। नाम कहां से आता है मंजुषा का?
2: मंजूषा एक बहुमंजिलीय नौका है जिसमें सती बिहुला अपने मृत पति को रख के देव शक्ति को चुनौती देकर स्वर्ग गई और अपने मृत पति और छह भैसुर को जीवित कर लाई। तब से ये मंजूषा,
1: भैसुर मतलब पति के बड़े भाई, जी जेठ जिनको कहते हैं,
2: और वो जब वहां से सबको जीवित कर लाई तब यहाँ पे एक खुशी का माहौल हुआ और बिहुला का जय जयकार हुआ और बिहुला सती कहलाई। तब भगवान शिव के आदेश पर चंद्रधर सौदागर मां मनसा का पूजा किए और यहां पर एक लोक पर्व की शुरुआत थी, बिहुला विसहरी। और मंजूषा कला यहां की लोक पर्व बिहुला विसहरी पर आधारित लोक कला, वो पारंपरिक कला है जिसे एशिया की पहली कथा चित्र मानी जाती है।
1: जनरली हम लोग मधुबनी पेंटिंग के बारे में ज्यादा सुनते हैं इसीलिए, लेकिन ये मंजुषा बिल्कुल अलग कला है, है ना?
3: बस तीन ही कलर है इसमें।
1: जी, तीन ही कलर होते हैं।
3: हाँ,
1: एक
3: तीन ही कलर
1: पेंटिंग
3: हाँ,
1: में इस्तेमाल।
3: हाँ,
1: अच्छा, मतलब अब आप लोग विस्तार कर रहे हैं अलग अलग चीजों पे भी इसको?
3: जी हाँ, हाँ बहुत हाँ, कुछ बनाते हैं। साड़ी हुआ, टेबल क्लॉथ हुआ, आपका कोवर बनता है शादी ब्याह में, वो बनाते हैं।
1: अच्छा,
3: अब तो शादी ब्याह हम जैसे शादी में जाते हैं ना हम लोग ना, तो गिफ्ट ही करते हैं, पेंटिंग ही देते हैं। मंजुषा पेंटिंग,
1: मंजुषा पेंटिंग
3: जी हाँ।
0: आज अंग कोई अलग राज्य नहीं है लेकिन इसकी पहचान आज भी कायम है। बिहार के इस हिस्से में इतिहास और वर्तमान साथ साथ चलते हैं। जहां अतीत की विरासत आज के विकास की नींव बनती है, जब आज राजनीति में अंग बंग और कलिंग की बात होती है तो उसमें अंग का नाम इसलिए शामिल होता है क्योंकि ये क्षेत्र कभी पूर्वी भारत की ताकत का केंद्र रहा है, एक ऐसा इलाका जिसने इतिहास की दिशा तय की।
4: अतीत में जब भारत समृद्ध था तब उसके तीन मजबूत स्तंभ थे, अंग बंग और कलिंग।
0: आज अंग सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि भारत की प्राचीन ताकत, संस्कृति और संघर्ष की कहानी है। इतिहास के पन्नों से निकलकर आज भी हमें ये अपनी जड़ों की याद दिलाता है।
5: वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद देखिए बंग और कलिंग की कहानी।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: Ready to tackle those home projects? Whether it's a new patio, fresh paint, or some more space, now's the perfect time to make it happen. With a home equity loan from CME Federal Credit Union, you'll get an introductory 3.99% APR for 12 months, giving you the flexibility to take on those dream house projects. From big renovations to simple refreshes, your home's next chapter starts at CME. Visit CMEFCU.org to apply today and get your plans underway. Terms and conditions apply. Federally insured by NCUA. Equal Housing Lender.
9: AI is changing what it takes to move forward in tech. At WGU, our online technology master's programs help you build the skills today's roles require, so you're ready for what comes next. Learn more at wgu.edu.
10: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
11: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries, it's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
12: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
13: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
14: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: टेबल के ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं ये भाई साहब, सब पचा देते।
3: पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खाते।
4: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
5: नहीं, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
8: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
9: इसमें माइक्रो फाइबर है।
8: माइक्रो फाइबर यानी
9: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
8: हमारे सीमेंट में नहीं है?
9: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
10: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
11: टेस्ट ऑफ सक्सेस।
12: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी टेक्निक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी?
4: जेके वॉल मैक्स।
2: बेस्ट पेंट?
5: जेके मैक्स।
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
6: ये जो चांस आपको सुनाई दे रहे हैं, ये एकता की आवाज है, ये वो आवाज है जहाँ पर ईरान के लोग कह रहे हैं ना वो डरेंगे ना वो हटेंगे, वो अपने सरकार के साथ और अपने सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमेनाई के साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्य राउत्रे के साथ इनकलाब स्क्वायर यानी कि इनकलाब स्क्वायर में गीता मोहन आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
9: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
10: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
11: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
10: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
12: You're listening to MSNBC.
10: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love. Anytime you want. Try it now and thank us later.

0: पंग सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि इतिहास, विचार और व्यापार की ताकत है। पश्चिम बंगाल से लेकर पूरे प्राचीन बंग क्षेत्र तक इस धरती ने देश को दिशा भी दी है और दृष्टि भी। कभी ग्लोबल ट्रेड हब रहा यह इलाका, आज फिर नई संभावनाओं के केंद्र में है।
1: अंग बंग और कलिंग, इतिहास का वो त्रिकोण जिसने कभी हिंदुस्तान की तकदीर लिखी। बंग वो साम्राज्य था जहां से चली सोच, जहां से उठा विरोध और जहां से बनी देश की दिशा। यह आज का पश्चिम बंगाल, लेकिन कहानी इससे कहीं बड़ी है, क्योंकि इतिहास में यह इलाका बंग था, एक ऐसा क्षेत्र जो सिर्फ नक्शे पर नहीं बल्कि भारत की पहचान में बसता था।
2: और बंग वो सांस्कृतिक धरती थी जहां से भारत की आत्मा की आवाज उठती थी।
1: आज का बंगाल और उससे कहीं बड़ा था प्राचीन बंग, जहां आज है भारत और बांग्लादेश, कभी एक ही सांस्कृतिक क्षेत्र था। समृद्ध था, ताकतवर था और असरदार था। गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनका विशाल डेल्टा, ये वही जमीन है जिसने बंग को बनाया, जो भारत का सबसे उपजाऊ इलाका था। खेती ऐसी कि पेट पूरे क्षेत्र का भरता था और व्यापार ऐसा था कि दुनिया तक बंग की चर्चा होती थी।
3: एक तो कारण जियोपॉलिटिकल था और जियो भौगोलिक भी था, जो एक प्रकार से वहां का जो सीमा विस्तार है वो विस्तार एक बहुत बड़ा है, वहाँ से काफ़ी देशों में जाना संभव था, काफ़ी प्रदेशों में जाना भी संभव था। तो आज तो हम केवल बंगाल यानि हमारे पास जो छोटा सा टुकड़ा है वो वास्तव में इतना नहीं था, पूरा बंगाल था और उसके साथ जुड़ा हुआ था असम भी, उसके साथ अलग प्रदेश भी जुड़े हुए थे, तो एक बड़ा बंगाल था। और वह ढाका हो या कोलकाता हो या फिर वो तो अपने पूरा नए नाम है, लेकिन पुराने नाम मैंने जो बताए, इस प्रकार की बांग्ला बंगाल की जो रचना थी वो शासकीय दृष्टि से एक बड़ा प्रभावी ढंग से काम करती थी।
1: समुद्र से कनेक्शन बंग की सबसे बड़ी ताकत थी। एक दो नहीं, कई बंदरगाह थे जहां से निकलते थे जहाज सीधे दक्षिण पूर्व एशिया तक। मतलब साफ है कि बंग उस दौर का ग्लोबल ट्रेड हब था। बंग सिर्फ एक इलाका नहीं था, ये एक सिस्टम था जहां खेती, व्यापार और संस्कृति तीनों साथ साथ दौड़ते थे, जिसकी झलक आज कुछ धुंधली नजर आने लगी है। अंग्रेजों के दौर में बंग सत्ता का सेंटर था, कोलकाता तब का कलकत्ता था और ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गया और यहीं से चलता था पूरा हिंदुस्तान। लेकिन बंग यानी बंगाल सिर्फ सत्ता नहीं, सोच भी देता है। यहीं से उठी क्रांति की लहर, जहां से बदली सोच, बदला समाज और बदला देश। आजादी की लड़ाई में बंग सबसे आगे था। क्रांतिकारी आंदोलन हो या जन आंदोलन, हर बार बंग ने दिखाई रहा। बंग का मतलब रंग, राग और रस, दुर्गा पूजा, संगीत, साहित्य, यहां हर चीज में एक अलग ही जुनून है। आज राजनीति की वजह से बंग विकास में थोड़ा पीछे है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच बंग को एक बार फिर से बेहतर बनाना है। पोर्ट, इंडस्ट्री और कनेक्टिविटी, यहाँ सब कुछ मौजूद है। कभी देश के अर्थव्यवस्था में बंग का बड़ा रोल था, पीएम फिर से वही चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा ये इलाका सुरक्षा से लेकर व्यापार तक हर लिहाज से गेम चेंजर है।
0: कलिंग, जहां इतिहास ने सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक सोच को जन्म दिया। आज का ओडिशा कभी समुद्री ताकत, व्यापार और परिवर्तन का केंद्र था। कलिंग युद्ध ने एक सम्राट को बदल दिया और उसी धरती ने भारत को एक नई दिशा दी। आज जब विकास, संसाधन और रणनीति की बात होती है तो कलिंग फिर से चर्चा में।
1: कलिंग एक ऐसा नाम जो सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि भारत की पहचान का अहम अध्याय है। आज का ओडिशा, लेकिन कलिंग की कहानी सिर्फ ओडिशा की नहीं है। कुछ हिस्सा आज के आंध्र प्रदेश का भी था, कुछ हिस्सा आज के मध्य प्रदेश का भी था। इतिहास में यही इलाका कलिंग कहलाता है, एक ऐसा क्षेत्र जिसने युद्ध भी देखा और बदलाव भी। यह है आज का ओडिशा, लेकिन हजारों साल पहले इसी धरती पर बसा था शक्तिशाली कलिंग। समुद्र किनारे फैला हुआ, रणनीतिक तौर पर बेहद अहम और व्यापार के लिहाज से बेहद समृद्ध।
4: समुद्र पर शासन जो करेगा वो पूरी दुनिया जीतेगा, ये ऐतिहासिक तथ्य है। कलिंग को याद करना यानी समुद्र की लहरों पर शासन करने वाले शासकों की महान परंपरा को याद करना है। सात समुंदर तक व्यापार कर सकने वाले उन महान व्यापारियों को, सार्थवाहों को याद करना है। कलिंग भारत के का दुनिया के साथ होने वाले व्यापार का द्वार था।
1: कलिंग की सबसे बड़ी ताकत थी इसका समुद्र से जुड़ाव, लंबा समुद्री तट और उससे जुड़ा व्यापार। यही वजह थी कि कलिंग सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया तक अपनी पहचान बना चुका था। यहाँ से निकलते थे जहाज जो जाते थे श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार और थाईलैंड तक। मसाले, हाथी दांत, कपड़े और कई कीमती चीजें कलिंग को बनाती थी उस दौर का एक बड़ा ग्लोबल ट्रेड हब। लेकिन कलिंग की कहानी सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, ये कहानी है उस युद्ध की जिसने पूरे भारत की दिशा बदल दी। करीब 261 ईसा पूर्व एक शक्तिशाली राजा थे सम्राट अशोक। उनका साम्राज्य लगातार बढ़ रहा था। अंग और बंग प्रदेश को जीतने के बाद अब उनकी नजर थी कलिंग पर। कलिंग एक मजबूत और समृद्ध राज्य था जो आसानी से झुकने वाला नहीं था। युद्ध शुरू हुआ और इतिहास की किताबें बताती हैं कि बहुत भयानक युद्ध हुआ। तलवारें टकराई, सैनिक भिड़े, हर तरफ चीख पुकार मच गई, हजारों नहीं लाखों लोग मर गए, हजारों घर उजड़ गए, परिवार बिखर गए। आखिरकार अशोक ने कलिंग को जीत लिया। जीत अशोक के नाम हो गई, लेकिन जब युद्ध के बाद अशोक मैदान में पहुंचे तो उन्हें चारों तरफ सिर्फ तबाही नजर आई। घायल लोग, रोते हुए बच्चे, अपनों को खो चुके परिवार। अशोक ये सब देखकर अंदर से हिल गए। उन्हें समझ आया कि ये कैसी जीत है जिसमें सिर्फ दर्द और विनाश है। कहते हैं यही वो पल था जब एक योद्धा बदलने लगा। अशोक ने तय किया कि अब वो तलवार से नहीं शांति से राज करेंगे। उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया और बौद्ध धर्म को अपनाया।
3: जो नहीं था वेद में, वैसे श्लोक उनमें शामिल कर दिए गए और इसकी आधार पर कुछ कुछ ही लोगों का अधिकार ज्यादा और बाकी सबका नहीं। ऐसा कहा गया, ये स्त्री को वेद नहीं पढ़ सकती, हरिजन वेद नहीं पढ़ सकता, केवल ब्राह्मणों का ये अधिकार है, ये सब था नहीं वेद धर्म में, कभी नहीं था। बाद में धीरे धीरे इन अलग अलग जो वेस्टर्न इंटरेस्ट वाले, स्थापित हित वाले लोग होते हैं, उन्होंने ये घुसा दिया। श्लोक तो आते थे और संस्कृत है, सामान्य आदमी को तो आती नहीं थी, इसलिए सामान्य आदमी मान लेता था। ऐसे दिनों में, और हमारे यहाँ देखो कि प्रत्येक ऐसा जब जब समय आता है तब एक नया साहस, नया पराक्रम, नया आंदोलन हो जाता है। बौद्ध धर्म इसी प्रकार का आंदोलन था।
1: यानी कलिंग की धरती पर हुआ ये युद्ध सिर्फ एक जीत हार की कहानी नहीं था, बल्कि एक राजा के दिल और सोच के बदलने की कहानी बन गया, जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। यहीं से शुरू हुआ परिवर्तन। युद्ध छोड़ शांति का रास्ता अपनाया गया, बौद्ध धर्म का प्रसार होने लगा और भारत की राजनीति ने एक नया मोड़ लिया। मौर्य साम्राज्य में शामिल होने के बाद भी कलिंग का महत्व कम नहीं हुआ। समुद्री व्यापार, खनिज संपदा और रणनीतिक स्थिति तीनों ने इसे हमेशा खास बनाए रखा।
4: जैसे कलिंग का विचार करेंगे तो वो भी महाराज बलि के पुत्र कलिंग के द्वारा स्थापित हुआ था, और कलिंग की विशेषता उसकी नौकायन की, समुद्र के लहरों पर शासन करने की ही, जिसके कारण से ये जो कलिंग शासन था वो श्रीलंका में, जावा में, सुमात्रा में, बर्मा में, श्याम में सर्वत्र प्रसारित होता हुआ दिखाई देता है, और इसीलिए कलिंग की जो लिपि है उस लिपि के असर भी दिखाई देते हैं।
1: आज का ओडिशा यानी प्राचीन कलिंग देश के सबसे अधिक खनिज संपन्न राज्यों में से एक है। लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट, ये सब यहाँ प्रचुर मात्रा में मिलता है। यानी जहाँ एक तरफ इतिहास है, वहीं दूसरी तरफ भविष्य की संभावनाएं भी। कलिंग की पहचान सिर्फ युद्ध और व्यापार नहीं, इसकी संस्कृति भी उतनी ही समृद्ध है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर, रथ यात्रा और सदियों पुरानी परंपराएं, ये सब क्षेत्र की आत्मा है। यहाँ की कला, नृत्य और परंपराएं आज भी उसी गौरव की कहानी कहती हैं जो हजारों साल पहले शुरू हुई थी। आज जब विकास की बात होती है तो ओडिशा यानी कलिंग फिर से चर्चा में है। पोर्ट्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब इसे पूर्वी भारत का पावर हाउस बना सकते हैं। रणनीतिक तौर पर भी ये इलाका बेहद अहम है। समुद्र के रास्ते व्यापार और पूर्वी भारत की कनेक्टिविटी। आज जब अंग बंग और कलिंग की बात होती है तो इसमें कलिंग का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि ये त्रिकोण सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि भारत के भविष्य का ब्लूप्रिंट भी माना जाता है।
0: फिलहाल कहानी में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए आज तक।
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
7: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.

0: Si Joseph ishte një numnan, தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும்
1: ये क्षण ऐतिहासिक है, ये मौका बड़े बदलाव का है। इस शपथ के साथ तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा परिवर्तन हो गया है। सिनेमा का थलापति विजय अब तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बन गया है।
0: ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
1: ये तस्वीरें अद्भुत है। चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में विजय के नाम के नारे और जयकारे गूंज रहे थे। तख्ती और तस्वीर लेकर कई समर्थक पहुंचे थे। विजय की झलक पाते ही समर्थकों का जोश कई गुना बढ़ गया। हर ओर विजय के नाम का शोर छा गया। विजय मंच पर आए, लोगों का आभार जताने के लिए भाषण देने लगे तो राज्यपाल ने उन्हें रोक दिया। ये जनता से मिले अपार प्रेम की भावनाएं थी जो विजय के चेहरे पर साफ झलक रही थी। विजय के साथ 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। उनकी नई टीम में उनकी विजन की साफ झलक है। विजय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कई दिग्गज पहुंचे थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी विजय के शपथ ग्रहण में शामिल हुए। विजय की 2 साल पुरानी पार्टी टीवीके ने अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में 234 में 108 सीटें जीती। तमाम पार्टियों के साथ मिलकर बहुमत का आंकड़ा छुआ और अब इस शपथ के साथ तमिलनाडु की सियासत में विजय सरकार का आगाज हो गया है। संयोग देखिए कि विजय ने अपनी आखिरी फिल्म जन नायकन की है और अब वो तमिलनाडु के जन नायक बन चुके हैं। आज तक ब्यूरो।
2: हमारे पीछे इमाम खुमैनी का मज़ार है। 28 साल पहले जब वो गुजर गए थे तो यहाँ पर 3 दिन का मॉर्निंग था जहाँ पर लोग अलग अलग जगह से ईरान के आए और उनको अपने रिस्पेक्ट्स पे किया। लेकिन अब 40 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और सुप्रीम लीडर अली खमेनाई का जो फ्यूनरल है, जो अंतिम संस्कार है, वो अभी भी होना बाकी है। जब होगा तो वो यहीं पे लाए जाएंगे और यहीं पे उन्हें दफनाया जाएगा, इमाम खुमैनी मज़ार में। और तब भी आप देखना, ये पूरी जगह जो है लोगों से भर जाएगी। ईरान के हर कोने से लोग आएंगे। जब इमाम खुमैनी को पहले रखा गया था, 3 दिन मसल्ला में रखा गया था उनके बॉडी को, फिर हेलीकॉप्टर से यहाँ पर लेके आया था आए थे वो लोग। उसी तरीके से जो फ्यूनरल सुप्रीम लीडर खमेनाई का होगा वो भी वैसे ही होगा। और वैसे ही आप देखेंगे पूरा तेहरान लोगों से भर जाएगा। लेकिन इतने दिन इसलिए लगे क्योंकि सिक्योरिटी सिचुएशन आज ठीक नहीं है और अभी भी ऐसा माहौल नहीं बना है कि उनके फ्यूनरल को किया जाए और लोग इतने तादाद में एक जगह जमा हो पाए। कैमरा पर्सन सत्या राउत्रे के साथ तेहरान से गीता मोहन, आज तक।

0: আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে
1: বঙ্গাল মে বিজেপি নে ঐতিহাসিক জিত দর্জ কি পহলি বার বিজেপি কি সরকার বনি আর আব পার্টি আপনে আগলে মহামিশন মে জুট গই হ্যায় মিশন হ্যায় ইউপি মে জিত কি হ্যাট্রিক লাগাকর ইতিহাস রচনে কা জহাঁ আগলে বিধানসভা চুনাও মে বিজেপি কি জিত কে লিয়ে রণনীতি বনাই যা রহি হ্যায় খাকা তৈয়ার কিয়া যা রহা হ্যায় আর ইসি কড়ি মে আজ ইউপি মে মন্ত্রিমন্ডল বিস্তার হো রহা হ্যায় प्रयास है चुनाव से पहले सामाजिक समीकरण साधने का, जातीय संतुलन बैठाने का। ये योगी सरकार का दूसरा कैबिनेट विस्तार है। संभावित नाम और चेहरों की सूची तैयार है। योगी मंत्रिमंडल में आज के विस्तार में कुल 8 मंत्री शपथ लेंगे। सोमेंद्र तोमर और अजीत पाल राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे। वहीं भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, हंसराज विश्वकर्मा, कैलाश लोधी, कृष्णा पासवान और सुरेंद्र दिलेर को नए चेहरे के तौर पर मंत्रिमंडल में एंट्री मिलेगी। कैबिनेट विस्तार के पहले ही यूपी में सियासी हलचल तेज हो गई है। सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कैबिनेट विस्तार पर तंज कसते हुए लिखा, दिल्ली से पर्ची आ गई क्या? सुना है यूपी में कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, या यूं कहें कि मुख्यमंत्री जी की शक्ति का कटाव छटाव हो रहा है। जिनका मंत्रिमंडल है उनसे भी तो कोई पूछ ले। हमारी मांग है कि यूपी के मंत्रिमंडल विस्तार में महिलाओं को आरक्षण दिया जाए।
2: देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार केवल भाजपा के मंत्री, विधायक और भाजपा के लोग ही कर रहे हैं, क्योंकि जनता और पीडीए तो इंतजार कर रही चुनाव का कि कब चुनाव हो और ऐसी अन्याय करने वाली सरकार जाए जिसने पिछड़ों का हक खाया, आरक्षण खाया, दलितों को अपमानित किया, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया, गरीब किसान के घरों को बुलडोजर से गिराने का काम किया, उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें की लेकिन महिलाओं को कोई सुरक्षा नहीं मिली, गरीब परेशान रहा, नौजवान परेशान रहा। ऐसी सरकार को जनता हटा देना चाहती है, इसलिए चेहरे बदल देने से जनता के मूड पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जनता ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने का। पीडीए तैयार है भारतीय जनता पार्टी की इस अन्याय करने वाली सरकार को उत्तर प्रदेश से हराने के लिए।
3: चुनाव के समय मंत्रिमंडल विस्तार, चुनाव के साल में मंत्रिमंडल विस्तार स्पष्ट कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हताश है, निराश है और बिना किसी बात के कोशिश कर रही है जाति संतुलन साधने की। उस प्रदेश में जिस प्रदेश में दलितों को पेशाब छटवाया जा रहा है, उस प्रदेश में जहां पर महिलाएं किसी भी धर्म और किसी भी जाति की हों उनके खिलाफ अपराधों की बाढ़ आई हुई है। एनसीआरबी के आंकड़े में वो नंबर वन है। तो आप संतुलन कोई भी साध लीजिए, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की बंदरबांट के लिए ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। जनता की नजर में इसकी अहमियत कुछ नहीं।
1: यूपी में कैबिनेट विस्तार के जरिए सियासी संदेश देने का प्रयास है ताकि अगले साल होने वाले चुनावों की तैयारियों को रफ्तार दी जा सके। कैबिनेट में नए साथियों की एंट्री के साथ यूपी में एक बार फिर जीत सुनिश्चित की जा सके। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, आज तक।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनते ही विजय का पहला फैसला, 200 यूनिट बिजली फ्री, महिला सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स, डीएमके सरकार पर बोला हमला, कहा राज्य पर 10 लाख करोड़ का कर्ज छोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रम में बोले कांग्रेस सत्ता की भूखी, 25 साल तक डीएमके के साथ रहने के बाद दिया धोखा। यूपी में 2027 के चुनावी समीकरण साधने के लिए योगी कैबिनेट का विस्तार, 8 मंत्री ले सकते हैं शपथ, 6 नए चेहरे, 2 राज्य मंत्रियों को मिल सकता है प्रमोशन।

जेपी नड्डा के सामने चुने गए विधायक दल के नेता, 12 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह, प्रधानमंत्री मोदी होंगे शामिल। और बिहार में बीजेपी विधायक पर लगा गुंडागर्दी का आरोप, वीडियो में समर्थकों के साथ मारपीट करते हुए नजर आए, AK-47 से भून देने की धमकी, तेजस्वी ने सम्राट को घेरा।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोपहर के 2 बज गए हैं और सबसे पहले हम आपको बताते हैं अगले एक घंटे में आपके लिए क्या क्या खास लेकर आए। योगी कैबिनेट का विस्तार आज होने जा रहा है, जो बहुत ही खास दिन है। किसे मौका मिल रहा है पूरा दिन, इस खबर से हम आपको रूबरू कराएंगे। बात हम असम की भी करेंगे, जहां पर एक बार फिर से हेमंत बिस्व शर्मा को नेता चुन लिया गया है विधायक दल का और अब वो मुख्यमंत्री बनेंगे। दोपहर 2:30 बजे हम आपको लिए चलेंगे तमिलनाडु, जहां विजय युग की शुरुआत हुई है, विजय युग का आगाज हो चुका है। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बड़ी और अहम खबर के बारे में। बिहार के मुजफ्फरपुर से खबर आई है, जहां बीजेपी विधायक रंजन कुमार पर समर्थकों के साथ घर में घुसने के बाद मारपीट के आरोप लगे हैं, धमकी देने के आरोप लगे हैं। ये फुटेज जारी कर दी गई है। आरोप यह है, सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें बीजेपी विधायक अपने समर्थकों के साथ जाते हुए मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। पीड़ित पक्ष के मुकुंद कुमार का आरोप यह है कि विधायक ने घर में घुसकर जबरदस्त बुरी तरह से मारपीट की है, AK-47 से भून देने की धमकी दी है और मामला तब ज्यादा गर्मा गया जब तेजस्वी यादव ने वीडियो ट्वीट करके सम्राट चौधरी सरकार को घेरा। ये तमाम तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर एक शख्स के घर में घुसकर जबरदस्त तरीके से उसके साथ मारपीट और उसे AK-47 से भून देने की धमकी दी गई है। अपने समर्थकों के साथ घर में घुसते हुए रंजन कुमार नजर आ रहे हैं। तो बार बार सम्राट चौधरी की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्थित करने की बात कही जाती है, लेकिन तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं। और आपको ये भी बता दें कि इन्हीं तस्वीरों के साथ कुछ और वीडियोस को तेजस्वी यादव की तरफ से भी शेयर करके सवाल पूछे गए हैं तेजस्वी सरकार से। आपको बता दें कि समर्थकों के साथ घर में घुसकर जबरदस्त तरीके से मारपीट की गई है, साथ ही साथ AK-47 से भून देने की धमकी दी गई है। मुकुंद कुमार जो पीड़ित है, उसकी तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं कि उनके घर में घुसकर जबरदस्त तरीके से पहले मारपीट हुई और उसे AK-47 से भून देने की धमकी दी गई। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही साथ दूसरी तरफ वो फुटेज है जिसके ऊपर अब जबरदस्त तरीके से बवाल है। रंजन कुमार घर में घुसकर धमकी देते हुए और अपने समर्थकों के साथ उस घर में घुसते हुए नजर आ रहे हैं।
1: आज सुबह हम दुकान पे थे, अपने सर्विसिंग सेंटर पे बैठे थे, घर भी ऊपर है, नीचे दुकान है। तो विधायक जी आए, लगभग 50-60 आदमी से, उसके बाद में बोलने लगे कि तुम मेरे खिलाफ़ काहे लिखते हो, गाली गलौज करने लगे। हम बोले कि हम तो शहर के समस्या के लिए लिखते हैं, तो तुम मेरे खिलाफ़ लिखा। हम बोले कि मेरे आपके खिलाफ़ कोई लिखे हैं तो कोई मर्यादित, चाहे कोई ऐसा शब्द है, चाहे कोई ऐसा फोटो कि आपका हम डाले हैं जिससे आपकी भावना को ठेस पहुंचे। उसी पर विधायक जी, उनके साथ और 5-6 आदमी थे, अभिमन्यु तिवारी था, अभिषेक सौरभ था, उसके बाद में उत्कर्ष दीक्षित था, डिपू ठाकुर था, 3-4 आदमी और लोग था। सब लोग हमारा मार के सर फोड़ दिया है, मेरा सोना का चैन था वो भी छीन लिया है, मोबाइल मेरा फोड़ दिया है। उसके बाद हम थाना पे गए हैं, तो थाना बोले हैं कि तुम फुटेज दो, चूँकि विधायक का मामला है। तो फिर हम घर आए हैं, हम फुटेज को सबको एक स्टोर किए हैं मेमोरी कार्ड में। फिर हॉस्पिटल आए हैं, हॉस्पिटल में जांच करवाए हैं, दवा सुई हुआ है, सीटी स्कैन हुआ है, एक्सरे हुआ है।
2: क्या चाहते हैं
1: अब आगे? हमको न्याय मिले, हम न्याय की मांग करते हैं। हमको तो डर लग रहा है कि हम मुजफ्फरपुर में रहें कि नहीं रहें।
3: टिप्पणियाँ होती है, टिप्पणियाँ सड़क बनाने पे कीजिए, नाला बनाने पे कीजिए, जाम पे कीजिए, कि व्यक्तिगत पे कीजिएगा, चरित्र हनन का प्रयास कीजिएगा। कभी किसी का फोटो लगा के लिख, कोई किसी के साथ डांस कर रहा है, शराब पी रहा है और उसका पीछे से फोटो दे के कहिएगा कि ये है 94 के विधायक, क्या ये जायज है क्या? आप लोग भी मुझे इतने दिनों से जानते हैं और आप जानते हैं कि मैं मुजफ्फरपुर से सिर्फ अपने व्यवहार के कारण चुनाव जीता हूं।
0: ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे संवाददाता शशि भूषण जुड़ गए। शशि भूषण, क्या पूरा का पूरा मामला है? क्योंकि विधायक जी कुछ और कह रहे हैं और जो तस्वीरें हैं वो कुछ और बयां कर रही हैं और इसीलिए बार बार पूछा जा रहा है कि यही सम्राट राज है, यही लॉ एंड ऑर्डर है।
4: बिल्कुल शशि, देखिये दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज पीड़ित पक्ष की तरफ से जारी किया गया है मुकुंद कुमार की तरफ से, और जो क्लेम किया गया है वो कम से कम इस वक्त बीजेपी विधायक की परेशानी बढ़ाता हुआ दिख रहा है। बीजेपी विधायक भले ही सफाई में कह रहे हो रंजन कुमार की वो समझाने बुझाने गए थे, बाद में उन्होंने एक FIR भी दर्ज कराई है साइबर एक्ट के तहत, लेकिन ये कदम वो पहले भी उठा सकते थे। अगर आप के खिलाफ कोई टिप्पणी सोशल मीडिया पे आपत्तिजनक हो रही थी तो उन परिस्थितियों में आप पहले भी प्रशासन, चूंकि सरकार आपकी है तो आपकी जवाबदेही तो ये बनती है कि आप प्रशासन के पास ही जाइए, वहां पर आप जाकर के कंप्लेन करते। लेकिन अगर आप समझाने बुझाने भी गए और वहां जो कुछ घटनाक्रम हुआ उसके बाद अब जो विधायक हैं बीजेपी के वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। जो सरकार है उसके लिए भी परेशानी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि देखिए हमने देखा है सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने हैं अपराधियों के खिलाफ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के पुलिस का रवैया बेहद सख्त नजर आया है। दो दो एनकाउंटर हुए हैं बिहार में, एक सुल्तानगंज भागलपुर में और दूसरा सिवान के अंदर। लेकिन उसके बीच अगर सत्ता पक्ष के ही विधायक इस तरह की हरकत कर रहे हैं और तेजस्वी यादव ने जिस तरह सवाल खड़े किए हैं, ऐसा लगता है कि ये बीजेपी विधायक रंजन कुमार की परेशानियां और बढ़ाएगा। रंजन कुमार भले ही क्लेम कर रहे हो कि उनको भी धमकी दी गई, सब कुछ अपने दावे कर रहे हो, लेकिन फौरी तौर पे अगर देखें तो जो CCTV फुटेज है और जिसमें विधायक जिस अंदाज में अपने समर्थकों के साथ मुकुंद कुमार के घर पे जाते हुए दिख रहे हैं, वहां हाथापाई हो रही है, ये तमाम वो एविडेंस हैं जिन एविडेंस ने बीजेपी विधायक की परेशानियां तो बढ़ाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। शशि
0: बहुत बहुत शुक्रिया शशि भूषण इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, क्योंकि वहां आज होने जा रहा है कैबिनेट विस्तार। योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार आज होगा। माना भी ये जा रहा है कि इस मंत्रिमंडल के विस्तार के जरिए बीजेपी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को साधने की कोशिश करेगी। जानकारी के मुताबिक योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में विस्तार में कुल 8 मंत्री शामिल होंगे, मतलब 8 मंत्री शपथ लेंगे, जिसमें से 6 नए चेहरे जबकि 2 राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे। तो आज का दिन कुल मिलाकर बहुत ज्यादा खास है। योगी मंत्रिमंडल में आज के लिए विस्तार में कुल 8 मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं, जिसमें सोमेंद्र तोमर हैं राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे, और साथ ही साथ आपको बता दें कि अजीत पाल भी कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे। वहीं अगर हम बाकी के 6 लोगों की बात करें जिसमें नाम है हंसराज विश्वकर्मा का, कैलाश लोधी, कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दिलेर, मनोज पांडे और भूपेंद्र चौधरी, आज वो मंत्री पद की शपथ लेंगे।
2: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे।
5: बंगाल में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। पहली बार बीजेपी की सरकार बनी और अब पार्टी अपने अगले महामिशन में जुट गई है। मिशन है यूपी में जीत की हैट्रिक लगाकर इतिहास रचने का, जहां अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के लिए रणनीति बनाई जा रही है, खाका तैयार किया जा रहा है, और इसी कड़ी में आज यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। प्रयास है चुनाव से पहले सामाजिक समीकरण साधने का, जातीय संतुलन बैठाने का। ये योगी सरकार का दूसरा कैबिनेट विस्तार है। संभावित नाम और चेहरों की सूची तैयार है। योगी मंत्रिमंडल में आज के विस्तार में कुल 8 मंत्री शपथ लेंगे। सोमेंद्र तोमर और अजीत पाल राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे। वहीं भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, हंसराज विश्वकर्मा, कैलाश लोधी, कृष्णा पासवान और सुरेंद्र दिलेर को नए चेहरे के तौर पर मंत्रिमंडल में एंट्री मिलेगी।
6: योगी सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल को लेकर लंबे समय से चल रही अटकलों पर आज पूर्ण विराम लगने जा रहा है। आज योगी सरकार का कैबिनेट एक्सपेंशन यानी कि मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है, और जिन नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है उसमें सबसे प्रमुखता से जिस नेता का नाम लिया जा रहा है वो है मनोज पांडे। कौन है मनोज पांडे? विधायक ऊंचाहार, बाहर उनके आवास पर हमारी मौजूदगी, और ये जो यहाँ नेम प्लेट लगाया है उसमें उनका पूरा परिचय, पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, विधायक ऊंचाहार, रायबरेली। यूं तो इनकी राजनीति, रायबरेली में इनकी धमक या जो भी कहा जाए वो समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई रही है, लेकिन राज्यसभा चुनाव में जब मनोज पांडे ने अपने अन्य विधायकों के साथ भाजपा के पक्ष में वोट डाला तभी जो बातें बातें बिगड़ी और समाजवादी पार्टी छोड़ फिर आखिरकार मनोज पांडे ने भाजपा का दामन थाम लिया। अमित शाह की वो मुलाकात मनोज पांडे से और उनके परिवार से रायबरेली में कुछ साल पहले एक पटकथा तैयार हो गई थी, उस पटकथा को आयाम आज मिलने वाला है, यानी कि मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री बनाया जाना लगभग तय माना जा रहा है। मनोज पांडे के अलावा कई और नाम भी चर्चा में हैं, चाहे वो भूपेंद्र चौधरी का नाम हो जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा रहे हैं, पूजा पाल का भी नाम चर्चा में है, अन्य कई नाम हैं जो चर्चा में है। लेकिन आप तस्वीरें आवाज की देखें, यहाँ पर चहलकदमी जो है वो धीरे धीरे बढ़ी जरूर है सुबह से। हालांकि इस वक्त मनोज पांडे यहाँ नहीं है। भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, कृष्णा पासवान, पूजा पाल, सुरेंद्र दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा, ये कुल 6 ऐसे नाम हैं जिनकी चर्चा सबसे अधिक है।
5: कैबिनेट विस्तार के पहले ही यूपी में सियासी हलचल तेज हो गई है, सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कैबिनेट विस्तार पर तंज कसते हुए लिखा, दिल्ली से पर्ची आ गई क्या? सुना है यूपी में कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, या यूं कहें कि मुख्यमंत्री जी की शक्ति का कटाव छटाव हो रहा है। जिनका मंत्रिमंडल है उनसे भी तो कोई पूछ ले। हमारी मांग है कि यूपी के मंत्रिमंडल विस्तार में महिलाओं को आरक्षण दिया जाए।
7: देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार केवल भाजपा के मंत्री, विधायक और भाजपा के लोग ही कर रहे हैं, क्योंकि जनता और पीडीए तो इंतजार कर रही चुनाव का कि कब चुनाव हो और ऐसी अन्याय करने वाली सरकार जाए जिसने पिछड़ों का हक खाया, आरक्षण खाया, दलितों को अपमानित किया, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया, गरीब किसान के घरों को बुलडोजर से गिराने का काम किया, उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें की लेकिन महिलाओं को कोई सुरक्षा नहीं मिली, गरीब परेशान रहा, नौजवान परेशान रहा। ऐसी सरकार को जनता हटा देना चाहती है, इसलिए चेहरे बदल देने से जनता के मूड पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जनता ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने का। पीडीए तैयार है भारतीय जनता पार्टी की इस अन्याय करने वाली सरकार को उत्तर प्रदेश से हराने के लिए।
8: चुनाव के समय मंत्रिमंडल विस्तार, चुनाव के साल में मंत्रिमंडल विस्तार स्पष्ट कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हताश है, निराश है और बिना किसी बात के कोशिश कर रही है जाति संतुलन साधने की, उस प्रदेश में जिस प्रदेश में दलितों को पेशाब छटवाया जा रहा है, उस प्रदेश में जहां पर महिलाएं किसी भी धर्म और किसी भी जाति की हों उनके खिलाफ अपराधों की बाढ़ आई हुई है। एनसीआरबी के आंकड़े में वो नंबर वन है। तो आप संतुलन कोई भी साध लीजिए, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की बंदरबांट के लिए ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। जनता की नजर में इसकी अहमियत कुछ नहीं।
5: यूपी में कैबिनेट विस्तार के जरिए सियासी संदेश देने का प्रयास है ताकि अगले साल होने वाले चुनावों की तैयारियों को रफ्तार दी जा सके। कैबिनेट में नए साथियों की एंट्री के साथ यूपी में एक बार फिर जीत सुनिश्चित की जा सके। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, आज तक।
0: और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कुमार अभिषेक एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या तैयारियां चल रही हैं और पूरी तरह से माना जाए कि 2027 की तैयारियां जोर शोर से हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से इस रीशफल का इंतजार किया जा रहा था।
9: बिल्कुल शशि, ये कह सकते हैं कि तीसरा मंत्रिमंडल विस्तार है। 2024 में दूसरा हुआ था जिसमें सहयोगी दल के तमाम जो साथी थे उन्होंने ज्वाइन किया था, जिसमें ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान ऐसे लोग आए थे। लेकिन ये तीसरा और आखिरी है और पूरे जो 60 कैबिनेट में जो जगह होनी चाहिए, मंत्रिमंडल में होनी चाहिए, सबके सब आज भर जाएंगे। 6 नए नाम हैं जैसा कि हम लोग लगातार बता रहे हैं और 2 नामों को प्रोन्नति मिल रही है, उनको अपग्रेड किया जा रहा है, कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है। लेकिन ये जो 6 नाम हैं अगर आप देखेंगी तो एक ब्राह्मण चेहरे को छोड़कर बाकी 2 दलित और 3 ओबीसी हैं। अगर आप देखें तो मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से आए हैं और अब मंत्री बनेंगे, कैबिनेट मंत्री बनेंगे। पुराना इतिहास भी देखा जाए तो मुलायम सिंह यादव के साथ कैबिनेट में रहे, अखिलेश यादव के कैबिनेट में रहे और अब योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट में होंगे। भूपेंद्र चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, मुरादाबाद से आते हैं, संगठन पर अच्छी पकड़ मानी जाती है, अब वो भी कैबिनेट मंत्री होंगे। हालांकि पिछले टर्म में भी वो पंचायती राज के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। लेकिन कई ऐसे नाम हैं जो पहली बार हैं। सुरेंद्र सिंह दिलेर वाल्मीकि समाज से आते हैं, खैर अलीगढ़ की सीट है, वहां से जीतते रहे हैं, उनके पिता उनके दादा 4 बार सांसद रहे हैं, तो एक लंबा उनका इतिहास है। उसी तरीके से कैलाश राजपूत लोधी जो कि तिरवा विधानसभा कन्नौज से आते हैं, 4 बार के विधायक हैं और कहते हैं कि कल्याण सिंह के साथ जब जब जब सरकार बनी थी तब वो विधायक बने थे। तो बीजेपी कई समीकरण एक साथ साध रही है। अगर आप देखेंगे तो दलितों में पासवान, दलितों में वाल्मीकि, उसी तरीके से ओबीसी में विश्वकर्मा, पाल, गुर्जर, उसके अलावा जाट, इस तरीके की तमाम जो जो
0: क्षेत्रीय और जातिगत दोनों ही तरह से संतुलन बनाने की कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, तमाम अपडेट्स के लिए अब आपका रुख करेंगे। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी भी लखनऊ पहुंच चुके हैं। अभिषेक ने उनसे बात की है, देखिए।
9: हमारे साथ इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी हैं, जो कि प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं। सर, लगभग सब तय हो गया, 6 नए मंत्री, 2 लोगों की प्रोन्नति, दो क्या क्या क्या इस बार सारे समीकरण साधे जा रहे हैं जातियों के?
10: देखिए, भारतीय जनता पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल कोई जब निर्णय लेता है तो सारे चीज़ों को कहीं ना कहीं समाहित करने का प्रयास करता है, और 3:30 बजे वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी।
9: तो जो 6 मंत्री नए बनाए जा रहे हैं, जिसमें जो समीकरण है उसमें 5 OBC, 1 ब्राह्मण, 2 दलित, क्या संदेश देना?
10: मैं कह रहा हूँ कि अभी 3:30 बजे

0: फिर मैं वही सवाल का जवाब दूंगा आपको, 3:30 बजे तक वेट करिए, बस 3-4 घंटे बचे।
1: लगता नहीं कि आप लोगों ने देर कर दी एकदम, अब चुनाव के मुहाने पे आप कैबिनेट एक्सपेंशन कर रहे हैं, इसका फायदा मिल पाएगा उतना? क्योंकि आप
0: हर निर्णय का एक समय होता है और देर क्या होता है, अभी तो साल भर का करीब करीब समय बाकी है और काम करने वाले उतने भी काम कर रहे हैं।
1: अखिलेश जी ने अभी ट्वीट किया इस मंत्रिमंडल को लेकर के और कहा कि भाई जितने लोगों को बीजेपी ने तोड़ा था उसमें से किसी को कुछ नहीं मिल रहा, बाकी लोग तो यूं ही रह गए, एक सिर्फ मनोज पांडे को अगर छोड़ दे तो।
0: अब अखिलेश जी को सूची शायद पता हो या ना पता हो, पता नहीं, उनको बात पूरा अंदरूनी खबर रहता है कि दिल्ली से पर्ची आ रही है या वो हो रहा है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि 3:30 बजे तक रुकिए, सारी चीजों का जवाब मिल जाए।
1: तो चौंकाएंगे भी क्या, ऐसा है क्या, क्योंकि 8 नाम तो चल रहे हैं।
0: ठीक है, धन्यवाद सर,
2: एक
1: बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे प्रदेश अध्यक्ष, कहना है कि सभी लोगों को समाहित करने का ये प्रयास है और बीजेपी इसी तरीके से काम करती है। अखिलेश जी जो चाहें वो कहें। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
3: तो यूपी कैबिनेट विस्तार में जिन विधायकों के मंत्री बनने की चर्चाएं हैं उनके घरों पर जश्न की शुरुआत हो चुकी है। जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो वाराणसी की हैं। यहां के जिला अध्यक्ष और एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा का नाम संभावित मंत्रियों में शामिल है।
4: हंसराज जी हमारे साथ हैं, तो हमारे साथ भावी मंत्री हंसराज विश्वकर्मा, मंत्री तो कह ही सकते हैं ना अभी तो?
5: नहीं, अभी नहीं मत कहिए, जब तक शपथ न हो तब तक कहने में कोई नहीं।
4: मुख्यमंत्री ने तो दे दी, बताया आपको कि हाँ आप शपथ लेनी है।
5: अब शपथ लेनी है जब तक ले न लिया जाए।
4: कौन कौन ले रहा है आपके साथ?
5: अभी 6 लोग हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री आदरणीय हमारे भूपेन्द्र चौधरी जी हैं, मैं हूँ, कैलाश राजपूत जी हैं, एक मनोज पांडे जी हैं, एक कृष्णा पासवान जी हैं, महिला हैं, और दिलेर जी हैं जो राजनीतिक खानदान से आते हैं, कल हमारी मुलाकात हुई। ये 6 लोगों को बुलाया गया है, अब आगे देखिए कौन सी जिम्मेवारी मिलती है। इसके लिए मैं निश्चित तौर पर मैं अपनी तरफ से अपने वाराणसी के सांसद, देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री माननीय आदित्य योगी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं।
4: एक सवाल ये कि जो आखिरी में पूरी सरकार के दूसरे टर्म का भी ये 6 महीने रह गए, तो लगता नहीं है कि बहुत देर कर दी सरकार आते आते?
5: कोई देर नहीं की है, देर आई दुरुस्त आई है, निश्चित तौर पर पूरा जितना समय मिलेगा उतने ही में अच्छा हो जाएगा।
3: कृष्णा पासवान और कैलाश राजपूत को भी मंत्री परिषद में जगह मिल रही है और इन दोनों का क्या कहना है सुनिए।
6: मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी बहुत बहुत बधाई और उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता बूथ से लेकर के जिले मंडल तक, मंडल से जिले तक, जिले से क्षेत्र तक, प्रदेश तक और केंद्र तक के सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ।
4: पहले तो बधाई, मंत्री बनने जा रहे हैं, 4 बार के विधायक अब की मंत्री बनेंगे।
7: धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको।
4: फोन आ गया?
7: हाँ आ गया।
4: मुलाकात हुई मुख्यमंत्री से, क्या बोले?
7: कुछ नहीं, बताया कि शपथ ग्रहण 3:30 बजे है, 3 बजे पहुँच जाना।
4: अच्छा,
7: 3 बजे।
4: और कौन कौन है आपके साथ?
7: जो आप TV पर नाम देख रहे हैं वो सब है।
4: अरे आपने भी तो कुछ मुलाकात होगी आपके संगी साथी?
7: पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी भी थे, पासवान जी महिला है, एक विश्वकर्मा जी है, एक दिलेर साहब हैं,
4: मनोज पांडे
7: जी हैं, ये लोग थे और इतने लोग थे।
4: आप जिस कन्नौज से आते हैं वो समाजवादी का गढ़ कहा जाता है और अखिलेश यादव ने तंज कसा है कि अब बचा क्या है करने को, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से जो अब कैबिनेट विस्तार किया जा रहा है, वोट बैंक की राजनीति, विपक्ष यही आरोप लगा।
7: देखिए, कन्नौज लोकसभा सपा का गढ़ रहा, ये सही बात है, लेकिन जब गढ़ रहा था तब उसमें भरतना विधानसभा शामिल थी, तो मुलायम सिंह जी भी चुनाव जीते, प्रदीप यादव भी जीते और अखिलेश यादव भी जीते, शायद उनकी पत्नी भी चुनाव जीती, शायद क्या जीती है, डिम्पल जी। तो वो गढ़वाला जो जिला था वो तो कट के चला गया इटावा में। अब इस समय कन्नौज लोकसभा में सर्वाधिक अगर वोट किसी जात का, वो लोधीराजपुर समाज का है।
3: और अब बात करेंगे असम के बारे में, क्योंकि असम में हिमंत विश्व शर्मा को बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और 12 मई को हिमंत विश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री

0: जी के पद की शपथ लेंगे। जेपी नड्डा और साथ ही हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी पर्यवेक्षक और सह पर्यवेक्षक बनकर असम गए थे और उनकी मौजूदगी में हेमंता को नेता चुना गया है। लगातार दूसरी बार हेमंता बिस्व सरमा असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: प्रधानमंत्री जी ने यह चुनाव प्रसार अभियान में भाग लिया। बीते 10 साल असम का विकास को एक जो हम कभी सोचे भी नहीं था उस लेवल तक लेके गया और ये पूरा विजय प्रधानमंत्री जी ने जो असम को विकास का रास्ता में लेके गया, ये पूरा चुनाव प्रधानमंत्री जी का विकास को, विकास का ये यज्ञ को असम का जनता ने आशीर्वाद दिया है और हम असम का जनता को विश्वास दिलाता हूं कि प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में हम अगली 5 साल भी दिन रात मेहनत करके काम करेगा। असम को, असम का विकास हमारा मूल लक्ष्य होगा। असम में शांति लाने के लिए हमारे गृह मंत्री अमित शाह का जो प्रयास था, इस प्रयास का नतीजा हुए आज असम देश का अंदर एक पीसफुल स्टेट का हिसाब से उभरा है। मैं सम्माननीय गृह मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।
0: तो 12 तारीख को 11 बजे शपथ ग्रहण होना है जहां प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
4: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries, it's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: और वही कहाँ गए थे घूमने?
6: जीके मैक्स।
7: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
6: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
8: जेके वॉल मैक्स
6: बेस्ट पेंट।
8: जेके मैक्स।
6: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।
9: टेबल को ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं भाई साहब सब पचा देते।
10: पर दिक्कत तो होने आती है जो टेबल के नीचे से।
11: मुल्तानी पश्मीना अपने हक का खाओ सब कुछ पचाओ।
12: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। जेके मसाले जहां स्वाद वहां जेके।
13: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
14: इसमें माइक्रोफाइबर है।
13: माइक्रोफाइबर यानी
14: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
13: हमारे सीमेंट में नहीं है।
14: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
15: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड सीधी बात है ड्यूरागार्ड खास है।
16: आज तक के खबरदार करते ही सरकार का एक्शन।
17: आज तक की खबर के बाद काउंसिल ने भरोसा दिया है कि मार्च के आखिर तक लंबित प्राइज मनी दे दी जाएगी।
18: एक दो दिन में ही उनके नियुक्ति पत्र भी जारी हो जाएंगे।
17: ये सब कुछ तब हो पाया जब आज तक ने राजस्थान के खेल विभाग को जगाया।
19: अच्छी खबर चली हमारी। अच्छा हुआ सर।
16: जहां खबर वहां खबरदार सिर्फ आज तक पर।
20: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR ये रिश्ता लंबा चलेगा। Monte Carlo, it's the way you make me feel.
21: शादी का किचन महके जहाँ गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ।
22: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
23: हर चेहरा सिर्फ एक नाम नहीं होता, उसके पीछे होती है एक कहानी। कभी सुर्खियों में कभी सवालों में हम बताते हैं उस चर्चा का सच। चर्चित चेहरा देखना ना भूले सोमवार से शुक्रवार शाम ठीक 7 बजे सिर्फ और सिर्फ न्यूज तक पर।
20: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। इन एसोसिएशन विद
24: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
25: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
26: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
27: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
25: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
20: Presented by पतंजलि गाय का घी। लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। इन एसोसिएशन विद
24: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

यूपी में 2027 के चुनावी समीकरण साधने के लिए योगी कैबिनेट का विस्तार, 8 मंत्री ले सकते हैं शपथ, 6 नए चेहरे, 2 राज्य मंत्रियों को मिल सकता है प्रमोशन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनते ही विजय का पहला फैसला, 200 यूनिट बिजली फ्री, महिला सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स, डीएमके सरकार पर बोला हमला, कहा राज्य पर 10 लाख करोड़ का कर्ज छोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रम में बोले कांग्रेस सत्ता की भूखी, 25 साल तक डीएमके के साथ रहने के बाद दिया धोखा। असम में फिर एक बार हेमंता की सरकार, केंद्रीय पर्यवेक्षक जेपी नड्डा के सामने चुने गए विधायक दल के नेता, 12 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह, प्रधानमंत्री मोदी होंगे शामिल। और केरलम में नए मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस में मंथन, दिल्ली में बैठकों का दौर, अभी तक तय नहीं हो सका है मुख्यमंत्री के नाम पर कोई फैसला, दौड़ में केसी वेणुगोपाल आगे।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सबसे पहले आपको बता दें बेंगलुरु से, जहां प्रधानमंत्री के दौरे से पहले जिलेटिन की छड़ें पाई गई हैं। कार्यक्रम स्थल से लगभग 3 किलोमीटर दूर ये छड़ें पाई गई हैं। बेंगलुरु पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और एक संदिग्ध से गहन पूछताछ भी की जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम स्थल से 3 किलोमीटर दूर पर यह बरामदगी हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे संवाददाता सदय राज जुड़ गए। सदय, और क्या जानकारी मिल पा रही है इस खबर से जुड़ी हुई?
1: अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम है आज श्री श्री रविशंकर के आश्रम के पास, और आश्रम से पहले जो 3 किलोमीटर दूर वहां पे 2-3 जिलेटिन स्टिक्स मिला है। प्रधानमंत्री आने से पहले जब रूटीन चेक कर रहे थे पुलिस, उसी टाइम पे जिलेटिन स्टिक्स मिला है और इमीडिएटली पुलिस ने कॉग्निशन किया, अलर्ट किया और तुरंत उसको कब्जा किया है। और फिलहाल पुलिस जो भी सस्पेक्ट है इस इंसिडेंट में उसको डिटेन करके उससे इंट्रोगेशन कर रहे हैं। और उस जगह जो भी जगह है कगलीपुरा आसपास, वहां पे बहुत ज्यादा माइनिंग भी है, मगर पुलिस इस चीज को लेकर बहुत सीरियस है और जांच कर रही है।
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया सदा इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे आपको और अब दिखाएंगे तमिलनाडु में आज से विजयराज।

0: नमस्कार, आप देख रहे हो आज तक। मैं हूँ अक्षता नंदगोपाल और अभी मैं नेहरू इंडोर स्टेडियम में हूँ। तमिलनाडु की राजनीति में आज एक नया अध्याय जुड़ गया। अभिनेता से नेता बने तलपति विजय ने आज चेन्नई के नेहरू स्टेडियम जहाँ मैं हूँ यहाँ पे मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई और 9 विधायक भी मंत्री बने हैं। विजय की पार्टी टीवी के ने अपने पहले ही चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए 108 सीटें जीती और कांग्रेस समेत 5 दलों से समर्थन से बहुमत का अखाड़ा 118 पार किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता शपथ समारोह में शामिल हुए। इस दौरान विजय के तमाम फैन भावुक भी दिखे।
1: Joseph Vijayanum Nan Tamil Nadu Arasin Mudalamechar Endra Murayil Yenadu Gavanathirkullavadum Theriyavaruvadumana Yenda Porulaiyum Mudalamecharin Kadamegalai Uriyavaru Nirevetra Thevayana Alavu Kandri
2: Ye Kshan Aitihasik Hai Ye Mauka Bade Badlav Ka Hai इस शपथ के साथ तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा परिवर्तन हो गया है। सिनेमा का थलापति विजय अब तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बन गया है।
1: ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
2: ये तस्वीरें अद्भुत है। चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में विजय के नाम के नारे और जयकारे गूंज रहे थे। तख्ती और तस्वीर लेकर कई समर्थक पहुंचे थे। विजय की झलक पाते ही समर्थकों का जोश कई गुना बढ़ गया। हर ओर विजय के नाम का शोर छा गया।

0: विजय मंच पर आए, लोगों का आभार जताने के लिए भाषण देने लगे तो राज्यपाल ने उन्हें रोक दिया।
1: सत्तपड़ी अमेरिक पेट्र।
0: ये जनता से मिले अपार प्रेम की भावनाएं थी जो विजय के चेहरे पर साफ झलक रही थी। विजय के साथ 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। उनकी नई टीम में उनकी विजन की साफ झलक है। विजय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कई दिग्गज पहुंचे थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी विजय के शपथ ग्रहण में शामिल हुए। सेल्फी।

0: विजय की 2 साल पुरानी पार्टी टीवीके ने अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में 234 में 108 सीटें जीती। तमाम पार्टियों के साथ मिलकर बहुमत का आंकड़ा छुआ और अब इस शपथ के साथ तमिलनाडु की सियासत में विजय सरकार का आगाज हो गया है। संयोग देखिए कि विजय ने अपनी आखिरी फिल्म जन नायकन की है और अब वो तमिलनाडु के जन नायक बन चुके हैं।
1: ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
0: ஆஜ் தக்திரோ.
2: विजय ने जिस तरह से तमिलनाडु में जीत हासिल की वो ऐतिहासिक है। विजय ने कैसे अपने लिए जीत की राय तय किया? सिर्फ 2 साल पहले पार्टी बनी और उसके बाद ऐसे कमाल किया कि तमिलनाडु की राजनीति को पलट कर पूरा चेंज कर दिया। ऐसे कैसे हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए।
1: जोसेफ विजय

0: वो विजय जो अब तक रियल लाइफ के हीरो थे अब रियल लाइफ के हीरो बन गए हैं।
1: There are so many jackals and other animals in the forest, but there will be only one lion. And even if it is single, it will be the king of jungle. It is not only a description, but also a clear declaration.
0: तमिलनाडु में पिछले 59 साल एक महीने और 28 दिनों तक सिर्फ दो ही पार्टियों का राज था। तमिलनाडु में पिछले 21,608 दिन से सिर्फ दो ही पार्टियां शासन करती थी, डीएमके और एडीएमके। बीच बीच में तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन भी रहा, लेकिन इन दोनों पार्टियों के अलावा किसी तीसरे पार्टी की एंट्री नहीं हो पाई। लेकिन अब इन दोनों पार्टियों के राज को 59 साल के बाद थलपति विजय की टीवी के ने ध्वस्त किया है। विजय ने वो करके दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। किसने सोचा था कि सिर्फ दो साल में ऐसा कमाल दिखाएंगे कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन जाएंगे।

0: विजय मौजूदा वक्त में तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। विजय के पास पैसा, स्टारडम, फैन फॉलोइंग सब कुछ था। वो चाहते तो आराम से सुपरस्टार बने रह सकते थे, लेकिन उन्होंने राजनीति का रास्ता चुना। 2016 में जयललिता की मौत के बाद से तमिलनाडु की राजनीति में एक शून्य था, एक खालीपन था। डीएमके के सामने तो जैसे कि खुला हुआ रास्ता था, दूर दूर तक कोई भी टक्कर में नहीं था। इसीलिए 2021 में स्टालिन मुख्यमंत्री बने तो सबको लगा कि अब स्टालिन को कौन टक्कर देगा। इसीलिए ज्यादातर एग्जिट पोल में उनकी जीत बताई जा रही थी, लेकिन वो विजय ही थे जिन्होंने जयललिता की मौत से खाली हुई तमिलनाडु की राजनीति के शून्य को भरा। उनकी रैलियों की भीड़ बता रही थी कि तमिलनाडु में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन शायद किसी को ये अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ भीड़ नहीं है, उनके वोटर्स भी हैं। और विजय के इन फैंस ने ये साबित कर दिया कि वो रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए नहीं जमा हुए थे, वो तमिलनाडु को बदलने के लिए आए थे। तमिलनाडु में थलपति विजय ने तो इतिहास रचा है, लेकिन उनको ये कामयाबी इसलिए मिली क्योंकि तमिलनाडु के लोगों को उनके अंदर एक ऐसा नायक नजर आया जो उनके राज्य को आगे ले जा सकता है। विजय की इस जीत के पीछे उनके वो फैंस थे जो उन्हें किसी भी हद तक फॉलो करते हैं। विजय ने अपने फैन क्लब को वेलफेयर नेटवर्क में बदला, लोगों की मदद, युवाओं के कनेक्शन और जमीनी पकड़ मजबूत की और टीवीके के अपने वोटर तैयार किए। तमिलनाडु में विजय के 85,000 से ज्यादा फैन क्लब का नेटवर्क है जिन्होंने उनकी जीत में अहम भूमिका निभाई। उनका ये नेटवर्क पिछले 10 वर्षों से उनके शैडो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में ही काम कर रहे थे। विजय के ये फैन क्लब पूरे तमिलनाडु में सामाजिक काम कर रहे थे, लोगों को विजय से जोड़ रहे थे। विजय आर्मी पिछले कई वर्षों से तमिलनाडु की गलियों में दिख रही थी। विजय की जीत की सबसे बड़ी वजह है उनकी लोकप्रियता। विजय भले ही 51 साल के, लेकिन उन्हें युवाओं का या जेंसी का नेता कहा जाता है। तमिलनाडु में 40 से कम उम्र के युवाओं की संख्या 2 करोड़ है, जो तमिलनाडु के करीब 41.5% वोटर होते हैं। विजय का यही युवा कैडर सोशल मीडिया पर भी एक्टिव था, जिन्होंने तमिलनाडु में विजय के पक्ष में हवा बनाई। विजय ने किसी बड़े गठबंधन का सहारा नहीं लिया, न डीएमके, न एआईएडीएमके, न बीजेपी, सीधे जनता के बीच गए। आज तक पेरो।
1: आज अगर विजय तमिलनाडु की सबसे बड़ी सियासी आवाज बन गए हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह विजय की फिल्में भी है, जो धीरे धीरे उनके फैंस को साथ जोड़ती गई।

राजनीति में थलपति विजय को यह कामयाबी अचानक नहीं मिली। तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन में भले धमाका दिखे, लेकिन ये इससे कहीं गहरा। विजय अपनी कामयाबी की नींव धीरे धीरे फिल्म दर फिल्म अपने प्रशंसकों के दिल में रखते गए। विजय के वो दर्शक आज उनके वोटर भी हैं, जो विजय को उनकी तकदीर बदलने वाले की भूमिका में वर्षों से देख रहे हैं, जो उनकी हालत बदलने के लिए कब पसंदीदा बन गए ये किसी को पता नहीं चला। साल 2012 में आई फिल्म थुपक्की को याद करना होगा। पहली नजर में ये भले एक शानदार एक्शन फिल्म लगे, लेकिन भाग दौड़ भरे दृश्य और दबंगई के पीछे एक नैतिक स्पष्टता छिपी थी। विजय सिर्फ खलनायकों से नहीं लड़ रहे थे, बल्कि किसी बड़ी बुराई से रक्षा भी कर रहे थे। उनमें अनुशासन, संयम और अपने फर्ज को लेकर वो संजीदगी थी, जो वोटरों को तमिलनाडु के मौजूदा नेताओं में ढूंढने पर नहीं मिलती। इसके दो साल बाद आई फिल्म कत्थी ने सिनेमा घरों का माहौल बदल दिया। सीटियां थम गई, तालियां थोड़ी देर बाद और जोर से बजने लगी। ये अब सिर्फ प्रशंसकों की दीवानगी नहीं थी, ये सहमति थी कई लोगों के लिए, जिनके लिए विजय सिर्फ एक स्टार नहीं रहे बल्कि एक आवाज बन गए। इसी साल 2014 में आई जिला और इसके दो साल बाद आई थेरी जैसी फिल्मों में विजय ने समझदारी के साथ इसी संदेश को दोहराया कि सरकारी कामकाज हमेशा उस तरह का काम होता है जैसा उन्हें करना चाहिए। सत्ता के दुरुपयोग से लोग हाशिए पर चले जाते हैं, ये संदेश देते हुए विजय सुपर हीरो से कब राजनीतिक विकल्प लोगों के मन में बन गए पता ही नहीं चला। साल 2017 में फिल्म मरसल ने विजय के संदेश को और साफ साफ तरीके से लोगों तक पहुंचाया। विजय की इस फिल्म में स्वास्थ्य सेवा, भ्रष्टाचार और असमानता जैसे मुद्दों को उठाया गया, लेकिन जो बात सबसे अलग थी वो थी इससे जुड़े संवाद बोलते विजय का दृढ़ विश्वास। विजय के डायलॉग अभिनय से कहीं बढ़कर थे, ऐसा लग रहा था मानो तमिलनाडु की जनता के मन की बात कोई बिना लाग लपेट बोल रहा हो।

0: इस कड़ी को सरकार ने और मजबूत किया। फिल्म की कहानी एक वोटर के वोट छीनने के इर्द गिर्द बुनी गई और लोगों के दिल में उतर गई। विजय तमिलनाडु के लोगों की सियासी बहस का हिस्सा बन गए। साल 2019 में आई फिल्म बिगिल के साथ विजय का लहजा थोड़ा नरम हुआ, लेकिन इरादा नहीं बदला। फिर दो साल बाद आई मास्टर, जिसमें कॉलेज चुनाव के सीन भले ही छोटे लगे, लेकिन इसमें एक बड़ा संदेश छिपा था। जब विजय ने जेडी के रूप में कदम रखा तो वो सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं लड़ रहे थे, बल्कि एक टूटी हुई व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। फिल्म ये चुपचाप दिखाती है कि कैसे चुनाव हेर फेर होने पर अपना महत्व खो सकते हैं। तो 5 साल पहले तक लोग विजय की सिर्फ फिल्म ही नहीं देख रहे थे, बल्कि वो उनकी फिल्मों में अपने लिए अर्थ भी ढूंढ रहे थे, जो उन्हें मौजूदा सिस्टम में बार बार ढूंढने पर भी नहीं मिलता था। इसीलिए साल 2006 में जब जन नायकन की चर्चा शुरू हुई तो ये कोई चौंकाने वाली घोषणा नहीं लगी, ये एक स्वाभाविक अगला कदम लगा। मानो कहानियां इसके लिए जमीन तैयार कर रही थी, क्योंकि वर्षों से विजय ने बेहद छोटे लेकिन प्रभावशाली कदम लोगों की जिंदगी में रख दिए थे, जो समय के साथ उन्हें जोड़ते चले गए। विजय के चुने गए मुद्दे या फिर उनके निभाए गए किरदार, हर फिल्म में वो जनता के रक्षक, सिस्टम को चुनौती देने वाले, समाज को सुधारने वाले रूप में सामने आए। राजनीति में नेता अपने भाषणों और चुनावी अभियानों से अपने समर्थन में कहानी गढ़ते हैं। विजय ने ये काम अपनी फिल्मों से किया। बार बार उन्होंने अपने पक्ष में दर्शकों के दिल में जगह बनाई। उन्होंने एक ही बार में जनता का दिल जीतने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसके लिए उन्होंने लंबा लेकिन सधा रास्ता चुना। इसलिए थिएटर में उनके लिए बजने वाली सीटी केवल उत्साह नहीं थी, बल्कि समर्थन थी। उनके फैंस की तरफ से दोहराया गया विजय का संवाद केवल दीवानगी नहीं था, बल्कि उनकी याद था। इसीलिए जब विजय ने अचानक अविश्वसनीय सियासी छलांग लगाई तो जनता को आश्चर्य नहीं हुआ। वो जान गए कि विजय के लिए जो पसंद उनके दिल में चुपचाप आकार लेती रही, वो आखिरकार उनकी जीत के रूप में सामने आ गई है।
1: बस इतना ही टाइम है स्पेशल ब्रॉडकास्ट में, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: इट नेवर हैपेंस एट अ गुड टाइम, द पाइप बर्स्ट एट मिडनाइट, द हीटर क्विट्स ऑन द कोल्डेस्ट नाइट, सडनली यू आर ओवरवेलम्ड। That's when Home Serve is here. For $4.99 a month, you're never alone. Just call their 24/7 hotline and a local pro is on the way. Trusted by millions, Home Serve delivers peace of mind when you need it most. For plans starting at just $4.99 a month, go to homeserve.com. That's homeserve.com. Not available everywhere. Most plans range between $4.99 to $11.99 a month your first year. Terms apply on covered repairs.
5: Now that Wendy's has these new biggie deals, everyone in the family can get what they're craving, from Nugs to JBC's. The parental units can get an $8 biggie bundle, the eldest who think they're so grown can get a $6 biggie bag, and the little one who can do no wrong can get a $4 biggie bites. You know, assuming they have a credit card. No, I'm kidding. We take cash too. $4, $6, and $8 biggie deals for the whole family. Only at Wendy's.
6: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
8: The Tailgate Top 20.
9: Hey, it's Blake from the Garth Channel, and I'm your host of the Tailgate Top 20. Join me every weekend as we pick a year, go back in time, and count down the biggest tailgating songs around. And since this is Tailgate Radio, you know anything goes. The Tailgate Top 20. This weekend with me, Blake, from the Garth Channel, only on Tailgate Radio.
8: The Tailgate Top 20.
10: Search for Tailgate Radio on TuneIn to listen.
9: Try to keep up.
11: इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं दिलीप घोष, जो अब पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री हो चुके हैं। दिलीप दा, अब तक जब हम आपसे बात करते थे, हम आपको कहते थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता, कई बार हमने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, विधायक के तौर पर भी आपको देखा है, लेकिन आज जब आप सुनते हैं पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री, तो कैसा भाव मन के अंदर आता है?
12: नहीं, ये तो कभी सोचा नहीं था कि मंत्री बनना है, लेकिन बंगाल में परिवर्तन लाना है, भाजपा को लाना है सत्ता और परिवर्तन बंगाल को करना है, ये हमारी कल्पना थी। उसी आधार पर लड़ाई की, जनता ने हमें आशीर्वाद किया, पार्टी सत्ता में आ गया और पार्टी जिसको तय करेगा, जिम्मेदारी देगा, वो निभाएगा।
11: यहाँ पे जब हम आए हैं तो यहाँ पे जय श्री राम के नारे जो है वहाँ पर जब आप आए लोगों से मिल रहे हैं तो यहाँ पे लग रहे हैं, कैसा लगता है कि इको पार्क के अंदर यहाँ पे जहाँ कैमरा कभी अलाउड नहीं होता यहाँ पर ये सब चीजें हो रही
12: है? मैं यहाँ आता था इसलिए यहाँ कैमरा अलाउ बंद कर दिए। यहाँ एक गोल्फ कोर्ट है, गोल्फ खेलने के मैं जाता था, वो कोर्ट बंद कर दिए कि दिलीप घोष क्यों आता है। चाय की दुकान है सामने, चाय पी उसको बंद कर दिया। ऐसे बहुत जगह जहाँ जाते थे हम सब दुकान बंद कर दिए, जहाँ बैठते लोग सुबह गप मारते थे हम जाके मिलते उनको हटा दिए, भगा दिए, बहुत अत्याचार किया है। लोग उसका बदला ले रहे हैं जय श्री राम बोल के, किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया है, लेकिन उनके नेता पहले भाग चुके जो 15 साल तक लोगों को इतना अत्याचार किया, लूटा पीटा, वो पहले घर खाली कर दिए हैं, अपने पत्नी को छोड़कर भाग गए। ऐसे बड़े बड़े नेता टीएमसी के हैं।
11: कितनी बड़ी जीत है और कितना आपको लगता है जो वादे किए गए उसको कितनी जल्दी पूरा कर सकती है बीजेपी सरकार?
12: ये लंबा मामला है, 50 साल से बंगाल पीछे जा रहा था, उसको पहले तो लीक में लाना है, रोड में लाना है और भाजपा जो भारत के विकास यात्रा है उसमें जोड़ना है, पहले उसी काम में हमको थोड़ा समय लगेगा।
11: घुसपैठ, कुशासन, करप्शन, लॉलेसनेस, ये सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर आपने चुनाव लड़ा, क्या आपको लगता है दिलीप भाई सबसे पहला काम भाजपा सरकार क्या करने जा रही है?
12: नहीं, यहाँ जनता 50 साल से डर डर के जी रही है, पहले उनका डर खत्म करना है। माननीय प्रधानमंत्री बोल के आए थे, भाई आउट भरोसा इन, बीजेपी को वोट दिन, आज वही करना है। हम लोग डर डर के नहीं जियेंगे, उच्च चित्त जता भय चिन्ह उच्च जता सिर, ये हमारे होम मिनिस्टर ने बोले हैं। लोग से सर ऊंचा करके हिम्मत से जिएंगे, अपना कमाएंगे खाएंगे अपने ढंग से जिएंगे, ऐसा स्वतंत्रता है। यहाँ लोगों को रामनवमी करने नहीं दिया जाता है, रास्ता में खड़ा होकर गाय की मांस खाते थे लोग, ये कल्चर भारत बंगाल का नहीं है, उसको बदलना है। बंदा

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
5: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
8: एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
9: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
10: আমি শুভেন্দু অধিকারী।
11: পশ্চিম বঙ্গাল যা 34 সাল তক লেফট কা রাজ রহা, ফির 3 টার্ম তক মমতা ব্যানার্জি সিএম রহি, লেকিন আব ওয়াহাঁ পহলি বার বিজেপি সরকার বন গই হ্যায়। শুভেন্দু অধিকারী নে সিএম পদ কি শপথ লি অর ইসি কে সাথ বঙ্গাল কি রাজনীতি মে এক নয়া অধ্যায় শুরু হো গয়া। इस खास मौके पर बंगाल की जनता का पीएम ने साष्टांग दंडवत किया। वहीं 98 साल के बीजेपी कार्यकर्ता माखनलाल सरकार के करीब गए, शॉल ओढ़ाया, गले लगे और पैर छूकर आशीर्वाद लिया। राजनीति में कुछ तस्वीरें चुनाव से बड़ी हो जाती हैं। बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए की एकता या यूं कहें कि शक्ति परीक्षण भी देखने को मिला। एक मंच पर एनडीए के नेता मौजूद रहे, पीएम मोदी सभी के पास गए, एक एक करके मुलाकात की, नमस्कार किया और बातें की। यहाँ जब सब साथ साथ हैं, वहीं इंडिया गठबंधन बिखरा हुआ है। इंडिया गठबंधन की सबसे अहम पार्टी के नेता राहुल गांधी ताल ठोक कर बता रहे हैं कि और कोई पार्टी बीजेपी को हरा नहीं सकती।
12: आप देख लेना, बाकी सारी की सारी पार्टियां इनके सामने नहीं खड़ी हो पाएंगी, एक नहीं हो पाएगी, और अंत में सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी और कांग्रेस पार्टी इनको हराएगी। आप याद रखो मैं क्या कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को कांग्रेस पार्टी हराएगी, बीजेपी को कांग्रेस पार्टी हराएगी।
11: यानी राहुल का बयान सिर्फ बीजेपी और पीएम मोदी के लिए नहीं है, बल्कि अपने सहयोगियों के लिए भी है। वैसे सहयोगी के नाम पर ना तो नीति दिखती है ना ही नीयत। बंगाल चुनाव इसका जीता जाता उदाहरण है, जहां ममता का मुकाबला बीजेपी के साथ साथ इंडिया गठबंधन के अपने सहयोगियों से भी था। बंगाल चुनाव में टीएमसी बनाम कांग्रेस बनाम लेफ्ट ही मैदान में एक दूसरे के खिलाफ आग उगल रहे थे। ये कोई पहला एपिसोड नहीं है जब इंडिया गठबंधन के साथी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में ताल ठोकते दिखे। पंजाब और हरियाणा भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। पंजाब और हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में थे, यानी दिल्ली में दोस्ती लेकिन राज्यों में सीधी लड़ाई। फिर सवाल उठता है कि अगर सहयोगी दल ही एक दूसरे को हराने में जुटे हों तो जनता किसे असली विकल्प माने। यूपीए एक और यूपीए दो के दामन से बाहर निकलने के लिए इंडिया गठबंधन की नींव रखी गई। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे, लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि नीतीश की पार्टी आज बीजेपी के साथ बिहार और केंद्र में सरकार चला रही है। राजनीति सिर्फ अंकगणित नहीं होती, केमिस्ट्री भी चाहिए, और फिलहाल एनडीए में वही केमिस्ट्री दिखाई देती है, जबकि इंडिया गठबंधन में सियासी केमिकल लोचा है। इंडिया गठबंधन में हर राज्य की राजनीति अलग, हर नेता की महत्वाकांक्षा अलग, हर दल की प्राथमिकता अलग। किसी भी गठबंधन को बाहर का विरोध नहीं तोड़ता, अंदर का अविश्वास तोड़ता है, और यही सवाल अब इंडिया गठबंधन के सामने खड़ा है। फिलहाल तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए का परचम बुलंद है। भारत के करीब 75% हिस्से में बीजेपी और एनडीए की सरकार है, लेकिन लोकतंत्र में राजनीति स्थायी नहीं होती। आज एनडीए मजबूत है तो कल विपक्ष नए रूप में लौट भी सकता है, क्योंकि भारत की राजनीति में शून्य कभी स्थायी नहीं रहता। आज तक ब्यूरो।
0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

के चुनावी समीकरण साधने के लिए योगी कैबिनेट का विस्तार। भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे समेत 6 नए चेहरे, 2 राज्य मंत्री, अजीत पाल, सुमेंद्र तोमर का प्रमोशन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनते ही विजय का पहला फैसला, 200 यूनिट बिजली फ्री। महिला सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स, डीएमके सरकार पर बोला हमला का, राज्य पर 10 लाख करोड़ का कर्ज छोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रम में बोले, कांग्रेस सत्ता की भूखी 25 साल तक डीएमके के साथ रहने के बाद धोखा दिया। असम में फिर एक बार हिमंता की सरकार, केंद्रीय पर्यवेक्षक जेपी नड्डा के सामने चुने गए विधायक दल के नेता, 12 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह, प्रधानमंत्री मोदी होंगे शामिल।

0: भावी मंत्री हंसराज मिश्रा, मंत्री तो कह ही सकते हैं ना अभी तो?
1: नहीं अभी नहीं मंत्री, जब तक शपथ न हो तब तक नहीं मंत्री।
0: मंत्री ने तो दे दी, बताया आपको कि हाँ शपथ लेनी है?
1: अब शपथ लेनी है जब तक ले न लिया जाए।
0: कौन कौन ले रहा है आपके?
1: अभी 6 लोग हैं।
0: कौन आ गया?
2: आ गया।
0: मुलाकात हुई मुख्यमंत्री से, क्या बोले?
2: कुछ नहीं, बताया कि शपथ ग्रहण 3:30 है, 3 पहुंच जाना। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी भी थे, पासवान जी महिला है, एक विश्वकर्मा जी है, एक दिलेर साहब है, मनोज पांडे जी हैं।
3: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढौंडियाल। दोपहर के 3 और कुछ ही पलों में यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। लखनऊ में राजभवन में जबरदस्त तैयारियां, शपथ ग्रहण समारोह यहां पर आयोजित है। इसमें 8 मंत्री हैं जो शपथ लेने वाले हैं। इसमें 2 ऐसे जिनका प्रमोशन हो रहा है, 6 कैबिनेट में शामिल किए जा रहे हैं, 6 नए चेहरे जिन्हें योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। और इनके बारे में कल से चर्चाएं चल रही थी और अब उनको कॉल भी आ गया है, उनको समय भी दे दिया गया है। 3:30 शपथ होगी और कह दिया गया कि 3 तक तो आप लोग पहुंच जाएं। और कुछ तो आज बड़े उत्साहित, बड़े खुश दिखाई दिए, ढोल नगाड़ों के साथ वो पहुंचे। 8 कुल मंत्री हैं जो शपथ लेने वाले हैं। 2 राज्य मंत्रियों का प्रमोशन किया जा रहा है। जिन नए चेहरों को योगी कैबिनेट में मौका मिल रहा है उनमें भूपेंद्र चौधरी है, मनोज पांडे है, कृष्णा पासवान है, हंसराज विश्वकर्मा है, सुरेंद्र दिलेर और कैलाश राजपूत कैबिनेट मंत्री बनेंगे। वहीं सोमेंद्र तोमर और अजीत पाल को राज्य मंत्री से प्रमोट किया जा रहा है, उनका प्रमोशन हो रहा है। योगी कैबिनेट का विस्तार, 2 मौजूदा मंत्रियों का प्रमोशन दिया जा रहा है। और जो राजनीतिक हलचल है वो जबरदस्त कल से दिख रहे थे और माना जा रहा था कि आज कैबिनेट विस्तार होगा, और आज कैबिनेट विस्तार हो रहा है और 3:30 शपथ ग्रहण है। हम इस समय जो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं वो लोकभवन की दिखा रहे थे अभी, और एक एक करके जो मंत्रियों का, जो मंत्री बनने वाले हैं उनके आने का सिलसिला जो है शुरू भी होगा। भूपेंद्र सिंह चौधरी और तमाम जो दूसरे लीडर्स है वो पहुंचते दिख रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार आज होने जा रहा है और इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए बीजेपी अगले साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जाती है। क्षेत्रीय संतुलन सुनाते हैं क्या क्या
4: कुछ सरप्राइज भी है इस मंत्रिमंडल विस्तार में। कुछ
5: 1.5 भी आप थोड़ा धैर्य रखो।
3: धैर्य रखने की बात कर रहे हैं और एक लंबा समय तक उन्होंने धैर्य रखा और अब योगी कैबिनेट में जगह मिल रही है। तो योगी मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार आज 3:30 होने जा रहा है, लेकिन मंत्रिमंडल के विस्तार से माना यह जा रहा है कि बीजेपी एक मैनेजमेंट कर रही है अपने चुनावी, ये मैनेजमेंट का हिस्सा है। 2027 पर बीजेपी की निगाह है क्योंकि अगले साल विधानसभा का चुनाव, उससे पहले जो जाती है और क्षेत्रीय संतुलन उसे साधने का प्रयास बीजेपी कर रही है। योगी मंत्रिमंडल विस्तार में कुल 8 मंत्री शपथ लेने वाले, 6 तो नए चेहरे, 2 राज्य मंत्री हैं जिनका प्रमोशन किया जा रहा है।
6: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे।
7: बंगाल में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, पहली बार बीजेपी की सरकार बनी और अब पार्टी अपने अगले महामिशन में जुट गई है। मिशन है यूपी में जीत की हैट्रिक लगाकर इतिहास रचने का, जहां अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के लिए रणनीति बनाई जा रही है, खाका तैयार किया जा रहा है और इसी कड़ी में आज यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। प्रयास है चुनाव से पहले सामाजिक समीकरण साधने का, जातीय संतुलन बैठाने का। ये योगी सरकार का दूसरा कैबिनेट विस्तार है, नाम और चेहरों की सूची तैयार है। योगी मंत्रिमंडल में आज के विस्तार में कुल 8 मंत्री शपथ लेंगे। सोमेंद्र तोमर और अजीत पाल राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे। वहीं भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, हंसराज विश्वकर्मा, कैलाश लोधी, कृष्णा पासवान और सुरेंद्र दिलेर को नए चेहरे के तौर पर मंत्रिमंडल में एंट्री मिलेगी। कैबिनेट विस्तार के पहले ही यूपी में सियासी हलचल तेज हो गई है, सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कैबिनेट विस्तार पर तंज कसते हुए लिखा, दिल्ली से पर्ची आ गई क्या? सुना है यूपी में कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, या यूं कहें कि मुख्यमंत्री जी की शक्ति का कटाव छटाव हो रहा है। जिनका मंत्रिमंडल है उनसे भी तो कोई पूछ ले। हमारी मांग है कि यूपी के मंत्रिमंडल विस्तार में महिलाओं को आरक्षण दिया जाए।
8: देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार केवल भाजपा के मंत्री, विधायक और भाजपा के लोग ही कर रहे हैं, क्योंकि जनता और पीडीए तो इंतजार कर रही चुनाव का, कि कब चुनाव हो और ऐसी अन्याय करने वाली सरकार जाए जिसने पिछड़ों का हक खाया, आरक्षण खाया, दलितों को अपमानित किया, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया, गरीब किसान के घरों को बुलडोजर से गिराने का काम किया, उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें की लेकिन महिलाओं को कोई सुरक्षा नहीं मिली, गरीब परेशान रहा, नौजवान परेशान रहा। ऐसी सरकार को जनता हटा देना चाहती है, इसलिए चेहरे बदल देने से जनता के मूड पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जनता ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने का। पीडीए तैयार है भारतीय जनता पार्टी की इस अन्याय करने वाली सरकार को उत्तर प्रदेश से हराने के लिए।
9: चुनाव के समय मंत्रिमंडल विस्तार, चुनाव के साल में मंत्रिमंडल विस्तार स्पष्ट कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हताश है, निराश है और बिना किसी बात के कोशिश कर रही है जाति संतुलन साधने की। उस प्रदेश में जिस प्रदेश में दलितों को पेशाब छटवाया जा रहा है, उस प्रदेश में जहां पर महिलाएं किसी भी धर्म और किसी भी जाति की हों उनके खिलाफ अपराधों की बाढ़ आई हुई है, एनसीआरबी के आंकड़े में वो नंबर वन है। तो आप संतुलन कोई भी साध लीजिए, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की बंदरबांट के लिए ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। जनता की नजर में इसकी अहमियत कुछ नहीं।
7: यूपी में कैबिनेट विस्तार के जरिए सियासी संदेश देने का प्रयास है ताकि अगले साल होने वाले चुनावों की तैयारियों को रफ्तार दी जा सके। कैबिनेट में नए साथियों की एंट्री के साथ यूपी में एक बार फिर जीत सुनिश्चित की जा सके। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, आज तक।
3: तो ऑपोजिशन इस पूरे के पूरे कैबिनेट विस्तार को किस तरीके से देख रहा है वो तो आपने सुना ही। और अब हमारे साथ हमारे संवाददाता भी ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं, खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर जुड़े हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता समर श्रीवास्तव हैं, संतोष शर्मा हमारे साथ हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी कुमार अभिषेक भी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले समर्थ आपके पास आते हुए, 3 बजे से ज्यादा समय हो गया, 3:30 बजे शपथ ग्रहण है, कौन कौन पहुंचा अभी तक?
10: राजीव, देखिए अभी तक जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है, हम इस वक्त जनभवन के ठीक बाहर मौजूद हैं और 8 के 8 वो चेहरे जिनका शपथ ग्रहण होना है वो जनभवन पहुंच चुके हैं। कुछ देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर पहुंचेंगे। जातीय समीकरणों के साथ क्षेत्रीय समीकरणों को साधने का एक प्रयास है। 6 नए चेहरे हैं, 2 पुराने, लेकिन जो नए चेहरे हैं वो बेहद दिलचस्प है। क्षेत्रीय के साथ जातीय समीकरण साधते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन संजय से कहूंगा तस्वीरें एक बार दिखाएं पहले यहां पर, कि जिस तरह से जो गाड़ियों का आवागमन है वो लगातार यहां लगा हुआ है। तमाम यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री यहां अब पहुंच चुके हैं। आप सिक्योरिटी भी यहां पर देख सकते हैं कि भारी पुलिस की तैनाती है। आपको तमाम गाड़ियां दिखेंगी जिनमें आगे भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी लगा हुआ है। डिप्टी सीएम भी यहां पहुंचे हैं और कुछ पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इंतजार हो रहा है। 3:30 बजे का वो समय है जब शपथ ग्रहण जो है वो शुरू हो जाएगा। इस वजह से 3 बजे से जो तस्वीरें अंदर से जनभवन की आई हैं उसमें तमाम मंत्री आपको दिखाई पड़ेंगे। लेकिन इस तरह की तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको जनभवन से दिखा रहे हैं वो ये साफ करती है कि इस वक्त जो है बीजेपी पूरी तरीके से तैयारी में है। नामों की आप बात करें तो मनोज पांडे का नाम, समाजवादी पार्टी के विधायक रहे ऊंचाहार से, और वहां पर वो पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे अखिलेश यादव की सरकार में। इसके अलावा आप अगर देखें तो कई अन्य नाम है जो कहीं ना कहीं जो जातीय समीकरण है उनको साधते हुए नजर आते हैं। हालांकि चर्चा कई नामों की हुई थी लेकिन आखिरकार जो 6 नए चेहरे हैं वो निकल कर आते हैं, जो कहीं ना कहीं आप अगर वाल्मीकि समाज से बात कर लें तो वहां से भी आपको चेहरा एक दिखाई पड़ता है। कृष्णा पासवान अब फतेहपुर है, आप सोचिए ब्लॉक प्रमुख से लेकर जिला अध्यक्ष हो रही है। तो बीजेपी ने चुन चुन कर ऐसे चेहरों को सामने लाया है जो केवल जाति समीकरणों को ही नहीं पूरा कर रहे हैं बल्कि क्षेत्रीय तौर पर अपनी अपनी विधानसभाओं में, अपने अपने जिलों में एक तरीके से एक परिपक्व राजनीतिक और सियासी महत्व रखते हैं, जो कहीं ना कहीं बीजेपी को आने वाला जो सियासी एक बड़ा मंच है या बड़ा इम्तिहान है 27 का विधानसभा का चुनाव, उसमें बड़ा दिला सके। तस्वीरें दिखाते रहे कैमरामैन संजय पीछे की तरफ, हाँ। कि जो गाड़ियां हैं वो एक के बाद एक आनी शुरू हो गई हैं, हाँ। और काफी गाड़ियों को रोका भी गया है यहां पर क्योंकि मुख्यमंत्री के भी आने का यहां पर प्रोटोकॉल जो है वो लगना शुरू हो गया है। तो इस तरह की तस्वीरें फिलहाल यहां से देखने को मिल रही है। लेकिन एक बड़ी बात, कुछ क्षण और शपथ ग्रहण की शुरुआत,
3: ठीक 19 मिनट बचे हैं, अब 19 मिनट के बाद समर शपथ ग्रहण होना है। एक बार संतोष के पास भी चलते हैं, वो भी वहीं पर मौजूद है। संतोष, आप जहां पर मौजूद हैं और जो नेता एक एक करके पहुंचे, आज बॉडी लैंग्वेज क्या कह रहे थे उनके?
2: देखिए जिन लोगों का नाम है इस शपथ ग्रहण में उनके लिए तो आज एक तरीके से लॉटरी निकली है। उनसे हमने सवाल भी किया कि बड़ी देर कर दी सरकार आते आते मंत्री बनने के लिए, पूरी सरकार 4.5 साल तो बीत चुके हैं, 6-7 महीने का कार्यकाल और है, लेकिन उनका सीधे से कहना था कि जितना टाइम मिला है हम उतने में बेस्ट करेंगे। तस्वीरें भी दिखाता हूँ और इस पूरे जो शपथ ग्रहण हो रहा है उसमें जातिगत समीकरण को पूरी तरीके से साधने की कोशिश है। दलित वोट बैंक को साधने के लिए अगर बात की जाए तो कृष्णा पासवान का नाम है, सुरेंद्र दिलेर हैं, ये दोनों ही दलित बिरादरी से आते हैं। ब्राह्मण वोट बैंक की नाराजगी को साधने के लिए मनोज पांडे को रखा गया। मनोज पांडे एक तरीके से समाजवादी पार्टी से बागी होकर आए और ऊंचाहार से विधायक रहे मनोज, और तो ये कहा। दूसरी तरफ देखें कैलाश राजपूत नाम है, सोमेंद्र तोमर का प्रमोशन हो रहा है। अजीत सिंह पाल ओबीसी बिरादरी से, पाल बिरादरी के हैं, उनका प्रमोशन हो रहा है। भूपेंद्र सिंह चौधरी बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन के बड़े नेता हैं, जानकार हैं और वो वफादार। सबसे बड़ी बात, प्रदेश अध्यक्ष हटने के बाद से भूपेंद्र चौधरी को कहीं ना कहीं एडजस्ट करना था, उनको एक प्रोटोकॉल उनके हिसाब से दिया जाना था। यही वजह थी कि भूपेंद्र चौधरी का एक्सपेंशन में नाम श्योर शॉट था कि भूपेंद्र चौधरी को तो कैबिनेट मंत्री बनना ही है, बाकी के नामों को लेकर के जरूर चर्चाएं हो रही थी। और उसके बाद हंसराज विश्वकर्मा, हंसराज विश्वकर्मा आप सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट वाराणसी के जिलाध्यक्ष है, आप वाराणसी का बीजेपी का जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा है, एमएलसी भी है, तो उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। तो एक तरीके से वाराणसी एक क्षेत्रीय राजनीति को साधने की कोशिश, जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश, बंगाल में जिस तरीके से भगवा फहराया, अब उसके बाद देश के सबसे बड़ा जो बीजेपी का पावर हाउस है वो है उत्तर प्रदेश, और इस उत्तर प्रदेश के पावर हाउस को और एनर्जेटिक बनाने के लिए 2027 के चुनाव में अपनी जीत को आमद को दर्ज कराने के लिए, हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी ने अभी से कवायद शुरू कर दिया।
11: बिल्कुल संतोष, आपके पास लौट रहा हूं मैं। शशि सर, सब कह रहे हैं कि भाई जातीय क्षेत्रीय समीकरण बीजेपी साधना चाह रही, तो क्या आपको भी लगता है कि 26 में 27 को साधने का प्रयास हो रहा है और क्या कामयाब होगी इतने कम समय में अब ये जो चेंजेस करेगी बीजेपी या विस्तार करेगी?
12: तो आपके कामयाबी के सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा। पहली बात यह कि क्षेत्रीय संतुलन, जातीय संतुलन, अगर इनमें से दो लोगों को हटा दें तो वो बगल की सीट जिता सकते हैं कि नहीं, इस पर भी मुझे संदेह है। लेकिन एक प्रतीकात्मकता होती है राजनीति में, कभी कभी फैसले बाहर वालों के लिए नहीं अंदर भी मैसेज देने के लिए किए जाते हैं। ये मंत्रिमंडल बहुत दिनों से अधर में लटका हुआ था, भूपेंद्र जी वेट कर रहे थे और भी बहुत से लोग हैं, मनोज पांडे ने लंबी तपस्या की समाजवादी पार्टी छोड़कर, तो उन्होंने उसकी उन आवाज़ों को भारतीय जनता पार्टी ने संतुलित किया है, दबाया है। दूसरी बात, जीतने न जीतने की, देखिए चुनाव जब जीतते हैं तब एक अलग तरह का माहौल बनता है। बीजेपी के पोस्टर बॉय यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्य।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी?
4: जेके वॉल मैक्स।
2: बेस्ट पेंट?
5: जेके मैक्स।
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग।
3: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
6: इसमें माइक्रो फाइबर है।
3: माइक्रो फाइबर यानी
6: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
3: हमारे सीमेंट में नहीं है?
6: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
7: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: टेबल के ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं, ये भाई साहब सब पचा देते।
3: पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खाते।
4: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
5: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
6: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
7: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
8: करेक्टर, The taste of success.
9: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
10: Hint, bade aaram se.
9: Cool, stylish fans. Enhance home decor with beautiful fans.
11: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
12: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
13: विमल बोलो जुबा केसरी।
14: हम सिखाएंगे आपको मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट बनने का हुनर। ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे

0: मीडिया इंस्टीट्यूट।
1: रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
2: ये जो चांस आपको सुनाई दे रहे हैं, ये एकता की आवाज है, ये वो आवाज है जहां पर ईरान के लोग कह रहे हैं ना वो डरेंगे ना वो हटेंगे, वो अपने सरकार के साथ और अपने सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई के साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्य राउत्रे के साथ इनकलाब स्क्वायर यानी कि इनकलाब स्क्वायर में गीता मोहन आज तक।

0: तो योगी कैबिनेट का दूसरा विस्तार आज होने जा रहा है। 3:30 बजे शपथ ग्रहण है। 6 नए चेहरे आ रहे हैं, 2 का प्रमोशन हो रहा है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष भी जुड़ गए हैं। और अब कुमार अभिषेक, अब आपके पास आते हुए कि वही सवाल वापस आपके पास आते हुए कि शशि सर कह रहे हैं कि भाई अंदर की आवाज दबाने का प्रयास हो रहा है, उसी के लिए क्या आपको भी लग रहा है कि ये प्रतीकात्मक है या फिर 27 की तैयारी है? वाकई कुछ जाति समीकरण साधना चाह रहे इससे बीजेपी?
1: देखिए राजीव, राजनीतिक और सियासी समीकरण, जातीय समीकरण को साधने की तो कोशिश है ही है। निश्चित तौर पर उन जातियों तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश है जो नाराज हैं। अगर आप देखें तो अखिलेश यादव पश्चिम में पूरी तरीके से, जो उनका नया समीकरण जिस पर वो इस बार रिलाई कर रहे हैं, उसमें है गुर्जर। तो गुर्जर और मुसलमान, क्योंकि जाट एक तरीके से अब उनके साथ उस तरीके से खड़े नहीं है जब उनके साथ जयंत चौधरी पिछले चुनाव में थे। तो अगर इस कैबिनेट में देखें तो सौमेंद्र तोमर हैं, उनको कैबिनेट बनाया जा रहा है, यानी कि उनमें मैसेज दी जा रही है। क्योंकि अभी हाल में देखें तो सपा उसमें बहुत मेहनत कर रही है, मेरठ से आते हैं और मेरठ से ही आप देखें तो अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं। इसी तरीके से जो नया नाम आप देखेंगे हंसराज विश्वकर्मा का, हंसराज विश्वकर्मा वाराणसी से हैं, लेकिन गाजीपुर में इस वक्त समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा फोकस है। एक विश्वकर्मा परिवार की लड़की के साथ की मौत होती है संदिग्ध, और उसके बाद से पूरा पूर्वांचल गरमा जाता है। तो एक एक नाम जो है उससे कहीं ना कहीं मैसेजिंग है। आप याद करिए कि 2022 चुनाव के पहले 2021 में भी इसी तरीके का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था जब बड़ी संख्या में दलित ओबीसी चेहरों को लाया गया था। यह सही है कि ये सब प्रतीकात्मक है, ज्यादातर प्रतीकात्मक है, और कुछ लोगों को छोड़ दें तो सही में बहुत लोगों के पास पूरे प्रदेश की सियासत करने या फिर अपनी जाति पर उस तरीके का प्रभाव नहीं है। ये सही है कि अगर मनोज पांडे को देखें तो बड़ा कैच बीजेपी के लिए रहे हैं, जिन्हें बीजेपी लेकर के आई है, तब लेकर के आई जब वो समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक थे, सपा के भीतर ब्राह्मण बड़े चेहरे थे और इतने समय से वो इंतजार कर रहे थे, तो उनको तो देना ही था। दूसरी बात, अगर आप देखें भूपेंद्र चौधरी जाट चेहरा है, जाट नेता है, लेकिन नेता से ज्यादा उनके संगठन की बड़ी पहचान रही है। प्रदेश अध्यक्ष रहे, पिछले बार भी मंत्री थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहीं ज्यादा दिल्ली दरबार की इनकी पैठ मानी जाती है। तो इसके अलावा कैलाश राजपूत जो कि लोधी बिरादरी से आते हैं, आप उनको देखें तो 4 बार के विधायक हैं, बहुत सीनियर हैं। 1996 में पहली बार विधायक हुए थे, 3 बार बीजेपी से लगातार जीते हैं। तो इस तरीके के जो तमाम नाम है, और अगर आप जातियों को देख लें तो जाति कौन कौन से हैं, एक ध्यान रखिए, एक भी ठाकुर इस 8 में नहीं है, एक ब्राह्मण है, बाकी 7 में अगर आप देखें तो 2 दलित और 5 ओबीसी हैं। तो ये एक मैसेज है पूरी तरीके से चुनाव में।
0: आइए मंत्री स्वतंत्र देव सिंह क्या कह रहे हैं, एक बार कुमार अभिषेक सुना देते हैं।
2: लाभ गरीब ले सके,
3: धन्यवाद। आज नहीं कल हमको भी शपथ मिलेगी।
0: आशुतोष, आपके पास आते हुए कि जिन जातीय समीकरणों को साधने की बातें कही जा रही हैं, क्या इनमें से कुछ नेताओं को छोड़ दिया जाए? आपको लगता है कि उन जातियों में इनका बहुत बड़ा होल्ड है, प्रभाव है?
4: देखिए, सवाल उनके प्रभाव या असर या बेस का नहीं, सवाल सिंबलिज्म है। और सिंबलिज्म इसलिए क्योंकि अब बंगाल के बाद भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव जीतना है, और उत्तर प्रदेश के अंदर जितने लोगों के नाम अभी तक आ रहे हैं, ज्यादातर देखिए को पीडीए से संबंधित है, यानी जो अखिलेश यादव का जो पीडीए का कॉन्सेप्ट है जिसका आधार मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं जातियों या उससे जुड़ी हुई जातियों को अपनी तरफ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जैसे उसमें पासी जाति के लोग हैं, वाल्मीकि हैं, उसके अलावा पासवान हैं, विश्वकर्मा है। तो अखिलेश यादव ने 2022 के चुनाव में पीडीए की जो का जो संगठन किया था, अब उसको विस्तार देने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उसको ब्लंट कर दिया जाए अभी से, और अपने यहाँ एक जो पीडीए का जो गठबंधन है उसको अपने यहां दिखाने की कोशिश की जाए, और ऐसी जातियों को अपनी तरफ लाने की कोशिश की जाए। तो ये बेसिकली उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले ये भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है।
0: पीडीए की कार्ड के रूप में कैसे देखा जाए? हंसराज विश्वकर्मा जो कि मंत्री पद के शपथ लेंगे, उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता संतोष ने, एक बार सुना देते हैं उन्होंने क्या कहा है।
5: हंसराज जी हमारे साथ हैं, तो हमारे साथ भावी मंत्री हंसराज विश्वकर्मा, मंत्री तो कह ही सकते हैं ना अभी तो?
6: नहीं अभी नहीं, मत कहिए, जब तक शपथ न हो तब तक कहने में कोई नहीं।
5: मुख्यमंत्री ने तो दे दी, बताया आपको कि हाँ शपथ लेनी है।
6: अब शपथ लेनी है जब तक ले न लिया जाए।
5: कौन कौन ले रहा है आपके साथ?
6: अभी 6 लोग हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री आदरणीय हमारे भूपेंद्र चौधरी जी हैं, मैं हूं, कैलाश राजपूत जी हैं, एक मनोज पांडे जी हैं, एक कृष्णा पासवान जी हैं, महिला हैं, और दिलेर जी हैं जो राजनीतिक खानदान से आते हैं। कल हमारी मुलाकात हुई, ये 6 लोगों को बुलाया गया है। अब आगे देखिए कौन सी जिम्मेवारी मिलती है। इसके लिए मैं निश्चित तौर पर मैं अपनी तरफ से अपने वाराणसी के सांसद, देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री माननीय आदित्य योगी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं।
7: एक सवाल ये कि जो आखिरी में पूरी सरकार के दूसरे टर्म का भी ये 6 महीने रह गए, तो लगता नहीं है कि बहुत देर कर दी सरकार आते आते?
6: कोई देर नहीं की है, देर आई दुरुस्त आई है। निश्चित तौर पर पूरा जितना समय मिलेगा उतने ही में अच्छा हो जाएगा। निश्चित तौर पर इसमें कोई घबराने की बात नहीं, जितना समय मिलेगा उतने ही में अच्छा काम करके और प्रचंड बहुमत 2027 में एनडीए के यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर आएगी।
7: हंसराज विश्वकर्मा को कौन सा विभाग का एक्सपर्टीज है कि अगर उनको मिलेगा तो बहुत अच्छा कर जाएंगे?
6: विभाग जो भी सेवा का अवसर मिलेगा उसके लिए हम लोग तैयार हैं, जो भी मिलेगा सब किया जाएगा।
7: ये एक तरीके से जो कैबिनेट विस्तार हो रहा है, इसमें ब्राह्मण, राजपूत, विश्वकर्मा, पासवान, ये तमाम एक तरीके से समाजवादी पार्टी के PDA का जवाब काउंटर है ये बीजेपी का?
6: आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी कभी जाति की राजनीति नहीं करती है, ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। ये राष्ट्रवादी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबके सम्मान के साथ ये सभी लोगों का सम्मान करती है।
0: तो हंसराज विश्वकर्मा कह रहे हैं कि हम तो बिल्कुल सेवा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अच्छा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से भी खास बातचीत की है, उन्होंने क्या कहा इस कैबिनेट विस्तार को लेकर, सुनाते हैं।
8: लगभग सब तय हो गया, 6 नए मंत्री, 2 लोगों की प्रोन्नति, दो क्या क्या क्या इस बार सारे समीकरण साधे जा रहे हैं जातियों के?
9: देखिए, भारतीय जनता पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल कोई जब निर्णय लेता है तो सारे चीजों को कहीं ना कहीं समाहित करने का प्रयास करता है, और 3:30 बजे वो सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी।
8: तो जो 6 मंत्री नए बनाए जा रहे हैं, जिसमें जो समीकरण है उसमें 5 OBC, 1 ब्राह्मण, 2 दलित, क्या संदेश देना?
9: मैं कह रहा हूँ कि अभी 3:30 बजे स्पष्ट होने दीजिए, फिर जवाब दिया जाए।
8: और ये जो 6 नाम आ गए हैं और 2 लोगों को प्रोन्नत किया जा रहा है, ये सही है?
9: फिर मैं वही सवाल का जवाब दूंगा आपको, 3:30 बजे तक वेट करिए, बस 3-4 घंटे बचे।
8: लगता नहीं कि आप लोगों ने देर कर दी एकदम, अब चुनाव के मुहाने पे आप कैबिनेट एक्सपेंशन कर रहे हैं, इसका फायदा मिल पाएगा उतना? क्योंकि आप
9: हर निर्णय का एक समय होता है और देर क्या होता है, अभी तो साल भर का करीब करीब समय बाकी है और काम करने वाले उतने भी काम कर रहे हैं।
8: अखिलेश जी ने अभी ट्वीट किया इस मंत्रिमंडल को लेकर के और कहा कि भाई जितने लोगों को बीजेपी ने तोड़ा था उसमें से किसी को कुछ नहीं मिल रहा, बाकी लोग तो यूं ही रह गए, एक सिर्फ मनोज पांडे को अगर छोड़ दें तो।
9: अब अखिलेश जी को सूची शायद पता हो या ना पता हो, पता नहीं, उनको बात पूरा
10: ये चतुर्मुखी विकास के लिए कृतसंकल्प है। उत्तर प्रदेश विकास के पैमाने पर नंबर 1 पर आए और सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही, उद्देश्य के लिए हम सब काम कर रहे हैं।
11: सर, अखिलेश यादव ने कहा पर्ची में लिखकर नाम आए हैं, वही नाम पढ़े जा रहे हैं, उन्होंने कहा महिलाओं को।
10: अखिलेश यादव जी स्टेशन में है, उनको पता है कि 27 में उनकी दाल गलने वाली नहीं। उलू जुलू बयान वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके उनसे कहिए बाहर निकले, देखें प्रदेश का तापमान कितना।
11: सर, एक सवाल और, पीएम मोदी ने आज कहा है कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी है जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए।
10: कांग्रेस पार्टी है, आप सब जानते हैं कि दूसरे कंधे पर सवारी लेकर।
0: तो एक एक करके अभिनेता जो पहुंच रहे हैं उनसे हम सुना भी रहे कि वो क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन शशि सर, आशुतोष कह रहे थे कि अखिलेश यादव जो एक PDA तैयार कर रहे हैं, लगातार हमला भी बोलते रहते हैं, क्या ये PDA की काट के तौर पर आपको नजर आ रहा है कि बीजेपी का वही प्रयास है?
12: देखिए, PDA की काट कितनी इससे होगी, मैंने पहले भी आपको जवाब में कहा, मुझे भारतीय जनता पार्टी PDA और उन सबको दिमाग में रख के बहुत चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। उनका दिमाग बिल्कुल क्लियर है और बंगाल के चुनाव से टेम्पलेट बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। अगर आपको भरोसा ना हो तो कानपुर में हुए उपचुनाव को याद कर लीजिए, उसके रिजल्ट कैसे आए थे। तो भारतीय जनता पार्टी का अपना एक टेम्पलेट है, उस पर चुनाव लड़ेगी वो। और रही बात, इसको मैं टोकनिज्म से ज़्यादा प्रासंगिक नहीं मानता, टोकन है। बहुत से लोग पहले से भी कर रहे थे, कुछ लोग प्रतीक्षा में थे, तो उन सबको उन्होंने समायोजित कर लिया है। चुनाव अलग मुद्दों पर लड़ा जाने वाला है। रही बात अखिलेश यादव के PDA की, तो मुझे ऐसा लगता है कि बंगाल के बाद उन्हें भी अपनी रणनीति में, वो एक सीजनड लीडर है, वो अपनी रणनीति पर पुनर्विचार जरूर कर रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बंगाल के चुनाव ने बहुत सी चीजें भारतीय राजनीति में बिल्कुल साफ कर दी हैं। तो अब अगर किसी को भी चुनाव लड़ना है, और अभी सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं है, कई अन्य राज्यों में भी, महत्वपूर्ण राज्यों में भी चुनाव होने हैं साथ ही साथ, तो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो क्षेत्रीय दल हो, सबको कहीं ना कहीं अपनी रणनीति पर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो टेम्पलेट 1989 से बनी वो आज तक प्रामाणिक तौर पर बहुत ज्यादा फायदेमंद बीजेपी के लिए साबित हुई है।
0: तो सर समय तो बहुत ज्यादा बचा नहीं, आप कह रहे हैं कि अब वो पूरी की पूरी रणनीति बदल दें, इतने समय से मतलब पीडीए
12: पूरी रणनीति पुनर्विचार करना पड़ेगा।
0: ठीक है, पुनर्विचार करना पड़ेगा। कुमार अभिषेक, क्या आपको लग रहा है कि पीडीए आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो शपथ लेने वाले नेता हैं वो दिखाई दे रहे हैं।
13: आज्ञा से शपथ ग्रहण समारोह की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का मंत्री नियुक्त किया है, श्री भूपेंद्र चौधरी, श्री मनोज पांडे। माननीय श्री भूपेंद्र चौधरी जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें।
14: अरे वहां से नीचे करो।

0: मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
1: माननीय श्री मनोज पांडे जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें।
2: मैं मनोज कुमार पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अछूट रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मनोज कुमार पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
1: माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नियुक्त किया है। श्री अजीत सिंह पाल, श्री सोमेंद्र तोमर। माननीय श्री अजीत सिंह पाल जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें।
3: मैं अजीत सिंह पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता को अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राजमंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अजीत सिंह पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं जो कि विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राजमंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट या प्रकट नहीं करूंगा।
1: माननीय श्री सोमेंद्र तोमर जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें।
0: मैं डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
1: माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का राज्य मंत्री नियुक्त किया है। श्रीमती कृष्णा पासवान, श्री कैलाश सिंह राजपूत, श्री सुरेंद्र दिलेर, श्री हंस राज विश्वकर्मा। माननीय श्रीमती कृष्णा पासवान जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें।
4: मैं कृष्णा पासवान ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाहन करूंगी तथा मैं भय और पक्षपात अनुराग यों दोष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी।
5: मैं
4: कृष्णा पासवान ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के किसी सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का निर्वाहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सुनिश्चित या प्रकट नहीं करूंगी।
1: माननीय श्री कैलाश सिंह राजपूत जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें।
6: मैं कैलाश सिंह राजपूत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्धता काल से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
5: मैं
6: कैलाश सिंह राजपूत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
1: माननीय श्री सुरेंद्र दिलेर से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें।
7: मैं सुरेंद्र दिलेर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
5: मैं
7: सुरेंद्र दिलेर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा तथा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति के और व्यक्ति को तब के सिवाय जब के ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद।
1: माननीय श्री हंसराज विश्वकर्मा जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें।
6: मैं हंसराज विश्वकर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अछूत रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
5: मैं
6: हंसराज विश्वकर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश के राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
8: शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया है और बड़ी खबर आपको देते हैं। भूपेंद्र चौधरी इस सूची में, इस लिस्ट में सबसे पहले आए। सीक्वेंसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। यूपी में कैबिनेट विस्तार हो गया है, शपथ ग्रहण हो गया है। भूपेंद्र चौधरी मतलब 1990 से इन्होंने जो है अपनी राजनीति की शुरुआत की। राम मंदिर आंदोलन, मुलायम सिंह यादव के खिलाफ ही ये चुनावी मैदान में उतरे, हालांकि हार गए थे, लेकिन तब से जो है लगातार अड़ते रहे। बीजेपी के तरफ से प्रदेशाध्यक्ष भी बने, फिर प्रदेशाध्यक्ष बने तो इस्तीफा भी देना पड़ा। पहले भी कैबिनेट मिनिस्टर थे, लेकिन एक बार फिर से अब उनको कैबिनेट में जगह दी गई। सीक्वेंसिंग में दूसरे नंबर पर आए मनोज पांडे, जो कि पहले समाजवादी पार्टी में थे, 2012 में समाजवादी पार्टी से विधायक बने, कैबिनेट में भी उनको जगह मिली, बड़े खास भी माने जाते थे, चीफ व्हिप भी थे, इस्तीफा दिया क्योंकि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई। फिर उसके बाद से पार्टी त्यागी ने समाजवादी पार्टी से हटा दिए गए, निकाल दिए गए और भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की और अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नंबर टू में इस बार उन्होंने जो है कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। और नंबर थ्री पर जो अजीत पाल हैं और उसके बाद सोमेंद्र तोमर, दोनों का प्रमोशन हुआ है, स्वतंत्र प्रभार अब उन्हें दिया गया है। फिर इसके बाद इसमें चार राज्य मंत्री भी हैं, इसमें कृष्णा पासवान जो कि लगातार चार बार के विधायक हैं, इसमें कैलाश राजपूत हैं उन्होंने शपथ ली है, सुरेंद्र दिलेर हैं उन्होंने शपथ ली है, हंसराज विश्वकर्मा उन्होंने भी शपथ ली है, वो भी राम मंदिर आंदोलन के दरमियान से सक्रिय हुए, कल्याण सिंह के बेहद नजदीकी माने जाते हैं, बीजेपी में 2004 में ही शामिल हुए थे, वाराणसी से जिलाध्यक्ष जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं, तीसरी बार वाराणसी के जिलाध्यक्ष बने और फिर विधान परिषद के लिए इनको राज्यपाल की तरफ से मनोनीत किया गया और अब इस समय पुष्प गुच्छ देकर उनका जो है देखिए आशीर्वाद भी लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उन्होंने पैर छूकर आशीर्वाद लिया, एक एक करके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और राज्यपाल से मिल रहे हैं। ये समय सीधी आप तस्वीरें देख रहे हैं तो ये बड़ी दिलचस्प तस्वीर है जो राजनीतिक विश्लेषक हैं इसे 2027 से जोड़कर देख रहे हैं। 2027 में विधानसभा के चुनाव यानी कि एक साल बचा है, उससे पहले कैबिनेट में ये विस्तार, कैबिनेट में विस्तार अवेटेड था, काफी समय से इंतजार किया जा रहा था, अटकलें चली रही थी लेकिन हो नहीं पा रहा था, लेकिन एकाएक 24 घंटे में सारी की सारी चीजें बदलती हुई दिखाई दी। सीएम योगी पहले उत्तराखंड, फिर वो पश्चिम बंगाल, शपथ ग्रहण में शामिल होते हैं, यूपी आते हैं, राज्यपाल से मुलाकात हो जाती है रात में और फिर आज का समय भी दे दिया जाता है कि 3:30 बजे शपथ ग्रहण होगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता, हमारे साथ हमारे सहयोगी सब जुड़े हुए हैं, खास मेहमान भी लगातार हैं। कुमार अभिषेक, सीक्वेंसिंग क्या कुछ बता रहे हैं और क्या प्रयास, क्या प्लानिंग अब और किसको क्या क्या डिपार्टमेंट मिलने जा रहा है, क्या इस बारे में भी जानकारियां रहेंगी?
9: और देखिए, 7 बजते मुझे लगता है कि इस बात का ऐलान हो जाएगा कि किसको कौन सा विभाग मिलेगा। 2 कैबिनेट मंत्री हैं तो निश्चित तौर पर चाहे मुख्यमंत्री के पास जो जो जिम्मेदारियां हों उसमें से ये कैबिनेट का पोर्टफोलियो बटेगा, या फिर AK शर्मा जिनके पास कई विभाग हैं बड़े, या फिर कई और मंत्री हैं जिनके पास दो दो तीन तीन विभाग हैं, उसका बंटवारा होगा। लेकिन जो सिक्वेंसिंग की आपने बात की, निश्चित तौर पर देखिए भूपेन चौधरी कोई बहुत जन नेता नहीं रहे, लेकिन संगठन के बड़े नेता के तौर पर उनकी पहचान रही, संगठन में काम करते रहे हैं, चुनाव कभी जीते नहीं, लेकिन जिस तरीके से उनकी एक बड़ी पहचान शीर्ष नेतृत्व से जुड़ती रही उनको उसका फल मिला है। अगर आप देखें तो मनोज पांडे को बगावत का फल मिला है, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही वो बगावत हुई थी जब बीजेपी ने संजय सेठ को जितवाया था, जो एक तरीके से कह लीजिए कि समाजवादी पार्टी में एक बड़ी तोड़फोड़ हुई थी राज्यसभा के समय, तो उनको भी अकोमोडेट किया गया, उनको कैबिनेट का दर्जा मिला है। दूसरी बात यह है कि ब्राह्मणों की एक जो बड़ी नाराजगी इस वक्त है, कहीं ना कहीं उसको काउंटर करने की कोशिश की जाएगी। बाकी अगर आप नाम देखते हैं तो सुरेंद्र तोमर, जैसा मैंने बताया, गुर्जर चेहरा है, पश्चिम से आते हैं, मेरठ से आते हैं, उनको एलिवेट किया गया है। उसके अलावा अगर आप देखें तो फिर कैलाश राजपूत, हंसराज विश्वकर्मा, सुरेंद्र दिलेर, ये तमाम वो नाम है जिनको कि राज्य मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा जो बीजेपी को झटका लगा था, आप देखें तो जो अवध के इलाके हैं, अवध से लेके पूर्वांचल तक जो भी पासी बिरादरी है उसने बड़ी तादाद में बीजेपी का साथ छोड़ा था। तो आप अगर सियासी और जातीय समीकरण को देखेंगे खास करके, तो गुर्जर, जाट, ब्राह्मण, लोधी, विश्वकर्मा, पासी, पाल और वाल्मीकि, इन जातियों का समावेश किया गया है। यानी कि बेशक इनके नाम बड़े ना हो, बेशक इनका कोई बहुत बड़ा ऑरा ना हो, लेकिन ये 2027 के चुनाव के लिए बीजेपी जो अपनी जातियों की एक जो टीम खड़ी कर रही है कि हर जाति को दिखा सके कि देखो तुम्हारा ये चेहरा हमारे साथ है, हालांकि पहले भी लोग रहे हैं, लेकिन 2021 के फॉर्मूले को एक बार फिर 2026 में बीजेपी लेकर के आई है। इसी तरीके का जो कैबिनेट एक्सपेंशन बीजेपी ने तब भी किया था, और इस बार आप देखेंगे तो मैसेज यह जा रहा है कि बीजेपी ओबीसी को, बीजेपी दलितों को, बीजेपी ब्राह्मणों को लेकर के आ रही है। तो जो उसके खिलाफ एक माहौल या यूं कहें कि अखिलेश यादव ने जो अपनी तरफ से एक जो रणनीति बनाई थी बीजेपी को घेरने की, कि पीडीए की बात, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, महिला, ये तमाम बातें जिस पिच पर अखिलेश यादव इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं सियासत में, इसके अलावा उनके साथ वो सॉफ्ट हिंदुत्व को की तरफ भी आगे बढ़ते चल रहे हैं कि उनके ऊपर कोई मतलब एक समुदाय विशेष की पॉलिटिक्स का कुछ चस्पा न कर दिया जाए, मुझे लगता है कि बीजेपी उसको एक काउंटर करने की उसकी एक रणनीति है। अब बीजेपी के जिसे कहते हैं ना फिल इन द ब्लैंक्स, वो पूरा हो चुका है, सभी 60 के 60 पद भरे जा चुके हैं। अब आने वाले 9-10 महीने जो हैं वो बीजेपी को तैयारी करनी है। तो अखिलेश यादव की सियासी काट के लिए, पीडीए की सियासी काट के लिए इसको देखा जा रहा है। ये जरूर है कि कोई बहुत बड़े चेहरे नहीं है। आपको एक लाइन और बता दूं कि जैसे ही ये लगभग तय हो गया कि ये चेहरे, ये नाम, ये जातियां मंत्रिमंडल में जा रही हैं, तभी ब्रजभूषण शरण सिंह का एक ट्वीट आता है और वो सरकार को इशारों में ही सही अपने शेर के माध्यम से सुना, खरी खोटी सुना डालते हैं। आप ये भी ध्यान रखिए कि इस बार पूरा फोकस ओबीसी, दलित और ब्राह्मण है, तो नेचुरल है कि बीजेपी ने इस बार जो ठाकुर चेहरे हैं उनको थोड़ा दूर रखा है, वही आरोप वो झेलती भी रही है। तो एक बड़ा मैसेज मुझे लगता है कि 2027 के लिए बीजेपी ने तैयार किया है और इस तरीके के टीम को सामने रख करके वो 2027 के चुनाव में जाएगी।
10: शशि सर, क्या अखिलेश यादव का पीडीए का एक्चुअल में इम्पैक्ट है कि अब बीजेपी को भी सोचना पड़ा और कैबिनेट विस्तार में हमें वही दिखाई दे रहा है, मतलब ओबीसी, दलित, फिर ब्राह्मण, ठाकुर ने एक भी?
11: देखिए, पीडीए का इम्पैक्ट तो है, क्योंकि जो पिछले लोकसभा चुनाव के वक्त में जो परिणाम आए वो भारतीय जनता पार्टी उससे चौंक गई थी। अखिलेश ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, अभी भी वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। अगर आप वेस्टर्न यूपी में देखिए तो उन्होंने गुर्जर सम्मेलन, जाट सम्मेलन, तो वो लगातार काम कर रहे हैं अपने जो उनके नए टारगेट वोटर्स हो सकते हैं उन पर। लेकिन मैं यहाँ जो कुमार अभिषेक कह रहे थे उनकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ कि जैसे ये जो लीडर्स हैं, मैं पहले भी मैंने कहा था, मैं मानता हूँ कि कोई प्रादेशिक बहुत ज़्यादा पहचान नहीं है, लेकिन अपने अपने इलाकों में ये कुछ कुछ वोट्स अगल बगल की सीटों पर भी मैनेज कर देंगे। जैसे मनोज पांडे हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग दबंग ब्राह्मण नेता के तौर पर वहाँ जाने जाते हैं, और जहाँ ठाकुरों और राजपूतों की लड़ाई चलती हो अवध में, वहाँ ये एक असरकारी नेता हो सकते हैं। और राजपूतों के नेता की बहुत जरूरत नहीं है मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को। योगी आदित्यनाथ खुद जनों से राजपूत हैं, राजनाथ सिंह जी वहां से हैं, तो मुझे लगता है कि जो राजपूतों के दो सबसे कद्दावर चेहरे हो सकते हैं राजनीति में वो उत्तर प्रदेश से ही है, तो उसकी उन्हें जरूरत नहीं है। अजित पाल को जैसे उन्होंने इंडक्ट किया, अगर इसे बहुत क्षेत्रीय स्तर पर माइन्यूटली देखें तो उसी इलाके से समाजवादी पार्टी जीती थी और पाल समुदाय में समाज में नाराजगी देखी गई थी, तो ये अगल बगल के एक दो जिलों में अगर कोई असर डाल पाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जो विजय यात्रा है उसको थोड़ा सा ये संबल देंगे। ऐसे और भी नाम है इसमें, जैसे भूपेंद्र चौधरी की एक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और
12: मुझे इस रूप में काम करने का अवसर दिया है और मैं निश्चित रूप से जो अपेक्षाएं हैं नेतृत्व की अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जो भी काम मिलेगा जो विभाग मिलेगा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए विकास के लिए काम करेंगे।
13: किसी विभाग को लेकर कोई अपेक्षा या खाली
12: नहीं, कोई अपेक्षा नहीं है, पार्टी का निर्णय है, माननीय मुख्यमंत्री जी जो आदेश करेंगे अक्षर से पालन करेंगे और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जो विकास यात्रा है उसकी विकास यात्रा की विकास गाथा लिखने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे।
13: छोटा सा पॉलिटिकल सवाल है, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार जा रही है इसलिए एक्सपेंशन कर रहे हैं।
12: अब अखिलेश जी इतने सीनियर नेता हैं उनसे इस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती, ये सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत ही मंत्रिमंडलों के गठन विधानमंडलों के गठन होते हैं। लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अब समाजवादी पार्टी लगभग समाप्तवादी पार्टी की ओर आगे बढ़ रही है और पूरी भारतीय जनता पार्टी का कुनबा मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग संगठित होकर 300 से अधिक सीटें उत्तर प्रदेश में लेकर आएंगे।
10: भूपेंद्र चौधरी को आपने सुना है, आशुतोष भूपेंद्र चौधरी पर मैं आपका रिएक्शन कि मतलब उनकी क्या आपको खासियत ऐसे दिखाई देती है, मतलब चुनाव नहीं जीते हैं लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी के भीतर बहुत अच्छा स्ट्रांग होल्ड। मनोज पांडे भी समय कुछ कह रहे हैं
14: जी का, विशेष रूप से माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपनी पार्टी का कि जिसने एक नई जिम्मेदारी और ये मौका हमें दिया है और मेरा पूरी तरीके से ये मानना होगा और मेरा ये संकल्प होगा कि जो जिम्मेदारी पार्टी ने और सरकार में हमें दी है उसका पूरा हम लोग पालन करेंगे, पूरी मेहनत से निष्ठा से उन रास्तों पर आगे चलेंगे और आगे बढ़ेंगे और जनता के काम करेंगे।
13: क्या कोई अपेक्षा भी आप लोगों की कौन सा विभाग मिले या आप लोग खाली से
14: हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी जो दिशा निर्देश देगी उस पर काम करेंगे।
13: एक छोटा सा सवाल है, पॉलिटिकल सवाल है, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का एक सरकार का विदाई का समय है इसलिए आप एक्सपेंशन कर रहे हैं।
14: देखिए ये उनका मानसिक असंतुलन है और जब पूरा देश का जनादेश आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र और सनातन का जो स्तंभ है जो उनको आगे लेकर के चल रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जनादेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा हो तो कई बार की लगातार हार से पराजित समाजवादी पार्टी इस तरीके के सवाल उठाते हैं।
13: आप लोग बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी
10: मनोज पांडे को भी आप सुन रहे थे। अब एक बार फिर से आशुतोष वापस पहले भूपेंद्र चौधरी की बात कर लेते हैं कि मतलब बीजेपी की यहां तो तारीफ बनती है कि अगर आप निष्ठा के साथ संगठन से जुड़े हुए हैं तो आपकी परफॉर्मेंस चाहे कुछ भी हो आपको पार्टी जो है काफी अच्छे से पार्टी के भीतर रखती है, आपको आपकी बड़े ये एक तरीके से सम्मानीय सम्मान देती है बहुत।
15: नहीं, वो पार्टी के वरिष्ठ नेता तो उत्तर प्रदेश के अंदर थे, इसके पहले पार्टी के अध्यक्ष भी थे और अब उनको कैबिनेट रैंक भी मिला है। तो देखिए बीजेपी के साथ अच्छी बात क्या है कि बीजेपी एक काडर बेस्ड पार्टी है, संगठन पे जोर देती है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज अपने संगठन पे इतना ज्यादा जोर नहीं देते और उस संगठन के अंदर जो आदमी काम करता हुआ दिखाई पड़ता है उसका प्रमोशन भी होता है, उसका एक अनुशासन भी होता है और मुझे लगता है ये सारी चीजें सारी विपक्ष की पार्टियों को सीखने की भी जरूरत है। लेकिन इनका कोई बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, मैं शशि जी की रात से पूरी तरीके सहमत हूं, मतलब ये उत्तर प्रदेश की राजनीति कोई बड़ा विप्लव कर देगा ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अपनी सीट जीत लें और अगल बगल के एक दो सीट के थोड़ी सी मदद कर दें, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। देखिये उत्तर प्रदेश की लड़ाई जो 2027 की लड़ाई है वो लड़ाई आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी अगर कहती है कि हम बंगाल जीत गए उसके बाद हम उत्तर प्रदेश जीत लेंगे,
10: मैं माफी के साथ इंटरप्ट करूं, कृष्णा पासवान भी कह रही हैं सुना
16: दो। हाँ महिम राज्यपाल जी को देश के
4: देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी और जो संगठन के लोग मुझे दायित्व देंगे उसको संरक्षण निर्वाहन करेंगे।
10: एक बार हमारे संवाददाता के पास भी चलते हैं। संतोष, क्या कोई हैपनिंग, कोई मतलब समर्थक पहुंचे हुए हैं जिन्होंने आज मंत्री पद की शपथ ली है?
16: देखिए, उनके जितने भी लोग हैं वो शपथ ग्रहण करने वाले करीब 8 लोग जो थे, और बाकी तो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री तमाम बुलाए गए थे, वो वहां पर थे। बाहर जरूर मैं थोड़ा बाहर का नजारा दिखाता हूं कि किस तरीके से जो राजभवन है, जो जनभवन है, वो यहां पर लोगों के लिए जो तमाम उनके समर्थक हैं वो लोग भी आए हैं। और देखिए, फतेहपुर कृष्णा पासवान के समर्थक आए हुए हैं। क्या कृष्णा पासवान को मंत्री बनाने में देरी कर दी?
15: नहीं, देखिए, जो संगठन दायित्व देता है,
16: क्या लाभ मिलेगा कृष्णा पासवान को मंत्री?
15: बहुत लाभ मिलेगा, हम लोगों
17: को प्रदेश को लाभ मिलेगा, इस चीज का पूरे प्रदेश को इस चीज का लाभ मिलेगा। हमारी माननीय विधायिका जी को
16: कैसे देखते हैं? विधायक जी कितनी आप लोगों से संपर्क में रहते?
17: बिल्कुल, कार्यकर्ताओं से लगातार क्षेत्र में बनी रहती है, कार्यकर्ताओं से लगातार अपना संबंध बनाए रखती है। जो भी आपका काम हो अब तुरंत अधिकारियों से बातचीत करती है वो अपना।
15: अपने विधानसभा के सदस्य समर्थित रहती हैं, वो हर जन जन तक पहुंचती हैं लोगों के लिए। आप तो प्रदेश में दायित्व मिला है, हर प्रदेश में अपने सब पहुंचे गए।
16: आइए, ये तमाम लोग हैं
18: जो भी योजनाएं लागू किया जाएगा उसको उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए, अच्छा से अच्छा बनाने के काम करेंगे।
10: अच्छे से अच्छा बनाने के लिए कार्य करते रहेंगे, आप सुन रहे थे। लेकिन आशुतोष, एक बार फिर से आपके, आप कह रहे हैं कि 2027 बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन क्या यहां से मतलब ओबीसी में, दलितों में एक मैसेज बीजेपी ने नहीं दिया कि भाई हम आपको प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, हम आपको कैबिनेट में जगह दे रहे हैं?
15: देखिए, शशि जी ने बड़ी अच्छी बात की, टोकनिज्म है। आप मुझे बता दीजिए, ये जो योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट है उसमें योगी आदित्यनाथ के अलावा किसकी चलती है? उसके यहाँ उप मुख्यमंत्रियों की तो चलती नहीं उस पार्टी, वो बेचारे परेशान रहते हैं, रोज दिल्ली आके शिकायत करते रहते हैं। तो उनको सिर्फ इसलिए बनाया गया ताकि एक शोकेस की तरीके से सामने रखा जाए, उनके समाज के लोगों को कहा जाए, देखिए हमने आपके समाज को इज्जत दी है, अब आप सब लोगों को हमारे साथ रहना चाहिए। मैं जो बात कह रहा था, मैंने कहा कि देखिए, जो 2024 का चुनाव था एनडीए गठबंधन के अंदर और जो यूपीए गठबंधन, सिर्फ 0.17% का वोट का फर्क था, सिर्फ इतने परसेंट का वोट का फर्क था। जो बंगाल की बात है, बंगाल में वहां 15 साल के एंटी इनकंबेंसी ममता बनर्जी के खिलाफ थी, यहां 10 साल के एंटी इनकंबेंसी के खिलाफ होगी, डबल इंजन के एंटी इनकंबेंसी के खिलाफ होगी। और यह मत भूलिएगा कि इसी जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जीतने के बाद लगा रहे अब तो मतलब, और उसका 22 जनवरी को अयोध्या का इनॉग्रेशन हुआ, लोगों ने कहा तो 400 सीटें आ रही। तो राजनीति में आखिरी समय में क्या हो जाए, आखिरी पल में क्या हो जाए, कौन सी चीज चले, कौन सा चीज चले, ये कहना बहुत मुश्किल काम होता है। तो जो लोग कह रहे थे 400 सीटें आ जाएंगी, जरा उनसे पूछे उत्तर प्रदेश में 240 सीटें घट के 37 पर कैसे आप आ गए भाई? 33 सीटें तो बीजेपी आ गई ना, सपने में भी नहीं सोचा था, वो क्यों हो गई? वहां से नरेंद्र मोदी है, वहां से योगी आदित्यनाथ है, वहां मथुरा काशी है, वहां कृष्ण जन्मभूमि है, वहां पे अयोध्या है, तो आपके हिंदुत्व के सारे जो स्तंभ है वो तो उत्तर प्रदेश के अंदर थे, फिर भी आप 33 पे सिमट गए, क्यों?
10: ये आपके एनालिसिस एक बार कुमार अभिषेक आपके पास आता है भाई, ये सवाल बड़ा जो है भी तंज कसते हुए आशुतोष भी कह रहे थे, लेकिन चली कि चली किसकी है, मतलब किसकी चली है, कि हम यहाँ केंद्र की चली है, योगी आदित्यनाथ की चली है, किसकी चली है कैबिनेट में जो ये चेहरे दिख रहे हैं?
9: नहीं, मुझे तो साफ दिख रहा है कि ये जो मंत्री बनाए गए हैं इसमें संगठन की चली है। अब आप उसमें संगठन मान लीजिए कि केंद्र की तरफ से जो संकेत आता है वही होता है, क्योंकि अब अगर मुख्यमंत्री की चलती ज्यादा चलती तो उनके भी ऐसे चेहरे थे जो इसमें हो सकते थे, जिसमें महेंद्र सिंह का नाम है, सिद्धार्थनाथ सिंह, ऐसे चेहरे थे जो आ सकते थे। लेकिन ये अगर एक्सपेंशन होना था तो कुछ पहले होता तो शायद ये दिखता, लेकिन ये पूरी तरीके से बीजेपी की अपनी एक सोच, संगठन ने जिस तरीके से रणनीति बनाई है कि हमें किन किन जातियों को जोड़ करके चलना है, उनको कैसे शोकेस करना है, उन जातियों को कैसे दिखाना है कि हम आपका प्रतिनिधित्व देखिए कैबिनेट में लेकर के आए हैं, और आगे चुकी एक साल के भीतर चुनाव है तो मुझे लगता है इसमें संगठन की ज्यादा चली है। लेकिन जो शशि शेखर जी कह रहे थे, देखिए वो बात बिल्कुल ठीक है, आप बेशक इनके नाम कोई बहुत बड़े नहीं है, लेकिन अगर आप उन इलाकों को देख ले तो अंदाजा लगेगा कि बीजेपी जिस इलाके में बीजेपी का प्रदर्शन खराब था या फिर बीजेपी 2027 में भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं जा रही थी, उन इलाकों को बीजेपी ने टच किया है, वैसे चेहरों को उसने प्रतिनिधित्व दिया है कि उस इलाके में कम से कम कह सके। आप देखिए साक्षी महाराज नाराज थे कि लोधी बिरादरी को कोई जगह नहीं मिल रही, और अगर आप देखें तो लोधी बिरादरी में 2024 में समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा किया और कई सांसद उनके जीते। इस बार अगर आप देखें तो कन्नौज से चार बार के जो कैलाश राजपूत हैं उनको जगह दी गई है। इसी तरीके से इस कैबिनेट में एक भी वाल्मीकि समुदाय का नहीं था जब अनूप वाल्मीकि जीते थे 2024 पार्लियामेंट, उसके बाद से तो वो प्रतिनिधित्व दिया है जो कि बीजेपी का अपना कोर वोटर है, पश्चिम में उसका एक असर है। भूपेन चौधरी नेचुरल है कि मुरादाबाद से आते हैं, मुरादाबाद मंडल बीजेपी का सबसे कमजोर किला है। तो जाटों के कोई बहुत मास लीडर नहीं है, लेकिन जाटों का एक प्रतिनिधित्व के तौर पर या एक संगठन के नेता के तौर पर वो आगे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। आप सुमेंद्र तोमर को देखें तो निश्चित तौर पर गुर्जर में जिस तरीके से इस वक्त अखिलेश यादव काम कर रहे हैं, अतुल प्रधान को उन्होंने आगे कर रखा है, राजकुमार भाटी आगे हैं, जिस तरीके से पश्चिम में अखिलेश यादव का एक नया समीकरण बन रहा है, तो उन्होंने गुर्जर को भी एक तवज्जो दी है कि भाई इसको स्वतंत्र प्रभार लेकर क्या होता है कि बड़ा चेहरा किया जा सके। और सबसे बड़ी बात अगर आप देखें तो मुझे लगता है कृष्णा पासवान, क्योंकि पूरा का पूरा अवध क्षेत्र आप देखें तो अयोध्या से लेकर के प्रयागराज तक बीजेपी का जो हश्र हुआ है, कौशाम्बी तक, खास करके जो पासी बिरादरी के वोट हैं, तो कोशिश भी अब ये मैंने कहता कि इनके आने से पासी का वोट वापस बीजेपी में बहुत तेजी से वापस लौट आएगा, लेकिन वो एक जो एक सिंबलिज्म है उसको बीजेपी ने दिखाया है और जो इलाके हैं और जो जातियों के जो चेहरे हैं उसको बीजेपी ने सामने जरूर किया है। और ये मैं फिर कहता हूं कि इसमें दिल्ली की ज्यादा चली।
10: हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शुभम त्यागी भी जुड़ गए हमारे साथ स्टूडियो, शिवम हमारे साथ हैं स्टूडियो में। लेकिन शिवम, आप ही के नेता लिख रहे हैं कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है।
19: किसने लिखा?
10: ब्रजभूषण शरण सिंह लिख रहे हैं।
19: लोकतंत्र है, कोई भी
20: लिख सकता है। लेकिन नवनियुक्त मंत्रियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं मानता हूं कि जिस तरीके से अनवरत भारतीय जनता पार्टी 2017 से उत्तर प्रदेश में चल रही है वो आगे भी इसी तरीके से बढ़ती रहेगी, और आने वाले समय में चुनाव है तो मैं मानता हूं कि समाज के हर तबके का रिप्रेजेंटेशन हो, हर किसी को जगह मिले, आखिरी व्यक्ति तक विकास की कोई भी अगर ऐसी योजना है तो उसको आगे जाना जरूरी है। सबके अपने तर्क कुतर्क सब कुछ।
10: इतना देरी से क्यों किया? 27 में चुनाव, 26 में आप विस्तार करें कैबिनेट का, क्या इससे फर्क पड़ जाएगा?
20: मुझे लगता है सही समय है, जैसे आज तक के निर्णय आज तक लेता है वो स्वतंत्र है, ऐसे ही हमारी पार्टी के निर्णय हमें लेने दें, हम स्वतंत्र हैं। और मुझे लगता है कि पार्टी ने ऐसा सोचा है कि बिल्कुल सही समय यही है, और जैसा आप सबके सामने है किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है सबको। हाँ, अखिलेश जी जाहिर है उन्होंने एक ट्वीट किया, कांग्रेस ने एक अलग से अपना एक स्टैंड रखा, तो वो तो करते ही रहते हैं, नाराज है, नाराज फूफा की तरह उसी तरीके से उनको हमेशा इसी तरीके से रिएक्ट करना है, तो क्या कर सकते हैं।
15: देखिए राजीव, चुनाव का एक तरीके से अनौपचारिक तौर पर ऐलान हो गया है बस उत्तर प्रदेश, ये आप समझ लीजिए उसको। औपचारिक तौर पर तो बाद में होगा, लेकिन अब चुनाव की तैयारी उत्तर प्रदेश में हो गई है। अखिलेश भी तैयारी करेंगे और बीजेपी भी तो तैयारी करेगी।
10: आशुतोष वर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आशुतोष, आप इस कैबिनेट विस्तार को कैसे देख रहे हैं? आपके नेताओं के रिएक्शन हमने सुन लिए, लेकिन अब मतलब ओबीसी दलितों हर किसी हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिल रहा है, बीजेपी दे तो रही है प्रतिनिधित्व, कैबिनेट में जगह दे रही है।
21: धन्यवाद राजीव जी, और मुझे लगता है कि जो समाजवादी पार्टी ने पीडीए की अलख जलाई थी उसका असर दिखने लगा है। अब जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी मजबूरन में जाके अलग अलग जातियों के हिसाब से, अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से पीडीए के चेहरों को लेके आ रही है, अब इनको समझ में आ गया है कि जो 2024 में हुआ था वो अनायास नहीं था, वो कोई तुक्का नहीं था जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताते थे, वो जमीन पे इन जातियों से जिस प्रकार से मोह भंग हुआ था इनका भारतीय जनता पार्टी से, उसकी परिणति यह है कि इन 6 मंत्रियों को अगले 6 महीने के लिए उत्तर प्रदेश की काया पलटने की जिम्मेदारी।
10: इस कैबिनेट विस्तार का मतलब क्रेडिट भी आप ही ले रहे हैं कि आप लोगों की वजह से मजबूरी हुई और बीजेपी ने किया।
21: अच्छा देखिए, आपके जो लखनऊ से संवाददाता है कुमार अभिषेक, इन्होंने सब चीजें बताई, हर चीज हर नाम के आगे बताया, ये फला जाति के है, ये इसलिए बनाए गए हैं,
2: इससे अच्छा विश्लेषण कोई और कर सकता है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के अंदर की बात, जो बताया ना लोकतंत्र है, गोंडा से लोकतंत्र की आवाज एक आई है और देखते हैं कहां तक आती है। आप सबको पता है कि ये 6 मंत्री अगले 6 महीने 6 बार भी कोई नया डिसीजन नहीं ले सकते और ना ही इनसे 6% का भी कुछ आगे पीछे होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9.5 सालों में जिस प्रकार से पीडीए के खिलाफ अभियान चलाया है, आप उत्तर प्रदेश के एक एक गांव में एक एक कस्बे में जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या हालात हैं इस समय। एक छोटी सी बात बताइए, आज के पूछ रहा था कि छतरी नहीं बनाया, मैं आपके शो में देख रहा था, आप खाली ये बता सकते हैं कि इस समय आज की डेट में योगी के कैबिनेट में कितने क्षत्रिय कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री हैं? अगर आज तक की रिसर्च करके बता दे तो अभी समझ में आ जाएगा कि आज का 6 मंत्री जो बनाए गए हैं वो क्यों बनाए गए हैं।
3: ठीक है,
2: उत्तर प्रदेश इस प्रकार से एक जाति विशेष का दबंग चल रहा
20: है। मैं मानता हूं कि 2027 के चुनाव का पहला ओपिनियन पोल जो है बंगाल के चुनाव के बाद आया, जब समाजवादी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा गया, आपको बड़े मंगलवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिनका पूरा जीवन चला गया लखनऊ से गोरखपुर जाते जाते, मेरा ख्याल 500-700 बार तो चले ही गए होंगे जब से मंदिर बना, वहां जो मत्था ना टिका पाया हो, वो बड़े मंगलवार की शुभकामनाएं जब करने लगे ना, तो समझ लो वक्त बदल रहा है। वहां का मैंडेट देखकर यहां सब कुछ हिल गया है, स्थितियां खराब है। वरना तो एक जमाना यह होता था, अखिलेश जी क्या कहते हैं, हाँ पत्रकार का नाम क्या आपका, क्या नाम है, अच्छा मिश्रा जी, ये तो हाल होते थे आपके, ये कुल जमा आपकी अभी तक की पूंजी है, आप भी जानते हैं अच्छे तरीके से। और मैं एक चीज मानता हूं कि जिस तरीके से आपके हाल अभी चल रहे हैं, आने वाले समय में 2027 में राइटिंग ऑन द वॉल, और मैं तो कहता हूं एक बेहतर ट्रांजिशन भी है। आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रहे थे, बिहार में मुख्यमंत्री चयन हुआ, ट्रांजिशन बहुत स्मूथली हो गया, उसके साथ साथ आप देख रहे हैं असम में विधायक दल का नेता चुन लिया गया, कितना ट्रांजिशन स्मूथ है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में शपथ हो चुकी है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में विस्तार हो रहा है, उसके अलावा बिहार में विस्तार हो रहा है, एक जगह सरकार और बनी है, वो पूरा का पूरा दिल्ली का ताज घेर के बैठे हुए हैं, ताज होटल वालों का अच्छा चल रहा है लॉटरी, वो 20-30-40 आदमी आए हुए हैं, वहां केरला में अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि क्या होना चाहिए। ये तो आपके हाल है, जनता वोट दे भी दे तो सरकार नहीं बनती। तो कुल मिलाकर मामला ऐसा है कि स्थिति आपकी बेहद खराब है। और अंत में एक चीज मैं भूल गया था, मैं कहना चाहता हूं कि हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू, मातृ दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मानता हूं आप बिजी होंगे गर्लफ्रेंड के साथ, वाइफ के साथ, काम में, ऑफिस में, बिजनेस में, नौकरी में, क्रिकेट में, तमाम जगहों पर, लेकिन आप पैदा हुए तभी ये सब कर पा रहे हैं, सो जस्ट टेक हर आउट, और इतना भी ना हो सके तो स्पीक टू हर फॉर आवर्स। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
10: शशि सर, आपका इस पर मैं रिस्पांस चाह रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले आशुतोष भी कह रहे थे कि 2027 आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए, वो 24 का उदाहरण दे रहे थे कि वहां लोकसभा में जो परफॉर्मेंस थी, मतलब बहुत ज्यादा उस सुधरने की उम्मीद कम है, क्या आप ऐसा मानते हैं?
11: देखिए, मैं कोई भी चुनावी भविष्यवाणी नहीं करता और अभी 2027 में देर है। जब पिछला चुनाव 2019 का जब चुनाव हुआ था एमपी का, तो उस समय देश के एक प्रख्यात पत्रकार, हम सब के बड़े आदरणीय हैं, वो एक बहुत बड़ा टीवी चैनल भी चलाते थे, उन्होंने कुछ आंकड़े दिए थे कि जब उससे पहले आपको याद होगा कि 5 स्टेट्स में बीजेपी को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था जस्ट कुछ महीने पहले, तो उन्होंने आंकड़े दिए थे कि 92% टाइम्स वो लौट के नहीं आती है पार्टी अगर केंद्र, और इसमें ऐसा होता है क्योंकि इन 5 स्टेट्स ने उसका जनादेश दे दिया है। हुआ क्या, भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा सीटें जीत गई। तो अभी ये कहना मेरे लिए संभव नहीं है कि चुनाव समाजवादी पार्टी जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कौन जीतेगा, कौन कितनी सीटों से जीतेगा। लेकिन मैं, दो बातें बहुत साफ हैं कि बंगाल के इलेक्शन ने पूरे देश की राजनीति को हिला कर रख दिया है, और जो लोग भारतीय जनता पार्टी से इतर राजनीति करते हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना ही होगा, ये तय है। अब वो उसे कैसे करेंगे, किस तरह करेंगे, वो एक अभी हम लोग देखेंगे इसको आने वाले दिनों।
10: ठीक है, एक बार आगे बढ़ने से पहले एक बार जो नए नए मंत्री बने हैं उन्होंने क्या क्या कहा, एक बार सुना देते हैं।
22: हम संगठन के कार्यकर्ता हैं और पार्टी का नेतृत्व हमारे मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सब लोग जो भी भूमिका देते हैं हम सब लोग मिलकर उसका निर्वहन करने की जिम्मेवारी हमारी है। मैं आभारी हूं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, मुझे इस रूप में काम करने का अवसर दिया है, और मैं निश्चित रूप से जो अपेक्षाएं हैं नेतृत्व की, अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जो भी काम मिलेगा, जो विभाग मिलेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए, विकास के लिए काम करेंगे।
0: किसी विभाग में लेके कोई अपेक्षा या खाली?
22: नहीं, कोई अपेक्षा नहीं है, पार्टी का निर्णय है, माननीय मुख्यमंत्री जी जो आदेश करेंगे अक्षर से पालन करेंगे, और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जो विकास यात्रा है उसकी विकास यात्रा की विकास गाथा लिखने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे।
0: छोटा सा पॉलिटिकल सवाल है, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार जा रही है इसलिए एक्सपेंशन कर रहे हैं,
22: अब अखिलेश जी इतने सीनियर नेता हैं उनसे इस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती, ये सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत ही मंत्रिमंडलों के गठन, विधानमंडलों के गठन होते हैं। लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अब समाजवादी पार्टी लगभग समाप्तवादी पार्टी की ओर आगे बढ़ रही है, और पूरी भारतीय जनता पार्टी का कुनबा मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग संगठित होकर 300 से अधिक सीटें उत्तर प्रदेश में लेकर आएंगे।
14: मैं आभार प्रकट करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, विशेष रूप से माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, और अपनी पार्टी का कि जिसने एक नई जिम्मेदारी और ये मौका हमें दिया है, और मेरा पूरी तरीके से ये मानना होगा और मेरा ये संकल्प होगा कि जो जिम्मेदारी पार्टी ने और सरकार में हमें दी है उसका पूरा हम लोग पालन करेंगे, पूरी मेहनत से, निष्ठा से उन रास्तों पर आगे चलेंगे और आगे बढ़ेंगे और जनता के काम करेंगे।
0: क्या कोई अपेक्षा भी आप लोगों की, कौन सा विभाग मिले या आप लोग खाली से?
14: हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी जो दिशा निर्देश देगी उस पर काम करेंगे।
0: एक छोटा सा सवाल है, पॉलिटिकल सवाल है, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी कह रही है सरकार का विदाई का समय है इसलिए आप एक्सपेंशन कर रहे हैं।
14: देखिए, ये उनका मानसिक असंतुलन है, और जब पूरा देश का जनादेश आज भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्र और सनातन का जो स्तंभ है, जो उनको आगे लेकर के चल रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जनादेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा हो।

0: बीजेपी हर पीडीए के काट के तौर पर इन चेहरों को भी आगे रखेगी कि देखिए हमारे ऊपर आरोप ये लगता है, आप देखिए हमारे साथ कौन कौन लोग खड़े हैं। तो वही मैं कह रहा था कि चाहे आप हंसराज विश्वकर्मा को देख लीजिए, मैं एक बात कह दूं कि हंसराज विश्वकर्मा ठीक है प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र के जिलाध्यक्ष हैं, बहुत पुराने नेता हैं, पीएम के करीबी माने जाते हैं, लेकिन अभी मुश्किल से दो हफ्ते पहले जिस तरीके से जो गाजीपुर में जिस तरीके की घटना घटी विश्वकर्मा परिवार का, तो बीजेपी कहीं ना कहीं काउंटर करने की कोशिश की उस पूरे समाज में कोई इस तरह की नाराजगी ना फैल जाए, इसका भी एक असर आपको दिखाई देता है। अजीत पाल जहां से आते हैं कानपुर देहात, अब देखिए वो पूरा इलाका पालों का गढ़ है, पाल गडेरिया ये समुदाय, बीजेपी को भी ये पहले बसपा के साथ ज्यादा हुआ करते थे लेकिन अखिलेश यादव ने इस समुदाय से अपना प्रदेश अध्यक्ष दिया है, तो बीजेपी को यहां भी मैनेजमेंट करने की जरूरत पड़ रही है।
1: लेकिन तुम्हारा विषय कहते खास में यूजीसी के बाद से ब्राह्मण नाराज बताए जा रहे थे, लेकिन मनोज पांडे को कैबिनेट में जगह देने के बाद से क्या वो नाराजगी दूर होगी इस फैसले से?
0: देखिए निश्चित तौर पर ब्राह्मणों में के एक वर्ग में, पूरे में तो नहीं लेकिन एक वर्ग में बड़ी नाराजगी थी और इसको सरकार के भीतर भी लोगों ने इसे महसूस किया हुआ था। निश्चित तौर पर अगर आप देखें तो मनोज पांडे एक बड़ा चेहरा है, मध्य बीजेपी से आते हैं, यानी कि आप उनका अगर कार्यक्षेत्र देख लें तो ऊंचाहार, बराय बरेली और उसके आसपास के जितने इलाके हैं उसमें उनका एक प्रभाव है और दबंगई से उन्होंने पॉलिटिक्स की है, समाजवादी पार्टी के पुराने हैंड रहे हैं
1: नेताजी के साथ। कुमार अभिषेक बने रहे हमारे साथ, खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place right here on TuneIn. Play your favorite stations like Hey Buena.
6: La Que Buena.
4: ESPN Radio.
7: We know LeBron has to be the best player on the planet to
4: get The Daily.
8: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
4: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
9: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
10: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
11: और वही कहाँ गए थे घूमने?
12: जीके मैक्स।
13: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
12: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
13: जेके वॉल मैक्स
12: बेस्ट पेंट,
13: जेके मैक्स।
14: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
12: जेके मैक्स पेंट,
14: जेके मैक्स पेंट, खुशियों के रंग।
13: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
15: इसमें माइक्रोफाइबर है।
13: माइक्रोफाइबर यानी
15: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत?
13: हमारे सीमेंट में नहीं है,
15: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
16: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।

0: completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
2: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Le Batard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
3: कहा जा रहा है कि युद्ध रोकने और हॉर्मुज खोलने की एक शर्त यह भी है कि अमेरिका अरबों डॉलर की फ्रीज की हुई ईरानी संपत्ति को खोल दे। ईरान की कितनी संपत्तियां कहां कहां फ्रीज हैं ये जानने से पहले आपको बताते हैं कि संपत्ति फ्रीज होने का मतलब क्या होता है और ये क्यों होता है। जब किसी व्यक्ति, कंपनी या देश की नकदी, संपत्ति या निवेश को कोई दूसरा देश, बैंक या अंतर्राष्ट्रीय संस्था अस्थायी रूप से रोक देता है तो उसे फ्रीज असेट्स या संपत्ति फ्रीज करना कहा जाता है। इस हालत में वो देश उस पैसे या संपत्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसे बेच नहीं सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता। आमतौर पर ऐसा प्रतिबंधों, अदालत के आदेशों, मनी लॉन्ड्रिंग और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के आरोपों के कारण किया जाता है। ईरान की विदेशों में फ्रीज की गई संपत्तियों की सही रकम स्पष्ट नहीं है, लेकिन ईरानी रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों के मुताबिक ये राशि 100 अरब डॉलर से ज्यादा हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये रकम ईरान की सालाना तेल और गैस कमाई से लगभग 3 गुना ज्यादा है, यानी जितनी रकम का नुकसान ईरान को हॉर्मुज पर अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड से 1 साल में होता, उससे 3 गुना राशि अमेरिका अब अनफ्रीज कर सकता है। ईरान की संपत्तियां सबसे पहले 1979 में फ्रीज की गई थी। तब अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने कहा था कि ईरान अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। उसी समय तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास में ईरानी छात्रों ने 66 अमेरिकी नागरिकों को बंधन बना लिया था। 1981 में अल्जीयर्स समझौते के बाद ईरान ने बंधकों को छोड़ा तो उसके बदले अमेरिका ने कुछ ईरानी संपत्तियां अनफ्रीज की थी। ईरान की फ्रीज संपत्तियां कई देशों में फैली हुई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन में लगभग 20 अरब डॉलर, भारत में लगभग 7 अरब डॉलर, इराक में लगभग 6 अरब डॉलर, कतर में लगभग 6 अरब डॉलर, जापान में लगभग 1.5 अरब डॉलर, अमेरिका में लगभग 2 अरब डॉलर और दूसरे यूरोपीय देशों में लगभग 1.6 अरब डॉलर संपत्ति ईरान की फ्रीज है। इन देशों के अलावा भी कुल मिलाकर 100 अरब डॉलर ईरान के फ्रोजन है। 100 अरब डॉलर की रकम ईरान की जीडीपी के लगभग 1/4 के बराबर मानी जाती है। जाहिर है ईरान के लिए ये पैसा महत्वपूर्ण है क्योंकि ईरान की अर्थव्यवस्था लंबे समय से संकट में है। दशकों के प्रतिबंधों ने तेल निर्यात सीमित कर दिया, विदेशी निवेश रुक गया, उद्योग और तकनीक का आधुनिकीकरण भी धीमा पड़ गया, महंगाई तेजी से बढ़ी, ईरानी मुद्रा रियाल कमजोर होती गई। आज एक यूएस डॉलर की कीमत 13,12,900 ईरानी रियाल है। महंगाई की इसी हालात को लेकर ईरान में प्रदर्शन हुए थे जिसमें कई लोग मारे गए थे। ऐसे समय में फ्रीज संपत्तियां ईरान के लिए जैसे एक बंद पड़ा खजाना है जिसे वो तुरंत इस्तेमाल कर सकता है।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

यूपी में 2027 के चुनावी समीकरण साधने के लिए योगी कैबिनेट का विस्तार। भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे समेत 6 नए चेहरे, 2 राज्य मंत्रियों अजीत पाल, सोमेंद्र तोमर का प्रमोशन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनते ही विजय का पहला फैसला, 200 यूनिट बिजली फ्री, महिला सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स, डीएमके सरकार पर बोला हमला, कहा राज्य पर 10 लाख करोड़ का कर्ज छोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रम में बोले कांग्रेस सत्ता की भूखी, 25 साल तक डीएमके के साथ रहने के बाद धोखा दे दिया। असम में एक बार फिर से हेमंता की सरकार, केंद्रीय पर्यवेक्षक जेपी नड्डा के सामने चुने गए विधायक दल के नेता, 12 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह, पीएम मोदी होंगे शामिल। और केरल में नए मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस में मंथन, दिल्ली में बैठकों का दौर, अभी तक नहीं तय हो सका मुख्यमंत्री के नाम पर कोई फैसला, दौड़ में केसी वेणुगोपाल आगे।

0: योगी कैबिनेट का विस्तार हो गया है, नए मंत्रियों ने शपथ ले ली है। शपथ लेने के बाद अपनी जो सेवा का उनका प्रण था, निश्चय था, वो भी उन्होंने जाहिर किया। ये वो तमाम चेहरे हैं जिन्होंने आज कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, कृष्णा पासवान, हंसराज विश्वकर्मा, सुरेंद्र तोमर, कैलाश राजपूत, सुमेंद्र तोमर, अजीत पाल, सबने शपथ ले ली है और विभागों का बंटवारा भी शाम तक माना जा रहा है कि हो जाएगा। और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो इसे जातीय क्षेत्रीय समीकरण के तौर पर देख रहे हैं। 2027 के लिए माना जा रहा है कि ये कैबिनेट का विस्तार इंपॉर्टेंट है। अब शपथ ले ली गई है, नए मंत्रियों ने शपथ ली, शपथ लेने के बाद क्या कहा एक एक करके आपको सुना भी देता।
1: हम संगठन के कार्यकर्ता हैं और पार्टी और पार्टी का नेतृत्व हमारे मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सब लोग जो भी भूमिका देते हैं हम सब लोग मिलकर उसका निर्वहन करने की जिम्मेवारी हमारी है। मैं आभारी हूं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, मुझे इस रूप में काम करने का अवसर दिया है और मैं निश्चित रूप से जो अपेक्षाएं हैं नेतृत्व की अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जो भी काम मिलेगा, जो विभाग मिलेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए, विकास के लिए काम करेंगे।
2: किसी विभाग को लेकर कोई अपेक्षा या खाली?
1: नहीं, कोई अपेक्षा नहीं है, पार्टी का निर्णय है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो आदेश करेंगे अक्षर से पालन करेंगे और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जो विकास यात्रा है उसकी विकास यात्रा की विकास गाथा लिखने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे।
2: छोटा सा पॉलिटिकल सवाल है, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार जा रही है इसलिए एक्सपेंशन कर रहे हैं।
1: अब अखिलेश जी इतने सीनियर नेता हैं, उनसे इस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती। ये सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत ही मंत्रिमंडलों के गठन, विधानमंडलों के गठन होते हैं। लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि अब समाजवादी पार्टी लगभग समाप्तवादी पार्टी की ओर आगे बढ़ रही है और पूरी भारतीय जनता पार्टी का कुनबा मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग संगठित होकर 300 से अधिक सीटें उत्तर प्रदेश में लेकर आएंगे।
3: मैं आभार प्रकट करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, विशेष रूप से माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपनी पार्टी का कि जिसने एक नई जिम्मेदारी और ये मौका हमें दिया है। और मेरा पूरी तरीके से ये मानना होगा और मेरा ये संकल्प होगा कि जो जिम्मेदारी पार्टी ने और सरकार में हमें दी है उसका पूरा हम लोग पालन करेंगे, पूरी मेहनत से, निष्ठा से उन रास्तों पर आगे चलेंगे और आगे बढ़ेंगे और जनता के काम करेंगे।
2: क्या कोई अपेक्षा भी आप लोगों की, कौन सा विभाग मिले या आप लोग खाली से?
3: हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी जो दिशा निर्देश देगी उस पर काम करेंगे।
2: एक छोटा सा सवाल है, पॉलिटिकल सवाल है, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी कह रही है सरकार का विदाई का समय है इसलिए आप एक्सपेंशन कर रहे हैं।
3: देखिए ये उनका मानसिक असंतुलन है और जब पूरा देश का जनादेश आज भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्र और सनातन का जो स्तंभ है जो उनको आगे लेकर के चल रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जनादेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा हो, तो कई बार की लगातार हार से पराजित समाजवादी पार्टी इस तरीके के सवाल उठाते हैं।
4: उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महामहिम राज्यपाल जी को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देती हूं। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी और जो संगठन के लोग मुझे दायित्व देंगे उसको सर्वश्रेष्ठ निर्वाहन करेंगे।
5: बहुत ही अच्छा लग रहा है और जो जिम्मेदारी मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, मोदी जी ने, योगी जी ने दी है, उसको अच्छे से निर्वहन करने का पूरा प्रयास करूंगा और अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाऊंगा।
6: बहुत पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे, पूरा संगठन और सेवा का जो भाव है उसको पूरा किया जाएगा और सरकार को के द्वारा जो भी योजनाएं लागू किया जाएगा उसको उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए अच्छा से अच्छा बनाने के काम करेंगे।
0: चले ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं, जनभवन के बाहर हमारे साथ हमारे संवाददाता समर्थ वहां से हैं। समर्थ, इस समय की क्या तस्वीरें, क्या आपने गए वहां पर?
7: अंदर नहीं जाने दे रहे। राजीव देखिए हम इस वक्त उन मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं जिन्होंने अभी अभी शपथ ग्रहण में शामिल होकर यहाँ पहुंचे हैं लोकभवन में। एक फिल्म की स्क्रीनिंग है उसको लेकर यहाँ पर आए हैं। भगवान कृष्ण की फिल्म है। आप अगर तस्वीरें यहाँ लोकभवन की मैं आपको दिखाऊं तो एक के बाद एक जो मंत्री हैं उनका आवागमन यहाँ फिलहाल लगा हुआ है क्योंकि इस वक्त जो है जहां शपथ ग्रहण होता है उससे ठीक खत्म होने के बाद वो यहां पहुंचे हैं। और कुल मिलाकर उनसे जब सवाल हम कर रहे हैं तो वो सीधा यही कह रहे हैं कि भाई वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का और आगे काम करने की बात कर रहे हैं। तो वहीं वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को लेकर भी कटाक्ष करते नजर आते हैं। तमाम मंत्रियों का आना जाना यहां पर लगा है और कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर यहां पर यह भी है जो जातीय समीकरण साधने की बात है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भी हमसे बातचीत की और उन्होंने यह कहा कि कुछ और जातियों को भी साधा जा सकता था। हालांकि वो खुश भी हैं कि अधिकतर जातियों को साधा गया। तो सभी को मालूम है कि यूपी का 27 का एक बड़ा चुनाव है सामने है जिसको लेकर ये पूरी तैयारियां चल रही हैं। आइए कुछ दृश्य दिखाते हैं लोकभवन का एक बार हम, जहां पर सारे मंत्री और कुछ देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहीं पर पहुंचने वाले हैं। जो मंत्री हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं या डिप्टी सीएम हैं, वो मीडिया से भी मुखातिब हो रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आइए सुनवाते हैं। मनोज पांडे बोल रहे हैं, उनको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं।
3: 19 भी देखा, 22 भी देखा, अब ट्यूट की दुनिया नहीं है। मेड़ पर खड़ा हुआ किसान, मजदूर सड़कों पर काम कर रहा हो और इमारतों में काम कर रहा हो, वो मजदूर आज वो देख रहा है कि अगर इस भारत।
7: तो कुल मिलाकर इस तरह की तस्वीरें आपको हम यहाँ से दिखा रहे हैं जहां मनोज पांडे इस वक्त मुखातिब हो रहे हैं। हमने कई मंत्रियों से बातचीत की है और एक के बाद जो मंत्री है उनका जाना यहाँ फिलहाल लगा नजर आ रहा है। और यहाँ पर भाजपा के तमाम नेता और भी हैं। मैम किस तरह से देख रही है इस पूरे विस्तार को, आप लोग क्या कहेंगे इस पर?
8: एक जी
7: बताइए क्या कुछ कहेंगी इस विस्तार को लेकर आप लोग?
8: देखिए अब विस्तार पूर्ण हो गया है, योगी मंत्रिमंडल पूरा हो गया और सब लोग मिलकर के जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देशन है, जैसी उनकी इच्छा है, उसके अनुरूप मिलकर के सारे लोग काम करेंगे।
7: तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ तमाम चीजें हैं यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। इसके अलावा मनोज पांडे भी अभी यहाँ पहुंचे हैं। हमने सुरेंद्र तोमर से भी बातचीत की। सुरेंद्र तोमर जो कुछ जिनको की कहीं ना कहीं एलिवेट किया गया, यानी कि जिनको इंडिपेंडेंट चार्ज स्वतंत्र प्रभार दिया गया है, वो भी तस्वीर आपको हम यहाँ से दिखा रहे हैं। सामने की तरफ भी दिखा दें, यहाँ पर सिक्योरिटी भी टाइट हो गई क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कुछ ही देर में यहां पर आगमन होना है और उसके बाद एक भगवान कृष्ण के ऊपर फिल्म है जिसको ये देखिए एक के बाद एक गाड़ियां जो है उनको दिखाते रहे कि एक के बाद एक गाड़ियां जो है वो आती जा रही हैं, कुछ मंत्रियों को लेने आ रही हैं, कुछ यहां पर ड्रॉप करने के लिए आ रही हैं। तो बड़ा एक तरह से सियासी संदेश भी उत्तर प्रदेश के लिए यहां से दिया जा रहा है। और बड़ी बात यह है
9: समर्थन आपके पास आपके पास बिल्कुल मंत्री पहुंच रहे, आप सीधा फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए पहुंच गए। लेकिन शिवम सवाल है कि जब जातीय समीकरण साधने की बात हो रही है, ब्राह्मणों को कैसे साधेंगे? क्या मनोज पांडे के सहारे आप यूजीसी की नाराजगी को दूर कर पाएंगे?
10: मैं मानता हूं कि यूजीसी का जो विषय है उसका पटाक्षेप हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट से उस पर स्टे है और आने वाले समय में कोर्ट के निर्णय में जो भी चीजें आगे निकल कर आएंगे उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन मैं निजी तौर पर ऐसा मानता हूं कि इस तरह की चीजों पर कुछ लोग जरूर इमोशनल चीजों को आगे बढ़ाते हैं, इमोशंस को स्टर करते हैं, उनको भड़काने की कोशिश करते हैं और उससे होता कुछ नहीं, समाज का नुकसान होता है जो शायद नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं कि कोई भी जाति हो, कोई भी अलग से पंथ हो, वो भारतीय जनता पार्टी का वोटर हमेशा से था, है और रहेगा। और खासतौर पर मैं तो एक चीज अगर छोटी सी बात को भी लेकर चले, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जितनी सारी योजनाओं का लाभ ग्राउंड पर है और इससे और उससे भी आगे एक व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, उसका जो बदलाव उत्तर प्रदेश में हुआ है, अगर वोटर सिर्फ उसके बिहाफ पर भी वोट देगा तो अपने आप समझ सकते हैं कि स्थितियां किस तरह की होंगी। कोई भी वो समाजवादी पार्टी का समय भूला नहीं है और भूल भी नहीं सकता। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, मुझे पता है क्या स्थितियां होती थी। हर महीने के हिसाब से तो कर्फ्यू होता था मेरे शहर में, बुरा हाल। इस नोएडा में ऐसी ऐसी जगह स्थितियां खराब थी जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो वहां मुझे लगता है बात करने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है नहीं, जानते वो भी हैं। अब समाजवादी वाले अपनी तरफ से दो चार डिफेंस जरूर देंगे लेकिन उनको भी पता है क्योंकि उनकी भी सेफ्टी इजी रहा सरकार में।
9: आशुतोष वर्मा बताएं।
11: नोएडा में बैठ के त्यागी साहब उत्तर प्रदेश में आते हैं और हमको लगता है कि हम उत्तर प्रदेश नहीं, हम बांग्लादेश से आते हैं। हम भी इसी उत्तर प्रदेश में रहते हैं भाई, और इसी उत्तर प्रदेश ने 2024 में भारतीय जनता पार्टी को भी पटकनी दी है। देखिए ये पूरा जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ इसमें दो तीन चीज खास देखिए। कृष्णा पासवान ये कहां से बनाई गई है? ये बनाई गई है फतेहपुर, वो फतेहपुर जो लगातार भारतीय जनता पार्टी का गढ़ होता था, जिसको समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नरेशोत्तम पटेल ने हराया है बुरी तरीके से। मनोज पांडे कहां से आते हैं? रायबली, जो भारतीय जनता पार्टी फिर से हार गई है, जो जीतने का ख्वाब रखती है वहां पे कांग्रेस पार्टी जीत के आई है। कैलाश राजपूत कन्नौज, जो भारतीय जनता पार्टी जीतने का हसरत रखती है लेकिन जीत नहीं पा रही है। मेरठ लोकसभा, जहां भारतीय जनता पार्टी एक छत जीतती थी वहां इस बार उनकी मार्जिन थिन होकर 10,000 हो गई है। अलीगढ़ से सुरेंद्र दिलेर, जहां भी भारतीय जनता पार्टी आज तक कभी हारी नहीं, आज भी इस बार भी जीती, लेकिन मार्जिन की 15,000 हो गई। आप ये समझिए, समीकरण समझिए, भारतीय जनता पार्टी जहां जहां पे अपने विकेट खो चुकी है वहां वहां से लोगों को ला रही है, जाति समीकरण बैठा रही है, कोशिश कर रही है। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 6 महीने बचे हुए हैं, उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना रुख 2024 में दिखाया है कि उसे करना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा परेशान की जरूरत नहीं है।
10: आशुतोष जी, मुझे आशुतोष जी,
11: कोई परेशानी नहीं।
10: आशुतोष जी मुझे नोएडा बता रहे हैं। अरे भाई, कोई नोएडा आता है इसका ये मतलब नहीं है वहीं रहता है। मैं तो मेरठ से हूँ भाई, हर महीने के हिसाब से कर्फ्यू था। क्या मेरठ, क्या बरेली, क्या उससे आगे कहीं पर भी निकल जाइए, जितनी भी लाइन से अगर आप चलेंगे हर महीने के हिसाब से कर्फ्यू। ये कह रहे कि नहीं नहीं तो नोएडा, नोएडा की स्थिति नहीं भाई, नोएडा की नहीं है, हर जगह यही हाल था। आगरा यही होता था, बरेली यही होता था, मेरठ यही होता था। लाइन से लगा लीजिए, पूरा वेस्ट यूपी में स्थिति किस तरह की होती थी, ईस्ट यूपी में स्थिति किस तरह की होती थी, क्या हम जानते नहीं है? दंगे किस हिसाब से बढ़ते थे, क्या हाल होता था, सब जानते हैं लोग, इसको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतना तय है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि बैट्समैन जब बैट घुमाता है ना तो मिसहिट से भी छक्का चला जाता है। मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन कभी कभी होता है,
9: पिकअप नहीं जाता। लेकिन अब आगे नहीं देखा, हो गया जो होना। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और ब्रेक के उस पार ठीक 5 बजे आपको इसी विषय पर दिखाएंगे दंगल। आप देखते रहिए आज तक।

हर राज्य में जनता बीजेपी को दूसरी बार तीसरी बार फिर से सेवा करने का अवसर देती है, लेकिन कांग्रेस की कोई भी राज्य सरकार दूसरी बार सत्ता में वापस नहीं लौटी है। सरकार बनने के कुछ ही महीनों में कांग्रेस के प्रति एंटी इनकमबेंसी शुरू हो जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कांग्रेस को सिर्फ विश्वासघात करना आता है, ये खुद भी झूठे हैं और उनकी गारंटियां भी झूठी है। कांग्रेस की सत्ता की किताब में गवर्नेंस का चैप्टर तो है ही नहीं है।

वो विजय जो अब तक रियल लाइफ के हीरो थे अब रियल लाइफ के हीरो बन गए हैं। तमिलनाडु में पिछले 59 साल एक महीने और 28 दिनों तक सिर्फ दो ही पार्टियों का राज था। तमिलनाडु में पिछले 21,608 दिन से सिर्फ दो ही पार्टियां शासन करती थी, डीएमके और एडीएमके। बीच बीच में तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन भी रहा, लेकिन इन दोनों पार्टियों के अलावा किसी तीसरे पार्टी की एंट्री नहीं हो पाई। लेकिन अब इन दोनों पार्टियों के राज को 59 साल के बाद थलपति विजय की टीवीके ने ध्वस्त किया है। विजय ने वो करके दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। किसने सोचा था कि सिर्फ दो साल में ऐसा कमाल दिखाएंगे कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन जाएंगे।

0: अदेन्ना वंदा
1: विजय मौजूदा वक्त में तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। विजय के पास पैसा, स्टारडम, फैन फॉलोइंग सब कुछ था। वो चाहते तो आराम से सुपरस्टार बने रह सकते थे, लेकिन उन्होंने राजनीति का रास्ता चुना। 2016 में जयललिता की मौत के बाद से तमिलनाडु की राजनीति में एक शून्य था, एक खालीपन था। डीएमके के सामने तो जैसे कि खुला हुआ रास्ता था, दूर दूर तक कोई भी टक्कर में नहीं था। इसीलिए 2021 में स्टालिन मुख्यमंत्री बने तो सबको लगा कि अब स्टालिन को कौन टक्कर देगा। इसीलिए ज्यादातर एग्जिट पोल में उनकी जीत बताई जा रही थी, लेकिन वो विजय ही थे जिन्होंने जयललिता की मौत से खाली हुई तमिलनाडु की राजनीति के शून्य को भरा। उनकी रैलियों की भीड़ बता रही थी कि तमिलनाडु में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन शायद किसी को ये अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ भीड़ नहीं है, उनके वोटर्स भी हैं। और विजय के इन फैंस ने ये साबित कर दिया कि वो रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए नहीं जमा हुए थे, वो तमिलनाडु को बदलने के लिए आए थे। तमिलनाडु में थलपति विजय ने तो इतिहास रचा है, लेकिन उनको ये कामयाबी इसलिए मिली क्योंकि तमिलनाडु के लोगों को उनके अंदर एक ऐसा नायक नजर आया जो उनके राज्य को आगे ले जा सकता है। विजय की इस जीत के पीछे उनके वो फैंस थे जो उन्हें किसी भी हद तक फॉलो करते हैं। विजय ने अपने फैन क्लब को वेलफेयर नेटवर्क में बदला, लोगों की मदद, युवाओं के कनेक्शन और जमीनी पकड़ मजबूत की और टीवीके के अपने वोटर तैयार किए। तमिलनाडु में विजय के 85,000 से ज्यादा फैन क्लब का नेटवर्क है जिन्होंने उनकी जीत में अहम भूमिका निभाई। उनका ये नेटवर्क पिछले 10 वर्षों से उनकी शैडो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में ही काम कर रहे थे। विजय के ये फैन क्लब पूरे तमिलनाडु में सामाजिक काम कर रहे थे, लोगों को विजय से जोड़ रहे थे। विजय आर्मी पिछले कई वर्षों से तमिलनाडु की गलियों में दिख रही थी। विजय की जीत की सबसे बड़ी वजह है उनकी लोकप्रियता। विजय भले ही 51 साल के, लेकिन उन्हें युवाओं का या जेंसी का नेता कहा जाता है। तमिलनाडु में 40 से कम उम्र के युवाओं की संख्या 2 करोड़ है, जो तमिलनाडु के करीब 41.5% वोटर होते हैं। विजय का यही युवा कैडर सोशल मीडिया पर भी एक्टिव था, जिन्होंने तमिलनाडु में विजय के पक्ष में हवा बनाई। विजय ने किसी बड़े गठबंधन का सहारा नहीं लिया, न डीएमके, न एआईएडीएमके, न बीजेपी, सीधे जनता के बीच गए। आज तक
2: पिरोजी स्ट्रीट के इस इलाके में है जहां पर आपको नजर आएगा कुछ कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, कुछ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, लेकिन यहां पे एक जलाल बिल्डिंग था जो 23 मार्च में को अटैक, जिस पर अटैक कर दिया गया, अमेरिकी इजरायली अटैक्स थे। ये एक म्यूजिक इंस्टीट्यूट था जिसे बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। वजह क्या है, ये आज तक यहाँ जो उसको ओन करते हैं म्यूजिक टीचर हामिद, वो नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि ना कोई टारगेटेड किलिंग हुआ इस अटैक से, आसपास बस लोग रहते हैं और ये एक इंस्टीट्यूट था जो बिल्कुल खाली था। सारे जो इनके म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स थे सब बिल्कुल खत्म हो गए हैं, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। एक ऐसा कपल हामिद और उनकी बीवी जिन्होंने एक म्यूजिक इंस्टीट्यूट शुरू किया फारसी कल्चर, फारसी म्यूजिक को आगे ले जाने के लिए, उसको ध्वस्त कर दिया गया और आज वो बिना गवर्नमेंट सपोर्ट के यहाँ पर खड़े थे। आज वो सोच रहे हैं कि वो फिर से कैसे अपनी जिंदगी शुरू करें। कैमरा पर्सन सत्य राउत्रे के साथ तेहरान से गीता मोहन आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: यूपी में 2027 का चुनावी समीकरण साधने के लिए योगी कैबिनेट का विस्तार। भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे समेत 6 नए चेहरे। दो राज्य मंत्री अजीत पाल, सुमेंद्र तोमर को मिला स्वतंत्र प्रभार। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनते ही विजय का पहला फैसला, 200 यूनिट बिजली फ्री। महिला सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स। डीएमके सरकार पर बोला हमला, कहा राज्य पर 10 लाख करोड़ का खर्च छोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रम में बोले कांग्रेस सत्ता की भूखी, 25 साल तक डीएमके के साथ रहने के बाद दिया धोखा। असम में फिर हिमंता की सरकार, केंद्रीय पर्यवेक्षक जेपी नड्डा के सामने चुने गए विधायक दल के नेता। 12 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह, पीएम मोदी होंगे शामिल। और केरल में नए मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस में मंथन, दिल्ली में बैठकों का दौर अभी तक नहीं तय हो सका। मुख्यमंत्री के नाम पर कोई फैसला, दौड़ में केसी वेणुगोपाल आगे।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे प्रामाणिक और लोकतांत्रिक शो दंगल। आज बात उत्तर प्रदेश की, जहां पर योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। इस विस्तार में 2 मंत्रियों का प्रमोशन हुआ, 6 नए चेहरों को मंत्री बनाया गया। और आज यूपी में सिर्फ मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, बल्कि 2027 की सबसे बड़ी राजनीतिक बिसात पर नई चाल चली गई। सत्ता जब चुनावों के करीब पहुंचती है तो फैसले सिर्फ प्रशासन चलाने के लिए नहीं लिए जाते हैं, वो समाज का मन पढ़ने और भविष्य की दिशा तय करने के लिए भी लिए जाते हैं। योगी सरकार ने 6 खाली पद भरकर साफ संकेत दिया है कि अगले साल होने वाला विधानसभा का चुनाव सिर्फ विकास, कानून व्यवस्था या वादों की लड़ाई पर नहीं होगा, बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व और जातीय संतुलन भी निर्णायक जंग होगा। योगी मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए ब्राह्मण चेहरों को भी जगह देकर संदेश दिया गया। गैर यादव ओबीसी समुदायों को साधने की कोशिश हुई, दलित और महिला प्रतिनिधित्व को भी आगे बढ़ाया गया और पश्चिम से पूर्वांचल तक क्षेत्रीय संतुलन साधने का प्रयास दिखा। दरअसल बीजेपी अच्छी तरह से समझती है कि यूपी सिर्फ देश का सबसे बड़ा राज्य नहीं है, बल्कि दिल्ली की सत्ता का सबसे मजबूत दरवाजा भी है। यूपी का जनादेश अक्सर देश की राजनीति की दिशा भी तय करता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सोशल इंजीनियरिंग 2024 लोकसभा के झटके के बाद बीजेपी के लिए नया सुरक्षा कवच बनेगी? क्या अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला बीजेपी के जातीय समीकरण को चुनौती दे पाएगा? क्या यूपी का 2027 का विधानसभा चुनाव विकास बनाम जाति से आगे बढ़कर प्रतिनिधित्व बनाम राजनीतिक भरोसे की लड़ाई बन जाएगा? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी बड़ी बहस दंगल। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट।
3: मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं।
4: मैं मनोज कुमार पांडे।
5: मैं अजय सिंह पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं।
6: सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
7: मैं भारत की सुरक्षा और अखंडता रखूंगा।
8: ये सिर्फ कैबिनेट विस्तार नहीं, यूपी में 2027 की चुनावी पटकथा का पहला बड़ा अध्याय है। योगी कैबिनेट विस्तार में सबसे बड़ा फोकस रहा जाति और क्षेत्रीय संतुलन।
9: सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
8: लखनऊ में 6 नए मंत्रियों के साथ 2 मंत्रियों का प्रमोशन हुआ। इस तरह योगी सरकार में 8 मंत्रियों ने शपथ ली। यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट विस्तार में जगह दी गई है। पश्चिमी यूपी का अहम जाट चेहरा है भूपेंद्र चौधरी। रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे योगी सरकार में मंत्री बन गए हैं। यूपी में मनोज पांडे बड़े ब्राह्मण चेहरों में से एक है। 2024 में समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर मनोज पांडे योगी सरकार में शामिल हुए थे।
10: मैं कृष्णा पासवान ईश्वर।
8: यूपी की खागा सीट से कृष्णा पासवान मंत्री बने। चौथी बार के विधायक कृष्णा पासवान पासी समुदाय के नेता हैं। लोधी समुदाय से आने वाले कैलाश राजपूत को भी मंत्री बनाया गया है। कन्नौज के तिरवा से बीजेपी विधायक कैलाश राजपूत की ओबीसी में अच्छी पकड़ है।
11: सुरेंद्र दिलेर।
8: अलीगढ़ की खैर सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर को भी मंत्री बनाया गया है। एससी समुदाय के बड़े नेता हैं सुरेंद्र दिलेर। यूपी विधान परिषद के सदस्य हंसराज विश्वकर्मा भी मंत्री बन गए हैं। पिछड़े समाज के नेता के रूप में हंसराज विश्वकर्मा की धमक है।
11: मैं निश्चित रूप से जो अपेक्षाएं हैं नेतृत्व की, अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जो भी काम मिलेगा, जो विभाग मिलेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए, विकास के लिए काम करेंगे।
12: मेरा ये संकल्प होगा कि जो जिम्मेदारी पार्टी ने और सरकार में हमें दी है, उसका पूरा हम लोग पालन करेंगे, पूरी मेहनत से, निष्ठा से उन रास्तों पर आगे चलेंगे और आगे बढ़ेंगे और जनता के काम करेंगे।
13: इतना अच्छा दिन है आज, भारतीय जनता पार्टी मातृ डे है और मातृ डे में आज मुझे शपथ दिलाई है। तो आप जानते हो कि महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति कितना ज्यादा संवेदनशील है भारत।
14: जो जिम्मेदारी मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, मोदी जी ने, योगी जी ने दी है, उसको अच्छे से निर्वहन करने का पूरा प्रयास करूंगा और अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाऊंगा।
8: उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर कैबिनेट विस्तार सिर्फ शपथ नहीं होता, आने वाले चुनावों के संकेत भी होते हैं। इस संकेत को साफ साफ पढ़ा जा सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार में 2 मंत्रियों को प्रमोट किया गया है। मेरठ दक्षिण से विधायक सोमेंद्र तोमर का इस मंत्रिमंडल विस्तार में प्रमोशन हुआ है। योगी कैबिनेट में सोमेंद्र तोमर का कद बढ़ा है। सोमेंद्र तोमर को बीजेपी का मजबूत गुर्जर चेहरा माना जाता है। योगी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री अजीत पाल का भी मंत्रिमंडल विस्तार में प्रमोशन हुआ है। कानपुर देहात की सिकंदरा सीट से अजीत सिंह पाल विधायक हैं। ये पाल समुदाय के बड़े नेता हैं। योगी सरकार ने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए यूपी की सियासत बदल दी है। ब्राह्मण प्लस ओबीसी प्लस दलित, यानी एक ब्राह्मण 2 दलित 5 ओबीसी, यानी एक तीर से कई निशाने।
15: वो जिम्मेवारी मिलेगी, अभी संगठन का काम कर रहा था, एमएलसी का काम कर रहा था, अब सरकार के मंत्री के रूप में जो काम मिलेगा, निश्चित तौर पर एक संगठन सेवा है हमारा, और वो तो ये है, अब सरकार का जो काम मिलेगा उसको जितना सच्चा सच्चा उसको किया।
8: राजनीति में कुर्सियां सिर्फ नेताओं को नहीं मिलती, उनके पीछे खड़े समाज को संदेश मिलता है। इसी को ध्यान में रखकर योगी मंत्रिमंडल के विस्तार से बीजेपी ने भविष्य की सत्ता की रणनीति बनाई है। फोकस 2027 विधानसभा चुनाव, टारगेट ओबीसी प्लस दलित प्लस ब्राह्मण, इनमें सवर्ण भी शामिल है। पश्चिमी यूपी को प्रतिनिधित्व मिला है, पूर्वांचल में विशेष फोकस किया गया है, महिला चेहरा को शामिल किया गया है, समाजवादी पार्टी के बागियों को साधा गया है, पीडीएफ फॉर्मूले की काट का प्लान बनाया गया है, गैर यादव ओबीसी पर नजर रखी गई है, गैर जाटव दलित वोट साधने की कोशिश हुई है, बूथ से लेकर बिरादरी तक पकड़ बनाने की कोशिश हुई है। यूपी में पश्चिम से पूर्वांचल तक योगी का बैलेंस गेम दिखता है। गुर्जर, पाल, पिछड़ा, दलित, ब्राह्मण, हर क्षेत्र, हर जाति, हर समीकरण का ध्यान रखा गया है, या यूं कहें कि समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले के जवाब में बीजेपी ने सत्ता का नया सामाजिक गणित सामने रख दिया है। राजनीति सिर्फ सत्ता चलाने की कला नहीं है, समाज के मन को पढ़ने का विज्ञान भी है। और उत्तर प्रदेश में जिसने जाति, क्षेत्र और भावनाओं का संतुलन साध लिया, दिल्ली का रास्ता अक्सर उसी के लिए आसान हो जाता है। 2027 अभी दूर है, लेकिन उसकी आहट लखनऊ के सत्ता गलियारों में आज साफ सुनाई दे रही है। आज तक ब्यूरो।
0: चलिए चर्चा की शुरुआत करने से पहले उन सवालों पर डालते नजर जिनके इर्द गिर्द आज की हमारी बहस रहेगी। सवाल नंबर 1, क्या योगी का सोशल इंजीनियरिंग का ये दांव सफल होगा? इसमें 5 ओबीसी हैं, 2 दलित हैं, 1 ब्राह्मण को कैबिनेट में जगह दी गई है। सवाल और भी हैं, क्या पीडीए पर बीजेपी का जातीय समीकरण भारी पड़ेगा? और सवाल नंबर 3, क्या 2029 लोकसभा चुनाव के लिए 2027 विधानसभा सेमीफाइनल होगा? खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जुड़े हैं, हमारे साथ आरएलडी नेता निषाद चौधरी हैं, हमारे साथ बीजेपी नेता राजेश चौधरी जुड़े हैं, क्योंकि हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉली शर्मा जुड़े हैं। आज शुरुआत अनुराग भदौरिया जी, आप ही से करते हैं, कैसी लगी बीजेपी के सोशल इंजीनियरिंग, और खासतौर पर जब मनोज पांडे शपथ ले रहे थे, कैसा लग रहा था आपको?
16: मुझे तो समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है ना, उसकी उसका जो डर है वो साफ भारतीय जनता पार्टी के चेहरों पे दिख रहा है।
0: डर दिख रहा था
16: बिल्कुल, उनको पीडीए से डर गए ना, वो डरे हैं, डरे हैं, तभी उन्होंने पीडीए का फॉर्मूला को अपनाने की कोशिश की है। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि चोरी से आप किसी की फार्मूला चोरी करने से आपका तो नहीं हो जाता ना, जनता आपकी हो जाती, एक बात। दूसरी बात बड़ा अच्छा ये भी है, देखो उन्होंने हार खुद ही मान ली रिटायरमेंट की, पहले 54 थे, 6 और आ गए, अब 60 हो गए। सरकारी नौकरी में 60 पे आदमी रिटायर हो जाता है, इसके मतलब अब सरकार अगले साल रिटायर होने वाली है, ये उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। और मजेदार बात देखिए, नेताओं को खुश करने में लगी है सरकार, जबकि आपको खुश जनता को करना है, लेकिन आप नेता को मंत्री, राजमंत्री, कैबिनेट मंत्री बना के आप नेता को खुश कर लोगे, जनता को कैसे खुश करोगे? जनता को तो खुश करने के लिए आपको काम करना चाहिए था, जो आपने 4.5 साल तक नहीं किया। अब आपको लगता है हमने काम तो नहीं किया तो हम थोड़ा कुछ समीकरण बैठाते हैं। आपका समीकरण तो आप तो बैठाओगे, लेकिन जनता आपका समीकरण बिगाड़ देगी, क्योंकि जनता आपके साथ
0: कह रहे हैं कि बीजेपी आपके डर से करिए, मजबूरी में करे, लेकिन अगर चलो मान लेता हूं एक बार के लिए कि मजबूरी में भी कर रहे हैं, लेकिन कर तो रही है ना, मतलब
16: तो उन्हें पता है,
0: उनको सम्मान तो मिल रहा है, प्रतिनिधित्व तो मिल रहा है, तो इसकी तो आपको प्रशंसा करनी चाहिए।
16: मैंने कहा ना, नेता को खुश करने में लगे हैं। आप बताइए, जो समाजवादी पार्टी से नेता वहां गए हैं, तो जो समाजवादी की विचारधारा से जीत के वहां पहुंचे हैं, तो जनता तो समझती है ना कि ये तो समाजवादी पार्टी से जीते हैं, समाजवादियों ने इनको जिताया है, तो फिर वो कैसे उनको एक्सेप्ट करेगी उनकी बात को? तो जनता भी तो इस बात को समझ रही है ना कि जो लोग उधर गए हैं तो ये लोग वहां ये चुप कब थे, ये चुप क्यों थे जब बटकों का अपमान हो रहा था, जब सिखा का अपमान हुआ था, पकड़ के खींचा गया था, उस समय समाजवादी ने आवाज उठाई थी, तब ये कहां थे? और मजेदार बात देखिए, उनको तो चलो खुश करने की कोशिश भी की, जो हमारे छत्री समाज के जो गए थे साथी, उनको तो खुश करने की भी कोशिश नहीं की गई। तो वो छत्री समाज भी तो समझता है ना कि ये भी जो, और अगर हमारे साथ रहते तो कम से कम महाराणा प्रताप की जयंती हमारे साथ मना रहे होते, साफा उनके चेहरे पे बंधा होता, उनके जो चेहरे पे एक चमक दिखाई पड़ती है, आज वो भी दिखाई नहीं पड़ रही है, कहीं है ही नहीं, देखो कहाँ है जो गए थे, एक बात। दूसरी बात, हम लोग तो सब समाज का सम्मान करने वाले लोग हैं, छत्रियों का भी हम लोग सम्मान करने वाले लोग हैं, हमने कहा कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम सोने का भाला के साथ दो दिन की छुट्टी।
0: थोड़ी देर पहले आपकी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े थे, वो बिल्कुल आपसे उलट यही वो कह रहे थे कि भाई वो तो ठाकरों की ही पार्टी है, ठाकरों को ही सब दे रहे हैं, और आप बिल्कुल उल्टा कह रहे हैं।
16: हम कह रहे हैं कि हमारी पार्टी सभी का सम्मान करती है, ठाकरों का भी। तो मैं तो बैठा हूं ना ठाकुर आपके सामने, और हम लोगों ने कितने धूमधाम से महाराणा प्रताप की जयंती मनाई, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समाजवादी पार्टी के अनाउंस किया हमारी सरकार बनेगी, सोने के भाले के साथ हम महाराणा प्रताप की जयंती मनाएंगे, दो दिन का अवकाश देंगे, और घोड़े पे चेतक के साथ उनकी भव्य मूर्ति लगेगी। तो ये समाजवादी लोग बोल रहे हैं ना, उनके यहाँ कौन बोल रहा है? हम ब्राह्मण समाज के साथ खड़े होते हैं, उनकी चोटी का अपमान होता है तो समाजवादी आवाज उठाते हैं, हम महाराणा प्रताप की जयंती मनाते हैं, महाराणा प्रताप के सम्मान की बात कर रहे हैं, हम दलित की सम्मान की बात करते हैं, हम पिछड़े वर्ग के सम्मान की बात करते हैं, हम अल्पसंख्यक समुदाय की बात करते हैं, हम तो सर्व समाज की बात कर रहे हैं ना। तो असली कौन होता है, असली इस देश का नागरिक कौन होगा, असली कौन होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ नेताओं को खुश करने में लगी है, नेताओं को खुश करने से
0: असली
16: कुछ
0: नकली
16: नहीं होगा।
0: ये तो खैर जनता को तय करना है, लेकिन राजेश जी
16: कर रही ना,
0: ऑपोजिशन क्यों कह रहा है?
16: नहीं, एक सेकंड,
0: कि आपने डर के मारे किया,
16: हमने
0: मजबूरी में किया है, और पीडीए की वजह से डर।
16: एक सेकंड लाइन और है,
0: चलो
16: पीडीए जो समाजवादी पार्टी ने बनाया है, कोई भी पीड़ित होगा, चाहे किसी वर्ग का होगा, किसी समाज का होगा, समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी दिखाई देती है, ये पीडीए का मतलब है।
0: ठीक है। हाँ राजेश जी, वो कह रहे कि आपने डर से ये निर्णय लिया, ये कैबिनेट का विस्तार कम, ये डर और मजबूरी ज्यादा दिखता है, क्योंकि आप पीडीए से डर गए थे।
17: देखिए, डर तो इन्हीं के शब्दों में झलक रहा है, कितने भयभीत हैं, पीडीए पीडीए चिल्लाते हैं, और इनके पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, वही अलायंस है, केवल एक परिवार के डेवलपमेंट के लिए पीडीए बनाया है इन्होंने। अब किसी सामान्य परिवार से आकर के कोई व्यक्ति राजनीति में आया है, उसने एक मुकाम हासिल किया है, उसको उत्तर प्रदेश की सरकार में स्थान मिल रहा है, इनको दिक्कत हो रही है, समझिए, क्योंकि एक परिवार के गुलाम है ये, तो इनको दिक्कत हो रही है। अब मान लो सामान्य परिवार से आकर के सौमेंद्र तोमर गुजर परिवार से आकर के मंत्री बन रहे हैं तो दिक्कत हो रही है, हंसराज जी विश्वकर्मा है इनको दिक्कत हो रही है, अजीत पाल जी पाल समाज से आते हैं उनसे दिक्कत हो रही है, कैलाश राजपूत जी लोध समाज से आते हैं उनसे दिक्कत हो रही है, भूपेंद्र चौधरी जी जाट समाज से आते हैं इनको दिक्कत हो रही है, मनोज पांडे जी ब्राह्मण समाज से आते हैं उनको दिक्कत हो रही है। ये केवल मुलायम सिंह यादव जी का परिवार नहीं है, ये अखिलेश यादव, डिंपल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, आदित्य यादव और जाने कौन कौन से यादव, ये जिन यादव परिवार के गुलाम यहाँ बैठे हुए हैं ना, ये वो नहीं है भाई, समझना पड़ेगा। यहाँ अपने पुरुषार्थ के दम पर, अपने पराक्रम के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर, विचारधारा के प्रति कमिटमेंट लेकर के राजनीति में आए, सेवा भाव लेकर के राजनीति में आए, काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और देखिएगा,
0: लेकिन 2027 कैबिनेट विस्तार मतलब करना था पहले कर लेते, अब चुनाव नजदीक है, उससे पहले आप कैबिनेट विस्तार कर रहे हैं, मतलब कितना ही इससे जनता को फायदा मिल जाएगा इतने कम समय में?
17: देखिए, रिक्त स्थान थे उन्हें भरने का काम किया है, जितना काम का डिवाइडेशन होगा उतना अच्छा काम करेंगे लोग, जितने ज्यादा लोगों को जिम्मेदारी मिलेगी उतना अच्छी सेवा करेंगे, जनता के बीच जाकर के काम करेंगे। तो ये तो जो खाली स्थान थे उनको भरने का काम किया, अभी नहीं क्या दिक्कत हो रही भाई? जनता तो लगातार नकार रही है ना, बंगाल में जाकर के बहुत हल्ला मचा रहे थे, वहां जाकर मुसलमान मुसलमान मुसलमान मुसलमान हल्ला कर रहे थे, परिणाम क्या आया है? बिहार के अंदर जाकर के भी अखिलेश यादव जी ने तांडव मचाने का काम किया था तेजस्वी यादव के लिए, परिणाम इनके सामने आया है। लोकसभा चुनाव के जस्ट बाद महाराष्ट्र में भी चुनाव हुआ था, परिणाम इनके सामने आया है, हरियाणा में परिणाम इनके सामने है। चिंता मत करिए, उत्तर प्रदेश की जनता धूल चटाने को तैयार बैठी है, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने वाली है, और आप जैसे पहले हारते आए हो ऐसे ही हारोगे, ऐसे ही हारते आओगे, लगातार जनता नकारेगी, आप चिंता मत करिए। और डर इनके मन में, हमारे मन में डर नहीं है, डर ये रहे हमारे सामान्य परिवार से, गरीब परिवार से आकर के लोग, पीडीए के लोग, दलित पिछड़े,
0: ठीक है, दिक्कत क्या है?
17: दिक्कत इनको
0: पश्चिम बंगाल का रिजल्ट, उसके बाद एक यूपी में कैबिनेट का विस्तार भी, क्या आप थोड़ा सा चिंतित हैं कि पश्चिम बंगाल में जो रिजल्ट आया और उसके बाद आपका जो सोशल इंजीनियरिंग है, जो पीडीए है आपका, उसके काट के रूप में बीजेपी ने ये निर्णय लिया है, 6 जगह दी गई है नए मंत्रियों को?
16: अब सवाल ये है कि इतनी तेजी से भारतीय जनता पार्टी विश्वकर्मा समाज की बात कर रही थी, अभी गाजीपुर में विश्वकर्मा समाज की बेटी के साथ अन्याय हो गया, तब कहां थे ये? तब तो आवाज नहीं निकली, तब कौन खड़ा हुआ था? समाजवादी लोग, समाजवादी लोग के डेलीगेशन गया, समाजवादी न्याय की बात कर रही है और समाजवादी ने धरना दिया, समाजवादी सरकार से कह रही है विश्वकर्मा समाज की बेटी के साथ न्याय मिलना चाहिए, तब तो नहीं याद आया। इसीलिए कहते ना, नेता को खुश करने से नहीं होगा, जनता को खुश करने से होगा। बेटियों का आपने कितने परसेंट, आप तो 33% आरक्षण की बात, हम लोगों ने तो महिला आरक्षण पास कर दिया है ना, आप तो महिला आरक्षण देने को तैयार नहीं हो। आपकी कैबिनेट में 60 है, मतलब रिटायरमेंट की एज आपकी अगले साल हो जाएगी, सरकार चली जाएगी, 60 में से आपने 6 महिला मंत्री, माने 33% वहां भी नहीं दे पा रहे हो। अरे अपनी सरकार में 33% दे दो और कहीं देने का तो छोड़ दो आप, तो इससे आपका चेहरा उजागर हो रहा है कि आप कितने झूठे और नकली हैं, कि मतलब अपनी कैबिनेट में भी 33% महिलाओं को आप मंत्री नहीं बनाना चाहते, तो महिलाओं का सम्मान आप कर रहे हो कि हम कर रहे हैं? हम तो महिलाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं। हमारे यहाँ देखिए, आपके यहाँ देख लिए, आप कंपेयर कर लीजिए किसके यहाँ पे महिलाएं एमपी ज्यादा है, महिलाएं विधायक हो, महिलाएं को सम्मान कौन दे रहा है? आप तो मंत्री तक बनाने को नहीं तैयार, एक बात। दूसरी बात सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जो बात कर रही है वो क्या कर रही है पता है? अभी इन्होंने क्या बोला, हम बात कर रहे हैं विकास की, हम बात कर रहे हैं समाज को आगे ले जाने की, हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बात कर रहे हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं? बंगाल में गए थे मुसलमान मुसलमान, अरे हम सब हिंदुस्तानी, सब सनातनी, और आप सनातनी को ही गाली दे रहे हो? आप हम अगर हिंदू नहीं है क्या, और आप हमें अगर अपमानित कर रहे हो, तो आप इसके मतलब एक हिंदू है सनातन को अपमानित कर रहे हो? आप आपस में लड़ रहे हो, पहले आप मुस्लिम से, आप पहले हिंदू मुस्लिम करते थे, आज आप पता क्या कर रहे हो, आप हिंदू हिंदू से लड़ा रहे हो आपस में। अरे पीडीए समाज में जो हम पीडीए की बात करते हैं उसमें हिंदू तो हैं, पिछड़ा हिंदू नहीं है क्या, दलित हिंदू नहीं है क्या, जो यहाँ पीड़ित है वो हिंदू नहीं है क्या? और हम जब उसकी हिंदुत्व की बात करते हैं तो आप जो हिंदू सनातन की बात करते हैं आप उन्हीं को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो? क्या आप जानते हो कि आदरणीय नेताजी हिंदू नहीं थे क्या? आप उनको नीचा दिखाने की बात करते हो, उनके परिवार को नीचा दिखाने की बात करते हो, आप हिंदू से हिंदू को लड़ा रहे हो। पीडीए को तो अनुराग जी, पहले हिंदू मुस्लिम करते थे, आप हिंदू मुस्लिम नहीं चल रहा तो हिंदू हिंदू को लड़ा रहे हो, अगड़ा पिछड़ा दलित आप लड़ाने में लगे हो। अरे आप बोलो ना, पीड़ित कोई व्यक्ति पीड़ित होगा, सनातनी होगा, इस देश का हिंदुस्तानी होगा, हम उसके साथ खड़े दिखाई देंगे, ये है पीडीए। आप इसके मतलब आप
0: चलो ठीक है, अनुराग आपकी बात आगे। निशा चौधरी जी, क्या सम्मान नहीं मिल रहा महिलाओं को? अनुराग भदौरिया आरोप लगा रहे
17: हैं।
0: मैं राजीव जी लौटूंगा आपके पास, मैं आपके पास आऊंगा।
18: ऐसा है राजीव जी, पहले करनी और कथनी, अगर ये बिल इन्होंने लागू होने दिया होता तो मुझे लगता है उस सम्मान की बात करने का अधिकार इनको बाद में था। जब इन्होंने बिल पास हो गया, लागू होने में अगर अड़चने डाली हैं, तो आप बताइए महिलाओं का सम्मान देने की बात कौन कर रहा है? सरकार तो करना चाहती थी लागू, लेकिन उसको लागू नहीं होने दिया। तो इसी से पता लगता है कि आपकी करनी और कथनी में कितना फर्क है, और महिलाओं के प्रति सम्मान देने में आपकी नीयत कितनी ज्यादा आगे की तरफ है। अगर नीयत होती तो उसको लागू होने देते। और रही बात आज मंत्रिमंडल में भी आप देख लीजिए, विस्तार में क्या एक महिला को नहीं लिया गया, पिछड़ों को नहीं लिया गया, दलित को नहीं लिया गया, इस तरीके से आज एनडीए सरकार जो भी कदम उठाती है पूरे वर्ग को, पूरे समाज को, सभी को देखते उठाते हैं, उसमें युवाओं की भी, महिलाओं की भी, किसानों की भी, सबकी भागीदारी को देखते हुए, क्योंकि लोकतंत्र में देखिए हमारे भारत का लोकतंत्र एक ऐसे सामाजिक आधार पर, ढांचे पर टिका है जिसमें सभी वर्गों का नेतृत्व बहुत जरूरी है, चाहे वो पिछड़ा है, चाहे वो दलित है, चाहे वो महिला है, चाहे वो युवा है, चाहे वो किसान है। तो सभी वर्गों का जब तक नेतृत्व नहीं सामने आता तब तक सभी का विकास एक साथ नहीं हो सकता। तो मुझे

0: बैठ के तो जो पार्टी किसानों का
1: जो गठबंधन है अपने
0: से पहचान रही थी
1: राष्ट्रीय लोकदल अपने मुद्दों से
2: मुझे डिबेट इस तरह से नहीं चलेगी अनुराग जी प्लीज बीच में कोई भी नहीं बोलेगा मुझे मैं फेडेड हूं उसी समय कर दूंगा प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है डॉली शर्मा यूपी कैबिनेट विस्तार कांग्रेस का मतलब क्या स्टैंड है आपके नजरिए में कैबिनेट के इस विस्तार को आप कैसे देखते हैं
3: देखिए अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ये काम है कि जब अपनी अपने काम का अकाउंटेबिलिटी या अपने काम पर वो कुछ ना बोल सके तो इस तरीके के हथकंडे लाते हैं आप देखिए किस तरीके से भर्ती घोटाले उत्तर प्रदेश में हुए किस तरीके से किसानों का क्या हाल है मेरी बहन या किसानों की बात कर रही है भुगतान की जरा एक बार डेटा खोल के देख लें एनसीआरबी के डेटा ने बताया कि महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर एक पर है जो एनसीआरबी के डेटा अभी हाल फिलहाल में जारी किए गए हैं आज हर तरीके से उत्तर प्रदेश अपराध प्रदेश बन चुका है कहीं आप देखिए इतने बड़े बड़े महिलाओं के साथ उत्पीड़न और अत्याचार और बलात्कार के मामले सामने आए हैं हमने ये देखा है कि महिलाओं की सुनवाई की जगह अपराधियों को बेल मिल रही है ये कौन से तरीके आप जाति धर्म इन्हीं सब चीजों में देश को बांटते रहे आप ना रोजगार की बात करते हैं ना महिला सम्मान की बात करते हैं ना किसान की बात करते हैं जब आपको दिखता है कि हाँ ये तो सर फुटवल की बारी आ रही है अब तो जवाबदेही की बारी आ रही है तो ओहो अब नया क्या लाए अब नया ये ले आए क्योंकि नौकरी ये देंगे नहीं महिला सम्मान ये देंगे नहीं किसानों को कुछ देंगे नहीं और इस तरीके के काम कर बस मुंह छुपाने का काम ये करेंगे बचने का काम ये करेंगे अभी आप देखिए ना एक पैनलिस्ट ने कहा इस जाति का व्यक्ति आ गया है इस जाति का व्यक्ति आ गया है इस जाति का व्यक्ति आ गया है तो क्या आप उसी जाति के व्यक्ति को नौकरी दोगे जो आपकी पार्टी को सपोर्ट करेगा या वोट करेगा या उसी धर्म के बच्चों को नौकरियां मिलेंगी या उसी धर्म की महिलाओं को सम्मान मिलेंगी जब आप कहते हो सबका साथ सबका विकास तो सबका साथ सबका विकास में कौन सी जातियां आती है कौन सा धर्म आता है ये भी प्रधानमंत्री जी अपने नारे के साथ जरा उल्लेख कर दिया करें
2: ठीक है
3: क्योंकि ये जो बार बार कहते हैं सबका साथ सबका विकास वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है ये जाति और धर्म की बात करते हैं कभी किसी चुनाव के बाद बोलते हैं कांग्रेस ने इतने मुसलमानों को टिकट दिए समाजवादी ने इतने मुसलमानों को टिकट दिए अरे तो फिर आप सबका साथ सबका विकास कहना छोड़ दो यही कहो कि इसी का विकास होगा लेकिन उनका भी तो विकास नहीं हो रहा कल बिहार में जो लठ और डंडे पड़ रहे थे बच्चों पे जो नौकरियां मांग रहे थे वो किसी एक जात और धर्म के नहीं थे बिहार में इनकी सरकार है इनके मुख्यमंत्री है लेकिन हर जात और हर धर्म के बच्चे पर डंडे पड़े जब कल उन्होंने नौकरियां मांगी यही उत्तर प्रदेश का हाल है आज किसान आंदोलन में जितने भी लोगों की शहादत हुई आप बताइए अभी इन्होंने चौधरी चरण सिंह जी की बात की बहुत ही सम्मानित और उच्च कोटि के नेता थे हम तो उनके बारे में बोलने लायक भी नहीं हमारा वो कद भी नहीं है लेकिन 750 किसानों की शहादत पर जिस पार्टी के साथ आज ये मिलकर खड़े हो गए क्या उन्होंने शोक जताना जरूरी समझा क्या उन्होंने ये जरूरी समझा कि किसान इस देश का हिस्सा कीले बिछा दी उस किसान के लिए जो किसान अपने हक के लिए दिल्ली जाना चाह रहा था
2: 20 सेकंड में निशा जी रिएक्शन पे मैं राजेश जी के पास जाऊंगा
4: ऐसा है अभी एक बहन जी ने कहा कि भाई किसानों के ऊपर बात पहली बात अगर पक्ष में नहीं थे तब भी विपक्ष में खड़े होकर भाई सिर्फ किसानों के लिए लाठियां खाई और जब सरकार में आए तो सबसे पहले किसानों के मुद्दों की बात की यही आज कारण है कि आज किसानों के अगर सांसद निधि जाती है जो पीएम योजना से जाती है वो आप देखिए सीधा किसानों के खाते में जाती है जिसमें आप जैसे जो सरकारों में पिछली सरकारों में होते थे बिचालियों के पास चला गया और किसान को कुछ नहीं मिला दूसरी बात आज पश्चिमी यूपी में सबसे बड़ा मुद्दा था किसानों का गन्ने का भुगतान आज पहले आंकड़े निकाल लीजिए कि किसानों के गन्ने का भुगतान पिछली सरकारों के मुकाबले जो इस सरकार में हुआ वो कितना गुना ज्यादा हुआ है और आज भी राष्ट्रीय लोकदल सिर्फ किसानों के मुद्दों पर बात करती है यही कारण है कि चाहे वो सिंचाई के मुद्दे हों ये जरूर है कि किसानों के लेकर के जरूरी नहीं है आज ही सभी मुद्दे सुलझ जाएंगे लेकिन हम किसानों के प्रति हमेशा समर्पित थे हैं और रहेंगे
2: राजेश जी के पास राजेश जी कांग्रेस पार्टी भी ये कह रही है कि ये कैबिनेट के विस्तार आपने सिर्फ और सिर्फ बचने के लिए किया है अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए किया है
5: देखिए राजीव जी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रही थी वो मैं सुन रहा था और बड़ी चरण सिंह जी की चौधरी चरण सिंह जी हमारे श्रद्धेय बहुत ही सम्मानीय नेता हुए हैं उनकी प्रशंसा कर रही थी तो कितनी दोगली पंती की पराकाष्ठा है उन्हीं चौधरी चरण सिंह जी को इसी कांग्रेस ने देश के प्रधानमंत्री पद से हटाने का काम किया था इतने अच्छे थे तो क्यों हटाया था इसका मतलब आपकी नीतियां खराब थी चौधरी साहब तो अच्छे थे आपकी नीतियां खराब थी और दूसरी बात

0: आज गन्ना मूल्य की ये बात कर रहे हैं, 3,04,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है, रिकॉर्ड है वो अब तक का देश की आजादी में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में अब तक नहीं हुआ। 400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से हम लोग गन्ना मूल्य का भुगतान कर रहे हैं, और इसी समाजवादी पार्टी की सरकार में लगभग 250 रुपए था उसी गन्ना का, 250 से कहां ले गए हम 400। आप किसान हितैषी हो या भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार किसान हितैषी है, ये तो परिणाम सामने है भाई। और जहां तक कांग्रेस की प्रवक्ता महिलाओं पर अपराध की बात कर रही थी, 37% कम हुआ है 2017 से, और अब जब जब जब आपके प्रिय समाजवादी पार्टी की सरकार में महिलाओं के अपराध होते थे, 37% गिरावट आई है एनआरसी के वो आंकड़े हैं ये। और जहां तक हिंदुओं की बात, हिंदुओं मेरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, मैं इंतजार कर रहा था
1: एनसीआर
0: जो भी बोल रहा हूँ सुनिए, जो बोलिए जनता सुनिए, हाँ जो बोल रहा हूँ ठीक
1: है।
0: अरे अरे पढ़े लिखे और समाजवादी पार्टी हिंदुओं की बात कर रही थी, सनातन की बात कर रही थी, अरे शर्म करिए, आपने राम भक्तों पर बर्बरतापूर्वक गोलियां चलाई, निर्दोष राम भक्तों का नरसंहार करने वाले अपराधी यदि कोई है वो समाजवादी पार्टी के ही लोग है। आप हिंदुओं की सनातन की बात,
2: ठीक है ठीक है, ओके आपकी बात आगे। अनुराग सवाल आपसे, विपक्ष आलोचना क्यों कर रहा है? अगर सत्ता पक्ष एक मजबूत राजनीतिक संदेश दे रहा है, वो प्रतिनिधित्व दे रहा है, इसमें कहीं से भी परेशानी की वजह क्या है?
1: देखिए सबसे पहले तो उनको ये बता दूं किसानों के मैं कि एमएसपी की गारंटी आपने अभी तक नहीं दी, जो एमएसपी की गारंटी के लिए किसान हमेशा परेशान रहता है, जो आप नहीं दे पाए, एक बात। दूसरी बात, महिला अपराध में एनसीआरबी का डाटा है, एनसीआरबी अब लिख लीजिए, एनसीआरबी बोलते हैं, एनसीआरबी का डाटा है कि उत्तर प्रदेश महिलाओं के अपराध में नंबर वन है, सुन लीजिए, 65,022 से 23-24 के डाटा एनसीआर में होंगे तो 65,000।
2: नहीं राजेश जी, आपका टर्न आएगा ना तब बोलेंगे, प्लीज अपने अपने टर्न पर बोलिए,
1: अपने अपने टर्न पर बोल लीजिए, मैं अपनी बात कह रहा हूं, आपको सुना मैंने, मैंने कहा एनसीआरबी ये बोलना सीख लीजिए, एनसीआरबी का डाटा है कि 2022-23 में महिला अपराध में उत्तर प्रदेश में 65,000 मामले दर्ज हुए, और अगर दलित पे जाओगे तो उत्तर प्रदेश नंबर वन है भाई, तो आप महिलाओं के अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर वन है, आप कह रहे उत्तर प्रदेश में अपराध घटा है, तो कमाल की बात कर रहे हैं आप, तो उत्तर प्रदेश तो महिला अपराध में तो नंबर वन मैंने आपको बता ही दिया। दूसरी बात, आप कभी भी उत्तर प्रदेश के विकास की बात नहीं करते हो, जब भी आप बात करते हो उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश को आप 25-30 साल पीछे ले जाते हो, 30 साल पीछे की घटनाओं को आज उजागर बोल के आज की बात को दबाना चाहते हो, आप ये नहीं बताना चाहते हो आपने कितना रोजगार दिया उत्तर प्रदेश में, आप ये नहीं बताना चाहते हो पर कैपिटल इनकम कितनी बढ़ाई, आप ये नहीं बताना चाहते हो कि महिलाओं पर अत्याचार कितने कम किए, आप ये नहीं बताना चाहते हो इंडस्ट्री आपने कितनी लगाई, आप ये नहीं बताना चाहते हो किसान की इनकम कितनी आपने यहाँ पे किसान की इनकम बढ़ा दी, आप ये नहीं बताना चाहते हो कितनी इंडस्ट्री आपने लगाई, आप ये नहीं बताना चाहते हो आपने कितने हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेज बनाए, आप ये नहीं बताना चाहते हो आपने कितने यहां यूनिवर्सिटीज बनाई, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूं, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश 10 साल से आपकी सरकार है, एक वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटी आप नहीं बना पाए, जहां देश विदेश से लोग आके बच्चे पढ़ते उत्तर प्रदेश के अंदर में, हमने जो काम किया था डंकी की चोट पे बताते हैं कि हमने एक्सप्रेस वे बनाया, हमने मेडिकल कॉलेजेस बनाए, हमने मेट्रो बनाई, हमने रिवर फ्रंट बनाया, हमने इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया जहां पे रोज मैच देखते हैं, और सोचो इंटरनेशनल स्टेडियम में पूरे वर्ल्ड क्लास के मैच हो रहे हैं, एक मिनट, और जिस तरह से हमने यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, तो आप सोचो हमने तो विकास और जो बच्चों को हमने लैपटॉप दिया था, आज बच्चे कहां से कहां पहुंच गए, और सोचिए हमने पार्क बनाए जहां लोग लाखों लोग सुबह टहलने जाते हैं, जनसुमिस पार्क हो चाहे लोहिया पार्क हो, आप तो जानते हो, आप खुद ही टहलने जाते होगे, अगर आप बोल दो नहीं टहलने जाते, बोल दो आप नहीं टहलने जाते हो आप उस पार्क में, मैं मान जाऊंगा आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने आपको टहलते हुए देखा है, क्या आप टहलने जाते उसी पार्क में जो समाजवादियों ने बनाया, जनसुमिस पार्क किया लोहिया पार्क, तो आपने कौन सा ऐसा बनाया जहां पे हम लोग टहलने जाएं, जहां पे हम कुछ करने जाएं,
0: जवाब दूंगा, अरे गंगा एक्सप्रेस है किसने बनाया है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे किसने बनाया है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे किसने बनाया है,
1: समाजवादी
0: 100% हर गांव में बिजली पहुंचाने, सुनिए ना भाई, बीच में नहीं बोला अनुराग जी,
1: याद दिला दे
0: आवाज है मेरी, आपसे तेज आवाज है मेरी, मैं बहुत अच्छा बोलना जानता हूँ, किसान का बेटा हूँ,
1: एनसीआर भी बोलना ठीक लो, किसान के बेटे हो, एनसीआर भी बोलनी पा रहे हो, किसान का बेटा तो मैं भी हूँ, मुझे क्या किसान का बेटा सिखा रहे हो, मैं किसान का बेटा हूँ, एनसीआर का डाटा बोलता हूँ, बड़ा किसान का वोट,
2: उन्होंने बीच में बोला था मैंने रोका वोटों का,
0: आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ,
1: अरे पढ़े लिखे तो एनसीआर भी बोलना तो सीख लो,
0: जनता बार बार आपको नकार दे रही है, सीख लो जरा जनता से बात करना भाई, है
2: सवाल सवाल पर आइए कि भाई आप 27 की तैयारियां तो कर रहे हैं लेकिन काम वो कह रहे हैं काम नहीं किया आपने,
0: मैं वही तो बता रहा हूँ साहब, हर हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम हमने किया, हर गांव को सड़क से जोड़ने का काम हमने किया है, कोई नगला मजरा पुरवा कोई नहीं बचा होगा जो रोड से जोड़ने का काम नहीं किया हो, हर घर में बिजली का बल्ब जलाने का काम हमने किया है, और आज उत्तर प्रदेश सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य है, उत्तर प्रदेश के इस कोने से उस कोने तक आप 5 से 6 घंटे में जा सकते हैं, सहारनपुर से जाना होगा आपको कहां प्रयागराज तो कितनी जल्दी जा सकते हो, गंगा एक्सप्रेसवे भी शुरू हुआ है भाई, इनको नजर नहीं आएगा, ये तो गुंडागर्दी करते थे, अराजकता करते थे, लूट करते थे, अपहरण उद्योग चलाते थे, आज एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जीवर के अंदर शुरू हुआ है, 15 तारीख को आइएगा बिठाऊंगा फ्लाइट में, आइएगा देखिएगा मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बगल में, आइएगा जरा 10 सेकंड जवाब आपको।
1: अच्छा भारतीय जनता पार्टी कितनी आसानी से झूठ बोल रही, कह रहे हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल दिया, अरे प्रभु मेडिकल हॉस्पिटल था उसको आपने, मेडिकल हॉस्पिटल को आपने कॉलेज में कन्वर्ट करने की कोशिश की है, आपने नहीं किया है, वो मेडिकल हॉस्पिटल पहले से ही है, हर जिले में यूनिवर्सिटी का नाम बता दो, डॉली शर्मा जो वर्ल्ड क्लास,
2: अनुराग जी, अनुराग जी, नहीं नहीं ऐसे नहीं, डॉली शर्मा के पास, डॉली शर्मा बीजेपी कह रही है कि हम काम भी कर रहे हैं, हम जातियों को सम्मान भी कर रहे हैं, ऑपोजिशन के पेट में दर्द क्यों हो रहा है?
3: अच्छा मैं जरा सा थोड़ा 2-4 आंकड़े आपको बताऊंगी, हाँ, फिर उसका जवाब ये दे दे। एनसीआरबी की 2024 की रिपोर्ट जो 2026 में जारी हुई है और वो भाजपा के सारे दावों की पोल खोलती है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ 66,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए जो देश में सबसे ज्यादा है, रेप के 3200+ मामले दर्ज हुए हैं। एनसीआरबी के अनुसार यूपी अब तक महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उसमें सबसे ऊपर जो राज्य है उनमें है, ये कुछ भी बोलते रहे उससे क्या हो रहा है। इन्होंने एयरपोर्ट की बात करी, मेरे भाई मुझे बता दीजिए जितने एयरपोर्ट मोदी जी ने इनॉग्रेशन करे फीते खाटे कितने चालू हैं, अभी हम एक रिपोर्ट देख रहे थे पीछे 7 एयरपोर्ट बंद हो चुके हैं, 7 एयरपोर्ट, आप रोज खोलिए रोज बंद कर दीजिए, रोज जनता का पैसा इस्तेमाल करिए, रोज शहरों के नाम बदलिए, जनता का पैसा इस्तेमाल करिए, लेकिन जनता को राहत कुछ मत दीजिए, कुछ भी मत दीजिए, रोज आप रोज ये जो सड़कों की बात करें आ जाइए, मैं गाजियाबाद की सड़कों के हाल बता देती हूँ आपको, गाजियाबाद में दिल्ली से बागपत से देहरादून जाने वाली सड़क जरा हाल देख लीजिए, रोज रो रहे हैं लोग, मेरे ही क्षेत्र में जहां से मैं लोकसभा लड़ी हूँ लोनी दुनिया के सबसे प्रदूषित जगहों में आया, उत्तर प्रदेश में है वो, आप बता दीजिए उस सड़क का क्या हाल है, उस जिले का क्या हाल है, वो छोटी सी जगह का क्या हाल है, आप सड़कों की बात ना करें, मैं यहाँ पर खोल कर तस्वीर आपको दिखा दूंगी, अभी कोई बड़ी बात नहीं है, तो झूठ आपके नेता ने सिखाया ना आपको, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, उतना झूठ बोलो जब तक वो सच ना लगने लगे, तो आपका वही हाल है यहाँ आज उत्तर प्रदेश में, आपके आंकड़े आपके दावे सबके सब वैसे ही जुमले, 15 लाख का जुमला जैसे 2 करोड़ नौकरी का जुमला।
2: ठीक है, 20 सेकंड में राजेश जवाब दीजिए, फिर निशा जी।
0: देखिए कांग्रेस की प्रवक्ता, मुझे तो बड़ी विद्वान हमारी बहन नजर आ रही है, कितना झूठ बोल रही है, ये जो है एनसीआरबी के आंकड़े दिखा रहा हूँ, 25%, देखिए फोकस करिए, 25% राष्ट्रीय औसत, सुनिए ना बहन जी, अरे बहन जी सुनिए, 25% कमी आई है जो राष्ट्रीय औसत है अपराध का, यूपी में 25% कम है, 25%
1: एनसीआरबी का डाटा दिखा रहे हो क्या, एनसीआरबी का डाटा दिखा रहे हो,
0: एनसीआरबी का ही आंकड़ा दिखा रहे हो भाई, देखिए पढ़े लिखे हो तो देख लो भाई, ये देखिए ये देख पढ़ लीजिए, फोकस कर दीजिए इसको, 25% कम है उत्तर प्रदेश में देश से, देश के अन्य राज्यों में।
2: देखिए राजेश जी आपके काम को सबसे बढ़िया से आंक सकते हैं जो आपके साथ गठबंधन में हमारे साथ निशा चौधरी हैं स्टूडियो में, मतलब ऑपोजिशन कह रहे हैं कि भाई एनसीआरबी का डेटा है उसमें महिला,
4: एक तो पहली बात क्लियर कर दूं, बहन डोली शर्मा जी ने कहा कि शरदे चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान, अगर ये बात आज आपको समझ आती है तो 50 वर्ष के शासनकाल में भारत रत्न अपने परिवार वालों को दे दिया, कौन उनको देना याद नहीं आया? सबसे ज्यादा डिजर्विंग थे शायद हिंदुस्तान के, अगर कोई इंसान सबसे ज्यादा डिजर्विंग रहे हैं किसानों के मसीहा, उससे बड़ा और कोई भी नेता आज के टाइम पे किसानों का आप कह नहीं सकते। तो उनको भारत रत्न देना उस समय याद नहीं आया, वो सम्मान देना। और रही बात अभी आंकड़ों की, तो मैं तो राजीव जी इसको दूसरे तरीके से पकड़ती हूँ। ये कान इस तरीके से पकड़ा गया कि आज ये आंकड़े ये कहते हैं कि इतने अपराध हुए। आप इसको ये देखिए कि आपकी सरकारों पे इतना भी हक नहीं था, इतनी भी हिम्मत नहीं थी किसी की वो जाकर के रिपोर्ट दर्ज करा दें। आप सोचिए आज ही आंकड़े, कम से कम आज लोग अगर कुछ अत्याचार होता है तो रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए हिम्मत रखते हैं, चले जाते हैं, प्रशासन उस पर काम करता है। आपकी सरकारों में ऐसा हुआ कि वो थाने तक जाने की हिम्मत नहीं करते थे, उनको थाने तक जाने की इजाजत नहीं थी, उनके कोई सुनवाई नहीं होती थी, इसीलिए वो आंकड़े तो तब सामने आएंगे जब सच्चाई सामने हो, जब उनके ऊपर प्रशासन ने कोई मार दिया हो, जब
2: डॉली शर्मा आपको पूरा समय दूंगा,
4: आप बताइए राजीव जी, जब जब जब किसी की सुनवाई नहीं होगी तो वो आंकड़े कैसे आएंगे? एनसीआरबी के आंकड़ों में कैसे वो साबित होगा कि पहले कम थे या ज्यादा? जब आप थाने में जाकर के उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हो, किसी गरीब की सुनवाई नहीं थी, किसान की सुनवाई नहीं थी, किसी महिला की सुनवाई नहीं थी, अत्याचार होते थे तो उनको थाने से भगा दिया जाता था, कहाँ उनकी सुनवाई थी? आप बताइए कैसे कैसे अत्याचार हुए, कैसा प्रशासन था पहले, क्या महिलाओं को शाम को दिन छिपने के बाद लोग कहते थे बहन बेटी तो छोड़िए, पुरुषों को भी बाहर जाने से डरते थे लोग, ये भय था उत्तर प्रदेश में, और नहीं था तो आप बता दीजिए।
2: ठीक, एक एक एक एक एक करके बोलिए,
4: उत्तर प्रदेश में और दूसरी बात
2: सबको पर्याप्त समय दूंगा मैं बोलने के लिए।
1: भारतीय जनता पार्टी के जो वक्तव्य उसको सुन के बस एक ही शेर याद आता है, फाइलों में गांव का रंग गुलाबी है। इनके हिसाब से फाइलों में गांव का रंग गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं या दावे किताबी हैं। ये आप जो ऐसा बता रहे हो कि चारों तरफ विकास की गंगा बह गई है, अरे कभी घर से निकल के देखो तो सही रोड पे क्या हाल है। मैं बताता हूँ,
2: एनसीआरबी का आंकड़ा तो आप ही बता रहे हैं,
1: एनसीआरबी का तो मैंने बताया, तो वो हम एनसीआरबी का डाटा हमने बताया था, वो एनसीआर का डाटा बता रहे हैं, फर्क इतना।
2: आप तो पकड़ कर
1: मैं बात बता रहा हूँ, आप पकड़ कर बैठ के बीच में बोला। हाँ ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि घर से निकल के आप देखो तो सही, आपने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की जो बीटेक करने के बाद लड़का या बीए एमए करने के बाद लड़का वो क्या करेगा आखिर? आपने ऐसा कौन सा वहां पे टेक्निकल इंस्टीट्यूट पैदा किया जिससे वो अपने पैरों पे खड़ा हो पाता? अपनी डिग्री लेने के बाद आपने कौन सा ऐसे इंडस्ट्री लेके आए जिससे कि वो रोजगार पा जाता? उसे अपने माँ बाप को छोड़ के दूर नहीं जाना पड़ता, कहीं बेंगलोर भागता है, कहीं बॉम्बे भागता है, कहीं और भागता है, विदेश भागता है। आपने इतना बड़ा उत्तर प्रदेश, इतने बड़े उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, और एक बच्चा अपने माँ बाप के पास नहीं रह सकता, माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता क्योंकि पढ़ा लिखा है, डिग्री है, इंजीनियरिंग की है, उसने मेडिकल किया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी उसके पास रोजगार नहीं है, उसकी माँ सुबह से लेकर शाम तक बस ये फोन का इंतजार करती है कि महीने में एक फोन आ जाए, बेटे से बात हो जाए, क्योंकि बेटा बहुत दूर रहता है, क्योंकि आप उसको रहने लायक आपने उसको बनाया नहीं कि वो अपने उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार पा
2: पाता।
1: जाति के नाम पे राजनीति, कभी नफरत की राजनीति करते रहे, लेकिन आप
0: देश के अन्य राज्यों की तुलना में डकैती में उत्तर प्रदेश का 26वां स्थान है, लूट में 16वां स्थान है, हत्या में 22वां स्थान है, बलात्कार में 22वां स्थान है, महिलाओं पर अपराध में 36वां स्थान है। अरे भाई क्यों झूठ बोलते हो आप?
1: और जहाँ तक
0: समाजवादी पार्टी
1: के एनसीआरबी का डाटा मैंने बोला है,
0: कहां से बोल रहे हो आप?
1: एनसीआरबी के डाटा में दलितों के अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर वन है, 14,000 केसेस हैं, आपको शायद पता नहीं 2022-23
2: मेरे पास समय बहुत कम है, सबका आखिरी कमेंट।
0: और जहां तक ये रोजगार की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के शासन में नकल होती थी धुआंधार, वो 10वीं पास करेगा 12वीं पास करेगा या तो उसको पुलिस में नाजायज तरीके से भर्ती कर देते थे, पैसा लेकर के चाचा भतीजा बाबा ताऊ सब भर्ती करते थे, दुकान खोल रखी थी भर्ती में, नहीं तो तमंचा लहरा करके चौथ वसूलता था व्यापारियों से।
2: राजेश जी लेकिन आप भी तो
0: तमंचा लहरा करके चौथ वसूलने का काम करता था समाजवादी पार्टी के नेताओं के संरक्षण में। आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक अपराध ही अपराध नहीं कर सकता है,
1: उसके बाद विधायक का बेटा महिला को
2: छेड़ता
0: अपराध का।
2: ठीक है, डॉली शर्मा उनका फ्रेंड
5: जी
2: हाँ बोलिए।
3: देखिए कैबिनेट कैबिनेट बदलती है जनता की तकदीर नहीं, मंत्री बदले लेकिन यूपी के हालात नहीं, ये सच्चाई है। चाहे नौकरी की बात कह लो, महिलाओं की बात कह लो, सड़कों की बात कह लो, आज पुल बनते हैं कल गिर जाते हैं, किसी भी आप पॉइंट पर चेक कर लीजिए, आज यही है कि मंत्री बदले लेकिन हालात नहीं यूपी के, यही असली है।
2: ठीक है निशा चौधरी।
4: राजीव जी, राष्ट्रीय लोकदल ने हमेशा ही, चाहे वो किसान हो, युवा हो, गरीब हो, सभी के मुद्दों को आगे उठाने की हमेशा प्रयास किए हैं। आज इस सरकार में भी उसी पे हमारा प्रोसेस चालू है। और दूसरी बात, कोई भी चीज एक ही दिन में सुधरती नहीं है, लेकिन उस सुधार की तरफ इस सरकार के पूरे प्रयास हैं। आज अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो अब दंगे माफिया इनकी राजनीति से हटकर उत्तर प्रदेश टोटल विकास और निवेश की तरफ बढ़ा है, और आज वो जनता को दिखाई भी दे रहा है। यही कारण है कि आज जनता जनार्दन एनडीए को फिर से लाने का प्रयास है।
2: इस जो कैबिनेट विस्तार हुआ उसका इंपैक्ट दिखाई दे,
1: कोई इंपैक्ट दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आप चुनाव का समय में 6 महीने बचे, 6 महीने में तो आप खाली एक जनता, आपने कहना नेता को तो खुश कर सकते हो, लेकिन जनता के लिए 6 महीने में आप डिलीवर क्या कर पाओगे? आप जनता के लिए ना आप कोई ऐसा काम कर पाओगे जिससे जनता का भला हो? जनता का भला नहीं कर रहे हैं, ये परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता ने मन बनाने
2: का समय बड़ा कम दिया आपने।
1: रास्ता दिखाएगी, आप मंत्री भी 60 हो गए, देखिए सरकार में 60 में रिटायरमेंट होता है, ये भी आप अगले साल रिटायर हो
0: जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एनडीए का लक्ष्य है कानून व्यवस्था का राज स्थापित हो। उत्तर प्रदेश एक मॉडल बना है कानून के मामले में पूरे देश के अंदर, और सुख शांति से लोग रहे, लोगों को रोजगार मिले, उद्योग धंधे उत्तर प्रदेश के अंदर।
2: माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है, समय इतनी ही इजाजत दे रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार हो गया है, राजनीतिक विश्लेषक इसे 27 की दृष्टि से देख रहे हैं, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा 27 में पता चलेगा। दंगल में छोटे से ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
3: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
4: Hint, bade aaram se.
3: Cool, stylish fans. Enhance home decor with beautiful fans.
5: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
6: Samakul Cooler, hawa aisi chode, puri family ko thandak se jode. Samakul Cooler, life banaye wonderful.
7: Vimal, bolo zuban kesri.
8: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।
9: अभी तमिलनाडु में ही देखिए, 25-30 साल से कांग्रेस का DMK के साथ घनिष्ठ संबंध था। DMK के साथ गठबंधन ने कितनी ही बार कांग्रेस को संकटों से बाहर निकाला और 2014 के पहले 10 साल उनकी जो सरकार थी वो भी DMK के कारण टिकी थी। लेकिन क्या हुआ, जिस DMK के साथ 25-30 साल का जीने मरने का नाता था, हर पल जो DMK कांग्रेस की भलाई के लिए काम करती थी, लेकिन जैसे ही सत्ता का खेल कहीं और मुड़ गया तो सत्ता के लालच में सत्ता भूखी कांग्रेस ने पहला मौका मिलते ही DMK की पीठ में छुरा भोंक दिया।
10: हमारे पीछे इमाम खुमैनी का मजार है। 28 साल पहले जब वो गुजर गए थे तो यहाँ पर 3 दिन का मॉर्निंग था जहाँ पर लोग अलग अलग जगह से ईरान के आए और उनको अपने रिस्पेक्ट्स पे किया। लेकिन अब 40 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और सुप्रीम लीडर अली खमेनाई का जो फ्यूनरल है, जो अंतिम संस्कार है, वो अभी भी होना बाकी है। जब होगा तो वो यहीं पे लाए जाएंगे और यहीं पे उन्हें दफनाया जाएगा, इमाम खुमैनी मज़ार में। और तब भी आप देखना, ये पूरी जगह जो है लोगों से भर जाएगी। ईरान के हर कोने से लोग आएंगे। जब इमाम खुमैनी को पहले रखा गया था, 3 दिन मुसल्ला में रखा गया था उनके बॉडी को, फिर हेलीकॉप्टर से यहाँ पर लेके आया था आए थे वो लोग। उसी तरीके से जो फ्यूनरल सुप्रीम लीडर खमेनाई का होगा वो भी वैसे ही होगा। और वैसे ही आप देखेंगे पूरा तेहरान लोगों से भर जाएगा। लेकिन इतने दिन इसलिए लगे क्योंकि सिक्योरिटी सिचुएशन आज ठीक नहीं है और अभी भी ऐसा माहौल नहीं बना है कि उनके फ्यूनरल को किया जाए और लोग इतने तादाद में एक जगह जमा हो पाए। कैमरा पर्सन सत्य राउत्रे के साथ तेहरान से गीता मोहन, आज तक।

0: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
1: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
2: Want to work in AI, software, or systems design? WGU's computer science degree teaches the fundamentals behind it all, plus the real-world skills to build what's next. Get started at WGU.edu.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
6: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
7: लखनऊ में 6 नए मंत्रियों के साथ 2 मंत्रियों का प्रमोशन हुआ। इस तरह योगी सरकार में 8 मंत्रियों ने शपथ ली। यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट विस्तार में जगह दी गई है। पश्चिमी यूपी का अहम जाट चेहरा है भूपेंद्र चौधरी। रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे योगी सरकार में मंत्री बन गए हैं। यूपी में मनोज पांडे बड़े ब्राह्मण चेहरों में से एक है। 2024 में समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर मनोज पांडे योगी सरकार में शामिल हुए थे।
8: मैं कृष्णा पासवान ईश्वर।
7: यूपी की खागा सीट से कृष्णा पासवान मंत्री बने। चौथी बार की विधायक कृष्णा पासवान पासी समुदाय की नेता है। लोधी समुदाय से आने वाले कैलाश राजपूत को भी मंत्री बनाया गया है। कन्नौज के तिरवा से बीजेपी विधायक कैलाश राजपूत की ओबीसी में अच्छी पकड़ है।
9: सुरेंद्र दिलेर।
7: अलीगढ़ की खैर सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर को भी मंत्री बनाया गया है। एससी समुदाय के बड़े नेता हैं सुरेंद्र दिलेर। यूपी विधान परिषद के सदस्य हंसराज विश्वकर्मा भी मंत्री बन गए हैं। पिछड़े समाज के नेता के रूप में हंसराज विश्वकर्मा की धमक है। योगी सरकार ने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए यूपी की सियासत बदल दी है। ब्राह्मण प्लस ओबीसी प्लस दलित, यानी एक ब्राह्मण 2 दलित 5 ओबीसी, यानी एक तीर से कई निशाने। राजनीति में कुर्सियां सिर्फ नेताओं को नहीं मिलती, उनके पीछे खड़े समाज को संदेश मिलता है। इसी को ध्यान में रखकर योगी मंत्रिमंडल के विस्तार से बीजेपी ने भविष्य की सत्ता की रणनीति बनाई है। फोकस 2027 विधानसभा चुनाव, टारगेट ओबीसी प्लस दलित प्लस ब्राह्मण, इनमें सवर्ण भी शामिल है। पश्चिमी यूपी को प्रतिनिधित्व मिला है। पूर्वांचल में विशेष फोकस किया गया है। महिला चेहरा को शामिल किया गया है। समाजवादी पार्टी के बागियों को साधा गया है। पीडीए फॉर्मूले की काट का प्लान बनाया गया है। गैर यादव ओबीसी पर नजर रखी गई है। गैर जाटव दलित वोट साधने की कोशिश हुई है। बूथ से लेकर बिरादरी तक पकड़ बनाने की कोशिश हुई है। यूपी में पश्चिम से पूर्वांचल तक योगी का बैलेंस गेम दिखता है। गुर्जर, पाल, पिछड़ा, दलित, ब्राह्मण, हर क्षेत्र, हर जाति, हर समीकरण का ध्यान रखा गया है। या यूं कहें कि समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले के जवाब में बीजेपी ने सत्ता का नया सामाजिक गणित सामने रख दिया है। राजनीति सिर्फ सत्ता चलाने की कला नहीं है, समाज के मन को पढ़ने का विज्ञान भी है। और उत्तर प्रदेश में जिसने जाति, क्षेत्र और भावनाओं का संतुलन साध लिया, दिल्ली का रास्ता अक्सर उसी के लिए आसान हो जाता है। 2027 अभी दूर है, लेकिन उसकी आहट लखनऊ के सत्ता गलियारों में आज साफ सुनाई दे रही है। आज तक ब्यूरो।
9: तेज रफ्तार से भागती भारतीय इकोनॉमी के सामने अचानक ब्रेक लगने का खतरा मंडरा रहा है। मिडिल ईस्ट में उठती हलचल का असर यहाँ हर घर की जेब तक पहुँचने लगा है। महंगाई की आहट, खर्च पर लगाम और ग्रोथ की चाल, इन सब ने मिलकर दबाव बढ़ा दिया है। इस संकट के बीच ग्लोबल फाइनेंशियल कंपनियां और रेटिंग एजेंसियां भी भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटा रही है। दरअसल कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें भारत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित हो रही है। इसके अलावा कमजोर मॉनसून की आशंका से खेती और ग्रामीण इलाकों की डिमांड घटने का डर है और महंगाई की वजह से आम आदमी की जेब खाली हो रही है, जिससे मार्केट में खरीदारी कम हुई है। हालांकि इसकी सबसे बड़ी वजह केवल तेल की कीमतों का खेल है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा इम्पोर्ट करता है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने से देश की इम्पोर्ट कॉस्ट में इजाफा होता है, जिससे रुपया कमजोर होता है और कच्चा माल महंगा होने से इंडस्ट्री की लागत बढ़ जाती है। आयातित तेल पर ज्यादा निर्भरता इकोनॉमी को ग्लोबल झटकों के प्रति संवेदनशील बनाती है। वहीं रुपए पर दबाव बढ़ने से कारोबार की लागत बढ़ती है। ऐसे में क्लीन एनर्जी और वैकल्पिक फ्यूल की तरह तेजी से बढ़ना जरूरी हो गया है। डॉलर के मुकाबले कमजोर होता रुपया और बढ़ता व्यापार घाटा एमएसएमई की कमर तोड़ रहा है, खास तौर पर वो फैक्ट्रियां जो ईंधन के लिए नेचुरल गैस का इस्तेमाल करती हैं, उनके लिए काम चलाना घाटे का सौदा बन रहा है। दूसरी चुनौती मॉनसून से जुड़ी हुई है। अगर बारिश उम्मीद से कम रही तो खेती पर असर पड़ेगा, गांवों की कमाई घटेगी और इसका असर शहरों के बाजार तक पहुंचेगा। तीसरी मार महंगाई के जरिए हर घर तक पहुंच रही है, क्योंकि भारत की ग्रोथ में खपत की बड़ी भूमिका है। महंगाई बढ़ने और आमदनी धीमी रहने से लोग खर्च घटाते हैं, जिससे बाजार की डिमांड और बिजनेस एक्टिविटी दोनों ही प्रभावित होते हैं। इन हालात के बीच कुछ राहत की तस्वीर भी सामने आई है। मूडीज रेटिंग से ताजा रिपोर्ट ने भारत की इकोनॉमी को मजबूत बताया है। मूडीज के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क भरोसेमंद और साफ है। वहीं भारत ग्लोबल झटकों को झेलने की बेहतर स्थिति में है और आरबीआई की नीतियों ने महंगाई की उम्मीदों को कंट्रोल में रखा हुआ है। रिपोर्ट में साल 2026 से 2027 में तेज ग्रोथ का भरोसा भी जताया गया है। सरकार ने भी हालात को संभालने के लिए तेल सप्लाई सुरक्षित करने और एनर्जी सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश तेज कर दी है। ग्लोबल उथल पुथल के दौर में भारत के लिए अपने संसाधनों को मजबूत करना ही एकमात्र रास्ता बचा है। विदेशी रेटिंग एजेंसियां भले ही चेतावनी दे रही हैं, लेकिन भारत का मजबूत बैंकिंग सिस्टम और विदेशी मुद्रा भंडार इस लड़ाई में बड़ा हथियार साबित होगा। आज तक ब्यूरो।

0: तो कैबिनेट विस्तार पर आपने देखा दंगल, अब आगे देखिए बहस बाजी का रंजना ओम कश्यप के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
1: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
2: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: यूपी में 2027 का चुनावी समीकरण साधने के लिए योगी कैबिनेट का विस्तार, भूपेंद्र चौधरी मनोज पांडे समेत 6 नए चेहरे, 2 राज्य मंत्री अजीत पाल, सोमेंद्र तोमर को स्वतंत्र प्रभार। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनते ही विजय का पहला फैसला, 200 यूनिट बिजली फ्री, महिला सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स, डीएम के सरकार पर बोला हमला, कहा राज्य पर 10 लाख करोड़ का कर्ज छोड़ा। पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रम में बोले कांग्रेस सत्ता की भूखी, 25 साल तक डीएमके के साथ रहने के बाद दिया धोखा। असम में फिर एक बार हिमंता की सरकार, केंद्रीय पर्यवेक्षक जेपी नड्डा के सामने चुने गए विधायक दल के नेता, 12 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह, पीएम मोदी होंगे शामिल। और केरलम में नए मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस में मंथन, दिल्ली में बैठकों का दौर अभी तक तय नहीं हो सका, सीएम के नाम का फैसला, दौड़ में केसी वेणुगोपाल लागे।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: आप देख रहे हैं बहस बाजीगर आपके साथ, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और यहां पर मौजूद जनता का बहुत बहुत स्वागत है, खासतौर पर इस पक्ष का, क्योंकि इनका ये मानना है कि पश्चिम बंगाल चुनाव हुए तो क्या हुए, टीएमसी हारी तो क्या हारी, हो सकता है आगे वो जीत दर्ज कर ले और विपक्ष फिर से मजबूत खड़ा हो जाए। और वही इधर वाला हिस्सा मानता है कि मोदी को हराना अब विपक्ष के लिए मुश्किल होता चला जा रहा है। तो तालियां अपने लिए बजा लीजिए। आज का विषय अपने दर्शकों को बताते हैं सबसे पहले, क्योंकि 5 राज्यों के चुनावी नतीजों में 3 राज्य भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। वैसे तो चुनाव और चुनावी नतीजों में अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, लेकिन 2014 से चुनाव का एक समीकरण है जो बदल नहीं रहा है और वो चुनाव दर चुनाव असर ला रहा है और वो है मोदी फैक्टर। बीजेपी का विस्तार पिछले 12 वर्षों में लगातार हुआ, बंगाल ही नहीं ओडिशा असम जैसे कई राज्यों में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है और ये सब 2014 के बाद ही हुआ है। पहली बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है आजादी के बाद, पहली बार ओडिशा में बीजेपी की सरकार बनी आजादी के बाद, पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बना 2014 के बाद। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुकाबला करना क्या विपक्ष के लिए मुश्किल हो रहा है, आज इसी पर हम अपनी चर्चा करने वाले हैं। बहस बाजीगर का आज का मोशन है, क्या विपक्ष मोदी से मुकाबला करने में नाकाम रहा है? तो आइए सबसे पहले आपको बता दें, ये नीले गमछे वाले वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि विपक्ष मुकाबला कर रहा है, यही मानते हैं आप लोग, और लाल वाले मानते हैं कि मुकाबला नहीं कर पा रहा है। सफेद वाले लोग क्या मानते हैं? होगा तब तो इधर वाले चले जाइए। लिबरल क्या होता है? लिबरल न्यूट्रल क्या होता है? मतलब मैं समझना चाह रही हूं, चलिए माइक लेके कौन आएगा मुझे समझाइए, न्यूट्रल क्या होता है आइए बताइए। मतलब मोदी से मुकाबला कर भी रहा है नहीं भी कर रहा है?
1: ऑपोजिशन को लीडरशिप की जरूरत है, नई लीडरशिप की जरूरत है। ऐसा नहीं है हमारे पास ऑपोजिशन नहीं है। साउथ की स्टेट्स में बीजेपी नहीं टैप कर पाई है। ये क्योंकि वहां पे स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन अभी भी है अलाइव, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमें आई थिंक, मैं राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी की रिस्पेक्ट में बोलूंगा, दे नीड अ चेंज इन देयर लीडरशिप बिकॉज इलेक्शंस 2014।
0: आप लोग के लिए न्यूट्रलिटी का ये मतलब है? जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी आओ फटाफट।
2: कॉन्ट्राडिक्शन है, वो कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि अगर लोकतंत्र खतरे में है तो वोट तो जनता ही दे रही है बीजेपी को, तुम कैसे कह सकते हैं लोकतंत्र खतरे में है? और दूसरी तरफ ये कि जो मानते हैं कि अपोजिशन बहुत स्ट्रांग है, तो हम थोड़ा कंफ्यूजन में है कि हम दोनों चीजें मानते हैं कि जनता वोट भी दे रही है, लोकतंत्र खतरे में नहीं भी है और कहीं ना कहीं है भी।
0: चलिए ताली बजा दीजिए, पता नहीं कितने लोगों को समझ में आया, लेकिन न्यूट्रल होना भी अपने आप में एक पोजीशन तो है ही देश में, और अभी भी नोटा का ऑप्शन तो रहता ही है वोटर्स के पास। तो चलिए मंच पर तालियों के साथ स्वागत करते हैं अपने पहले तीनों जजेस का। तो आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं अपने तीनों जजेस का। विजय त्रिवेदी पत्रकार हैं, हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। कमलेश किशोर और विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लंबे वक्त तक बीजेपी को कवर किया है विजय त्रिवेदी ने। विनोद अग्निहोत्री भी बड़े पुराने पत्रकार हैं, मजे हुए। और तीन ताल के ताऊ कमलेश किशोर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आइए। और अब बारी है अपने पहले दो कंटेस्टेंट्स को बुलाने की, जिनको आप टीम लीडर्स भी कह सकते हैं, दो दो साथी उनको मिलेंगे, दो टीमें होंगी, दो दो मिनट का टाइम मिलेगा। सबसे पहले दो वक्ताओं को बुलाते हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए आलोक शर्मा, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, अपनी पार्टी की बात को दमदार तरीके से रखते हैं। और प्रेम शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अभी इन दोनों के बीच स्कोर कार्ड चल रहा है 3-1 का। शुक्ला जी 3 राज्यों में आए हैं अपनी सरकार लेके, और उधर यूडीएफ, कांग्रेस लेड यूडीएफ केरलम में आई है, तो एक उधर का भी है। तो थोड़े आलोक जी थोड़े से ठीक ठाक लग रहे हैं मूड में आज, चलो एक तो हमारी झोली में आया है। लेकिन बंगाल का जाना क्या मायने रखता है, और ये सवाल भी कितना मायने रखता है कि क्या विपक्ष मोदी से मुकाबला करने में नाकाम रहा है। आइए आप अपने अगले दो वक्ताओं को बुलाते हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए अरविंद वाजपेयी, एनडीए की तरफ से आ रहे हैं, प्रवक्ता है ये आरएलएम के, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आइए। और आ रहे हैं मृत्युंजय तिवारी जी, प्रवक्ता आरजेडी के, बहुत बहुत स्वागत है। सम्राट चौधरी सरकार बना लिए, कैबिनेट विस्तार हो गया, तो अच्छा कि आपको टाइम मिला है, फ्री रहते होंगे आजकल। चलिए अगले दो वक्ताओं को बुलाते हैं। मलुक नागर जी पूरे जोश के साथ आ रहे हैं भाई, स्वागत कीजिए इनका। राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए, तो दोनों ही टीमें जल्दी जल्दी अपनी जगह ले चुकी हैं। तो आज का मोशन है, क्या विपक्ष मोदी से मुकाबला करने में नाकाम रहा है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। पक्ष में बोलने के लिए दो मिनट का समय मिलेगा, विपक्ष में बोलने का, लेकिन आप लोगों के पास ऑप्शन है। अगर इन लोगों को सुनने के बाद आप में से किसी का भी मन बदलता है तो आप सफेद या नीला गमछा ले सकते हैं। आपके पास दोनों रास्ते खुले हैं, सफेद वालों के पास और ब्लू वालों के पास, सफेद और लाल का रास्ता खुला हुआ है। बीच बीच में हम आपको मौका देंगे। तालियों के साथ पहले दो गेस्ट प्रेम शुक्ला और आलोक शर्मा, दोनों को आमंत्रित करते हैं कि आप अपनी अपनी टीम की तरफ से मूड को सेट कीजिए। ओपनिंग बल्लेबाज अपनी अपनी जगह ले लें, पैड हेलमेट सब लगा लें और दो मिनट में आपको बल्लेबाजी का 2 मिनट का ही समय मिलेगा। जितना आपको चौका छक्का मारना है उसी में शुक्ला जी मारना है। आपका 2 मिनट का समय इस विषय पर बोलने का शुरू होता है अब।
3: आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय 1980 में अरब सागर के किनारे बैठकर वक्तव्य दिया था तो कहा था कि एक दिन भारतीय जनता पार्टी का शासन अरब सागर से लेकर गंगा सागर तक रहेगा और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल की विजय के साथ हम अरब सागर से लेकर गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने में कामयाब हुए हैं। यह निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी कामयाबी। 2014 में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व स्वीकार किया था, तब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की 5 राज्यों में सरकारें थी। आज 21 राज्यों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकारें हैं, तो 16 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकारों का विस्तार यह साफ तौर पर संदेश दे रहा है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व अपराजेय है। बंगाल के बारे में हर कोई कहता था कि वहां ममता बनर्जी जी को 3 तारीख तक हम जिस भी बहस में आते थे, अंजना जी कई बहसों की साक्षी रही है, हर कोई कहता था कि ममता बनर्जी जी को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं हरा सकती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से बंग विजय किया है और अंग बंग और कलिंग तीनों पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है, उसने सिद्ध किया है कि विपक्ष कहीं से भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के सामने टिकने में समर्थ नहीं है। यह बारंबार सिद्ध हुआ है और इस सिद्धि के बाद भी अब लोग तो निर्वाचन आयोग को जब जब हारते हैं तो ईवीएम और निर्वाचन आयोग जो है उनके निशाने पर होता है, अब कर भी क्या सकते हैं वो।
0: चलिए समय समाप्त हुआ, ओपनिंग बल्लेबाज ने इधर से ताबड़तोड़ बैटिंग की है, अब आप मौका संभालिए और अपने चेस बोर्ड से निकालिए। आलोक जी का बड़ा अच्छा आदत है पुरानी, अपने दर्शकों को बताते हैं, ये हमेशा पेपर में पहले स्क्वायर बनाते हैं, उसके बाद हर स्क्वायर में एक पॉइंट होता है ताकि कोई स्क्वायर छूटे नहीं, इस तरह से वो स्क्वायर बनाते हैं। चलिए अब तो बहुत साल हो गया है इनको देखते हुए। आलोक शर्मा जी, इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब।
4: देखिए, किसी भी लोकतंत्र के अंदर सबसे पहले समझना जरूरी है कि विपक्ष क्या होता है। क्या केवल राजनीतिक दल ही विपक्ष होते हैं? क्या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ विपक्ष का हिस्सा नहीं होता है? क्या जांच एजेंसियां विपक्ष का हिस्सा नहीं होती हैं? क्या न्यायालय जो न्याय देता है क्या वो विपक्ष का हिस्सा नहीं होता है? क्या तमाम जो एजेंसीज हैं, संवैधानिक जो पद हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, क्या वो विपक्ष का हिस्सा नहीं होती हैं? ये समझने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य यह है कि धन बल हो और तमाम तरह के बल, अनैतिक रास्ते, तमाम तरह का, जिस तरह से एक ही विचारधारा को पूरे देश के अंदर तमाम लोगों को थोप दिया गया हो, झूठे वायदे किए गए हो, संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया हो, तो स्वाभाविक है कि विपक्ष, जो विपक्षी दल जिनको आज आप देख रहे हैं, उसके लिए कठिनाई होती है। आज जब आप ईडी, सीबीआई और तमाम जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं और उसके बाद आप विपक्ष को तोड़ने का काम करते हैं तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं विपक्ष परेशान रहता है और उसको कहीं ना कहीं किसी रूप में पराजय का सामना करना पड़ता है। आज तक ये नहीं बताया गया कि कितने अच्छे दिन आए हैं, लेकिन सरकार जब जगह बन जाती है, झूठे वायदे होते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य में, लेकिन वास्तव में जो चीज होनी चाहिए वो नहीं होती है। दिक्कत यह है कि अलग अलग हथकंडे अपनाए जाते हैं, इलेक्शन कमीशन को अपना पिट्ठू बना लिया जाता है, तमाम न्यायालय के निर्णयों के ऊपर आज आम चर्चा होती है कि ये निर्णय कैसे आ गया। मैं समझता हूं कि विदेश नीति जिस प्रधानमंत्री के रहते हुए, अर्थनीति, सामाजिक नीति, सारी नीतियां ठप हो गई हो, रुपया डॉलर की तुलना में कहां गया हो, बेरोजगारी कहां हो, महंगाई कहां हो, लेकिन उसके बावजूद नोटबंदी के पैसे से, इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे से विधायक और सांसद खरीदे जाते हो तो स्वाभाविक है कि विपक्ष को दिक्कत होगी। लेकिन ये विपक्ष की दिक्कत नहीं, भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा है।
0: जबरदस्त बल्लेबाजी भाई इधर से भी हुई है। आप लोग अपनी अपनी टीम का हौसला बढ़ाइए। कोई सवाल जो जजेस की तरफ से हो?
5: प्रेम जी से एक सवाल है।
3: जी
5: प्रेम जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।
3: जी
5: कल मैं देख रहा था शुभेंदु अधिकारी जी एक सभा में बोल रहे थे अपने कार्यकर्ताओं के बीच, वो कह रहे थे सबका साथ सबका विकास छोड़िए, अब तो जो हमारे साथ है उसके साथ है। तो ये क्या प्रधानमंत्री जी का नारा पश्चिम बंगाल में बदल जाएगा?
3: नहीं, बिल्कुल नहीं। पश्चिम बंगाल सारे हमारे साथ ही है ना, कौन हमारे खिलाफ है, पूरा देश हमारे साथ है। वही तो 21 राज्यों का बता रहा हूं मैं कि लगातार हमारा राष्ट्रीय विस्तार बढ़ता जा रहा है, तो सारे लोग हमारे हैं। और लोकतंत्र में तो जिसने आपको वोट दिया वो भी आपका है, जिसने आपके खिलाफ वोट दिया वो भी आपका है।
0: कमलेश जी ताओ, विजय जी,
6: अभी बहुत कम हुई है बहस और दोनों जो है वो जो प्रत्याशित वाक्य थे वही बोले हैं उन्होंने, मतलब तो मैं अभी जाने दूंगा अगली थोड़ी देर में।
0: प्रेडिक्टेबल लाइंस में बोला उन्होंने। विजय जी के मन में एक सवाल
7: नहीं, सवाल बोल रहा है। आलोक जी की जो आदत है ये बॉक्सेस की जिसका आपने जिक्र किया, ये बहुत अच्छी आदत है। क्या आलोक जी को नहीं लगता कि यही आदत विपक्ष या खासतौर से कांग्रेस अपना लेती सारे बॉक्सेस को टिक करने का, तो अंजना जी का सवाल ही बेमायने हो जाता?
4: देखिए मुझे लगता है कि बिल्कुल हर विपक्षी दल को, राजनीतिक दल को मेहनत करनी चाहिए, और अगर हमारे दल में या हमारी मेहनत में कहीं पर कमी है स्वाभाविक है उसके अंदर सिंहावलोकन करने की, समीक्षा करने की और आलोचनात्मक अभिव्यक्ति की आवश्यकता है, और मैं आपकी टिप्पणी को सकारात्मक रूप में लेता हूं।
0: वाह, चलिए आप में से कोई जो अभी गमछा बदलना चाहता है? नहीं, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग भी टाइम लीजिए, बदलना है उठिए, उठा जाए जिसको जिसको बदलना है। आप लोगों को तो एक ही राउंड परिवर्तन हो गया, मैं देख रही हूँ। हाँ चलिए, अच्छी बात है, चलिए जिसको जिसको बदलना है बदलिए गमछा। देखिए आप लोग कुर्सी से उठे, कुर्सी छीन ली गई, ये दुनिया ऐसी ही है। सारी राज्य उधर दो, ऊपर में जगह है, ऊपर से चले जाए उधर से। हाँ चलिए, तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, ताली बजा दीजिए भाई दोनों ओपनिंग बैट्समैन के लिए, जबरदस्त। आइए तिवारी जी और वाजपेयी जी आइए, दोनों बिहार के खिलाड़ी, अब इधर आरएलएम में ये आ गए हैं लेकिन पहले उधर ही थे, साथ ही हैं, अभी भी साथ हैं, चिराग जी से निकल के इधर आ गए हैं। तिवारी जी का गेटअप एकदम टाइट रहता है हमेशा,
8: दोनों का गेटअप,
0: वाजपेयी जी का तो रहता है, इनका जो ये कोई मजाल है कि पूरा जो इनका गमछा हिले रात तक, अना बिंदी का टिक्का रात तक इधर से उधर होगा। चलिए वाजपेयी जी, आपका इस विषय पर बोलने का 2 मिनट का समय, एक बार फिर से अपने जो कंटेस्टेंट है उनको विषय बता देते हैं, उसे भटकिए मत। क्या विपक्ष मोदी से मुकाबला करने में नाकाम है, इस पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब।
9: जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, और 11 साल आपने देखा है कि 11 साल में विपक्ष ने काफी कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया, लेकिन उनको ही सोचना पड़ेगा कि भाई वो क्यों नहीं सत्ता तक आ सकते हैं और क्यों नहीं जनता उनको वोट देती है। इससे काम नहीं चलेगा कि SIR कर ली तो इसलिए वोट नहीं मिला, इससे काम नहीं चलेगा कि वोट चोरी कर ली तो काम वोट नहीं मिला। देखिए एक कारण है और गंभीर कारण है, जनता समझती है सारी चीज, जनता जज का काम करती है, जैसे विनोद जी और सब लोग बैठे हुए, विजय जी बैठे हैं, पाऊ जी बैठे। देखिए जनता ने क्या सोचा और जो साथ साथ हम लोगों ने भी नोट किया है, 20 पॉइंट प्रोग्राम है जो जनता इनका विपक्ष का लाइक नहीं करती है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट को आप क्रिटिसाइज करेंगे, संवैधानिक संस्था की अभी बारी बात की आलोक जी ने, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज करोगे तो जनता इसको नहीं सहती है ना मानती है। ईसीआई को, इलेक्शन कमीशन को क्रिटिसाइज करोगे, अरे भाई कांग्रेस भी 60 साल सत्ता में रही है, लगातार जीतती रही, तब तो ये आरोप नहीं लगे कि एसआईआर हो गई, एसआईआर तब भी हुई थी, और ये आरोप नहीं लगे कि वोट चोरी हो गया, तो ये कैसे आरोप है। फिर आप क्या करते हैं कि ट्रिपल तलाक पे भी क्रिटिसाइज करते हैं, समाज का एक हिस्सा है, अगर उसके वेलफेयर में कोई काम किया है सरकार ने तो उसको क्रिटिसाइज करोगे तो जनता उसको महसूस नहीं करती है। मैं गिन देता हूं, ये मैंने खुद लिखे हैं, महिला बिल को अपोज करोगे, एनआरसी को अपोज करोगे, राम मंदिर को अपोज करोगे, विदेश की धरती पर जाके बदनाम करोगे, सर्जिकल स्ट्राइक को अपोज करोगे, ऑपरेशन सिंदूर को अपोज करोगे, आर्मी चीफ को गुंडा कहोगे, गुंडा कहना जरूरी है क्या, तुष्टिकरण करते रहोगे, ये 20 पॉइंट है। जनता की नवज पकड़ी नहीं जा रही, क्यों वोट बीजेपी को मिलता है? सबका साथ सबका विकास कोई नारा नहीं है, सबके लिए काम किया जाता है। मोदी को माँ बहन की गालियां दी जाएंगी, वैक्सीन को धता बताया जाएगा, मुफ्त राशन अगर गरीबों को दिया जाएगा उसको भी क्रिटिसाइज किया जाएगा, मीडिया को लताड़ेंगे हर वक्त, डिजिटल अकाउंट अगर गरीब खोलेगा तो उसको भी क्रिटिसाइज किया गया, और सबसे बड़ा
0: समय निकल गया, 20 पॉइंट हो गया आपका,
9: बंदी को भी क्रिटिसाइज किया।
0: अरे गुरुजी 20
9: पॉइंट,
0: देखते हैं अब 20 पर आप 21 साबित होते हैं या नहीं। मिस्टर तिवारी आपका 2 मिनट का समय
10: 40
0: हो जाए बा, आपका 20 मिनट, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है,
10: पढ़ के बोल रहे थे।
0: बोलिए, 2 मिनट का समय शुरू होता है अब।
10: देखिए, लोकतंत्र चलता है लोक लज्जा से, लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों का होना जरूरी है, अगर विपक्ष नहीं होगा तो सत्ता पक्ष बेलगाम हो जाता है, और सत्ता अगर बौरा जाती है तो फिर जनता का भला नहीं होता है, देश का भला नहीं होता है। हम आज ठीक है उनको सत्ता मिल रही है, लेकिन सत्ता किस तरह मिल रही है जनता के मन में ये सवाल है। जनता दुखी है, नौजवान, किसान, मजदूर, गरीब सब परेशान है, लेकिन सत्ता उन्हें हासिल हो रही है। जब अंपायर ही मैनेज हो

0: से मुकाबला करना है या नहीं करना है। इंडिया ब्लॉक की बैठक होगी तो नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाने की बात होगी और बाहर कहेंगे राहुल दूल्हा है इस बारात के और फिर ममता जी के साथ खड़े हो जाएंगे। तो पहले तय तो कर लीजिए कि मोदी से मुकाबला करना है कि नहीं करना है। ये लड़ाई बहुत आगे का सवाल कर रही है अंजना जी, अभी तो पहले खुद तय करें कि मुकाबला होगा फिर नाकाम होंगे या काम
1: कहां मुकाबला होगा। इंतजार कीजिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। हम आज जो लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जो पूर्व नीतीश कुमार जी थे, चीख चीख कर कहते थे परिवारवाद तेजस्वी यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी पर, आज मंत्री परिषद का विस्तार हुआ है बिहार में, आप देख लीजिए ए टू जेड मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं, ये परिवार का राजनीति में विस्तार है। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय जीतन बाबू मांझी, ये सारे लोग आप देखिए अभी क्या बोलेंगे। वो करें तो ठीक है, और विपक्ष पर जितना एक उंगली आप उठा रहे हैं तो चार उंगली आपके ऊपर उठ रहा है। ठीक है, जनता को आप भ्रम में रखकर, झांसे में रखकर सत्ता पा रहे हैं, लेकिन एक दिन इसका अंत होगा।
2: हाँ हाँ हाँ, हो जाएगा।
3: तीनों जज महोदय ने पूछे सवाल, इनसे किसी का क्लियर जवाब नहीं है, तो यही तो आपने कहा कि इनको खुद
1: सवाल आप पढ़ के बताए और आपको समझ में नहीं आएगा क्या, उसके लिए लिख के लाना होगा।
3: अरे सुनिए तो सही, हम तो आपकी सलाह दे रहे हैं, हम आपके पक्ष की बात,
2: गुरुजी
3: हम आपके पक्ष की बात कर रहे हैं।
1: तब ठीक है, आ जाइए इधर।
3: करना होगा आपको मंथन, करना होगा कि मोदी क्यों जीतता है, एनडीए क्यों जीतता है, और उसकी काट आपको लानी पड़ेगी, जनता को विश्वास में लेना पड़ेगा, जो आप नहीं कर पा रहे हैं। माफ करना, इससे ज्यादा सलाम आपको।
1: अभी तो कैमरे के बाहर आप कह रहे थे कि चुनाव आयोग के भरोसे जीत रहे हैं मोदी।
2: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद
1: आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मतलब वो आपका खेल के, तो आप भी सोचे इनका भी खेल कर ही दिया जाए। अरे आप भी तो तिवारी जी ना है, सामाजिक समरसता और सामाजिक सशक्तिकरण का आप देखिए उदाहरण है। यहां से वहां नाम लूं क्या या छोड़ दूं?
4: शुरू करिए
2: शुक्ला जी से, शर्मा जी तक, तिवारी। चलिए तालियों के साथ स्वागत कीजिए मलुक नागर और राजकुमार भाटी जी का, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। मलुक नागर जी बैटिंग करेंगे एनडीए की तरफ से और भाटी जी एकदम लाल गमछा लेकर अपने नेता अखिलेश यादव के रंग में रंगे हुए दो मिनट के बाद बोलेंगे, क्योंकि आपका दो मिनट का समय बोलने का मिस्टर नागर शुरू होता है अब।
5: देखिए ये जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां हैं, ये मोदी जी का मुकाबला कर कैसे सकते हैं? जब से लेजिस्लेचर स्टार्ट हुआ 1913 से कलकत्ता में, 20-21 में दिल्ली में आया, 47 में देश आजाद हुआ, 52 में चुनाव के बाद पहली सरकार बनी, जब से अब तक एक भी कोई नेता बता दो जो लगातार चार बार मुख्यमंत्री बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक, और चौथी बार मुख्यमंत्री से सीधा प्रधानमंत्री, और वो भी बैक टू बैक तीसरी बार का प्रधानमंत्री। तो वो आंधी वो तूफान, इसमें सारे उड़ के साफ हो गए, ये साफ मुकाबला कर ही नहीं सकते किसी भी कीमत में। इसमें एक ही बात कर साथ में जुड़नी है कि सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियां, लोग ये समझ चुके हैं जब वो आपस में इकट्ठी नहीं रह सकते और स्वार्थ में देश के चुनाव में आपस में लड़ते हैं, टकरते हैं, भीड़ते हैं, जूझते हैं और फट जाते हैं, और किसी भी प्रदेश के चुनाव में इकट्ठे होकर नहीं लड़ सकते, तो लोगों को लगता है जब ये अपने आप को ही नहीं संभालते तो देश को और प्रदेश को क्या संभालेंगे। तो इनकी मोदी जी से लड़ाई है ही नहीं, इनकी लड़ाई आपस में है, बिल्कुल क्लियर कट। और आज ममता जी जब सीधा उठा करके चुनाव हारने के बाद कहती है इस्तीफा नहीं दूंगी, क्यों भाई? पूरे पश्चिम बंगाल में मारकाट मचवाना चाहते हो, लड़ाई करवाना चाहते हो, जो चुनाव में बड़ी मुश्किल हुआ है वो तुमने चुनाव के बाद करवा दिया, ऐसे में राहुल गांधी जी साथ खड़े हो जाते हैं, संविधान से सीधा छोड़ रहे हैं चुनाव में, एक किताब रखते हैं अपने हाथ में, तो इनको लोग कैसे बकस दें, कैसे ना चुनाव हरवाएं? तो जब ये आपस में ही लड़ते हैं तो वहां मोदी जी का मुकाबला है ही नहीं, ये आपस में ही लड़के चूर चूर हो रहे हैं, मोदी जी का मुकाबला कभी कर ही नहीं सकते ऐसा लगता है।
2: जबरदस्त क्लोजिंग पारी बड़ी अच्छी तरह से खेली गई है, आपको भी फिनिशिंग टच देना है अपनी टीम को, जनता को कन्विंस करना है, जिसके बाद एक एक सवाल भी लेंगे और आपको मौका भी मिलेगा। राजकुमार भाटी जी आपका दो मिनट का समय शुरू होता है।
6: पहले चार पंक्ति शुक्ला जी के लिए कि जहां से गुजरो धुआं उठा दो, जहां पे ठहरो धमाल कर दो, तुम्हें सियासत ने हक दिया है।

0: है, हरी जमीनों को लाल कर दो। वकील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच में 32 लाख वोटों का अंतर रहा है। 27 लाख वोटर को वोट नहीं डालने दिया गया, जो कि वोटर लिस्ट में जिनके नाम थे उन्हें डाउटफुल वोटर कहकर उन्हें वोट नहीं डालने दिया गया। और 5 लाख वोट फाइनल वोटर लिस्ट आने के बाद जोड़ दिए गए, जिनका किसी को पता ही नहीं है कि कैसे जोड़े गए, किस प्रक्रिया से जोड़े गए। तो 32 लाख वोटों की धांधली हुई और 32 लाख वोट से ही पार्टी जीती है, यह संयोग है या प्रयोग है? पश्चिम बंगाल में जब ये पश्चिम बंगाल के मुद्दे को लेकर, एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई, तो जज ने यह कहा था कि अगर किसी सीट पर कटे हुए वोटों के बराबर अंतर से या उससे कम अंतर से हार जीत हुई तो हम पुनर्विचार करेंगे। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, पूरी 50 सीट ऐसी हैं जो उससे कम अंतर से जीती गई हैं, जितने वोट काटे गए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इन पर पुनर्विचार करेगा? और अगर ईमानदारी से पुनर्विचार हुआ तो यह सरकार अवैध है। शुक्ला जी ने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी को कोट किया, उनकी आधी बात तो आपको याद रह गई कि उन्होंने एक दिन कहा था पूरे भारत में बीजेपी जीतेगी, लेकिन उनकी आधी बात आप भूल गए। उन्होंने ये भी कहा था कि अनैतिकता और बेशर्मी से प्राप्त की हुई सत्ता को मैं चिमटे से भी छूना नहीं चाहूंगा। और वो तो चिमटे से भी नहीं छू रहे थे, आप तो होठों से छू रहे हो उस सत्ता को। जो आपका सवाल है अंजना जी, मोदी जी का मुकाबला तो हम बहुत अच्छे तरह कर सकते हैं, ज्ञानेश कुमार का मुकाबला हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो रेफरी है। हम खिलाड़ी को हरा सकते हैं, रेफरी को नहीं हरा सकते।
1: आप हमेशा थोप देते हो जनता के ऊपर, इलेक्शन कमीशन चोर है, इलेक्शन में वोट चोरी करा रहा है, एसआईआर नहीं होना चाहिए था, 2003 में भी हुआ एसआईआर, उसके बाद अब हुआ है, उसके बावजूद आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि इलेक्शन कमीशन गलत करा रहा है? हर जगह आपकी सरकार बन रही है।
0: जी आधी मिनट दे दें, 10 सेकंड।
2: आपको ऐसा क्यों लगता है कि 15 साल जो टीएमसी चला है वो, मतलब अभी बीजेपी आने से पूरा बंगाल का सिचुएशन चेंज हो जाएगा, बीजेपी अचानक से हर चीज चेंज कर देगा, और टीएमसी 15 साल जो भी किया वो जनता को नहीं दिख रहा है, जनता उसको लेके अचानक से 15 साल का भूल के एक टाइम पे चेंज हो जाएगी, ऐसा आपको क्यों लगता है?
3: बहुत लूज बॉल दिया आपने उनको।
4: जवाब दे दूं?
3: वो तो 10 चीजें गिना देंगे अभी कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। इसलिए
4: जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, उनके तत्कालीन 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री कहते थे 2040 तक हम देश की इकोनॉमी को चौथे नंबर पर लाएंगे, हमने 2025 और 26 में ही ला दी। तो उसी तरह पश्चिम बंगाल में जो अब तक नहीं हुआ, ना कांग्रेस ने करा, ना लेफ्ट पार्टीज ने करा, ना ममता जी ने करा, मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में करके दिखाएंगे आने वाले समय में।
3: चलिए ठीक है, अब आप जवाब दीजिए।
0: देश की इकोनॉमी तो 5वें नंबर से 6ठे नंबर पर चली गई है, ध्यान रखें। लेकिन भाई ने एक सवाल उठाया था कि आप क्यों नहीं जाते, कोर्ट क्यों नहीं जाते। हम चुनाव आयोग भी गए हैं, हम कोर्ट भी गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस हुई है। लेकिन अगर आप कानून के, संविधान के और चुनाव आचार संहिता के थोड़े बहुत जानकार हैं तो केवल 3 सवालों के जवाब अपने मन से पूछें। क्या चुनाव के समय एसआईआर कराना ठीक है? क्या शांत समय में जब चुनाव दूर हो तब एसआईआर नहीं कराना चाहिए था? क्या जो डाउटफुल वोटर कहकर 32 लाख लोगों को वंचित किया गया, क्या वो ठीक है? क्या चुनाव आयोग के भेजे हुए पर्यवेक्षक विपक्ष के प्रत्याशी के घर पर जाके धमका रहे थे, वीडियो मौजूद हैं, क्या ये पर्यवेक्षक का काम है? क्या जिस तरह वहां टीएमसी के कार्यालयों पर तोड़फोड़ की जा रही है, आग लगाई जा रही है, मारा पीटा जा रहा है, और वहां सांप्रदायिक बयान दिए जा रहे हैं, जो संभावित मुख्यमंत्री है खुलेआम हिंदू मुसलमान कर रहा है, क्या ये भारत के संविधान का खुला उल्लंघन नहीं है?
5: बंगाल में विपक्ष जीता है, 15 साल से जो सत्ता में थे वो हटे हैं, तो विपक्ष को तो खुशी होना चाहिए इस बात पे कि कभी तो, मतलब एक दिन तो रोटी पलटेगी। ये तो आपके लिए, यहां के लिए अच्छे संदेश है, हर जगह के लिए, इसीलिए कि वो विपक्ष सक्षम है, नाकाम है पर सक्षम नहीं है, ऐसा नहीं है कि दिल ना उम्मीद नहीं है, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो उसको ऐसे भी ले सकते हैं कि एक दिन पलटेगा सब कुछ।
6: चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ने के
7: बजाय इसका ताजा नमूना जो है तमिलनाडु और केरल भी है। केरला में भी पलटी है रोटी और तमिलनाडु में भी एक नई ताकत आ गई अचानक,
3: तो इनकी रोटी फूली है वहाँ।
8: देखिए इसमें बहुत
3: इनके इनसे शुरू का आप शुरू करना चाहते हैं?
8: मैं कर देता हूँ।
3: ठीक है, एक मिनट का रिबटल राउंड शुरू हो रहा है जिसमें आलोक शर्मा जी आपका समय शुरू।
9: बहुत गहराई से समझने की चीजें हैं। जहाँ पर 2% वोट है, केरल हो चाहे तमिलनाडु हो,
8: वहां पर इलेक्शन कमीशन भी धांधली से बीजेपी को नहीं जिता सकता है, इसलिए वहां पर रोटी दूसरी तरह से पलटी जाती है। और ये बार बार कहना संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल, संवैधानिक संस्थाओं पे, अरे भाई अगर संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल नहीं उठा सकते हैं तो सैकड़ों केस जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोर्ट में चल रहे हैं सब बंद कर देने चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट पे से आप सवाल नहीं कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हमारा संविधान तो स्वयं कहता है कि आप अपने फैसले को बदल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट स्वयं अपने फैसले बदलता है, सुप्रीम कोर्ट है ही इसलिए। और बार बार ये कहना कि वहां तो इलेक्शन कमीशन केरल में तो वही था, 10 घर थे एक गली में, 2 घर में चोरी नहीं हुई, 8 में चोरी हुई, सारे चोरों को बरी कर दो, क्योंकि उन 2 में तो हुई नहीं। दुर्भाग्य यह है कि लॉजिकली आपको सोचना होगा कि भारतीय लोकतंत्र को कैसे बचाना है। अलायंस बनाने की बात तभी वरिष्ठ महोदय ने कही, अलायंस बनाए जाते हैं ईडी सीबीआई भेजकर, थोक के भाव सांसद अपनी पार्टी में समिट कर लिए जाते हैं।
3: समय समाप्त हुआ, जबरदस्त, बहुत अच्छा सर, समय इसमें थोड़ा सा बाधित है इसीलिए। शुक्रिया जी आपका।
9: देखिए निर्वाचन आयोग पर वो लोग बातें करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहते हुए मौलाना आजाद के खिलाफ जो चुनाव जीता होता है, डीएम को फोन करके उसको चुनाव हरवा देते हैं। वो महान थे, लोकतांत्रिक थे, लोकतंत्रवादी थे। सबसे अच्छे निर्वाचन आयुक्त नवीन चावला थे, जो वॉशरूम में जाकर श्रीमती सोनिया गांधी से आदेश प्राप्त करने के बाद जो है निर्वाचन आयोग के निर्णय लेते थे। और मेरा आरोप नहीं है, ये आरोप उनके सहयोगी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सहयोगी निर्वाचन आयुक्त का है। तो ये लोग बातें करते हैं। तमिलनाडु में अगर परिवर्तन हुआ, वहां भी तो एसआईआर हुआ था, वहां एसआईआर का कोई दोष नहीं है, तमिलनाडु परिवर्तन का कोई दोष नहीं, लेकिन पश्चिम बंगाल में दोष है, क्योंकि ये जिसको चाहते थे वो नहीं जीत सका, ये जिसको चाहते थे वो, जो नहीं चाहते थे वो जीत गया। गजब है भाई, केरल में निर्वाचन आयोग का कोई दोष नहीं, तेलंगाना में निर्वाचन आयोग का कोई दोष नहीं, कर्नाटक में निर्वाचन आयोग का कोई दोष नहीं, जहां ये जीतेंगे वहां निर्वाचन आयोग बहुत उत्तम है, भले जो है इनके टेलीफोन से परिणाम बदल जाते हो, लेकिन जहां ये हार जाएंगे वहां निर्वाचन आयोग दोषी है। ये है कि आईना देखने की बजाय।
3: समय समाप्त हुआ, जबरदस्त, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी अपनी जगह पर जा सकते हैं।
10: आइए आइए आइए, वाजपेयी जी आइए, तिवारी जी और वाजपेयी जी आइए। वाह वाह,
11: अभी सब लोगों ने अपनी बात रखी, मेरा फिर वही मानना है कि विपक्ष को अपने आप समझना पड़ेगा कि उनके लगातार हार के 11 साल से क्या कारण है। धीरे धीरे एक एक राज्य उनके हाथ से क्यों फिसला, लोकसभा में क्यों नहीं उनकी सीटें आती, अगर ये नहीं समझना चाहेंगे तो उसका फायदा हमको मिलेगा, और फायदा जनता देती है। खाली आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, उसका संवैधानिक व्यवस्था है। अगर इलेक्शन में कोई गड़बड़ी की बात आप करते हैं तो इलेक्शन पिटीशन आपको फाइल करनी पड़ेगी, माफ करना, बिगर फाइल करे आप चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए, कहीं कुछ होने नहीं जा रहा है, ये आप लिख लीजिए। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन पर इन्होंने बार बार आरोप लगाए, ईवीएम, पहले इन्होंने ईवीएम पकड़ी हुई थी कि ईवीएम गड़बड़ करती है, ईवीएम गड़बड़ करती है, और जब इलेक्शन कमीशन ने बुलाया इनको तो ये कोई पार्टी वाले नहीं गई थी, ये एक डिफेक्ट है इसमें। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि विपक्ष जाने, उनका काम जाने, हम देश की सेवा कर रहे हैं।
3: जबरदस्त, बहुत अच्छा, मिडिल ऑर्डर भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है। मिडिल ऑर्डर रुकिए, पहन के एकदम से बैठे हुए, पैड वैड हेलमेट निकल ले रहे हैं जब मन कर रहा बैट लेके। तिवारी जी आपका इस विषय में,
12: अंपायर उनका इसलिए निकल जा रहे
3: हैं। फिर हो गया शुरू, हम सोच ही रहे थे अभी तक आए नहीं,
12: आउट होके जाएंगे तब ना वो आएंगे, तो पहले शुरू हो गए।
3: अरे टिक्का बिंदी लगा कर मिस्टर तिवारी, चलिए एक मिनट में अपना विषय रखिए, आपका समय शुरू होता है अब।
12: देखिए आज ठीक है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को हर जगह सत्ता मिल रही है, इस बात से कोई इनकार कहां कर सकता है, लेकिन विपक्ष, एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका में सत्ता पक्ष से सवाल तो करेगा ही, और जो जनता के सवाल हैं, विपक्ष का धर्म है जनता के सवालों को उठाना, जनता की आवाज बनना, लेकिन दुर्भाग्य उस समय दिखता है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति सदन में हो या सड़क पर हो, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सत्ता में बैठे हुए लोग, विपक्ष जो सवाल कर रहा है उसका जवाब से भागते हैं और विपक्ष को ही नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सत्ता का अंग विपक्ष भी होता है, ये सब लोग जानते हैं। लोहिया जी ने भी कभी कहा था इस बात से सब लोगों को पता है कि जब जब सत्ता अहंकारी हो जाता है तब तब जनता का भला नहीं हो पाता है। अभी जो सत्ता है वो अहंकारी हो गया।
3: बहुत अच्छा, समय समाप्त हो गया, गजब।
10: बहुत धन्यवाद आप दोनों का। अपनी अपनी जगह पर जा सकते हैं, अपनी अपनी ऊर्जा बना के रखिए। बहस बाजीगर भी आज तय होना है। सेकंड राउंड में आते आते ऐसा लग रहा है कि स्टीम इंजन थोड़ा सा जो है ज्यादा काला धुआं फेंक रही है। चलिए, आपका इस मोशन पर बोलने का रिबटल राउंड का एक मिनट का समय शुरू होता है। अब
4: देखिए, कांग्रेस के साथी अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट पे बोल के गए, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट कहते हैं खिलाफ बोलो। अरे संविधान की कॉपी लेके मत घूमो, संविधान को पढ़ो और समझो, और संविधान के अनुसार इस देश में सुप्रीम कोर्ट के बारे में केवल पार्लियामेंट के अंदर पैर जाने के बाद एमपी लोग बोल सकते हैं, हम लोग, और पार्लियामेंट से बाहर आने के बाद हम भी नहीं बोल सकते। बोलेंगे तो कंटेम्प्ट लग जाएगी, वो अलग बात है कि आप सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ रखे हो। दूसरा बात, आपने भी एक बात कही इकोनॉमी की, इस पर चर्चा मत करो कांग्रेस, ये छोड़ दो। राहुल गांधी संसद के परिसर में संसद से बाहर निकल कहते हैं देश की इकोनॉमी डेड, 60 साल की अपनी डेड कर ली तो तुम इकोनॉमी पे क्या बोलोगे, कौन से नंबर पे। दूसरा, कांग्रेस के सबसे बड़ा परिवार राहुल गांधी परिवार, उसमें प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी, दो लेडी, दोनों एमपी, और 273 का रास्ता साफ करा था 375 करोड़ में से, वो भी आपने बंद कर दिया। इसकी सजा मिली है, समझो, सीखो, आकलन करना समझो, जब ही कुछ मुद्दे उठा पाओगे।
10: समय समाप्त हुआ भाई, क्लोजिंग इधर से अच्छी हुई है। चलिए, आपका भाटी जी, अब समय शुरू होता है। अब
0: एक तो ये कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि विपक्ष लगातार कमजोर हो रहा है। मैं अपनी पार्टी का उदाहरण देना चाहूंगा। 2019 में हमारी मात्र 5 लोकसभा में सीटें थी, अब इस समय हमारी 37 सीटें हैं। हम देश की तीसरे नंबर की पार्टी हैं, तो ऐसा नहीं है कि विपक्ष कमजोर हो रहा है, विपक्ष मजबूत हो रहा है। और 29 में जो ये पार्टियां जिन्हें बेईमानी से हराया जा रहा है, ये सारी मिलकर भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को हराएंगे। वाजपेयी जी ने एक बात कही, उसे मैं बहुत गंभीरता से सुन रहा था, कि अगर आपको न्याय पाना है तो आपको रिट पिटीशन में जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। यानी उनके जो बिना कहे शब्द है, उनका अर्थ यह है कि मोदी जी से और ज्ञानेश कुमार से न्याय की उम्मीद मत करिए। न्याय अगर चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा, उससे पहले कहीं न्याय नहीं है। इस सरकार से न्याय की उम्मीद करना या चुनाव आयोग से न्याय की उम्मीद करना, अब इस देश में नागरिकों को, राजनीतिक पार्टियों को छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैं ये भी जोड़ूंगा कि ये बहुत खतरनाक स्थिति है, इस पे आप गौरवान्वित मत होइए, इस पे हमें शर्मिंदा होना चाहिए।
10: चलिए, 3 सेकंड पहले ही भाटी जी ने खत्म कर दिया, तालियां बजा दीजिए भाई। नेता अगर 5 सेकंड भी छोड़ दे पहले, तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि रहती है। आप सभी का बहुत धन्यवाद, अपनी अपनी जगह पर चले जाइए। और अब बारी है जब हमारे दर्शक अपना वोट डाल सकते हैं। हमारे तमाम व्यूअर्स जो घर पर आज का शो देख रहे हैं, आप घर पर बैठे भी स्क्रीन पर जो QR कोड है उसे स्कैन करके अपना वोट डाल सकते हैं। और जो स्टूडियो में यहां पर तमाम जनता मौजूद है, फटाफट QR कोड स्कैन कीजिए, हम वोट डालेंगे। और इस बीच तीनों जजेस को एक बार दिखा दीजिए, क्योंकि तीनों जजेस अब आपस में बातचीत करके ये तय कर रहे हैं कि आज का बहस बाजीगर कौन होगा। कई बार तो ये वैसे एंटी क्लाइमैक्स कर देते हैं, तीनों कहते हैं 2 जीत गए, 3 जीत गए, जनता जीत गई। एक शो में ऐसा भी हो चुका है मेरे साथ। तो चलिए, अब हम वोटिंग कराते हैं और उसके बाद अनाउंसमेंट होगा कि आज का बहस बाजीगर कौन है। आज का मोशन है, क्या विपक्ष मोदी से मुकाबला करने में नाकाम है? अगर आप मानते हैं कि हाँ वो नाकाम है, यानी आप टीम प्रेम शुक्ला के लिए वोट करना चाहते हैं, तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे। और अगर आप मानते हैं नहीं, तो आप आलोक शर्मा जी की टीम के लिए वोट करेंगे। और कह नहीं सकते वाले तो आजाद पंछी हैं, उनका जिधर मन करे निकल लीजिएगा। चलिए, आपके वोटिंग के लिए आपको 60 सेकंड मिल रहा है और वो 60 सेकंड शुरू होता है अब। फिलहाल प्रेम शुक्ला की टीम आगे चल रही है, 70% के आसपास है, 51 सेकंड बचे हुए हैं अभी भी। अभी देखते हैं, इधर आलोक शर्मा जी की तरफ 25% हैं। मुझे लग रहा है कुछ नीले गमछे वाले भी दाएं बाएं कर रहे हैं, सफेद गमछे वालों ने तो पक्का ही कुछ ना कुछ किया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अरे, सफेद गमछा ओढ़ लिया ताकि शांति के दूत बने रहे, बाद में कोई दुश्मन ना माने, और फिर अंदर ही अंदर वोटिंग में जो करना है वो देख ली जाएगी। अब और की नीचे हो गए 3%, हाँ, और इसी से चुनाव बदलता है। जो स्विंग वोटर होता है, जो सफेद पहन के आता है, वो कहता है बताएंगे नहीं, अंदर ही करेंगे जो करना है। और ये देखिए 25% पर, मुझे नहीं लगता है, वैसे मुमकिन है, क्योंकि इधर 72 और इधर 23%, ठीक ही लग रहा है, थोड़ा थोड़ा शक हो रहा है, ज्यादा नहीं। चलिए, तो क्या विपक्ष, समय समाप्त हुआ और 72% के साथ टीम प्रेम शुक्ला जीत गई है जो ये, क्या विपक्ष मोदी से मुकाबला करने में नाकाम है ऐसा मानते हैं? वही 23% आलोक शर्मा जी की तरफ गए हैं, और कह नहीं सकते वाले 5% लोग मुझे भी ऐसा ही लगा था। आलोक जी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि नीले गमछे जितने लोगों ने लिया है उन्होंने गुगली कर दी आपके साथ। चलिए जब बताइए आज का बहस बाजीगर कौन है,
13: ताऊ बताएंगे, लेकिन एक लाइन में कहना चाहता हूँ अंजना जी आपकी इजाजत से कि आज के प्रोग्राम में वाजपेयी जी को बहुत याद किया गया, अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ। वाजपेयी जी ने कहा ये जो प्रेम शुक्ला जी की ग्रुप है उसके लिए कि भाई मैं सत्ता को भ्रष्टाचार के या किसी भी गलत कारण से चिमटे से भी नहीं छूंगा।
10: हाँ।
13: क्या पार्टियां जो सत्ता में बैठी हैं वो उसको सुन रही हैं? और दूसरी तरफ बार बार भाटी जी ने और लोगों ने भी जिक्र किया वाजपेयी जी का, तो वाजपेयी जी से बड़ा तो कोई हुआ नहीं जिसने गठबंधन की सरकारें बनाई सारा अहंकार छोड़कर। तो वो गठबंधन की जो राजनीति है क्या विपक्ष सीख रहा है? यदि वो सीख लेगा तो भी ये काम हो जाएगा, क्योंकि शेख सादी ने अक्सर कहा है कि चिड़िया एका कर ले तो शेर की खाल खींच सकती है।
10: विनोद जी
7: देखिए, विपक्ष जो है वो भले चुनाव हार रहा है, लेकिन विपक्ष को बजाय हर बात में चुनाव आयोग और उस पर ठीक है, वो आपका आपत्तियां हो सकती हैं, इतराज हो सकते हैं, आप वो उठाइए मुद्दे, लेकिन आप चिंतन भी करना पड़ेगा कि आपस में जिस तरह आप लोग जो है कभी तो तय करते हो कि राहुल गांधी नेता हों, कभी कहते हो ममता जी हों, कभी कहते हो अखिलेश जी हों। पहले एक बार जो 1977 में जैसे विपक्ष इकट्ठा हुआ था, जैसे 1989 में इकट्ठा हुआ, जैसे 1996-98 में इकट्ठा हुआ, 2004 में इकट्ठा हुआ, उस स्पिरिट से जब तक आप नहीं आप इकट्ठा होगे तब तक आप भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाओगे। आप पहले बीजेपी को समझो, उसकी ताकत को समझो, तब आप उसको हरा पाएंगे।
10: क्या हाल बना रखा है सर, जो आता है सुझाव दे के चला जाता है, जिसको देखिए थोक थोक पर सुझाव दे रहा है। एक सेकंड, माइक माइक के बोल।
14: अटल जी ने कभी ईडी सीबीआई का दुरुपयोग नहीं किया, नहीं तो वो एक वोट से नहीं हारते, वो लोकतंत्र में विश्वास रखते थे। आज चुनाव से पहले, चुनाव के बाद, जीतने के बाद, जीतने से पहले, शपथ के बाद, शपथ से पहले कभी भी ईडी सीबीआई पहुंच जाती है।
10: गलती मेरी थी, माइक दे दिया मैंने नेताजी को, अब वो कहां रुकने वाले हैं। कांग्रेस करती थी या नहीं करती थी दुरुपयोग?
15: मैं फिर कहूंगा कि अगर कांग्रेस ने कोई भी सरकार,
16: कभी तत्काल बता देता हूँ।
10: चलिए चलिए, अब नहीं नहीं नहीं, अब आप लोग का हो गया, नेता को माइक नहीं देना चाहिए जल्दी। हाँ,
5: बंगाल में राहुल जी ने कड़ी मेहनत की और लोगों से कहा कि ममता बनर्जी को कुर्सी से हटा दीजिए।
10: हाँ।
5: तेजस्वी गए, उन्होंने कहा नहीं हटाइए।
10: हाँ।
5: लोगों ने राहुल जी की सुन ली।
10: हाँ।
5: उनके मन की बात कर दी।
10: हाँ।
5: जीतता कोई एक ही है, सबको तो सुन नहीं सकते। आज प्रेम शुक्ला जी की टीम के लिए बहुत आसान था, क्योंकि अभी अभी जीत हुई है तो बहुत आसान है उसको डिफेंड करना।
10: आसान था इनके लिए।
5: शर्मा जी की टीम के लिए बहुत मुश्किल था।
10: हाँ।
5: पर राजकुमार भाटी जी ने पहले राउंड में और अपने अंतिम जो दो तीन वाक्य थे उससे आज जो है बेहतरीन तरीके से बहस बाजीगर का खिताब ले लिया है।
10: वाह, ताली बजाइए भाई, भाटी जी को बहुत बहुत बधाई। सर खड़े होके एक्नॉलेज कर लीजिए, आज आप बहस बाजीगर बने हैं, बधाई ले लीजिए सबकी तरफ से। तो आज के बहस बाजीगर बने हैं समाजवादी पार्टी के राजकुमार भाटी जी। इसी के साथ बहस बाजीगर में आज के लिए इतना ही, अगले शनिवार रात 9 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
4: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।
5: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
6: इसमें माइक्रोफाइबर है।
5: माइक्रोफाइबर यानी
6: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
5: हमारे सीमेंट में नहीं है?
6: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
7: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
8: करेक्टर The taste of success.
9: और वही कहाँ गए थे घूमने?
10: JK Max.
11: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
10: JK Max. Best पुट्टी?
12: JK Wall Max.
10: Best पेंट?
12: JK Max.
10: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Max पेंट्स. JK Max. JK Max पेंट्स. खुशियों के रंग।
13: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जाम।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
2: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
3: Hint, bade aaram se.
2: Cool, stylish fans. Enhance home decor with beautiful fans.
4: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
5: Summer Cool Cooler, hawa aisi chhode, puri family ko thandak se jode. Summer Cool Cooler, life banaye wonderful.
6: Vimal, bolo zubaan kesri.
7: आज तक के खबरदार करते ही सरकार का एक्शन।
8: आज तक की खबर के बाद काउंसिल ने भरोसा दिया है कि मार्च के आखिर तक लंबित प्राइज मनी दे दी जाएगी।
9: एक दो दिन में ही उनके नियुक्ति पत्र भी जारी हो जाएंगे।
8: ये सब कुछ तब हो पाया जब आज तक ने राजस्थान के खेल विभाग को जगाया।
10: अच्छी खबर चली हमारी, अच्छा हुआ सर।
7: जहाँ खबर वहाँ खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
2: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
11: Monte Carlo, it's the way you make me feel.
12: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, और वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें ePaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

हॉर्मुज में अमेरिका ईरान ने मचाया बवाल। अमेरिकी हमले में 6 लापता 6 घायल। ईरान ने दागी मिसाइलें, जबरदस्त पलटवार। हॉर्मुज के समंदर में फिर आग लग गई है। पिछले 48 घंटों में हॉर्मुज में अमेरिका और ईरान आमने सामने आ गए हैं। पहले ईरान ने यूएई के फुजैरा पोर्ट पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दागी। हालांकि यूएई के दावे के बावजूद ईरान आधिकारिक तौर पर इससे साफ इनकार करता रहा। फिर अमेरिका ने ईरानी टैंकर पर जबरदस्त हमला कर दिया। फाइटर जेट के जरिए किए गए इस हमले में न सिर्फ टैंकर को भारी नुकसान हुआ है बल्कि क्रू को भी चोट लगी है। लेंगेह पोर्ट के गवर्नर के मुताबिक ईरानी जहाज पर हुए हमले में 6 लोग घायल हो गए हैं जबकि 6 क्रू सदस्यों का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। इस हमले में ईरान बौखला गया है और उसने हॉर्मुज में अमेरिकी डिस्ट्रॉयर यूएसएस ट्रक्सटन, यूएसएस मैसन और यूएसएस राफेल पिराटला पर मिसाइलों, ड्रोन और छोटी नावों से हमला किया है। ईरान की नेवी ने वीडियो जारी कर दावा किया है कि उसने अमेरिकी हमले का ऐसा जवाब दिया है कि वो सीज फायर का फिर उल्लंघन करने पर 100 बार सोचेगा। इस वायरल वीडियो में एक के बाद एक कई मिसाइलें हमला करती हुई दिख रही हैं। सीज फायर के तमाम दावों के बावजूद हॉर्मुज में लगातार हाहाकार बढ़ रहा है। अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास, केश द्वीप और मीनाप पर हमले किए हैं। अपने बंदरगाहों पर अमेरिका की नाकेबंदी से ईरान बुरी तरह चिढ़ा हुआ है। इससे न सिर्फ उसके लाखों बैरल तेल का निर्यात रुका हुआ है बल्कि अमेरिका के कई विनाशकारी युद्धपोत भी उसकी सरहद के करीब आ चुके हैं। यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने कहा है कि उसने अब तक 70 से ज्यादा जहाजों को ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने या वहां से निकलने से रोका है। एक अनुमान के मुताबिक इन जहाजों में $13 अरब से ज्यादा कीमत का तेल ले जाने की क्षमता थी। हॉर्मुज में हाहाकार से तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। ब्रेंट क्रूड $103 प्रति बैरल तक पहुंच गया है जबकि अमेरिकी WTI $96 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। इस बीच रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद से फोन पर बात की। दोनों के बीच सीज फायर और हॉर्मुज के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। रूस ने ईरान और पड़ोसी देशों में हमले से बेकसूर लोगों के मारे जाने और इंफ्रास्ट्रक्चर की बर्बादी पर चिंता जताई है। जो हालात हैं उनमें हॉर्मुज में फंसे जहाजों को फिलहाल कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। अमेरिका ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए और डील पर मुहर लगाने के लिए नाकेबंदी लगाए रखना चाहता है जबकि ईरान की शर्त है कि पहले नाकेबंदी हटे तब बात आगे बढ़े। लेकिन दोनों अपनी जिद पर अड़े हुए हैं जिसका नतीजा ये हुआ है कि सीज फायर के बावजूद हॉर्मुज में मिसाइलें गरज रही हैं। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

0: you can stream all the podcasts you already love right on TuneIn. Available on your smartphone, on your tablet, and even on your connected devices. There's so much to explore, like mind-blowing facts about your world.
1: So they were disallowed from speaking their language.
0: In-depth conversations with A-list celebrities.
2: No, I was ready to go. You know, after I wanted to fulfill my contract.
0: True crime podcasts you just can't stop listening to.
3: Others escape justice to live and die in infamy. These
0: plus the news and sports content you crave in podcast form.
4: Couldn't run in a straight line very quickly and didn't have much of an arm. His arm is stronger now.
0: So whether you want to save your go-to shows for later by subscribing and listening offline, or you want to discover a whole slate of new podcasts to be obsessed with, TuneIn is your destination. True crime, sports, lifestyle, culture, news, and so much more. TuneIn is Podcast Central. Hear them all here. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
5: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
6: यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट विस्तार में जगह दी गई है। पश्चिमी यूपी का अहम जाट चेहरा है भूपेंद्र चौधरी। रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे योगी सरकार में मंत्री बन गए हैं। यूपी में मनोज पांडे बड़े ब्राह्मण चेहरों में से एक है। 2024 में समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर मनोज पांडे योगी सरकार में शामिल हुए थे।
7: मैं कृष्णा पासवान
6: यूपी की खागा सीट से कृष्णा पासवान मंत्री बने। चौथी बार की विधायक कृष्णा पासवान पासी समुदाय की नेता है। लोधी समुदाय से आने वाले कैलाश राजपूत को भी मंत्री बनाया गया है। कन्नौज के तिरवा से बीजेपी विधायक कैलाश राजपूत की ओबीसी में अच्छी पकड़ है।
8: सुरेंद्र दिलेर
6: अलीगढ़ की खैर सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर को भी मंत्री बनाया गया है। एससी समुदाय के बड़े नेता है सुरेंद्र दिलेर। यूपी विधान परिषद के सदस्य हंसराज विश्वकर्मा भी मंत्री बन गए हैं। पिछड़े समाज के नेता के रूप में हंसराज विश्वकर्मा की धमक है। योगी सरकार ने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए यूपी की सियासत बदल दी है। ब्राह्मण प्लस ओबीसी प्लस दलित यानी एक ब्राह्मण दो दलित पांच ओबीसी यानी एक तीर से कई निशाने। राजनीति में कुर्सियां सिर्फ नेताओं को नहीं मिलती, उनके पीछे खड़े समाज को संदेश मिलता है। इसी को ध्यान में रखकर योगी मंत्रिमंडल के विस्तार से बीजेपी ने भविष्य की सत्ता
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच

0: यूपी में 2027 का चुनावी समीकरण साधने के लिए योगी कैबिनेट का विस्तार। भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे समेत 6 नए चेहरे। दो राज्य मंत्री अजीत पाल, सुमेंद्र तोमर को मिला स्वतंत्र प्रभार। तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनते ही एक्शन में विजय, 200 यूनिट बिजली फ्री। महिला सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स का ऐलान। कहा डीएमके ने छोड़ा 10 लाख करोड़ का कर्ज। पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में कहा कांग्रेस सत्ता की भूखी। हैदराबाद के दौरे में लगभग 10,000 करोड़ की सौगात। असम में 12 मई को हेमंता फिर लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। उससे पहले कहा 2021 से 26 सिर्फ ट्रेलर, 2031 तक दिखाऊंगा पूरी पिक्चर। भीषण गर्मी और बाढ़ से निपटने के लिए दिल्ली में अमित शाह की उच्च स्तरीय बैठक। अलर्ट सिस्टम को मजबूत करने पर जोर। मेडिकल तैयारियों की भी समीक्षा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 27 का शंखनाद कर दिया है। आज योगी सरकार का दूसरा कैबिनेट विस्तार हुआ। इस विस्तार में 2 मंत्रियों को प्रमोशन दिया गया, 6 नए चेहरों को मंत्री बनाया गया। और आज यूपी में सिर्फ मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ बल्कि 2027 की सबसे बड़ी राजनीतिक बिसात पर नई चाल चली गई है। कैसे साधा गया है 27 का समीकरण, रिपोर्ट में आपको समझाते हैं।
1: मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं।
2: मैं मनोज कुमार पांडे,
3: मैं अजीत सिंह पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं।
4: सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
5: मैं भारत की सत्ता और अखंडता रखूंगा।
6: ये सिर्फ कैबिनेट विस्तार नहीं, यूपी में 2027 की चुनावी पटकथा का पहला बड़ा अध्याय है। योगी कैबिनेट विस्तार में सबसे बड़ा फोकस रहा जाति और क्षेत्रीय संतुलन।
7: सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
6: लखनऊ में 6 नए मंत्रियों के साथ 2 मंत्रियों का प्रमोशन हुआ। इस तरह योगी सरकार में 8 मंत्रियों ने शपथ ली। यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट विस्तार में जगह दी गई है। पश्चिमी यूपी का अहम जाट चेहरा है भूपेंद्र चौधरी। रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे योगी सरकार में मंत्री बन गए हैं। यूपी में मनोज पांडे बड़े ब्राह्मण चेहरों में से एक है। 2024 में समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर मनोज पांडे योगी सरकार में शामिल हुए थे।
8: मैं कृष्णा पासवान ईश्वर।
6: यूपी की खागा सीट से कृष्णा पासवान मंत्री बने। चौथी बार की विधायक कृष्णा पासवान पासी समुदाय की नेता है। लोधी समुदाय से आने वाले कैलाश राजपूत को भी मंत्री बनाया गया है। कन्नौज के तिरवा से बीजेपी विधायक कैलाश राजपूत की ओबीसी में अच्छी पकड़ है।
9: सुरेंद्र दिलेर।
6: अलीगढ़ की खैर सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर को भी मंत्री बनाया गया है। एससी समुदाय के बड़े नेता हैं सुरेंद्र दिलेर। यूपी विधान परिषद के सदस्य हंसराज विश्वकर्मा भी मंत्री बन गए हैं। पिछड़े समाज के नेता के रूप में हंसराज विश्वकर्मा की धमक है।
10: मैं निश्चित रूप से जो अपेक्षाएं हैं नेतृत्व की, अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जो भी काम मिलेगा, जो विभाग मिलेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए, विकास के लिए काम करेंगे।
11: मेरा इस संकल्प होगा कि जो जिम्मेदारी पार्टी ने और सरकार में हमें दी है उसका पूरा हम लोग पालन करेंगे। पूरी मेहनत से, निष्ठा से उन रास्तों पर आगे चलेंगे और आगे बढ़ेंगे और जनता के काम करेंगे।
12: इतना अच्छा दिन है आज, भारतीय जनता पार्टी मातृ डे है और मातृ डे में आज मुझे शपथ दिलाई है। तो आप जानते हो कि महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति कितना ज्यादा संवेदनशील है भारत।
13: जो जिम्मेदारी मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, मोदी जी ने, योगी जी ने दी है, उसको अच्छे से निर्वहन करने का पूरा प्रयास करूंगा और अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाऊंगा।
6: उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर कैबिनेट विस्तार सिर्फ शपथ नहीं होता, आने वाले चुनावों के संकेत भी होते हैं। इस संकेत को साफ साफ पढ़ा जा सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार में 2 मंत्रियों को प्रमोट किया गया है। मेरठ दक्षिण से विधायक सोमेंद्र तोमर का इस मंत्रिमंडल विस्तार में प्रमोशन हुआ है। योगी कैबिनेट में सोमेंद्र तोमर का कद बढ़ा है। सोमेंद्र तोमर को बीजेपी का मजबूत गुर्जर चेहरा माना जाता है। योगी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री अजीत पाल का भी मंत्रिमंडल विस्तार में प्रमोशन हुआ है। कानपुर देहात की सिकंदरा सीट से अजीत सिंह पाल विधायक हैं। ये पाल समुदाय के बड़े नेता हैं। योगी सरकार ने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए यूपी की सियासत बदल दी है। ब्राह्मण प्लस ओबीसी प्लस दलित, यानी एक ब्राह्मण 2 दलित 5 ओबीसी, यानी एक तीर से कई निशाने।
14: वो जिम्मेवारी मिलेगी, अभी संगठन का काम कर रहा था, एमएलसी का काम कर रहा था, अब सरकार के मंत्री के रूप में जो काम मिलेगा निश्चित तौर पर एक संगठन सेवा है हमारा, और वो तो ये है सरकार का जो काम मिलेगा उसको जितना सच्चा सच्चा उसको किया।
6: राजनीति में कुर्सियां सिर्फ नेताओं को नहीं मिलती, उनके पीछे खड़े समाज को संदेश मिलता है। इसी को ध्यान में रखकर योगी मंत्रिमंडल के विस्तार से बीजेपी ने भविष्य की सत्ता की रणनीति बनाई है। फोकस 2027 विधानसभा चुनाव, टारगेट ओबीसी प्लस दलित प्लस ब्राह्मण, इनमें सवर्ण भी शामिल है। पश्चिमी यूपी को प्रतिनिधित्व मिला है। पूर्वांचल में विशेष फोकस किया गया है, महिला चेहरा को शामिल किया गया है। समाजवादी पार्टी के बागियों को साधा गया है। पीडीएफ फॉर्मूले की काट का प्लान बनाया गया है। गैर यादव ओबीसी पर नजर रखी गई है। गैर जाट और दलित वोट साधने की कोशिश हुई है। बूथ से लेकर बिरादरी तक पकड़ बनाने की कोशिश हुई है। यूपी में पश्चिम से पूर्वांचल तक योगी का बैलेंस गेम दिखता है। गुर्जर, पाल, पिछड़ा, दलित, ब्राह्मण, हर क्षेत्र, हर जाति, हर समीकरण का ध्यान रखा गया है। या यूं कहें कि समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले के जवाब में बीजेपी ने सत्ता का नया सामाजिक गणित सामने रख दिया है। राजनीति सिर्फ सत्ता चलाने की कला नहीं है, समाज के मन को पढ़ने का विज्ञान भी है। और उत्तर प्रदेश में जिसने जाति, क्षेत्र और भावनाओं का संतुलन साध लिया, दिल्ली का रास्ता अक्सर उसी के लिए आसान हो जाता है। 2027 अभी दूर है, लेकिन उसकी आहट लखनऊ के सत्ता गलियारों में आज साफ सुनाई दे रही है।
9: 2024 का सबक हो या फिर ये पीडीए का असर, इतना है कि इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में दलितों, ओबीसी और ब्राह्मणों को ही तवज्जो दी गई है। और जो नया आंकड़ा है वो दिखाता है कि किस तरीके से 2024 में मुंह खा चुकी बीजेपी 2027 में कोई भी मौका देने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि आज के इस मंत्रिमंडल विस्तार में 6 में से 5 मंत्री ओबीसी और दलित बिरादरी से हैं। ब्राह्मणों को भी खुश करने की ये कोशिश। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
0: तो माना जा रहा है कि 26 में ही 27 की तैयारी बीजेपी ने कर ली। हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक भी जुड़ गए। कुमार अभिषेक, क्या पोर्टफोलियोज के बारे में जानकारी मिल पाई कि किसको कौन सा विभाग मिल रहा है, और इस विस्तार के मायने भी डिटेल समझाएं।
9: देखिए राजीव, अभी जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ अभी तक इसकी जानकारी नहीं है कि किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिला है। मुझे लगता है कुछ वक्त के अंदर ही ये पोर्टफोलियो देर रात तक आ जाएगा। दो कैबिनेट हैं, इसलिए दो बड़े विभाग निश्चित तौर पर जो दो मंत्री बनाए गए हैं, चाहे भूपेंद्र चौधरी हो या फिर मनोज पांडे, उन्हें दिए जाएंगे। बाकी जो स्वतंत्र प्रभार दो लोग हैं उन्हें भी बड़े विभाग मिलेंगे। किसको क्या मिलेगा ये कहने की बात होगी। क्या देखना होगा कि क्या और मंत्रियों के भी पोर्टफोलियो में कोई बदलाव होता है या नहीं, क्योंकि उसकी बहुत चर्चा है। लेकिन जहां तक इस मंत्रिमंडल विस्तार के मायने की बात है, तो निश्चित तौर पर आज से चुनाव का आगाज मान लीजिए, ये टोन सेट किया गया है 2027 के लिए। बीजेपी जिस तरीके से कोलकाता और असम का चुनाव जीत करके सामने आई है, और भी कई राज्य के चुनाव हुए हैं, लेकिन एक तरफ भगवा लहर, उम्मीद कर रही है बीजेपी के 27 में योगी के चेहरे पे एक बार फिर वो भगवा लहर पर सवार होगी। लेकिन वो जो जमीन है जातीय रणनीति की, जातीय समीकरणों को साधने की, वो छोड़ने को तैयार नहीं है। यानी कि बेशक मुख्यमंत्री का चेहरा होगा भगवा, और देश भर में जो उनका एक अपना प्रभाव है उसका असर उत्तर प्रदेश में होगा, लेकिन उन्हें मालूम है कि अगर जमीन पर साधना है तो जातियों को ही साधना होगा। यही वजह है कि आप देखें दलित, ओबीसी, इनके कितने चेहरे आज बनाए गए। और आखिर में ये भी कह दूं कि एक कोशिश बीजेपी की उस यूजीसी से भी पिंड छुड़ाने की है, क्योंकि मनोज पांडे जैसा चेहरा, हालांकि जब आए थे तब से ही कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें लिया जाएगा, लिया गया। लेकिन एक बात और, कुछ जो बगावती सुर हैं वो सुनाई देने लगे हैं, कई लोगों को मंत्री नहीं बनाया गया। तो आशा मौर्य, ब्रजभूषण सिंह, जो उनका भी दर्द दिखाई दिया है।
0: बिल्कुल, उन्होंने तो शेर ही जो है साझा किया, पोस्ट किया। आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो योगी सरकार ने कैबिनेट विस्तार कर लिया है, और यूपी सरकार के नए चुने गए मंत्रियों का क्या कुछ कहना है इस पर आपको सुनाते हैं।
15: जयशंकर जी, क्या रहा आज का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, क्या कहेंगे?
16: देखिए, समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व दिया गया है और हर क्षेत्र के जो है संतुलन को भी बनाया गया है। सबको सामंजस्य, सभी को समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व मिले, इसकी इस मंत्रिमंडल में मैंने कोशिश की गई है। और उसमें महिलाएं भी हैं, समाज के जो हर वर्ग के लोगों को भी इसमें अवसर मिला है।
15: मनोज पांडे सपा का बड़ा चेहरा रहे हैं, मुलायम सिंह यादव की सियासत से जुड़ा उनका नाम रहा है, आप लोगों ने अब उनको अपनी तरफ कर लिया है, कैबिनेट मंत्री भी बना दिया है।
16: मनोज पांडे जी ने उस समय जिस तरह से सनातन का विरोध समाजवादी पार्टी कर रही थी, राम मंदिर का निर्माण का विरोध कर रही थी, सनातन पर उनका स्पष्ट मत था, उस पर समाजवादी पार्टी का अपना और उस समय के जो तथाकथित समाजवादी पार्टी के नेता थे सनातन पर जो टिप्पणी करते थे उसे आहत होकर के उन्होंने पार्टी छोड़ी थी और आज उसी सनातन ने उनको कैबिनेट मंत्री बनाकर के उनको सम्मान देने का काम।
15: सवाल है विस्तार हुआ है तो अखिलेश यादव इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं कि आप लोग विस्तार जो है वो केवल जातियों को घुमाने के लिए कर रहे हैं।
16: देखिए विस्तार इसलिए हुआ कि जो जिन समाज का प्रतिनिधित्व नहीं मिला था या जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं था सबको साथ लेके चलने वाली हमारी पार्टी है, सबका साथ सबका विकास, न किसी का वर्चस्व न किसी की उपेक्षा, ये मोदी जी का नारा है। समाजवादी पार्टी की तरह थोड़ी कि वर्चस्व एक ही परिवार में रहे, सबको अवसर मिलता है और पार्टी ने अवसर दिया है।
15: संजय जी किस तरीके से देख रहे हैं, सेटिस्फाइड है जिनके नाम है?
14: निश्चित रूप से भारत के संविधान में सामाजिक न्याय की बात की गई और सामाजिक न्याय में जो जातियां उपेक्षित रहे उन्हें अवसर मिलना चाहिए, उनके नेतृत्व को अवसर मिलना चाहिए और हमारे ताकि उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने के लिए मंत्रिमंडल में सहयोगियों की आवश्यकता होती और हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश को गति देने के लिए इस मंत्रिमंडल का विस्तार उसके लिए मैं बधाई देता हूँ।
15: उम्मीद थी निषाद पार्टी या निषाद समाज से भी किसी को तवज्जो दी जा सकती है एक और मंत्री?
14: सबकी सभी निर्बल शोषित की लड़ाई लड़ते हैं, हमारी पार्टी का नाम है निर्बल इंडियन शोषित।
15: आपको उम्मीद थी कि क्या निषाद समाज से भी कोई?
14: उम्मीद थी कि और जातियों को साधा जाएगा और निश्चित रूप से कई जातियों के लोग आए, ये हमारी लड़ाई का हम लोगों का सम्मान है।
15: कुछ कमी रह गई क्या कहीं कुछ पार्टी कुछ जातियों को साधने में?
14: नहीं नहीं पूरा लगभग कमी तो रहेगी, अभी धीरे धीरे एक बार में तो सब पूरा होता नहीं, हमको लगता है ये बड़ा कदम रहा और भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता
15: हूँ। राजभर जी से बातचीत हुई?
14: नहीं सबसे बातचीत होती रहती है।
15: तोमेंद्र तोमर हमारे साथ हैं, यूपी सरकार में मंत्री तो पहले से ही थे अभी भी हैं लेकिन अब हो गए हैं स्वतंत्र प्रभार यानी कि पदोन्नति हुई है। तोमर जी किस तरीके से देख रहे हैं जो एलिवेशन हुआ है?
17: देखिए हम लोग विद्यार्थी परिषद के समय से काम करने वाले कार्यकर्ता है और हमारी पार्टी बड़ी बारीकी से हमारा पार्टी नेतृत्व राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व सभी चीजों की मॉनिटरिंग करता है। पार्टी ने जो निर्देश दिया है सरकार का जो निर्देश है जो दायित्व मिलेगा उसका निर्वहन करेगा।
15: आज आप पहुंचे हैं आपके पुराने मित्र सब वहां मौजूद रहे, क्या कहेंगे? बातचीत हुई वार्ता हुई मुख्यमंत्री से, क्या कुछ आगे करना है?
17: देखिए हम लोग टीम वर्क पे विश्वास करते हैं, एक टीम के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे।
15: गवर्नर साहब भी वहां मौजूद रही हैं, कुछ हिदायतें मिली हैं?
17: देखिए लगातार उनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता है, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उनका मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व लगातार उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहा है।
15: सपा सवाल उठा रही है सियासत पे, यानी ये कुल मिलाकर जो जाति समीकरण की बात हो रही है इन सारी चीजों पर?
17: देखिए हम लोग सभी का साथ सबके विकास की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी सभी को साथ लेकर चलती है और वास्तव में सभी जातियों का सामंजस्य बनाकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है।
15: विभाग क्या रहेगा कुछ अभी इस बात का आइडिया?
17: पार्टी तय।
0: अब बात करते हैं असम की। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा को बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। 12 मई को हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जेपी नड्डा और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी पर्यवेक्षक और सह पर्यवेक्षक बनकर असम गए हुए थे और उनकी मौजूदगी में हिमंता को नेता चुना गया। लगातार दूसरी बार हिमंता असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
18: प्रधानमंत्री जी ने ये चुनाव प्रसार अभियान में भाग लिया। बीते 10 साल असम का विकास को एक जो हम कभी सोचे भी नहीं था उस लेवल तक लेके गया और ये पूरा विजय प्रधानमंत्री जी ने जो असम को विकास का रास्ता में लेके गया ये पूरा चुनाव प्रधानमंत्री जी का विकास को विकास का ये यज्ञ को असम का जनता ने आशीर्वाद दिया है और हम असम का जनता को विश्वास दिलाता हूं कि प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में हम अगली 5 साल भी दिन रात मेहनत करके काम करेगा। असम को असम का विकास हमारा मूल लक्ष्य होगा। असम में शांति लाने के लिए हमारे गृह मंत्री अमित शाह का जो प्रयास था इस प्रयास का नतीजा हुए आज असम देश का अंदर एक पीसफुल स्टेट का हिसाब से उभरा है। मैं सम्माननीय गृह मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।
0: पीएम मोदी आज तेलंगाना के दौरे पर भी थे और एक कार्यक्रम के दौरान वहां पर सीएम रेवंत रेड्डी भी मौजूद थे। पहले बोलते हुए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में विकास का मुद्दा उठाया। इशारों में पीएम मोदी से केंद्र से मिलने वाली सहायता पर बात की और इसका जवाब बाद में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में अपने अंदाज में दिया, जिससे वहां पर हंसी की लहर दौड़ गई। पहले आपको सुनाते हैं सीएम रेवंत रेड्डी का भाषण का वो खास हिस्सा जिस पर पीएम मोदी ने बाद में जवाब दिया।
19: जब मोदी जी इस देश का प्रधानमंत्री है, लोग मेरे ऊपर उम्मीद रखा है आने वाले 10 साल में तेलंगाना मॉडल बना के 2034 $1 trillion इकोनॉमी रीच करने के लिए लोग उम्मीद रखा है, तो 2034 $1 trillion इकोनॉमी अगर तेलंगाना रीच हो गए तो 2047 तक हम लोग $3 trillion इकोनॉमी आसानी से हम पहुंच जाएंगे। इसके लिए जैसा मनमोहन सिंह जी मोदी जी को साथ दिए एज ए प्रधानमंत्री, आज हम 4 करोड़ तेलंगाना जनता के तरफ से मेरा गुजारिश है, मेरा रिक्वेस्ट है मोदी जी से, आप भी उतना ही आशीर्वाद ही तेलंगाना राज्य पे रहना है, तब हम तरक्की कर सकते हैं।
0: अब सुनिए रेवंत रेड्डी के बयान पर पीएम मोदी का हाजिर जवाब, जिसे सुनकर वहां पर हर किसी ने ठहाके लगाए।
20: मैं रेवंत जी से कहूंगा कि 10 साल के शासन में भारत सरकार ने जितना गुजरात को दिया वो मैं आपको देने को तैयार हूं। लेकिन मेरी जानकारी से मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही मैं ऐसा करूंगा आपको जो अभी मिल रहा है वो आधा हो जाएगा। आप जहां पहुंचना चाहते हैं नहीं पहुंच पाएंगे, और इसलिए अच्छा है कि मेरे से ही जोड़ो

0: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffeehouse Station. Enjoy a carefully brewed mix of soft acoustic sounds
1: with artists like James Bay,
2: Come on, let it go.
0: Norah Jones,
3: the heart is drained.
0: Daniel Caesar, more as you sink into a good book or get lost in your work. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती
6: है। भाई, भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूफ कर दिखाया यार, एनीबॉडी कैन ड्रीम।
5: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
7: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, एफर्टलेस स्टाइल, एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।
8: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
9: जीके मैक्स।
10: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
9: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
10: जेके वॉल मैक्स
9: बेस्ट पेंट,
10: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
10: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
11: इसमें माइक्रो फाइबर है।
10: माइक्रो फाइबर यानी
11: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत?
10: हमारे सीमेंट में नहीं है,
11: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
12: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है। खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
3: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें।
4: टेबल को ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं भाई साहब, सब पचा दे।
5: पर दिक्कत तो होने आती है जो टेबल के नीचे से खा।
6: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
7: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
8: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
9: विक्रम, एक हिंट तो देते।
10: विक्रम!
9: हिंट
8: बड़े आराम से।
11: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
12: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
13: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: Character, the taste of success.
2: JK Masala ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है. ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद. JK Masala, जहां स्वाद वहां JK.
3: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता.
4: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स.
5: लायन डेट नट बाइट्स.
6: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना. कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत. कैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो.
7: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं. गोल्डी हिंग कण कण में जान.

0: समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का स्तर बहुत ही ज्यादा होने वाला है। खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
1: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
2: आज तक ला रहा है आपके लिए वीडियो वाला पेपर, हर रोज सुबह आपके मोबाइल पर, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। इसे पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर epaper.aajtak.in टाइप करें या फिर स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड को स्कैन करें।
3: अभी तमिलनाडु में ही देखिए, 25-30 साल से कांग्रेस का डीएमके के साथ घनिष्ठ संबंध था। डीएमके के साथ गठबंधन ने कितनी ही बार कांग्रेस को संकटों से बाहर निकाला और 2014 के पहले 10 साल उनकी जो सरकार थी वो भी डीएमके के कारण टिकी थी। लेकिन क्या हुआ, जिस डीएमके के साथ 25-30 साल का जीने मरने का नाता था, हर पल जो डीएमके कांग्रेस की भलाई के लिए काम करती थी, लेकिन जैसे ही सत्ता का खेल कहीं और मुड़ गया तो सत्ता के लालच में सत्ता भूखी कांग्रेस ने पहला मौका मिलते ही डीएमके की पीठ में छुरा भोंक दिया।
4: नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा पेज, जय जोहर, इंशाल्लाह, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। आबार देखा होबे, फिर मिलेंगे, राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे, आर जहां फूल खिलेंगे और रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे।
5: सत्ता भी गई, साफ भी गई, सीएम गिरी भी गई, विधायकी भी गई, सिर्फ पार्टी हारती और ममता अपनी सीट भी जीत जाती तो कम से कम विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका तो निभाई जा सकती थी, लेकिन वो भी हो न सका। सामने सिर्फ एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह रह गया है, अब दीदी क्या करेंगे? तृणमूल बहुमत से जीत जाती, ममता अपनी सीट हार जाती तो भी 6 महीने मुख्यमंत्री बनी रहती और इस बीच किसी सुरक्षित सीट से जीत कर मुख्यमंत्री पद पर काबिज रह सकती थी, लेकिन ये विकल्प भी बंद हो गया। तो सवाल ये है कि अब ममता के पास कितने रास्ते हैं? शुभेंदु अधिकारी 2 सीटों से चुनाव लड़े और दोनों से जीते, एक नंदीग्राम, दूसरा भवानीपुर। उन्हें इनमें से एक सीट छोड़नी पड़ेगी जिस पर बाद में उपचुनाव होगा। इसी तरह हुमायूं कबीर रेजीनगर और 9 सीटों से चुनाव लड़े और दोनों में उन्हें जीत हासिल हुई, एक सीट उन्हें भी छोड़नी होगी। इस सीट पर भी उपचुनाव होगा। ममता को इन्हीं छोड़ी गई 2 में से 1 सीट पर चुनाव लड़ना होगा ताकि अगर वो जीतती है तो कम से कम नेता प्रतिपक्ष बन सके। ममता अपने विधायकों के साथ सड़क से लेकर सदन तक सरकार के खिलाफ रणनीति बनाएं और सरकार को खेलें, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने विधायकों को टूट फूट से बचाने की चुनौती का सामना पहले करना होगा। सत्ता परिवर्तन के बाद दल बदल का खतरा बढ़ जाता है। बंगाल गंवाने के बाद वो केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी मोर्चा तैयार कर सकती हैं, लेकिन जिस तरह से वो हारी हैं, उससे उन्हें विपक्षी राजनीति का प्रमुख चेहरा बनना आसान नहीं होगा। भवानीपुर जैसा अपना गढ़ हारना और सत्ता से बाहर होना ममता के लिए बड़ी चिंता का विषय है। अब उन्हें एक बार फिर से अपनी टीम में बड़े बदलाव करने होंगे। अभिषेक बनर्जी की भूमिका और पार्टी की रणनीति पर सवाल उठेंगे, जिसे ठीक करना उनकी प्राथमिकता होगी। वो नए सिरे से संघर्ष की शुरुआत कर सकती हैं, लेकिन उसमें उम्र और मजबूत बीजेपी आड़े आ सकती है। बंगाल की राजनीति में दीदी का दबदबा रहा है, लेकिन अब हालात बदले हैं तो उन्हें बदलाव की राजनीति करनी होगी। वो ये कैसे करेंगी, इस पर तृणमूल कांग्रेस का और ममता बनर्जी का भविष्य निर्भर करेगा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: यूपी में 2027 का चुनावी समीकरण साधने के लिए योग्य कैबिनेट का विस्तार। भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे समेत 6 नए चेहरे। दो राज्य मंत्री अजीत पाल, सुमेंद्र तोमर को मिला स्वतंत्र प्रभार। तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनते ही एक्शन में विजय। 200 यूनिट बिजली फ्री। महिला सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स का ऐलान। कहा डीएमके ने छोड़ा 10 लाख करोड़ का कर्ज। हैदराबाद के दौरे पर पीएम मोदी का नया नारा। रैली में कहा अगली बार तेलंगाना में बीजेपी सरकार। सुबह बेंगलुरु में कांग्रेस को बताया सत्ता की भूखी। असम में 12 मई को हेमंता फिर लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। उससे पहले कहा 2021 से 26 से ट्रेलर, 2031 तक दिखाऊंगा पूरी पिक्चर। भीषण गर्मी और बाढ़ से निपटने के लिए दिल्ली में अमित शाह की उच्च स्तरीय बैठक। अलर्ट सिस्टम को मजबूत करने पर जोर। मेडिकल तैयारियों की भी समीक्षा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: नमस्कार, आप देख रहे हो आज तक। मैं हूं अक्षता नंद गोपाल। 10 मई 2026 ऐतिहासिक दिन है तमिलनाडु के लिए। क्यों? क्योंकि जहां मैं हूं, मेरे पीछे तमिलनाडु सचिवालय है, यहां पे एक नया शक्ति ने प्रवेश किया है। मैं किसके बारे में बात कर रही हूं? आपने गेस कर लिया होगा, विजय, सी जोसेफ विजय, जो आज शपथ लिया था एज मुख्यमंत्री ऑफ तमिलनाडु। इसी के साथ, और ये इतना ऐतिहासिक क्यों है, क्योंकि 1967 में कभी भी तमिलनाडु में एक और मुख्यमंत्री जो डीएमके और एआईएडीएमके में नहीं है कभी नहीं देखा है, और इसलिए आज इतना ऐतिहासिक दिन था। मैं वहां पे थी जहां पे शपथ ग्रहण हुआ था। एक बहुत बड़ा धमाकेदार इवेंट था जहां पे हजारों लोग आए थे, और उसके बीच में विजय ने शपथ लिया। उनके परिवार थे, उनके सबसे खास दोस्त थे। चलिए पहले हम देखते हैं हाइलाइट्स उस शपथ ग्रहण का।
5: सी जोसेफ विजय यनमनान।
6: तमिलनाडु में शुरू हो गया है विजय राज। थलापति विजय अब रचेंगे तमिलनाडु का मुस्तकबिल।
5: There are so many jackals and other animals in the forest, but there will be only one lion. And even if it is single, it will be the king of jungle. It is not only a description, but also a clear declaration.
6: वो विजय जो अब तक रियल लाइफ के हीरो थे, अब रियल लाइफ के हीरो बन गए हैं। तमिलनाडु की जनता ने दिल खोल कर उनका साथ दिया है, उन पर भरोसा किया है। और अब उस भरोसे पर खड़े उतरने की जिम्मेदारी विजय की है। शपथ लेने के तुरंत बाद विजय ने अपने दो सबसे बड़े चुनावी वादे को पूरा कर दिया। इससे राज्य की जनता चहक उठी। विजय ने शपथ स्थल से अपनी सरकार के पहले बड़े फैसलों में से एक के तौर पर 200 यूनिट मुफ्त बिजली और सिंगापुर स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का ऐलान कर दिया। विजय के दिल में क्या था वो अपनी फिल्म के जरिए ये बताते रहे हैं, जताते रहे हैं कि क्यों वो तमिलनाडु की सियासत में घुसे हैं। तमिलनाडु में पिछले 59 साल 1 महीने और 28 दिनों तक सिर्फ दो ही पार्टियों का राज था। तमिलनाडु में पिछले 21,608 से सिर्फ दो ही पार्टियां शासन करती थी, डीएमके और एडीएमके। बीच बीच में तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन भी रहा, लेकिन दोनों पार्टियों के अलावा किसी तीसरे की एंट्री नहीं हो पाई। लेकिन अब इन दोनों पार्टियों के राज को 59 साल के बाद थलापति विजय की टीवीके ने ध्वस्त कर दिया है।

विजय ने वो करके दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। किसने सोचा था कि सिर्फ 2 साल में ऐसा कमाल दिखाएंगे कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन जाएंगे।

0: जानूंगा। विजय मौजूदा वक्त में तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। विजय के पास पैसा, स्टारडम, फैन फॉलोइंग सब कुछ था। वो चाहते तो आराम से सुपरस्टार बने रह सकते हैं, लेकिन उन्होंने राजनीति का रास्ता चुना। ...2016 में जयललिता की मौत के बाद से तमिलनाडु की राजनीति में एक शून्य था, एक खालीपन था। डीएमके के सामने तो जैसे कि खुला हुआ रास्ता था, दूर दूर तक कोई भी टक्कर में नहीं था। इसीलिए 2021 में स्टालिन मुख्यमंत्री बने तो सबको लगा कि स्टालिन को कौन टक्कर देगा। इसीलिए ज्यादातर एग्जिट पोल में उनकी जीत बताई जा रही थी। लेकिन वो विजय ही थे जिन्होंने जयललिता की मौत से खाली हुई तमिलनाडु की राजनीति के शून्य को भर दिया। उनकी रैलियों की भीड़ बता तो रही थी कि तमिलनाडु में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन शायद किसी को ये अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ भीड़ नहीं है, उनके मतदाता भी हैं। और विजय के इन फैंस ने ये साबित कर दिया कि वो रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए नहीं जमा हुए थे, वो तमिलनाडु को बदलने के लिए आए थे। तमिलनाडु में थलापति विजय ने इतिहास तो रचा है, लेकिन उनको ये कामयाबी इसलिए मिली क्योंकि तमिलनाडु के लोगों को उनके अंदर एक ऐसा नायक नजर आया जो उनके राज्य को आगे ले जा सकता है। विजय की इस जीत के पीछे उनके वो फैंस थे जो उन्हें किसी भी हद तक फॉलो करते हैं। विजय ने अपने फैन क्लब को वेलफेयर नेटवर्क में बदला, लोगों की मद, युवाओं के कनेक्शन और जमीनी पकड़ मजबूत की और टीवीके के अपने वोटर तैयार किए। तमिलनाडु में विजय के 85,000 से ज्यादा फैन क्लब का नेटवर्क है जिन्होंने उनकी जीत में अहम भूमिका निभाई। उनका ये नेटवर्क पिछले 10 वर्षों से उनकी शैडो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में ही काम कर रहे थे। विजय के ये फैन क्लब पूरे तमिलनाडु में सामाजिक काम कर रहे थे, लोगों को विजय से जोड़ रहे थे। विजय आर्मी पिछले कई वर्षों से तमिलनाडु की गलियों में दिख रही थी। विजय की जीत की सबसे बड़ी वजह है उनकी लोकप्रियता। विजय भले ही 51 साल के हों, लेकिन उन्हें युवाओं का जेंजी नेता कहा जाता है। तमिलनाडु में 40 से कम उम्र के युवाओं की संख्या 2 करोड़ है, जो तमिलनाडु के करीब 41.5% वोटर होते हैं। विजय का यही युवा कैडर सोशल मीडिया पर भी एक्टिव था, जिन्होंने तमिलनाडु में विजय के पक्ष में हवा बनाई। विजय ने किसी बड़े गठबंधन का सहारा नहीं लिया, न डीएमके, न एडीएमके, न बीजेपी, सीधे जनता के बीच गए। मुद्दे थे रोजगार, शिक्षा, भ्रष्टाचार और बदलाव, और नतीजा ये कि टीवी के सबको चौंकाते हुए आज अपनी सरकार बना चुकी है और मुख्यमंत्री बन गए हैं थलापति विजय। चेन्नई से अक्षिता नंदगोपाल के साथ आज तक ब्यूरो।
1: विजय के प्रोफाइल जो है, जो मैं बता रही हूँ आपको, थलापति के जो टैग है वो कहाँ से आया था? उनकी फिल्म्स अगर आपने देख लिया तो एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोफाइल बन चुका था विजय के लिए, एक लार्जर देन लाइफ हीरो जो हमेशा लोगों को मदद करता था। स्पेशली उनके लास्ट फ्यू फिल्म्स जो था उसमें काफी पॉलिटिकल मैसेजिंग भी था, उसी में हिंट थे कि विजय के अल्टीमेट गोल यही था, पॉलिटिक्स, मुख्यमंत्री बनना और तमिलनाडु सचिवालय में आना।
0: तमिलनाडु में शुरू हो गया है विजय राज, थलापति विजय अब रचेंगे तमिलनाडु का मुस्तकबिल।
2: There are so many jackals and other animals in the forest, but there will be only one lion, and even if it is single, it will be the king of jungle. It is not only a description, but also a clear declaration.
0: वो विजय जो अब तक रियल लाइफ के हीरो थे, अब रियल लाइफ के हीरो बन गए हैं। तमिलनाडु की जनता ने दिल खोल कर उनका साथ दिया है, उन पर भरोसा किया है। और अब उस भरोसे पर खरे उतरने की जिम्मेदारी विजय की है। शपथ लेने के तुरंत बाद विजय ने अपने 2 सबसे बड़े चुनावी वादे को पूरा कर दिया। इससे राज्य की जनता चहक उठी। विजय ने शपथ स्थल से अपनी सरकार के पहले बड़े फैसलों में से एक के तौर पर 200 यूनिट मुफ्त बिजली और सिंगापुर स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का ऐलान कर दिया। विजय के दिल में क्या था वो अपनी फिल्म के जरिए ये बताते रहे हैं, जताते रहे हैं कि क्यों वो तमिलनाडु की सियासत में घुसे हैं। तमिलनाडु में पिछले 59 साल 1 महीने और 28 दिनों तक सिर्फ दो ही पार्टियों का राज था। तमिलनाडु में पिछले 21,608 से सिर्फ दो ही पार्टियां शासन करती थी, डीएमके और एडीएमके। बीच बीच में तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन भी रहा, लेकिन दोनों पार्टियों के अलावा किसी तीसरे की एंट्री नहीं हो पाई। लेकिन अब इन दोनों पार्टियों के राज को 59 साल के बाद थलापति विजय की टीवीके ने ध्वस्त कर दिया है।

विजय ने वो करके दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। किसने सोचा था कि सिर्फ 2 साल में ऐसा कमाल दिखाएंगे कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन जाएंगे।

0: मौजूदा विजय मौजूदा वक्त में तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। विजय के पास पैसा, स्टारडम, फैन फॉलोइंग सब कुछ था। वो चाहते तो आराम से सुपरस्टार बने रह सकते हैं, लेकिन उन्होंने राजनीति का रास्ता चुना। ...2016 में जयललिता की मौत के बाद से तमिलनाडु की राजनीति में एक शून्य था, एक खालीपन था। डीएमके के सामने तो जैसे कि खुला हुआ रास्ता था, दूर दूर तक कोई भी टक्कर में नहीं था। इसीलिए 2021 में स्टालिन मुख्यमंत्री बने तो सबको लगा कि स्टालिन को कौन टक्कर देगा। इसीलिए ज्यादातर एग्जिट पोल में उनकी जीत बताई जा रही थी। लेकिन वो विजय ही थे जिन्होंने जयललिता की मौत से खाली हुई तमिलनाडु की राजनीति के शून्य को भर दिया। उनकी रैलियों की भीड़ बता तो रही थी कि तमिलनाडु में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन शायद किसी को ये अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ भीड़ नहीं है, उनके मतदाता भी हैं। और विजय के इन फैंस ने ये साबित कर दिया कि वो रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए नहीं जमा हुए थे, वो तमिलनाडु को बदलने के लिए आए थे।
1: और बड़ी खबर आपको देते हैं। हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से एक साल तक सोने की खरीद न करने की अपील की है। पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक संकट के बीच में विदेशी मुद्रा बचाने पर जोर देना होगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हमें तेल बचाने पर भी जोर देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक संकट के बीच में बड़ी लोगों से अपील की है।
2: यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है, और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं। जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है, हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। भारत में बहुत सारी जगह है, वहां जा सकते हैं, बहुत कुछ भारत में किया जा सकता है।
1: तो विदेश नहीं जाना, सोना नहीं खरीदना, बहुत संयम से पेट्रोल डीजल को खर्च करना है, ये प्रधानमंत्री की अपील है। अब रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

0: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
4: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती है।
5: भाई, भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूव कर दिखाया यार, anybody can dream।
4: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
6: Breathable fabrics, awesome comfort, effortless style, AD from the house of Arvind।
7: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
8: GK Max।
9: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
8: GK Max, best putty।
10: JK Wall Max।
11: बेस्ट पेंट
12: जेके मैक्स।
13: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
14: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
15: इसमें माइक्रो फाइबर है।
14: माइक्रो फाइबर यानी
15: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत?
14: हमारे सीमेंट में नहीं है,
15: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
16: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है। खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
3: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें।
4: करेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
5: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी टेक्निक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
6: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
7: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
8: लायन डेट नट बाइट्स।

हॉर्मुज में अमेरिका ईरान ने मचाया बवाल। अमेरिकी हमले में 6 लापता, 6 घायल। ईरान ने दागी मिसाइलें, जबरदस्त पलटवार। हॉर्मुज के समंदर में फिर आग लग गई है। पिछले 48 घंटों में हॉर्मुज में अमेरिका और ईरान आमने सामने आ गए हैं। पहले ईरान ने यूएई के फुजैरा पोर्ट पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दागी। हालांकि यूएई के दावे के बावजूद ईरान आधिकारिक तौर पर इससे साफ इनकार करता रहा। फिर अमेरिका ने ईरानी टैंकर पर जबरदस्त हमला कर दिया। फाइटर जेट के जरिए किए गए इस हमले में न सिर्फ टैंकर को भारी नुकसान हुआ है बल्कि क्रू को भी चोट लगी है। लेंगेह पोर्ट के गवर्नर के मुताबिक ईरानी जहाज पर हुए हमले में 6 लोग घायल हो गए हैं जबकि 6 क्रू सदस्यों का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। इस हमले में ईरान बौखला गया है और उसने हॉर्मुज में अमेरिकी डिस्ट्रॉयर यूएसएस ट्रक्सटन, यूएसएस मैसन और यूएसएस राफेल पिराटला पर मिसाइलों, ड्रोन और छोटी नावों से हमला किया है। ईरान की नेवी ने वीडियो जारी कर दावा किया है कि उसने अमेरिकी हमले का ऐसा जवाब दिया है कि वो सीज फायर का फिर उल्लंघन करने पर 100 बार सोचेगा। इस वायरल वीडियो में एक के बाद एक कई मिसाइलें हमला करती हुई दिख रही हैं। सीज फायर के तमाम दावों के बावजूद हॉर्मुज में लगातार हाहाकार बढ़ रहा है। अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास, केश द्वीप और मीनाप पर हमले किए हैं। अपने बंदरगाहों पर अमेरिका की नाकेबंदी से ईरान बुरी तरह चिढ़ा हुआ है। इससे न सिर्फ उसके लाखों बैरल तेल का निर्यात रुका हुआ है बल्कि अमेरिका के कई विनाशकारी युद्धपोत भी उसकी सरहद के करीब आ चुके हैं। यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने कहा है कि उसने अब तक 70 से ज्यादा जहाजों को ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने या वहां से निकलने से रोका है। एक अनुमान के मुताबिक इन जहाजों में 13 अरब डॉलर से ज्यादा कीमत का तेल ले जाने की क्षमता थी। हॉर्मुज में हाहाकार से तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। ब्रेंट क्रूड $103 प्रति बैरल तक पहुंच गया है जबकि अमेरिकी WTI $96 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। इस बीच रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद से फोन पर बात की। दोनों के बीच सीज फायर और हॉर्मुज के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। रूस ने ईरान और पड़ोसी देशों में हमले से बेकसूर लोगों के मारे जाने और इंफ्रास्ट्रक्चर की बर्बादी पर चिंता जताई है। जो हालात हैं उनमें हॉर्मुज में फंसे जहाजों को फिलहाल कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। अमेरिका ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए और डील पर मुहर लगाने के लिए नाकेबंदी लगाए रखना चाहता है जबकि ईरान की शर्त है कि पहले नाकेबंदी हटे तब बात आगे बढ़े। लेकिन दोनों अपनी जिद पर अड़े हुए हैं जिसका नतीजा ये हुआ है कि सीज फायर के बावजूद हॉर्मुज में मिसाइलें गरज रही हैं। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

तेलंगाना की रैली में पीएम मोदी ने दुनिया में तेल संकट से किया आगाह, कहा पेट्रोल डीजल का संयम से करें इस्तेमाल, विदेशी मुद्रा बचाने के लिए एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील। यूपी में 2027 के चुनावी समीकरण साधने के लिए योगी कैबिनेट का विस्तार, भूपेंद्र चौधरी मनोज पांडे समेत 6 नए चेहरे, 2 राज्य मंत्री अजीत पाल, सुमेंद्र तोमर को स्वतंत्र प्रभार। तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनते ही एक्शन में विजय, 200 यूनिट बिजली फ्री, महिला सुरक्षा के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का ऐलान, का डीएमके ने छोड़ा 10 लाख करोड़ का कर्ज। असम में 12 मई को हेमंता फिर लेंगे सीएम पद की शपथ, उससे पहले कहा 2021 से 26 सिर्फ ट्रेलर, 2031 तक दिखाऊंगा पूरी पिक्चर। भीषण गर्मी और बाढ़ से निपटने के लिए दिल्ली में अमित शाह की उच्च स्तरीय बैठक, अलर्ट सिस्टम को मजबूत करने पर जोर, मेडिकल तैयारियों की भी समीक्षा।

0: नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। राजनीति की राह पर सपने जो दशकों पहले देखे गए, मंजिल जो वर्षों पहले तय हुई, रास्ता दुर्गम, उतार चढ़ाव भरा हुआ रहा। कभी लक्ष्य दो हाथ पास, कभी कोसों दूर। जनसंघ से 1980 में बीजेपी की स्थापना होती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी समेत तमाम नेतृत्वकर्ता और अनगिनत कार्यकर्ताओं ने अपना तन मन झोंका विचारों की जमीन पर। धारा 370, राम मंदिर, नागरिकता कानून से लेकर देश भर में अंधेरा छंटने, कमल खिलने की बात कही गई, लेकिन उस अंधकार को हटाने, कमल खिलाने, दशकों पहले रोपे गए बीजों में सफलता का अंकुरण कराने वाला सूर्य बीजेपी के लिए मोदी राज में उग पा रहा है। जहां असंभव रहे चुनावी मुकाबले, अब संभव हो रहे हैं बीजेपी के लिए। चर्चा के समुद्र में तैरते रहे बीजेपी के वैचारिक मूल मुद्दों को किनारा मिला है। पार्टी संगठन का अभूतपूर्व विस्तार आकार ले चुका है। क्या इसीलिए? क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है।
1: कमाल कर दिया है, कमल खिला दिया है आपने, नया इतिहास रच दिया है। आज का ये दिन ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। ये भरोसे का दिन है, एक ऐसा सवेरा जिसका इंतजार पीढ़ियों ने किया।
2: पंद्रह मार्च 2026 कोलकाता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस चुनावी सीजन में पहली रैली होती है।
1: बंगाल के हर कोने से आवाज उठ रही है, जय बीजेपी सरकार।
2: 56 दिन के भीतर उसी परेड ग्राउंड पर 15 साल से बंगाल में बहती सियासी हवा को बदलकर नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर उतरता है। विजय रथ पर बैठकर प्रधानमंत्री चुनावी राजनीति के नए इतिहास से सजे मंच पर पहुंचे, तीन लोगों को नमस्कार किया। पहले रविंद्रनाथ टैगोर, फिर 98 साल की माखनलाल सरकार, जिन्हें 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ ही कश्मीर में तिरंगा फहराने जाने पर गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद नरेंद्र मोदी दंडवत नतमस्तक होते हैं जनता और कार्यकर्ताओं के समुद्र के सामने, जिन्होंने बीजेपी को 3 से 77 और 77 से 200 पार पहुंचाया है, वर्षों से संजोए सपने को साकार कराया है, बताया है मोदी है तो बंगाल में बीजेपी की जीत मुमकिन हो पाई है।
1: बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल।
2: गंगोत्री से गंगा सागर की बात जब होती है तो हाँ, बंगाल जीत जो 17 चुनाव तक मुमकिन नहीं थी, वो अब मुमकिन हो चुकी है। अगले 9 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश में हैट्रिक लगाने का काम भी क्या मुमकिन हो पाएगा। उत्तराखंड में लगातार 2 बार सरकार के रिकॉर्ड के बाद 3री बार जीतने का नया कीर्तिमान बनेगा। इसके अलावा चुनौती पंजाब की होगी, जहां अब तक बीजेपी के अपने दम पर एंट्री नहीं हुई। पहले सरकार अकाली दल के साथ ही रह पाई, तो क्या अपने दम पर पंजाब जीता जा सकेगा। गोवा में क्या जीत का चौका बीजेपी मारेगी, और हिंसा के बाद मणिपुर क्या फिर मौका देगा। ये सब क्या उसी तरह मुमकिन हो सकता है जैसे बंगाल में नरेंद्र मोदी के नाम पर हो पाया।
3: मोदी फैक्टर है, मोदी मैजिक। अभी जब तक मोदी जी बीजेपी में रहेंगे, मोदी फैक्टर रहेगा। बहुत फायदा मिला हम लोगों को, और मोदी जी तो फैक्टर ही है। मोदी जी नहीं रहते तो शायद अब कुछ दिन बाद हमारे हिंदू के नामो निशान खत्म हो जाते। आज मोदी जी थे और रहेंगे, और हम लोग की हिंदू का सनातन धर्म बचा हुआ है।
4: ये मोदी जी की देन है। दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी आने के कारण यहाँ पे बहुत सारे जो हमारे जो युवक है या आकर्षित होकर उनको वोट दिए हैं, मतदान दिए हैं।
5: आज यहाँ पूरा पश्चिम बंगाल मोदी के ही भरोसे, मोदी के ही नेतृत्व में भगवामय हुआ है।
2: बंगाल में भगवा राज यूं ही नहीं आया, एक लंबा सियासी यज्ञ चला, तब जाकर मनोकामना पूरी हुई। जनसंघ की स्थापना करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की। 1952 में पहली बार बंगाल में 9 सीट मिली। बंगाल जीतने का सपना तब से लेकर बीजेपी की स्थापना से होते हुए आखिरकार 74 साल बाद पूरा हुआ जब मोदी राज आता है।
1: डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को आज कितनी शांति मिली होगी। उन्होंने जिस सशक्त और समृद्ध बंगाल का सपना देखा था, वो सपना कई दशकों से पूरा होने का इंतजार कर रहा था।
2: परिवर्तन करने वाली नरेंद्र मोदी की लहर राज्य दर राज्य, चुनाव दर चुनाव चल रही है। बंगाल से सटे असम में तो तीसरी बार लगातार बीजेपी की सरकार बनाने का जनादेश मिला है। हेमंत बिस्व शर्मा विधायक दल के नेता चुने गए, मंगलवार को शपथ ग्रहण होगा।
1: जनता साफ देख रही है, जहां भाजपा वहां गुड गवर्नेंस, जहां भाजपा वहां विकास। आप बीते 2 साल के ट्रेंड को देखिए, हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार बनी, महाराष्ट्र में बीजेपी की जोरदार विजय हुई, दिल्ली में अभूतपूर्व जीत हासिल हुई, बिहार में भी हमें पहले से बड़ी विजय मिली।
2: बात असम या बंगाल जीतने भर की नहीं, ये नरेंद्र मोदी ही हैं जिन्होंने जहां हुआ जन्म मुखर्जी का, वो बंगाल बीजेपी का है वाला लक्ष्य अगर पूरा कर लिया तो जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है वाला सपना भी देश के लिए मोदी के राज में ही मुमकिन हुआ। एक देश एक संविधान, एक विधान की गूंज जनसंघ काल में उठी। 1952 के पहले ही चुनाव में जनसंघ के घोषणा पत्र में अनुच्छेद 370 को हटाने की बात कही गई। बीजेपी ने 1984 के पहले घोषणा पत्र में लगातार कश्मीर को 370 से आजादी देने की मांग रखी, पर यह सब मांग 5 अगस्त 2019 को 67 साल बाद नरेंद्र मोदी सरकार में पूरी हो पाती है। 1989 के चुनावों में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर का मुद्दा शामिल किया। राम मंदिर का सपना 35 साल बाद मोदी राज में पूरा हो पाता है जब 2024 में राम मंदिर का निर्माण होता है। यूं तो 1980 से लगातार बीजेपी नागरिकता कानून की बात करती रही, लेकिन बीजेपी ने 2003 में नागरिकता संशोधन कानून पर काम किया, जिसे बाद में CAA के तौर पर बीजेपी ने इसे 2019 में कानून बनाया। यानी 16 साल में सपना पूरा हुआ जब नरेंद्र मोदी की सरकार होती है। और 1989 के घोषणा पत्र में पहली बार बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा करती है, जिस पर राज्य दर राज्य प्रगति करने के बाद अब बीजेपी इस मुद्दे पर जल्द बड़ा फैसला कर सकती है।
1: आर्टिकल 370 को हटाया और हम CAA लेकर आए, हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब कानून बन चुका है। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी देश हित में उतना ही आवश्यक समझती है।
6: 100% श्योर है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही बंगाल जीत हुई है, और आपने देखा भी है कि मोदी जी ने किस तरह से मेहनत किया है।
7: मोदी का लहर में हुआ।
8: मोदी जी का तो है ही है, उनका तो बहुत योगदान है, बहुत बड़ा है।
7: संभव तो उन्हीं के राज में है, इसलिए कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है।
9: मोदी है सब कुछ मुमकिन है, मोदी है। हम लोग आज जो राम का जो नारा लगा के जो आज जो जीते है, ये मोदी के लिए जीते है।
10: मोदी है तो सब मुमकिन है, अब तो और कुछ भी होगा, अभी तो और सपना देख रहे हैं।
2: 1952 में जब जनसंघ बना तो चुनाव निशान जलता हुआ दीपक रहा, लेकिन उस दीपक को असली रोशनी अब मिल रही है। जब बीजेपी का कमल हर तरफ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खिल रहा है।
1: ऐसे अनेक काम थे जिनके बारे में सिर्फ चर्चाएं ही हुआ करती थी। अब जब ये बातें जमीन पर उतर गई हैं, तब एक विश्वास जगा है कि मोदी है तो मुमकिन है।
0: बीजेपी को पहला राज्य जीतने में स्थापना के बाद 10 साल लगे थे, पहली बार केंद्र की सत्ता तक पहुंचने में 16 साल लगे, पहली बार 5 साल की पूर्ण सरकार चलाने में 19 साल लगे, पहली बार बीजेपी को अपने दम पर पूर्ण बहुमत पाने में 34 साल लगे। अब जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और फिर पिछले 12 साल में बीजेपी का सत्ता विस्तार अभी देश के 22 राज्य तक पहुंच चुका है। केवल देश के 3 राज्य बचे हैं जहां विजय रथ अब तक नहीं पहुंचा है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने 9 नए राज्यों में कमल खिलाया है। 2014 के बाद देश में हुए 72 विधानसभा चुनावों और 3 लोकसभा चुनाव मिलाकर 75 चुनाव में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 60% रहा है। ये वो आंकड़े हैं जो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की लहर रुकी नहीं है।
11: हमने मेहनत की, हम लोगों में गए, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है, ये कोई चुनाव में कुकर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी।
2: पिछली सदी में 90 के दशक में सत्ता तक बीजेपी पहली बार पहुंचती है, लेकिन 96 से 1998 तक विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को रोकता रहा, बाधा बनता रहा।
11: इस सदन में एक एक व्यक्ति की पार्टियां, एक एक व्यक्ति की पार्टी, और वो हमारे साथ हमारे खिलाफ जमघट करके और हमें हटाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें प्रयास करने का पूरा अधिकार है, मगर है वो एक व्यक्ति की पार्टी। एकला चलो रे, और चलो एकला अपने चुनाव क्षेत्र से और दिल्ली में आकर हो जाओ इकट्ठे रे।
2: अप्रैल 1999 जब एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी, विपक्ष की राजनीति के उन दांव पेच को नरेंद्र मोदी भूले नहीं।
1: खरीद फरोख तब भी हो सकती थी, बाजार में माल तब भी बिकता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने एक वोट से हारना पसंद किया, इस्तीफा दिया, लेकिन असंवैधानिक कोई कृत्य नहीं किया।
2: नरेंद्र मोदी जानते हैं कि विपक्ष बार बार अलग अलग तरह के गठजोड़ करके उन्हें भी रोकने में जुटा है, जबकि मोदी राज में बंगाल जीतने के बाद 9 राज्यों में पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बन चुका है। 3 बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुमत के साथ सरकार बना चुकी बीजेपी एनडीए ने विधानसभा के चुनावों में भी नई लकीर खींची। 2014 से अब तक 72 बार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हुए तो 32 बार राज्यों के सीएम बीजेपी के बने, 10 बार राज्यों में गठबंधन की सरकार बनी, 42 बार बीजेपी एनडीए को सत्ता मिली, 30 राज्यों में बीजेपी और एनडीए को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन नरेंद्र मोदी 2024 में ये भांप चुके हैं कि जातियों में वोट बढ़ते ही नुकसान किस तरह कितना बड़ा होता है। जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के पीडीए और राहुल गांधी के हाथ में संविधान लेकर घूमने और 400 पार वाले बीजेपी के नारे पर संविधान बदल देने का नैरेटिव फैला देने से किस तरह सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हुआ,
12: ये आपसे चोरी हो रही।
1: मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा, और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा।
13: इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी का जो अलायंस है, समाजवादी पार्टी वैसे ही काम करेगी। इस बार पीडीए भारतीय जनता पार्टी को पूरा का पूरा हटा देगा और हमेशा के लिए हटा देगा।
14: तोड़ने के लिए तो बहुत लोग हैं, कोई जाति के नाम पे तोड़ रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे तोड़ रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, तमाम अन्य वादों के आधार पर। और जितने भी तोड़क तत्व हैं, जब ये सत्ता में आते हैं केवल अपने परिवार के लिए सोचते हैं, अपने परिवार की प्रॉपर्टी विदेश में बनाते हैं, जो जाति के नाम पर समाज को बांट रहे हैं, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांट रहे हैं, ये लोग वही पाप कर रहे हैं जो पाप कभी जयचंद और मीर जाफरों ने देश के अंदर किया।
2: क्या इसीलिए बिहार का मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद पश्चिम बंगाल का शपथ ग्रहण कराने के बाद बीजेपी ने रणनीतिक रूप से जरूरी सबसे अहम राज्य उत्तर प्रदेश पर अपनी जमीन को और भी मजबूत करना शुरू कर दिया।
15: धरती पर सोए नदियों में स्नान किया,
16: ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से जाकर
2: नरेंद्र मोदी जानते हैं कि 2029 जीतना है तो तैयारी पहले 2027 की करनी होगी। इसीलिए योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा कैबिनेट विस्तार होता है।
17: मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ,
2: जहां 6 नए मंत्री बनाए जाते हैं, 2 पुराने मंत्री का प्रमोशन किया जाता है।
17: मैं हंसराज विश्वकर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
18: मैं मनोज कुमार पांडे।
2: इस शपथ के साथ नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ ने मिलकर पिछड़ा वोट वाला वो चक्रव्यूह तोड़ने की रणनीति बना ली, जिसके दम पर विपक्ष यूपी में एक बार कामयाबी 2024 में पा गया। नए बनने वाले यूपी के मंत्रियों का जाति गणित समझिए। भूपेंद्र चौधरी जाट ओबीसी वर्ग से आते हैं, सुरेंद्र दिलेर एससी वर्ग से, कृष्णा पासवान एससी वर्ग से, हंसराज विश्वकर्मा ओबीसी, कैलाश राजपूत लोधी हैं ओबीसी वर्ग से आते हैं, मनोज पांडे ब्राह्मण है। जो 2 मंत्री अब की बार प्रमोशन पा रहे हैं उनमें अजीत पाल पाल वर्ग से आते हैं ओबीसी हैं, सोमेंद्र तोमर गुर्जर हैं ओबीसी वर्ग से आते हैं। इस तरह यूपी में 8 में 5 ओबीसी, 2 एससी और 1 ब्राह्मण चेहरे को जगह मिली। प्रतिशत में देखिए तो नए चेहरे में 62% ओबीसी जगह पाए, वो भी गैर यादव ओबीसी।
13: पीडीए उत्तर प्रदेश में नहीं है, पूरे देश में पीडीए है। और धीरे धीरे वो पूरे देश के लोग जाग रहे हैं, और कहीं ऐसा ना हो 5% का भंडाफोड़ 95% लोग करने लगे हैं।
14: एक तात्कालिक लॉलीपॉप से समाज का कल्याण नहीं होने वाला है, देश का कल्याण नहीं होने वाला है। देश का कल्याण तब होगा जब समाज में एकता होगी, कोई भेदभाव नहीं, हम सब भारतीय होने के नाते एक हैं।
13: और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को हरा करके देश में एक ऐसी सरकार बनी जो पूर्ण बहुमत की नहीं थी। मैं उसमें उत्तर प्रदेश के सभी पीडीए कार्यकर्ताओं का और जिन्होंने समर्थन किया था उनका धन्यवाद और आभार।
19: श्री अखिलेश यादव जी तो फ्रस्ट्रेशन में है, पश्चिम बंगाल में कमल खिलने के बाद वह 2047 तक अब इंतजार करने के लिए अंदर से तैयार हो गए, कुछ बीच बीच में बोलते रहे, बोलने उनका पीडीए फर्जी है।
2: 2024 का सबक हो या फिर ये पीडीए का असर, इतना है कि इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में दलितों ओबीसी और ब्राह्मणों को ही तवज्जो दी गई है। और जो नया आंकड़ा है वो दिखाता है कि किस तरीके से 2024 में मुंह खा चुकी बीजेपी 2027 में कोई भी मौका देने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल का जाति गणित अब देखें तो सवर्ण कुल 21 है, जिनमें ब्राह्मण 8, क्षत्रिय 6, भूमिहार 2, कायस्थ 1, वैश्य 3, खत्री 1 मंत्री हैं। ओबीसी मंत्री कुल 25 हैं, जिनमें कुर्मी 4, जाट 3, लोधी 3, निषाद 2, राजभर 2, बाकी पाल, विश्वकर्मा, मौर्य, गुर्जर, कश्यप, नोनिया, प्रजापति, सैनी, तेली, वैश्य, यादव एक एक मंत्री बनाए गए। दलित मंत्री अब कुल 10 हैं, जिनमें जाटव 4, पासी 2, वाल्मीकि, धोबी, कोरी और खटिक एक एक मंत्री हैं।
20: मेरा टारगेट है सेवा, मेरा टारगेट है सम्मान,
16: मेरा टारगेट है अधिकार सबको दिलाना, उसी टारगेट पर आगे बढ़े।
20: जो भी काम मिलेगा, जो विभाग मिलेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए, विकास के लिए काम करेंगे।
21: उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने के लिए मंत्रिमंडल में सहयोगियों की आवश्यकता होती है और हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश को गति देने के लिए इस मंत्रिमंडल का विस्तार, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ।
22: सबको सामंजस्य, सभी को समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व मिले, इसकी इस मंत्रिमंडल में मैंने कोशिश की गई है।
23: जो जिम्मेवारी मिलेगी, अभी संगठन का काम कर रहा था, MLC का काम कर रहा था, अब सरकार के मंत्री के रूप में जो काम मिलेगा, निश्चित तौर पर एक संगठन सेवा है हमारा।
24: नए मंत्रियों में ज्यादातर OBC को चेहरा बनाने के साथ नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ की रणनीति यूपी में उस वोट बैंक को मजबूत करने पर है जिसने यूपी में पहले लीड दिलाई लेकिन 2024 में छिटक गया। 2014 से 2024 के बीच 3 लोकसभा 2 विधानसभा चुनाव के वोट गणित के मुताबिक BJP 80% हिंदू वोट में, सवर्ण का 70-80% वोट लगातार 2014 से पा रही है, लेकिन OBC वोट में यादव वोट को हटाकर जो 50-80% तक हिस्सा 2022 तक मिला वो अचानक 2024 में छिटकने लगा। 2019, 2022, 2024 के बीच देखें तो कुर्मी को

0: देखें तो 2019 में 49%, 2022 में 41% हुआ और फिर 2024 में घटकर 29% तक आ गिरा। क्या यही वजह है कि अब वापस पिछड़े और दलित वर्ग पर फोकस बढ़ा दिया गया है ताकि उत्तर प्रदेश में 2027 में न सिर्फ हैट्रिक लगाई जा सके बल्कि 2029 के लिए भी यूपी की जमीन को उपजाऊ रखा जा सके।
1: पश्चिम बंगाल में जनसंघ ने 1952 में 9 सीट जीती थी, फिर कभी जीत नहीं मिली। बीजेपी बनने के बाद तो पहली बार जाकर 2016 में 3 सीट चुनाव में जीत पाई। सोचिए 36 साल लगे बंगाल में बीजेपी को जीत का स्वाद विधानसभा में चखने के लिए, जहां कांग्रेस, लेफ्ट और ममता बनर्जी 7 दशक तक जड़ जमाए रहे। वो बंगाल जहां बीजेपी को देश के 21 राज्यों में जीत मिलने के बावजूद बाहरी बताकर घेरा जाता रहा। वो बंगाल जहां बीजेपी को हिंदी भाषी उत्तर भारतीय पार्टी का ठप्पा लगाकर विपक्ष रोकता रहा, वहां बीजेपी जीती तो ऐसा जीती कि रिकॉर्ड टूट गए। नया कीर्तिमान मतदान का बना तो रिकॉर्ड मुख्यमंत्री को हराकर मुख्यमंत्री बनने का बंगाल में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही बनाया।
2: वो जो सामने मुश्किलों का अंबार है, वो जो सामने मुश्किलों का अंबार है, उसी से तो मेरे हौसलों की मीनार है। चुनौतियों को देखकर घबराना कैसा, इन्हीं में तो छिपी संभावना अपार।
3: चुनौतियों के सामने घबराने की जगह हौसलों की मीनार से मंजिल हासिल करने की चाहत का नतीजा है पश्चिम बंगाल। जहां बीजेपी तमाम कोशिश पहले करती रही लेकिन जीत का कमल नहीं खिलता था।
4: कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद, स्वतंत्र होने से पहले तो बहुत सारे शहीद हुए आजादी के लिए, लेकिन स्वतंत्र होने के बाद भारत की एकता और अखंडता के लिए अगर कोई पहला शहीद हुआ तो इसी पश्चिम बंगाल का सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुए।
3: पर आखिरकार गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल बीजेपी का खिला।
5: मैं मानता हूं श्यामा प्रसाद जी जहां पर भी होंगे, मुक्त मन से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को वो आशीर्वाद देते होंगे, क्योंकि नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी को गंगा सागर तक पहुंचाया। गंगोत्री से लेकर 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में 1950 के बाद आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण।
3: दो हजार 2014 से अब तक की जीत की अभूतपूर्व यात्रा आखिर किसके दम पर हासिल की गई? किनके दम पर नरेंद्र मोदी के मन में मुश्किलों के अंबार को हराने की जिद पैदा होती रही? आज पहले उन लोगों से मिलिए। तस्वीर नंबर 1, 72 साल की अंगूर बाला साहू की 28 साल पुरानी सौगंध नरेंद्र मोदी के राज में पूरी हो पाती है। सौगंध इस बात की कि जब तक बीजेपी की सरकार बंगाल में नहीं बनेगी तब तक वो नंगे पैर रहेंगी, न चप्पल पहनेंगी न जूता। आपको लग सकता है कि ये तो अपनी पार्टी के लिए कार्यकर्ता का प्रेम है, लेकिन नहीं। खबर ये कि अंगूर बाला साहू ने 28 साल पहले बीजेपी से पंचायत चुनाव लड़ना चाहा, तब लेफ्ट से जुड़े गुंडों ने उन्हें चुनाव लड़ने से रोका, मारा पीटा, निर्वस्त्र कर दिया। तब 44 साल की अंगूर बाला ने तय कर लिया था कि वो बीजेपी के जीतने पर ही चप्पल या जूता पहनेंगी। वो 28 साल से नंगे पैर बीजेपी के लिए प्रचार करती रही।
6: आमी ওই পঞ্চায়েত সমিতি বিজেপিতে দাঁড়িয়েছিলাম বলে আমাকে মেরে আমার জুতো ছাড়িয়ে নিয়েছে আর মেরে কাপড় উড়িয়ে দিয়েছি, একবার কায়ের কাপড় চুড়ছিল না, সেইখানে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম।

0: যেদিন আমার এই দল ক্ষমতা আসবে সেদিন জুতো পায়ে দেবো, এই এই পায়ে আমি ঘুরবো।
1: তাই এত বছর, প্রায় 40 বছর,
0: হ্যাঁ 40 বছর আমি জুতো পাই থাকি।
1: আচ্ছা, জুতো পায় না দিয়ে দল করেছেন?
0: হ্যাঁ।
2: শিলিগুড়ি নিবাসী শ্রী মাখনলাল সরকার সবরী প্রতীক্ষা ছিল, দীর্ঘ প্রতীক্ষা।
3: দূসরি তসবীর তো পুরে দেশ নে কলকাতা কে মঞ্চ সে দেখি, যা মাখনলাল সরকার কো সম্মানিত করকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নে পায়ের ছুয়ে উনহেঁ গলে লগা লিয়া, ক্যোঁকি 98 সাল কে সরকার ইয়ে সপনা শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি কে সাথ দেখতে রহে কি একদিন বঙ্গাল মে বিজেপি কি সরকার হোগি। সরকার বনি তো সম্মান ভি মিলা।
4: আজ কেসে লাগ রহা
5: হ্যায়? আচ্ছা লাগ রহা হ্যায়। 16 সাল থেকে উসকো যখন 16 সাল কা উমর হ্যায়, 16 সাল কে আরএসএস মে গিয়া থা। আরএসএস কর্নে দেখা হয় আর জনসংঘ কর্নে কা দেখা হয়।
4: আজ যাকে
6: বাবা কা আমি বাবা শকুন মিলা বাবা কো যে বাবা দেখে গিয়া যে জিস দল কভি বেঙ্গল মে নিয়ে আসা বাবা জিন্দা হ্যায়, এ দেখে বাবা কা বহুত শকুন হ্যায়।
3: मोदी राज में बंगाल जीत मुमकिन होने के बाद सुकून उन सैकड़ों परिवारों को भी मिला जिनके अपनों ने पश्चिम बंगाल में लेफ्ट से लेकर टीएमसी तक के लंबे शासनकाल में हिंसक राजनीति की वजह से जान गंवाई। जिन 321 लोगों का नाम लिखकर बीजेपी ने उन्हें परेड ग्राउंड में श्रद्धांजलि दी।
7: ये यात्रा जितनी भव्य है, आनंददायक है, मगर यात्रा का मार्ग जबरदस्त असहनीय पीड़ा से भरा हुआ है। मैं आज भूल नहीं सकता कि 321 भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने अपनी जान इस जीत के लिए गवाई है, विचार के लिए गवाई। वो सभी 321 कार्यकर्ताओं के परिवारजनों को देश की करोड़ों करोड़ों जनता की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से भावपूर्वक नमन करना चाहता हूं।
3: बलिदान, समर्पण और साहस कार्यकर्ताओं का रहा तो नीति और नेता नरेंद्र मोदी। जहां नरेंद्र मोदी ने प्रचार किया वहां बंगाल में स्ट्राइक रेट 76% रहा। 1972 के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल में ऐसी पार्टी की सरकार है जो केंद्र में भी सत्ता में। बीजेपी का 70% स्ट्राइक रेट पूरे बंगाल में दिखा और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत 35 मंत्री में से 22 चुनाव हार गए।
7: हमारा विधायकों का जीत का एवरेज मार्जिन 28,000 है। 28,000 वोट से हम सब जीते हैं, एवरेज निकाल दे तुम। और 3 से 77 और 77 से 203 की 207 की जो यात्रा हुई है वो अभूतपूर्व है। 23 प्रशासनिक जिलों में से 9 जिले ऐसे हैं जहां दीदी का खाता भी नहीं खुला है, सुपड़ा साफ हो गया।
3: मां माटी की बात करने वाली ममता बनर्जी जो दिल्ली तक नरेंद्र मोदी को चुनौती देने की बात करती आ रही थी।
8: आमी तुम्हारे दिल्ली दखल करबोई, बांग्ला दखल करार पड़े सब दल के लिए আমি চেয়ার চাই না, কিন্তু আমি চাই দিল্লিতে বিজেপির বিনাশ। বাংলায় তো বিনাশ হবেও দিল্লি থেকেও বিজেপি হটাতে হবে।
3: না সিফ উনে উনি কে রাজ্য মে বিজেপি নে সমেট দিয়া, বল্কি 2029 কে চুনাও কো দেখতে হুয়ে মমতা কি আগুয়াই মে উঠতি ক্ষেত্রীয় তাকতো কো ভি বতা দিয়া কি মোদি কো হারানা অভি কঠিন।
9: चुनावी समीकरण अब बदलते जा रहे हैं। अब एंटी इनकम्बेंसी की जगह प्रो इनकम्बेंसी को अपनी ताकत बीजेपी बना रही है। गवाही पहले गुजरात, मध्य प्रदेश देते थे, अब हरियाणा, असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत तमाम राज्य दे रहे हैं, जहां लगातार 2 बार ही नहीं बल्कि लगातार 3 बार चुनावी विजय हासिल करने में बीजेपी सबसे आगे है, कांग्रेस दूर दूर तक नहीं। क्या यही वजह है कि लगातार चौथी बार 2029 में भी जीत का चौका लगाने की जमीन मोदी तैयार करने लगे हैं?
10: भारत के पश्चिमी छोर पर मौजूद मुंबई, अरब सागर के किनारे मौजूद भारत की आर्थिक राजधानी, अब से 46 साल पहले साल 1980 अरब सागर के तट पर मुंबई में बीजेपी के पहले राष्ट्रीय अधिवेशन में भविष्यवाणी होती है।
11: भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा।
10: अब देश के 22 राज्यों और 72% क्षेत्रफल के साथ 78% आबादी वाले राज्यों में बीजेपी या एनडीए का कमल खिल चुका है और यहां कमल खिलाने के साथ ही नरेंद्र मोदी अब 2029 के लक्ष्य में जुट चुके हैं। बड़ी खबर ये कि 2024 में बीजेपी को लगातार तीसरी बार अपने दम पर बहुमत पाने से रोक लेने में जिस विपक्ष को सबसे बड़ी जीत लगने लगी थी।
12: कांग्रेस पार्टी आप लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को हराएगी और फिर देखना हम क्या कार्रवाई करते हैं नरेंद्र मोदी के साथ, क्योंकि इन्होंने देश पर आक्रमण किया है, लोकतांत्रिक सिस्टम पर आक्रमण कर इन्होंने अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण किया है। नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को कांग्रेस पार्टी हराएगी, बीजेपी को कांग्रेस पार्टी हराएगी।
10: लगातार तीन बार देश का चुनाव जीतने वाले नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 के नतीजे से एक खिड़की खुलने से उत्साहित विपक्ष को अंदाजा नहीं है कि 2 साल के भीतर बीजेपी वापस अपनी पकड़ नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मजबूत करने लगी है। 2024 के बाद अब तक देश के 11 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की इन राज्य में 497 असेंबली सीट पर बढ़त थी, जो अब बढ़कर 664 हो चुकी है, यानी 167 विधानसभा सीट के फायदे में बीजेपी आ चुकी है। इसे लोकसभा सीट के तौर पर बदले तो 21 लोकसभा सीट का फायदा बीजेपी को अब तक हो चुका है। इसी दौरान कांग्रेस की स्थिति पलटी है, वो 353 सीटों से घटकर 171 विधानसभा सीटों पर आ गई, जिससे उसे 182 विधानसभा सीटों का नुकसान होता दिखता है। और फिर जब इन चुनावों के बाद लगातार विपक्ष वोट चोरी करके जीत का आरोप लगाता है तो बीजेपी पूछती है कि वर्षों से जो राज्य कांग्रेस लगातार हार रही है उसकी वजह फिर क्या है।
7: मगर मैं आज कांग्रेस पार्टी को कहने आया हूं कि हम तो 14 से आए हैं, हम तो 2014 से शासन में आए हैं, तमिलनाडु में 1967 से आपका कोई सीएम नहीं बन पाया, ये सभी वोट चोरी थी क्या? पश्चिम बंगाल में 49 साल से आपका सीएम नहीं बना है, वो सभी वोट चोरी थी क्या? सिक्किम में 82 साल से आपका 42 साल से आपका सीएम नहीं बना है, बिहार में 36 साल से नहीं बना है, गुजरात में 30 साल से नहीं बना है, ओडिशा में 26 साल से नहीं बना है, नागालैंड में 23 साल से नहीं बना है, महाराष्ट्र में 12 साल से नहीं बना है। अगर ये सभी वोट चोरी है तो वोट चोरी करने वाले तो आपके साथ बैठे हैं भाई।
9: देश के 3 राज्य बचे हैं जहां बीजेपी अपने दम पर या फिर गठबंधन में अब तक सत्ता तक नहीं पहुंच पाई है, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना। 2 राज्य में चुनाव हो चुका है, तेलंगाना में आगे होना है। पश्चिम से उत्तर होते हुए पूरब तक पहुंच चुकी बीजेपी को दक्षिण का रास्ता कर्नाटक के आगे जाकर पार करना है, जिसकी जमीन बनाने में नरेंद्र मोदी जुट चुके हैं।
13: दिस इज अ न्यू बिगिनिंग, न्यू एरा ऑफ रियल सेक्युलर सोशल जस्टिस स्टार्ट्स नाउ।
10: टीवी के प्रमुख और एक्टर से नेता बने सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बनते हैं। तो क्या 2029 का सियासी भविष्य दक्षिण से तय हो सकता है, जहां विजय के शपथ के लिए नाम लेते ही पूरा हॉल गूंज उठता है। सी जोसेफ विजय नमन।

0: मानो कोई फिल्मी सीन जहाँ एक हीरो है और हीरो ने वर्षों से चली आ रही राजनीति को पूरी तरह पलट दिया। दशकों से देश के दक्षिण में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाले राज्य तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति करने वाले AIADMK का शासन रहा, लेकिन अपने पहले ही चुनाव में इतिहास रच देने वाले विजय ने जीत हासिल करके मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
1: जोसेफ विजय अनुमान
0: और तब इस शपथ ग्रहण में राहुल गांधी की मौजूदगी का संबंध अभी की विजय सरकार में केवल TVK को कांग्रेस के समर्थन से जुड़ा नहीं, ये संबंध 2029 तक का है, जहां राहुल गांधी को माई ब्रदर कहते हुए शुक्रिया मुख्यमंत्री विजय ने किया।
2: பாராளுமன்ற எதிர்க்கட்சி தலைவர் மதிப்புக்குரிய மை பிரதர் திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள்
3: செல்ஃபி டைம் வித் தி ஆனரபிள் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப்
0: तो क्या ये भाईचारा 2029 का गठजोड़ है? वो गठजोड़ जहां DMK के साथ चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस ने तुरंत वर्षों पुरानी दोस्ती तोड़कर विजय रथ पर तमिलनाडु में सवार होना जरूरी समझा, ताकि लगातार 3 लोकसभा चुनाव वाली हार को 2029 में होने से रोकने के लिए रास्ता विजय पथ के जरिए ही तमिलनाडु से निकाला जाए।
4: कांग्रेस की पहचान आज एक परजीवी पार्टी की बन गई है और इसलिए वो पहला मौका मिलते ही अपने साथियों के साथ भी विश्वासघात करती है, और इसलिए ही कहा जाता है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। अभी तमिलनाडु में ही देखिए, 25-30 साल से कांग्रेस का DMK के साथ घनिष्ठ संबंध था, DMK के साथ गठबंधन ने कितनी ही बार कांग्रेस को संकटों से बाहर निकाला, और 2014 के पहले 10 साल उनकी जो सरकार थी वो भी DMK के कारण टिकी थी। लेकिन क्या हुआ, जिस DMK के साथ 25-30 साल का जीने मरने का नाता था, हर पल जो DMK कांग्रेस की भलाई के लिए काम करती थी, लेकिन जैसे ही सत्ता का खेल कहीं और मुड़ गया तो सत्ता के लालच में सत्ता भूखी कांग्रेस ने पहला मौका मिलते ही DMK की पीठ में छुरा भोंक दिया।
0: विजय को समर्थन देने वालों में कांग्रेस सबसे पहली पार्टी रही, जबकि उसने DMK के साथ चुनाव लड़ा, वो DMK जिसके साथ उसका दशकों पुराना रिश्ता है, लेकिन विजय के उदय ने इसे तोड़ दिया। कुछ विशेषज्ञ इसे तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की रणनीति कहते हैं। विजय ने जिस तरह पहली बार में 108 सीटें जीती, सबसे ज्यादा करीब 35% वोट हासिल किया, वो DMK और AIADMK जैसी पुरानी और स्थापित पार्टियों से 2 गुना है। कांग्रेस इस बार 5 सीट जीती है, पिछली बार से 13 सीट कम है, उसका वोट भी 1% के करीब कम हुआ है। नतीजों के बाद ही कांग्रेस से एक खबर आई कि राहुल चाहते थे कि विजय के साथ ही चुनाव लड़ा जाए, लेकिन आखिर में DMK के साथ चुनाव लड़ना पड़ा, पर अब विजय की जीत के साथ कांग्रेस ने उसे समर्थन कर दिया।
4: परजीवी कांग्रेस को अब एक और पार्टी चाहिए जिसकी पीठ पर सवार होकर वो प्रासंगिक बनी रह सके।
0: कांग्रेस की तरफ से BJP को सत्ता से दूर रखने की दलील देकर विजय को समर्थन देने की बात कही गई। विजय भी खुद को सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ बताते आए, राजनीति में कदम रखते ही उन्होंने जिस तरह इफ्तार पार्टी रखी, जिस तरह मुस्लिम टोपी लगाकर पहुंचे, जिस तरह नमाज दुआ में शामिल हुए, इन सब ने विजय की राजनीतिक विचारधारा को लेकर काफी कुछ बताया। पिछले साल 7 मार्च को चेन्नई में विजय ने इफ्तार पार्टी आयोजित की थी, जिसमें वो रोजेदारों के साथ मिलकर रोजा खोलते दिखे। विजय इफ्तार में सफेद टोपी, कमीज और लुंगी पहनकर पहुंचे। थालापति विजय ने हजारों स्थानीय लोगों के साथ एक भव्य दावत का आयोजन किया, जिसमें चेन्नई की तब 15 मस्जिदों के इमामों को नमाज पढ़ने के लिए बुलाया गया था। विजय ने भी नमाज पढ़ी थी। विजय यहीं नहीं रुकते, उन्होंने चुनावों में बीजेपी और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पर वार किया था।
5: மாண்புமிகு பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஜி அவர்களே, மூணாவது முறையா ஒன்றியத்தோட ஆட்சி அதிகாரத்தை நீங்க தானே கையில வச்சிருக்கீங்க? இல்ல, நாங்க தெரியாம தான் கேக்குறோம். நீங்க ஆட்சிக்கு வந்தது ஒட்டுமொத்த மக்களுக்கும் நல்லது செய்யவா, இல்ல நம்மளுடைய இந்த இஸ்லாமிய நண்பர்களுக்கும் இஸ்லாமிய தோழர்களுக்கும் எதிராக சதி செய்யவா?

0: विजय के यही तेवर कांग्रेस को 2029 के लिहाज से भा रहे हैं। वो तमिलनाडु के कैसे उभरते नेता हैं जिन्होंने जनता की नब्ज पकड़ी, जनता उनके साथ है, इसीलिए स्टालिन जैसे राजनीति के पुराने खिलाड़ी भी उनसे तुरंत सीधे टकराने से बच रहे हैं। तमिलनाडु का चुनावी इतिहास भी कहता है कि जो पार्टी विधानसभा चुनाव जीतती है आमतौर पर लोकसभा में उसकी तूती बोलती है। साल 2021 में डीएमके की सरकार बनी और 24 के लोकसभा चुनाव में उसे 22 सीट मिली। साल 2016 में एआईएडीएमके जीती लेकिन 19 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को सिर्फ एक सीट मिली। 2011 में एआईएडीएमके जीती थी और पार्टी ने तब लोकसभा चुनाव में 39 में से 37 सीटें गठबंधन के साथ जीती थी। इससे पहले 2006 में डीएमके जीती और उसे लोकसभा चुनाव में 18 सीट मिली। इस तरह सिर्फ 2019 के चुनाव को छोड़ दें तो तमिलनाडु में जो भी सरकार बनाता है लोकसभा चुनाव में उसका और उसके गठबंधन का दबदबा रहता है, इसीलिए विजय फैक्टर 2029 के चुनाव में अहम हो जाता है। और क्या यही वजह है कि कांग्रेस ने विजय को समर्थन देकर स्थानीय निकाय चुनावों से लेकर लोकसभा चुनाव तक टीवी के कई साथ रहने का ऐलान किया ताकि विजय के समर्थन की लहर पर सवार होकर 2029 में ज्यादा से ज्यादा सीटें भी जीती जा सके। विजय की सबसे बड़ी ताकत नौजवानों में उनकी लोकप्रियता है। तमिलनाडु में 40 साल से कम उम्र के युवाओं की संख्या 2 करोड़ है जो तमिलनाडु में 41.5% वोटर होते हैं। दक्षिण के राज्यों में अब तक कर्नाटक की सबसे सफल राज्य राजनीति के लिए बीजेपी के लिए रहा, जहां बीजेपी सरकार बना चुकी है। केरल में तो बस अभी खिड़की खुलनी शुरू हुई है, दरवाजा बंद, वोट शेयर जरूर हल्का बढ़ा। ऐसे में चुनौती नरेंद्र मोदी के सामने रहेगी कि वो कैसे तमिलनाडु में विजय गठबंधन कर चुकी कांग्रेस को रोके या फिर दक्षिण का रास्ता खुद बीजेपी अपने लिए मजबूत करे।
1: जैसे केरल जहां बीजेपी अब की बार 3 विधानसभा सीट जीती है।
2: अभी केरल में भी हम 1 से 3 एमएलए तक पहुंच गए हैं और जब 3 पहुंच जाते हैं ना तो वो दिन दूर नहीं जब केरलम में भी बीजेपी एनडीए की संख्या 3 से बढ़कर बहुमत के आंकड़े को पार कर जाएगी।
3: बीजेपी इस वक्त अपने 46 साल के राजनीतिक सफर में शीर्ष पर है। पिछले 2 साल में लगातार 2 बार सरकार बनाने वाले यूपीए के राज में भी सियासत का ये पीक न कांग्रेस ने अपने दम पर हासिल किया न ही गठबंधन के साथ। तो बीजेपी और विरोधियों के बीच ये फासला और बढ़ेगा या फिर घटेगा, फैसला जनता करती है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: कूल फैंस से घर को सजाएं।
2: कूल फैंस बिजली बचाएं और कम आवाज करें।
1: कूल फैंस घर की शान बढ़ाएं।
3: टेबल को ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं। ये भाई साहब सब पचा देते हैं।
4: पर दिक्कत तो होने आती है जो टेबल के नीचे से।
5: मुल्तानी पचमीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है। खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
3: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें।
4: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
5: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती
6: है। भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूव कर दिखाया यार, anybody can dream।
5: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
7: Breathable fabrics, awesome comfort, effortless style, AD from the house of Arvind।
8: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
9: इसमें माइक्रो फाइबर है।
8: माइक्रो फाइबर यानी
9: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
8: हमारे सीमेंट में नहीं है,
9: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
10: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
11: ओह नो, बहुत बोर लग रहा है।
12: Take a date, not bites.
13: No added sugar, preservative के बिना। Dates, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया Lion Dates Nut Bites.
12: Lion Date Nut Bites.
14: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा।
15: Hey प्रिया, कैसा लगा मेरा stunt?
16: विक्रम, एक hint तो देते।
17: बड़े आराम से।
18: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
19: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
20: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
21: करेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
22: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
23: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
24: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
25: इन एसोसिएशन विद
26: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
27: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
28: एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है। खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
2: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें।
3: Where the software engineer meets the cool UI/UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
4: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
5: इसमें माइक्रोफाइबर है।
4: माइक्रोफाइबर यानी
5: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
4: हमारे सीमेंट में नहीं है,
5: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
6: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बने हैं ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
7: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
4: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
5: इसमें माइक्रोफाइबर है।
4: माइक्रोफाइबर यानी
5: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
4: हमारे सीमेंट में नहीं है,
5: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
6: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बने हैं ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
8: और वही कहाँ गए थे घूमने?
9: जीके मैक्स।
10: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
9: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
11: जेके वॉल मैक्स
12: बेस्ट पेंट,
13: जेके मैक्स।
14: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
15: जेके मैक्स पेंट्स।
14: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: केंट से पानी होता है 100% प्योर.
2: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है.
1: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी.
3: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं. गोल्डी हिंग कण कण में जान.
4: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो. E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
5: मुख्य समाचार. मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है. खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए.
6: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें.
7: आज तक के खबरदार करते ही सरकार का एक्शन.
8: आज तक की खबर के बाद काउंसिल ने भरोसा दिया है कि मार्च के आखिर तक लंबित प्राइज मनी दे दी जाएगी.
9: एक दो दिन में ही उनके नियुक्ति पत्र भी जारी हो जाएंगे.
8: ये सब कुछ तब हो पाया जब आज तक ने राजस्थान के खेल विभाग को जगाया.
10: अच्छी खबर चली हमारी. अच्छा हुआ सर.
7: जहाँ खबर वहाँ खबरदार. सिर्फ आज तक पर.
11: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
12: Monte Carlo, it's the way you make me feel.

बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए, आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया है। और उसका बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ासाको से हुआ है, कवि गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण कर।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: वैश्विक संकट के बीच में हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से एक अपील की है, एक साल तक सोने की खरीद न करने की अपील की है। पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक संकट के बीच में विदेशी मुद्रा बचाने पर जोर देना होगा। पीएम ने यह भी कहा कि हमें तेल बचाने पर भी जोर देना होगा। विदेश घूमने पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिक्रिया दी कि अभी विदेश घूमने जाने का भी प्लान आपको जो है कम करना चाहिए और हमें विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने की आवश्यकता है और उसके लिए जरूरी है पेट्रोल डीजल का आप स्वयं से उसकी खरीद करें क्योंकि वैश्विक संकट बना हुआ है, पेट्रोल डीजल के रेट बहुत ज्यादा हैं, सोना बहुत इंपॉर्टेंट। उस पर उन्होंने जो है अपील की है कि सोना एक साल तक तो कम से कम ना खरीदें। सुनाते हैं आपको।
3: आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं। जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है, हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। भारत में बहुत सारी जगह है, वहां हम जा सकते हैं, बहुत कुछ भारत में किया जा सकता है। साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। साथियों, ये समय एक और बड़े सबक का भी है। एक समय था जब हम कॉपर एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन आज भारत के सामने स्थिति ऐसी बन गई कि अब हमें कॉपर को भी इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारे देश में हड़तालें करवाकर कॉपर प्लांट्स को ठप करवा दिया गया और अब हालत यह हो गई कि हमें कॉपर बाहर से मंगाना पड़ता है और उसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती है। इसलिए मैं ऐसे सभी श्रमिक मजदूर संगठनों से भी कहूंगा कि हमें ऐसी बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। भारत को आत्मनिर्भर बनने से जो भी कदम रोकते हैं उनमें हमें दूरी बनानी होगी। साथियों, ऐसे ही खाने के तेल का भी है, इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने का तेल का जो उपयोग करता है अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो, अगर हम तेल खाना कम करें ना तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी। इससे देश के खजाने का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। साथियों, विदेशी मुद्रा की खपत वाला एक और सेक्टर हमारी खेती है। हम बहुत बड़ी मात्रा में बाहर से केमिकल फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर खेती के कारण हमारी धरती मां को बहुत पीड़ा हो रही है, हमारे खेत बर्बाद हो रहे हैं। अगर आज हम अपने खेत को नहीं बचाएंगे तो भविष्य में फसलों पर भी खतरा आ जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की खपत 25%, 30%, 40%, 50% उसको घटाए, आधी कर दे और हम उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़े। हम फर्टिलाइजर का उपयोग कम करके विदेशी मुद्रा भी बचा सकते हैं और साथ साथ अपने खेत को बचा सकते हैं, हमारी ये धरती मां को बचा सकते हैं।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमने आपको संबोधन सुना है। उन्होंने कई अपील की हैं, सोने से लेकर केमिकल से लेकर ऑयल से लेकर विदेश ना घूमने जाना। सोने की खरीदारी में बहुत ज्यादा खर्च होता है, पेट्रोल डीजल का सेम से जो है उसको सेम से ही खरीदने की अपील प्रधानमंत्री ने की हैदराबाद में। वैश्विक संकट के बीच में उन्होंने देशवासियों से देश हित में ही अपील की।
3: साथियों, आज भारत तेजी से विकसित होने के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस समय भारत कई विराट चुनौतियों का मुकाबला भी कर रहा है। साथियों, कोरोना काल के दौरान ही दुनिया सप्लाई चेन के बहुत बड़े संकट से गिर गई थी। कोविड के बाद यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया, उसने दुनिया की परेशानियां और बढ़ा दी। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, इन तीनों चीजों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। बीते 5-6 वर्षों में इस संकट से निपटने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। आपको याद होगा उस समय और आज भी फर्टिलाइजर की एक एक बोरी दुनिया में 3-3 हजार रुपये में बिक रही थी। एक बोरी का 3 हजार रुपया कितना आप बताएंगे? एक बोरी का कितना? आंकड़ा नहीं, बोलिए मुंह से। 3 हजार रुपया एक बोरी का कितना? एक बोरी का कितना? एक बोरी का कितना? और भारत के किसानों को वही खाद की बोरी 300 से भी कम रुपए में दी जा रही है। 3000 के सामने 300 रुपए में। सप्लाई चेन की इन मुश्किलों के बीच पिछले 2 महीने से हमारे पड़ोस में ही इतना बड़ा युद्ध चल रहा है। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है और भारत पर तो और भी गंभीर असर हुआ है। साथियों, भारत के पास बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं है। हमें अपनी जरूरत का पेट्रोल, डीजल, गैस ये सब बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया के दूसरे देशों से बाहर से मंगाना पड़ता है। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं, आसमान को भी पार कर गए हैं। अड़ोस पड़ोस में देशों में क्या हाल है वो तो अखबारों में आता है। भारत सरकार इस युद्ध के पिछले 2 महीनों से देशवासियों को इस संकट से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नागरिकों पर बोझ न पड़े इसके लिए सरकार सारा बोझ सरकार खुद अपने कंधे पर उठा रही है। लेकिन साथियों, जब सप्लाई चेन पर संकट लगातार बना रहे तो हम कितने भी उपाय कर लें मुश्किलें बढ़ती ही जाती है। इसलिए अब देश को सर्वोपरि रखते हुए, मां भारती को सर्वोपरि रखते हुए हमें एकजुट होकर के लड़ना होगा। हमें याद रखना है देश के लिए मरना ही सिर्फ देशभक्ति नहीं होती है, देश के लिए जीना और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना वो भी देशभक्ति होती है। इसलिए वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें, और भी लोगों को साथ बिठा ले। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजे, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं। जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है, हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। भारत में बहुत सारी जगह है, वहां हम जा सकते हैं, बहुत कुछ भारत में किया जा सकता है। इस बेटी को पीछे बिठाइए, उसे थक जाएगी, उस बेटी को बिठाइए। वो थैंक यू बेटा, थैंक यू, बैठिए आप नीचे बैठिए। मैंने देख लिया बेटा, उसको देख लिया, अब आप बैठ जाइए। हाँ, इस छोटी बच्ची को क्यों परेशान करते हो भाई, इन बच्चों को बैठने दीजिए प्लीज, बच्चों को परेशान मत कीजिए जी। साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। साथियों, ये समय एक और बड़े सबक का भी है। एक समय था जब हम कॉपर एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन आज भारत के सामने स्थिति ऐसी बन गई कि अब हमें कॉपर को भी इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारे देश में हड़तालें करवाकर कॉपर प्लांट्स को ठप करवा दिया गया और अब हालत ये हो गई कि हमें कॉपर बाहर से मंगाना पड़ता है और उसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती है। इसलिए मैं ऐसे सभी श्रमिक समूह मजदूर संगठनों से भी कहूंगा कि हमें ऐसी बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। भारत को आत्मनिर्भर बनने से जो भी कदम रोकते हैं उनमें हमें दूरी बनानी होगी, और जो लोग ऐसी साजिशों में जुटे हैं उन पर भी कड़ी नजर रखनी होगी। मैं देश की अदालतों से भी आग्रह करूंगा कि ऐसी स्थिति आने पर देश हित में हमें कोई ना कोई रास्ता निकालने की तरफ बढ़ना चाहिए। साथियों, ऐसे ही खाने के तेल का भी है, इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने का तेल का जो उपयोग करता है अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो, अगर हम तेल खाना कम करें ना तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी। इससे देश के खजाने का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। साथियों, विदेशी मुद्रा की खपत वाला एक और सेक्टर हमारी खेती है। हम बहुत बड़ी मात्रा में बाहर से केमिकल फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं। केमिकल

0: पर बांग्लादेश भेजी जा रही थी। बीजेपी ने न केवल केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके इन बड़े तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचाया, बल्कि एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया। इसी सिंडिकेट को तोड़कर बीजेपी ने हिंदू वोटों को एकजुट किया। योगी आदित्यनाथ ने ना गौ माता को कटने देंगे ना हिंदुओं को बंटने देंगे का नारा दिया। बीजेपी ने साफ कर दिया कि उन्हें मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ हिंदू वोटों का साथ चाहिए। ममता बनर्जी ने जिस मथुआ समुदाय को अपना वोट बैंक माना था, बीजेपी ने उसी की नब्ज पकड़ ली। गृहमंत्री अमित शाह ने सीएए का दाव खेल दिया, मथुआ समुदाय को नागरिकता देकर इस समुदाय को अपने पाले में ही कर लिया। ममता बनर्जी कभी तंज में पूछती थी कि अमित शाह कौन है, आज उन्हें जवाब मिल गया। 2014 में से अमित शाह चुपचाप बंगाल की जमीन तैयार कर रहे थे और उन्हें साथ मिला शुभेंदु अधिकारी का, वही शुभेंदु जिन्होंने कभी टीएमसी को खड़ा करने के लिए अपना खून पसीना बहाया था। आज उन्होंने ही ममता की सत्ता को जड़ से उखाड़ने की कसम खाई, उसे पूरा कर दिखाया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब जनसंघ बनाया तो 1952 के पहले चुनाव में मिली 3 सीटों में से 2 बंगाल की ही थी। जिस बंगाल ने भारत माता की जय का नारा दिया, आज उस जमीन पर बीजेपी का परचम लहरा रहा है। और इसीलिए आज हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या बंगाल बीजेपी के हिंदुत्व के लिए अगला गुजरात बन सकता है। लेकिन आज शुरुआत हम इन 2 तस्वीरों से करना चाहते हैं, जिनमें पहली तस्वीर साल 2014 की है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद संसद की सीढ़ियों पर अपना सिर झुका दिया था और सिर झुकाकर भारत के लोकतंत्र को नमन किया था। और दूसरी तस्वीर 2026 की, जब भगवा में हुए बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से सिर झुकाकर साष्टांग प्रणाम किया और इस दौरान लाखों कंठों से उठता जय श्री राम का उद्घोष ऐतिहासिक परिवर्तन की उद्घोषणा बन गया। यह सिर्फ बंगाल में बीजेपी का शुभारंभ नहीं था, इसके मायने कहीं ज्यादा थे। ये बंगाल की आत्मा में उठता हुआ वो ज्वार था जिसने वर्षों से जमी हुई एक भय, एक हिंसा का जो चक्रव्यूह है, तुष्टीकरण की राजनीति, उसको खुली चुनौती। और भगवा ध्वजों से लहराता ये जन सैलाब बता रहा था कि बंगाल अब करवट ले चुका है। शुभेंदु अधिकारी का राज तिलक सिर्फ बंगाल में बीजेपी का उदय नहीं दिखा रहा, बल्कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विश्वास का भी प्रतीक है जो बंगाल को फिर से राष्ट्रीय चेतना के केंद्र में देखना चाहता है और जो बंगाल में मानो हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर एक युग की दस्तक लेकर आया है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन में जिस तरह बंगाल भगवा में हुआ, हर चेहरा उत्साह से भरा दिखा, हर नारा परिवर्तन की गूंज बना, उसमें बंगाल की राजनीति एक आकार, एक नया आकार लेती हुई नजर आई। ऐसा आकार जिसमें बंगाल को बीजेपी मुस्लिम तुष्टिकरण से निकालकर हिंदुत्व की नई भूमि तैयार करना चाहती है, जिसका सपना कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था। देखिए,
1: শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে
2: पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है, पहली बार बंगाल में बीजेपी का पहला सीएम बना है, पहली बार শুভেন্দু অধিকারী मुख्यमंत्री बने हैं।
1: ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব।
2: पहली बार बंगाल में बीजेपी का बेहिसाब शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जोरदार कट्टल ध्वनि के साथ,
2: ये तस्वीरें अद्भुत हैं। कोलकाता का परेड ग्राउंड बीजेपी के नारों और जयकारों से गूंज रहा था, तख्तियों पर तेवर लेकर पहुंचे थे बीजेपी के कार्यकर्ता। मंच पर मोदी के पहुंचने से पहले ही लोगों का सैलाब उमड़ आया था। ऐसे में बीजेपी की शपथ से पहले एंट्री भी शानदार थी, जिसमें रोड शो के लिए एक खास रथ तैयार किया गया था, जिसमें बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो उनके दोनों तरफ शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य भी थे। खचाखच भरे मैदान में चारों तरफ नारों की गूंज थी, तो वहीं पीएम जनता

0: का अभिवादन करते नजर आ रहे थे। बीजेपी के लिए ये एक भावुक पल था। जिस सपने को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, वो सपना पूरे होते देख पीएम मोदी भी गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। यही वजह है कि वो मंच पर आगे आए और घुटनों के बल साष्टांग होकर जनता का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इस मंच से यह भी संदेश देने की कोशिश की गई कि पश्चिम बंगाल का विकास बीजेपी बांग्ला अस्मिता को ध्यान में रखकर करेगी। मंच पर महाकाली, दक्षिणेश्वर मंदिर और टैगोर की तस्वीरें इस बात की गवाह थी। कार्यक्रम में सबसे पहले मोदी ने मंच पर रवींद्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। वहीं कार्यक्रम के बाद शुभेंदु अधिकारी सीधे जोरा सांको ठाकुरबाड़ी पहुंचे, जो कि रवींद्रनाथ टैगोर का घर है। शपथ के लिए बीजेपी ने रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती के दिन को चुना, ताकि बंगाल की जनता को सीधा संदेश दिया जा सके।
1: प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे, इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए, संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया, और उसका बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ा साको से हुआ है, कवि गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण किया।
0: पूरे समारोह में एक तस्वीर ने सबको सबसे ज्यादा चौंकाया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मंच पर एक 98 साल के बुजुर्ग कार्यकर्ता के पैर छूते नजर आए। पीएम मोदी ने बुजुर्ग नेता को गले लगाया, उन्हें शॉल ओढ़ाई और मंच पर उनका सम्मान किया। प्रधानमंत्री ने जिस शख्स को ये सम्मान दिया, वो है बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता माखनलाल सरकार। 98 साल के माखनलाल सरकार उत्तरी बंगाल के सिलगुड़ी के रहने वाले हैं और जनसंघ के दौर से बीजेपी की राजनीति से जुड़े रहे हैं।
2: बहुत अच्छा लगा, बहुत गर्वित महसूस कर रहा हूं। हम लोग का परिवार जो इस जगह से बाबा दार्जिलिंग जिला का 25 प्रेसिडेंट से बीजेपी का, उस जमाने से पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ बाबा काम किया, बाबा अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम किया, बाबा लालबानी जी के साथ काम किया, बाबा सुषमा स्वराज के साथ काम किया। छोटा बड़ा से देखा बाबा, ये जनसंघों का आरएसएस का बहुत आरएसएस का ही था आदमी, वो आरएसएस का जो मैदान में होता था पैरेड उरेड बाबा जाता था, यही देखा बाबा बहुत कष्ट करके हम लोगों को मनुष्य किया, अभी भी बाबा कष्ट ही कर रहा है।
3: बार बार कहा गया था कि उनके कार्यकर्ताओं की बलिदान, उनके कार्यकर्ताओं का सैक्रिफाइस उनको आज इस मुकाम तक ले आया। माखनलाल सरकार, जिनके बारे में शायद ही आज की तारीख में कोई चर्चा करता हो, लेकिन प्रधानमंत्री ने माखनलाल सरकार को याद रखा, उन्हें इनवाइट किया, उन्हें न्योता दिया, अपने मंच पे बुलाया, उनके पांव छुआ, क्योंकि ये माखनलाल सरकार वो शख्स है जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ काम कर चुके हैं और स्वतंत्र आंदोलन में उनका एक अहम भूमिका भी रहा है। और सिर्फ यही नहीं, जब पश्चिम बंगाल में आरएसएस का कोई शाखा संगठन उस लिहाज से नहीं था, तब ये माखनलाल सरकार अकेले भगवा झंडे को लेकर चारों ओर घूमते थे और उन्हें कई बार राजनीतिक दलों ने उन्हें राजनीतिक तरीके से उन्हें शिकार बनाया, उन्हें जेल तक जाना पड़ा।
0: बंगाल चुनाव में हिंसा का एक लंबा दौर चला है, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं की जान का जिक्र बीजेपी लगातार करती रही है। ऐसे में पीएम मोदी ने चुनावी हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं देवाशीष मंडल, सौमित्र घोषाल और आनंद पाल के परिवारों से मुलाकात की। तमाम उम्मीदें इस सरकार से जुड़ी हैं। लोगों की भावनाएं शपथ ग्रहण में दिखाई दी, जहां अब चुनौती जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की है। अनुपम मिश्र, इंद्रजीत कुंडू और पीयूष मिश्रा के साथ मारिया शकील, कोलकाता आज तक।
4: शुभेंदु अधिकारी नए मुख्यमंत्री बने पश्चिम बंगाल के, भगवा पूरा मंच सजा हुआ था, उन्होंने वस्त्र भी वैसे पहने थे, प्रधानमंत्री ने साष्टांग किया और पूरा एनडीए का कुनबा मंच पर मौजूद था, मानो एक बड़े शक्ति प्रदर्शन के तौर पर, मानो नई जमीन पर अपनी सत्ता हासिल करने का एक मुहर लगाने के लिए। हमने बातचीत की है नई नवेली मंत्री बनी आसनसोल दक्षिण से विधायक मंत्री बन गई है अग्नि मित्रा पॉल। देखिए, बीजेपी की फायर ब्रांड लीडर और दो बार की एमएलए आसनसोल दक्षिण से अग्नि मित्रा पॉल जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। पहले तो आप मैम, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत सारा इस बार भी खबरें आई कि किस तरह से भिड़ंत की स्थिति टीएमसी बीजेपी के बीच में थी आप लोगों के लिए इस चुनाव में, और लंबे वक्त से आप बीजेपी के साथ टिकी हुई हैं। एक तो बीजेपी का कार्यकर्ता होकर पश्चिम बंगाल में लड़ना कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए, जिन मुश्किलों का आपने सामने किया वो बताइए, और इस जीत का अर्थ क्या है, इस जीत का अर्थ क्या है आपके लिए पश्चिम बंगाल में?
5: देखिए, पहले तो इलेक्शन लड़ना बहुत बहुत बंगाल में मुश्किल की बात है, और इलेक्शन में तो ठीक है, इलेक्शन कमीशन रहता है, इस बार तो इस बार का इलेक्शन जैसा हम लोग कभी देखे नहीं है, लेकिन बंगाल में भाजपा को काम करना इतना साल बहुत मुश्किल की बात है। विधानसभा का अंदर आप विधायक हो, आपका माइक बंद कर दिया जाता है, अपना असेंबली में जब जाएंगे, असेंबली में जा रहे, डोर टू डोर कर रहे, तब टीएमसी का कैडर आके आपको अपमान करेंगे, हैकल करेंगे, और मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है। काम करने एमएलए फंड से जो काम, जो पैसा हम लोग को मिलता है, जो हमारा अधिकार है, उसमें डिले किया जाता है, तो ऐसा बहुत सारा। इसके ऊपर तो जैसे हम तो डिजाइनर होके हम आए हैं, और मेरे नाम में मर्डर केस है, मेरे नाम में आर्म्स केस है, तो एक क्या बोले, कोई भी कार्यकर्ता के लिए, भाजपा कार्यकर्ता के लिए पश्चिम बंगाल में ये टीएमसी रेजिम में काम करना बहुत ही मुश्किल था। और आज जब सरकार आ गया है तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहे।
4: अग्निमित्रा जी, आपने खुद ही बताया आप फैशन डिजाइनर हैं, आप कपड़े डिजाइन करती थी, और कांथा वर्क को भी आपने खूब प्रमोट किया, और खुशी की बात तो यह है कि जो पांच लोगों ने शपथ ली उनमें एक महिला के तौर पर भी आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये भी एक खुशी है। लेकिन दरअसल बंगाल में एक वक्त ऐसा भी आप लोगों ने देखा ही होगा जब बीजेपी के लिए मतलब लोगों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता था, बीजेपी को सपोर्ट करने वाले लोग मिलते नहीं थे, खोजने से भी नहीं मिलते थे, है ना? तो आपने वो दौर भी देखा होगा, वहां से लेकर आज का ये स्टेज, वो ट्रांजिशन बताइए, शुरू में क्या प्रॉब्लम्स होती थी?
5: 15 साल वो लोग कुछ काम नहीं किए। हम एक बीजेपी का कार्यकर्ता होके नहीं बोल रहे, आप किसी भी गांव में जाओ, किसी भी स्टेटा का लोगों से पूछो, कोई काम नहीं किया, लेकिन 50% महिला वोटर है। जब ये लखीर भंडार उन लोगों को मिला तो छप्पड़ भार के वो लोग वोट दिए थे, लेकिन अब हम लोग ये लास्ट 5 साल, स्पेशली लास्ट 2-3 साल, जिस तरह से महिला के ऊपर अत्याचार हुआ, आरजी कौर डॉक्टर अभया को जिस तरह मारा गया, दुर्गापुर में मेडिकल स्टूडेंट उड़ीसा से आया था, उसको 8 बजे के बाद वो खाना लेने गए, उसका धर्षण कर दिया, और मुख्यमंत्री एक महिला होने के बावजूद बोल रहे कि 8 बजे के बाद निकलने का जरूरत क्या है, मैंने 8 बजे के बाद कोई विभिन्न पुलिस ऑफिसर हो तो थाना नहीं जाएंगे, कोई महिला डॉक्टर हो तो वो हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, ये सब देख के ना महिला जो 50% वोटर, और जो हमारे मातृतांत्रिक समाज है, बंगाल माँ दुर्गा माँ काली का देश है, जो महिला का सम्मान करते हैं, वो लोग भी आज टीएमसी के विरुद्ध में हो गया है।
4: पीएम ने आज कुछ बोला?
5: नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि पूरा एकदम बहुत काम है, मन लगाकर काम कीजिए, प्रधानमंत्री जी यही बोले सबको।
4: ये विजुअल एक बार दिखाते हैं, और मेरा आखिरी प्रश्न यही है, मंच था और भगवा रंग हावी दिख रहा था वहां पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साष्टांग किया वहां पर लोगों के लिए, हम लोग तो तस्वीरें दूर से देख रहे थे, बट आप वहां पर मौजूद थी शपथ लेने के लिए, ये तस्वीरें आप कैसे बताएंगे हमारे दर्शकों को?
5: एक हमारे प्रधानमंत्री, एक भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, जो पूरा साष्टांग होकर प्रणाम किए बंगाल के जनता को ये मैंडेट देने के लिए, और एक मुख्यमंत्री, एक्स मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हम लोग देखे हैं, जो कुछ काम नहीं किए, सिर्फ लोगों का अनड्यू एडवांटेज लिए और बोले कि वो माँ शारदा है, माँ शारदा हमारे भगवान है, और बोले वो माँ शारदा है, तो एक कंपैरिजन की अकाउंटेबिलिटी आंसरेबल ये भाजपा सरकार है हर टाइम लोगों के लिए, इसीलिए आज 21 राज्यों में हमारा सरकार चल रहा है। हम लोग सेवा करने के लिए आए हैं, बंगाल के सेवा करने के लिए आए हैं, शासन नहीं।
4: ठीक है, अरे ममता बनर्जी तो लेकिन मान नहीं रही हैं, वो एक तो उन्होंने पहले भी इस्तीफा के लिए कह दिया कि मैं क्यों जाऊं, मैं हारी नहीं हूं, दूसरा वो कह रही हैं कि चुनाव आयोग की वजह से आप लोग जीते हैं, तीसरा वो कह रहे हैं कि सारी राजनीतिक पार्टियों को अब अपना विरोध छोड़कर लेफ्ट को भी आमंत्रण दे रही हैं, लेफ्ट को भी आमंत्रण दे रही हैं, कांग्रेस को दे रही हैं, सभी पार्टियों को दे रही हैं एकजुट होने के लिए।
5: देखिए इंडिया अलायंस में तो अपने आप में यूनिटी नहीं है। आज इलेक्शन के बाद कांग्रेस के राहुल गांधी ने बोला कि आज ममता बनर्जी के लिए बीजेपी का ये एंट्री हो गया, एक दूसरे जन का दोष देते हैं। दिल्ली में जाके फिश फ्राई खाते हैं और इधर आके कुश्ती करते हैं। ममता बनर्जी जिस रिस्पेक्ट श्रद्धा भरोसा 2011 में मिला, वो अगर भरोसा और श्रद्धा अगर रखते ना तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। आज विभ्रांत करने का राजनीति जो ममता बनर्जी ने किया है ना, उसके लिए आज ये अवस्था हुआ है।
4: अग्निमित्रा पॉल जी, आप आज तक पर आए, आपका बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बधाई फिर से। आज हम आपको कटुता की वो कहानी भी बताना चाहते हैं जिसने शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच सबसे कट्टर राजनीतिक दुश्मनी की एक नींव रख दी। एक जमाना था जब शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद हुआ करते थे। अगर ममता बनर्जी ने लेफ्ट की 34 साल की सत्ता को खत्म किया तो इसके पीछे शुभेंदु अधिकारी का भी खून पसीना था, और उन्होंने ही ममता बनर्जी के लिए सालों तक मेहनत करके सत्ता का एक नया रास्ता तैयार किया था। लेकिन बाद में यही शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के खिलाफ दीवार बनकर खड़े हो गए, और जिस सत्ता को कभी उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था उसे ही उन्होंने उखाड़ फेंकने का काम किया। ये कैसे हुआ और कैसे शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद सिपा सालार से सबसे कट्टर राजनीतिक दुश्मन बन गए, आज हम इसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि राजनीति में परिवारवाद कैसे बाहरी नेताओं से खुद को असुरक्षित मान लेता है। ये पूरी कहानी शुरू होती है साल 1989 में, 1989, जब पश्चिम बंगाल में लेफ्ट सरकार का एक छत्र राज था। स्थिति यह थी कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी भी अपने दौर में लेफ्ट के एक छत्र राज को हिला ही नहीं पाए। तब उसी दौर में शुभेंदु अधिकारी का बंगाल की राजनीति में प्रवेश हुआ और वो कांग्रेस की छात्र परिषद के सदस्य बने। कांग्रेस में शामिल होने का कारण यह था कि शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी कांग्रेस के एक बड़े नेता थे, एक बड़े प्रभावशाली नेता थे, और यूपीए की सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री भी वो रह चुके हैं। इंदिरा गांधी के दौर में और लेफ्ट के राज में उन्होंने साल 1982 में कांति दक्षिण सीट से पहला चुनाव जीता था और वो कांग्रेस के काफी भरोसेमंद थे। हालांकि साल 1998 में जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई, तब शुभेंदु अधिकारी परिवार, जो है अधिकारी परिवार ही कह लीजिए, टीएमसी में एक साथ शामिल हो गया। इस वक्त तक शुभेंदु अधिकारी एक युवा नेता थे, उनकी पहचान उनके पिता के नाम से ज्यादा होती थी। साल 2001 के विधानसभा चुनाव और साल 2004 के लोकसभा चुनाव में जब शुभेंदु अधिकारी की हार हो गई तो उन पर कई सवाल भी उठे कि पिता तो बड़े नेता थे लेकिन बेटा देखो हार रहा है। कहा गया कि उनकी राजनीति में मैजिक नहीं है जो उनके पिता की पॉलिटिक्स में था, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ये ताने सहते गए। इसके बाद आया साल 2006 और इस बार शुभेंदु अधिकारी ने अपना तीसरा चुनाव लड़ा और इस बार भी वो 8,500 वोटों से जीत गए। ये जीत भी उन्हें तब मिली जब टीएमसी पूरे पश्चिम बंगाल में सिर्फ 30 सीटें ही जीत पाई थी। यहां से शुभेंदु अधिकारी के इलेक्शन मैनेजमेंट की चर्चा होने लगी। टीएमसी में कई नेता कहने लगे कि शुभेंदु अधिकारी वो चट्टान है जो लेफ्ट के तूफान से भी डगमगाए नहीं। इसके बाद आया साल 2007 और इसने सब कुछ बदल कर रख दिया और यहीं से शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के भरोसेमंद सिपा सालार बन गए। उस साल लेफ्ट सरकार ने नंदीग्राम में केमिकल हब और स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ बनाने का फैसला किया, जिसके लिए 40,000 किसानों की जमीनों का अधिग्रहण होना था। ये बात ममता बनर्जी को पता चली तो वो नंदीग्राम पहुंच गई और कहा जाता है कि नंदीग्राम की इसी लाल मिट्टी ने ममता बनर्जी को बंगाल की दीदी बना दिया। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस नंदीग्राम ने ममता बनर्जी की एक अलग पहचान गढ़ी, उस नंदीग्राम की लाल मिट्टी पर पूरे आंदोलन की रूपरेखा शुभेंदु अधिकारी ने ही खींची थी। लेफ्ट की सरकार में उन पर यह आरोप भी लगा कि उन्होंने नंदीग्राम में माओवादियों की मदद ली है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के इस आंदोलन को सफल बनाने में पूरी ताकत हर तरह से झोंक दी। इसी के बाद ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी पर भरोसा जताना शुरू किया और उन्हें उस पूरे क्षेत्र का पार्टी ऑब्जर्वर बनाया गया, जिनमें पश्चिम मिदनापुर, पुरुलिया, बांकुड़ा इन सब के आदिवासी इलाकों में लेफ्ट का दबदबा था, सब सौंप दिया गया शुभेंदु को। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी का प्रमोशन हुआ, उन्हें ममता बनर्जी ने लोकसभा का चुनाव लड़ाया। साल 2009-2014 में वो तमलुक सीट से टीएमसी के सांसद चुने गए, दिल्ली आ गए। हालांकि टीएमसी पर शुभेंदु अधिकारी की इतनी मजबूत पकड़ थी कि साल 2016 में उन्होंने वापस बंगाल लौटने का फैसला किया। अब 2016 के जिन चुनाव में पहली बार बीजेपी का खाता खुला और वो 3 सीटें जीती, तब शुभेंदु अधिकारी भी नंदीग्राम से चुनाव जीते। इसके बाद ममता बनर्जी ने उन्हें अपनी सरकार में मंत्री बनाया, कई बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी, विधायक बनकर आए थे। इस वक्त तक शुभेंदु अधिकारी को टीएमसी में ममता बनर्जी के बाद नंबर 2 ही माना जाता था और वो कई नेता कहते थे कि ममता बनर्जी के उत्तराधिकारी तो अब शुभेंदु अधिकारी ही है। लेकिन कहते हैं कि ये बात ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को पसंद नहीं थी। वो टीएमसी पर शुभेंदु अधिकारी की मजबूत पकड़ को सही नहीं मानते थे और इसी के बाद शुभेंदु अधिकारी की अनदेखी होने लगी। परिवार के लिए ममता बनर्जी ने अपने भरोसेमंद सिपा सालार को किनारे लगाना शुरू किया और यहीं से शुरू हुई ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी की कट्टर दुश्मनी। टीएमसी के सभी बड़े कार्यक्रमों में शुभेंदु अधिकारी गायब, धीरे धीरे गायब होने लगे और पार्टी के पोस्टर से भी उनकी तस्वीरें हटा दी गई। ये वही मौका था जब बीजेपी ने अपना दांव चल दिया। जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे बीजेपी ने ममता बनर्जी को कमजोर करने के लिए उन्हीं के सिपहसालार शुभेंदु अधिकारी को अपनी तरफ किया। और जानते हैं 19 दिसंबर 2020 को जब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हुए तब उन्हें पार्टी ज्वाइन कराने वाले कौन थे? वो खुद गृहमंत्री अमित शाह थे। वही अमित शाह जिनके लिए ममता बनर्जी ने कभी कहा था कि वो किसी अमित शाह को नहीं जानती, और इसके बाद अमित शाह ने कहा था कि वो बीजेपी के एक सामान्य कार्यकर्ता हैं जो बंगाल से टीएमसी को उखाड़ फेंकने आए हैं। और देखिए अमित शाह ने जो कहा वो कर दिखे। देखिए
6: तो ममता जी ने मीडिया के सामने एक छोटा सा सवाल किया है कि अमित शाह कौन है, ऐसा पूछा था। दीदी अगर आप देख सकती है तो देख लीजिए, सुन सकती है तो सुन लीजिए, मैं अमित शाह हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मैं अमित शाह हूं, और इस बंगाल की भूमि पर से तृणमूल को उखाड़ने के लिए आया हूं, वो आप समझ लीजिए।
4: ममता बनर्जी ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के लिए शुभेंदु अधिकारी को टीएमसी में आगे बढ़ने से रोका, और ये भी उन्होंने तब किया जब वो जानती थी कि जमीन पर कौन है। जमीन पर टीएमसी का जो काडर है उसे शुभेंदु अधिकारी ने ही संभाला हुआ है। लेकिन परिवारवाद ने शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी का दुश्मन बनाया, जबकि बीजेपी ने इस मौके की तरह इसको लिया और आज आप सब देख रहे हैं कि बंगाल ने बीजेपी ने कितना बड़ा खेला किया है। शुभेंदु अधिकारी ने सबसे बड़ी चीज ये की, उन्होंने ममता बनर्जी की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का जवाब तुष्टीकरण की राजनीति से ही दिया। वो कैसे? ममता बनर्जी ने 2019 में कहा था कि वो मुसलमानों का तुष्टीकरण करती हैं और आगे भी 100 दफा करती रहेंगी, फिर चाहे एक दूध देने वाली गाय की तरह मुसलमान भी उन्हें लात मारते। इसी बात तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और अगर आपको लग रहा है कि दुनिया आपके बिना नहीं चलेगी तो एक बार मोबाइल फोन का एयरप्लेन मोड ऑन करके देख लीजिए।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: कोई ऐसा कूलर दिखा, पूरी फैमिली बोले वाह।
3: फैमिली कितनी बड़ी है चाचा?
2: ज्यादा बड़ी ना है।
3: छोटे ऑन कर दे,
4: ऑन कर दे, ऑन कर दे।
2: पैक कर दे समर कूल।
3: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल।
5: एक्सपेक्टेशन से बेटर प्लेसमेंट मिली है तुझे, अब सब सेट है ना?
6: सब सेट है, बस अब चाहिए एक सैलरी अकाउंट जो मैच करे मेरी लाइफस्टाइल से।
7: तो सोचना क्या है, मेरा अपना बैंक है ना।
5: मतलब
7: पंजाब नेशनल बैंक, जो दे तुम्हारी चॉइस का सैलरी अकाउंट नंबर, OTT सब्सक्रिप्शन, लाउंज एक्सेस एंड मेनी मोर बेनिफिट जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को मैच करे।
8: वाओ दी, मैं कल ही बैंक जाता हूँ।
7: पर जाना क्यों है, सब ऑनलाइन ही हो जाता है। PNB, मेरा अपना बैंक।
9: कूल फैंस से घर को सजाएं।
10: कूल फैंस, बिजली बचाएं और कम आवाज करें।
9: कूल फैंस, घर की शान बढ़ाएं।
11: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा।
12: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
13: विक्रम, एक हिंट तो देते।
14: विक्रम!
13: हिंट।
12: बड़े आराम से।
15: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
16: Hint, bade aaram se.
15: Cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
17: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
18: Summer cool cooler, hawa aisi chhode puri family ko thandak se jode. Summer cool cooler, life banaye wonderful.
1: Vimal, bolo zubaan kesri.
2: कोई ऐसा कूलर दिखा, पूरी फैमिली बोले वाह।
3: फैमिली कितनी बड़ी है चाचा?
2: ज्यादा बड़ी ना है।
3: छोटे ऑन कर दे,
4: ऑन कर दे, ऑन कर दे।
2: पैक कर दे समर कूल।
3: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
4: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
5: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
6: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
7: Feel the good vibes with Roots Reggae. TuneIn is bringing positivity to your ears with the best reggae hits. Stir it up with Bob Marley, Jimmy Cliff, Protégé, and much more. Let Roots Reggae lift your spirits and fill your ears with rhythms and beats of the best. Just search Roots Reggae or tell your device to play Roots Reggae on TuneIn.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: कोई ऐसा कूलर दिखा, पूरी फैमिली बोले वाह।
0: फैमिली कितनी बड़ी है चाचा?
2: ज्यादा बड़ी ना है।
0: छोटे ऑन कर दे,
3: ऑन कर दे, ऑन कर दे,
2: पैक कर दे समर कूल।
0: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल।
4: मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ।
5: मैं मनोज कुमार पांडे।
6: मैं अजय सिंह पाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ।
4: सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
7: मैं भारत की सुरक्षा और अखंडता रखूंगा।
8: ये सिर्फ कैबिनेट विस्तार नहीं, यूपी में 2027 की चुनावी पटकथा का पहला बड़ा अध्याय है। योगी कैबिनेट विस्तार में सबसे बड़ा फोकस रहा जाति और क्षेत्रीय संतुलन।
5: सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
8: लखनऊ में 6 नए मंत्रियों के साथ 2 मंत्रियों का प्रमोशन हुआ। इस तरह योगी सरकार में 8 मंत्रियों ने शपथ ली। यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट विस्तार में जगह दी गई है। पश्चिमी यूपी का अहम जाट चेहरा है भूपेंद्र चौधरी। रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे योगी सरकार में मंत्री बन गए हैं। यूपी में मनोज पांडे बड़े ब्राह्मण चेहरों में से एक है। 2024 में समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर मनोज पांडे योगी सरकार में शामिल हुए थे।
9: मैं कृष्णा पासवान ईश्वर।
8: यूपी की खागा सीट से कृष्णा पासवान मंत्री बने। चौथी बार की विधायक कृष्णा पासवान पासी समुदाय की नेता है। लोधी समुदाय से आने वाले कैलाश राजपूत को भी मंत्री बनाया गया है। कन्नौज के तिरवा से बीजेपी विधायक कैलाश राजपूत की ओबीसी में अच्छी पकड़ है।
10: सुरेंद्र दिलेर।
8: अलीगढ़ की खैर सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर को भी मंत्री बनाया गया है। एससी समुदाय के बड़े नेता हैं सुरेंद्र दिलेर। यूपी विधान परिषद के सदस्य हंसराज विश्वकर्मा भी मंत्री बन गए हैं। पिछड़े समाज के नेता के रूप में हंसराज विश्वकर्मा की धमक है। योगी सरकार ने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए यूपी की सियासत बदल दी है। ब्राह्मण प्लस ओबीसी प्लस दलित, यानी एक ब्राह्मण 2 दलित 5 ओबीसी, यानी एक तीर से कई निशाने। राजनीति में कुर्सियां सिर्फ नेताओं को नहीं मिलती, उनके पीछे खड़े समाज को संदेश मिलता है। इसी को ध्यान में रखकर योगी मंत्रिमंडल के विस्तार से बीजेपी ने भविष्य की सत्ता की रणनीति बनाई है। फोकस 2027 विधानसभा चुनाव, टारगेट ओबीसी प्लस दलित प्लस ब्राह्मण, इनमें सवर्ण भी शामिल है। पश्चिमी यूपी को प्रतिनिधित्व मिला है। पूर्वांचल में विशेष फोकस किया गया है। महिला चेहरा को शामिल किया गया है। समाजवादी पार्टी के बागियों को साधा गया है। पीडीए फॉर्मूले की काट का प्लान बनाया गया है। गैर यादव ओबीसी पर नजर रखी गई है। गैर जाटव दलित वोट साधने की कोशिश हुई है। बूथ से लेकर बिरादरी तक पकड़ बनाने की कोशिश हुई है। यूपी में पश्चिम से पूर्वांचल तक योगी का बैलेंस गेम दिखता है। गुर्जर, पाल, पिछड़ा, दलित, ब्राह्मण, हर क्षेत्र, हर जाति, हर समीकरण का ध्यान रखा गया है। या यूं कहें कि समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले के जवाब में बीजेपी ने सत्ता का नया सामाजिक गणित सामने रख दिया है। राजनीति सिर्फ सत्ता चलाने की कला नहीं है, समाज के मन को पढ़ने का विज्ञान भी है। और उत्तर प्रदेश में जिसने जाति, क्षेत्र और भावनाओं का संतुलन साध लिया, दिल्ली का रास्ता अक्सर उसी के लिए आसान हो जाता है। 2027 अभी दूर है, लेकिन उसकी आहट लखनऊ के सत्ता गलियारों में आज साफ सुनाई दे रही है। आज तक ब्यूरो।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

तेल संकट से बचने के लिए पीएम मोदी की देशवासियों से अपील, कहा विदेशी मुद्रा बचाना भी देशभक्ति, एक साल तक ना खरीदें सोना पेट्रोल डीजल का कम करें इस्तेमाल, फॉरेन टूर से भी बचें। यूपी में 2027 का चुनावी समीकरण साधने के लिए योगी कैबिनेट का विस्तार, भूपेंद्र चौधरी मनोज पांडे समेत 6 नए चेहरे, 2 राज्य मंत्री अजीत पाल, सुमेंद्र तोमर को मिला स्वतंत्र प्रभार। तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनते ही एक्शन में विजय, 200 यूनिट बिजली फ्री, महिला सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स का ऐलान, कहा डीएमके ने छोड़ा 10 लाख करोड़ का खर्च। असम में 12 मई को हेमंता फिर लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, उससे पहले कहा 2021 से 26 तक ट्रेलर था, 2031 तक दिखाऊंगा पूरी फिल्म। भीषण गर्मी और बाढ़ से निपटने के लिए दिल्ली में अमित शाह की उच्च स्तरीय बैठक, अलर्ट सिस्टम को मजबूत करने पर जोर, मेडिकल तैयारियों की भी समीक्षा।

भारत की आध्यात्मिक अस्मिता के प्रतीक प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ के मंदिर में 11 मई 2026 का दिन इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। मई 1951 में मंदिर के प्रथम लोकार्पण से मई 2026 के भव्य दर्शनों तक सोमनाथ की समृद्धशाली विरासत ने 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा तय कर ली। पचहत्तर वर्ष की ये यात्रा है विध्वंस के विचार से सृजन की शक्ति की विजय की। सदियों आक्रांताओं की क्रूरता से पीड़ित सभ्यता के स्वाभिमान स्थापना की। भारत के जन जन की आत्मा में बसी आस्था के पुनर्स्थापना की। सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व की कमान खुद प्रधानमंत्री मोदी संभाल रहे हैं।

0: 12 ज्योतिर्लिंगों में जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है, पृथ्वी का जो पहला मंदिर है, वहां लेकर हम आपको आए हैं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और सोमनाथ मंदिर में हम इस समय मौजूद हैं। यहाँ की जो कहानियां हैं, यहाँ का जो इतिहास है, वो हर मायने में अद्भुत है। यहाँ की जो मान्यताएं हैं वो अविश्वसनीय हैं और यहाँ का जो महात्म्य है वो अकल्पनीय है। आज हम आपको इसी सिद्ध स्थल की वो सभी कहानियां सुनाएंगे। मंदिर पुनर्निर्माण के 75 वर्ष उत्सव ही नहीं, स्मरण की भी वो यात्रा है जो पिछले 1000 वर्षों के छल को कभी न भूलने की प्रेरणा भी देते हैं। सोमनाथ के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ अवसर है उन बलिदानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का जिन्होंने जान से ऊपर सोमनाथ के मान को रखा, जिन्होंने सोमनाथ के प्रताप को प्राण देकर भी धूमिल नहीं होने दिया। मंदिर पुनर्निर्माण की 75वीं जयंती पर समुद्र की लहरें जोश में हैं। सोमनाथ मंदिर गर्वोन्नत है, प्रधानमंत्री मोदी उत्साहित हैं और समय तो प्रतीक्षा कर ही रहा है पावन पलों का साक्षी बनने के लिए। जब जब भारत अपनी जड़ों को पहचानना चाहता है तब तब सोमनाथ सामने खड़ा होता है। तलवारों के जोर और आक्रांताओं के क्रूर मंसूबे, सदियों तक कोशिशें करने के बाद भी सोमनाथ के अस्तित्व को खत्म नहीं कर पाए। सोमनाथ गिरा लेकिन टूटा नहीं, लूटा गया लेकिन मिटा नहीं, जलाया गया लेकिन अपनी ही राख से फिर उठ खड़ा हुआ। देश आजाद हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्र के स्वाभिमान में संचार करने के लिए सोमनाथ के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। 1951 में मंदिर तो बना लेकिन सरदार नहीं रहे। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर का प्रथम लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री मोदी लोकार्पण की 75वीं वर्ष गांठ पर खुद को सोमनाथ के श्री चरणों में होने को अपना सौभाग्य मान रहे हैं और देश एक तारीख बनते देख रहा है जो सदियों तक दोहराई जाती रही।
1: सोमनाथ का इतिहास विनाश और पराजय का इतिहास नहीं है, ये इतिहास विजय और पुनर्निर्माण का है, हमारे पूर्वजों के पराक्रम का है, हमारे पूर्वजों के त्याग और बलिदान का।
0: मई 2026 अगर मंदिर की पुनर्स्थापना की 75वीं वर्षगांठ का वर्ष है तो साल 2026 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए पहले प्रहार के 1000 वर्ष भी पूरे होते हैं। जनवरी 2026 में सोमनाथ की धरती से पूरे देश ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया था।
2: निशंक रूप से 75 साल पूरा करना एक लैंडमार्क अवश्य है। इतनी बार टूटने के बाद इनका नवसर्जन हुआ, मगर 13 नवंबर 1947 के दिन सरदार साहब ने जो संकल्प किया था वो संकल्प के हिसाब से आज सोमनाथ मंदिर पूरे कार्विंग के साथ गर्भगृह सुवर्ण मंडित होने के बाद और शिखर भी जो उस पर कलश है वो भी पहले सुवर्ण मंडित था और आज 1500 से ज्यादा कलश है।
0: सोमनाथ स्वाभिमान पर्व धर्मांध कट्टर क्रूरता के जवाब में सोमनाथ के युग युगीन गौरव का प्रतीक था। प्रधानमंत्री मोदी उस स्वर्णिम पल के भी साक्षी बने तो भावुक हो उठे।
1: आतताएं आते रहे, मजहबी आतंक के नए नए आक्रमण होते रहे, लेकिन हर युग में सोमनाथ पुनः पुनः स्थापित होता रहा। इतनी सदियों तक का संघर्ष, इतना लंबा प्रतिकार, इतना महान धैर्य, सृजन और पुनर्निर्माण का ऐसा जीवन, ये सामर्थ्य अपनी संस्कृति में ऐसा विश्वास और ऐसी आस्था दुनिया के इतिहास में ऐसा उदाहरण मिलना मुश्किल है।
0: सोमनाथ, भारत की आत्मा, राष्ट्र की चेतना और श्रद्धा का वो अटूट विश्वास है जो सदियों से उद्घोष कर रहा है इस सत्य का कि आस्था अडिग हो तो सांस्कृतिक विरासत कोई मिटा नहीं सकता। मिटाने की कोशिशें करने वाले आतताई मिट गए, उनके साम्राज्य मिट्टी में मिल गए, उनके कुलवंशों के दीप सदा के लिए बुझ गए, लेकिन सौ राष्ट्र में समुद्र की लहरों को प्रतिदिन उपकृत करता सोमनाथ अब भी गर्वोन्नत सा खड़ा। ये मूर्तियां संरक्षित हैं, उस दौर की गवाही दे रही हैं जब श्री सोमनाथ मंदिर को बार बार आक्रमणकारियों ने ध्वस्त किया था, तोड़ा था। ये प्रतिमाएं खंडित जरूर हैं, लेकिन ये हमारे संगठित, हमारे संयुक्त इतिहास का प्रतिबिंब है। हमारी आस्था, हमारा इतिहास, हमारी राष्ट्रीयता, ये सबका प्रतीक है। और ये प्रतीक है इस बात का कि जितनी बार भी दमन किया जाएगा, आक्रमणकारियों द्वारा हमला किया जाएगा, विध्वंस किया जाएगा, उतनी बार उठ खड़ा होगा पूरा हिंदुस्तान। गुजरात सरकार की वेबसाइट के अनुसार फारसी इतिहासकार अल बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का विस्तृत वर्णन किया, जिसके कारण ये सैकड़ों साल पहले से चर्चा में रहा और आक्रांताओं ने इसे बार बार तोड़ा। ७२५ ईस्वी में पहली बार सिंध के सूबेदार अल जुनैद के आदेश पर मंदिर तोड़े जाने का इतिहास मिलता है, लेकिन प्रतिहार राजा नागभट्ट ने मंदिर को फिर से भव्यता दी। ११२५ में सोमनाथ मंदिर पर सबसे क्रूर हमला महमूद गजनवी ने किया, हजारों लोगों को कत्ल किया, मंदिर को तहस नहस किया और खजाना लूट कर ले गया। लेकिन चालुक्य राजा भीम प्रथम ने फिर मंदिर का निर्माण करवाया, फिर सोलंकी राजा कुमार पाल ने मंदिर को और भव्यता प्रदान की और साथ ही मंदिर को रत्नों से सजाया।
3: सोमनाथ की ये जाहो जलाली को देखकर मोहम्मद गजनवी ने जनवरी 1026 में आक्रमण किया। जब मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया, उसकी बातें, उसका हिस्टोरियन था, उसका नाम अलबेरूनी था, उसने सोमनाथ का जिक्र उनके अहवाल में किया है।
4: यहाँ से जो कोई भी यवन विधर्मी लूट के गया, वो पहुंच नहीं पाया है अपने डेस्टिनेशन पे। आज भी कच्छ में आप जाओगे तो वहाँ के म्यूजियम में आपको सोमनाथ के अवशेष मिलेंगे, सोमनाथ का दरवाजा भी शायद वहाँ पे है। ऐसा मैंने पुस्तकों में पढ़ा है, पुराणों में भी पढ़ा है। और विधर्मी का लक्ष्य सिर्फ संपत्ति था, जबकि सनातनियों का लक्ष्य धर्म था।
0: १२९७ में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने और फिर मुजफ्फर शाह और अहमद शाह ने बार बार आस्था के स्थल को चोट पहुंचाई। १६६५ में औरंगजेब ने मंदिर को दो बार तोड़वाया और जब देखा कि लोग खंडहर में भी पूजा करने आ रहे हैं तो भक्तों के कत्ल के लिए सेना भेजी और मंदिर का निशान तक मिटाने का आदेश दिया।
5: औरंगजेब ने उसका नाश किया। औरंगजेब ने 20 नवंबर 1665 को एक फरमान जारी किया कि अभी भी गुजरात में जो मूर्ति पूजा होती है उसका नाश करो, जो भी मंदिर है उसका नाश करो। वो फरमान का उपयोग करते हुए सोमनाथ में जो मूर्ति पूजा चलती थी वो नष्ट हो गई। फिर से औरंगजेब ने 1704 में नया फरमान किया और उसमें सोमनाथ में जो भी मूर्ति थी, जो भी पूजा पाठ होता था, वो सब का नष्ट किया। तो आखिरी जो खंडेर था सोमनाथ का, इसके बाद आज का नया सोमनाथ उस जगह पर बनाया गया है।
0: सोमनाथ मंदिर 17 बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार उसका निर्माण होता रहा।
6: मराठा राजाओं के हाथ में जब देश का बड़ा हिस्सा रहा तो महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर के स्थान पर ही मंदिर बनवाया।
0: अहिल्याबाई जिन्होंने पूरे देश में बहुत अलग अलग मंदिरों का जीर्णोद्धार किया था, उनकी भी स्मृति जीवित रहती है। लेकिन देखिए, इसी तरीके से जो पुराना रास्ता यानी कि सरदार पटेल ने जब मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया उससे पहले जो रास्ता था वो इसी रास्ते का प्रयोग होता था।
6: भारत की स्वतंत्रता के बाद तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मंदिर को पूर्ण गौरव प्रदान करने का संकल्प लिया और विरोध की परवाह न करते हुए सोमनाथ मंदिर का निर्माण जनता से मिले धन की मदद से करवाया।
3: तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और जामनगर के जाम साहेब दिग्विजय सिंह दोनों की अडग शक्ति और उसकी वजह से सोमनाथ ट्रस्ट का रचना की गई थी। और सोमनाथ ट्रस्ट ने ये पूरे हिंदुस्तान में उस वक्त चंदा लेने का शुरुआत की थी और जाम साहिब और सामलदास गांधी ये बड़े बड़े नेताओं ने रकम जमा करवाई थी। बाद में पूरे हिंदुस्तान में सोमनाथ मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने की प्रवृत्ति की गई थी। सोमनाथ ट्रस्ट का गठन किया गया और सोमनाथ ट्रस्ट ने 2-3 साल में ही ये मंदिर का बांधकाम सोमपुरा शिल्पी के पास बनवाया।
6: सोमनाथ मंदिर आज संदेश देता है कि सत्ता बदलती है, सेनाएं आती जाती हैं, लेकिन श्रद्धा और सत्य को कभी तलवार या तोप के बल पर मिटाया नहीं जा सकता। आज सोमनाथ मंदिर अपनी पूरी दिव्यता के साथ खड़ा होकर भारत के गौरवशाली अतीत की गवाही दे रहा है। गजनवी मंदिर विध्वंस के साथ यहां का अकूत खजाना भी लूट कर ले गया, लेकिन खजाना लूटा जा सकता था, इमारत तोड़ी जा सकती थी, श्रद्धालुओं का विश्वास नहीं खत्म किया जा सकता था। मंदिर आज भी पूर्ण वैभव के साथ सनातन संस्कृति का ध्वजवाहक बना हुआ है। गजनवी और उसकी सल्तनत का आज कोई नाम लेवा तक नहीं।
0: यहाँ पर आप जो भी अवशेष देख रहे हैं, 11वीं सदी, 12वीं सदी, 13वीं सदी, 14वीं सदी, अलग अलग सदियों को इंगित आप इसमें देखेंगे। 1169 की एक खंडित प्रतिमा है। ये इतना सहेज कर अब इन सबको रखा गया है। यहाँ गजलक्ष्मी की प्रतिमा आप देख सकते हैं, पार्वती जी की प्रतिमा को आप यहाँ देख सकते हैं, लेकिन चूंकि खंडित मूर्तियां हैं तो जब सब धरती में से निकाले गए उसके बाद सबको लाकर यहाँ पर स्थापित कर दिया गया है। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि 6 बार मंदिर को तोड़ा गया, 6 बार पुनर्निर्माण किया गया, लेकिन कुछ और वर्णन ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि लगभग 17 बार ऐसा हुआ था। इतिहास दर्ज भी है, इतिहास मौखिक भी है, लेकिन उस सब के बीच जब आप इस पूरे, और ये भी मंदिर है, ये भी एक सूर्य मंदिर का अवशेष है, यहां पर बताया जाता है कि करीब 16 सूर्य मंदिर इस प्रकार के थे जो 7 किलोमीटर के दायरे में है। और बहुत सुंदर इसका वर्णन दिया गया कि जहां पर सूर्य की किरणें पड़ती थी उस हिसाब से उतनी उतनी दूरी पर इन सभी सूर्य मंदिरों का निर्माण किया गया था। लेकिन आज जिस रूप में है वो आपको केवल देखकर प्रतीत होगा कि ये मंदिर रहा होगा संरक्षित करने और इस पूरे क्षेत्र के इतिहास को यहाँ पर जीवित रखने का एक बहुत सुंदर प्रयास यहाँ पर है।

0: शास्त्रों में 12 ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख मिलता है, लेकिन जब भी इनकी गणना की जाती है तो सबसे पहले बोला जाता है सौराष्ट्र सोमनाथम च, यानी सबसे पहले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का वर्णन मिलता है। मंदिर का निर्माण चंद्रदेव ने कराया था, इसीलिए चंद्र ग्रहण के समय यहाँ की गई पूजा का विशेष फल मिलने की मान्यता है।
1: चंद्र अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी मून इज द फर्स्ट प्लेनेट, 2.25 दिन एक राशि में चलता है और सबसे लेट चलता है शनि महाराज, 30 महीना एक राशि में चलता है, 13 महीना गुरु महाराज एक राशि में चलते हैं, 18 महीना राहु महाराज एक राशि में चलते हैं, लेकिन फर्स्ट प्लेनेट इज द मून, 2.25 दिन में वो राशि बदल देता है। तो चंचल होता है, किसी का चंद्र दोष होता है ना, वो आदमी चंचल होता है, यहाँ बैठा है तो वहाँ भागता है मन से, वहाँ बैठा है तो यहाँ भागता है, ये ऐसा होता है। लेकिन यहाँ आने से उनको नेचुरल पीस मिलती है, जैसे हिल स्टेशन पे हम पैबल पीस लेने जाते हैं, वैसे यहाँ नेचुरल पीस मिलती है।
0: ये भी माना जाता है कि यहाँ चंद्रदेव के रूप के क्षय यानी नष्ट होने से बचने का अक्षय वरदान मिला था, तो यहाँ मनोकामना का जो भी फल मिलता है वो अक्षय होता है और उसका प्रभाव कभी खत्म नहीं होता।
2: पहले के पूर्वजों ने इस तरीके से इतनी बार इस मंदिर पे आक्रमण हुए हैं और उसके बाद में जीर्णोद्धार हुआ है, महादेव की कृपा से सब चीज़ें ठीक रही हैं, काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अलौकिक शांति मिलती है यहाँ करके।
3: शुरू में तो हमें एंटर करते वक्त लगा कि भीड़ बहुत होगी, लेकिन हर चीज़ इतना डिसिप्लिन वे है में है, जैसा जो मैं शांति फील कर रही हूँ वो सारे दर्शनार्थी वही फील कर रहे हैं।
4: बहुत यहाँ आने पर शांति हमको महसूस हुआ, मैं अपने बेटा पोते के साथ आया हूँ।
5: बस यही प्रार्थना लेके आए हैं कि हमारी जितने भी पहले के पाप थे और सारी चीज़ें थी साफ हो जाएं और आगे की जो भी हमारी मनोकामनाएं वो भगवान जल्द से जल्द पूर्ण कर दे।
0: सनातन मान्यताओं में सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का बहुत महत्व है, उसमें भी सोमनाथ चूंकि प्रथम है तो इस ज्योतिर्लिंग को लेकर अलग ही आस्था का भाव रहता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग प्रथम है और सबसे प्राचीन है और माना जाता है कि यहाँ शिव की ऊर्जा बसती है।
6: अभी वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दिखाएंगे मंदिर की अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय कहानी।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
1: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
3: हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुबान केसरी
4: टेबल को ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते ये भाई साहब सब पचा देते
5: पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खा
6: मुल्तानी पश्मीना अपने हक का खाओ सब कुछ पचाओ
7: मुख्य समाचार मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए
8: रामराज वाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे
9: और वही कहाँ गए थे घूमने
10: जीके मैक्स
11: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है
10: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी
12: जेके वॉल मैक्स
10: बेस्ट पेंट
13: जेके मैक्स
10: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग
14: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ बहुत अपसेट हूँ
15: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स
16: लायन डेट नट बाइट्स
17: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं
18: इसमें माइक्रोफाइबर है
17: माइक्रोफाइबर यानी
18: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत
17: हमारे सीमेंट में नहीं है
18: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है
19: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़ ड्यूरागार्ड सीधी बात है ड्यूरागार्ड खास है
20: टेस्ट ऑफ सक्सेस
21: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद जेके मसाले जहां स्वाद वहां जेके

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
2: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
3: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है। खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
4: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें।
5: आज तक के खबरदार करते ही सरकार का एक्शन।
6: आज तक की खबर के बाद काउंसिल ने भरोसा दिया है कि मार्च के आखिर तक लंबित प्राइज मनी दे दी जाएगी।
7: एक दो दिन में ही उनके नियुक्ति पत्र भी जारी हो जाएंगे।
6: ये सब कुछ तब हो पाया जब आज तक ने राजस्थान के खेल विभाग को जगाया।
8: अच्छी खबर चली हमारी, अच्छा हुआ सर।
5: जहां खबर वहां खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
9: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।

0: वेट लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह फिट तक। सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इंसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब।
1: ये जो चांस आपको सुनाई दे रहे हैं, ये एकता की आवाज है, ये वो आवाज है जहां पर ईरान के लोग कह रहे हैं ना वो डरेंगे ना वो हटेंगे, वो अपने सरकार के साथ और अपने सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई के साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्य राउत्रे के साथ इनकलाब स्क्वायर यानी कि इनकलाब स्क्वायर में गीता मोहन आज तक।
2: हर राज्य में जनता बीजेपी को दूसरी बार, तीसरी बार फिर से सेवा करने का अवसर देती है, लेकिन कांग्रेस की कोई भी राज्य सरकार दूसरी बार सत्ता में वापस नहीं लौटी है। सरकार बनने के कुछ ही महीनों में कांग्रेस के प्रति एंटी इनकमबेंसी शुरू हो जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कांग्रेस को सिर्फ विश्वासघात करना आता है, ये खुद भी झूठे हैं और उनकी गारंटियां भी झूठी है। कांग्रेस की सत्ता की किताब में गवर्नेंस का चैप्टर तो है ही नहीं है।
3: पीएम मोदी के गंगोत्री से गंगा सागर तक बीजेपी के विस्तार का सपना साकार होने के बाद देश के राजनीतिक मैप में बीजेपी का भी विस्तार हो गया है। अब 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में बीजेपी की बहुमत की सरकार है, जबकि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीजेपी एनडीए के तहत सरकार का हिस्सा है। बीजेपी की बंगाल विजय के बाद सबसे अधिक चर्चा ये है कि ये जीत देश की राजनीति में बड़ा असर छोड़ सकती है। आजादी से पहले 1941 में कृषक प्रजा पार्टी और हिंदू महासभा के नेतृत्व में बने प्रगतिशील गठबंधन की बंगाल में सरकार बनी थी। ये सरकार 1943 तक चली थी। आजादी के बाद 20 साल कांग्रेस, 34 साल लेफ्ट और 15 साल ममता ने बागडोर संभाली। अब फिर भगवा लहरा रहा है, इससे देश में हिंदुत्व की राजनीति को और अधिक बल मिल सकता है। राहुल गांधी के बाद ममता बनर्जी विपक्षी एकता का बड़ा चेहरा मानी जाती थी। अब उनकी जिस तरह से हार हुई है उससे विपक्षी एकता का सूत्रधार चुनने में विपक्षी दलों को परेशानी होगी। बीजेपी राज्यों के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार के नैरेटिव को और अधिक मजबूती से बुना सकती है। बीजेपी ने बंगाल चुनावों में महिलाओं को 3,000 से अधिक राशि कैश स्कीम का वादा किया, जिसका नतीजा भी वोटों में दिखा। इससे आने वाले दिनों की राजनीति में महिला वोटर्स की अहमियत और उनको लेकर स्कीम्स बढ़ सकती हैं। बीजेपी को बंगाल विजय से मॉरल बूस्टर मिला है, जो 2029 के आम चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं और समर्थकों का उत्साह बढ़ाएगा। विपक्ष के लिए चुनौती और बढ़ेगी कि अगर वो एकजुट और जनता के लिए जरूरी एजेंडे के साथ नहीं आए तो बीजेपी का विस्तार और बढ़ता रहेगा।

0: आज जिस स्वरूप में आप सोमनाथ मंदिर को देखते हैं, उससे सैकड़ों सैकड़ों सदियों पहले बताया जाता है कि यहाँ पर जो शिवलिंग था वो एक अद्भुत स्वरूप में विराजमान था। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब इंसानी कल्पनाओं से परे होता है, कुछ रहस्य इतने गहरे होते हैं जो जब सामने आते हैं तो एक ही बात कही जा सकती है, अद्भुत, अविश्वसनीय और कल्पनीय। स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि चंद्रदेव ने सोमनाथ मंदिर को सतयुग में सोने का बनवाया था। त्रेता युग में भगवान शिव के अनन्य भक्त रावण ने चांदी से इसका पुनर्निर्माण करवाया। द्वापर में भगवान कृष्ण ने चंदन की लकड़ी से मंदिर को भव्यता प्रदान की। बाद में सोलंकी राजाओं ने मंदिर का पत्थरों से निर्माण करवाया।
1: द्वापर में कृष्ण भगवान ने उसको कास्ट, मतलब कि वुडन सैंडल, सैंडलवुड से बनाया गया था, और फिर सोलंकी राजा जो भीमदेव राजा थे उन्होंने उसको स्टोन में बनाया गया था।
0: कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग अब से हजार साल पहले तक 3 फीट ऊपर हवा में तैरता था। न शिवलिंग के नीचे कोई आधार, न शिवलिंग के ऊपर कोई जंजीर या रस्सी। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग के हवा में स्थित होने की बात कही गई है। कई विद्वानों का भी ये मानना है कि अब से हजार साल पहले तक शिवलिंग हवा में ही स्थिर रहता था।
2: इतिहास बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं कि अंगुष्ट प्रमाण था भगवान का जो स्वरूप, दिव्य स्वरूप था, कहीं कोई सपोर्ट नहीं था, ऊपर नीचे कहीं सपोर्ट नहीं था,
3: और इसलिए इसको लेविटेटिंग शिवालिंगा कहा जाता है, जो अनफॉर्चुनेटली 1026 एडी में महमूद गजनी के अटैक में महमूद गजनी ने उस शिवलिंग को गिरा के तोड़ दिया था।
0: शिवलिंग के हवा में स्थिर होने के पीछे आध्यात्मिक कारण भी हैं और वैज्ञानिक भी। ये माना जाता है कि शिव का आधार कोई भौतिक तत्व नहीं हो सकता, वो शून्य, शुद्ध चेतना और सभी तत्वों से परे है। शिव भौतिक संसार की सीमाओं से परे अनंत और असीम है। सवाल उठाने वाले पूछेंगे कि पुराणों से अलग भी क्या इतिहास में इसके बारे में लिखा गया है, हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन शिवलिंग की अद्भुत विशेषता से पहले जानना होगा कि विज्ञान का प्रयोग इंसानों ने कब शुरू किया। माना जाता है कि विज्ञान किसी एक तिथि पर अस्तित्व में नहीं आया, बल्कि मानव जाति ने इसका सहारा लेना 3000 ईसा पूर्व में शुरू किया। ये कांस्य युग का दौर था। धीरे धीरे मनुष्यों में विज्ञान की समझ विकसित होती चली गई और नई नई खोजें और आविष्कार होने लगे। 16वीं सदी आते आते दुनिया में साइंस का बोलबाला हो गया। पर सोमनाथ मंदिर तो इससे कहीं पुराना है। अद्भुत है कि हजारों साल पहले जब विज्ञान इतना विकसित नहीं था, तब ये कैसे संभव हुआ होगा कि शिवलिंग हवा में टिका रहे। वो कौन सा विज्ञान है जिससे ये संभव हो पाया होगा? किस धातु का वो ज्योतिर्लिंग रहा होगा जो इतने बड़े आकार के बावजूद इस तरीके से हवा में तैरता रहा हो? यानी कि वो धरती पर स्थापित नहीं, बल्कि बीचों बीच गर्भगृह में नजर आता था। बहुत ज्यादा ऐतिहासिक तथ्य नहीं है अब इसको साबित करने के लिए, लेकिन ये बात आस्था की है और पुराने समय से जो मौखिक रूप से एक दूसरे को बातें बताई गईं, वैसे आज भी लोग इस बात का, इस विज्ञान का जिक्र करते हैं। 12वीं सदी में एक फारसी भूगोल शास्त्री थे, ज़करिया अल कज़विनी। उनका जिक्र इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हिस्ट्री में सोमनाथ मंदिर पर प्रकाशित एक लेख में है। कज़विनी ने सोमनाथ मंदिर में मौजूद शिवलिंग के बारे में कहा था,
4: यह शिवलिंग मंदिर के मध्य में स्थित था, जिसके नीचे से उसे कोई सहारा नहीं था और न ही ऊपर से उसे लटकाया गया था। जो कोई भी उसे हवा में तैरता हुआ देखता वो आश्चर्यचकित हो जाता था। ये मूर्ति हवा में तैरती हुई प्रतीत होती थी, शायद लोडस्टोन या चुंबकीय पत्थर या फिर प्राकृतिक चुंबक से बने एक छत्र और लोहे से बने शक्तिशाली चुंबकीय उल्का पिंड से निर्मित शिवलिंग के कारण।
0: बुलफेदा और फरूखी सिस्तानी जैसे ऐतिहासिक स्रोतों ने भी मूर्ति की असाधारण कठोरता का उल्लेख किया है, जो उल्का पिंडों की विशेषताओं से मेल खाती है। आधुनिक वैज्ञानिकों का मानना है कि शिवलिंग किसी ऐसे पत्थर से बना रहा होगा जिसमें कहीं न कहीं कोई धातु का अंश जरूर रहा होगा या कोई चुंबकीय विशेषता रही होगी। आमतौर पर ऐसे पत्थर अंतरिक्ष से आए माने जाते हैं। इन पत्थरों को मीटियोर कहते हैं।
3: जो ये शिवलिंग था ये बेसिकली एक उल्का पिंड या मीटियोराइट का पीस था। इसका हमारे पास काफी एविडेंस है। सबसे ज्यादा एविडेंस है कि उनकी अपनी कथाओं में लिखा है कि जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी में बहस हुई तो शिवजी ने आसमान को एक ब्राइट लाइट की तरह चीर दिया और ब्राइट लाइट चीर के उल्का पिंड ही आता है यानी कि मीटियोराइट्स। मीटियोराइट्स निकल आयरन की काफी तादाद होती है, स्ट्रांगली मैग्नेटिक होते हैं और क्योंकि जब वो नीचे गिरते हैं तो वो छोटे हो जाते हैं। तो इसके बारे में एक पुराना में भी लिखा है कि ये अंडे के साइज का था, ये नॉर्मल शिवलिंग से छोटा था, ये जो सोमनाथ का लेविटेटिंग शिवलिंग था।
0: इसका जवाब हमें चुंबकीय उत्तोलन या मैग्नेटिक लेविटेशन की थ्योरी बताती है। हालांकि वैज्ञानिकों की माने तो मैग्नेटिक लेविटेशन हासिल करना बहुत मुश्किल है और सोमनाथ से पहले इसका कहीं और सबूत दिखाई नहीं देता। शिवलिंग हवा में तभी ठहरा होगा जब इसके ऊपर और नीचे दोनों ओर शक्तिशाली मैग्नेट लगे होंगे, यानी मंदिर की छत पर और शिवलिंग के ठीक नीचे। दोनों चुंबक इतना बराबरी से फोर्स लगा रहे होंगे कि बीच में शिवलिंग अपनी जगह स्थिर हो गया होगा। फारसी इतिहासकार कजीवनी ने लिखा है कि 1205 में जब महमूद गजनवी ने हमला किया तो उसने अपने सैनिकों से हवा में स्थिर शिवलिंग के बारे में पूछा।
4: गजनवी के सैनिकों ने भाले से शिवलिंग के चारों तरफ घुमाकर देखा तो कोई रुकावट नहीं मिली। फिर किसी ने कहा कि छत में चुंबक और शिवलिंग में लोहा हो सकता है। महमूद के आदेश पर छत के कुछ पत्थर हटाए गए तो शिवलिंग झुकने लगा।
0: ब्रिटिश वैज्ञानिक सैमुअल अर्नशॉ की 1842 में अर्नशॉ थ्योरम प्रकाशित हुई। इस थ्योरम के अनुसार एक चुंबक दूसरे चुंबकों की मदद से हवा में कभी स्थिर नहीं ठहर सकता, या तो वो चुंबकों से चिपक जाएगा या फिर दाएं या बाएं निकल जाएगा। इसके लिए एक डायमैग्नेटिक पदार्थ इस्तेमाल करना होगा।
3: डायमैग्नेट्स क्या होते हैं? डायमैग्नेट्स नोन है, हमारा उस वक्त का मेटलर्जी बहुत एडवांस था, वो तो बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट है। ये तो 10th सेंचुरी एडी का है, 1026 एडी में या 9th सेंचुरी में बना था ये, जबकि इंडियन मेटलर्जी तो 2nd सेंचुरी एडी से बहुत एडवांस है, जिंक यूज कर रहे थे। कुछ नहीं करना होता है, आपने ऊपर मैग्नेट लगा दिया, नीचे मैग्नेट, साइड पे मैग्नेट, और बीच में आपने बिस्मथ की दो प्लेटें डाल दी। ऐसे बहुत से बच्चों के टॉयज भी मिलते हैं। बिस्मथ डायमैग्नेटिक है। इसका आप लगा दीजिए कि एक आदमी लड़खड़ा रहा है और चार आदमी उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, जो ज्यादा खींचेगा वो उसकी तरफ चला जाएगा। ये नॉर्मल मैग्नेट के साथ उल्का पिंड है। और अगर आपने बिस्मत बीच में डाल दिया तो उसके बीच में दो दोस्त भी आ गए। बिस्मत दोस्त का काम करता है, वो जब आदमी गिरने लगेगा उसको संभाल के कम फोर्स वाले हिस्से में शिफ्ट कर देगा। बिस्मत का हमारे पास बहुत सॉलिड डाटा है श्री सोमनाथ मंदिर के कंटेक्स्ट में, क्योंकि जगह जगह लिखा है कि सोमनाथ का मंदिर जो महमूद गजनी ने तोड़ा था, उस मंदिर की बात कर रहा हूं मैं, वो 56 टीक यानी कि लकड़ी के पिलर्स पे था जिनके ऊपर सीसा यानी लेड चढ़ाया हुआ था, और वो सीसा नहीं था, वो बिस्मत था।
0: अद्भुत है कि जो शोध 1842 में सामने आई उसकी जानकारी आज से हजारों साल पहले कैसे थी। प्राचीन हिंदू कारीगरों को ये कैसे मालूम था कि सिर्फ चुंबकों की मदद से शिवलिंग को हवा में रोकना मुमकिन नहीं होगा, बल्कि बिस्मथ या ग्रेफाइट जैसे डायमैग्नेटिक पदार्थ भी इस्तेमाल करने होंगे। तो क्या मंदिर बनाने वालों ने बिस्मथ का प्रयोग किया? लेकिन बिस्मथ तो 1753 में खोजा गया, फिर उस समय क्या प्रयोग किया गया? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मानव इतिहास के कई पन्नों को मिटाया गया, कि दुनिया के जानने से सैकड़ों सदियों पहले भारत की भूमि पर ये ज्ञान मौजूद था? सोमनाथ से जुड़ा ये इकलौता रहस्य नहीं है, अगला रहस्य इससे भी बड़ा है और उसके लिए आपको हम लिए चलते हैं एंटार्क्टिका, यानी साउथ पोल, जिसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। कहते हैं यहाँ पहली बार कोई इंसान 1911 में पहुंचा। 14 दिसंबर 1911 को नॉर्वे के एक्सप्लोरर
5: रोआल्ड एमंडसन अपनी टीम के साथ पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे। किताबों में दर्ज है कि अंटार्कटिका को 1820 में खोजा गया। हालांकि एक नए अध्ययन से ये भी पता चलता है कि अंटार्कटिका की खोज करने वाले पहले इंसान समुद्री यात्रा करने वाले पश्चिमी लोग नहीं थे, बल्कि पॉलिनेशियन थे, जिन्होंने 1300 साल पहले इस सबसे ठंडे महाद्वीप को खोजा था। चलिए, अगर हम ये भी मान लें कि अंटार्कटिका 1300 साल पहले खोजा गया, तब भी जो अद्भुत तथ्य हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको हैरान कर देगा। सोमनाथ मंदिर की प्राचीन दीवारों और कारीगरी के भीतर एक अविश्वसनीय रहस्य छिपा है। मंदिर के दक्षिण दिशा में स्थित समुद्र की ओर मुख किए हुए ये एक ऐसा स्तंभ है जो भूगोल विज्ञान की सभी पश्चिमी खोजों पर भारी पड़ने का दावा करता है। कौन स्तंभ अपने अंदर एक अकल्पनीय राज छिपाए। इस स्तंभ के अस्तित्व का उल्लेख 6वीं शताब्दी के कुछ प्राचीन ग्रंथों में मिलता है।
0: आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग, ये लिखा है इस स्तंभ पर जो आप यहाँ पर सोमनाथ मंदिर में देख सकते हैं। ये एक पृथ्वी है और उस पृथ्वी के आर पार हो रहा है त्रिशूल, और त्रिशूल जिस ओर संकेत दे रहा है वो हिस्सा है जहां से केवल और केवल जल का मार्ग रहेगा, यानी केवल और केवल समुद्र। यहां से हजारों नॉटिकल माइल दूर जाकर दक्षिणी ध्रुव है, उससे पहले भूमि का कोई टुकड़ा नहीं। अब सोचिए कि जिस समय पर जो पश्चिमी देश है वो कहते हैं कि ना तो गणना की कोई का कोई तरीका था, ना वो डिस्टेंसेस को इतनी आसानी से माप सकते थे। बहुत आसान रहा उनके लिए ये कह देना कि भारतीय सभ्यता में किसी को कुछ मालूम नहीं, लेकिन आज भी हमारे मंदिरों में न जाने कितने ऐसे रहस्य हैं जिनके जवाब किसी के पास नहीं, हाँ उस दौर के विज्ञान के पास जरूर रहे।
5: आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग, यानी समुद्र के इस बिंदु से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक कोई भूभाग नहीं है। मैप पर देखें तो सोमनाथ मंदिर से दक्षिण की ओर यात्रा करने पर 10,000 किलोमीटर दूर स्थित दक्षिणी ध्रुव यानी अंटार्कटिका तक पहुंचने में वाकई कोई भूभाग नहीं मिलेगा। सवाल उठना लाजमी है, 6वीं शताब्दी में सोमनाथ मंदिर को बनाने वाले हमारे पूर्वजों को ये कैसे पता था? क्या 6वीं शताब्दी में ये स्तंभ स्थापित करने वाले लोगों को समुद्री रास्तों का ज्ञान था? क्या ये लोग खुद अंटार्कटिका तक गए थे? क्या ये भी इतिहास के पन्नों से मिटा हुआ एक स्वर्णिम अध्याय है?
6: ये प्रभास एक ही ऐसा स्थान है, यहाँ से दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित जल मार्ग है।
7: जो यहाँ से एक पिलर दिखाई दे रहा है
0: जी,
7: वो दक्षिण ध्रुव तक पानी ही पानी है, कोई जमीन नहीं है,
0: मतलब सीधे अंटार्कटिका।
7: उसका प्रमाण
0: जी
7: 6वीं सदी में हुआ है। 6वीं सदी में तो टेक्नोलॉजी तो कुछ थी नहीं
0: जी,
7: फिर ऋषि मुनियों ने कैसे किया होगा, ये सनातन का एक बहुत बड़ा प्रमाण है।
5: इस स्तंभ की सटीक स्थिति प्राचीन भारतीय खगोलविदों के गहन ज्ञान को दर्शाती है। ये बताता है कि भारतीय संस्कृति में आस्था और विज्ञान किस अद्भुत तरह से जुड़े हुए थे।
0: शिव जी की जटाओं में चंद्रमा सुसज्जित है, लेकिन वहां पर चंद्रमा को स्थान कैसे मिला उसकी कथा जुड़ती है सोमनाथ से।

सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? सोमनाथ मंदिर का निर्माण कब हुआ? सोमनाथ मंदिर सदियों पुराना है या युगों पुराना? सोमनाथ मंदिर के निर्माण का उल्लेख स्कंद पुराण और पृथ्वी के सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में मिलता है और तब खुलता है आस्था, विश्वास और भक्ति का वो अध्याय जो सोमनाथ मंदिर

0: सोमनाथ मंदिर का पहला रहस्य इसके नाम में ही छिपा है। सोम का अर्थ होता है चंद्र, नाथ का अर्थ होता है स्वामी, यानी जो चंद्र का स्वामी वो सोमनाथ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सोमनाथ मंदिर का निर्माण सतयुग में हुआ था, जब देवताओं और दानवों के बीच युद्ध हुआ करते थे। उस समय राजा दक्ष की 27 बेटियों से चंद्रदेव यानी चंद्रमा ने शादी की थी।
1: दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी। अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, 27 नक्षत्र जो ज्योतिष में नक्षत्र आते हैं, ये 27 कन्या का ब्याह रचाया था चंद्रमा से। लेकिन चंद्रमा एक ही कन्या को प्रेम करते थे, वो थी रोहिणी। बाकी की 26 कन्याओं को हमेशा अन्याय होता था। 26 कन्याओं ने बार बार मिलकर चंद्रमा से शिकायत किया कि आपने हमारा ब्याह तो रचा दिया, वैवाहिक सुख तो चंद्रमा हमें नहीं देते हैं। तब जाके दक्ष प्रजापति ने उसे श्राप दिया।
0: माना जाता है कि श्राप से बचने के लिए चंद्रदेव ने सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की और ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को रास्ता दिखाया।
1: चंद्रमा को कुष्ठ रोग हो गया, लेप्रोसी, क्षीण हो गए और व्याकुल होके वो ब्रह्मलोक में गया ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को बताया कि मेरे ससुर ने मुझे श्राप दे दिया है, इसमें से निकलने के लिए मुझे कोई मार्ग बताइए।
0: चंद्रदेव ने प्रभास पाटन में एक शिवलिंग स्थापित किया और भगवान शिव की घोर तपस्या की और तब भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया।
1: भगवान शिव ने बताया मैं संपूर्ण मुक्त नहीं कर सकता हूँ, प्रतिपदा से पूर्णिमा तक आप पूर्ण हो जाओगे और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक क्षीण हो जाओगे, ये क्रम तब से चला आ रहा है।
0: माना जाता है कि उसके बाद चंद्रदेव ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वो इसी स्थान पर बस जाएं और भगवान शिव ने हमेशा के लिए अपना स्थान शिवलिंग में बना लिया और इस शिवलिंग का नाम सोम के नाथ यानी सोमनाथ पड़ा,
2: क्योंकि सोम माने चंद्र और नाथ मतलब उनके अधिपति। तो चंद्रदेव और भगवान शिव जी, उन दोनों का नाम के संयोजन से जो नाम पड़ा है वो सोमनाथ नाम हुआ।
0: सोमनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव कल्याणकारी रूप में उपस्थित है।

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
2: In association with
3: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
5: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices, from your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
7: ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
8: इसमें माइक्रोफाइबर है.
7: माइक्रोफाइबर यानी
8: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत.
7: हमारे सीमेंट में नहीं है.
8: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है.
9: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़. ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है.
10: मुख्य समाचार. मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है. खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए.
11: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें.
12: सी जोसेफ विजय यनुमनान. தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும்
13: ये क्षण ऐतिहासिक है. ये मौका बड़े बदलाव का है. इस शपथ के साथ तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा परिवर्तन हो गया है. सिनेमा का थलापति विजय अब तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बन गया है.
12: ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
13: ये तस्वीरें अद्भुत है. चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में विजय के नाम के नारे और जयकारे गूंज रहे थे. तख्ती और तस्वीर लेकर कई समर्थक पहुंचे थे. विजय की झलक पाते ही समर्थकों का जोश कई गुना बढ़ गया. हर ओर विजय के नाम का शोर छा गया. विजय मंच पर आए, लोगों का आभार जताने के लिए भाषण देने लगे तो राज्यपाल ने उन्हें रोक दिया. ये जनता से मिले अपार प्रेम की भावनाएं थी जो विजय के चेहरे पर साफ झलक रही थी. विजय के साथ 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली. उनकी नई टीम में उनकी विजन की साफ झलक है. विजय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कई दिग्गज पहुंचे थे. कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी विजय के शपथ ग्रहण में शामिल हुए.
14: जोसेफ विजय.
13: विजय की 2 साल पुरानी पार्टी टीवीके ने अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में 234 में 108 सीटें जीती, तमाम पार्टियों के साथ मिलकर बहुमत का आंकड़ा छुआ और अब इस शपथ के साथ तमिलनाडु की सियासत में विजय सरकार का आगाज हो गया है। संयोग देखिए कि विजय ने अपनी आखिरी फिल्म जननायकन की है और अब वो तमिलनाडु के जननायक बन चुके हैं। आज तक ब्यूरो।
14: விஜயனும் நான்

वो विजय जो अब तक रियल लाइफ के हीरो थे अब रियल लाइफ के हीरो बन गए हैं। तमिलनाडु में पिछले 59 साल 1 महीने और 28 दिनों तक सिर्फ दो ही पार्टियों का राज था। तमिलनाडु में पिछले 21,608 दिन से सिर्फ दो ही पार्टियां शासन करती थी, डीएमके और एडीएमके। बीच बीच में तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन भी रहा, लेकिन इन दोनों पार्टियों के अलावा किसी तीसरे पार्टी की एंट्री नहीं हो पाई। लेकिन अब इन दोनों पार्टियों के राज को 59 साल के बाद थलपति विजय की टीवीके ने ध्वस्त किया है। विजय ने वो करके दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। किसने सोचा था कि सिर्फ 2 साल में ऐसा कमाल दिखाएंगे कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन जाएंगे।

0: अदेना वंदा
1: विजय मौजूदा वक्त में तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। विजय के पास पैसा, स्टारडम, फैन फॉलोइंग सब कुछ था। वो चाहते तो आराम से सुपरस्टार बने रह सकते थे, लेकिन उन्होंने राजनीति का रास्ता चुना। 2016 में जयललिता की मौत के बाद से तमिलनाडु की राजनीति में एक शून्य था, एक खालीपन था। डीएमके के सामने तो जैसे कि खुला हुआ रास्ता था, दूर दूर तक कोई भी टक्कर में नहीं था। इसीलिए 2021 में स्टालिन मुख्यमंत्री बने तो सबको लगा कि अब स्टालिन को कौन टक्कर देगा। इसीलिए ज्यादातर एग्जिट पोल में उनकी जीत बताई जा रही थी, लेकिन वो विजय ही थे जिन्होंने जयललिता की मौत से खाली हुई तमिलनाडु की राजनीति के शून्य को भरा। उनकी रैलियों की भीड़ बता रही थी कि तमिलनाडु में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन शायद किसी को ये अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ भीड़ नहीं है, उनके वोटर्स भी हैं। और विजय के इन फैंस ने ये साबित कर दिया कि वो रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए नहीं जमा हुए थे, वो तमिलनाडु को बदलने के लिए आए थे। तमिलनाडु में थलपति विजय ने तो इतिहास रचा है, लेकिन उनको ये कामयाबी इसलिए मिली क्योंकि तमिलनाडु के लोगों को उनके अंदर एक ऐसा नायक नजर आया जो उनके राज्य को आगे ले जा सकता है। विजय की इस जीत के पीछे उनके वो फैंस थे जो उन्हें किसी भी हद तक फॉलो करते हैं। विजय ने अपने फैन क्लब को वेलफेयर नेटवर्क में बदला, लोगों की मदद, युवाओं के कनेक्शन और जमीनी पकड़ मजबूत की और टीवीके के अपने वोटर तैयार किए। तमिलनाडु में विजय के 85,000 से ज्यादा फैन क्लब का नेटवर्क है जिन्होंने उनकी जीत में अहम भूमिका निभाई। उनका ये नेटवर्क पिछले 10 वर्षों से उनकी शैडो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में ही काम कर रहे थे। विजय के ये फैन क्लब पूरे तमिलनाडु में सामाजिक काम कर रहे थे, लोगों को विजय से जोड़ रहे थे। विजय आर्मी पिछले कई वर्षों से तमिलनाडु की गलियों में दिख रही थी। विजय की जीत की सबसे बड़ी वजह है उनकी लोकप्रियता। विजय भले ही 51 साल के, लेकिन उन्हें युवाओं का या जेन ज़ी का नेता कहा जाता है। तमिलनाडु में 40 से कम उम्र के युवाओं की संख्या 2 करोड़ है, जो तमिलनाडु के करीब 41.5% वोटर होते हैं। विजय का यही युवा कैडर सोशल मीडिया पर भी एक्टिव था, जिन्होंने तमिलनाडु में विजय के पक्ष में हवा बनाई। विजय ने किसी बड़े गठबंधन का सहारा नहीं लिया, न डीएमके, न एआईएडीएमके, न बीजेपी, सीधे जनता के बीच गए। आज तक पेरो
2: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए, आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया है। और उसका बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ासाको से हुआ है, गोभी गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण कर।

0: तेल संकट से बचने के लिए पीएम मोदी की देशवासियों से अपील, कहा विदेशी मुद्रा बचाना भी देशभक्ति। एक साल तक ना खरीदें सोना, पेट्रोल डीजल का कम करें इस्तेमाल, फॉरेन टूर से भी बचें। यूपी में 2027 का चुनावी समीकरण साधने के लिए योगी कैबिनेट का विस्तार, भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे समेत 6 नए चेहरे, 2 राज्य मंत्री अजीत पाल, सुमेंद्र तोमर को मिला स्वतंत्र प्रभार। तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनते ही एक्शन में विजय, 200 यूनिट बिजली फ्री, महिला सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स का ऐलान, कहा डीएमके ने छोड़ा 10 लाख करोड़ का खर्च। असम में 12 मई को हेमंत फिर लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, उससे पहले कहा 2021 से 26 तक ट्रेलर था, 2031 तक दिखाऊंगा पूरी फिल्म। भीषण गर्मी और बाढ़ से निपटने के लिए दिल्ली में अमित शाह की उच्च स्तरीय बैठक, अलर्ट सिस्टम को मजबूत करने पर जोर, मेडिकल तैयारियों की भी समीक्षा।
1: आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम कहानियां विद शम्स। 18 साल की एक लड़की का कत्ल होता है और एक भरा पूरा थाना जिसके अंदर 28 पुलिस वाले काम करते हैं, पूरा का पूरा थाना सस्पेंड, यानी 28 के 28 पुलिस वाले। और ठीक उसी वक्त या उससे पहले झारखंड हाईकोर्ट में उसी राज्य झारखंड की डीजीपी, आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी, एसआईटी की पूरी टीम कोर्ट के अंदर परेड में, क्योंकि जज साहब ने बुलाया, काम ही इन लोगों ने ऐसा किया था। 9 महीने से एक लड़की गायब थी, 9 महीने तक कुछ नहीं किया, और जब कोर्ट ने कहा कि इस केस को सुलझाओ, 48 घंटे में सुलझा दिया। इस कहानी का हर पहलू सुनने के बाद आप सिर्फ चौंकते जाएंगे कि पुलिस कैसे काम करती है। ये इसी बोकारो शहर जिसकी आबादी करीब 25 लाख है, स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है, इस बोकारो शहर में कुल 30 थाने हैं और उनमें से एक थाना है जिसका नाम है पिंडराजोरा। यही वो पिंडराजोरा थाना है जिसे आप देख रहे हैं, जिसके 28 पुलिस वाले एक साथ सस्पेंड हो गए। कुछ फ्रेम में आपको कुछ पुलिस वाले अब बैठे हुए दिखाई देंगे जिनकी अब यहाँ पे बहाली की जा रही है, अभी 28 के 28 रिप्लेस नहीं हो पाए, थाना अभी थोड़ा सूना सूना है। इस थाने के अंदर है, जानते क्या क्या हुआ जिसकी वजह से इस पूरे थाने को सस्पेंड करना पड़ा? 21 जुलाई 2025 यही वो तारीख थी जब 18 साल की पुष्पा कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म भरने गई थी और गायब हो गई। 21 की रात को ही पुष्पा की मां रेखा महतो इसी पिंडराजोरा थाने में आती है कि मेरी बेटी अभी तक घर नहीं पहुंची, उसे ढूंढ दीजिए। पुलिस वाले कहते हैं जाओ हम ढूंढेंगे, रिपोर्ट तक नहीं लिखते। 22-23 को भी मां आती है और फिर कहती है कि देखिए जिस दिन मेरी बेटी गायब हुई एक पड़ोसी भी था दिनेश महतो, वो भी गायब है, मुझे लगता है उसी ने गायब किया, आप उसे पकड़ो पूछो बता देगा। पुलिस वाले फिर आश्वासन देकर भगा देते हैं। 24 तारीख को पुलिस वालों को थोड़ा सा रहम आता है, कहते हैं एक रिपोर्ट लिख दो। मां रिपोर्ट लिखाती है अपनी बेटी की किडनैपिंग की, इसके बाद पुलिस खामोश। फिर 11 दिन बीत जाते हैं, दबाव पड़ता है तो पुलिस वाले कहते हैं चलो एफआईआर लिख लेते हैं, पुष्पा की किडनैपिंग की एफआईआर लिखी। अब उसी दिनेश महतो को बुलाया गया और पुलिस ने पूछताछ की और बोला तुम जाओ घर जाओ, तुमने कुछ नहीं किया। मां बाप कह रहे हैं लेकिन कुछ नहीं किया। अब दिनेश महतो ने क्या किया, इन पुलिस वालों की कमजोर कड़ी को जानता था। जब पुलिस वालों ने उसे पकड़ा, पूछताछ किया, तो बोला मैंने कुछ नहीं किया है, आप मुझे तंग मत करो, ये बताओ मैं आपके लिए क्या करूं। इसके बाद पुलिस वालों ने पैसे मांगे, दिनेश ने पैसे दिए, उन्होंने कहा शराब पिलाओ। कई दिन तक दिनेश इसी पुलिस थाने में जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं पिंडराजोरा थाना, शराब लेकर जाता कई कई बोतल। 28 पुलिस वाले थे, कम से कम अलग अलग शिफ्ट में भी करें तो एक वक्त में 12-15 तो होते ही, और उनके साथ उसी थाने में बैठकर शराब पीता। सोचिए एक आरोपी कातिल जिसे पता है उसने कत्ल कर दिया है और जिसे पता है उस कत्ल के लिए उसके साथ पूछताछ की जा रही है, और उसी कत्ल का आरोपी उसी थाने में बैठकर उन्हीं पुलिस वालों के साथ शराब पी रहा, पार्टी कर रहा, उनको पैसे दे रहा। हमारे एक रिपोर्टर ने बताया कि वहां के कुछ लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड उसने बात की, हमारे जो बोकारो में है इस वक्त संजय कुमार एक मुंशी ने बताया कि जब माँ और बाप लगातार आ रहे थे कि पुष्पा कहाँ गुम है, कहाँ गायब है, तो पूछा कि अच्छा ये बता तूने कुछ किया है, क्योंकि पैसे भी दे रहा है, शराब भी पिला रहा है। तब कहते हैं एक दिन शराब के नशे में उसने कह दिया था कि मैंने पुष्पा को मार दिया। तो उसने कहा कैसे मारा? उसने कहा चाकू से। उसने कहा कहाँ है लाश? उसे बताया कि मैंने एक जगह पर फेंक दिया। उस पुलिस वाले का फर्ज था कि उसको उसी वक्त पकड़ते और क्राइम सीन पर ले जाते, लाश को बरामद करके दिखाते। ऐसा नहीं किया। उन्होंने पूछा अच्छा जिस चाकू से मारा वो कहाँ? उसने कहा मैंने वो भी फेंक दिया। उल्टे वो पुलिस वाला उसे सलाह देता है कि तू एक काम कर, जहां लाश दफनाई है वहां जाकर देख कर आ, क्राइम सीन खुल तो नहीं गया, लाश वहीं है नहीं है। तो कहता मैंने दफनाया थोड़ी है, मैंने तो झाड़ियों के पीछे फेंक दिया। तो कहता तू पागल है, झाड़ी के पीछे फेंक दिया? इस बात को 8-10 दिन बीत चुके थे। तो कहता देख कर आ, कहीं स्मेल आ रही है, क्या आ रही है, आसपास के गांव के लोग गुजरते हैं, पकड़ में आ जाएगा। और चाकू जहां फेंका है उसको भी उस लाश से कहीं दूर लाके ले जाकर फेंक दे। 8-10 दिन के बाद यही आरोपी कातिल यानी दिनेश महतो उसी क्राइम सीन पर दोबारा जाता है जहां उसने पुष्पा को मारकर फेंका था। वहां देखता है कि लाश से बदबू नहीं आ रही है। ये बात है 21 जुलाई की। उस वक्त मानसून कम सीजन था, बारिश भी हो रही थी बीच बीच में। तो बारिश में अमूमन ऐसी बदबू तेज आती है, लेकिन नहीं आई। उसके बाद उसने चाकू वहां से उठाया और दूसरी जगह डम कर दिया। पुलिस वाले उसे आइडिया दे रहे थे और वो चला आया। अब ये सोचिए कि एक झाड़ी के पीछे लाश पड़ी है और 9 महीने तक उस थाने को खबर भी नहीं। अब यहां दूसरा सवाल यह भी आता कि अगर यह आम रास्ता था, 20 गांव को जोड़ने वाला रास्ता था और इस गांव से लोग गुजरते थे, तब उनकी नजर लाश पर क्यों नहीं पड़ी? तो हमारे रिपोर्टर संजय कुमार ने गांव में जाकर यह भी पता करने की कोशिश की। एक और कहानी सामने आई। पता चला कुछ साल पहले इसी जगह पर जहां से पुष्पा की लाश मिली है, एक और लाश पड़ी हुई थी सबसे किनारे वाले गांव के पास। गांव वालों में से किसी की नजर पड़ी एक लाश, उन्होंने जाकर पुलिस को खबर कर दी, इसी पिंडराजोरा पुलिस स्टेशन को। ये 2010 में ये पुलिस स्टेशन बना था। पुलिस वाले आए, देखा उन्होंने लाश, उन्होंने पूछा किसने लाश देखी? गांव वालों ने बताया इसने देखी। अब वो बेचारा पुलिस की मदद कर रहा, लाश की खबर दे रहा, उल्टे पुलिस वालों ने उसको ही सस्पेक्ट मान लिया और फिर जो गांव वालों को तंग किया एक एक कर कि तुम बताओ कातिल कौन, पता करना पुलिस का काम है, लेकिन उन्होंने गांव वालों पर चढ़ाई कर दी। बताओ तो गांव वाले इतने डर गए उस वक्त की पुलिस की ज्यादती से कि फिर दोबारा उन्होंने तौबा कर लिया कि अगर कभी कोई लाश दिखेगी भी तो हम आंखें बंद कर लेंगे, पुलिस को नहीं बताएंगे। कुछ लोगों ने लाश देखी थी लेकिन उन्होंने पुलिस को नहीं बताया, क्योंकि पिछला वाकया उन्हें याद था कि जैसे ही बताएंगे पुलिस इस केस में उनको ही उल्टा लपेट देगी। खैर ये चलता रहा। उधर माँ बाप परेशान रहे, दिनेश महतो उधर पुलिस स्टेशन में बैठकर पार्टी करता रहा, जिसको कि जेल में होना चाहिए। फिर कहते हैं कि जिस पुलिस वाले को उसने बताया था कि मैंने उसको मार के फेंक दिया है, तो उसने कहा कि फिर तो हम तुझे पकड़ेंगे, तुझे छोड़े क्यों? तो उसने कहा हम पैसे देंगे। कहते हैं कि उसने 10 लाख रुपए का इंतजाम किया और इस थाने के पुलिस वालों को दिया। एक पुलिस वालों को तो उसने कहा कि मैं तुझे हर महीने, जिसको ये बताया था स्पेशल एक पुलिस अफसर, उसने कहा मैं तुझे हर महीने 35,000 रुपए दूंगा। पैसों के आगे पूरा थाना बिक गया। पार्टी चलती रही, पैसे लेते रहे, पुष्पा का पता नहीं, माँ बाप परेशान। और धीरे धीरे हफ्ता महीना गुजरता गया। मार्च के महीने में इस दौरान में माँ बाप इस थाने के चक्कर काट रहे थे, फिर जो एसपी हरविंदर सिंह हैं उनके पास दफ्तर गए, पर सभी ने सिर्फ ये कि जांच कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, इसी का झुंझुना पकड़ाया और लौटाते रहे। फिर वो गांव के मुखिया के पास गए, फिर वो विधायक के पास गए, सभी ने मुंह मोड़ लिया। आखिरकार मार्च में किसी शरीफ इंसान ने सलाह दी कि आप चले जाओ वहां की जो परिषद की, ग्राम परिषद की उपाध्यक्ष हैं बबीता देवी, उनसे जाकर मिलो। बबीता देवी से मिली, तब बबीता देवी उनको लेकर एसपी के दफ्तर गई, लेकिन एसपी साहब ने उनको भी झुंझुना थमा दिया आश्वासन का। उन्हें लग गया कि पुलिस वाले नहीं ढूंढेंगे। तब वो बबीता देवी ही थी जिसने कहा कि अब कोर्ट से इंसाफ मांगते हैं, कोर्ट ढूंढ कर लाएगी पुष्पा को। और तब वो मार्च के महीने में झारखंड हाईकोर्ट का रुख करते हैं, कोर्ट आदेश देता है 9 अप्रैल को पुरानी एसआईटी टीम खत्म, नई एसआईटी बनती है, 10 अप्रैल को टेक ओवर करती है और 11 अप्रैल को उसी दिनेश महतो को जाकर उठाती है एसआईटी की टीम और कहती है कि चलो। और उसके कुछ घंटे के ही पूछताछ में पुलिस ये कहती है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया अपना जुर्म, उसी ने मारा है। उसके बाद वो उसे लेकर एक जंगल जाते हैं। अब ये जो जंगल में इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये उस क्राइम सीन की है जहां पुलिस उस पुष्पा के कंकाल को ढूंढने के लिए आई है। अब जब पता चला तो बोकारो छोटा सा शहर, सारे मीडिया वालों को पता चला। अमूमन ऐसे क्राइम सीन पर पुलिस वाले भी मीडिया को अलाउ करते हैं कैमरे को कि देखो भाई हम लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। इवन आपको याद होगा ये श्रद्धा और वाले मामले में, यहाँ पे जब मेहरौली के जंगलों में तलाश हो रही थी, दिल्ली पुलिस जैसी फोर्स, मीडिया के कैमरे वैमरे सब थे। लेकिन यहाँ बोकारो पुलिस ये कहती है कि सारे मीडिया को दूर और क्राइम सीन को एकदम घेरे में लेकर, और कहती है कोई कैमरा अलाउड नहीं है, एक काम कीजिए हम आप लोगों को अपने जो कैमरे से शूट करेंगे, हम तो ड्रोन से भी कर रहे हैं, बेहतरीन पिक्चर आपको देंगे ड्रोन की और बेहतरीन वो आपको मिल जाएगा, आपको यहाँ शूट करने नहीं देंगे। मतलब इतनी प्राइवेसी रखी गई। उसके बाद शाम को सच में पुलिस ने अपना वादा किया, बेहतरीन ड्रोन के शॉट हैं ये जो आप देख रहे हैं, उसी जगह जहां से पुलिस का कहना कंकाल मिल गए, और वो दिया भी। अब सवाल ये है कि फिर मीडिया को अलाउ की नहीं कि आप अपना काम करते, एक दूरी पर बनाकर मीडिया अपना काम कर रही होती तो फिर ये पर्दादारी या फिर कुछ छुपाने की मंशा क्या थी, अभी तक तो पता नहीं, आगे बताऊंगा। तो ये चलता रहा। उसके बाद खैर कोर्ट की फटकार के बाद ये तो मिल गया। अब जब मिला तब पुलिस के ऊपर सवाल उठे और कहा गया वहां के लोकल मीडिया के जरिए कि ये जो पिंडराजोरा थाना है, आपने इसके सिर्फ सीसीटीवी फुटेज को उठाकर देख लीजिए, पिछले कुछ महीनों के सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। अब पुलिस ने उस थाने के सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। रिकॉर्डिंग में एक आरोपी कातिल उसी थाने के पुलिस वालों के साथ बैठकर शराब पीते हुए दिख रहा था, शराब लाते हुए दिख रहा था, जिसे कायदे से जेल में होना चाहिए था, पुलिस वालों के साथ बैठकर शराब पी रहा। जब ये चीजें हुई तो फिर एसपी साहब ने एक प्रेस रिलीज जारी की और उस प्रेस रिलीज में कहा कि ये पूरा थाना सस्पेंड, जिसमें 28 पुलिस वाले हैं, 10 सब इंस्पेक्टर, 5 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 2 हवलदार और 11 सिपाही, और ये प्रेस रिलीज उसी वक्त की। और इसी प्रेस रिलीज में ये देखिएगा ध्यान से लिखा हुआ, मतलब ये मेरी तरफ से एलिगेशन नहीं है कि ये पैसे लेते थे, ये पार्टी करते थे। हाँ, शराब वाली लाइन हटा दी लेकिन पार्टी वाली बात है। अब पुलिस स्टेशन क्या पार्टी करने के लिए जगह है? लेकिन खैर उन्होंने किया। अब कमाल देखिए कि ये 28 पुलिस वालों को तो हटा दिया, लेकिन क्या ये सिर्फ यही जिम्मेदार थे? ये तो सब जूनियर रैंक के हैं, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हवलदार और सिपाही। डीएसपी एसआईटी टीम की अगुवाई कर रहे थे, डीएसपी का कुछ नहीं हुआ। खुद एसपी जो बोकारो शहर के सबसे बड़े पुलिस अफसर हैं, 9 महीने तक कुछ नहीं हुआ, इनके थाने में पार्टी चल रही है, इनको कोई खबर ही नहीं, इस केस की खबर नहीं। एक लड़की गुम है, किडनैपिंग का केस है, लड़की के माँ बाप नाम बता रहे हैं, पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे। अगर एक एसपी को ये पता नहीं तो फिर एसपी की कुर्सी पर रहने का भी हक नहीं है। इसके अलावा उस जोन के डीआईजी, फिर आईजी, मतलब किसी को कुछ पता नहीं है। तो सवाल है कि सिर्फ 28 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया जो बड़े अफसर हैं, इनका क्या? तो फिर एक और खेल हुआ। अभी 17 अप्रैल को झारखंड सरकार की तरफ से एक रिलीज जारी की गई है, ये वही है, इसमें बहुत सारे सीनियर अफसरों के तबादले और पोस्टिंग अलग अलग किए गए। अब टाइमिंग बड़ा मैटर करता है। इत्तेफाक से ये जो ट्रांसफर और पोस्टिंग के नए आदेश आए झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें यहाँ के एसपी, आईजी, डीआईजी, इन तीनों का भी नाम है। अब सरकार कहने को कह सकती है कि एक रूटीन ट्रांसफर पोस्टिंग है, लेकिन फिर टाइमिंग वही, 28 पुलिस वाले सस्पेंड, पूरा थाना सस्पेंड, और उसके 4-5 दिन के अंदर अंदर इस बोकारो शहर के टॉप जितने पुलिस अफसर हैं ये भी सस्पेंड। मतलब कहने को टर्म सस्पेंड नहीं है, ट्रांसफर है, सस्पेंड गलत शब्द है, ट्रांसफर क्योंकि आदेश है, लेकिन टाइमिंग को जोड़कर देखने वाले कह रहे हैं कि यह भी गाज इन लोगों पर इसी वजह से गिरी। तो एक केस ने कितने बड़े बड़े अफसरों को निपटा दिया, यह कहानी का एक पहलू है। अब दूसरा पहलू इससे और भी खतरनाक है। पुष्पा के मां के वकील ने इसी झारखंड हाईकोर्ट में एक अर्जी दी उन्होंने कहा कि हमें डाउट है कि जिस पुष्पा को 9 महीने तक ये पुलिस ढूंढ के नहीं लाई, हाईकोर्ट की एक फटकार के बाद 48 घंटे में अचानक कंकाल ले आई। हमें डाउट है कि यह कंकाल पुष्पा का है। उसकी वजह यह है, उनका कहना था कि यह पुष्प जो कंकाल है यह 3-4 साल पुराना दिख रहा है, जबकि पुष्पा की मौत 21 जुलाई की हो गई थी 2025, जो पुलिस का कहना है, यानी 9 महीने पहले। तो ये 9 महीने पुराना कंकाल नहीं लग रहा है। तब उन्होंने अपील की, कोर्ट ने इसे माना, और तभी कोर्ट ने, तो वैसे भी है कि डीएनए कराना है कि पुष्पा का है कि नहीं। अब कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें झारखंड पुलिस पर इतना भरोसा नहीं है, तो झारखंड में डीएनए टेस्ट नहीं होगा। डीएनए टेस्ट होगा आप झारखंड के जो सीएफएसएल होता ना स्टेट का अपना, उन्होंने कहा एफएसएल जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है सेंट्रल सीएफएसएल सॉरी, तो वहाँ होगा, ये सीधे सीधे केंद्र सरकार के अंडर में। तो अब सीएफएसएल झारखंड के अंदर नहीं है, कोलकाता में है। तो हाईकोर्ट ने कहा कोलकाता में कराइए, माँ बाप के सैंपल लिए गए और अब कोलकाता में भेज दिया गया, वो भी 4 दिन तक कंकाल रखने के बाद। कोर्ट ने ही फटकार लगाई, तब डीएनए सैंपल भेजा गया कोलकाता। तो वकील का ये कहना है कि ये कंकाल पुराना है और डीएनए से पता चलेगा। जो वकील हैं इनके मिस्टर विंसेंट मार्की, उन्होंने क्या कुछ कहा पहले आप ये सुनिए।
2: जो कंकाल बरामद हुआ है वो सेक्रेटरी पुष्पा कुमारी का नहीं है। इसके पीछे हम रीजन भी देते हैं कि कंकाल का जो इमेजेस आई है मीडिया में या फिर बाहर जो आई, हमने कोर्ट में उसको पेश भी किया, उस कंकाल को देखकर लगता है कि वो जो कंकाल है वो करीबन 300-400 पुराना है और इसकी मृत्यु जैसे ये लोग क्लेम कर रहे हैं 21 जुलाई को ही हो गई है। तो 7-8 महीने में कंकाल इतना पुराना नहीं दिख सकता। और दूसरा ये बात है, कंकाल जिस एरिया में बरामद हुआ है बहुत छोटी सी एक रास्ता था, तो वहाँ पर लोगों का आना जाना हमेशा लगा है। और ये बात बहुत ही मतलब कहने लायक होगी कि अगर वहाँ पर कोई शव पड़ा हुआ है किसी को भनक तक नहीं, तो हमने ये बोल के स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन रेस किया था कोर्ट में। कोर्ट ने इस बात को माना भी और फिर आज स्टेट से पूछा कोर्ट ने कि आप किस बेसिस पे कह रहे हैं कि ये कंकाल पुष्पा कुमारी का है।
1: तो अब ये एक नया मोड़ आ गया, नया ट्विस्ट इस केस में। अब 1% को मान लीजिए कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद जब जांच हुई, एक पूरा का पूरा थाना सस्पेंड हो गया। अब गलती से अगर ये कंकाल का डीएनए मैच नहीं करता है पुष्पा के माँ बाप से, तो क्या होगा? फिर तो ये होगा कि कोर्ट के डर से बोकारो पुलिस ने अचानक जो 9 महीने में काम नहीं कर पाई, 48 घंटे के अंदर एक कंकाल उठाया और कहा जी देखिए हमने सॉल्व कर दिया, अब आप गुस्सा मत होइए माय बाप। लेकिन डीएनए तो राज खोल देगा। अब सवाल ये है कि क्या बोकारो पुलिस इतना बड़ा रिस्क लेगी, ऐसी बेवकूफ़ी करेगी? मुझे नहीं लगता। लेकिन 1% को अगर कंकाल का डीएनए मैच नहीं किया तो क्या होगा? अभी तो पुलिस वाले सस्पेंड हुए, वो भी जूनियर, तो फिर इस पे झारखंड हाईकोर्ट का रुख क्या होगा? फिर तो मुझे लगता है कई पुलिस वालों को जेल जाना पड़ेगा झूठा केस खोलने के लिए। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करेगा इस डीएनए की रिपोर्ट के आने के बाद। और इस डीएनए की रिपोर्ट के साथ कोर्ट ने 2 हफ्ते के बाद सभी पुलिस ऑफिशियल को आने को कहा है, एसआईटी की टीम को आने को कहा, और फिर से झारखंड की जो डीजीपी है उनको भी पेश रहने के लिए कहा है। तो 2 हफ्ते के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि ये कंकाल जो है ये किसका है। अब जहां तक ये है कि बोकारो पुलिस के हिसाब से दिनेश महतो ही कातिल और उसी ने मारा, तो फिर रीजन क्या था? तो जो कहानी सुनाई बाकायदा इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हरविंदर सिंह जो एसपी है, अब नहीं है क्योंकि उनका ट्रांसफर हो गया, तो हम उन्हें एक्स एसपी ऑफ बोकारो कह सकते हैं, पूर्व एसपी। तो उनका कहना था कि 21 जुलाई को पुष्पा अपने घर से कॉलेज गई थी, 10 किलोमीटर दूर घर से, फॉर्म भरने के लिए, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, और फिर वो लौटी नहीं। पुलिस का कहना था कि पुष्पा की शादी उनके घर वालों ने तय कर दी थी और इसी दौरान में अब जो दिनेश महतो है उसने ये कहा कि पुष्पा मुझ पर शादी करने के लिए दबाव डाल रही थी और मैं उससे दूर भाग रहा था। अब यहां पे सवाल यह कि अगर पुष्पा की शादी तय हो चुकी थी तो फिर दिनेश पर वो दबाव डाल रही थी कि मुझसे शादी करे, या दिनेश उस पर दबाव डाल रहा था कि तुम वो शादी तोड़कर मुझसे शादी करो? इसका जवाब फिलहाल पुलिस के पास नहीं है। पुलिस का कहना है कि हम इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। तो खैर मामला ये था कि दबाव डाल रहे थे। इसके बाद जो बकौल दिनेश ने पुलिस को बताया। जब वो फॉर्म लेने गई तो इसी दबाव की वजह से दिनेश परेशान था, वो कॉलेज तक पहुंच गया उसके पीछे पीछे। फिर उसने उसे बहाने से कहा तुमसे कुछ बात करनी है चलो, और उसी कॉलेज से सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर दूर जो झाड़ी है जिसके बीच से 20 गांव के रास्ते भी गुजरते हैं, नेशनल हाईवे से 200 मीटर के नीचे उतरकर वो वहां पर ले गया। वहां से उसने उसे चाकू से मारा, मारने के बाद उसने उसकी लाश को झाड़ी के पीछे फेंक दिया और वापस चला गया। तो मोटिव ये बकौल पुलिस कि पुष्पा शादी करना चाहती थी और दबाव

0: जिसमें एक कत्ल ने एक पूरे थाने को सस्पेंड करा दिया, एसपी, आईजी, डीआईजी, ये सब चाहे रूटीन हो लेकिन ट्रांसफर के भी लपेटे में आ गए। और अभी भी कहानी का क्लाइमेक्स इसलिए बाकी है कि जब तक कंकाल साबित नहीं हो जाए पुष्पा का है, इस केस में कुछ भी हो सकता है।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
2: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs, so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
1: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: तेल संकट से बचने के लिए पीएम मोदी की देशवासियों से अपील, कहा विदेशी मुद्रा बचाना भी देशभक्ति। एक साल तक ना खरीदें सोना, पेट्रोल डीजल का कम करें इस्तेमाल, फॉरेन टूर से भी बचें। यूपी में 2027 का चुनावी समीकरण साधने के लिए योगी कैबिनेट का विस्तार, भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे समेत 6 नए चेहरे, 2 राज्य मंत्री अजीत पाल, सुमेंद्र तोमर को मिला स्वतंत्र प्रभार। तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनते ही एक्शन में विजय, 200 यूनिट बिजली फ्री, महिला सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स का ऐलान, कहा डीएमके ने छोड़ा 10 लाख करोड़ का खर्च। असम में 12 मई को हेमंता फिर लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, उससे पहले कहा 2021 से 26 तक ट्रेलर था, 2031 तक दिखाऊंगा पूरी फिल्म। भीषण गर्मी और बाढ़ से निपटने के लिए दिल्ली में अमित शाह की उच्च स्तरीय बैठक, अलर्ट सिस्टम को मजबूत करने पर जोर, मेडिकल तैयारियों की भी समीक्षा। वैश्विक संकट के बीच में हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से एक साल तक सोने की खरीद न करने की अपील की है। पीएम ने कहा कि वैश्विक संकट है, इस बीच में विदेशी मुद्रा भंडार बचाने पर जोर देना होगा। पीएम ने यह भी कहा कि हमें तेल बचाने पर भी जोर देना होगा।
1: साथियों, आज भारत तेजी से विकसित होने के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस समय भारत कई विराट चुनौतियों का मुकाबला भी कर रहा है। साथियों, कोरोना काल के दौरान ही दुनिया सप्लाई चेन के बहुत बड़े संकट से गिर गई थी। कोविड के बाद यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया, उसने दुनिया की परेशानियां और बढ़ा दी। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, इन तीनों चीजों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। बीते 5-6 वर्षों में इस संकट से निपटने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। आपको याद होगा उस समय और आज भी फर्टिलाइजर की एक एक बोरी दुनिया में 3-3 हजार रुपये में बिक रही थी। एक बोरी का 3 हजार रुपया कितना, आप बताएंगे एक बोरी का कितना? आंकड़ा नहीं बोलिए मुंह से, 3 हजार रुपया एक बोरी का कितना, एक बोरी का कितना, एक बोरी का कितना? और भारत के किसानों को वही खाद की बोरी 300 से भी कम रुपये में दी जा रही है। 3000 के सामने 300 रुपये में। सप्लाई चेन की इन मुश्किलों के बीच पिछले 2 महीने से हमारे पड़ोस में ही इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है और भारत पर तो और भी गंभीर असर हुआ है। साथियों, भारत के पास बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं है, हमें अपनी जरूरत का पेट्रोल, डीजल, गैस ये सब बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया के दूसरे देशों से, बाहर से मंगाना पड़ता है। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं, आसमान को भी पार कर गए हैं। अड़ोस पड़ोस में देशों में क्या हाल है वो तो अखबारों में आता है। भारत सरकार इस युद्ध के पिछले 2 महीनों से देशवासियों को इस संकट से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नागरिकों पर बोझ न पड़े इसके लिए सरकार सारा बोझ सरकार खुद अपने कंधे पर उठा रही है। लेकिन साथियों, जब सप्लाई चेन पर संकट लगातार बना रहे तो हम कितने भी उपाय कर लें, मुश्किलें बढ़ती ही जाती है। इसलिए अब देश को सर्वोपरि रखते हुए, मां भारती को सर्वोपरि रखते हुए हमें एकजुट होकर के लड़ना होगा। हमें याद रखना है, देश के लिए मरना ही सिर्फ देशभक्ति नहीं होती है, देश के लिए जीना और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना वो भी देशभक्ति होती है। इसलिए वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें, और भी लोगों को साथ बिठा ले। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजे, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं। जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है, हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। भारत में बहुत सारी जगह है, वहां हम जा सकते हैं, बहुत कुछ भारत में किया जा सकता है। इस बेटी को पीछे बिठाइए, उसे थक जाएगी, उस बेटी को बिठाइए। वो थैंक यू बेटा, थैंक यू, बैठिए आप नीचे बैठिए। मैंने देख लिया बेटा, उसको देख लिया, अब आप बैठ जाइए। हाँ, इस छोटी बच्ची को क्यों परेशान करते हो भाई, इन बच्चों को बैठने दीजिए प्लीज, बच्चों को परेशान मत कीजिए जी। साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है, और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। साथियों, ये समय एक और बड़े सबक का भी है। एक समय था जब हम कॉपर एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन आज भारत के सामने स्थिति ऐसी बन गई कि अब हमें कॉपर को भी इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारे देश में हड़तालें करवाकर कॉपर प्लांट्स को ठप करवा दिया गया, और अब हालत ये हो गई कि हमें कॉपर बाहर से मंगाना पड़ता है, और उसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती है। इसलिए मैं ऐसे सभी श्रमिक समूह मजदूर संगठनों से भी कहूंगा कि हमें ऐसी बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। भारत को आत्मनिर्भर बनने से जो भी कदम रोकते हैं, उनमें हमें दूरी बनानी होगी, और जो लोग ऐसी साजिशों में जुटे हैं, उन पर भी कड़ी नजर रखनी होगी। मैं देश की अदालतों से भी आग्रह करूंगा कि ऐसी स्थिति आने पर देश हित में हमें कोई ना कोई रास्ता निकालने की तरफ बढ़ना चाहिए। साथियों, ऐसे ही खाने के तेल का भी है, इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने के तेल में, खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो, अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं, और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी। इससे देश के खजाने का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। साथियों, विदेशी मुद्रा की खपत वाला एक और सेक्टर हमारी खेती है। हम बहुत बड़ी मात्रा में बाहर से केमिकल फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर खेती के कारण हमारी धरती मां को बहुत पीड़ा हो रही है, हमारे खेत बर्बाद हो रहे हैं। अगर आज हम अपने खेत को नहीं बचाएंगे तो भविष्य में फसलों पर भी खतरा आ जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की खपत 25%, 30%, 40%, 50% उसको घटाए, आधी कर दे, और हम उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़े। हम फर्टिलाइजर का उपयोग कम करके विदेशी मुद्रा भी बचा सकते हैं और साथ साथ अपने खेत को बचा सकते हैं, हमारी ये धरती मां को बचा सकते हैं। और यह हमें करना ही होगा। आज वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है, हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा। साथियों, भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप की योजना चला रही है। हम खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप का उपयोग करने का जोर देना होगा। मैं कोविड काल में भी आग्रह करता था कि हम स्थानीय चीजें खरीदें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं। और हमारे देश में स्थानीय उत्पादन की कोई कमी नहीं है, चाहे जूते हो, पर्स हो, बैग हो, हमें स्वदेशी पर बल देना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि जो आपके पास विदेशी चीजें खरीदी हुई है, विदेशी ब्रांड की है, उनको जाकर के फेंक दो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन मेरा आग्रह है कि नए विदेशी प्रोडक्ट हमें नहीं खरीदने चाहिए। और वाकई हमें कई बार अंदाजा तक नहीं होता कि रोजमर्रा की कितनी सारी चीजें विदेशी है जो हम ऐसे ही यूज कर रहे हैं। और साथियों, जब मैं बात स्वदेशी की करता हूं तो लोगों को लगता है कि दिवाली के दिए खरीदो मतलब स्वदेशी हो गया। ये तो भ्रम फैलाने वाली बातें हैं, इसे सफलता नहीं मिलती है। हमें घर के उपयोग में आने वाले सामान की लिस्ट बनानी है, देखना चाहिए कितनी विदेशी चीजें घुस गई है, पता ही नहीं है। कैंची हो, कंघी हो, छोटी छोटी चीजें, टूथपिन, टूथब्रश, कितना सारा सामान विदेश से हमारे घर में घुस गया है। फिर इस लिस्ट से हमें हो सके उतना जल्दी स्वदेशी में बदलना चाहिए। साथियों, ये बातें सिर्फ एक सरकार, एक दल, एक व्यक्ति की नहीं है, ये बीजेपी का भी मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है। और इसके लिए हर नागरिक, हर राजनीतिक दल, हर सरकार, हर समाज, हर संगठन को संकल्पबद्ध होगा। मैं मीडिया के साथियों से भी देश हित में आगे आने के लिए आग्रह करूंगा। आइए देशभक्ति का भाव जगाएं और देश को जो वैश्विक संकट चल रहे हैं, देश उस संकटों का लाभ ले, परिस्थिति पे सवार हो जाए, ऐसा वातावरण बनाने के लिए हमें योगदान देना होगा और तभी जाकर के देश सफल होगा। ऐसे संकल्प जब हर नागरिक पूरी ईमानदारी से सिद्ध करेगा तो भारत हर संकट में जरूर विजयी होगा।
0: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream nonstop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति ट्रूथ पेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 27 का शंखनाद कर दिया है। योगी सरकार का दूसरा कैबिनेट विस्तार हुआ। इस विस्तार में 2 मंत्रियों को प्रमोशन दिया गया जबकि 6 नए चेहरों को मंत्री बनाया गया।
2: मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ।
3: मैं मनोज कुमार पांडे
4: मैं अजय सिंह पाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ।
5: सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
6: मैं भारत की सुरक्षा और अखंडता रखूंगा।
7: ये सिर्फ कैबिनेट विस्तार नहीं, यूपी में 2027 की चुनावी पटकथा का पहला बड़ा अध्याय है। योगी कैबिनेट विस्तार में सबसे बड़ा फोकस रहा जाति और क्षेत्रीय संतुलन।
8: सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
7: लखनऊ में 6 नए मंत्रियों के साथ 2 मंत्रियों का प्रमोशन हुआ। इस तरह योगी सरकार में 8 मंत्रियों ने शपथ ली। यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट विस्तार में जगह दी गई है। पश्चिमी यूपी का अहम जाट चेहरा है भूपेंद्र चौधरी। रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे योगी सरकार में मंत्री बन गए हैं। यूपी में मनोज पांडे बड़े ब्राह्मण चेहरों में से एक है। 2024 में समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर मनोज पांडे योगी सरकार में शामिल हुए थे।
9: मैं कृष्णा पासवान ईश्वर।
7: यूपी की खागा सीट से कृष्णा पासवान मंत्री बने। चौथी बार की विधायक कृष्णा पासवान पासी समुदाय के नेता है। लोधी समुदाय से आने वाले कैलाश राजपूत को भी मंत्री बनाया गया है। कन्नौज के तिरवा से बीजेपी विधायक कैलाश राजपूत की ओबीसी में अच्छी पकड़ है।
10: सुरेंद्र दिलेर।
7: अलीगढ़ की खैर सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर को भी मंत्री बनाया गया है। एससी समुदाय के बड़े नेता हैं सुरेंद्र दिलेर। यूपी विधान परिषद के सदस्य हंसराज विश्वकर्मा भी मंत्री बन गए हैं। पिछड़े समाज के नेता के रूप में हंसराज विश्वकर्मा की धमक है।
11: मैं निश्चित रूप से जो अपेक्षाएं हैं नेतृत्व की अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जो भी काम मिलेगा जो विभाग मिलेगा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए विकास के लिए काम करेंगे।
12: मेरा ये संकल्प होगा कि जो जिम्मेदारी पार्टी ने और सरकार में हमें दी है उसका पूरा हम लोग पालन करेंगे। पूरी मेहनत से निष्ठा से उन रास्तों पर आगे चलेंगे और आगे बढ़ेंगे और जनता के काम करेंगे।
13: इतना अच्छा दिन है आज, भारतीय जनता पार्टी मातृ डे है और मातृ डे में आज मुझे शपथ दिलाई है। तो आप जानते हो कि महिलाओं के प्रति बच्चियों के प्रति कितना ज्यादा संवेदनशील है भारत।
14: जो जिम्मेदारी मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, मोदी जी ने, योगी जी ने दी है, उसको अच्छे से निर्वहन करने का पूरा प्रयास करूंगा और अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाऊंगा।
7: उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर कैबिनेट विस्तार सिर्फ शपथ नहीं होता, आने वाले चुनावों के संकेत भी होते हैं। इस संकेत को साफ साफ पढ़ा जा सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार में 2 मंत्रियों को प्रमोट किया गया है। मेरठ दक्षिण से विधायक सोमेंद्र तोमर का इस मंत्रिमंडल विस्तार में प्रमोशन हुआ है। योगी कैबिनेट में सोमेंद्र तोमर का कद बढ़ा है। सोमेंद्र तोमर को बीजेपी का मजबूत गुर्जर चेहरा माना जाता है। योगी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री अजीत पाल का भी मंत्रिमंडल विस्तार में प्रमोशन हुआ है। कानपुर देहात की सिकंदरा सीट से अजीत सिंह पाल विधायक हैं। ये पाल समुदाय के बड़े नेता हैं। योगी सरकार ने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए यूपी की सियासत बदल दी है। ब्राह्मण प्लस ओबीसी प्लस दलित, यानी एक ब्राह्मण 2 दलित 5 ओबीसी, यानी एक तीर से कई निशाने।
15: जिम्मेवारी मिलेगी, अभी संगठन का काम कर रहा था, एमएलसी का काम कर रहा था, अब सरकार के मंत्री के रूप में जो काम मिलेगा निश्चित तौर पर एक संगठन सेवा है हमारा, और वो तो ये है अब सरकार का जो काम मिलेगा उसको जितना सच्चा सच्चा उसको किया।
7: राजनीति में कुर्सियां सिर्फ नेताओं को नहीं मिलती, उनके पीछे खड़े समाज को संदेश मिलता है। इसी को ध्यान में रखकर योगी मंत्रिमंडल के विस्तार से बीजेपी ने भविष्य की सत्ता की रणनीति बनाई है। फोकस 2027 विधानसभा चुनाव, टारगेट ओबीसी प्लस दलित प्लस ब्राह्मण, इनमें सवर्ण भी शामिल है। पश्चिमी यूपी को प्रतिनिधित्व मिला है। पूर्वांचल में विशेष फोकस किया गया है, महिला चेहरा को शामिल किया गया है। समाजवादी पार्टी के बागियों को साधा गया है। पीडीएफ फॉर्मूले की काट का प्लान बनाया गया है। गैर यादव ओबीसी पर नजर रखी गई है। गैर जाटव दलित वोट साधने की कोशिश हुई है। बूथ से लेकर बिरादरी तक पकड़ बनाने की कोशिश हुई है। यूपी में पश्चिम से पूर्वांचल तक योगी का बैलेंस गेम दिखता है। गुर्जर, पाल, पिछड़ा, दलित, ब्राह्मण, हर क्षेत्र, हर जाति, हर समीकरण का ध्यान रखा गया है। या यूं कहें कि समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले के जवाब में बीजेपी ने सत्ता का नया सामाजिक गणित सामने रख दिया है। राजनीति सिर्फ सत्ता चलाने की कला नहीं है, समाज के मन को पढ़ने का विज्ञान भी है। और उत्तर प्रदेश में जिसने जाति, क्षेत्र और भावनाओं का संतुलन साध लिया, दिल्ली का रास्ता अक्सर उसी के लिए आसान हो जाता है। 2027 अभी दूर है, लेकिन उसकी आहट लखनऊ के सत्ता गलियारों में आज साफ सुनाई दे रही है।
10: 2024 का सबक हो या फिर ये पीडीए का असर, इतना है कि इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में दलितों, ओबीसी और ब्राह्मणों को ही तवज्जो दी गई है। और जो नया आंकड़ा है वो दिखाता है कि किस तरीके से 2024 में मुंह खा चुकी बीजेपी 2027 में कोई भी मौका देने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि आज के इस मंत्रिमंडल विस्तार में 6 में से 5 मंत्री ओबीसी और दलित बिरादरी से हैं। ब्राह्मणों को भी खुश करने की ये कोशिश। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
1: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
16: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
17: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
0: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, Complete Oral Health Ka Sach.
18: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
19: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
20: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
0: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, Complete Oral Health Ka Sach.

तेल संकट से बचने के लिए पीएम मोदी की देशवासियों से अपील, कहा विदेशी मुद्रा बचाना भी देशभक्ति, एक साल तक ना खरीदें सोना, पेट्रोल डीजल का कम करें इस्तेमाल, फॉरेन टूर से भी बचें। यूपी में 2027 का चुनावी समीकरण साधने के लिए योगी कैबिनेट का विस्तार, भूपेंद्र चौधरी मनोज पांडे समेत 6 नए चेहरे, 2 राज्य मंत्री अजीत पाल सोमेंद्र तोमर को मिला स्वतंत्र प्रभार। तमिलनाडु का सीएम बनते ही एक्शन में विजय, 200 यूनिट बिजली फ्री, महिला सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स का ऐलान, कहा डीएमके ने छोड़ा 10 लाख करोड़ का खर्च। असम में 12 मई को हेमंता फिर लेंगे सीएम पद की शपथ, उससे पहले कहा 2021 से 26 सिर्फ ट्रेलर, 2031 तक दिखाऊंगा पूरी पिक्चर। भीषण गर्मी और बाढ़ से निपटने के लिए दिल्ली में अमित शाह की उच्च स्तरीय बैठक, अलर्ट सिस्टम को मजबूत करने पर जोर, मेडिकल तैयारियों की भी समीक्षा।

वैश्विक संकट के बीच में तेलंगाना के सिकंदराबाद से प्रधानमंत्री मोदी की देश के बड़ी अपील, देश हित में एक साल तक सोना नहीं खरीदें। विदेशी मुद्रा बचाने पर प्रधानमंत्री ने दिया जोर, कहा विदेशी मुद्रा बचाना भी देशभक्ति है। तेल संकट के बीच में पीएम मोदी ने सुझाया उपाय, कहा पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, भारत में तेल के बड़े बड़े कुएं नहीं हैं। पीएम मोदी ने विदेश यात्रा को लेकर भी अपील की, कहा कि हमें कम से कम साल के लिए तो विदेश यात्रा टालनी चाहिए, देश में कई खूबसूरत जगहें यहीं पर घूमने जाएं। पश्चिम एशिया जंग का असर कम करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दिया मंत्र, कहा कि हमें केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर देना चाहिए आधा और नेचुरल खेती की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। पीएम मोदी ने कांग्रेस को लेकर कसा तंज, बेंगलुरु की रैली में कांग्रेस को बताया परजीवी पार्टी का, तमिलनाडु में मौका मिलते ही साथी की पीठ में छुरा घूमती है। कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, देश को बांटना कांग्रेस का काम, मुस्लिम लीग बन गई है कांग्रेस। तेलंगाना को पीएम मोदी की सौगात, 9,400 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन। पीएम मोदी बेंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें वर्षगांठ समारोह में हुए शामिल, ध्यान मंदिर का किया उद्घाटन, श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मोत्सव कार्यक्रम में लिया भाग। आज से 2 दिनों के गुजरात के दौरे पर पीएम मोदी सोमनाथ अमृत महोत्सव में लेंगे हिस्सा और इतिहास में पहली बार मंदिर के शिखर पर होगा कुंभाभिषेक और 11 तीर्थों के पवित्र जल से अभिषेक होगा। योगी सरकार का आखिरी मंत्रिमंडल का विस्तार, बनाए गए 6 नए मंत्री, 2 का हुआ प्रमोशन। यूपी में चुनाव के करीब 10 महीने पहले मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय समीकरण के चाप, भूपेंद्र मनोज पांडे, कृष्णा पासवान, कैलाश राजपूत, सुरेंद्र दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा मंत्री बनाए गए। सोमेंद्र तोमर, अजीत पाल का कद भी योगी मंत्रिमंडल में बढ़ा, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से इन्हें स्वतंत्र प्रभार मिला। अब यूपी में योगी मंत्रिमंडल में 60 मंत्रियों का कोटा फुल है, सबसे ज्यादा ओबीसी समुदाय के 25 मंत्री। योगी कैबिनेट विस्तार पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का तंज, सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने जोसेफ विजय, 9 मंत्रियों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में ली शपथ। चेन्नई में शपथ ग्रहण के बाद मंच से जोसेफ विजय ने 3 आदेशों पर किया हस्ताक्षर, तमिलनाडु में 200 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान। विजय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए राहुल गांधी, डीएमके के साथ चुनाव लड़ने के बावजूद डीवीके को समर्थन दिया। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के सीएम विजय को फोन पर बातचीत करके बधाई भी दी और सीएम के रूप में शपथ लेने पर शुभकामनाएं। तमिलनाडु में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम जोसेफ की मीटिंग आला अधिकारियों के साथ मंथन। 12 मई को शपथ लेंगे हेमंत बिस्व शर्मा, असम के बनेंगे दूसरी बार सीएम। केरल में नए मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस में मंथन अभी तक तय नहीं हो सका, मुख्यमंत्री का नाम केसी वेणुगोपाल रेस में सबसे आगे। दिल्ली में अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक की, हीट वेव को लेकर बाढ़ संकट भी, इसकी तैयारियों पर चिंतन मंथन हुआ। बंगाल में सचिवालय नबन्ना को केसरिया सजावटी लाइट से रोशन किया गया, सुबह 11 बजे सचिवालय में पहली कैबिनेट की बैठक करेंगे शुभेंदु अधिकारी। पश्चिम बंगाल में जीत के बाद पटना पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत, उमड़ा पार्टी के दिग्गजों का हुजूम। यूपी के हाथरस में बेटी के साथ यौन शोषण और दबंगों की धमकियों से परेशान पिता ने आत्महत्या की, मृतक ने एक युवक के खिलाफ दर्ज करवाया था केस। महाराष्ट्र के अकोला में 6 साल की बच्ची से रिश्तेदार ने किया दुष्कर्म, पुलिस हिरासत में आरोपी नाबालिग आरोपी। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में पेट्रोल पंप पर खूनी खेल, साले ने किया जीजा पर चाकू से जानलेवा हमला। पुणे में 8वीं मंजिल से कूदकर महिला ने जान दी, पति पकड़ता रहा हाथ लेकिन बच नहीं सकी जिंदगी। देहरादून से महानंद एक्सप्रेस में सवार महिला रहस्यमय परिस्थितियों में लापता, बाबा केदारनाथ के दर्शन करके महिला लौट रही थी। गुजरात के पंचमहल में 3 युवकों की मौत, 2 अलग अलग सड़क हादसों में गई जान। आगरा में पलटा ऑटो, पिता पुत्र की मौत, परिवार में कोहराम। मिर्जापुर में कथित अपहरण और 4 दिनों तक बंधक बनाए जाने के मामले में खुलासा, पुलिस अधिकारियों पर दबाव बनाकर पैसे की उगाही करने की फिराक में थी आरोपी युवती। इंदौर में सड़क की सफाई कर रही महिला सफाईकर्मी पर बस से गिरा एक पार्सल, 1 क्विंटल वजनी पार्सल गिरने से महिला जख्मी हुई। वाराणसी में गन पॉइंट पर लूट की कोशिश, घटना सीसीटीवी में कैद। महाराष्ट्र के बसे में शादी समारोह में मारपीट, वीडियो वायरल, दोनों तरफ के लोगों पर केस दर्ज। जमशेदपुर के पतंजलि के नाम पर लेक व्यू होटल रिसोर्ट में देव व्यापार का गांव वालों ने किया विरोध, लड़का और लड़की को बंधक बनाया गया। झारखंड के गढ़वा में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 12 यात्री घायल, 2 गाड़ियों में टक्कर हुई थी। आगरा में कई दिनों से लापता युवक का शव मिला है, 10 फीट गहरे गड्ढे से बरामद हत्या का आरोपी भाई निकला।
रांची में आरपीएफ की महिला सिपाही बनी फरिश्ता, चलते ट्रेन से गिर रही महिला यात्री की जान बचा दी। हिमाचल बोर्ड ने जारी की दसवीं की परीक्षा के परिणाम, 83.8% रहा है रिजल्ट, 160 टॉपर्स में 83 लड़कियां। रामायण शोध का वैश्विक केंद्र बनेगा अयोध्या, एक ही छत के नीचे मिलेगा श्रीराम साहित्य पांडुलिपि शोध सामग्री। तमिलनाडु के चित्राई फेस्टिवल की हां रौनक, 1008 पालकुंडलम यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब। टिहरी गढ़वाल में विधि विधान के साथ निकाले गए जगदीश शिला डोली यात्रा, जगह जगह भव्य स्वागत। गुजरात के सूरत में शादी के पवित्र बंधन में बंधे आदिवासी समाज के 32 जोड़े, स्थानीय विधायक ने सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा, 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने 17 दिनों में दर्शन किए। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य लगभग पूरा, अब परिसर को अंतिम रूप देने और सौंदर्यीकरण की तैयारियां तेज। बलिया में घायल दुल्हन ने शादी के दिन ही अस्पताल में जाकर गाड़ी में दुल्हन की मांग भरी, हादसे में घायल हो गया था। कोनो नेशनल पार्क की सीमा के बाहर निकले चीते का रेस्क्यू किया गया, 23 दिनों से बाहरी इलाकों में घूम रहा था। श्योपुर में मदर्स डे पर कुनो की चीता माताओं पर बनी शॉर्ट फिल्म रिलीज, भारत में चीतों का कुनबा बढ़कर अब 57 पहुंचा। बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह के धुरंधर 2 का शानदार प्रदर्शन, 52 दिनों में 1795 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, दंगल का रिकॉर्ड तोड़ेगा। 23वें दिन अक्षय की भूत बंगला की कमाई मचाल, फिल्म ने शानदार 3 करोड़ का कारोबार किया और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अब 237 करोड़ पहुंच चुका है। बॉक्स ऑफिस पर नहीं दम रही राजा शिवाजी की पिताहाड़, 9वें दिन फिल्म पर नोटों की बारिश, फिल्म ने दुनिया भर में 73 करोड़ का बिजनेस किया। 100 करोड़ के क्लब में एंट्री करते ही रितेश देशमुख की राजा शिवाजी रचेंगे इतिहास, 100 करोड़ की कमाई करने वाली बनेगी पहली मराठी फिल्म। मोहनलाल मम्मूटी स्टारर पेट्रियट भारत में नहीं दुनिया भर में भी कर रहे बंपर कमाई, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 76 करोड़ पहुंचा।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे बीजेपी ने बंगाल में कमाल कर दिया। जहां की राजनीति में दीदी का दबदबा था, लेकिन आज वहां भगवा लहर चल रही है। जिस बीजेपी को बंगाल में अपना खाता खोलने के लिए 36 साल लग गए, वो खाता खोलने के बाद अगले 10 सालों में 200 के पार पहुंच गई। ये कोई तुक्का नहीं बल्कि अमित शाह की वो बिसात थी जिसने ममता बनर्जी के अभेद्य किले की ईंट से ईंट बजा दी। बीजेपी ने सबसे पहले वार किया ममता के सबसे बड़े आर्थिक तंत्र यानी सिंडिकेट पर। इसमें सबसे बड़ा खेल था कैटल स्मगलिंग का। गायें सीमा पर बांग्लादेश भेजी जा रही थी। बीजेपी ने न केवल केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके इन बड़े तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचाया, बल्कि एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया। इसी सिंडिकेट को तोड़कर बीजेपी ने हिंदू वोटों को एकजुट किया। योगी आदित्यनाथ ने ना गौ माता को कटने देंगे ना हिंदुओं को बंटने देंगे का नारा दिया। बीजेपी ने साफ कर दिया कि उन्हें मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ हिंदू वोटों का साथ चाहिए। ममता बनर्जी ने जिस मथुआ समुदाय को अपना वोट बैंक माना था, बीजेपी ने उसी की नब्ज पकड़ ली। गृहमंत्री अमित शाह ने सीएए का दाव खेल दिया, मथुआ समुदाय को नागरिकता देकर इस समुदाय को अपने पाले में ही कर लिया। ममता बनर्जी कभी तंज में पूछती थी कि अमित शाह कौन है, आज उन्हें जवाब मिल गया। 2014 में से अमित शाह चुपचाप बंगाल की जमीन तैयार कर रहे थे और उन्हें साथ मिला शुभेंदु अधिकारी का, वही शुभेंदु जिन्होंने कभी टीएमसी को खड़ा करने के लिए अपना खून पसीना बहाया था। आज उन्होंने ही ममता की सत्ता को जड़ से उखाड़ने की कसम खाई, उसे पूरा कर दिखाया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब जनसंघ बनाया तो 1952 के पहले चुनाव में मिली 3 सीटों में से 2 बंगाल की ही थी। जिस बंगाल ने भारत माता की जय का नारा दिया, आज उस जमीन पर बीजेपी का परचम लहरा रहा है। और इसीलिए आज हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या बंगाल बीजेपी के हिंदुत्व के लिए अगला गुजरात बन सकता है। लेकिन आज शुरुआत हम इन 2 तस्वीरों से करना चाहते हैं, जिनमें पहली तस्वीर साल 2014 की है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद संसद की सीढ़ियों पर अपना सिर झुका दिया था और सिर झुकाकर भारत के लोकतंत्र को नमन किया था। और दूसरी तस्वीर 2026 की, जब भगवा में हुए बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से सिर झुकाकर साष्टांग प्रणाम किया और इस दौरान लाखों कंठों से उठता जय श्री राम का उद्घोष ऐतिहासिक परिवर्तन की उद्घोषणा बन गया। यह सिर्फ बंगाल में बीजेपी का शुभारंभ नहीं था, इसके मायने कहीं ज्यादा थे। ये बंगाल की आत्मा में उठता हुआ वो ज्वार था जिसने वर्षों से जमी हुई एक भय, एक हिंसा का जो चक्रव्यूह है, तुष्टीकरण की राजनीति, उसको खुली चुनौती। और भगवा ध्वजों से लहराता ये जन सैलाब बता रहा था कि बंगाल अब करवट ले चुका है। शुभेंदु अधिकारी का राज तिलक सिर्फ बंगाल में बीजेपी का उदय नहीं दिखा रहा, बल्कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विश्वास का भी प्रतीक है जो बंगाल को फिर से राष्ट्रीय चेतना के केंद्र में देखना चाहता है और जो बंगाल में मानो हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर एक युग की दस्तक लेकर आया है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन में जिस तरह बंगाल भगवा में हुआ, हर चेहरा उत्साह से भरा दिखा, हर नारा परिवर्तन की गूंज बना, उसमें बंगाल की राजनीति एक आकार, एक नया आकार लेती हुई नजर आई। ऐसा आकार जिसमें बंगाल को बीजेपी मुस्लिम तुष्टिकरण से निकालकर हिंदुत्व की नई भूमि तैयार करना चाहती है, जिसका सपना कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था। देखिए,
1: আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে
2: पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है, पहली बार बंगाल में बीजेपी का पहला सीएम बना है, पहली बार शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने हैं।
1: भारत के संविधान के प्रति हम अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करीब।
2: पहली बार बंगाल में बीजेपी का बेहिसाब शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी साथ।
2: ये तस्वीरें अद्भुत हैं। कोलकाता का परेड ग्राउंड बीजेपी के नारों और जयकारों से गूंज रहा था। तख्तियों पर तेवर लेकर पहुंचे थे बीजेपी के कार्यकर्ता। मंच पर मोदी के पहुंचने से पहले ही लोगों पर सैलाब उमड़ आया था। ऐसे में बीजेपी की शपथ से पहले एंट्री भी शानदार थी, जिसमें रोड शो के लिए खास रथ तैयार किया गया था, जिसमें बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो उनके दोनों तरफ शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य भी थे। खचाखच भरे मैदान में चारों तरफ नारों की गूंज थी, तो वहीं पीएम जनता का अभिवादन करते नजर आ रहे थे। बीजेपी के लिए ये एक भावुक पल था। जिस सपने को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, वो सपना पूरे होते देख पीएम मोदी भी गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। यही वजह है कि वो मंच पर आगे आए और घुटनों के बल साष्टांग होकर जनता का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इस मंच से ये भी संदेश देने की कोशिश की गई कि पश्चिम बंगाल का विकास बीजेपी बांग्ला अस्मिता को ध्यान में रखकर करेगी। मंच पर महाकाली, दक्षिणेश्वर मंदिर और टैगोर की तस्वीरें इस बात की गवाह थी। कार्यक्रम में सबसे पहले मोदी ने मंच पर रवींद्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। वहीं कार्यक्रम के बाद शुभेंदु अधिकारी सीधे जोरा सांको ठाकुरबाड़ी पहुंचे, जो कि रवींद्रनाथ टैगोर का घर है। शपथ के लिए बीजेपी ने रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती के दिन को चुना, ताकि बंगाल की जनता को सीधा संदेश दिया जा सके।
4: प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे, इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया, और उसका बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ा साको से हुआ है, कवि गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण किया।
2: पूरे समारोह में एक तस्वीर ने सबको सबसे ज्यादा चौंकाया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मंच पर एक 98 साल के बुजुर्ग कार्यकर्ता के पैर छूते नजर आए। पीएम मोदी ने बुजुर्ग नेता को गले लगाया, उन्हें शॉल ओढ़ाई और मंच पर उनका सम्मान किया। प्रधानमंत्री ने जिस शख्स को ये सम्मान दिया, वो है बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता माखनलाल सरकार। 98 साल के माखनलाल सरकार उत्तरी बंगाल के सिलगुड़ी के रहने वाले हैं और जनसंघ के दौर से बीजेपी की राजनीति से जुड़े रहे हैं।
5: बहुत अच्छा लगा, बहुत गर्वित महसूस कर रहा हूं। हम लोग का परिवार जो इस जगह से बाबा दार्जिलिंग जिला का 25 प्रेसिडेंट से बीजेपी का, उस जमाने से पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ बाबा काम किया, बाबा अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम किया, बाबा लालवानी जी के साथ काम किया, बाबा सुषमा स्वराज के साथ काम किया। छोटा बड़ा से देखा बाबा, ये जनसंघों का आरएसएस का बहुत आरएसएस का ही था आदमी, वो आरएसएस का जो मैदान में होता था पैरेड उरेड बाबा जाता था, यही देखा बाबा बहुत कष्ट करके हम लोगों को मनुष्य किया, अभी भी बाबा कष्टी कर रहा है।
6: बार बार कहा गया था कि उनके कार्यकर्ताओं की बलिदान, उनके कार्यकर्ताओं का सैक्रिफाइस उनको आज इस मुकाम तक ले आया। माखनलाल सरकार जिनके बारे में शायद ही आज की तारीख में कोई चर्चा करता हो, लेकिन प्रधानमंत्री ने माखनलाल सरकार को याद रखा, उन्हें इनवाइट किया, उन्हें न्योता दिया, अपने मंच पे बुलाया, उनके पांव छुआ, क्योंकि ये माखनलाल सरकार वो शख्स है जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ काम कर चुके हैं और स्वतंत्र आंदोलन में उनका एक अहम भूमिका भी रहा है। और सिर्फ यही नहीं, जब पश्चिम बंगाल में आरएसएस का कोई शाखा संगठन उस लिहाज से नहीं था, तब ये माखनलाल सरकार अकेले भगवा झंडे को लेकर चारों ओर घूमते थे और उन्हें कई बार राजनीतिक दलों ने उन्हें राजनीतिक तरीके से उन्हें शिकार बनाया, उन्हें जेल तक जाना पड़ा।
2: बंगाल चुनाव में हिंसा का एक लंबा दौर चला है, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं की जान का जिक्र बीजेपी लगातार करती रही है। ऐसे में पीएम मोदी ने चुनावी हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं देवाशीष मंडल, सौमित्र घोषाल और आनंद पाल के परिवारों से मुलाकात की। तमाम उम्मीदें इस सरकार से जुड़ी हैं। लोगों की भावनाएं शपथ ग्रहण में दिखाई दी, जहां अब चुनौती जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की है। अनुपम मिश्र, इंद्रजीत कुंडू और पीयूष मिश्रा के साथ मारिया शकील, कोलकाता आज तक।
0: शुभेंदु अधिकारी नए मुख्यमंत्री बने पश्चिम बंगाल के, भगवा पूरा मंच सजा हुआ था, उन्होंने वस्त्र भी वैसे पहने थे, प्रधानमंत्री ने साष्टांग किया और पूरा एनडीए का कुनबा मंच पर मौजूद था, मानो एक बड़े शक्ति प्रदर्शन के तौर पर, मानो नई जमीन पर अपनी सत्ता हासिल करने का एक मुहर लगाने के लिए। हमने बातचीत की है नई नवेली मंत्री बनी आसनसोल दक्षिण से विधायक, मंत्री बन गई है अग्नि मित्रा पॉल। देखिए बीजेपी की फायर ब्रांड लीडर और दो बार की एमएलए आसनसोल दक्षिण से अग्नि मित्रा पॉल जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। पहले तो आप मैम आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत सारा इस बार भी खबरें आई कि किस तरह से भिड़ंत की स्थिति टीएमसी बीजेपी के बीच में थी आप लोगों के लिए इस चुनाव में, और लंबे वक्त से आप बीजेपी के साथ टिकी हुई हैं। एक तो बीजेपी का कार्यकर्ता होकर पश्चिम बंगाल में लड़ना कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए, जिन मुश्किलों का आपने सामने किया वो बताइए, और इस जीत का अर्थ क्या है, इस जीत का अर्थ क्या है आपके लिए पश्चिम बंगाल में?
3: देखिए पहले तो इलेक्शन लड़ना बहुत बहुत बंगाल में मुश्किल की बात है, और इलेक्शन में तो ठीक है इलेक्शन कमीशन रहता है, इस बार तो इस बार का इलेक्शन जैसा हम लोग कभी देखे नहीं है, लेकिन बंगाल में भाजपा को काम करना इतना साल बहुत मुश्किल की बात है। विधानसभा का अंदर आप विधायक हो, आपका माइक बंद कर दिया जाता है, अपना असेंबली में जब जाएंगे, असेंबली में जा रहे, डोर टू डोर कर रहे, तब टीएमसी का कैडर आके आपको अपमान करेंगे, हैकल करेंगे, और मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है। काम करने एमएलए फंड से जो काम, जो पैसा हम लोग को मिलता है, जो हमारा अधिकार है, उसमें डिले किया जाता है, तो ऐसा बहुत सारा। इसके ऊपर तो जैसे हम तो डिजाइनर होके हम आए हैं, और मेरे नाम में मर्डर केस है, मेरे नाम में आर्म्स केस है, तो एक क्या बोले, कोई भी कार्यकर्ता के लिए, भाजपा कार्यकर्ता के लिए पश्चिम बंगाल में ये टीएमसी रेजिम में काम करना बहुत ही मुश्किल था। और आज जब सरकार आ गया है तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहे।
0: अग्नि मित्रा जी, आपने खुद ही बताया आप फैशन डिजाइनर हैं, आप कपड़े डिजाइन करती थी, और कांथा वर्क को भी आपने खूब प्रमोट किया, और खुशी की बात तो यह है कि जो पांच लोगों ने शपथ ली उनमें एक महिला के तौर पर भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं।

0: के लिए मतलब लोगों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता था भाई. बीजेपी को सपोर्ट करने वाले लोग मिलते नहीं थे, खोजने से भी नहीं मिलते थे, है ना. तो आपने वो दौर भी देखा होगा, वहां से लेकर आज का ये स्टेज, वो ट्रांजिशन बताइए, शुरू में क्या प्रॉब्लम्स होती थी.
1: 15 साल वो लोग कुछ काम नहीं किए. हम एक बीजेपी का कार्यकर्ता होके नहीं बोल रहे, आप किसी भी गांव में जाओ, किसी भी स्टेटा का लोगों से पूछो, कोई काम नहीं किया है. लेकिन 50% महिला वोटर है. जब ये लखीर भंडार उन लोगों को मिला तो छप्पड़ भाड़ के वो लोग वोट दिए थे. लेकिन अब हम लोग ये लास्ट 5 साल, स्पेशली लास्ट 2-3 साल, जिस तरह से महिला के ऊपर अत्याचार हुआ, आरजी कौर डॉक्टर अभया को जिस तरह मारा गया, दुर्गापुर में मेडिकल स्टूडेंट उड़ीसा से आया था, उसको 8 बजे के बाद वो खाना लेने गए, उसको धर्षण कर दिया, और मुख्यमंत्री एक महिला होने के बावजूद बोल रहे कि 8 बजे के बाद निकलने का जरूरत क्या है. मैंने 8 बजे के बाद कोई विभिन्न पुलिस ऑफिसर हो तो थाना नहीं जाएंगे, कोई महिला डॉक्टर हो तो वो हॉस्पिटल नहीं जाएंगे. ये सब देख के ना, महिला जो 50% वोटर और जो हमारे मातृतांत्रिक समाज है, बंगाल माँ दुर्गा माँ काली का देश है, जो महिला का सम्मान करते है, वो लोग भी आज टीएमसी के विरुद्ध में हो गया है.
0: पीएम ने आज कुछ बोला
1: नहीं. माननीय प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि पूरा एकदम बहुत काम है, मन लगाकर काम कीजिए. प्रधानमंत्री जी यही बोले सबको.
0: ये विजुअल एक बार दिखाते हैं. और मेरा आखिरी प्रश्न यही है, मंच था और भगवा रंग हावी दिख रहा था वहां पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साष्टांग किया वहां पर लोगों के लिए. हम लोग तो तस्वीरें दूर से देख रहे थे, बट आप वहां पर मौजूद थी शपथ लेने के लिए. ये तस्वीरें आप कैसे बताएंगे हमारे दर्शकों को?
1: एक हमारे प्रधानमंत्री, एक भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, जो पूरा साष्टांग होकर प्रणाम किए बंगाल के जनता को ये मैंडेट देने के लिए. और एक मुख्यमंत्री, एक्स मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हम लोग देखे हैं, जो कुछ काम नहीं किए, सिर्फ लोगों का अनड्यू एडवांटेज लिए और बोले कि वो माँ शारदा है, माँ शारदा हमारे भगवान है, और बोले वो माँ शारदा है. तो एक कंपैरिजन की अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबल, ये भाजपा सरकार है हर टाइम लोगों के लिए. इसीलिए आज 21 राज्यों में हमारा सरकार चल रहा है. हम लोग सेवा करने के लिए आए हैं, बंगाल के सेवा करने के लिए आए हैं, शासन नहीं.
0: ठीक है. अरे ममता बनर्जी तो लेकिन मान नहीं रही हैं. वो एक तो उन्होंने पहले भी इस्तीफा के लिए कह दिया कि मैं क्यों जाऊं, मैं हारी नहीं हूं. दूसरा वो कह रही हैं कि चुनाव आयोग की वजह से आप लोग जीते हैं. तीसरा वो कह रहे हैं कि सारी राजनीतिक पार्टियों को अब अपना विरोध छोड़कर लेफ्ट को भी आमंत्रण दे रही हैं, लेफ्ट को भी आमंत्रण दे रही हैं, कांग्रेस को दे रही हैं, सभी पार्टियों को दे रही हैं एकजुट होने के लिए.
1: देखिए इंडिया अलायंस में तो अपने आप में यूनिटी नहीं है. आज इलेक्शन के बाद कांग्रेस के राहुल गांधी ने बोला कि आज ममता बनर्जी के लिए बीजेपी का ये एंट्री हो गया. एक दूसरा जन का दोष देते हैं, दिल्ली में जाके फिश फ्राई खाते हैं और इधर आके कुश्ती करते हैं. ममता बनर्जी जिस रिस्पेक्ट, श्रद्धा, भरोसा 2011 में मिला, वो अगर भरोसा और श्रद्धा अगर रखते ना तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता. आज विभ्रांत करने का राजनीति जो ममता बनर्जी ने किया है ना, उसके लिए आज ये अवस्था हुआ है.
0: अग्निमित्रा पॉल जी, आप आज तक पर आए, आपका बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बधाई फिर से. आज हम आपको कटुता की वो कहानी भी बताना चाहते हैं जिसने शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच सबसे कट्टर राजनीतिक दुश्मनी की एक नींव रख दी. एक जमाना था जब शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद हुआ करते थे. अगर ममता बनर्जी ने लेफ्ट की 34 साल की सत्ता को खत्म किया तो इसके पीछे शुभेंदु अधिकारी का भी खून पसीना था, और उन्होंने ही ममता बनर्जी के लिए सालों तक मेहनत करके सत्ता का एक नया रास्ता तैयार किया था. लेकिन बाद में यही शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के खिलाफ दीवार बनकर खड़े हो गए, और जिस सत्ता को कभी उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था उसे ही उन्होंने उखाड़ फेंकने का काम किया. ये कैसे हुआ और कैसे शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद सिपा सालार से सबसे कट्टर राजनीतिक दुश्मन बन गए, आज हम इसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे. और ये भी बताएंगे कि राजनीति में परिवारवाद कैसे बाहरी नेताओं से खुद को असुरक्षित मान लेता है. ये पूरी कहानी शुरू होती है साल 1989 में, 1989, जब पश्चिम बंगाल में लेफ्ट सरकार का एक छत्र राज था.

0: स्थिति ये थी कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी भी अपने दौर में लेफ्ट के एक छत्र राज को हिला ही नहीं पाए। तब उसी दौर में शुभेंदु अधिकारी का बंगाल की राजनीति में प्रवेश हुआ और वो कांग्रेस की छात्र परिषद के सदस्य बने। कांग्रेस में शामिल होने का कारण यह था कि शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी कांग्रेस के एक बड़े नेता थे, एक बड़े प्रभावशाली नेता थे और यूपीए की सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री भी वो रह चुके हैं। इंदिरा गांधी के दौर में और लेफ्ट के राज में उन्होंने साल 1982 में कांती दक्षिण सीट से पहला चुनाव जीता था और वो कांग्रेस के काफी भरोसेमंद थे। हालांकि साल 1998 में जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई तब शुभेंदु अधिकारी परिवार जो है अधिकारी परिवार ही कह लीजिए टीएमसी में एक साथ शामिल हो गया। इस वक्त तक शुभेंदु अधिकारी एक युवा नेता थे, उनकी पहचान उनके पिता के नाम से ज्यादा होती थी। साल 2001 के विधानसभा चुनाव और साल 2004 के लोकसभा चुनाव में जब शुभेंदु अधिकारी की हार हो गई तो उन पर कई सवाल भी उठे कि पिता तो बड़े नेता थे लेकिन बेटा देखो हार रहा है। कहा गया कि उनकी राजनीति में मैजिक नहीं है जो उनके पिता की पॉलिटिक्स में था, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ये ताने सहते गए। इसके बाद आया साल 2006 और इस बार शुभेंदु अधिकारी ने अपना तीसरा चुनाव लड़ा और इस बार भी वो 8,500 वोटों से जीत गए। ये जीत भी उन्हें तब मिली जब टीएमसी पूरे पश्चिम बंगाल में सिर्फ 30 सीटें ही जीत पाई थी। यहां से शुभेंदु अधिकारी के इलेक्शन मैनेजमेंट की चर्चा होने लगी। टीएमसी में कई नेता कहने लगे कि शुभेंदु अधिकारी वो चट्टान है जो लेफ्ट के तूफान से भी डगमगाए नहीं। इसके बाद आया साल 2007 और इसने सब कुछ बदल कर रख दिया और यहीं से शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के भरोसेमंद सिपह सालार बन गए। उस साल लेफ्ट सरकार ने नंदीग्राम में केमिकल हब और स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ बनाने का फैसला किया जिसके लिए 40,000 किसानों की जमीनों का अधिग्रहण होना था। ये बात ममता बनर्जी को पता चली तो वो नंदीग्राम पहुंच गई और कहा जाता है कि नंदीग्राम की इसी लाल मिट्टी ने ममता बनर्जी को बंगाल की दीदी बना दिया। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस नंदीग्राम ने ममता बनर्जी की एक अलग पहचान गढ़ी उस नंदीग्राम की लाल मिट्टी पर पूरे आंदोलन की रूपरेखा शुभेंदु अधिकारी ने ही खींची थी। लेफ्ट की सरकार में उन पर यह आरोप भी लगा कि उन्होंने नंदीग्राम में माओवादियों की मदद ली है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के इस आंदोलन को सफल बनाने में पूरी ताकत हर तरह से झोंक दी। इसी के बाद ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी पर भरोसा जताना शुरू किया और उन्हें उस पूरे क्षेत्र का पार्टी ऑब्जर्वर बनाया गया जिनमें पश्चिम मिदनापुर, पुरुलिया, बांकुड़ा इन सब के आदिवासी इलाकों में लेफ्ट का दबदबा था, सब सौंप दिया गया शुभेंदु को। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी का प्रमोशन हुआ, उन्हें ममता बनर्जी ने लोकसभा का चुनाव लड़ाया। साल 2009-2014 में वो तमलुक सीट से टीएमसी के सांसद चुने गए, दिल्ली आ गए। हालांकि टीएमसी पर शुभेंदु अधिकारी की इतनी मजबूत पकड़ थी कि साल 2016 में उन्होंने वापस बंगाल लौटने का फैसला किया। अब 2016 के जिन चुनाव में पहली बार बीजेपी का खाता खुला और वो 3 सीटें जीती तब शुभेंदु अधिकारी भी नंदीग्राम से चुनाव जीते। इसके बाद ममता बनर्जी ने उन्हें अपनी सरकार में मंत्री बनाया, कई बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी, विधायक बनकर आए थे। इस वक्त तक शुभेंदु अधिकारी को टीएमसी में ममता बनर्जी के बाद नंबर 2 ही माना जाता था और वो कई नेता कहते थे कि ममता बनर्जी के उत्तराधिकारी तो अब शुभेंदु अधिकारी ही है। लेकिन कहते हैं कि ये बात ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को पसंद नहीं थी। वो टीएमसी पर शुभेंदु अधिकारी की मजबूत पकड़ को सही नहीं मानते थे और इसी के बाद शुभेंदु अधिकारी की अनदेखी होने लगी। परिवार के लिए ममता बनर्जी ने अपने भरोसेमंद सिपह सालार को किनारे लगाना शुरू किया और यहीं से शुरू हुई ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी की कट्टर दुश्मनी। टीएमसी के सभी बड़े कार्यक्रमों में शुभेंदु अधिकारी गायब, धीरे धीरे गायब होने लगे और पार्टी के पोस्टर से भी उनकी तस्वीरें हटा दी गई। ये वही मौका था जब बीजेपी ने अपना दांव चल दिया। जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसे बीजेपी ने ममता बनर्जी को कमजोर करने के लिए उन्हीं के सिपा सालार शुभेंदु अधिकारी को अपनी तरफ किया। और जानते हैं 19 दिसंबर 2020 को जब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हुए तब उन्हें पार्टी ज्वाइन कराने वाले कौन थे? वो खुद गृहमंत्री अमित शाह थे। वही अमित शाह जिनके लिए ममता बनर्जी ने कभी कहा था कि वो किसी अमित शाह को नहीं जानती, और इसके बाद अमित शाह ने कहा था कि वो बीजेपी के एक सामान्य कार्यकर्ता हैं जो बंगाल से टीएमसी को उखाड़ फेंकने आए हैं। और देखिए अमित शाह ने जो कहा वो कर दिखे, देखिए।
1: तो ममता जी ने मीडिया के सामने एक छोटा सा सवाल किया है कि अमित शाह कौन है, ऐसा पूछा था। दीदी अगर आप देख सकती है तो देख लीजिए, सुन सकती है तो सुन लीजिए, मैं अमित शाह हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मैं अमित शाह हूं और इस बंगाल की भूमि पर से तृणमूल को उखाड़ने के लिए आया हूं, वो आप समझ लीजिए।
0: ममता बनर्जी ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के लिए शुभेंदु अधिकारी को टीएमसी में आगे बढ़ने से रोका, और ये भी उन्होंने तब किया जब वो जानती थी कि जमीन पर कौन है। जमीन पर टीएमसी का जो काडर है उसे शुभेंदु अधिकारी ने ही संभाला हुआ है, लेकिन परिवारवाद ने शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी का दुश्मन बनाया, जबकि बीजेपी ने इस मौके की तरह इसको लिया। और आज आप सब देख रहे हैं कि बंगाल ने बीजेपी ने कितना बड़ा खेला किया है। शुभेंदु अधिकारी ने सबसे बड़ी चीज ये की, उन्होंने ममता बनर्जी की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का जवाब तुष्टीकरण की राजनीति से ही दिया। वो कैसे? ममता बनर्जी ने 2019 में कहा था कि वो मुसलमानों का तुष्टीकरण करती हैं और आगे भी 100 दफा करती रहेंगी, फिर चाहे एक दूध देने वाली गाय की तरह मुसलमान भी उन्हें लात मारते। इसी बात को शुभेंदु अधिकारी ने पकड़ा, उन्होंने कहा कि हिंदू इलाके उनके हैं, मुस्लिम इलाके टीएमसी के। खुल्लम खुल्ला कहा अगर बंगाल में सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ तो हिंदू खतरे में पड़ जाएंगे, बीजेपी को अल्पसंख्यक मोर्चे की कोई जरूरत है ही नहीं। शुभेंदु अधिकारी ने इस रणनीति से ममता बनर्जी को हिंदू सीटों पर फंसाया और लोगों को यह कहा कि जब ममता बनर्जी मुसलमानों के साथ है तो हिंदू उनके साथ कैसे जा सकते हैं, और यही इसे खेला हुआ टीएमसी इन चुनावों में हार गई।
2: हमारा ये दिक्कत है कि हमारा इधर में 33% माइनॉरिटीज है, तो हम क्या करेगा, उसको निकाल देगा, कैसे निकाल सकते हैं? ये तो आज नहीं है, आजादी का टाइम से है।
3: और नंदीग्राम का हिंदू जनता फिर मुझे जिताया, वहां मुसलमान वोट पूरा के पूरा टीएमसी को मिला। ये लोग बहुत कट्टरवादी, इसलिए मेरा मार्ग ठीक है, मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा।
2: इतना डरने का बात नहीं है, मुद्दा लाख पूरा चाहे तो क्या होता है।
4: हिंदू बचाबो, संविधान बचाबो।
2: আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করে বলি, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা সকলকে ভালো রাখো। আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ।
3: হিন্দু ইভিএম বিজেপি, मुसलमान ईवीएम टीएमसी, मालदा मुर्शिदाबाद उत्तर दिनाजपुर छोड़ के, वहाँ मुस्लिम लोग कांग्रेस को फेवर कर रहे हैं।
0: पश्चिम बंगाल की राजनीति के केंद्र में आज एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आंकड़ों में छिपा है। आखिर कैसे शून्य से शिखर तक का सफर बीजेपी ने महज एक दशक में तय कर लिया। बीजेपी को पहली बार खाता खोलने के लिए 36 सालों का इंतजार करना पड़ा। साल 1980 में बीजेपी की स्थापना से लेकर साल 2016 तक बीजेपी को खाता खोलने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन असली खेल शुरू हुआ 2014 के बाद, और अगले 10 सालों में बीजेपी ने वो कर दिखाया जो एक वक्त पर नामुमकिन लगता था। आज बंगाल में बीजेपी 2/3 बहुमत के साथ सरकार बना रही है। इस चमत्कार के पीछे कोई गुप्त फॉर्मूला नहीं बल्कि एक ठोस रणनीति थी जिसका आधार था हिंदू वोटों का एकीकरण। बीजेपी ने बंगाल की राजनीति की पुरानी परंपरा को तोड़ दिया, खुल्लम खुल्ला दांव खेला। रणनीति साफ थी, उन्हें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों को ढाल बनाकर बीजेपी ने मतुआ समुदाय से लेकर आदिवासी इलाकों तक हिंदुत्व की अलख जगाई। जहां विपक्षी दल मुस्लिम वोटों के गणित में उलझे रहे, वहीं बीजेपी ने 70% हिंदू आबादी को अपना सारथी बना लिया। जय श्री राम का नारा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन का सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बन गया। आज बंगाल की सियासत दो ध्रुवों में बटी है, एक तरफ वो जो अल्पसंख्यक वोटों के बिना जीत की कल्पना नहीं करते, और दूसरी तरफ बीजेपी जिसने साबित कर दिया कि बहुसंख्यक वोटों की लामबंदी सत्ता के गलियारों तक पहुंचने का रास्ता हो सकती है। एक दशक में 3 सीटों से 207 सीटों की छलांग ने बंगाल के राजनीतिक इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया, और आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि आखिर बंगाल में बीजेपी ने कैसे कमल खिलाया, यानी बंगाल बीजेपी जीती कैसे।

0: असम के बाद पश्चिम बंगाल भारत का दूसरा ऐसा राज्य है जहां 27% से ज्यादा मुस्लिम आबादी होने के बाद भी बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। ये इसलिए हो पाया क्योंकि इस बार पश्चिम बंगाल में काउंटर कंसोलिडेशन हुआ। हर बार मुसलमान अपना एक मुश्त वोट टीएमसी को देते थे, लेकिन इस बार बड़ी संख्या में हिंदुओं ने भी अपना एक मुश्त वोट बीजेपी को दिया। खासकर उन सीटों पर बीजेपी को हिंदुओं के बम्पर वोट मिले जहां मुसलमानों की आबादी 40% से ज्यादा है। ऐसी 62 सीटों में से 18 सीटों पर बीजेपी की शानदार जीत हुई। उसे 15 सीटों का फायदा हुआ जबकि टीएमसी को इन्हीं मुस्लिम फैक्टर वाले इलाकों में 20 सीटों का नुकसान हुआ। ये बदलाव सिर्फ एक दिन, एक महीने या एक साल में नहीं आया, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बीजेपी ने खुद हिंदुत्व का ये लॉन्च पैड तैयार किया। बंगाल की धरती पर अगर कमल खिला तो इसके लिए ममता बनर्जी ने खुद बीजेपी को जमीन तैयार करके दी। टीएमसी ने मुसलमानों पर जितनी ममता दिखाई उतने ही हिंदू बीजेपी के साथ एकजुट होते गए, और इसकी पहली नींव साल 2016 में यानी आज से 10 साल पहले रखी गई थी। साल 2016 का बंगाल सांप्रदायिक राजनीति के दलदल में बुरी तरह धंस चुका था। चारों तरफ एक ही सवाल था कि मुसलमानों पर सरकार की इतनी ममता क्यों है। उस दौर में मुहर्रम उसी दिन पड़ रहा था जिस दिन पूरे राज्य में दुर्गा विसर्जन होना था। अगर सरकार चाहती तो वो ना मुहर्रम को रोकती और ना दुर्गा विसर्जन को। इससे सांप्रदायिक सौहार्द भी मजबूत होता। इसके लिए बस ममता बनर्जी की सरकार को पूरे राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने थे, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार ने इसे एक मौका समझा, मौका पश्चिम बंगाल के 27% मुसलमानों को खुश करने का, मौका मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने का, और मौका मुसलमानों को ये बताने का कि टीएमसी चुनावों में उनका एक मुश्त वोट मिलने से गदगद है और वो उनकी भावनाओं का ख्याल रखेगी। सरकार ने ऐसा किया भी। ममता बनर्जी मीडिया के सामने आई और उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि 2016 का मुहर्रम जुलूस बिल्कुल नहीं रुकेगा, ये उसी दिन निकलेगा जिस दिन दुर्गा विसर्जन होना है। इसके लिए ममता बनर्जी ने दुर्गा विसर्जन को ही एक दिन के लिए स्थगित कर दिया, और 2016 के इसी फैसले ने हिंदुओं के मन में एक टीस पैदा की। टीस इस बात की कि वोट तो हिंदुओं ने भी ममता बनर्जी को दिया था, फिर ऐसा क्यों हुआ कि मुहर्रम के लिए दुर्गा विसर्जन को रोक दिया गया।
1: शुद्ध एक दिन ही देवा जावे ना, सेटा होच्छे पहला अक्टूबर एकादशीर दिन। एकादशीर दिन एमनिते आमरा विसर्जन दितेओ चाई ना अनेक समय। একাদশীর দিনটা শুধু দেয়া বিসর্জন হবে না, কারণ ওই দিন মহরম আছে বলে।
0: ये सिर्फ एक साल नहीं हुआ, इसके बाद आया साल 2017। इस बार भी ममता बनर्जी ने कोई संकोच नहीं किया। उन्होंने मुहर्रम के लिए दुर्गा विसर्जन पर रोक लगा दी और इस बार ये मामला कलकत्ता हाई कोर्ट गया। सरकार की नीतियों और फैसलों को देखकर अदालत को भी ये कहना पड़ा कि मुहर्रम के लिए दुर्गा विसर्जन को रोकना गलत है। हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि सरकार दो समुदायों के बीच दरार को जानबूझकर गहरा कर रही है और ये बात हिंदुओं के मन में घर कर गई। हिंदुओं को ऐसा महसूस होने लगा कि पश्चिम बंगाल में उनकी नहीं बल्कि मुसलमानों की सरकार का शासन है। वक्त आगे बढ़ा और फिर आया साल 2019। इस बार लोकसभा चुनावों में ममता बनर्जी ने जय श्री राम के नारे का विरोध करना शुरू कर दिया। कुछ लड़कों को जय श्री राम का नारा लगाने पर जेल में डालने की धमकी दे दी और ये कहा कि जय श्री राम बंगाल में नहीं चलेगा। इस बार भी ममता बनर्जी ने बीजेपी की जमीन तैयार की और प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैलियों में इसे एक बड़ा मुद्दा बना लिया।
2: बंगाल की जनता को याद है कि गाड़ी से उतरकर आपने कितने लोगों को डांटा फटकारा और पुलिस को कह रहे थे पकड़ो जेल में डाल दो। तुष्टिकरण के लिए आपकी हर कार्रवाई बंगाल के लोगों को याद है।
0: बीजेपी ने हिंदुत्व के मुद्दे को सिर्फ उछाला था, लेकिन ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया ने बीजेपी को बंगाल में एक नया अवसर दिया। लोकसभा चुनावों में पहली बार बंगाल की 18 सीटों पर बीजेपी जीती और 22 सीटों पर ममता बनर्जी की टीएमसी। ये हार ममता बनर्जी के लिए कई सबक लेकर आई, लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी की सुई मुसलमानों पर अटकी रही। उन्हें लगा कि वो मुसलमानों के कम वोट मिलने से हारी और इसी के बाद उन्होंने ये बयान दिया कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती रहेंगी, फिर चाहे दूध देने वाली गाय की तरह मुसलमान भी उन्हें लात मार दे। इस बयान ने एक बार फिर बंगाल के हिंदुओं को असहज किया और फिर से हिंदुओं को लगने लगा कि टीएमसी उनकी नहीं मुसलमानों की पार्टी है। इसी दौर में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में आए, जो आगे चलकर हिंदू हृदय सम्राट बने और 2021 के चुनावों में बीजेपी 3 सीटों से 77 सीटों पर पहुंच गई। बीजेपी को उम्मीद थी कि ममता बनर्जी की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से आक्रोशित होकर बड़ी संख्या में हिंदू उसे वोट देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बीजेपी और टीएमसी के बीच 10% वोटों का अंतर रहा। उस बार काउंटर कंसोलिडेशन नहीं हुआ, यानी मुसलमान तो बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचे, लेकिन हिंदुओं के बीच वैसी एकजुटता नहीं दिखी। बीजेपी हारी, लेकिन उसने हिंदू वोटर्स को छोड़ा नहीं और ममता बनर्जी धीरे धीरे बीजेपी का काम आसान करती रही। इसी साल चुनावों से पहले ममता बनर्जी ने अपना आखिरी बजट पेश किया, जिसमें अल्पसंख्यक और मदरसों के लिए 5,714 करोड़ रुपए दिए, जबकि उद्योगों के लिए सिर्फ 1,484 करोड़ रुपए, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सिर्फ 217 करोड़ रुपए और कानून से जुड़े मामलों के लिए 23 करोड़ रुपए ही दिए गए। इस बजट से ममता बनर्जी मुसलमानों को साधना चाहती थी और उनकी प्राथमिकता स्पष्ट थी, लेकिन इस बार बंगाल के हिंदू भी ये सब देख रहे थे। आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता हर बूथ पर हिंदुओं के घर घर पहुंचे और इस बजट के बारे में लोगों को बताया। जिस तरह बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई, उसे भी बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया। इससे हिंदू समुदाय एकजुट हुआ और उसके मन में ये भावना पैदा हुई कि अगर ममता बनर्जी को उन्होंने नहीं हटाया तो अभी बांग्लादेश में ये हो रहा है, लेकिन आगे बंगाल में भी हो सकता है। ऊपर से रही सही कसर टीएमसी के नेताओं ने पूरी कर दी। लोकसभा सांसद सायोनी घोष ने कहा कि उनकी पार्टी के इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि जय श्री राम के नारे पर वोट मांगना पड़े, लेकिन यही सायोनी घोष अपनी चुनावी रैलियों में काबा और मदीना के गाने गाती रही और यही से हुआ काउंटर कंसोलिडेशन।

0: और अब हम आपको ये बताएंगे कि कांग्रेस पर मुसलमानों की पार्टी होने का आरोप क्यों लग रहा है और इस पर आंकड़े क्या बताते हैं। एक जमाना था जब चुनाव में कांग्रेस के गैर मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत का स्ट्राइक मुस्लिम उम्मीदवारों से ज्यादा होता था, लेकिन अब पैटर्न बदल गया है। जैसे पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत का स्ट्राइक रेट 3% रहा, लेकिन गैर मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत का स्ट्राइक 0। असम में मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत का स्ट्राइक रेट 90% रहा, लेकिन गैर मुस्लिम उम्मीदवारों का सिर्फ 1%। तमिलनाडु में भी मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत का स्ट्राइक रेट 50% रहा, लेकिन गैर मुस्लिम उम्मीदवारों का सिर्फ 15%। केरलम में मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत का स्ट्राइक रेट 42% रहा, जबकि गैर मुस्लिम उम्मीदवारों का 73% रहा। और यहां यह ज्यादा सिर्फ इसलिए है क्योंकि कई ईसाई उम्मीदवार केरलम में कांग्रेस की तरफ से इस बार चुनाव जीते हैं। अब इससे पहले चलिए हरियाणा। कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत का स्ट्राइक रेट 100% था, 100%, लेकिन गैर मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत का प्रतिशत 38। बिहार में मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत का स्ट्राइक रेट 20%, गैर मुस्लिम का 8%। महाराष्ट्र में मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत का प्रतिशत स्ट्राइक रेट 33%, गैर मुस्लिम का 14%। लोकसभा चुनाव में पूरे देश में कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत का स्ट्राइक रेट 37% था, लेकिन गैर मुस्लिम उम्मीदवारों का 30%। यानी हर राज्य में अभी हो ये रहा है कि कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं, जो मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, उनके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन जो अन्य धर्म के लोग हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, वो जब चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जीत की संभावना कांग्रेस के टिकट पर कम होती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कांग्रेस के हिंदू उम्मीदवारों की तुलना में मुस्लिम उम्मीदवारों को वोट आसानी से मिल जाता है, और इसीलिए मिल जाता है क्योंकि ये मुस्लिम उम्मीदवार ऐसी सीटों से चुनाव लड़ते हैं जहां मुस्लिम आबादी अच्छी खासी होती है, वोटर परसेंटेज ज्यादा होता है। और यही कारण है कि अभी कांग्रेस और मुस्लिम लीग वाली राजनीति करने के आरोप अब कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी लगा रही है। मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना की वही पार्टी थी जिसने भारत का बंटवारा कराया था, और इस बंटवारे से पहले जब मुस्लिम लीग भारत में मोहम्मदन सीटों पर चुनाव लड़ती थी तो उसे लगभग सभी मुस्लिम सीटों पर जीत मिलती थी, हिंदू वोटों पर हार जाती थी। उदाहरण के लिए आजादी से एक साल पहले 1946 में जब बंगाल के चुनाव हुए थे तब इनमें ज्यादातर मुस्लिम सीटों पर मुस्लिम लीग जीती थी, जिन सीटों पर गैर मुस्लिम आबादी ज्यादा थी वहां कांग्रेस पार्टी जीतती थी। लेकिन आज हो ये रहा है कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल असम में मुस्लिम सीटों पर जीत रही है, और हिंदू बहुल सीटों पर जहां वो हिंदू उम्मीदवार उतार रहे हैं वहां पर उनके जीत की संभावनाएं कम हो रही हैं, और बीजेपी इसका पूरा फायदा उठाते हुए मुस्लिम लीग होने का आरोप लगा रही है। जैसे पश्चिम बंगाल में 2 सीटों पर कांग्रेस जीती जिनमें फरक्का सीट पर 67% मुस्लिम है, यहां हिंदू अल्पसंख्यक है, और दूसरी सीट है रानीनगर जहां 80% मुस्लिम है और यहां भी हिंदू अल्पसंख्यक है। इसी तरह असम को भी देखिए, असम में कांग्रेस के 18, बाकी विपक्षी दलों के 4 मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं, कुल संख्या 22 होती है। अब आंकड़े बताते हैं कि इन 22 में से 5 सीटों पर मुस्लिम आबादी 90% से ज्यादा है, 6 सीटों पर 80% से ज्यादा है, 8 सीटों पर 60% से ज्यादा है, यानी 22 में से 19 सीटें ऐसी हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक है। अब ये आंकड़े अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहे हैं और इसके बाद ज्यादा कहने की जरूरत नहीं।
1: देखो दूसरे के लिए जो कुआं खोदता है, दूसरे के लिए जो कुआं खोदता है उनके सामने कुआं है। कांग्रेस ने यूडीएफ को शेष करने के लिए कुआं खोदा, उसी में खुद कांग्रेस को गिर गया और कांग्रेस खत्म हो गया असम से। कांग्रेस मुस्लिम लीग हो गया, इसका हमको दुख है।
2: दोनों को
1: हार गया, बहुत बहुत मुबारक।
3: आजादी के बाद जो कांग्रेस थी उसके बाद नेहरू खानदान ने उसे खानदानी पार्टी बनाया, अब राहुल गांधी ने इसे मुस्लिम लीग पार्टी कांग्रेस बना दिया।
4: देखिए हम तो सही बोलते हैं, मीडिया ने कांग्रेस को जिंदा करके रखा था, कांग्रेस था ही नहीं, जो था कांग्रेस में मुस्लिम लीग एलिमेंट जो था वही केवल बचा हुआ है। और अभी आप देख लीजिए जो लोग जीत के आए हैं इससे कांग्रेस अब मुस्लिम लीग बन गया है असम में।
5: कांग्रेस एक भी नहीं है वहाँ भी, वो मुस्लिम लीग के साथ है। कांग्रेस अकेली वहाँ पर भी नहीं, केरलम में भी कांग्रेस मुस्लिम लीग के सहारे है। कांग्रेस का इतिहास मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने का रहा है, आज केरलम में भी वो मुस्लिम लीग की बैसाखियों पर खड़े हैं।
0: एक तरफ कांग्रेस और विपक्ष के मुस्लिम विधायकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है तो दूसरी तरफ देश में मुस्लिम विधायकों की संख्या तेजी से घट रही है। अब इन आंकड़ों को भी आप जरा देख लीजिए। साल 2013 में जब भारत में यूपीए की सरकार थी तब पूरे देश में सबसे ज्यादा 339 विधायक थे। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उस वक्त 14 राज्यों में कांग्रेस और सहयोगी दलों की सरकारें थी जबकि बीजेपी और उनके सहयोगी दलों की सरकारें सिर्फ 6 राज्यों में मौजूद थी। अब आज देश में एनडीए सरकार की सरकार है और पूरे देश में मुस्लिम विधायकों की संख्या 339 से घटकर 255 रह गई है। जिस उत्तर प्रदेश में 2013 में 63 मुस्लिम विधायक होते थे आज उसके आधे 31 मुस्लिम विधायक हैं। पश्चिम बंगाल में 59 मुस्लिम विधायक हुआ करते थे आज 37 मुस्लिम विधायक हैं। बिहार में 19 मुस्लिम विधायक होते थे आज 11 मुस्लिम विधायक है। राजस्थान में 11 मुस्लिम विधायक होते थे आज 6 हैं। 2026 में कुल 7 राज्य ऐसे हैं जहां एक भी मुस्लिम विधायक नहीं है। इनमें 4 राज्य तो उत्तर पूर्व के हैं जिनमें अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम है जबकि छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश में भी इस वक्त एक भी मुस्लिम विधायक नहीं है। इन 7 में से 6 राज्यों में एनडीए की सरकार है जबकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। इस वक्त भारत के कुल 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सरकारें हैं। यानी देश के 76% भूभाग, 78% आबादी पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सरकारों का शासन है लेकिन फिर भी पूरे भारत में बीजेपी के सिर्फ 2 ही मुस्लिम विधायक हैं। इनमें एक मुस्लिम विधायक त्रिपुरा में है और दूसरा मणिपुर में। इसका मतलब यह हुआ कि पूरे देश में बीजेपी के जो 1,811 विधायक हैं उनमें सिर्फ 0.11 यानी सिर्फ 2 विधायक मुस्लिम समुदाय से हैं और ये आंकड़े भी एक अलग कहानी को ही बयां करते हैं। अब हम आपको उस भारत विरोधी कट्टरपंथी गैंग के बारे में बताना चाहते हैं जिसने पश्चिम बंगाल की धरती पर अलगाववाद के विचारों को अंकुरित करना शुरू किया है। ये तस्वीरें आप सबको याद होंगी जब बांग्लादेश में हिंसक छात्रों के एक समूह ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट किया था। इस आंदोलन के बाद बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी छात्रों का एक संगठन बना जिसे जुलाई जोधा संसद कहा गया लेकिन अब बांग्लादेश का यही संगठन पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद ममता बनर्जी से यह अपील कर रहा है कि वो इन चीजों को स्वीकार करने से इनकार कर दे और पश्चिम बंगाल को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दे। सोचिए जिस बांग्लादेश का निर्माण भारत की मदद से हुआ उसी बांग्लादेश की धरती से भारत को तोड़ने की खतरनाक साजिश रची जा रही है और उस साजिश के पीछे वही कट्टरपंथी हैं जिन्होंने शेख हसीना की सरकार को गिराया था। सुनिए।
2: सम्मानित मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री पद থেকে পদত্যাগ না করার এবং ভোট চোর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবাজ বিজেপির নেতাদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার সাহসী সিদ্ধান্তকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। আর একটু সাহসী ভূমিকা নিয়ে বিজাতীয় দিল্লির শাসনকে প্রত্যাখ্যান করুন এবং পশ্চিম বাংলাকে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা দিন। আমাদের বাংলাদেশের স্বাধীনতায় যেভাবে আপনারা সহযোগিতা করেছিলেন সেই সহযোগিতার কথা আমরা ভুলি নাই। আমরা 17 কোটি মানুষ আপনাদের সহযোগিতা দেব, সমর্থন দেব, সার্বিক সহযোগিতা দেব। আপনি সাহস করে স্বাধীনতার ঘোষণা দিন, পশ্চিম বাংলাকে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা দিন। আপনার পাশে বাংলাদেশ আছে এবং থাকবে। আমরা চাই এই বিজেপির শাসন থেকে, এই দিল্লির আধিপত্য থেকে প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি রাজ্য মুক্ত হোক এবং নিজের স্বকীয়তা স্বাধীনতা নিয়ে তারা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত হোক। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আপনাদের আমরা স্বীকৃতি দিচ্ছি এবং আপনাদের আবারও পাশে থাকার আশ্বাস দিচ্ছি।
0: ये सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि ये भारत के खिलाफ वैचारिक मिलावट है जिसमें पाकिस्तान से लेकर खालिस्तान तक सबके हाथ सने हुए हैं। आप याद कीजिए, फरवरी 2021 में खालिस्तानी आतंकवादी गुरवंत सिंह पन्नू ने ममता बनर्जी और महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इसी तरह की चिट्ठी लिखी थी और इस चिट्ठी में उसने कहा था कि ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे के लिए भारत में कुछ नहीं बचा है, उन्हें तुरंत अपने राज्यों को भारत से तोड़कर अलग देश बना लेना चाहिए और अगर ये दोनों नेता ऐसा करते हैं तो ये खालिस्तानी उनके देशों को दुनिया में मान्यता दिलाने की कोशिश करेगा। सोचने वाली बात यह है कि जो बात पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले गुरवंत सिंह पन्नू ने 2021 में कही थी, वही बात आज 2026 में शब्दशः बांग्लादेश में बैठा एक ऐसा कट्टरपंथी बोल रहा है जो हिंसा के जरिए बांग्लादेश में तख्ता पलट कर आ चुका है। हैरानी की बात यह है कि भारत में चुनाव सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं हुए हैं और सत्तारूढ़ पार्टी सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं हारी है, केरलम में भी सत्तारूढ़ लेफ्ट की हार हुई, वहां कांग्रेस गठबंधन को जीत मिली और इसी तरह तमिलनाडु में भी सत्तारूढ़ डीएमके की हार हुई और वहां भी चुनाव कराए गए हैं और विजय सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे 108 सीटों के साथ। लेकिन इन कट्टरपंथियों का निशाना सिर्फ पश्चिम बंगाल है और इसीलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सबसे पहला काम यह करेगी, वो घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए पहले बॉर्डर फेंसिंग करेगी और फिर घुसपैठियों को निकाला जाएगा। और घुसपैठिए आए कहां से है? बांग्लादेश से, जो पश्चिम बंगाल को भारत से तोड़ने की बातें कर रहा है। अब बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद को सुनिए जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी को पश्चिम बंगाल के अवैध प्रवासी वापस बांग्लादेश नहीं भेजने चाहिए। यानी अभी तो सरकार भी नहीं बनी और घुसपैठियों की वापसी से बांग्लादेश अभी से खौफ में चला गया है और इसके पीछे कारण क्या है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये सुनिए।
6: गतकाल के আমাদের বর্ডার গার্ড বাহিনী বিজিবি কে আমরা নির্দেশ দিয়েছি যাতে বর্ডার গুলোতে তারা একটু অ্যালার্ট থাকে, কারণ সেই রকমের সম্ভাবনা দেখি না, যদি হয় যাতে অ্যাড্রেস করতে পারে সেই জন্য আমরা আগে থেকে সতর্কতা অবলম্বন করেছি। তবে আমার মনে হয় সেরকম কোনো ঘটনা ঘটবে না।
0: अब आप इन आंकड़ों को देखिए। साल 2016 में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में बताया था कि भारत में घुसपैठियों की संख्या है 2 करोड़ या उससे ज्यादा। इनमें भी ज्यादातर घुसपैठिए बांग्लादेश के हो सकते हैं और चिंता की बात यह है कि बांग्लादेश के घुसपैठिए जिन राज्यों में भारत में आते हैं उनमें पश्चिम बंगाल सबसे ऊपर है। बीएसएफ के मुताबिक साल 2017 से 21 के बीच 84% घुसपैठिए अकेले पश्चिम बंगाल की सीमा पर गिरफ्तार हुए। इनमें भी जिन जिलों में सबसे ज्यादा घुसपैठ हुई थी उनमें मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना का नाम सबसे ऊपर था। ये वही जिले हैं जहां पहली बार बांग्लादेश से लगी कुछ सीटों पर बीजेपी भी जीती थी और यही बात घुसपैठियों और बांग्लादेश में उनके आकाओं को परेशान कर रही है। वो ममता बनर्जी से ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल को अलग देश बना दो। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और अगर आपको लग रहा है कि दुनिया आपके बिना नहीं चलेगी तो एक बार मोबाइल फोन का एयरप्लेन मोड ऑन करके देख लीजिए।

0: तेल संकट से बचने के लिए पीएम मोदी की देशवासियों से अपील, कहा विदेशी मुद्रा बचाना भी देशभक्ति, एक साल तक ना खरीदें सोना, पेट्रोल डीजल का कम करें इस्तेमाल, फॉरेन टूर से भी बचें। यूपी में 2027 का चुनावी समीकरण साधने के लिए योगी कैबिनेट का विस्तार, भूपेंद्र चौधरी मनोज पांडे समेत 6 नए चेहरे, 2 राज्य मंत्री अजीत पाल सोमेंद्र तोमर को मिला स्वतंत्र प्रभार। तमिलनाडु का सीएम बनते ही एक्शन में विजय, 200 यूनिट बिजली फ्री, महिला सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स का ऐलान, कहा डीएमके ने छोड़ा 10 लाख करोड़ का कर्ज। असम में 12 मई को हेमंता फिर लेंगे सीएम पद की शपथ, उससे पहले कहा 2021 से 26 सिर्फ ट्रेलर, 2031 तक दिखाऊंगा पूरी पिक्चर। भीषण गर्मी और बाढ़ से निपटने के लिए दिल्ली में अमित शाह की उच्च स्तरीय बैठक, अलर्ट सिस्टम को मजबूत करने पर जोर, मेडिकल तैयारियों की भी समीक्षा। वैश्विक संकट के बीच में हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से एक साल तक सोने की खरीद न करने की अपील की है। पीएम ने कहा कि वैश्विक संकट है, इस बीच में विदेशी मुद्रा भंडार बचाने पर जोर देना होगा। पीएम ने यह भी कहा कि हमें तेल बचाने पर भी जोर देना होगा।
1: आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है, तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं। जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है, हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। भारत में बहुत सारी जगह है, वहां जा सकते हैं, बहुत कुछ भारत में किया जा सकता है। साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। साथियों, ये समय एक और बड़े सबक का भी है। एक समय था जब हम कॉपर एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन आज भारत के सामने स्थिति ऐसी बन गई कि अब हमें कॉपर को भी इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारे देश में हड़तालें करवाकर कॉपर प्लांट्स को ठप करवा दिया गया और अब हालत ये हो गई कि हमें कॉपर बाहर से मंगाना पड़ता है और उसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती है। इसलिए मैं ऐसे सभी श्रमिक मजदूर संगठनों से भी कहूंगा कि हमें ऐसी बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। भारत को आत्मनिर्भर बनने से जो भी कदम रोकते हैं उनमें हमें दूरी बनानी होगी। साथियों, ऐसे ही खाने के तेल का भी है, इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने के तेल में खाने का तेल का जो उपयोग करता है अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो, अगर हम तेल खाना कम करें ना तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी। इससे देश के खजाने का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। साथियों, विदेशी मुद्रा की खपत वाला एक और सेक्टर हमारी खेती है। हम बहुत बड़ी मात्रा में बाहर से केमिकल फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर खेती के कारण हमारी धरती मां को बहुत पीड़ा हो रही है, हमारे खेत बर्बाद हो रहे हैं। अगर आज हम अपने खेत को नहीं बचाएंगे तो भविष्य में फसलों पर भी खतरा आ जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की खपत 25%, 30%, 40%, 50% उसको घटाएं, आधी कर दें और हम उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़े। हम फर्टिलाइजर का उपयोग कम करके विदेशी मुद्रा भी बचा सकते हैं और साथ साथ अपने खेत को बचा सकते हैं, हमारी ये धरती मां को बचा सकते हैं।
0: पीएम मोदी तेलंगाना के दौरे पर थे और एक कार्यक्रम के दौरान वहीं पर सीएम रेवंत रेड्डी भी मौजूद थे। पहले बोलते हुए सीएम रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में विकास का मुद्दा उठाया और इशारों में पीएम मोदी से केंद्र से मिलने वाली सहायता पर बात की और उसका जवाब बाद में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में अपने अंदाज में दिया, जिसे वहां पर हंसी की लहर दौड़ गई। पहले आपको सुनाते हैं सीएम रेवंत रेड्डी का भाषण का वो हिस्सा जिस पर पीएम ने बाद में जवाब दिया।
2: जब मोदी जी देश का प्रधानमंत्री है, लोग मेरे ऊपर उम्मीद रखा है आने वाले 10 साल में तेलंगाना मॉडल बना के 2034 $1 trillion इकोनॉमी रीच करने के लिए लोग उम्मीद रखा है। तो 2034 $1 trillion इकोनॉमी अगर तेलंगाना रीच हो गए तो 2047 तक हम लोग $3 trillion इकोनॉमी आसानी से हम पहुंच जाएंगे। इसके लिए जैसा मनमोहन सिंह जी मोदी जी को साथ दिए एज ए प्रधानमंत्री, आज हम 4 करोड़ तेलंगाना जनता के तरफ से मेरा गुजारिश है, मेरा रिक्वेस्ट है मोदी जी से, आप भी उतना ही आशीर्वाद ही तेलंगाना राज्य पे रहना है, तब हम तरक्की कर सकते।
0: अब सुनिए सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी का हाजिर जवाब, जिसे सुनकर वहां पर ठहाके लगने लगे।
1: मैं रेवंत जी से कहूंगा कि 10 साल के शासन में भारत सरकार ने जितना गुजरात को दिया वो मैं आपको देने को तैयार हूं। लेकिन मेरी जानकारी से मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही मैं ऐसा करूंगा आपको जो अभी मिल रहा है वो आधा हो जाएगा। आप जहां पहुंचना चाहते हैं नहीं पहुंच पाएंगे, और इसलिए अच्छा है कि मेरे से ही जोड़ो।
0: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 27 का शंखनाद कर दिया है। योगी सरकार का दूसरा कैबिनेट विस्तार हुआ। इस विस्तार में 2 मंत्रियों को प्रमोशन दिया गया जबकि 6 नए चेहरों को मंत्री बनाया गया।
3: मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं।
4: मैं मनोज कुमार पांडे।
5: मैं अजय सिंह पाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ।
6: सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
7: मैं भारत की प्रभुता और अखंडता रखूं।
8: ये सिर्फ कैबिनेट विस्तार नहीं, यूपी में 2027 की चुनावी पटकथा का पहला बड़ा अध्याय है। योगी कैबिनेट विस्तार में सबसे बड़ा फोकस रहा जाति और क्षेत्रीय संतुलन।
9: सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
8: लखनऊ में 6 नए मंत्रियों के साथ 2 मंत्रियों का प्रमोशन हुआ। इस तरह योगी सरकार में 8 मंत्रियों ने शपथ ली। यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट विस्तार में जगह दी गई है। पश्चिमी यूपी का अहम जाट चेहरा है भूपेंद्र चौधरी। रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे योगी सरकार में मंत्री बन गए हैं। यूपी में मनोज पांडे बड़े ब्राह्मण चेहरों में से एक है। 2024 में समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर मनोज पांडे योगी सरकार में शामिल हुए थे।
10: मैं कृष्णा पासवान ईश्वर।
8: यूपी की खागा सीट से कृष्णा पासवान मंत्री बने। चौथी बार की विधायक कृष्णा पासवान पासी समुदाय की नेता है। लोधी समुदाय से आने वाले कैलाश राजपूत को भी मंत्री बनाया गया है। कन्नौज के तिरवा से बीजेपी विधायक कैलाश राजपूत की ओबीसी में अच्छी पकड़ है।
11: सुरेंद्र दिलेर।
8: अलीगढ़ की खैर सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर को भी मंत्री बनाया गया है। एससी समुदाय के बड़े नेता है सुरेंद्र दिलेर। यूपी विधान परिषद के सदस्य हंसराज विश्वकर्मा भी मंत्री बन गए हैं। पिछड़े समाज के नेता के रूप में हंसराज विश्वकर्मा की धमक है।
12: मैं निश्चित रूप से जो अपेक्षाएं हैं नेतृत्व की, अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जो भी काम मिलेगा, जो विभाग मिलेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए, विकास के लिए काम करेंगे।
13: मेरा ये संकल्प होगा कि जो जिम्मेदारी पार्टी ने और सरकार में हमें दी है उसका पूरा हम लोग पालन करेंगे। पूरी मेहनत से, निष्ठा से उन रास्तों पर आगे चलेंगे और आगे बढ़ेंगे और जनता के काम करेंगे।
14: इतना अच्छा दिन है आज, भारतीय जनता पार्टी मातृ डे है और मातृ डे में आज मुझे शपथ दिलाई है। तो आप जानते हो कि महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति कितना ज्यादा संवेदनशील है भारत।
15: जो जिम्मेदारी मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, मोदी जी ने, योगी जी ने दी है, उसको अच्छे से निर्वहन करने का पूरा प्रयास करूंगा और अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाऊंगा।
8: उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर कैबिनेट विस्तार सिर्फ शपथ नहीं होता, आने वाले चुनावों के संकेत भी होते हैं। इस संकेत को साफ साफ पढ़ा जा सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार में 2 मंत्रियों को प्रमोट किया गया है। मेरठ दक्षिण से विधायक सोमेंद्र तोमर का इस मंत्रिमंडल विस्तार में प्रमोशन हुआ है। योगी कैबिनेट में सोमेंद्र तोमर का कद बढ़ा है। सोमेंद्र तोमर को बीजेपी का मजबूत गुर्जर चेहरा माना जाता है। योगी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री अजीत पाल का भी मंत्रिमंडल विस्तार में प्रमोशन हुआ है। कानपुर देहात की सिकंदरा सीट से अजीत सिंह पाल विधायक हैं। ये पाल समुदाय के बड़े नेता हैं। योगी सरकार ने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए यूपी की सियासत बदल दी है। ब्राह्मण प्लस ओबीसी प्लस दलित, यानी एक ब्राह्मण 2 दलित 5 ओबीसी, यानी एक तीर से कई निशाने।
16: वो जिम्मेवारी मिलेगी, अभी संगठन का काम कर रहा था, एमएलसी का काम कर रहा था, अब सरकार के मंत्री के रूप में जो काम मिलेगा निश्चित तौर पर एक संगठन सेवा है हमारा, और वो तो ये है, सरकार का जो काम मिलेगा उसको जितना सच्चा सच्चा उसको किया।
8: राजनीति में कुर्सियां सिर्फ नेताओं को नहीं मिलती, उनके पीछे खड़े समाज को संदेश मिलता है। इसी को ध्यान में रखकर योगी मंत्रिमंडल के विस्तार से बीजेपी ने भविष्य की सत्ता की रणनीति बनाई है। फोकस 2027 विधानसभा चुनाव। टारगेट ओबीसी प्लस दलित प्लस ब्राह्मण, इनमें सवर्ण भी शामिल है। पश्चिमी यूपी को प्रतिनिधित्व मिला है। पूर्वांचल में विशेष फोकस किया गया है। महिला चेहरा को शामिल किया गया है। समाजवादी पार्टी के बागियों को साधा गया है। पीडीएफ फॉर्मूले की काट का प्लान बनाया गया है। गैर यादव ओबीसी पर नजर रखी गई है। गैर जाट और दलित वोट साधने की कोशिश हुई है। बूथ से लेकर बिरादरी तक पकड़ बनाने की कोशिश हुई है। यूपी में पश्चिम से पूर्वांचल तक योगी का बैलेंस गेम दिखता है। गुर्जर, पाल, पिछड़ा, दलित, ब्राह्मण, हर क्षेत्र, हर जाति, हर समीकरण का ध्यान रखा गया है। या यूं कहें कि समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले के जवाब में बीजेपी ने सत्ता का नया सामाजिक गणित सामने रख दिया है। राजनीति सिर्फ सत्ता चलाने की कला नहीं है, समाज के मन को पढ़ने का विज्ञान भी है। और उत्तर प्रदेश में जिसने जाति, क्षेत्र और भावनाओं का संतुलन साध लिया, दिल्ली का रास्ता अक्सर उसी के लिए आसान हो जाता है। 2027 अभी दूर है, लेकिन उसकी आहट लखनऊ के सत्ता गलियारों में आज साफ सुनाई दे रही है।
11: 2024 का सबक हो या फिर ये पीडीए का असर, इतना है कि इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में दलितों, ओबीसी और ब्राह्मणों को ही तवज्जो दी गई है। और जो नया आंकड़ा है वो दिखाता है कि किस तरीके से 2024 में मुंह खा चुकी बीजेपी 2027 में कोई भी मौका देने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि आज के इस मंत्रिमंडल विस्तार में 6 में से 5 मंत्री ओबीसी और दलित बिरादरी से हैं। ब्राह्मणों को भी खुश करने की ये कोशिश। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
0: तमिलनाडु में रविवार का दिन बेहद खास रहा, क्योंकि तमिलनाडु को जो है उन्होंने अपना सीएम चुना। तमिलनाडु की सियासत में थलापति विजय ने इतिहास रच दिया और पहली बार ही चुनावी रण में उतरने वाले जोसेफ विजय अब तमिलनाडु के थलापति हैं, मुख्यमंत्री हैं।
8: तमिलनाडु में शुरू हो गया है विजय राज। थलापति विजय अब रचेंगे तमिलनाडु का मुस्तकबिल।
17: There are so many jackals and other animals in the forest, but there will be only one lion. And even if it is single, it will be the king of jungle. It is not only a description, but also a clear declaration.
8: वो विजय जो अब तक रियल लाइफ के हीरो थे, अब रियल लाइफ के हीरो बन गए हैं। तमिलनाडु की जनता ने दिल खोल कर उनका साथ दिया है, उन पर भरोसा किया है। और अब उस भरोसे पर खरे उतरने की जिम्मेदारी विजय की है। शपथ लेने के तुरंत बाद विजय ने अपने दो सबसे बड़े चुनावी वादे को पूरा कर दिया। इससे राज्य की जनता चहक उठी। विजय ने शपथ स्थल से अपनी सरकार के पहले बड़े फैसलों में से एक के तौर पर 200 यूनिट मुफ्त बिजली और सिंगापुर स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का ऐलान कर दिया। विजय के दिल में क्या था वो अपनी फिल्म के जरिए ये बताते रहे हैं, जताते रहे हैं कि क्यों वो तमिलनाडु की सियासत में घुसे हैं। तमिलनाडु में पिछले 59 साल 1 महीने और 28 दिनों तक सिर्फ दो ही पार्टियों का राज था। तमिलनाडु में पिछले 21,608 से सिर्फ दो ही पार्टियां शासन करती थी, डीएमके और एडीएमके। बीच बीच में तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन भी रहा, लेकिन दोनों पार्टियों के अलावा किसी तीसरे की एंट्री नहीं हो पाई। लेकिन अब इन दोनों पार्टियों के राज को 59 साल के बाद थलापति विजय की टीवीके ने ध्वस्त कर दिया है।

विजय ने वो करके दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। किसने सोचा था कि सिर्फ 2 साल में ऐसा कमाल दिखाएंगे कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन जाएंगे।

मौजूदा विजय मौजूदा वक्त में तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। विजय के पास पैसा, स्टारडम, फैन फॉलोइंग सब कुछ था। वो चाहते तो आराम से सुपरस्टार बने रह सकते हैं, लेकिन उन्होंने राजनीति का रास्ता चुना। ...2016 में जयललिता की मौत के बाद से तमिलनाडु की राजनीति में एक शून्य था, एक खालीपन था। डीएमके के सामने तो जैसे कि खुला हुआ रास्ता था, दूर दूर तक कोई भी टक्कर में नहीं था। इसीलिए 2021 में स्टालिन मुख्यमंत्री बने तो सबको लगा कि स्टालिन को कौन टक्कर देगा। इसीलिए ज्यादातर एग्जिट पोल में उनकी जीत बताई जा रही थी। लेकिन वो विजय ही थे जिन्होंने जयललिता की मौत से खाली हुई तमिलनाडु की राजनीति के शून्य को भर दिया। उनकी रैलियों की भीड़ बता तो रही थी कि तमिलनाडु में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन शायद किसी को ये अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ भीड़ नहीं है, उनके मतदाता भी हैं। और विजय के इन फैंस ने ये साबित कर दिया कि वो रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए नहीं जमा हुए थे, वो तमिलनाडु को बदलने के लिए आए थे। तमिलनाडु में थलापति विजय ने इतिहास तो रचा है, लेकिन उनको ये कामयाबी इसलिए मिली क्योंकि तमिलनाडु के लोगों को उनके अंदर एक ऐसा नायक नजर आया जो उनके राज्य को आगे ले जा सकता है। विजय की इस जीत के पीछे उनके वो फैंस थे जो उन्हें किसी भी हद तक फॉलो करते हैं। विजय ने अपने फैन क्लब को वेलफेयर नेटवर्क में बदला, लोगों की मद, युवाओं के कनेक्शन और जमीनी पकड़ मजबूत की और टीवीके के अपने वोटर तैयार किए। तमिलनाडु में विजय के 85,000 से ज्यादा फैन क्लब का नेटवर्क है जिन्होंने उनकी जीत में अहम भूमिका निभाई। उनका ये नेटवर्क पिछले 10 वर्षों से उनकी शैडो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में ही काम कर रहे थे। विजय के ये फैन क्लब पूरे तमिलनाडु में सामाजिक काम कर रहे थे, लोगों को विजय से जोड़ रहे थे। विजय आर्मी पिछले कई वर्षों से तमिलनाडु की गलियों में दिख रही थी। विजय की जीत की सबसे बड़ी वजह है उनकी लोकप्रियता। विजय भले ही 51 साल के हों, लेकिन उन्हें युवाओं का जेंजी नेता कहा जाता है। तमिलनाडु में 40 से कम उम्र के युवाओं की संख्या 2 करोड़ है, जो तमिलनाडु के करीब 41.5% वोटर होते हैं। विजय का यही

0: गठबंधन का सहारा नहीं लिया, न डीएमके, न एडीएमके, न बीजेपी, सीधे जनता के बीच गए। मुद्दे थे रोजगार, शिक्षा, भ्रष्टाचार और बदलाव, और नतीजा ये कि टीवी के सबको चौंकाते हुए आज अपनी सरकार बना चुकी है और मुख्यमंत्री बन गए हैं थालापति विजय। चेन्नई से अक्षिता नंद गोपाल के साथ आज तक ब्यूरो।
1: तमिलनाडु में थलापति विजय ने जो करिश्मा कर दिखाया है उसकी उम्मीद लोगों ने नहीं की थी। किसी को भी नहीं मालूम था कि पहली बार ही चुनाव में उतरने वाले विजय राज्य के मुख्यमंत्री बन जाएंगे।
2: जोसेफ विजय यनुमनान।
0: तमिलनाडु में शुरू हो गया है विजय राज। थलापति विजय अब रचेंगे तमिलनाडु का मुस्तकबिल।
2: There are so many jackals and other animals in the forest, but there will be only one lion. And even if it is single, it will be the king of jungle. It is not only a description, but also a clear declaration.
0: वो विजय जो अब तक रियल लाइफ के हीरो थे, अब रियल लाइफ के हीरो बन गए हैं। तमिलनाडु की जनता ने दिल खोल कर उनका साथ दिया है, उन पर भरोसा किया है। और अब उस भरोसे पर खरे उतरने की जिम्मेदारी विजय की है। शपथ लेने के तुरंत बाद विजय ने अपने दो सबसे बड़े चुनावी वादे को पूरा कर दिया। इससे राज्य की जनता चहक उठी। विजय ने शपथ स्थल से अपनी सरकार के पहले बड़े फैसलों में से एक के तौर पर 200 यूनिट मुफ्त बिजली और सिंगापुर स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का ऐलान कर दिया। विजय के दिल में क्या था वो अपनी फिल्म के जरिए ये बताते रहे हैं, जताते रहे हैं कि क्यों वो तमिलनाडु की सियासत में घुसे हैं। तमिलनाडु में पिछले 59 साल 1 महीने और 28 दिनों तक सिर्फ दो ही पार्टियों का राज था। तमिलनाडु में पिछले 21,608 से सिर्फ दो ही पार्टियां शासन करती थी, डीएमके और एडीएमके। बीच बीच में तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन भी रहा, लेकिन दोनों पार्टियों के अलावा किसी तीसरे की एंट्री नहीं हो पाई। लेकिन अब इन दोनों पार्टियों के राज को 59 साल के बाद थलापति विजय की टीवीके ने ध्वस्त कर दिया है।

विजय ने वो करके दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। किसने सोचा था कि सिर्फ 2 साल में ऐसा कमाल दिखाएंगे कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन जाएंगे।

0: अदेन्ना वंदा।
1: विजय मौजूदा वक्त में तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। विजय के पास पैसा, स्टारडम, फैन फॉलोइंग सब कुछ था। वो चाहते तो आराम से सुपरस्टार बने रह सकते हैं, लेकिन उन्होंने राजनीति का रास्ता चुना। ...2016 में जयललिता की मौत के बाद से तमिलनाडु की राजनीति में एक शून्य था, एक खालीपन था। डीएमके के सामने तो जैसे कि खुला हुआ रास्ता था, दूर दूर तक कोई भी टक्कर में नहीं था। इसीलिए 2021 में स्टालिन मुख्यमंत्री बने तो सबको लगा कि स्टालिन को कौन टक्कर देगा। इसीलिए ज्यादातर एग्जिट पोल में उनकी जीत बताई जा रही थी। लेकिन वो विजय ही थे जिन्होंने जयललिता की मौत से खाली हुई तमिलनाडु की राजनीति के शून्य को भर दिया। उनकी रैलियों की भीड़ बता तो रही थी कि तमिलनाडु में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन शायद किसी को ये अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ भीड़ नहीं है, उनके मतदाता भी हैं। और विजय के इन फैंस ने ये साबित कर दिया कि वो रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए नहीं जमा हुए थे, वो तमिलनाडु को बदलने के लिए आए थे। तमिलनाडु में थलापति विजय ने इतिहास तो रचा है, लेकिन उनको ये कामयाबी इसलिए मिली क्योंकि तमिलनाडु के लोगों को उनके अंदर एक ऐसा नायक नजर आया जो उनके राज्य को आगे ले जा सकता है। विजय की जीत के पीछे उनके वो फैंस थे जो उन्हें किसी भी हद तक फॉलो करते हैं। विजय ने अपने फैन क्लब को वेलफेयर नेटवर्क में बदला, लोगों की

0: मद, युवाओं के कनेक्शन और जमीनी पकड़ मजबूत की और टीवीके के अपने वोटर तैयार किए। तमिलनाडु में विजय के 85,000 से ज्यादा फैन क्लब का नेटवर्क है जिन्होंने उनकी जीत में अहम भूमिका निभाई। उनका ये नेटवर्क पिछले 10 वर्षों से उनकी शैडो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में ही काम कर रहे थे। विजय के ये फैन क्लब पूरे तमिलनाडु में सामाजिक काम कर रहे थे, लोगों को विजय से जोड़ रहे थे। विजय आर्मी पिछले कई वर्षों से तमिलनाडु की गलियों में दिख रही थी। विजय की जीत की सबसे बड़ी वजह है उनकी लोकप्रियता। विजय भले ही 51 साल के हों लेकिन उन्हें युवाओं का जेंजी नेता कहा जाता है। तमिलनाडु में 40 से कम उम्र के युवाओं की संख्या 2 करोड़ है जो तमिलनाडु के करीब 41.5% वोटर होते हैं। विजय का यही युवा कैडर सोशल मीडिया पर भी एक्टिव था जिन्होंने तमिलनाडु में विजय के पक्ष में हवा बनाई। विजय ने किसी बड़े गठबंधन का सहारा नहीं लिया, न डीएमके, न एडीएमके, न बीजेपी, सीधे जनता के बीच गए। मुद्दे थे रोजगार, शिक्षा, भ्रष्टाचार और बदलाव, और नतीजा ये कि टीवीके सबको चौंकाते हुए आज अपनी सरकार बना चुकी है और मुख्यमंत्री बन गए हैं थालापति विजय। चेन्नई से अक्षिता नंदगोपाल के साथ आज तक ब्यूरो।
1: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

0: तेल संकट से बचने के लिए पीएम मोदी की देशवासियों से अपील, कहा विदेशी मुद्रा बचाना भी देशभक्ति। एक साल तक ना खरीदें सोना, पेट्रोल डीजल का कम करें इस्तेमाल, फॉरेन टूर से भी बचें। यूपी में 2027 का चुनावी समीकरण साधने के लिए योगी कैबिनेट का विस्तार, भूपेंद्र चौधरी मनोज पांडे समेत 6 नए चेहरे। दो राज्य मंत्री अजीत पाल सोमेंद्र तोमर को मिला स्वतंत्र प्रभार। तमिलनाडु का सीएम बनते ही एक्शन में विजय, 200 यूनिट बिजली फ्री, महिला सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स का ऐलान, कहा डीएमके ने छोड़ा 10 लाख करोड़ का खर्च। असम में 12 मई को हेमंता फिर लेंगे सीएम पद की शपथ, उससे पहले कहा 2021 से 26 सिर्फ ट्रेलर, 2031 तक दिखाऊंगा पूरी पिक्चर। भीषण गर्मी और बाढ़ से निपटने के लिए दिल्ली में अमित शाह की उच्च स्तरीय बैठक, अलर्ट सिस्टम को मजबूत करने पर जोर, मेडिकल तैयारियों की भी समीक्षा। वैश्विक संकट के बीच में हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से एक साल तक सोने की खरीद न करने की अपील की है। पीएम ने कहा कि वैश्विक संकट है, इस बीच में विदेशी मुद्रा भंडार बचाने पर जोर देना होगा। पीएम ने यह भी कहा कि हमें तेल बचाने पर भी जोर देना होगा।
1: आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है, तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं। जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है, हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। भारत में बहुत सारी जगह है, वहां हम जा सकते हैं, बहुत कुछ भारत में किया जा सकता है। साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। साथियों, ये समय एक और बड़े सबक का भी है। एक समय था जब हम कॉपर एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन आज भारत के सामने स्थिति ऐसी बन गई कि अब हमें कॉपर को भी इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारे देश में हड़तालें करवाकर कॉपर प्लांट्स को ठप करवा दिया गया और अब हालत ये हो गई कि हमें कॉपर बाहर से मंगाना पड़ता है और उसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती है। इसलिए मैं ऐसे सभी श्रमिक समूह मजदूर संगठनों से भी कहूंगा कि हमें ऐसी बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। भारत को आत्मनिर्भर बनने से जो भी कदम रोकते हैं उनमें हमें दूरी बनानी होगी। साथियों, ऐसे ही खाने के तेल का भी है, इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने के तेल में खाने का तेल का जो उपयोग करता है अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो, अगर हम तेल खाना कम करें ना तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी। इससे देश के खजाने का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। साथियों, विदेशी मुद्रा की खपत वाला एक और सेक्टर हमारी खेती है। हम बहुत बड़ी मात्रा में बाहर से केमिकल फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर खेती के कारण हमारी धरती मां को बहुत पीड़ा हो रही है, हमारे खेत बर्बाद हो रहे हैं। अगर आज हम अपने खेत को नहीं बचाएंगे तो भविष्य में फसलों पर भी खतरा आ जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की खपत 25%, 30%, 40%, 50% उसको घटाएं, आधी कर दें और हम उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़े। हम फर्टिलाइजर का उपयोग कम करके विदेशी मुद्रा भी बचा सकते हैं और साथ साथ अपने खेत को बचा सकते हैं, हमारी ये धरती मां को बचा सकते हैं।
0: पीएम मोदी तेलंगाना के दौरे पर थे और एक कार्यक्रम के दौरान वहीं पर सीएम रेवंत रेड्डी भी मौजूद थे। पहले बोलते हुए सीएम रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में विकास का मुद्दा उठाया और इशारों में पीएम मोदी से केंद्र से मिलने वाली सहायता पर बात की और उसका जवाब बाद में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में अपने अंदाज में दिया, जिसे वहां पर हंसी की लहर दौड़ गई। पहले आपको सुनाते हैं सीएम रेवंत रेड्डी का भाषण का वो हिस्सा जिस पर पीएम ने बाद में जवाब दिया।
2: जब मोदी जी इस देश का प्रधानमंत्री है, लोग मेरे ऊपर उम्मीद रखा है आने वाले 10 साल में तेलंगाना मॉडल बना के 2034 $1 trillion इकोनॉमी रीच करने के लिए लोग उम्मीद रखा है। तो 2034 $1 trillion इकोनॉमी अगर तेलंगाना रीच हो गए तो 2047 तक हम लोग $3 trillion इकोनॉमी आसानी से हम पहुंच जाएंगे। इसके लिए जैसा मनमोहन सिंह जी मोदी जी को साथ दिए एज ए प्रधानमंत्री, आज हम 4 करोड़ तेलंगाना जनता के तरफ से मेरा गुजारिश है, मेरा रिक्वेस्ट है मोदी जी से, आप भी उतना ही आशीर्वाद ही तेलंगाना राज्य पे रहना है, तब हम तरक्की कर सकते।
0: अब सुनिए सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी का हाजिर जवाब, जिसे सुनकर वहां पर ठहाके लगने लगे।
1: मैं रेवंत जी से कहूंगा कि 10 साल के शासन में भारत सरकार ने जितना गुजरात को दिया वो मैं आपको देने को तैयार हूं। लेकिन मेरी जानकारी से मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही मैं ऐसा करूंगा आपको जो अभी मिल रहा है वो आधा हो जाएगा। आप जहां पहुंचना चाहते हैं नहीं पहुंच पाएंगे और इसलिए अच्छा है कि मेरे से ही जोड़ो।
0: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 27 का शंखनाद कर दिया है। योगी सरकार का दूसरा कैबिनेट विस्तार हुआ। इस विस्तार में 2 मंत्रियों को प्रमोशन दिया गया जबकि 6 नए चेहरों को मंत्री बनाया गया।
3: मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं।
4: मैं मनोज कुमार पांडे
5: मैं अजय सिंह पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं।
6: सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
7: मैं भारत की सत्ता और अखंडता अछूत।
8: ये सिर्फ कैबिनेट विस्तार नहीं, यूपी में 2027 की चुनावी पटकथा का पहला बड़ा अध्याय है। योगी कैबिनेट विस्तार में सबसे बड़ा फोकस रहा जाति और क्षेत्रीय संतुलन।
9: सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
8: लखनऊ में 6 नए मंत्रियों के साथ 2 मंत्रियों का प्रमोशन हुआ। इस तरह योगी सरकार में 8 मंत्रियों ने शपथ ली। यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट विस्तार में जगह दी गई है। पश्चिमी यूपी का अहम जाट चेहरा है भूपेंद्र चौधरी। रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे योगी सरकार में मंत्री बन गए हैं। यूपी में मनोज पांडे बड़े ब्राह्मण चेहरों में से एक है। 2024 में समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर मनोज पांडे योगी सरकार में शामिल हुए थे।
10: मैं कृष्णा पासवान
8: यूपी की खागा सीट से कृष्णा पासवान मंत्री बने। चौथी बार की विधायक कृष्णा पासवान पासी समुदाय की नेता है। लोधी समुदाय से आने वाले कैलाश राजपूत को भी मंत्री बनाया गया है। कन्नौज के तिरवा से बीजेपी विधायक कैलाश राजपूत की ओबीसी में अच्छी पकड़ है।
11: सुरेंद्र दिलेर
8: अलीगढ़ की खैर सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर को भी मंत्री बनाया गया है। एससी समुदाय के बड़े नेता है सुरेंद्र दिलेर। यूपी विधान परिषद के सदस्य हंसराज विश्वकर्मा भी मंत्री बन गए हैं। पिछड़े समाज के नेता के रूप में हंसराज विश्वकर्मा की धमक है।
12: मैं निश्चित रूप से जो अपेक्षाएं हैं नेतृत्व की अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जो भी काम मिलेगा जो विभाग मिलेगा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए विकास के लिए काम करेंगे।
13: मेरा यह संकल्प होगा कि जो जिम्मेदारी पार्टी ने और सरकार में हमें दी है उसका पूरा हम लोग पालन करेंगे। पूरी मेहनत से निष्ठा से उन रास्तों पर आगे चलेंगे और आगे बढ़ेंगे और जनता के काम करेंगे।
14: इतना अच्छा दिन है आज, भारतीय जनता पार्टी मातृ डे है और मातृ डे में आज मुझे शपथ दिलाई है। तो आप जानते हो कि महिलाओं के प्रति बच्चियों के प्रति कितना ज्यादा संवेदनशील है भारत।
15: जो जिम्मेदारी मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, मोदी जी ने, योगी जी ने दी है, उसको अच्छे से निर्वहन करने का पूरा प्रयास करूंगा और अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाऊंगा।
8: उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर कैबिनेट विस्तार सिर्फ शपथ नहीं होता, आने वाले चुनावों के संकेत भी होते हैं। इस संकेत को साफ साफ पढ़ा जा सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार में 2 मंत्रियों को प्रमोट किया गया है। मेरठ दक्षिण से विधायक सोमेंद्र तोमर का इस मंत्रिमंडल विस्तार में प्रमोशन हुआ है। योगी कैबिनेट में सोमेंद्र तोमर का कद बढ़ा है। सोमेंद्र तोमर को बीजेपी का मजबूत गुर्जर चेहरा माना जाता है। योगी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री अजीत पाल का भी मंत्रिमंडल विस्तार में प्रमोशन हुआ है। कानपुर देहात की सिकंदरा सीट से अजीत सिंह पाल विधायक हैं। ये पाल समुदाय के बड़े नेता हैं। योगी सरकार ने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए यूपी की सियासत बदल दी है। ब्राह्मण प्लस ओबीसी प्लस दलित, यानी एक ब्राह्मण 2 दलित 5 ओबीसी, यानी एक तीर से कई निशाने।
16: वो जिम्मेवारी मिलेगी, अभी संगठन का काम कर रहा था, एमएलसी का काम कर रहा था, अब सरकार के मंत्री के रूप में जो काम मिलेगा निश्चित तौर पर एक संगठन सेवा है हमारा, और वो तो ये है सरकार का जो काम मिलेगा उसको जितना सच्चा सच्चा उसको किया।
8: राजनीति में कुर्सियां सिर्फ नेताओं को नहीं मिलती, उनके पीछे खड़े समाज को संदेश मिलता है। इसी को ध्यान में रखकर योगी मंत्रिमंडल के विस्तार से बीजेपी ने भविष्य की सत्ता की रणनीति बनाई है। फोकस 2027 विधानसभा चुनाव। टारगेट ओबीसी प्लस दलित प्लस ब्राह्मण, इनमें सवर्ण भी शामिल है। पश्चिमी यूपी को प्रतिनिधित्व मिला है, पूर्वांचल में विशेष फोकस किया गया है, महिला चेहरा को शामिल किया गया है, समाजवादी पार्टी के बागियों को साधा गया है, पीडीए फॉर्मूले की काट का प्लान बनाया गया है, गैर यादव ओबीसी पर नजर रखी गई है, गैर जाटव दलित वोट साधने की कोशिश हुई है, बूथ से लेकर बिरादरी तक पकड़ बनाने की कोशिश हुई है। यूपी में पश्चिम से पूर्वांचल तक योगी का बैलेंस गेम दिखता है। गुर्जर, पाल, पिछड़ा, दलित, ब्राह्मण, हर क्षेत्र, हर जाति, हर समीकरण का ध्यान रखा गया है, या यूं कहें कि समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले के जवाब में बीजेपी ने सत्ता का नया सामाजिक गणित सामने रख दिया है। राजनीति सिर्फ सत्ता चलाने की कला नहीं है, समाज के मन को पढ़ने का विज्ञान भी है। और उत्तर प्रदेश में जिसने जाति, क्षेत्र और भावनाओं का संतुलन साध लिया, दिल्ली का रास्ता अक्सर उसी के लिए आसान हो जाता है। 2027 अभी दूर है, लेकिन उसकी आहट लखनऊ के सत्ता गलियारों में आज साफ सुनाई दे रही है।
11: 2024 का सबक हो या फिर ये पीडीए का असर, इतना है कि इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में दलितों, ओबीसी और ब्राह्मणों को ही तवज्जो दी गई है। और जो नया आंकड़ा है वो दिखाता है कि किस तरीके से 2024 में मुंह खा चुकी बीजेपी 2027 में कोई भी मौका देने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि आज के इस मंत्रिमंडल विस्तार में 6 में से 5 मंत्री ओबीसी और दलित बिरादरी से हैं। ब्राह्मणों को भी खुश करने की ये कोशिश। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
0: तमिलनाडु में रविवार का दिन बेहद खास रहा, क्योंकि तमिलनाडु को जो है उन्होंने अपना सीएम चुना। तमिलनाडु की सियासत में थलापति विजय ने इतिहास रच दिया, और पहली बार ही चुनावी रण में उतरने वाले जोसेफ विजय अब तमिलनाडु के थलापति हैं, मुख्यमंत्री हैं।
8: तमिलनाडु में शुरू हो गया है विजय राज, थलापति विजय अब रचेंगे तमिलनाडु का मुस्तकबिल।
17: There are so many jackals and other animals in the forest, but there will be only one lion. And even if it is single, it will be the king of jungle. It is not only a description, but also a clear declaration.
8: वो विजय जो अब तक रियल लाइफ के हीरो थे, अब रियल लाइफ के हीरो बन गए हैं। तमिलनाडु की जनता ने दिल खोल कर उनका साथ दिया है, उन पर भरोसा किया है। और अब उस भरोसे पर खरे उतरने की जिम्मेदारी विजय की है। शपथ लेने के तुरंत बाद विजय ने अपने दो सबसे बड़े चुनावी वादे को पूरा कर दिया, इससे राज्य की जनता चहक उठी। विजय ने शपथ स्थल से अपनी सरकार के पहले बड़े फैसलों में से एक के तौर पर 200 यूनिट मुफ्त बिजली और सिंगापुर स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का ऐलान कर दिया। विजय के दिल में क्या था वो अपनी फिल्म के जरिए ये बताते रहे हैं, जताते रहे हैं कि क्यों वो तमिलनाडु की सियासत में घुसे हैं। तमिलनाडु में पिछले 59 साल 1 महीने और 28 दिनों तक सिर्फ दो ही पार्टियों का राज था। तमिलनाडु में पिछले 21,608 से सिर्फ दो ही पार्टियां शासन करती थी, डीएमके और एडीएमके। बीच बीच में तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन भी रहा, लेकिन दोनों पार्टियों के अलावा किसी तीसरे की एंट्री नहीं हो पाई। लेकिन अब इन दोनों पार्टियों के राज को 59 साल के बाद थलापति विजय की टीवीके ने ध्वस्त कर दिया है।

विजय ने वो करके दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। किसने सोचा था कि सिर्फ 2 साल में ऐसा कमाल दिखाएंगे कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन जाएंगे।

0: देना वानिदा।
1: विजय मौजूदा वक्त में तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। विजय के पास पैसा, स्टारडम, फैन फॉलोइंग सब कुछ था। वो चाहते तो आराम से सुपरस्टार बने रह सकते हैं, लेकिन उन्होंने राजनीति का रास्ता चुना। ...2016 में जयललिता की मौत के बाद से तमिलनाडु की राजनीति में एक शून्य था, एक खालीपन था। डीएमके के सामने तो जैसे कि खुला हुआ रास्ता था, दूर दूर तक कोई भी टक्कर में नहीं था। इसीलिए 2021 में स्टालिन मुख्यमंत्री बने तो सबको लगा कि स्टालिन को कौन टक्कर देगा। इसीलिए ज्यादातर एग्जिट पोल में उनकी जीत बताई जा रही थी। लेकिन वो विजय ही थे जिन्होंने जयललिता की मौत से खाली हुई तमिलनाडु की राजनीति के शून्य को भर दिया। उनकी रैलियों की भीड़ बता तो रही थी कि तमिलनाडु में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन शायद किसी को ये अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ भीड़ नहीं है, उनके मतदाता भी हैं। और विजय के इन फैंस ने ये साबित कर दिया कि वो रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए नहीं जमा हुए थे, वो तमिलनाडु को बदलने के लिए आए थे। तमिलनाडु में थलापति विजय ने इतिहास तो रचा है, लेकिन उनको ये कामयाबी इसलिए मिली क्योंकि तमिलनाडु के लोगों को उनके अंदर एक ऐसा नायक नजर आया जो उनके राज्य को आगे ले जा सकता है। विजय की इस जीत के पीछे उनके वो फैंस थे जो उन्हें किसी भी हद तक फॉलो करते हैं। विजय ने अपने फैन क्लब को वेलफेयर नेटवर्क में बदला, लोगों की मद, युवाओं के कनेक्शन और जमीनी पकड़ मजबूत की और टीवीके के अपने वोटर तैयार किए। तमिलनाडु में विजय के 85,000 से ज्यादा फैन क्लब का नेटवर्क है जिन्होंने उनकी जीत में अहम भूमिका निभाई। उनका ये नेटवर्क पिछले 10 वर्षों से उनकी शैडो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में ही काम कर रहे थे। विजय के ये फैन क्लब पूरे तमिलनाडु में सामाजिक काम कर रहे थे, लोगों को विजय से जोड़ रहे थे। विजय आर्मी पिछले कई वर्षों से तमिलनाडु की गलियों में दिख रही थी। विजय की जीत की सबसे बड़ी वजह है उनकी लोकप्रियता। विजय भले ही 51 साल के हों, लेकिन उन्हें युवाओं का जेंजी नेता कहा जाता है। तमिलनाडु में 40 से कम उम्र के युवाओं की संख्या 2 करोड़ है, जो तमिलनाडु के करीब 41.5% वोटर होते हैं। विजय का यही युवा कैडर सोशल मीडिया पर भी एक्टिव था, जिन्होंने तमिलनाडु में विजय के पक्ष में हवा बनाई। विजय ने किसी बड़े गठबंधन का सहारा नहीं लिया, न डीएमके, न एडीएमके, न बीजेपी, सीधे जनता के बीच गए। मुद्दे थे रोजगार, शिक्षा, भ्रष्टाचार और बदलाव, और नतीजा ये कि टीवी के सबको चौंकाते हुए आज अपनी सरकार बना चुकी है और मुख्यमंत्री बन गए हैं थलापति विजय। चेन्नई से अक्षिता नंदगोपाल के साथ आज तक ब्यूरो।
2: तमिलनाडु में थलापति विजय ने जो करिश्मा कर दिखाया है उसकी उम्मीद लोगों ने नहीं की थी। किसी को भी नहीं मालूम था कि पहली बार ही चुनाव में उतरने वाले विजय राज्य के मुख्यमंत्री बन जाएंगे।
3: जोसेफ विजय एनुमनान।
1: तमिलनाडु में शुरू हो गया है विजय राज, थलापति विजय अब रचेंगे तमिलनाडु का मुस्तकबिल।
3: There are so many jackals and other animals in the forest, but there will be only one lion, and even if it is single, it will be the king of jungle. It is not only a description, but also a clear declaration.
1: वो विजय जो अब तक रियल लाइफ के हीरो थे, अब रियल लाइफ के हीरो बन गए हैं। तमिलनाडु की जनता ने दिल खोल कर उनका साथ दिया है, उन पर भरोसा किया है। और अब उस भरोसे पर खरे उतरने की जिम्मेदारी विजय की है। शपथ लेने के तुरंत बाद विजय ने अपने 2 सबसे बड़े चुनावी वादे को पूरा कर दिया। इससे राज्य की जनता चहक उठी। विजय ने शपथ स्थल से अपनी सरकार के पहले बड़े फैसलों में से एक के तौर पर 200 यूनिट मुफ्त बिजली और सिंगापुर स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का ऐलान कर दिया। विजय के दिल में क्या था वो अपनी फिल्म के जरिए ये बताते रहे हैं, जताते रहे हैं कि क्यों वो तमिलनाडु की सियासत में घुसे हैं। तमिलनाडु में पिछले 59 साल 1 महीने और 28 दिनों तक सिर्फ 2 ही पार्टियों का राज था। तमिलनाडु में पिछले 21,608 से सिर्फ दो ही पार्टियां शासन करती थी, डीएमके और एडीएमके। बीच बीच में तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन भी रहा, लेकिन दोनों पार्टियों के अलावा किसी तीसरे की एंट्री नहीं हो पाई। लेकिन अब इन दोनों पार्टियों के राज को 59 साल के बाद थलापति विजय की टीवीके ने ध्वस्त कर दिया है।

विजय ने वो करके दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। किसने सोचा था कि सिर्फ 2 साल में ऐसा कमाल दिखाएंगे कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन जाएंगे।

0: देना बंदा।
1: विजय मौजूदा वक्त में तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। विजय के पास पैसा, स्टारडम, फैन फॉलोइंग सब कुछ था। वो चाहते तो आराम से सुपरस्टार बने रह सकते हैं, लेकिन उन्होंने राजनीति का रास्ता चुना। ...2016 में जयललिता की मौत के बाद से तमिलनाडु की राजनीति में एक शून्य था, एक खालीपन था। डीएमके के सामने तो जैसे कि खुला हुआ रास्ता था, दूर दूर तक कोई भी टक्कर में नहीं था। इसीलिए 2021 में स्टालिन मुख्यमंत्री बने तो सबको लगा कि स्टालिन को कौन टक्कर देगा। इसीलिए ज्यादातर एग्जिट पोल में उनकी जीत बताई जा रही थी। लेकिन वो विजय ही थे जिन्होंने जयललिता की मौत से खाली हुई तमिलनाडु की राजनीति के शून्य को भर दिया। उनकी रैलियों की भीड़ बता तो रही थी कि तमिलनाडु में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन शायद किसी को ये अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ भीड़ नहीं है, उनके मतदाता भी हैं। और विजय के इन फैंस ने ये साबित कर दिया कि वो रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए नहीं जमा हुए थे, वो तमिलनाडु को बदलने के लिए आए थे। तमिलनाडु में थलापति विजय ने इतिहास तो रचा है, लेकिन उनको ये कामयाबी इसलिए मिली क्योंकि तमिलनाडु के लोगों को उनके अंदर एक ऐसा नायक नजर आया जो उनके राज्य को आगे ले जा सकता है। विजय की इस जीत के पीछे उनके वो फैंस थे जो उन्हें किसी भी हद तक फॉलो करते हैं। विजय ने अपने फैन क्लब को वेलफेयर नेटवर्क में बदला, लोगों की मद, युवाओं के कनेक्शन और जमीनी पकड़ मजबूत की और टीवीके के अपने वोटर तैयार किए। तमिलनाडु में विजय के 85,000 से ज्यादा फैन क्लब का नेटवर्क है जिन्होंने उनकी जीत में अहम भूमिका निभाई। उनका ये नेटवर्क पिछले 10 वर्षों से उनकी शैडो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में ही काम कर रहे थे। विजय के ये फैन क्लब पूरे तमिलनाडु में सामाजिक काम कर रहे थे, लोगों को विजय से जोड़ रहे थे। विजय आर्मी पिछले कई वर्षों से तमिलनाडु की गलियों में दिख रही थी। विजय की जीत की सबसे बड़ी वजह है उनकी लोकप्रियता। विजय भले ही 51 साल के हों, लेकिन उन्हें युवाओं का जेंजी नेता कहा जाता है। तमिलनाडु में 40 से कम उम्र के युवाओं की संख्या 2 करोड़ है, जो तमिलनाडु के करीब 41.5% वोटर होते हैं। विजय का यही युवा कैडर सोशल मीडिया पर भी एक्टिव था, जिन्होंने तमिलनाडु में विजय के पक्ष में हवा बनाई। विजय ने किसी बड़े गठबंधन का सहारा नहीं लिया, न डीएमके, न एडीएमके, न बीजेपी, सीधे जनता के बीच गए। मुद्दे थे रोजगार, शिक्षा, भ्रष्टाचार और बदलाव, और नतीजा ये कि टीवी के सबको चौंकाते हुए आज अपनी सरकार बना चुकी है और मुख्यमंत्री बन गए हैं थलापति विजय। चेन्नई से अक्षिता नंदगोपाल के साथ आज तक ब्यूरो।
2: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

0: तेल संकट से बचने के लिए पीएम मोदी की देशवासियों से अपील, कहा विदेशी मुद्रा बचाना भी देशभक्ति, एक साल तक ना खरीदें सोना, पेट्रोल डीजल का कम करें इस्तेमाल, फॉरेन टूर से भी बचें। यूपी में 2027 का चुनावी समीकरण साधने के लिए योगी कैबिनेट का विस्तार, भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे समेत 6 नए चेहरे, 2 राज्य मंत्री अजीत पाल, सोमेंद्र तोमर को मिला स्वतंत्र प्रभार। तमिलनाडु का सीएम बनते ही एक्शन में विजय, 200 यूनिट बिजली फ्री, महिला सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स का ऐलान, कहा डीएमके ने छोड़ा 10 लाख करोड़ का खर्च। असम में 12 मई को हेमंता फिर लेंगे सीएम पद की शपथ, उससे पहले कहा 2021 से 26 सिर्फ ट्रेलर, 2031 तक दिखाऊंगा पूरी पिक्चर। भीषण गर्मी और बाढ़ से निपटने के लिए दिल्ली में अमित शाह की उच्च स्तरीय बैठक, अलर्ट सिस्टम को मजबूत करने पर जोर, मेडिकल तैयारियों की भी समीक्षा। वैश्विक संकट के बीच में हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से एक साल तक सोने की खरीद न करने की अपील की है। पीएम ने कहा कि वैश्विक संकट है, इस बीच में विदेशी मुद्रा भंडार बचाने पर जोर देना होगा। पीएम ने यह भी कहा कि हमें तेल बचाने पर भी जोर देना होगा।
1: आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है, तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं। जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है, हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। भारत में बहुत सारी जगह है, वहां हम जा सकते हैं, बहुत कुछ भारत में किया जा सकता है। साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। साथियों, ये समय एक और बड़े सबक का भी है। एक समय था जब हम कॉपर एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन आज भारत के सामने स्थिति ऐसी बन गई कि अब हमें कॉपर को भी इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारे देश में हड़तालें करवाकर कॉपर प्लांट्स को ठप करवा दिया गया और अब हालत ये हो गई कि हमें कॉपर बाहर से मंगाना पड़ता है और उसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती है। इसलिए मैं ऐसे सभी श्रमिक समूह मजदूर संगठनों से भी कहूंगा कि हमें ऐसी बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। भारत को आत्मनिर्भर बनने से जो भी कदम रोकते हैं उनमें हमें दूरी बनानी होगी। साथियों, ऐसे ही खाने के तेल का भी है, इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने के तेल में खाने का तेल का जो उपयोग करता है अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो, अगर हम तेल खाना कम करें ना तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी। इससे देश के खजाने का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। साथियों, विदेशी मुद्रा की खपत वाला एक और सेक्टर हमारी खेती है। हम बहुत बड़ी मात्रा में बाहर से केमिकल फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर खेती के कारण हमारी धरती मां को बहुत पीड़ा हो रही है, हमारे खेत बर्बाद हो रहे हैं। अगर आज हम अपने खेत को नहीं बचाएंगे तो भविष्य में फसलों पर भी खतरा आ जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की खपत 25%, 30%, 40%, 50% उसको घटाएं, आधी कर दें और हम उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़े। हम फर्टिलाइजर का उपयोग कम करके विदेशी मुद्रा भी बचा सकते हैं और साथ साथ अपने खेत को बचा सकते हैं, हमारी ये धरती मां को बचा सकते हैं।
0: पीएम मोदी तेलंगाना के दौरे पर थे और एक कार्यक्रम के दौरान वहीं पर सीएम रेवंत रेड्डी भी मौजूद थे। पहले बोलते हुए सीएम रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में विकास का मुद्दा उठाया और इशारों में पीएम मोदी से केंद्र से मिलने वाली सहायता पर बात की और उसका जवाब बाद में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में अपने अंदाज में दिया, जिसे वहां पर हंसी की लहर दौड़ गई। पहले आपको सुनाते हैं सीएम रेवंत रेड्डी का भाषण का वो हिस्सा जिस पर पीएम ने बाद में जवाब दिया।
2: जब मोदी जी इस देश का प्रधानमंत्री है, लोग मेरे ऊपर उम्मीद रखा है आने वाले 10 साल में तेलंगाना मॉडल बना के 2034 $1 trillion इकोनॉमी रीच करने के लिए लोग उम्मीद रखा है। तो 2034 $1 trillion इकोनॉमी अगर तेलंगाना रीच हो गए तो 2047 तक हम लोग $3 trillion इकोनॉमी आसानी से हम पहुंच जाएंगे। इसके लिए जैसा मनमोहन सिंह जी मोदी जी को साथ दिए एज ए प्रधानमंत्री, आज हम 4 करोड़ तेलंगाना जनता के तरफ से मेरा गुजारिश है, मेरा रिक्वेस्ट है मोदी जी से, आप भी उतना ही आशीर्वाद ही तेलंगाना राज्य पे रहना है, तब हम तरक्की कर सकते।
0: अब सुनिए सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी का हाजिर जवाब, जिसे सुनकर वहां पर ठहाके लगने लगे।
1: मैं रेवंत जी से कहूंगा कि 10 साल के शासन में भारत सरकार ने जितना गुजरात को दिया वो मैं आपको देने को तैयार हूं। लेकिन मेरी जानकारी से मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही मैं ऐसा करूंगा आपको जो अभी मिल रहा है वो आधा हो जाएगा। आप जहां पहुंचना चाहते हैं नहीं पहुंच पाएंगे, और इसलिए अच्छा है कि मेरे से ही जोड़ो।
0: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 27 का शंखनाद कर दिया है। योगी सरकार का दूसरा कैबिनेट विस्तार हुआ। इस विस्तार में 2 मंत्रियों को प्रमोशन दिया गया, जबकि 6 नए चेहरों को मंत्री बनाया गया।
3: मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं।
4: मैं मनोज कुमार पांडे।
5: मैं अजय सिंह पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं।
6: सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
7: मैं भारत की सत्ता और अखंडता अछूत।
8: ये सिर्फ कैबिनेट विस्तार नहीं, यूपी में 2027 की चुनावी पटकथा का पहला बड़ा अध्याय है। योगी कैबिनेट विस्तार में सबसे बड़ा फोकस रहा जाति और क्षेत्रीय संतुलन।
9: सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
8: लखनऊ में 6 नए मंत्रियों के साथ 2 मंत्रियों का प्रमोशन हुआ। इस तरह योगी सरकार में 8 मंत्रियों ने शपथ ली। यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट विस्तार में जगह दी गई है। पश्चिमी यूपी का अहम जाट चेहरा है भूपेंद्र चौधरी। रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे योगी सरकार में मंत्री बन गए हैं। यूपी में मनोज पांडे बड़े ब्राह्मण चेहरों में से एक है। 2024 में समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर मनोज पांडे योगी सरकार में शामिल हुए थे।
10: मैं कृष्णा पासवान ईश्वर।
8: यूपी की खागा सीट से कृष्णा पासवान मंत्री बने। चौथी बार की विधायक कृष्णा पासवान पासी समुदाय की नेता है। लोधी समुदाय से आने वाले कैलाश राजपूत को भी मंत्री बनाया गया है। कन्नौज के तिरवा से बीजेपी विधायक कैलाश राजपूत की ओबीसी में अच्छी पकड़ है।
11: सुरेंद्र दिलेर।
8: अलीगढ़ की खैर सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर को भी मंत्री बनाया गया है। एससी समुदाय के बड़े नेता है सुरेंद्र दिलेर। यूपी विधान परिषद के सदस्य हंसराज विश्वकर्मा भी मंत्री बन गए हैं। पिछड़े समाज के नेता के रूप में हंस

0: के पीछे उनके वो फैंस थे जो उन्हें किसी भी हद तक फॉलो करते हैं। विजय ने अपने फैन क्लब को वेलफेयर नेटवर्क में बदला, लोगों की मदद, युवाओं के कनेक्शन और जमीनी पकड़ मजबूत की और टीवीके के अपने वोटर तैयार किए। तमिलनाडु में विजय के 85,000 से ज्यादा फैन क्लब का नेटवर्क है जिन्होंने उनकी जीत में अहम भूमिका निभाई। उनका ये नेटवर्क पिछले 10 वर्षों से उनकी शैडो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में ही काम कर रहे थे। विजय के ये फैन क्लब पूरे तमिलनाडु में सामाजिक काम कर रहे थे, लोगों को विजय से जोड़ रहे थे। विजय आर्मी पिछले कई वर्षों से तमिलनाडु की गलियों में दिख रही थी। विजय की जीत की सबसे बड़ी वजह है उनकी लोकप्रियता। विजय भले ही 51 साल के हों लेकिन उन्हें युवाओं का जेंजी नेता कहा जाता है। तमिलनाडु में 40 से कम उम्र के युवाओं की संख्या 2 करोड़ है जो तमिलनाडु के करीब 41.5% वोटर होते हैं। विजय का यही युवा कैडर सोशल मीडिया पर भी एक्टिव था जिन्होंने तमिलनाडु में विजय के पक्ष में हवा बनाई। विजय ने किसी बड़े गठबंधन का सहारा नहीं लिया, न डीएमके, न एडीएमके, न बीजेपी, सीधे जनता के बीच गए। मुद्दे थे रोजगार, शिक्षा, भ्रष्टाचार और बदलाव, और नतीजा ये कि टीवी के सबको चौंकाते हुए आज अपनी सरकार बना चुकी है और मुख्यमंत्री बन गए हैं थालापति विजय। चेन्नई से अक्षिता नंद गोपाल के साथ आज तक ब्यूरो।
1: तमिलनाडु में थालापति विजय ने जो करिश्मा कर दिखाया है उसकी उम्मीद लोगों ने नहीं की थी। किसी को भी नहीं मालूम था कि पहली बार ही चुनाव में उतरने वाले विजय राज्य के मुख्यमंत्री बन जाएंगे।
2: जोसेफ विजय
0: तमिलनाडु में शुरू हो गया है विजय राज। थालापति विजय अब रचेंगे तमिलनाडु का मुस्तकबिल।
2: There are so many jackals and other animals in the forest, but there will be only one lion. And even if it is single, it will be the king of jungle. It is not only a description, but also a clear declaration.
0: वो विजय जो अब तक रियल लाइफ के हीरो थे अब रियल लाइफ के हीरो बन गए हैं। तमिलनाडु की जनता ने दिल खोल कर उनका साथ दिया है, उन पर भरोसा किया है। और अब उस भरोसे पर खरे उतरने की जिम्मेदारी विजय की है। शपथ लेने के तुरंत बाद विजय ने अपने 2 सबसे बड़े चुनावी वादे को पूरा कर दिया। इससे राज्य की जनता चहक उठी। विजय ने शपथ स्थल से अपनी सरकार के पहले बड़े फैसलों में से एक के तौर पर 200 यूनिट मुफ्त बिजली और सिंगापुर स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का ऐलान कर दिया। विजय के दिल में क्या था वो अपनी फिल्म के जरिए ये बताते रहे हैं, जताते रहे हैं कि क्यों वो तमिलनाडु की सियासत में घुसे हैं। तमिलनाडु में पिछले 59 साल 1 महीने और 28 दिनों तक सिर्फ 2 ही पार्टियों का राज था। तमिलनाडु में पिछले 21,608 से सिर्फ 2 ही पार्टियां शासन करती थी, डीएमके और एडीएमके। बीच बीच में तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन भी रहा लेकिन दोनों पार्टियों के अलावा किसी तीसरे की एंट्री नहीं हो पाई। लेकिन अब इन दोनों पार्टियों के राज को 59 साल के बाद थालापति विजय की टीवीके ने ध्वस्त कर दिया है।

विजय ने वो करके दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। किसने सोचा था कि सिर्फ 2 साल में ऐसा कमाल दिखाएंगे कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन जाएंगे।

0: देना वांदा।
1: विजय मौजूदा वक्त में तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। विजय के पास पैसा, स्टारडम, फैन फॉलोइंग सब कुछ था। वो चाहते तो आराम से सुपरस्टार बने रह सकते हैं, लेकिन उन्होंने राजनीति का रास्ता चुना। ...2016 में जयललिता की मौत के बाद से तमिलनाडु की राजनीति में एक शून्य था, एक खालीपन था। डीएमके के सामने तो जैसे कि खुला हुआ रास्ता था, दूर दूर तक कोई भी टक्कर में नहीं था। इसीलिए 2021 में स्टालिन मुख्यमंत्री बने तो सबको लगा कि स्टालिन को कौन टक्कर देगा। इसीलिए ज्यादातर एग्जिट पोल में

0: उनकी जीत बताई जा रही थी। लेकिन वो विजय ही थे जिन्होंने जयललिता की मौत से खाली हुई तमिलनाडु की राजनीति के शून्य को भर दिया। उनकी रैलियों की भीड़ बता तो रही थी कि तमिलनाडु में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन शायद किसी को ये अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ भीड़ नहीं है, उनके मतदाता भी हैं। और विजय के इन फैंस ने ये साबित कर दिया कि वो रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए नहीं जमा हुए थे, वो तमिलनाडु को बदलने के लिए आए थे। तमिलनाडु में थलापति विजय ने इतिहास तो रचा है, लेकिन उनको ये कामयाबी इसलिए मिली क्योंकि तमिलनाडु के लोगों को उनके अंदर एक ऐसा नायक नजर आया जो उनके राज्य को आगे ले जा सकता है। विजय की इस जीत के पीछे उनके वो फैंस थे जो उन्हें किसी भी हद तक फॉलो करते हैं। विजय ने अपने फैन क्लब को वेलफेयर नेटवर्क में बदला, लोगों की मद, युवाओं के कनेक्शन और जमीनी पकड़ मजबूत की और टीवीके के अपने वोटर तैयार किए। तमिलनाडु में विजय के 85,000 से ज्यादा फैन क्लब का नेटवर्क है जिन्होंने उनकी जीत में अहम भूमिका निभाई। उनका ये नेटवर्क पिछले 10 वर्षों से उनकी शैडो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में ही काम कर रहे थे। विजय के ये फैन क्लब पूरे तमिलनाडु में सामाजिक काम कर रहे थे, लोगों को विजय से जोड़ रहे थे। विजय आर्मी पिछले कई वर्षों से तमिलनाडु की गलियों में दिख रही थी। विजय की जीत की सबसे बड़ी वजह है उनकी लोकप्रियता। विजय भले ही 51 साल के हों, लेकिन उन्हें युवाओं का जेंजी नेता कहा जाता है। तमिलनाडु में 40 से कम उम्र के युवाओं की संख्या 2 करोड़ है, जो तमिलनाडु के करीब 41.5% वोटर होते हैं। विजय का यही युवा कैडर सोशल मीडिया पर भी एक्टिव था, जिन्होंने तमिलनाडु में विजय के पक्ष में हवा बनाई। विजय ने किसी बड़े गठबंधन का सहारा नहीं लिया, न डीएमके, न एडीएमके, न बीजेपी, सीधे जनता के बीच गए। मुद्दे थे रोजगार, शिक्षा, भ्रष्टाचार और बदलाव, और नतीजा ये कि टीवी के सबको चौंकाते हुए आज अपनी सरकार बना चुकी है और मुख्यमंत्री बन गए हैं थलापति विजय। चेन्नई से अक्षिता नंदगोपाल के साथ आज तक ब्यूरो।
1: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
2: कलाई घड़ी के प्रयोग से आपकी किस्मत बदल सकती है? क्या घड़ी हर आदमी को नहीं देनी चाहिए? बंद और टूटी घड़ी के प्रयोग से समय को कैसे बदल सकते हैं? जानिए घड़ी के प्रयोग से कैसे बदलेगा भाग्य सिर्फ भाग्य चक्र।

0: तेल संकट से बचने के लिए पीएम मोदी की देशवासियों से अपील, कहा विदेशी मुद्रा बचाना भी देशभक्ति, एक साल तक न खरीदें सोना, पेट्रोल डीजल का कम करें इस्तेमाल, फॉरेन टूर से भी बचें। यूपी में 2027 का चुनावी समीकरण साधने के लिए योगी कैबिनेट का विस्तार, भूपेंद्र चौधरी मनोज पांडे समेत 6 नए चेहरे, 2 राज्य मंत्री अजीत पाल सोमेंद्र तोमर को मिला स्वतंत्र प्रभार। तमिलनाडु का सीएम बनते ही एक्शन में विजय, 200 यूनिट बिजली फ्री, महिला सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स का ऐलान, कहा डीएमके ने छोड़ा 10 लाख करोड़ का खर्च। असम में 12 मई को हेमंता फिर लेंगे सीएम पद की शपथ, उससे पहले कहा 2021 से 26 सिर्फ ट्रेलर, 2031 तक दिखाऊंगा पूरी पिक्चर। भीषण गर्मी और बाढ़ से निपटने के लिए दिल्ली में अमित शाह की उच्च स्तरीय बैठक, अलर्ट सिस्टम को मजबूत करने पर जोर, मेडिकल तैयारियों की भी समीक्षा। वैश्विक संकट के बीच में हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से एक साल तक सोने की खरीद न करने की अपील की है। पीएम ने कहा कि वैश्विक संकट है, इस बीच में विदेशी मुद्रा भंडार बचाने पर जोर देना होगा। पीएम ने यह भी कहा कि हमें तेल बचाने पर भी जोर देना होगा।
1: आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है, तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं। जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है, हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। भारत में बहुत सारी जगह है, वहां जा सकते हैं, बहुत कुछ भारत में किया जा सकता है। साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। साथियों, ये समय एक और बड़े सबक का भी है। एक समय था जब हम कॉपर एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन आज भारत के सामने स्थिति ऐसी बन गई कि अब हमें कॉपर को भी इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारे देश में हड़तालें करवाकर कॉपर प्लांट्स को ठप करवा दिया गया और अब हालत ये हो गई कि हमें कॉपर बाहर से मंगाना पड़ता है और उसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती है। इसलिए मैं ऐसे सभी श्रमिक मजदूर संगठनों से भी कहूंगा कि हमें ऐसी बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। भारत को आत्मनिर्भर बनने से जो भी कदम रोकते हैं उनमें हमें दूरी बनानी होगी। साथियों, ऐसे ही खाने के तेल का भी है, इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने के तेल में खाने का तेल का जो उपयोग करता है अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो, अगर हम तेल खाना कम करें ना।
0: पीएम मोदी तेलंगाना के दौरे पर थे और एक कार्यक्रम के दौरान वहीं पर सीएम रेवंत रेड्डी भी मौजूद थे। पहले बोलते हुए सीएम रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में विकास का मुद्दा उठाया और इशारों में पीएम मोदी से केंद्र से मिलने वाली सहायता पर बात की और उसका जवाब बाद में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में अपने अंदाज में दिया, जिसे वहां पर हंसी की लहर दौड़ गई। पहले आपको सुनाते हैं सीएम रेवंत रेड्डी का भाषण का वो हिस्सा जिस पर पीएम ने बाद में जवाब दिया।
2: जब मोदी जी इस देश का प्रधानमंत्री है, लोग मेरे ऊपर उम्मीद रखा है आने वाले 10 साल में तेलंगाना मॉडल बना के 2034 $1 trillion इकोनॉमी रीच करने के लिए लोग उम्मीद रखा है। तो 2034 $1 trillion इकोनॉमी अगर तेलंगाना रीच हो गए तो 2047 तक हम लोग $3 trillion इकोनॉमी आसानी से हम पहुंच जाएंगे। इसके लिए जैसा मनमोहन सिंह जी मोदी जी को साथ दिए एज ए प्रधानमंत्री, आज हम 4 करोड़ तेलंगाना जनता के तरफ से मेरा गुजारिश है, मेरा रिक्वेस्ट है मोदी जी से, आप भी उतना ही आशीर्वाद ही तेलंगाना राज्य पे रहना है, तब हम तरक्की कर सकते।
0: अब सुनिए सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी का हाजिर जवाब, जिसे सुनकर वहां पर ठहाके लगने लगे।
1: मैं रेवंत जी से कहूंगा कि 10 साल के शासन में भारत सरकार ने जितना गुजरात को दिया वो मैं आपको देने को तैयार हूं। लेकिन मेरी जानकारी से मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही मैं ऐसा करूंगा आपको जो अभी मिल रहा है वो आधा हो जाएगा। आप जहां पहुंचना चाहते हैं नहीं पहुंच पाएंगे और इसलिए अच्छा है कि मेरे से ही जोड़ो।
0: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 27 का शंखनाद कर दिया है। योगी सरकार का दूसरा कैबिनेट विस्तार हुआ। इस विस्तार में 2 मंत्रियों को प्रमोशन दिया गया जबकि 6 नए चेहरों को मंत्री बनाया गया।
3: मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं।
4: मैं मनोज कुमार पांडे।
5: मैं अजीत सिंह पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं।
6: सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
7: मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अछूत।
8: ये सिर्फ कैबिनेट विस्तार नहीं, यूपी में 2027 की चुनावी पटकथा का पहला बड़ा अध्याय है। योगी कैबिनेट विस्तार में सबसे बड़ा फोकस रहा जाति और क्षेत्रीय संतुलन।
9: सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
8: लखनऊ में 6 नए मंत्रियों के साथ 2 मंत्रियों का प्रमोशन हुआ। इस तरह योगी सरकार में 8 मंत्रियों ने शपथ ली। यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट विस्तार में जगह दी गई है। पश्चिमी यूपी का अहम जाट चेहरा है भूपेंद्र चौधरी। रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे योगी सरकार में मंत्री बन गए हैं। यूपी में मनोज पांडे बड़े ब्राह्मण चेहरों में से एक है। 2024 में समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर मनोज पांडे योगी सरकार में शामिल हुए थे।
10: मैं कृष्णा पासवान ईश्वर।
8: यूपी की खागा सीट से कृष्णा पासवान मंत्री बने। चौथी बार के विधायक कृष्णा पासवान पासी समुदाय के नेता हैं। लोधी समुदाय से आने वाले कैलाश राजपूत को भी मंत्री बनाया गया है। कन्नौज के तिरवा से बीजेपी विधायक कैलाश राजपूत की ओबीसी में अच्छी पकड़ है।
11: सुरेंद्र दिलेर।
8: अलीगढ़ की खैर सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर को भी मंत्री बनाया गया है। एससी समुदाय के बड़े नेता हैं सुरेंद्र दिलेर। यूपी विधान परिषद के सदस्य हंसराज विश्वकर्मा भी मंत्री बन गए हैं। पिछड़े समाज के नेता के रूप में हंसराज विश्वकर्मा की धमक है।
12: मैं निश्चित रूप से जो अपेक्षाएं हैं नेतृत्व की, अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जो भी काम मिलेगा, जो विभाग मिलेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए, विकास के लिए काम करेंगे।
13: मेरा ये संकल्प होगा कि जो जिम्मेदारी पार्टी ने और सरकार में हमें दी है, उसका पूरा हम लोग पालन करेंगे। पूरी मेहनत से, निष्ठा से उन रास्तों पर आगे चलेंगे और आगे बढ़ेंगे और जनता के काम करेंगे।
14: इतना अच्छा दिन है आज, भारतीय जनता पार्टी मातृ डे है और मातृ डे में आज मुझे शपथ दिलाई है। तो आप जानते हो कि महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति कितना ज्यादा संवेदनशील है भारत।
15: जो जिम्मेदारी मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, मोदी जी ने, योगी जी ने दी है, उसको अच्छे से निर्वहन करने का पूरा प्रयास करूंगा और अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाऊंगा।
8: उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर कैबिनेट विस्तार सिर्फ शपथ नहीं होता, आने वाले चुनावों के संकेत भी होते हैं। इस संकेत को साफ साफ पढ़ा जा सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार में दो मंत्रियों को प्रमोट किया गया है। मेरठ दक्षिण से विधायक सोमेंद्र तोमर का इस मंत्रिमंडल विस्तार में प्रमोशन हुआ है। योगी कैबिनेट में सोमेंद्र तोमर का कद बढ़ा है। सोमेंद्र तोमर को बीजेपी का मजबूत गुर्जर चेहरा माना जाता है। योगी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री अजीत पाल का भी मंत्रिमंडल विस्तार में प्रमोशन हुआ है। कानपुर देहात की सिकंदरा सीट से अजीत सिंह पाल विधायक हैं। ये पाल समुदाय के बड़े नेता हैं। योगी सरकार ने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए यूपी की सियासत बदल दी है। ब्राह्मण प्लस ओबीसी प्लस दलित, यानी एक ब्राह्मण दो दलित पांच ओबीसी, यानी एक तीर से कई निशाने।
16: जिम्मेवारी मिलेगी, अभी संगठन का काम कर रहा था, एमएलसी का काम कर रहा था, अब सरकार के मंत्री के रूप में जो काम मिलेगा, निश्चित तौर पर एक संगठन सेवा है हमारा, और वो तो ये है, अब सरकार का जो काम मिलेगा उसको जितना सच्चा सच्चा उसको किया।
8: राजनीति में कुर्सियां सिर्फ नेताओं को नहीं मिलती, उनके पीछे खड़े समाज को संदेश मिलता है। इसी को ध्यान में रखकर योगी मंत्रिमंडल के विस्तार से बीजेपी ने भविष्य की सत्ता की रणनीति बनाई है। फोकस 2027 विधानसभा चुनाव, टारगेट ओबीसी प्लस दलित प्लस ब्राह्मण, इनमें सवर्ण भी शामिल है। पश्चिमी यूपी को प्रतिनिधित्व मिला है। पूर्वांचल में विशेष फोकस किया गया है। महिला चेहरा को शामिल किया गया है। समाजवादी पार्टी के बागियों को साधा गया है। पीडीएफ फॉर्मूले की काट का प्लान बनाया गया है। गैर यादव ओबीसी पर नजर रखी गई है। गैर जाटव दलित वोट साधने की कोशिश हुई है। बूथ से लेकर बिरादरी तक पकड़ बनाने की कोशिश हुई है। यूपी में पश्चिम से पूर्वांचल तक योगी का बैलेंस गेम दिखता है। गुर्जर, पाल, पिछड़ा, दलित, ब्राह्मण, हर क्षेत्र, हर जाति, हर समीकरण का ध्यान रखा गया है। या यूं कहें कि समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले के जवाब में बीजेपी ने सत्ता का नया सामाजिक गणित सामने रख दिया है। राजनीति सिर्फ सत्ता चलाने की कला नहीं है, समाज के मन को पढ़ने का विज्ञान भी है। और उत्तर प्रदेश में जिसने जाति, क्षेत्र और भावनाओं का संतुलन साध लिया, दिल्ली का रास्ता अक्सर उसी के लिए आसान हो जाता है। 2027 अभी दूर है, लेकिन उसकी आहट लखनऊ के सत्ता गलियारों में आज साफ सुनाई दे रही है।
17: 2024 का सबक हो या फिर ये पीडीए का असर, इतना है कि इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में दलितों, ओबीसी और ब्राह्मणों को ही तवज्जो दी गई है। और जो नया आंकड़ा है वो दिखाता है कि किस तरीके से 2024 में मुंह खा चुकी बीजेपी 2027 में कोई भी मौका देने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि आज के इस मंत्रिमंडल विस्तार में 6 में से 5 मंत्री ओबीसी और दलित बिरादरी से हैं। ब्राह्मणों को भी खुश करने की ये कोशिश। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
0: तमिलनाडु में रविवार का दिन बेहद खास रहा, क्योंकि तमिलनाडु को जो है उन्होंने अपना सीएम चुना। तमिलनाडु की सियासत में थलापति विजय ने इतिहास रच दिया और पहली बार ही चुनावी रण में उतरने वाले जोसेफ विजय अब तमिलनाडु के थलापति हैं, मुख्यमंत्री हैं।
8: तमिलनाडु में शुरू हो गया है विजय राज, थलापति विजय अब रचेंगे तमिलनाडु का मुस्तकबिल।
11: There are so many jackals and other animals in the forest, but there will be only one lion. And even if it is single, it will be the king of jungle. It is not only a description, but also a clear declaration.
8: वो विजय जो अब तक रियल लाइफ के हीरो थे, अब रियल लाइफ के हीरो बन गए हैं। तमिलनाडु की जनता ने दिल खोल कर उनका साथ दिया है, उन पर भरोसा किया है। और अब उस भरोसे पर खड़े उतरने की जिम्मेदारी विजय की है। शपथ लेने के तुरंत बाद विजय ने अपने दो सबसे बड़े चुनावी वादे को पूरा कर दिया, इससे राज्य की जनता चहक उठी। विजय ने शपथ स्थल से अपनी सरकार के पहले बड़े फैसले में से एक के तौर पर 200 यूनिट मुफ्त बिजली और सिंगापुर स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का ऐलान कर दिया। विजय के दिल में क्या था वो अपनी फिल्म के जरिए ये बताते रहे हैं, जताते रहे हैं कि क्यों वो तमिलनाडु की सियासत में घुसे हैं। तमिलनाडु में पिछले 59 साल एक महीने और 28 दिनों तक सिर्फ दो ही पार्टियों का राज था। तमिलनाडु में पिछले 21,608 से सिर्फ दो ही पार्टियां शासन करती थी, डीएमके और एडीएमके। बीच बीच में तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन भी रहा, लेकिन दोनों पार्टियों के अलावा किसी तीसरे की एंट्री नहीं हो पाई। लेकिन अब इन दोनों पार्टियों के राज को 59 साल के बाद थलापति विजय की टीवीके ने ध्वस्त कर दिया है।

विजय ने वो करके दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। किसने सोचा था कि सिर्फ 2 साल में ऐसा कमाल दिखाएंगे कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन जाएंगे।

0: जानूंगा।
1: विजय मौजूदा वक्त में तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। विजय के पास पैसा, स्टारडम, फैन फॉलोइंग सब कुछ था। वो चाहते तो आराम से सुपरस्टार बने रह सकते हैं, लेकिन उन्होंने राजनीति का रास्ता चुना। ...2016 में जयललिता की मौत के बाद से तमिलनाडु की राजनीति में एक शून्य था, एक खालीपन था। डीएमके के सामने तो जैसे कि खुला हुआ रास्ता था, दूर दूर तक कोई भी टक्कर में नहीं था। इसीलिए 2021 में स्टालिन मुख्यमंत्री बने तो सबको लगा कि स्टालिन को कौन टक्कर देगा। इसीलिए ज्यादातर एग्जिट पोल में उनकी जीत बताई जा रही थी। लेकिन वो विजय ही थे जिन्होंने जयललिता की मौत से खाली हुई तमिलनाडु की राजनीति के शून्य को भर दिया। उनकी रैलियों की भीड़ बता तो रही थी कि तमिलनाडु में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन शायद किसी को ये अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ भीड़ नहीं है, उनके मतदाता भी हैं। और विजय के इन फैंस ने ये साबित कर दिया कि वो रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए नहीं जमा हुए थे, वो तमिलनाडु को बदलने के लिए आए थे। तमिलनाडु में थलापति विजय ने इतिहास तो रचा है, लेकिन उनको ये कामयाबी इसलिए मिली क्योंकि तमिलनाडु के लोगों को उनके अंदर एक ऐसा नायक नजर आया जो उनके राज्य को आगे ले जा सकता है। विजय की इस जीत के पीछे उनके वो फैंस थे जो उन्हें किसी भी हद तक फॉलो करते हैं। विजय ने अपने फैन क्लब को वेलफेयर नेटवर्क में बदला, लोगों की मद, युवाओं के कनेक्शन और जमीनी पकड़ मजबूत की और टीवीके के अपने वोटर तैयार किए। तमिलनाडु में विजय के 85,000 से ज्यादा फैन क्लब का नेटवर्क है जिन्होंने उनकी जीत में अहम भूमिका निभाई। उनका ये नेटवर्क पिछले 10 वर्षों से उनकी शैडो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में ही काम कर रहे थे। विजय के ये फैन क्लब पूरे तमिलनाडु में सामाजिक काम कर रहे थे, लोगों को विजय से जोड़ रहे थे। विजय आर्मी पिछले कई वर्षों से तमिलनाडु की गलियों में दिख रही थी। विजय की जीत की सबसे बड़ी वजह है उनकी लोकप्रियता। विजय भले ही 51 साल के हों, लेकिन उन्हें युवाओं का जेंजी नेता कहा जाता है। तमिलनाडु में 40 से कम उम्र के युवाओं की संख्या 2 करोड़ है, जो तमिलनाडु के करीब 41.5% वोटर होते हैं। विजय का यही युवा कैडर सोशल मीडिया पर भी एक्टिव था, जिन्होंने तमिलनाडु में विजय के पक्ष में हवा बनाई। विजय ने किसी बड़े गठबंधन का सहारा नहीं लिया, न डीएमके, न एडीएमके, न बीजेपी, सीधे जनता के बीच गए। मुद्दे थे रोजगार, शिक्षा, भ्रष्टाचार और बदलाव, और नतीजा ये कि टीवी के सबको चौंकाते हुए आज अपनी सरकार बना चुकी है और मुख्यमंत्री बन गए हैं थलापति विजय। चेन्नई से अक्षिता नंदगोपाल के साथ आज तक ब्यूरो।
2: तमिलनाडु में थलापति विजय ने जो करिश्मा कर दिखाया है उसकी उम्मीद लोगों ने नहीं की थी। किसी को भी नहीं मालूम था कि पहली बार ही चुनाव में उतरने वाले विजय राज्य के मुख्यमंत्री बन जाएंगे।
3: जोसफ विजय यनुमनान।
1: तमिलनाडु में शुरू हो गया है विजय राज। थलापति विजय अब रचेंगे तमिलनाडु का मुस्तकबिल।
3: There are so many jackals and other animals in the forest, but there will be only one lion. And even if it is single, it will be the king of jungle. It is not only a description, but also a clear declaration.
1: वो विजय जो अब तक रियल लाइफ के हीरो थे, अब रियल लाइफ के हीरो बन गए हैं। तमिलनाडु की जनता ने दिल खोल कर उनका साथ दिया है, उन पर भरोसा किया है। और अब उस भरोसे पर खरे उतरने की जिम्मेदारी विजय की है। शपथ लेने के तुरंत बाद विजय ने अपने 2 सबसे बड़े चुनावी वादे को पूरा कर दिया। इससे राज्य की जनता चहक उठी। विजय ने शपथ स्थल से अपनी सरकार के पहले बड़े फैसलों में से एक के तौर पर 200 यूनिट मुफ्त बिजली और सिंगापुर स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का ऐलान कर दिया। विजय के दिल में क्या था वो अपनी फिल्म के जरिए ये बताते रहे हैं, जताते रहे हैं कि क्यों वो तमिलनाडु की सियासत में घुसे हैं। तमिलनाडु में पिछले 59 साल 1 महीने और 28 दिनों तक सिर्फ 2 ही पार्टियों का राज था, तमिलनाडु में पिछले 21,608 से सिर्फ दो ही पार्टियां शासन करती थी, डीएमके और एडीएमके। बीच बीच में तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन भी रहा, लेकिन दोनों पार्टियों के अलावा किसी तीसरे की एंट्री नहीं हो पाई। लेकिन अब इन दोनों पार्टियों के राज को 59 साल के बाद थलापति विजय की टीवीके ने ध्वस्त कर दिया है।

विजय ने वो करके दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। किसने सोचा था कि सिर्फ 2 साल में ऐसा कमाल दिखाएंगे कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन जाएंगे।

0: कनाडा। विजय मौजूदा वक्त में तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। विजय के पास पैसा, स्टारडम, फैन फॉलोइंग सब कुछ था। वो चाहते तो आराम से सुपरस्टार बने रह सकते हैं, लेकिन उन्होंने राजनीति का रास्ता चुना। ...2016 में जयललिता की मौत के बाद से तमिलनाडु की राजनीति में एक शून्य था, एक खालीपन था। डीएमके के सामने तो जैसे कि खुला हुआ रास्ता था, दूर दूर तक कोई भी टक्कर में नहीं था। इसीलिए 2021 में स्टालिन मुख्यमंत्री बने तो सबको लगा कि स्टालिन को कौन टक्कर देगा। इसीलिए ज्यादातर एग्जिट पोल में उनकी जीत बताई जा रही थी। लेकिन वो विजय ही थे जिन्होंने जयललिता की मौत से खाली हुई तमिलनाडु की राजनीति के शून्य को भर दिया। उनकी रैलियों की भीड़ बता तो रही थी कि तमिलनाडु में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन शायद किसी को ये अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ भीड़ नहीं है, उनके मतदाता भी हैं। और विजय के इन फैंस ने ये साबित कर दिया कि वो रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए नहीं जमा हुए थे, वो तमिलनाडु को बदलने के लिए आए थे। तमिलनाडु में थलापति विजय ने इतिहास तो रचा है, लेकिन उनको ये कामयाबी इसलिए मिली क्योंकि तमिलनाडु के लोगों को उनके अंदर एक ऐसा नायक नजर आया जो उनके राज्य को आगे ले जा सकता है। विजय की इस जीत के पीछे उनके वो फैंस थे जो उन्हें किसी भी हद तक फॉलो करते हैं। विजय ने अपने फैन क्लब को वेलफेयर नेटवर्क में बदला, लोगों की मद, युवाओं के कनेक्शन और जमीनी पकड़ मजबूत की और टीवीके के अपने वोटर तैयार किए। तमिलनाडु में विजय के 85,000 से ज्यादा फैन क्लब का नेटवर्क है जिन्होंने उनकी जीत में अहम भूमिका निभाई। उनका ये नेटवर्क पिछले 10 वर्षों से उनकी शैडो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में ही काम कर रहे थे। विजय के ये फैन क्लब पूरे तमिलनाडु में सामाजिक काम कर रहे थे, लोगों को विजय से जोड़ रहे थे। विजय आर्मी पिछले कई वर्षों से तमिलनाडु की गलियों में दिख रही थी। विजय की जीत की सबसे बड़ी वजह है उनकी लोकप्रियता। विजय भले ही 51 साल के हों, लेकिन उन्हें युवाओं का जेंजी नेता कहा जाता है। तमिलनाडु में 40 से कम उम्र के युवाओं की संख्या 2 करोड़ है, जो तमिलनाडु के करीब 41.5% वोटर होते हैं। विजय का यही युवा कैडर सोशल मीडिया पर भी एक्टिव था, जिन्होंने तमिलनाडु में विजय के पक्ष में हवा बनाई। विजय ने किसी बड़े गठबंधन का सहारा नहीं लिया, न डीएमके, न एडीएमके, न बीजेपी, सीधे जनता के बीच गए। मुद्दे थे रोजगार, शिक्षा, भ्रष्टाचार और बदलाव, और नतीजा ये कि टीवी के सबको चौंकाते हुए आज अपनी सरकार बना चुकी है और मुख्यमंत्री बन गए हैं थलापति विजय। चेन्नई से अक्षिता नंदगोपाल के साथ आज तक ब्यूरो।
1: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
2: कलाई घड़ी के प्रयोग से आपकी किस्मत बदल सकती है? क्या घड़ी हर आदमी को नहीं देनी चाहिए? बंद और टूटी घड़ी के प्रयोग से समय को कैसे बदल सकते हैं? जानिए घड़ी के प्रयोग से कैसे बदलेगा भाग्य सिर्फ भाग्य चक्र।

0: तेल संकट से बचने के लिए पीएम मोदी की देशवासियों से अपील, कहा विदेशी मुद्रा बचाना भी देशभक्ति, एक साल तक न खरीदें सोना, पेट्रोल डीजल का कम करें इस्तेमाल, फॉरेन टूर से भी बचें। यूपी में 2027 का चुनावी समीकरण साधने के लिए योगी कैबिनेट का विस्तार, भूपेंद्र चौधरी मनोज पांडे समेत 6 नए चेहरे, 2 राज्य मंत्री अजीत पाल सोमेंद्र तोमर को मिला स्वतंत्र प्रभार। तमिलनाडु का सीएम बनते ही एक्शन में विजय, 200 यूनिट बिजली फ्री, महिला सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स का ऐलान, कहा डीएमके ने छोड़ा 10 लाख करोड़ का कर्ज। असम में 12 मई को हेमंता फिर लेंगे सीएम पद की शपथ, उससे पहले कहा 2021 से 26 सिर्फ ट्रेलर, 2031 तक दिखाऊंगा पूरी पिक्चर। भीषण गर्मी और बाढ़ से निपटने के लिए दिल्ली में अमित शाह की उच्च स्तरीय बैठक, अलर्ट सिस्टम को मजबूत करने पर जोर, मेडिकल तैयारियों की भी समीक्षा। वैश्विक संकट के बीच में हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से एक साल तक सोने की खरीद न करने की अपील की है। पीएम ने कहा कि वैश्विक संकट है, इस बीच में विदेशी मुद्रा भंडार बचाने पर जोर देना होगा। पीएम ने यह भी कहा कि हमें तेल बचाने पर भी जोर देना होगा।
1: आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है, तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं। जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिड